0: में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 तक पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
1: तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले पंडित जी से जानते हैं कि आखिरकार पंडित जी ये घोड़े की नाल होती क्या है, जिनको मालूम नहीं है उनको समझा दीजिए, और इसका प्रयोग क्या होता है, और अगर हम एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे देखें, उसके दृष्टिकोण से देखें, क्यों इसे इतना महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि कहने को तो ये बस लोहे का टुकड़ा ही है।
0: जी, जैसा सरगम ने आरंभ में बताया कि घोड़े के पैर में लगा हुआ एक लोहे का टुकड़ा है, सामान्य बोलचाल की भाषा में अगर समझें तो घोड़े की नाल घोड़े के खुर में उसके पैर में लगाई जाती है ताकि ना तो घोड़े को चलने में समस्या हो और ना ही घोड़े की सवारी करने वाले को समस्या हो। ये घोड़े की नाल यू की आकृति का होता है और इसके विशेष प्रभाव के कारण ज्योतिष में शनि और राहु से इसका संबंध जोड़ा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसके विशेष प्रभाव के कारण और आकृति की वजह से शनि और राहु हमेशा नियंत्रित रहते हैं। लेकिन ये भी आप जान लीजिए कि अगर घोड़े की नाल का गलत तरीके से प्रयोग किया जाए तो ये मुश्किल में डाल सकता है। ये कोई सामान्य लोहे का टुकड़ा नहीं है, इसके अंदर विशेष तरह के चुंबकीय गुण होते हैं जिसकी वजह से ये आपके ग्रहों को रेगुलेट कर पाता है, आपके ग्रहों को कंट्रोल कर पाता है।
1: तो चलिए बातचीत का जो सिलसिला है ये जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल पंडित जी से जान लेते हैं मेष वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है।
0: मेष राशि, स्वास्थ्य आपका कुल मिलाकर ठीक रहेगा, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं, निर्णयों में सावधानी बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, बड़े निर्णयों में सावधानी रखें, संतान की चिंता हो सकती है, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। मिथुन राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, धन की प्राप्ति हो सकती है,

0: सत्यता रहेगी। सूर्य देव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: पंडित जी, मैंने खुद मुख्यतः देखा है कि कई ऐसे शनि मंदिर हैं जहां पर इसे चढ़ाया जाता है, यानी घोड़े के नाल को चढ़ाया जाता है, तो क्यों और कैसे घोड़े की नाल शनि को नियंत्रित कर सकती है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं।
0: देखिए, शनि का संबंध लौह धातु से है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन घोड़े की नाल ही क्यों इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है शनि को कंट्रोल करने के लिए? देखिए, शनि जो है वो धीमी गति का, संघर्ष का और मेहनत का ग्रह है। घोड़े की गति धीमी तो नहीं होती, लेकिन गति उसके पास भी होती है, मेहनती बहुत होता है, संघर्ष का प्राणी है, और ये गुण घोड़े की नाल में पाया जाता है। घोड़े की नाल घोड़े के पैरों में लगी होती है और इसी कारण गतिशील अवस्था में, यानी मूवमेंट में बनी रहती है। घोड़े की नाल घोड़े के पैरों में लगी होने की वजह से जब घोड़ा चलता है तो ये नाल जमीन से बार बार घिसती है और टकराती है। रगड़ खाते रहने के कारण इसमें चुंबकीय प्रभाव आ जाता है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। लगातार जमीन से रगड़ खाने की वजह से विशेष तरह की तरंगे और विशेष तरह की ऊर्जा उसके अंदर आ जाती है, और इसी चुंबकीय प्रभाव के कारण घोड़े की नाल शनि को नियंत्रित कर पाती है। घोड़े की नाल जितनी पुरानी होगी, जितनी घिसी हुई होगी, उसकी तरंगे उतनी प्रभावशाली होंगी और उसकी तरंगों के फायदे से आप शनि को कंट्रोल कर पाएंगे।
1: तो चलिए, बातचीत का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल पंडित जी से जान लेते हैं कर्क सिंह और कन्या राशि का राशिफल क्या है।
0: कर्क राशि, करियर में सफलता मिलती दिखाई दे रही है, स्वास्थ्य में सुधार होगा, किसी मित्र का सहयोग प्राप्त होगा। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, करियर की समस्या हल होगी, अतिथि का आगमन होगा, स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, करियर में लापरवाही ना करें, अपयश से बचाव करें, वाहन सावधानी से चलाएं, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
1: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और फिलहाल कार्यक्रम में समय हो गया है आपके सवाल का, तो बिना देर किए पंडित जी से ही जान लेते हैं आज का पहला सवाल आप किस व्यूअर का ले रहे हैं उसके बारे में बताएं।
0: जी आज का पहला प्रश्न शैली सिंह ने हमें लिखा है, वाराणसी से लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 16 मार्च 1995। जन्म का समय रात में 10:35। जन्म स्थान है वाराणसी। शैली कह रही हैं कि मेरा विवाह अब तक नहीं हो पाया है, तो मेरा विवाह कब तक होगा और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। शैली, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके विवाह का समय शुरू हो चुका है और अगले 3-4 महीनों में आपकी शादी फाइनल हो जाएगी, ये संभावना आपकी कुंडली में दिखाई दे रही है। साल 2027 के आरंभ में आपका विवाह होगा और वाराणसी या उसके आसपास ही विवाह होने की संभावना बनती है। हालांकि विवाह के बाद आप अपने पति के साथ बनारस से दूर जा सकती हैं। एक ओपल बनवा के पहनिए, 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहने, रोज सुबह 108 बार ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का जप करें तो आपको लाभ होगा।
1: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब पंडित जी से ही जान लेते हैं कि आज का अगला सवाल वो किस व्यूअर का ले रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को याद दिला दूं कि अगर आप भी हमारे ये कार्यक्रम रोज देखते हैं, इसे काफी पसंद करते हैं और सोचते हैं कि पंडित जी से सवाल कैसे पूछ सकते हैं, तो आपको मैं बता दूं कि टीवी स्क्रीन पर हमारा ईमेल आईडी इस वक्त फ्लैश हो रहा है। आपको बस इतना करना है कि अपनी जो बर्थ डिटेल्स हैं इस ईमेल आईडी पे भेजनी है और अपना सवाल साथ में हमें भेज दीजिए, पंडित जी आपके सवालों का जवाब जरूर देंगे। तो पंडित जी अगला सवाल किसका है इसके बारे में बताएं।
0: जी अगला प्रश्न विवेकानंद जी ने लिखा है हमें, देहरादून से लिखते हैं। 8 अक्टूबर 1975 का जन्म है, दोपहर के 3:50। जन्म का स्थान है देहरादून। विवेकानंद जी कह रहे हैं कि एक प्रॉपर्टी के कब्जे को लेके काफी समय से मुकदमा चल रहा है। प्रॉपर्टी मेरी है, किराएदार उसे छोड़ नहीं रहा है और विवाद काफी समय से चलता आ रहा है, तो ये विवाद कब तक हल होगा, समस्या से छुटकारा कब तक मिलेगा। विवेकानंद जी, ऐसा दिखाई दे रहा है कि साल के अंत में आपसी सुलह समझौते से आपकी समस्या हल हो जाएगी साल 2026 के अंत में और आपको आपकी प्रॉपर्टी मिलेगी, लेकिन उसको पाने के लिए कुछ पैसा वगैरह आपको खर्च करना पड़ेगा, मामला सुलह समझौते से निपट जाएगा। रोज सुबह शाम 1-1 बार संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करिए और मंगलवार को गुड़ का या मिठाई का अगर आप दान करें तो आपकी समस्या जल्दी हल हो जाएगी।
1: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब पंडित जी से जानने की यहाँ पर कोशिश करते हैं कि किस प्रकार घोड़े की नाल का प्रयोग कर सकते हैं ताकि शनि की पीड़ा से अगर आप जूझ रहे हैं, शनि से मिलने वाली जो तमाम मुश्किलें हैं उसका सामना कर रहे हैं, तो उसे किस तरीके से मुक्ति मिल सकती है, आइए पंडित जी से जानते हैं।
0: देखिए, घोड़े की नाल अगर पुरानी है, घिसी हुई है, तो इसका प्रयोग करके आप शनि की पीड़ा को कम कर सकते हैं। कैसे करेंगे, किसी मंगलवार या बृहस्पतिवार को घोड़े की नाल ले लें, ये जितनी ज्यादा पुरानी होगी, जितनी ज्यादा घिसी हुई होगी, उतना ही ज्यादा बढ़िया होगा। इस नाल से एक अंगूठी यानी एक छल्ला बनवा लें, लेकिन ये छल्ला या अंगूठी पीट पीट कर काट काट कर बनाई जाएगी, इसको आग में नहीं तपाया जाएगा। शनिवार की शाम को इस अंगूठी को सरसों के तेल से धो करके मिडिल फिंगर में मध्यमा अंगुली में धारण कर लें। अगर शनि की महादशा है, अंतरदशा है, शनि की साढ़े साती है, ढैया है और इसके वजह से आपको परेशानी हो रही है, तो आप घोड़े की नाल का छल्ला अगर मध्यमा अंगुली में पहन लेंगे तो शनि जो आपको पीड़ा दे रहे हैं वो पीड़ा कम हो जाएगी और उस पीड़ा से आप बचे रहेंगे।
1: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं तुला वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है।
0: तुला राशि, करियर में आपके सुधार होता दिखाई दे रहा है, कर्ज की समस्या हल होगी, धन की प्राप्ति होगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, समस्या से मुक्ति मिलेगी, कोई शुभ समाचार मिलेगा, खान पान में थोड़ी सावधानी रखें, सूर्य देव को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर में सफलता मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: तो पंडित जी, अगर किसी के घर में किसी ना किसी तरीके की परेशानी बनी रहती है तो घोड़े की नाल का वो किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि उनके घर में सुख और शांति का वास हो?
0: आप अपने पूरे घर के ऊपर से नकारात्मक प्रभाव को, निगेटिव एनर्जी को हटा सकते हैं घोड़े की नाल का प्रयोग करके। तो घोड़े की नाल का कैसे प्रयोग करें कि घर में सुख शांति आए? घोड़े की नाल मंगलवार या बृहस्पतिवार को घर में ले आए और इसको एक कटोरी में या एक पात्र में सरसों का तेल डालकर उसमें डुबा करके रख दें। शनिवार की शाम को इसे जल से धो लें, कपड़े से पोंछ लें और इसके बाद घर के मुख्य द्वार पर मेन डोर पर ऊपर बीचों बीच में इसे यू की आकृति में लगा दें और एक नियम बना लें, रोज शाम को जब घर में पूजा करते हैं, धूप बत्ती जलाते हैं, तो रोज शाम को घर के मुख्य द्वार पर धूप बत्ती दिखाइए और नाल के ऊपर से भी धूप बत्ती एक बार घुमा लीजिए, इसको भी दिखा लीजिए। इस नाल को लगाने का फायदा यह है कि ये मुख्य द्वार पर लगा रहेगा, घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी। अगर घर में कोई निगेटिव एनर्जी लेकर के प्रवेश करना चाहेगा तो वो प्रवेश नहीं कर पाएगा।
1: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब पंडित जी से जाने का वक्त हो गया है कि मकर कुंभ और मीन राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है।
0: मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, महत्वपूर्ण काम मत टालें, अपनी योजनाओं को गोपनीय रखें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, यात्रा पर जा सकते हैं, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं। सूर्य देव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, कोई महत्वपूर्ण काम बन जाएगा, धन संबंधी मुश्किलें दूर होंगी, परिवार में शुभ कार्य होंगे, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: पंडित जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती थी कि आज आपने बताया घोड़े की नाल के बारे में, तो शनि से इसका संबंध होता है, शनि के मंदिरों में चढ़ाया जाता है, मैंने खुद भी देखा है, लेकिन नाव की जो कील होती है इसका भी सीधा तौर पर संबंध जो है शनि के साथ देखा जाता है, बताया जाता है कि जीवन में अगर कोई तकलीफ है जो कि शनि देव के द्वारा आ रही है तो उससे निजात मिल जाती है।
0: जी देखिए, जैसे घोड़े की जो नाल होती है ना, जब घोड़े के पैर में लगी होती है, घोड़ा बराबर दौड़ता है, चलता रहता है, तो वो लोहा जमीन से घिसता जाता है, उसके अंदर एक चुंबकीय प्रभाव आ जाता है और ये चुंबकीय प्रभाव शनि को कंट्रोल करने में आपकी सहायता करता है। चाहे आप नाल का छल्ला बनवा के पहन लें, चाहे आप घर के मुख्य द्वार पर लगा लें, और बहुत सारे लोग घोड़े की नाल को लक फैक्टर मान के अपने ऑफिस में, अपने कमरे में, अपनी दराज में, अपने बैग में भी रखते हैं। इसी तरह से जो नाव की कील है, नाव में कहीं भी लगी हुई कील नहीं, जो नाव की मुख्य कील है जिस पर पूरे नाव का ढांचा टिका हुआ होता है, जो नीचे की तरफ लगी होती है, ये जो नाव की कील होती है ये बार बार लहरों से, बार बार पानी से टकराती है। तो जब बार बार पानी से नाव की कील टकराती है तो उसके अंदर भी चुंबकीय प्रभाव आ जाता है, मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाता है। तो नाव की ऐसी कील जो नाव में नीचे लगी हो, बार बार लहरों से टकराती हो और काफी समय से नाव में लगी हो, ये नाव की कील भी शनि की पीड़ा से छुटकारा पाने में आपकी सहायता कर सकती है। लोग इस नाव की कील की भी अंगूठी या छल्ला बनवाते हैं, लेकिन वहां पे भी शर्त यही होती है कि इसको काट कर पीट कर ठोंक ठोंक कर बनाया जाता है, इसको आग में तपाया नहीं जाता, और फिर सरसों के तेल से शुद्ध करके नाव की कील के छल्ले को या अंगूठी को भी मिडिल फिंगर में धारण किया जाता है। लेकिन नाव की कील घर के मुख्य द्वार पर लगाई जाए या नाव की कील अपने साथ रखी जाए, ऐसी परंपरा और ऐसी मान्यता नहीं है। लेकिन जैसे घोड़े की नाल की चुंबकीय क्षेत्र से आपको फायदा होता है, उसी तरह से नाव की कील के चुंबकीय क्षेत्र से भी आपको फायदा जरूर होगा।
1: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और राशि फल के बाद अब समय हो गया है आज के तीसरे सवाल का। तो बिना देर के पंडित जी से ही जान लेते हैं कि आज का अगला यानी कि तीसरा सवाल किस व्यूअर का है।
0: जी अगला प्रश्न अंजलि दीक्षित जी ने हमें लिखा है और अंजलि हमें कानपुर से मेल लिखती हैं, अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्र की जन्म तारीख है 15 अक्टूबर 2014, जन्म का समय दोपहर में 1:09, जन्म स्थान है कानपुर। ये कह रही हैं कि मेरा बेटा बहुत बीमार रहता है, कुछ न कुछ स्वास्थ्य की समस्याएं उसको लगी रहती हैं, तो उसे अच्छा स्वास्थ्य मिले इसके लिए मैं क्या उपाय करूं? अंजलि जी, आपके पुत्र की कुंडली में ऐसी कोई बड़ी स्वास्थ्य की समस्या नहीं है जिसके लिए आप परेशान हैं। उसके आंखों में दिक्कत हो सकती है या ज्यादा से ज्यादा कोल्ड कफ की प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी कोई बहुत चिंता की बात कुंडली में दिखाई नहीं दे रही है। फिर भी आप दो काम करिए, अपने बेटे के लिए रोज सुबह 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करिए और प्रार्थना करिए कि आपका बेटा स्वस्थ रहे, और अपने बेटे के नाम से हर सोमवार को सफेद चीज का, चावल, चीनी, दूध, इसका दान करिए। अगले 1 साल तक ये उपाय करिए, बेटे के स्वास्थ्य में और जीवन में सुधार होना शुरू हो जाएगा।
1: तो चलिए इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और आज का चौथा सवाल पंडित जी किसका ले रहे हैं उसके बारे में भी पंडित जी से जानेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को याद दिला दूं कि अगर आप भी हमारे कार्यक्रम देखते हैं और पंडित जी से सवाल पूछना चाहते हैं तो बहुत ही आसान इसका तरीका है। टीवी स्क्रीन पर हमारी ईमेल आईडी जो फ्लैश हो रही है, इसे आप नोट कर लें और अपने सवाल इस पर लिख करके हमें भेज सकते हैं। आपके सवालों का जवाब आपको जरूर मिलेगा हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से। तो चलिए पंडित जी से जानते हैं अगला सवाल किसका है, पंडित जी जरूर बताएं।
0: जी आज का अंतिम प्रश्न जया श्रीवास्तव जी ने लिखा है हमें, भोपाल से लिखती हैं, अपने पतिदेव के बारे में जानना चाहती हैं। इनके पतिदेव की जन्म की तारीख है 15 मार्च 1979, जन्म का समय रात में 9:10, जन्म का स्थान है भोपाल। ये कह रही हैं कि मेरे पतिदेव अभी पुणे में नौकरी कर रहे हैं और ऐसा देखा जाता है कि हर 2-2.5 साल पे उनकी नौकरी में प्रॉब्लम आ जाती है। अभी भी नौकरी में प्रॉब्लम आ गई है, तो क्या आने वाले समय में नौकरी बचेगी या जाएगी, और भविष्य में नौकरी अगर ये करें तो उसमें प्रॉब्लम ना आए, उसके लिए मैं क्या उपाय करूं? जया, सबसे पहले बता दूं आपको कि आपके पतिदेव की नौकरी जाने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि उनका ट्रांसफर हो या जो वर्क प्रोफाइल हो, जो करियर में काम करते हो उसमें आंतरिक रूप से इंटरनली कोई बदलाव हो, लेकिन अभी नौकरी जाने की संभावना नहीं बनती है। आपके पति की कुंडली में ये बात सही है कि शनि के गड़बड़ होने की वजह से बार बार नौकरी बदलना, छूटना, उतार चढ़ाव ये लगा रहता है। तो आप अपने पतिदेव को एक लोहे का छल्ला, अगर घोड़े की नाल के लोहे का बना हो तो बहुत अच्छा, ये बनवा करके पहना दीजिए राइट हैंड की मिडिल फिंगर में शनिवार की शाम को। और दूसरा, रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करिए, अपने पति के करियर के लिए प्रार्थना करिए, चीजें बेहतर हो जाएंगी।
1: तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अर्जुन का जन्मदिन यानी कि बर्थडे 23 अगस्त को है। पहले तो आप सभी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। तो चलिए पंडित जी से ही जान लेते हैं कि आपका आने वाला साल जो है वो कैसा रहने वाला है।
0: जिन लोगों का जन्मदिन 23 अगस्त को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा, करियर सामान्य तरीके से चलता रहेगा, धन की स्थिति मध्यम बनी रहेगी, हालांकि अविवाहितों का विवाह हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: तो चलिए इसी के साथ कार्यक्रम को अब आगे बढ़ाते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कि आखिरकार आज की जिज्ञासा क्या है और उस जिज्ञासा का समाधान क्या है।
0: आज की जिज्ञासा है कि घर में अगर पूजा स्थान साफ तरीके से ना हो, अस्त व्यस्त हो, देवी देवताओं के चित्र मूर्तियां गड़बड़ तरीके से रखे हों तो क्या प्रभाव होगा? घर का पूजा स्थान पूरे घर को समृद्धि यानी प्रॉस्पेरिटी और आरोग्य यानी अच्छा स्वास्थ्य देता है। अगर ये स्थान अस्त व्यस्त होता है तो घर के लोगों की सेहत अच्छी नहीं रहती, घर में लोग बीमार रहते हैं और घर का ज्यादातर पैसा बीमारियों में खर्च होता है। तो देखिए, घर के पूजा स्थान की रोज सफाई करिए, पुराने फूल धूप बत्ती की राख ये सब हटाइए, रोज मूर्तियों को झाड़िए पोंछिए, पूरे पूजा स्थान को रोज सुबह साफ करके तब पूजा करिए। अगर ऐसा नियमित रूप से आप करें तो आपके घर में समृद्धि भी रहेगी और लोग स्वस्थ भी रहेंगे।
1: तो चलिए अब पंडित जी से जान लेते हैं कि आखिरकार 23 अगस्त 2026 यानी कि दिन रविवार का शुभ पहर, अच्छा पहर कौन सा है?
0: दिनांक 23 अगस्त 2026 दिन रविवार शुभ पहर का समय है शाम को 6:00 से 7:30 तक। इस समय में हनुमान चालीसा एक बार जरूर पढ़िएगा, ऐसा करने से रोजगार की समस्याओं का समाधान होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 23 अगस्त रविवार शाम को 6:00 से 7:30 के बीच में।
1: तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब जल्दी से पंडित जी से जान लेते हैं कि आखिरकार आज की गुड लक राशि कौन सी है।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के अंदर कमियां क्या होती हैं, गलतियां क्या होती हैं और किन बातों का ध्यान रखें। आज की गुड लक राशि है वृषभ राशि। आपको अपने जिद्दी स्वभाव और क्रोध का ध्यान रखना चाहिए और जहां तक संभव हो बेवजह दूसरों के मामले में पड़ने से आपको बचना चाहिए।
1: तो चलिए अब हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जहां हम पंडित जी से जानते हैं कि आज का महा उपाय क्या है।
0: जी आप नौकरी करते हैं, बड़ी अच्छी नौकरी करते हैं, लेकिन बार बार नौकरी में समस्या आ जाती है, बार बार नौकरी छूट जाती है, ट्रांसफर हो जाता है, उठा पटक होने लगती है, क्या करना चाहिए? रोज सवेरे जल में रोली डाल करके सूर्य देव को जल अर्पित करें, जितना अर्ली करें उतना अच्छा होगा। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें और एक घोड़े की नाल के लोहे की बनी हुई अंगूठी मिडिल फिंगर में शनिवार को धारण करें, आपको लाभ होगा।
1: पंडित जी हमें तमाम जानकारी देने के लिए हमेशा की तरह आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद।
1: तो चलिए इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जीएनटी के साथ।

0: रिलीज से पहले टॉक्सिक का एडवांस विस्फोट, रॉकिंग स्टार की सिल्वर स्क्रीन पर दमदार चोट, यश के दम पर बेहिसाब पैसा कुर्बान, बालक के बारूद बनने की अनोखी दास्तान, बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
1: घोड़े की नाल का शनि के साथ क्या संबंध है, घोड़े की नाल का कैसे प्रयोग करें कि शनि की पीड़ा कम हो जाए, क्या है घोड़े की नाल के प्रयोग का विधान और कैसे मिलेंगे इससे शनि के वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: सावन की रिमझिम फुहारों के बीच सदियों की प्रतीक्षा के बाद अयोध्या के श्रीराम मंदिर में अद्भुत अलौकिक आयोजन हो रहा है। यहां मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामलला अपने भव्य भवन में दिव्य झूलनोत्सव मना रहे हैं। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं रामलला के दरबार में और दिखाते हैं झूलनोत्सव की शानदार छटा।

0: लगता है जैसे अयोध्या में त्रेता युग जीवंत हो उठा है। भव्य श्री राम मंदिर में रामलला झूलनोत्सव मना रहे हैं। देखिए इन तस्वीरों को, गर्भगृह में विशेष रूप से तैयार किए गए सोने चांदी के भव्य झूले पर रामलला विराजमान है। झूलनोत्सव के लिए प्रभु को विशेष रेशमी और जरी के वस्त्र पहनाए गए हैं। भजन कीर्तन के बीच यहाँ का माहौल श्रद्धा और भक्ति से सराबोर नजर आ रहा है। अब एक बार फिर से यहाँ पर सावन का ये उत्सव त्रेता युग की याद दिला रहा है, जब पूरी अयोध्या आनंद में डूबी रहती थी। श्री राम मंदिर परिसर में रामलला का ऐतिहासिक झूलनोत्सव इस बार 15 अगस्त को श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को शुरू हुआ। संत महात्माओं की पावन उपस्थिति में भगवान श्री राम की उत्सव मूर्ति को भाइयों के साथ विधि विधान पूर्वक झूले पर विराजमान कराया गया। इस दौरान मंदिर परिसर में भक्ति परंपरा और आध्यात्मिक उल्लास का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। ये उत्सव रामलला के प्रति भक्ति की भावना से प्रेरित है। सावन की उमस और गर्मी से राहत देने के लिए भक्त भगवान को फूलों और चंदन से सजे ठंडे झूले पर बिठाकर धीरे धीरे झूला झुलाते हैं, ताकि उन्हें सुख मिल सके। भक्त अपने आराध्य को छोटे बच्चे के रूप में देखते हैं और हिंडोले पर बिठाकर पंखा चलते हुए उन्हें झूला झुलाते हैं। जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ओर से झूला उत्सव का खास वीडियो जारी किया गया है। श्री राम मंदिर में झूलनोत्सव का ये दृश्य श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस दरमियान यहाँ मंदिर परिसर में संत महात्माओं की मौजूदगी में लगातार धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं, जो अयोध्या की इस युगों पुरानी आध्यात्मिक परंपरा को और भव्यता प्रदान कर रही है। खास बात यह है कि 12 दिनों के झूलनोत्सव के दौरान हर दिन शाम को रामलला को पालकी में बिठाकर कुबेर टीला ले जाया जाता है और वहां उनके दर्शन की विशेष व्यवस्था रहती है। केवल राम जन्मभूमि ही नहीं बल्कि पूरी अयोध्या इस समय उत्सव के रंग में सराबोर है। सरयू के तट से लेकर कनक भवन तक और तमाम मंदिरों में भी हर तरफ इन दिनों उत्सव का माहौल है। सावन शुक्ल तृतीया से शुरू हुआ ये झूलनोत्सव पूर्णिमा तक इसी तरह पूरी भव्यता के साथ जारी रहेगा। अयोध्या से मैं शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: और अब बात करते हैं जन्माष्टमी की। जन्माष्टमी का त्यौहार 4 सितंबर को मनाया जाएगा। इस शुभ अवसर पर दिल्ली में मटकी फोड़ लीग का आयोजन होगा। मटकी फोड़ लीग में 26 गोविंदा टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला होगा और एमपीएल का ये दूसरा साल है और एक कार्यक्रम में आधिकारिक एंथम सॉन्ग और मस्कट मटकू लॉन्च किया गया है।

0: एक बार फिर आएंगे कान्हा। मटकी फोड़ेंगे कृष्ण मुरारी गिरधारी, नंद गोपाल मुरलीधर कुंज बिहारी, गोवर्धन धारी गोविंदा बाके बिहारी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर खूब जमेगा रंग। जब दिल्ली के कोने कोने से आई गोविंदाओं की टोलियां ऊंचे ऊंचे मानव पिरामिड बनाएगी। दही हांडी की मटकी फोड़ने के लिए एक बार फिर अपना दमखम दिखाने के लिए जुटेंगी, जोश और उत्साह चरम पर होगा। जब राजधानी दिल्ली में मटकी फोड़ ली यानी एमपीएस सीजन 2 का भव्य आयोजन होगा। माखन की मटकी फोड़ने की सदियों पुरानी परंपरा शानदार खेल प्रतियोगिता के रूप में जीवंत होगी। राजधानी में पिछले 23 वर्षों से आयोजित हो रहे श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की परंपरा को इस वर्ष एमपीएल के साथ और अधिक भव्य और आकर्षक स्वरूप देने की तैयारी की गई है। इसी सिलसिले में अब एमपीएल का अपना एंथम और मैस्कॉट मटकू भी लॉन्च कर दिया गया है।
1: हमारे हिंदुस्तान में ऐसा कोई खेल नहीं है जिसमें 40 से 50 लोग एक साथ एक टीम के रूप में खेलें। तो हमारा ये मटकी फोड़ जो खेल है, गोविंदा राजे मटकी फोड़ जो खेल है, ये ऐसा खेल है जिसमें 40 से 50 लोग एक साथ टीम के रूप में पैरामिड बनाते हैं और मटकियों को फोड़ने का जो प्रभु लीला का प्रदर्शन है वो करते हैं। तो हम इस बार इसको बड़े स्केल पे बड़े लेवल पे लेके जा रहे हैं।
0: दिल्ली में इस बार मटकी फोड़ लीग यानी एमपीएस सीजन 2 का आयोजन 3 और 4 सितंबर को किया जाएगा। पूर्वी दिल्ली के यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एमपीएल में शामिल गोविंदा टीमों के बीच मुकाबला होगा। इसमें इस बार 26 गोविंदा टीमें भाग ले रही हैं, जिनमें से 10 टीमें लड़कियों की हैं। टीमों ने इसके लिए पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी है।
2: 2 महीने से लगभग ट्रेनिंग कर रहे हैं ये लोग और सबसे बड़ी बात ये है कि इस लीला को अब एक स्पोर्ट्स के रूप में देखना शुरू कर दिया गया है। लगभग दिल्ली में आप खुश होंगे ये जान करके कि इस लीला के माध्यम से जो ये स्पोर्ट्स बन गया है, अब लगभग 1000 से ज्यादा बच्चे आज हमारे स्पोर्ट्स से जुड़ गए हैं। जो स्पोर्ट्स से नहीं थे वो एथलीट्स बनने जा रहे हैं।
0: आपको बता दें कि दिल्ली से पहले मुंबई में प्रो गोविंदा लीग सीजन 4 होने जा रहा है। 25 से 27 अगस्त 2026 तक वर्ली के स्टेडियम में प्रो गोविंदा लीग में मुंबई सहित महाराष्ट्र के दूसरे इलाकों से आए गोविंदाओं की टीमें मटकियां फोड़ने के लिए जोर आजमाइश करेंगी। इस दौरान विजेता टीमों को लाखों रुपए के पुरस्कार भी दिए जाएंगे। महाराष्ट्र सरकार ने पारंपरिक दही हांडी उत्सव को एडवेंचर स्पोर्ट्स का दर्जा दिया है। इसी के बाद से इसे प्रोफेशनल खेल के रूप में बढ़ावा देने के लिए प्रो गोविंदा लीग की शुरुआत की गई और अब महाराष्ट्र के बाद दिल्ली में भी इसे बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिए जाने की कोशिश हो रही है, ताकि किशोरों और युवाओं को अपनी संस्कृति और परंपराओं से जोड़ा जा सके और साथ ही साथ इनमें टीम भावना, अनुशासन, साहस, नेतृत्व, शारीरिक क्षमता और आपसी सहयोग की भावना को मजबूत किया जा सके। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट कुंज टुडे।
3: श्रीनगर से पवित्र छड़ी मुबारक पारंपरिक पूजा अर्चना और वैदिक मंत्रोच्चार के बाद पवित्र गुफा के लिए रवाना हो चुकी हैं। यात्रा के दौरान पवित्र छड़ी की चंदनवाड़ी, शेषनाग और पंचतरणी में विश्राम होगा। रक्षाबंधन के दिन छड़ी मुबारक अमरनाथ की पवित्र गुफा पहुंचेगी।

0: ऊंचे पहाड़, चारों तरफ हरियाली और वादियों में गूंजता महादेव का जयकार। साधु संतों की टोली आगे पड़ रही है तो श्रद्धालु बाबा के दरबार की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। हवा में भक्ति की महक है, आंखों में दर्शन की उम्मीद है और दिल में सिर्फ एक नाम, जय शिव शंकर। कश्मीर की धरती पर इन दिनों आस्था का अद्भुत नजारा है। श्रीनगर से लेकर पहलगाम और पुंछ तक शिव भक्ति के रंग दिखाई दे रहे हैं। भगवान शिव की पवित्र छड़ी मुबारक अपने सफर पर निकल चुकी है। चारों तरफ प्रभु के जयकारे और भक्ति की अनोखी चमक दिखाई दे रही है। यानी जम्मू कश्मीर की वादियां इन दिनों सिर्फ प्राकृतिक खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि शिव भक्ति, परंपरा और श्रद्धा के संगम के लिए भी खास बन गई है। श्रीनगर के दशनामी अखाड़े में पारंपरिक पूजा अर्चना और वैदिक मंत्रोच्चार के बाद छड़ी मुबारक को पहलगाम के लिए रवाना किया गया। 24 अगस्त को चंदनवाड़ी, 25 अगस्त को शेषनाग और 26-27 अगस्त को पंचतरणी में पड़ाव होगा। इसके बाद 28 अगस्त रक्षाबंधन के दिन छड़ी मुबारक को पवित्र गुफा तक ले जाया जाएगा।
1: जो 22 अगस्त है, 22 और 23 अगस्त हम पहलगाम में विश्राम करेंगे। 24 तारीख की रात्रि हम चंदनवाड़ी में रुकेंगे। 25 अगस्त शेषनाग में रुकेंगे, त्रयोदशी का दिन है। और 28 तारीख प्रातःकाल, जो कि मुख्य दर्शन का दिन है, श्रावण पूर्णिमा का दिन है, तो वहां पर छड़ी मुबारक को वहां स्थापित किया जाएगा। वैदिक मंत्रों से परंपरागत पूजन अर्चन होगा।
0: अमरनाथ गुफा में विधि विधान से पूजा और मंत्रोच्चार के बीच छड़ी मुबारक को स्थापित किया जाएगा। अनुष्ठान पूरा होने के बाद छड़ी मुबारक पंचतरणी लौटेगी और 29 अगस्त को वापसी का सफर शुरू होगा। शेषनाग और चंदनवाड़ी होते हुए 30 अगस्त को पहलगाम पहुंचने के बाद पूजा और विसर्जन के साथ इस धार्मिक परंपरा का समापन होगा।
2: जेएनसी की क्रांति और आंदोलन का दूसरा अवतार दिखता है रंगमंच पर स्वर शर्मा के गायन। भारतीय शास्त्रीय संगीत में क्रांति करने वाले युग पुरुष संगीतकार विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी की स्मृति में गंधर्व महाविश्वविद्यालय में संगीत समारोह ने स्वर ने मधुर तराने छेड़े। स्वर शर्मा मेवाती घराने के युवा भारतीय शास्त्रीय गायक हैं, जो महान संगीतकार पद्म विभूषण पंडित जसराज के पौत्र हैं। उन्होंने वाराणसी के संकट मोचन संगीत समारोह और गंधर्व महाविश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित मंचों पर अपनी कला का प्रदर्शन किया है। फिलहाल आपको सुनवाते हैं स्वर शर्मा के सुर।

0: और चलिए अब आपको दिखाते हैं परदेश में होली जैसे उत्सव के रंग। चाइना के एक इलाके में रंगों से तो नहीं लेकिन केवल पानी में अनोखी होली देखने की परंपरा है। देखिए रिपोर्ट।
1: रेनकोट पहने हुए इन लोगों के हाथों में बंदूक नहीं पिचकारियां हैं और इन पिचकारियों से पानी की जोरदार फुवारे छोड़ी जा रही है। माहौल कुल मिलाकर वैसा ही है जैसा भारत में होली के उत्सव में होता है, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि भला रेनकोट पहनकर कौन होली खेलता है। तो आपको बता दें कि यहाँ असल में होली नहीं खेली जा रही लेकिन होली जैसा ही त्योहार मनाया जा रहा है। ये तस्वीरें चीन के हैनान की है। यहाँ पर खेली जा रही इस अनोखी होली में रंगों का नामो निशान तक नहीं है लेकिन हुड़दंग की कमी नहीं है क्योंकि ये होली सिर्फ पानी से खेली जा रही है। चीन के हैनान के बोटिंग ली और मियाओ इलाके में हर साल की तरह इस बार भी जल की फुवारों के साथ इस अनोखे उत्सव वाटर स्प्लैशिंग फेस्टिवल का शानदार आयोजन किया गया। स्थानीय लोगों के साथ साथ विदेशी सैलानियों ने भी इसमें हिस्सा लिया और जमकर मस्ती की।
2: 我感觉就是那个泼水就是新年的意思吧，所以我从这里这几天开始，那个泼水以后，我变成了一个很好的朋友，还有很快乐，还有从我认识了很多朋友，还有这里的人也很幽默，所以我感觉温暖的感觉。到了几个活动有，但是没有机会，是第一次我来，但是真的特别特别好玩。我看到了很多视频，我觉得哇，好玩，酷，我来这里一分钟，衣服都湿了，开心。
1: मान्यता है कि पिचकारियों से निकली शीतल जल की फुवारें प्रकृति के आशीर्वाद का प्रतीक है। हैनान में ली जनजातीय समूह के लोग पीढ़ियों से इस उत्सव को मनाते आ रहे हैं और अब विदेशी सैलानी भी इसमें बड़े उत्साह के साथ हिस्सा लेते हैं। चार दिन के उत्सव में इस बार 8 देशों के सैलानियों के समूहों ने हिस्सा लिया। म्यूजिक और मनोरंजक माहौल के बीच लोगों ने इस उत्सव का खूब आनंद उठाया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: और चलिए अब आपको दिखाते हैं चीन में रोशनी के उत्सव की शानदार तस्वीरें। दक्षिण पश्चिम चीन के चोंगकिंग के फुलिंग जिले में पहला फ्लावर सी लैंटर्न फेस्टिवल मनाया गया। इस दौरान यहां पर जगह जगह पर 68 एसी आकृतियां लगाई गई जिसने पूरा इलाका जगमगा दिया। खासतौर से सीढ़ीदार फूलों के खेतों, झील के किनारे और जंगल के रास्तों पर रोशन इन आकृतियों से बेहद शानदार और खूबसूरत नजारा दिखा। ये फेस्टिवल इलाके की खास पहचान और इसके हजारों साल पुराने इतिहास को इस तरह की सजावट के जरिए पेश करता है। और खास बात यह है कि इसके लिए किसी मशीन का इस्तेमाल नहीं किया गया बल्कि 100 से ज्यादा कारीगरों ने इन्हें पूरी तरह से हाथ से बनाया है। इन आकृतियों को बनाने में पारंपरिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है जो सिचुआन की अनोखी सांस्कृतिक विरासत है। इस लाइट डिस्प्ले में पत्थर की मछली, अलग अलग दौर के विद्वानों के शिलालेख और पानी से जुड़ी नक्काशी के पैटर्न को दिखाया गया है। हांगकांग का आसमान मशहूर क्विक्सी फेस्टिवल के मौके पर ड्रोन की रोशनी से जगमगा उठा। इस फेस्टिवल में 2000 ड्रोन ने विक्टोरिया हार्बर के ऊपर चीनी लोक कथा की खूबसूरत तस्वीरें पेश की। ड्रोन से आसमान में मैगपाई ब्रिज की आकृति बनाई गई। ये वही पुल है जो चीनी लोक कथा के न्यूलांग और वीवर गर्ल को साल में एक बार मिलता है। इसके अलावा ड्रोन से प्यार में डूबे जोड़ों और खिलते हुए विशाल गुलाबों की आकृतियां भी बनाई गई। आसमान में बदलती इन तस्वीरों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। क्विक्सी फेस्टिवल चीनी चंद्र कैलेंडर के सातवें महीने के सातवें दिन मनाया जाता है। करीब 2000 साल पुरानी ये प्रेम कहानी आज भी लोगों को आकर्षित करती है। पारंपरिक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आयोजित इस ड्रोन शो ने सदियों पुरानी कहानी को आधुनिक अंदाज में पेश किया। आसमान पर बनी रंग बिरंगी आकृतियां दर्शकों के लिए यादगार अनुभव बन गई।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: रिलीज से पहले टॉक्सिक का एडवांस विस्फोट, रॉकिंग स्टार की सिल्वर स्क्रीन पर दमदार चोट। यश के दम पर बेहिसाब पैसा कुर्बान, बालक के बारूद बनने की अनोखी दास्तान, बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
5: घोड़े की नाल का शनि के साथ क्या संबंध है, घोड़े की नाल का कैसे प्रयोग करें कि शनि की पीड़ा कम हो जाए, क्या है घोड़े की नाल के प्रयोग का विधान और कैसे मिलेंगे इससे शनि के वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9:00।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।

आज देश मना रहा है चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक सफलता की तीसरी वर्षगांठ। 23 अगस्त 2023 को भारत ने चांद के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में की थी सफल सॉफ्ट लैंडिंग। अरुणाचल प्रदेश में नदियों के बढ़ते जलस्तर पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का सोशल मीडिया पर संदेश, कहा तैरना ना आता हो तो गहरे पानी में ना जाएं, मानसून में बरतें सावधानी। रामनगरी अयोध्या में धूमधाम से मनाया जा रहा है झूलनोत्सव। रामलला के दरबार में विशेष धार्मिक अनुष्ठान के साथ नृत्य आराधना के रंग। श्रीलंका के साथ कोलंबो में आज से दूसरा और आखिरी टेस्ट। क्लीन स्वीप के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। कुलदीप यादव की जगह ऑफ स्पिनर सारांश जैन को मिल सकता है मौका।

0: पुरुष और 227 महिला खिलाड़ी शामिल।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: झमाझम बारिश के साथ हुई दिल्ली NCR के दिन की शुरुआत, वीकेंड हुआ कूल कूल। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में रेनी संडे का लुत्फ उठाने के लिए निकले लोग, रिमझिम बारिश के बीच लिया मौसम का लुत्फ। दिल्ली NCR में बारिश के चलते लोगों को उमस से राहत मिली, तापमान में भी दर्ज की गई कमी। दिल्ली NCR में अगले दो दिनों तक बने रहेंगे बारिश के आसार, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। गाजियाबाद से लेकर गुरुग्राम तक मौसम ने अचानक करवट ली, काले बादलों के साथ हुई मूसलाधार बारिश। देश के कई हिस्सों में मॉनसून सक्रिय, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, यूपी, उत्तराखंड के अलावा हरियाणा और चंडीगढ़ में बारिश का अलर्ट। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश जारी, बांदा में भीषण बारिश, जनजीवन प्रभावित, सड़कें बनी तालाब। उत्तराखंड के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ जारी रहेगा बारिश का दौर, पौड़ी, नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली और उत्तरकाशी के लिए अलर्ट। देवभूमि उत्तराखंड में फिर बदला मौसम का मिजाज, देहरादून में देर रात हुई झमाझम बारिश। बिहार के दानापुर दियारा में बढ़ा गंगा नदी का जलस्तर, नाव से नदी पार करने वाले लोगों को सुरक्षा की चिंता। कोलकाता में सीनियर सिटीजन्स को लेकर क्रिएटिविटी नेवर रिटायर्ड आर्ट थेरेपी का आयोजन किया गया, मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने भी शिरकत की। आर्ट थेरेपी वर्कशॉप में मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने भारत माता की बनाई पेंटिंग, लोगों ने प्रकृति से लेकर सपनों से जुड़े आर्ट बनाए। फिट संडे मिशन के तहत विशाखापट्टनम में साइकिल इवेंट का आयोजन किया गया, बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। विशाखापट्टनम साइकिल इवेंट में मंत्री मनसुख मांडवीय भी शामिल हुए, लोगों को गुड हेल्थ के लिए जागरूक किया। सूरत के स्पेशल स्कूल में बच्चे तैयार कर रहे हैं खास राखी, लोगों को आ रही है काफी पसंद। देश आज मना रहा है चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक सफलता की तीसरी वर्षगांठ, 23 अगस्त 2023 को भारत ने चांद के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में की थी सफल सॉफ्ट लैंडिंग। चंद्रयान 3 की सफलता की याद में मनाया जाता है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, देश भर में अंतरिक्ष उपलब्धियों का होगा जश्न। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के मौके पर इसरो ने लोगों से की है जश्न से जुड़ने की अपील, देश की अंतरिक्ष उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने पर है जोर। चंद्रयान 3 की सफलता के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला बना था पहला देश, इस उपलब्धि ने भारत के अंतरिक्ष अभियान को दी नई पहचान। 23 अगस्त 2023 की ऐतिहासिक लैंडिंग ने भारत का नाम दुनिया में किया रोशन, इस गौरवशाली उपलब्धि की याद में हर साल राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में मिलावटखोरों पर प्रशासन का शिकंजा, संदिग्ध मूंगफली तेल का 6,900 लीटर स्टॉक सीज किया गया। खाद्य सुरक्षा विभाग ने प्रदेश भर में 60 जगहों पर छापेमारी की

0: कार्रवाई के दौरान लिए गए 101 खाद्य नमूने। उदयपुर में 600 लीटर नकली दूध किया गया नष्ट। कई जिलों में बासी मिठाई, मावा, घी और तेल पर भी कार्रवाई हुई। जालना के वाघाड़ी गांव में आजादी के बाद पहली बार शुरू हुए नियमित बस सेवा। उच्च शिक्षा के लिए बेटियों का सफर होगा आसान। ग्रामीणों ने ढोल ताशों के साथ बस का फूलों से स्वागत किया। छात्राओं के साथ अभिभावकों में भी दिखा गजब का उत्साह। इस साल नवंबर के महीने में पीएम मोदी कर सकते हैं दरभंगा एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन। निर्माण कार्य ने पकड़ी रफ्तार। दरभंगा एयरपोर्ट से जल्द शुरू होगी यात्री विमान सेवा। फिलहाल यहां से सिर्फ दिन में उड़ानों का हो रहा है संचालन। दरभंगा एयरपोर्ट को धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के तौर पर किया जा रहा है विकसित। एयरपोर्ट के विस्तार के साथ बढ़ाई जा रही हैं सुविधाएं। यूपी के हापुड़ में बढ़ा गंगा नदी का जलस्तर। गढ़मुक्तेश्वर के कई इलाकों में घुसा पानी। अलर्ट मोड पर है प्रशासन। दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में सीक्रेट टाइगर टेल्स बुक लॉन्च की गई। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पर्यावरण संरक्षण पर दिया जोर। रक्षाबंधन पर अकोला रेल सर्विस की खास पहल। राखी भेजने के लिए स्टेशन परिसर में स्पेशल काउंटर शुरू। बहनों को लंबी कतार से मिली राहत। राखी पोस्ट करने की प्रक्रिया हुई आसान। राखी के लिए अलग काउंटर की व्यवस्था। बारिश से बचाने के लिए वाटरप्रूफ लिफाफे की भी सुविधा उपलब्ध। रात के 9 बजे तक राखी पोस्ट कर सकेंगी बहनें। दिन भर कामकाज के बाद भी भेज सकेंगी राखी। काउंटर पर राखी भेजने के लिए उमड़ रही है महिलाओं की भीड़। रक्षाबंधन पर योगी सरकार का बड़ा तोहफा। महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा की सुविधा। 27 अगस्त की रात से 28 अगस्त की रात तक फ्री यात्रा। माताओं, बेटियों और बहनों को मिलेगी राहत। महिला के साथ एक सहयोगी की भी फ्री सफर करेगा। तो वहीं रोडवेज बसों में फ्री यात्रा की सुविधा है। गोपालगंज की पुष्प प्रसाद को मिलेगा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी सम्मानित। पुष्पा प्रसाद का देश भर में हुआ चयन। राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए 48 शिक्षक चुने गए। गोपालगंज के कुचाई कोर्ट स्कूल में पढ़ाती हैं पुष्पा। बच्चों को अनोखे अंदाज में पढ़ाती हैं पुष्पा प्रसाद। कठिन विषयों को बनाती हैं आसान। खेल खेल में बच्चों को पढ़ाती हैं। हर बच्चे की प्रतिभा पहचानने पर जोर दिया जा रहा है। ग्रामीण बच्चों को आगे बढ़ाने का संकल्प है। कम संसाधनों में ही शिक्षा का नया मॉडल तैयार हो रहा है। विशेष बच्चों के लिए ब्रेल सामग्री तैयार। पुष्पा को पहले भी मिल चुके हैं कई सम्मान। टीचर ऑफ द मंथ भी रह चुकी हैं। भदोही की कालीन उद्योग को ODOP का सहारा। सरकारी मदद से कारोबार को नई रफ्तार। पूंजी बाजार और हुनर पर खास जोर। 347 लाभार्थियों को सब्सिडी युक्त ऋण मिला। 131 करोड़ रुपए से ज्यादा का ऋण दिया गया। 12 करोड़ से ज्यादा की सब्सिडी मिली। 546 उद्यमियों को बाजार की मदद मिली। प्रदर्शनी में जाने के लिए 6,85,00,000 की सहायता। 2,350 लोगों को प्रशिक्षण और टूल किट मिली। कालीन सेंटर से 100 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला। 88 से ज्यादा देशों में पहुंचती है भदोही की कालीन। अमेरिका और यूरोप में भी कारपेट की बड़ी मांग। रोहतास में करमचट डैम पर हुआ बड़ा मॉक ड्रिल। आपदा से निपटने की तैयारियों का टेस्ट हुआ। स्वास्थ्य विभाग और एम्स ने मिलकर किया अभ्यास। करीब 70 स्वास्थ्य कर्मियों की टीम पहुंची। मॉक ड्रिल में NDRF और फायर ब्रिगेड भी रही शामिल। पुलिस और ट्रैफिक टीम ने संभाला मोर्चा। मौके पर ही लाइफ सेविंग ऑपरेशन का पूर्वाभ्यास। मॉक ड्रिल में फुल स्केल हॉस्पिटल हुआ तैयार। एक साथ 200 लोगों को मिल सकेगी मदद। मॉक ड्रिल के दौरान पोर्टेबल मिनी हॉस्पिटल भी मौजूद। भीष्म क्यूब की तैनाती का भी परीक्षण। केरलम के अल्पुजा में 72वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का भव्य शुभारंभ हुआ। रेस में 71 बड़ी बोट ने हिस्सा लिया। 22 स्नेक बोट बनी मुख्य आकर्षण, पुनमाडा झील दर्शकों से गुलजार हुई, नाविकों का हौसला बढ़ाते हुए दिखे दर्शक। झील पर तेज रफ्तार से दौड़ी नावें, हजारों लोग देखने के लिए पहुंचे, रोमांचक मुकाबला, नाविकों ने तालमेल के साथ लगाई ताकत। चप्पों की रफ्तार ने बढ़ाया बोट रेस का रोमांच, रंग बिरंगी नावों ने बढ़ाई झील की खूबसूरती। पंडित नेहरू की अल्पुझा यात्रा से जुड़ा बोट रेस का इतिहास, 1952 में हुई थी नेहरू ट्रॉफी बोट रेस की शुरुआत। खेल मंत्रालय ने जापान में होने वाले एशियन गेम्स के लिए 492 खिलाड़ियों के भारतीय दल को मंजूरी दी, टीम में 265 पुरुष 227 महिला खिलाड़ी शामिल। भारतीय दल में सबसे ज्यादा एथलेटिक्स खिलाड़ी, टीम में 35 पुरुष 38 महिला खिलाड़ी शामिल। 30 सदस्यीय निशानेबाजी टीम में मनु भाकर प्रमुख नाम, टीम में 15 पुरुष 15 महिला निशानेबाज शामिल। 20 सदस्यीय बैडमिंटन टीम में पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन को मिली जगह, सात्विक चिराग और गायत्री त्रिसा की जोड़ी भी टीम का हिस्सा है। भारतीय दल में नीरज चोपड़ा, मनु भाकर, मीराबाई चानू, लवलीना बोरगोहेन और अंतिम पंघाल जैसे दिग्गज नाम शामिल। 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक चलेंगे एशियन गेम्स। बीसीसीआई की टाइटल स्पॉन्सर रेस में जेमिनी और एसबीआई लाइफ, बेस प्राइस 4,85,00,000 रुपए प्रति मैच, 2 साल में 35 घरेलू मैचों के अधिकार मिलेंगे। अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग में भारत का शानदार प्रदर्शन, भारतीय महिला पहलवानों ने जीते 3 मेडल। महिला पहलवान मानसी लाठर ने जीता सिल्वर मेडल, 68 किलोग्राम वर्ग में मानसी ने दम दिखाया। 57 किलोग्राम वर्ग में महिला पहलवान तानवी मखदुम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, तो वहीं 59 किलोग्राम वर्ग में कोमल को भी ब्रॉन्ज मिला। अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग में भारतीय महिला पहलवानों ने कुल 6 मेडल जीते, दूसरे पायदान पर भारत। वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर से भारत के लिए आई गुड न्यूज, डबल पोडियम पर महिला एथलीट्स, गोल्ड और सिल्वर जीता। डेढ़ हजार मीटर विमेन्स रेस में पूजा ओला ने जीता गोल्ड मेडल, लिली दास ने सिल्वर पर कब्जा किया। भारतीय महिला एथलीट ज्योति याराजी ने 100 मीटर हर्डल्स में जीता ब्रॉन्ज, 13.24 सेकंड का समय लिया। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत कमाल देखने को मिला, महिला वर्ग में त्रिसा जॉली गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। 15 सालों के बाद महिला डबल्स में भारत को ऐतिहासिक मेडल मिला, सेमीफाइनल में चीनी जोड़ी से हार के बाद मिला ब्रॉन्ज। टेनिस से भारत के लिए आई गुड न्यूज, कैनकन चैलेंजर में भारतीय जोड़ी श्रीराम बालाजी और अनिरुद्ध चंद्रशेखर की शानदार जीत हुई। सेमीफाइनल में पहुंची भारतीय टेनिस जोड़ी, क्वार्टर फाइनल में ब्रिटेन की जोड़ी डेविड स्टीवनसन मार्कोस विलिस को हराया। 4 ग्रैंड स्लैम के बाद वापसी करेंगे भारतीय टेनिस प्लेयर सुमित नागल, यूएस ओपन क्वालिफाइंग ड्रॉ में मिली जगह। यूएस ओपन से पहले बड़ा झटका, वर्ल्ड नंबर 1 जेनिक सिनर आउट, घुटने की चोट ने रोका। पांच ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं इटालियन स्टार, उन्होंने कहा मुझे पूरी तरह से फिट होने के लिए अभी और समय चाहिए। मोनाको के मोंटे कार्लो में दुनिया के सबसे तेज बाइक राइडर तादेज पागेकर ने किया कमाल, 81वीं वेल्टा ए एस्पाना का जीता पहला स्टेज। पोगाकर ने ब्रिटेन के एथिन हेटर को महज 0.09 सेकंड से पीछे छोड़ा, 9.4 किलोमीटर का टाइम ट्रायल उन्होंने सबसे तेज पूरा किया। पहला चरण जीतने के साथ ही पोगाकर ने हासिल कर ली रेस के लीडर रेड जर्सी। जीत के बाद बोले पोगाकर, इतने कम अंतर से जीत की उम्मीद नहीं थी। स्विस एपिक 2026 माउंटेन बाइक रेस के चौथे चरण में इटली की स्कॉट रेसिंग 2 ने हासिल की जीत। 55 किलोमीटर के मुश्किल ट्रैक पर गोरिया और फोकोली की जोड़ी ने बनाए रखी लय, तो वहीं 2 मिनट 35 सेकंड की बढ़त से हासिल की जीत। बीजिंग में दूसरे वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स का हुआ भव्य आगाज। उद्घाटन समारोह में 1000 से ज्यादा ह्यूमनॉइड रोबोट्स ने हिस्सा लिया। रोबोट गेम्स में 16 देशों की 686 टीमें हिस्सा ले रही हैं। 51 प्रतियोगिताओं में 2056 रोबोट दिखाएंगे अपना दमखम। ओपनिंग सेरेमनी में 36 ह्यूमनॉइड रोबोट्स ने इंसानी कलाकारों के साथ संगीत की प्रस्तुति दी। रोबोट्स ने 5 उंगलियों से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों पर आजमाए हाथ। रोबोट्स ने फुटबॉल, पिंग पोंग और टेनिस में दिखाई अपनी क्षमता। कुछ मुकाबलों में रोबोट्स ने इंसानी खिलाड़ियों के साथ मिक्स्ड डबल्स भी खेले। उद्घाटन समारोह में रोबोट ने धनुष से तीर चलाकर इंटेलिजेंस चिप के प्रतीक किया प्रज्वलित। इसी के साथ गेम्स की आधिकारिक शुरुआत हुई। बीजिंग में चल रहे वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स में दिखा तकनीक का कमाल। 100 मीटर दौड़ में रोबोट्स ने दिखाई अपनी स्पीड। रेस के दौरान तेज रफ्तार से टकराने वाले रोबोट्स को स्टाफ ने स्ट्रेचर पर ट्रैक से निकाला बाहर। एक रोबोट में लगी आग को फायर एक्सटिंग्विशर से बुझाया। ह्यूमनॉइड रोबोट्स ने हाई जंप, टेनिस, टेबल टेनिस और फुटबॉल में हिस्सा लिया। 7-on-7 फुटबॉल मुकाबले में रोबोट गिरते और फिर खुद उठते हुए नजर आए। बीजिंग के नेशनल स्पीड स्केटिंग ओवल में 5 दिवसीय प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। उद्घाटन समारोह में अलग अलग देशों की टीमें झंडों के साथ शामिल हुई। 26 अगस्त तक चलेंगे वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स। खेलों के साथ रोबोट की फैक्ट्री, वेयरहाउस, रेस्टोरेंट और इमरजेंसी रिस्पांस जैसी क्षमताओं की भी होगी परीक्षण। रोशनी से चमका हांगकांग का आसमान। 2000 ड्रोन ने किया शानदार शो। विक्टोरिया हार्बर बना रोमांस का कैनवस। आसमान में बना मैगपाई ब्रिज, ड्रोन से दिखा चीनी नजारा, तो वहीं आसमान में दिखे प्यार में डूबे हुए जोड़े। ड्रोन से बने विशाल गुलाब आसमान में रंग बिरंगी आकृतियों ने मोहा सभी का मन। चाइना में रोबोट डॉग्स बने सामान ढोने वाले। हांगझोउ के जेजियांग यूनिवर्सिटी में दिखा अनोखा नजारा। रोबोट डॉग्स ने उठाया छात्रों का सामान। रोबोट्स में शानदार मोशन कंट्रोल, छात्रों के बीच बने आकर्षण का केंद्र। चाइना के चोंगकिंग में रोशनी का शानदार उत्सव देखने को मिला। फ्लावर सी लालटेन फेस्टिवल से जगमगाया पूरा शहर। 68 विशाल लालटेन इंस्टॉलेशन ने बढ़ाई रौनक। फूलों के खेत रोशनी से जगमगा उठे। जंगल के रास्ते भी रोशनी से चमके। लालटेन ने इतिहास को जीवंत किया। पानी से जुड़े नक्काशी पैटर्न आए नजर। हजारों साल पुराना जल इतिहास दिखा। रोशनी के बीच इतिहास का खूबसूरत संगम देखने को मिला। प्राचीन संस्कृति का अनोखा प्रदर्शन।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
0: गुजरात के सूरत में तापी नदी के किनारे एक मंदिर परिसर में मौजूद है एक अनोखा वट वृक्ष। कहा जाता है कि इस वट वृक्ष पर सालों से केवल 3 ही पत्ते रहते हैं। श्रद्धालु इन 3 पत्तों को ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी त्रिदेव का प्रतीक मानते हैं। इस खास पेड़ पर हमेशा सिर्फ 3 पत्ते ही रहते हैं। चौथा पत्ता आते ही एक पुराना पत्ता झड़ जाता है और ये सिलसिला लगातार जारी रहता है। देखिये

0: पेड़ छोटा है लेकिन इसकी पहचान बहुत बड़ी है। सूरत में तापी नदी के तट पर स्थित एक ऐसा वटवृक्ष है जिसकी कहानी इसे बाकी पेड़ों से बिल्कुल जुदा बना देती है। ये पेड़ इसलिए खास है क्योंकि इस पेड़ पर हमेशा सिर्फ 3 पत्ते ही दिखाई देते हैं।
1: हमारे देश में चमत्कारों की कमी नहीं है। चमत्कार धर्म से जुड़ा हुआ होता है और धार्मिक जगहों पर जब हम जाते हैं तो कई तरह से भगवान की उपलब्धि के प्रमाण भी हमें देखने को मिलते हैं। एक ऐसा ही प्रमाण गुजरात के सूरत शहर में देखने को मिला है। बरसों से है, आदिकाल से भी कह सकते हैं, तापी नदी के तट पर एक बरगद का पेड़ जिसके सिर्फ 3 पत्ते ही हैं, चौथा पत्ता कभी नहीं उगता है।
0: मान्यता है कि पेड़ पर जैसे ही चौथा पत्ता निकलता है उसी समय एक पुराना पत्ता झड़ जाता है, यानी किसी भी हालात में सिर्फ 3 पत्ते ही पेड़ पर रहते हैं। अब श्रद्धालुओं के लिए महज पत्ते नहीं हैं, कोई इनमें ब्रह्मा के दर्शन करता है, कोई विष्णु के, तो किसी को महेश दिखते हैं।
2: मैं तो दूसरी बार आया हूँ, तीसरी बार आया हूँ यहाँ, लेकिन ये है कि साक्षात्कार है, ब्रह्मा विष्णु महेश जी है और कर्ण का जो यहाँ अग्निदान हुआ था और साक्षात भगवान ही आए थे इधर देखने के लिए। भाई हमको भी मतलब देखना है कौन सी कुंवारी भूमि है इसे, और ये बहुत महात्मा है इसका। महाभारत से जुड़ी कथा है बहुत, जैसे पंडित जी ने बताया, और बहुत ही अच्छा मतलब जगह है, और सब मन्नतें पूरी होती है। यहाँ देखो भीड़ लगी रहती, कभी भी सुना नहीं रहता इसमें, ये बढ़िया है।
0: इस स्थान का संबंध महाभारत काल से माना गया है और कहते हैं कि ये 3 पत्तों वाला वटवृक्ष त्रिदेव का प्रतीक है, इसलिए यहाँ दिन भर दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा रहता है। किसी के हाथ में पूजा की थाली है, कोई संतान प्राप्ति की मन्नत लेकर यहाँ पहुँचा है। लोगों की माने तो यहाँ सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद पूरी जरूर होती है।
3: मेरा जन्म 1989 में 14 तारीख और 14 के दिन सितंबर में हुआ। जब तक मुझे इस मंदिर के 3 पत्ते के पान वृक्ष के झाड़ के बारे में पता चला कि यहाँ के महिमा क्या है, मैंने अपने दोस्त को बताया कि इसका क्या क्या चमत्कार है।
0: हैरानी की बात ये कि ना तो इस पेड़ की शाखाएं फैलती हैं, ना ये विशाल बरगद का रूप लेता है, हमेशा रहते हैं सिर्फ 3 पत्ते। मानो प्रकृति ने भी इसकी पहचान को महज 3 पत्तों तक ही सीमित रखा है।
4: नहीं, एक आता है एक जाता है महाराज, थोड़ा धीरे धीरे बढ़ता है। ये वृक्ष में मतलब 5-7 पत्ते साथ में नहीं होते, जैसे डाली नहीं होता, डाली नहीं होगा तो थर्ड नहीं होगा, इस हिसाब से वो पेड़ के रूप में नहीं होता है, लेकिन ये पौधे जैसे रहता है।
1: अच्छा, मतलब पत्ता चौथा नहीं आता है, 3 ही बने रहते हैं, आता भी है तो गिर जाता है,
4: त्रिदेव रूपी 3 ही बने रहते हैं।
0: सावन के महीने में इस मंदिर में अच्छी खासी रौनक रहती है। यहाँ भगवान शिव की पूजा के साथ साथ इन 3 पत्तों वाले वटवृक्ष के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है।
4: वैसे तो वट भगवान का दर्शन तो पूरे साल चलता रहता है, लेकिन यह है कि श्रावण में अपने यहाँ शिव जी भी प्रतिष्ठित है, तो भक्तों का जो है सैलाब थोड़ा बढ़ जाता है। श्रावण का जो महिमा है वो तो है ही, और लोग दोनों का लाभ लेने के लिए मतलब उनका भक्ति मतलब सैलाब थोड़ा बढ़ता है।
0: सूरत के इस अनोखे वटवृक्ष की कहानी जितनी रोचक है उतनी ही गहरी है यहाँ के लोगों की आस्था भी। यही वजह है कि इस छोटे से पेड़ के दर्शन के लिए साल भर श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: रिलीज से पहले टॉक्सिक का एडवांस विस्फोट, रॉकिंग स्टार की सिल्वर स्क्रीन पर दमदार चोट, यश के दम पर बेहिसाब पैसा कुर्बान, बालक के बारूद बनने की अनोखी दास्तान, बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
7: घोड़े की नाल का शनि के साथ क्या संबंध है, घोड़े की नाल का कैसे प्रयोग करें कि शनि की पीड़ा कम हो जाए, क्या है घोड़े की नाल के प्रयोग का विधान और कैसे मिलेंगे इससे शनि के वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
8: खबरों को परख कर परोसना, हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
14: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
15: बारिश की तेज बुहारों के साथ हुई दिल्ली एनसीआर में दिन की शुरुआत, मौसम हुआ सुहाना, उमस और तापमान में कमी, आज राजधानी में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। आज देश मना रहा है चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक सफलता की तीसरी वर्षगांठ, 23 अगस्त 2023 को भारत ने चांद की दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में की थी सफल सॉफ्ट लैंडिंग। अरुणाचल प्रदेश में नदियों के बढ़ते जलस्तर पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का सोशल मीडिया पर संदेश, कहा तैरना ना आता हो तो गहरे पानी में ना जाएं, मानसून में बरतें सावधानी। रामनगरी अयोध्या में धूमधाम से मनाया जा रहा है झूलनोत्सव, रामलला के दरबार में विशेष धार्मिक अनुष्ठान के साथ नृत्य आराधना के रंग। श्रीलंका के साथ कोलंबो में आज से दूसरा और आखिरी टेस्ट, क्लीन स्वीप के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया, कुलदीप यादव की जगह ऑफ स्पिनर सारांश जैन को मिल सकता है मौका। खेल मंत्रालय ने जापान में होने वाले एशियन गेम्स के लिए 492 खिलाड़ियों के भारतीय दल को मंजूरी दी, टीम में 265 पुरुष और 227 महिला खिलाड़ी शामिल।

नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम, और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। एक बार फिर लेकर एक दमदार शख्सियत का सफरनामा। इस बार जिस शख्सियत का दमदार सफरनामा लेकर हम हाजिर हुए हैं, उसकी एक फिनोमिनल मूवी 26 अगस्त को दुनिया भर के सिल्वर स्क्रीन्स पर दस्तक देने के लिए तैयार है। एक ऐसी मूवी जिसे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़े बजट वाली फिल्म माना जा रहा है। उसी फिल्म के लीड एक्टर की जिंदगी की दास्तान लेकर हम हाजिर हुए हैं। एक ऐसा हीरो शुरुआती दिनों में जिसके पास एक्टिंग का कोर्स करने तक के पैसे नहीं थे,

आप समझ गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के वंडर बॉय रॉकिंग यश हैं। जी हाँ, यही यश, वो यश जिसकी केजीएफ ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। 26 अगस्त को यश की एक और दमदार फिल्म टॉक्सिक अ फेरी टेल फॉर ग्रोनअप्स दुनिया भर के थिएटर्स में रिलीज होने जा रही है। एडवांस बुकिंग का विंडो ओपन होने के बाद टॉक्सिक को जिस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है उसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये फिल्म केजीएफ की कामयाबी को भी पीछे छोड़ने जा रही है। ये वही यश हैं जिनके पास कभी एक्टिंग कोर्स करने तक के पैसे नहीं थे लेकिन आज वो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सबसे महंगे हीरो में शुमार हो चुके हैं।

0: कुदरत का आईन भी बड़ा अजीब होता है। बागबां की सरपरस्ती में सींचे गए दरख्त फलने फूलने से पहले दम तोड़ देते हैं, लेकिन दूर निर्जन बयाबा में पहाड़ों का सीना चीर कर उगने वाले देवदार आसमान की ऊंचाइयों में हवाओं के साथ मिलकर बेफिक्र अटखेलियां करते नजर आते हैं। हालात की दुश्वारियों को मात देकर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के आसमान में नक्षत्र की तरह चमचमाने वाला ऐसा ही एक नायाब नगीना है, नाम है नवीन कुमार गौड़ा। सिने प्रेमी जिसे यश के नाम से जानते हैं, जी हाँ, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का वंडर बॉय रॉकिंग यश। कितना अजीब इत्तेफाक है कि जिस बच्चे को विरासत में गुर्बत का साया मिला, समाज से ताने मिले, अपने भविष्य को लेकर जब परिजनों की आंखों में झांका तो चिंता की लकीरें मिली, अभिनय के शैशवावस्था में इंडस्ट्री से हिकारत मिली, वही बच्चा आज इतना बड़ा स्टार बन चुका है कि उसके स्टारडम के दम पर निर्माता निर्देशक पानी की तरह पैसा बहाने से जरा भी परहेज नहीं करते। 26 अगस्त को रिलीज होने वाली यश स्टार टॉक्सिक अ फेरी टेल फॉर ग्रोनअप्स इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की अब तक की सबसे बड़ी बजट वाली फिल्म मानी जा रही है। 800 करोड़ के भारी भरकम बजट से बनी टॉक्सिक में यश डबल रोल में है, जो इस बात का प्रमाण है कि निर्माता ने इतने भारी भरकम बजट का रिस्क इसी कन्नड़ सुपरस्टार के भरोसे पर ही लिया है।
1: If a man is driven by his passion, defined by hard work, powered by discipline, inspired by a vision, pushing all the time the benchmarks and the boundaries, we all call him as what? We all call him as RSY. Rocking star, yes sir. This film wouldn't have been possible without him. I have heard of him, I had known his work. This is the first time I worked very closely with him, witnessing everything that he does that close is like passion in motion and hard work in action.
0: बेंगलुरु में 8 अगस्त को पूरे फैनफेयर के साथ जब टॉक्सी का ट्रेलर रिलीज किया गया तो उसका रिस्पांस देकर निर्माता वेंकट के नारायण और निर्देशक गीतू मोहनदास को भरोसा हो गया कि केजीएफ फिल्म यश पर खेला गया दांव उल्टा पड़ने वाला नहीं है। इसकी पहली झांकी तो तब दिख गई जब 7 समंदर पार अमेरिका में टॉक्सी की एडवांस बुकिंग का विंडो ओपन हुआ। अमेरिका में एडवांस बुकिंग के पहले ही दिन टॉक्सिक ने 204 लोकेशंस और 589 शोज के लिए 1,16,00,000 रुपए से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया।
2: कोई आखिरी ख्वाहिश?
3: ज्यादा कुछ नहीं, तेरे भाई को जला के उसकी राख से लाइन बना के।
0: टॉक्सिक के ट्रेलर को जिस तरह सोशल मीडिया पर जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है, इस बात की पूरी उम्मीद है कि यश स्टारर ये फिल्म सबसे बड़े बजट के साथ ही सबसे बड़े कलेक्शन का भी कीर्तिमान स्थापित करेगी। पोस्ट इंडिपेंडेंस गोवा की पृष्ठभूमि पर बनी ये फिल्म जबरदस्त पीरियड गैंगस्टर ड्रामा है, जो यश के दोनों किरदारों के इर्द गिर्द घूमती है।
4: I was hoping to have a civilized course.
0: ट्रेलर देखकर पता चलता है कि टॉक्सिक में 1940 से 1970 के बीच गोवा के ड्रग माफिया, उनके बीच होने वाले गैंगवार, रोंगटे खड़े कर देने वाली हिंसा, अपराध, पिता पुत्र के संबंध, वफादारी, विश्वासघात और इंतकाम की भावना के साथ प्यार और रोमांस का डबल डोज है। जाहिर है इस फिल्म में वो सब कुछ है जिसे देखने के लिए सिने प्रेमी थिएटर्स का रुख करते हैं।
1: So this movie is a very tough one because the kind of decisions on the surface level, it was not easy. It is not a perfect commercial package film where you can just say that, okay, this is a film of hero. He's made KGF. This is a number. And then director who has done this film. Okay, they can gauge what can happen. But this was a very unique combination and it was a very unique attempt.
0: टॉक्सी का फेरी टेल फॉर ग्रोनअप्स की रिलीज की तारीख भी अपने आप में कई इत्तेफाक समेटे हुए है। फिल्म की रिलीज डेट है 26 अगस्त 2026, यानी 26/8/26। एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक इसका न्यूमेरिक्स 888 आता है। इत्तेफाक से यश का जन्मदिन भी 8 जनवरी है। इतना ही नहीं, फिल्म का बजट भी 800 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। काबिले गौर है कि टॉक्सिक में लीड रोल निभाने के साथ ही यश इस फिल्म के को प्रोड्यूसर भी हैं। यश की सबसे बड़ी खासियत ये है कि उनकी सोच का कैनवास बहुत बड़ा है। इस अर्थ में वो इस देश के करोड़ों युवाओं की अनूठी प्रेरणा है। सोचिए कि यश के पिता कर्नाटक स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में ड्राइवर थे, सरकारी बस चलाते थे, माँ एक हाउसवाइफ हैं। इनके दूर दूर के रिश्ते में कोई भी फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाला नहीं है, लेकिन बचपन से ही इनकी सोच बड़ी थी, इरादा मजबूत था, हौसला आसमानी था, आत्मविश्वास प्रगाढ़ था। सफलता की राह में आने वाली दुश्वारियों से लड़ने का मादा था और इन सब के साथ नाकामी में विचलित नहीं होने का धैर्य भी था। तभी तो एक अत्यंत साधारण पृष्ठभूमि में पला बढ़ा लड़का आज इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का ऐसा नगीना बन चुका है कि निर्माता निर्देशक इनके नाम पर कितना भी बड़ा रिस्क लेने को तैयार हैं।

0: यश का भी साफ मानना है कि कुछ भी नहीं है नामुमकिन अगर ठान लिया जाए।
1: So what I believe is, when you want to do something in life, nothing should stop you. Most of us listen to people who say bad things about us, what you can't do, what is wrong. I think I'm somebody who doesn't listen to anybody. If somebody is telling me that you can't do this, I'll only see their lack of imagination or their stupidity. Because if I can see it clearly, there's nothing in life, if you are able to put in effort and time and required energy or actions towards something, there's nothing in life which you cannot achieve, is what I believe.
0: यश के इसी अदम्य इच्छा शक्ति को देखकर निर्माता निर्देशक इन पर कोई भी दांव खेलने को तैयार हो जाते हैं। यश की इसी साल एक और फिनोमिनल बजट वाली मूवी रिलीज होने वाली है, रामायण। दो पार्ट में बनने वाली रामायण का बजट 4,000 करोड़ रुपए है। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के नजरिए से देखेंगे तो ये बजट फैंटेसी लगेगा, लेकिन हकीकत यही है कि फिल्म का बजट 4,000 करोड़ रुपए है। रामायण के निर्माता नमित मल्होत्रा हैं, जबकि टॉक्सी की तरह यश इस फिल्म के भी को प्रोड्यूसर हैं। रामायण में यश रावण का किरदार निभा रहे हैं।
2: प्रतिशोध लिया जाएगा सुपर्ण का। राम की
0: वो चाहते तो राम की भूमिका में भी आ सकते थे, लेकिन यश का साफ कहना है कि उन्होंने राम की बजाय रावण की भूमिका इसलिए चुनी क्योंकि जब तक खलनायक का किरदार दमदार नहीं होगा, नायक का नायकत्व निखर कर सामने नहीं आ पाएगा। रामायण का फलक कितना व्यापक है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ऑस्कर विजेता संगीतकार हंस जिमर इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और संगीत तैयार कर रहे हैं। हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर मूवी मैड मैक्स फ्यूरी रोड के एक्शन डायरेक्टर गॉय नॉरिस फिल्म के युद्ध के दृश्यों को डिजाइन कर रहे हैं। अवेंजर्स इन्फिनिटी वार फिल्म टेरी नोटरी फिल्म में परफॉर्मेंस और मोशन कोरियोग्राफी की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। द मैट्रिक्स फेम डैन ग्लास के पास फिल्म के विजुअल इफेक्ट्स की कमान है। रामायण की तरह टॉक्सी को भी ग्लोबल एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है। आपको बता दें कि हॉलीवुड की जानी मानी फिल्म जॉन विक और फास्ट एंड फ्यूरियस के एक्शन डायरेक्टर जे.जे. पेरी ने टॉक्सी के लिए भारत में 45 दिनों तक रहकर बेहद खास एक्शन शेड्यूल शूट किया है। इतना ही नहीं, टॉक्सी को दुनिया भर के 12,000 से अधिक स्क्रीन्स पर रिलीज करने की तैयारी है और इसके इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हॉलीवुड के दिग्गज स्टूडियो 20th सेंचुरी फॉक्स के साथ पार्टनरशिप की गई है। इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन को ध्यान में रखकर ही टॉक्सी को कन्नड़ के साथ अंग्रेजी भाषा में भी शूट किया गया है। टॉक्सिक और रामायण से पहले यश की साल 2018 में आई KGF चैप्टर 1 और साल 2012 में आई KGF चैप्टर 2 ने हिंदुस्तान के साथ ही दुनिया भर में तहलका मचा दिया था। KGF में यश द्वारा निभाया गया रॉकी भाई का करिश्माई और विद्रोही किरदार दुनिया भर के सिने प्रेमियों के बीच एक आइकॉनिक हीरो के रूप में सामने आया। साफ है कि कर्नाटक के हासन जिले के गुमनाम गांव में जन्मे बच्चे ने बिना किसी पारिवारिक सपोर्ट और बिना किसी गॉडफादर के अपनी इच्छा शक्ति, मेहनत और लगन के दम पर न सिर्फ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में कद्दावर और पहचान बनाई, बल्कि अपनी इंडस्ट्री को ग्लोबल स्टेज पर भी पूरी ठसक के साथ मजबूत पहचान दिलाई।
3: यश के एक्टर बनने की दास्तान अत्यंत मर्म स्पर्शी है। इनका जन्म कर्नाटक के हासन जिले के एक साधारण से गांव में हुआ था। यश के पिता बस ड्राइवर थे, लिहाजा आप समझ सकते हैं कि गृहस्थी मुश्किल से ही चलती होगी। लेकिन उसी साधारण परिवार में जन्मे यश के मन में बचपन से ही ये हसरत कुलाचे मारने लगी थी कि उन्हें सिल्वर स्क्रीन का स्टार बनना है। शुरुआती दिनों में यश अपनी हसरत जब दोस्तों के बीच बताते थे तो दोस्त इन पर चुटकी लेते थे, लेकिन साथियों की चुटकियों से विचलित हुए बगैर वो अपने मिशन में काफी कम उम्र से ही जुट गए थे। यश के जीवन की हकीकत भी किसी परी कथा से कम थ्रिलिंग नहीं है।
0: इमेजिनेशन, एनालाइजेशन और एग्जीक्यूशन, अंग्रेजी के इन तीन शब्दों के इर्द गिर्द ही सफलता और असफलता का चक्र घूमता है। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो इमेजिनेशन ना करता हो। हसीन ख्वाब देखना इंसान की बुनियादी फितरत है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो अपने इमेजिनेशन को एनालाइज करते हैं। एग्जीक्यूशन के लेवल तक तो कोई विरला ही पहुंचता है, लेकिन जो पहुंच जाता है वो ही इतिहास के सुनहरे पन्नों में अपना नाम दर्ज कराता है। साउथ के सुपरस्टार यश उन्हीं विरले लोगों में शुमार हैं। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में वंडर बॉय और रॉकिंग स्टार के नाम से पहचान बना चुके यश के शुरुआती जीवन की सच्चाई से जब आप रूबरू होंगे तो जेहन में सवाल उठेगा कि इतनी साधारण पृष्ठभूमि से आने वाला एक शख्स इतना रॉकिंग स्टार कैसे बन गया। कर्नाटक के हासन जिले के छोटे से गांव भुवन हल्ली में 8 जनवरी 1986 को जन्मे यश ने जब से होश संभाला तभी से दिल में रुपहले पर्दे पर स्टार बनकर चमकने की हसरत पलने लगी। घर वाले यश की इस हसरत को कम उम्र की नादानी मानकर बस इतना चाहते थे कि पढ़ लिख कर उनका बेटा एक सरकारी नौकरी पकड़ ले, पर पेरेंट्स को क्या पता था कि यश की एक्टर बनने की ख्वाहिश बाल सुलभ नादानी नहीं बल्कि वास्तविक जुनून है।
1: My father is from Mysore, so I grew up in Mysore. Most of my childhood was in Mysore. My father was a BMTC bus driver and my mother was a housewife. So just like any other middle class, this thing, we were leading a happy life, and then I want to become an actor. From childhood, I've been inclined towards this, what do you call it, extra attention we get as an actor, no? For that, maybe all the CT Marna, all this I used to like. I used to participate in a lot of fancy dress, mono acting and all of that. And I used to dance. So that used to give me a lot of happiness. So that's how it started and I got into, it's a long story.
0: हासन जिले के गुमनाम गांव के एक साधारण से परिवार में जन्मे बच्चे के इंटरनेशनल स्टार बनने की दास्तान वाकई बहुत लंबी है। नवीन कुमार गौड़ा से रॉकिंग यश बनने की कहानी दिल को छू लेने वाली है। हीरो बनने की हसरत सजोई यश बिना किसी बाहरी मोटिवेशन के स्वयं की प्रेरणा से स्कूल के नाटकों और डांस प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने लगे, और उनके परफॉर्मेंस पर जब साथी बच्चे तालियां बजाते तो उन्हें उसी उम्र में रॉक स्टार वाली फीलिंग होने लगती। उधर स्कूल के साथी, यहां तक कि टीचर्स भी यश को हीरो कहकर संबोधित करने लगे। दूसरी ओर यश को बचपन में कभी ये महसूस ही नहीं हुआ कि सिल्वर स्क्रीन का स्टार बनना नामुमकिन नहीं तो नामुमकिन जैसा जरूर है।
1: I never realized how difficult it is or this. It's just that I believed it at a very young age because all my teachers, they started calling me, kya hero, how are you? Matlab, jab baat karte the na, even then they used to be like hero bulate the. Because I'd done some small mono acting this thing where I told that, you know, I'll catch Veerappan and all of that when I was young. So they used to tease me with that thing. If Veerappan's any news used to come out, they used to question me, saying, "Hey, you used to kidhar hai, pakda nahi abhi tak." So they used to make fun of those things. And I believe that one day, jaake main actor ban jaunga. I didn't know how difficult it is or how much dedication or lot of things go into becoming an actor or anybody who wants to achieve something. I had no clue about that, but I just wanted to be an actor.
0: रुपहले पर्दे का स्टार बनने की धुन के साथ ही यश ने स्कूलिंग पूरी कर ली। लेकिन प्री यूनिवर्सिटी करने के बाद थोड़ी मैच्योरिटी आई तो उन्हें एहसास हुआ कि स्कूल के स्टेज पर परफॉर्म करने और प्रोफेशनल एक्टिंग में बहुत बड़ा फर्क है। ऐसे में उन्हें आगे कदम बढ़ाने के लिए एक्टिंग का कोर्स करने की जरूरत महसूस हुई, लेकिन घर वालों के पास इतने पैसे थे कहां कि यश को किसी एक्टिंग स्कूल में दाखिला दिलवा सकें। पर यश के पास तो दूसरा विकल्प था ही नहीं, लिहाजा एक दिन घर वालों से कह दिया कि वो बेंगलुरु जाएंगे और वहीं एक्टिंग की दुनिया में किस्मत आजमाएंगे। यश के पिता इसके लिए कतई राजी नहीं थे, लेकिन बेटे की जिद देखकर आखिरकार मान गए, पर जाने से पहले एक शर्त रख दी कि अगर वापस लौटने की नौबत आई तो हीरो बनने की हसरत की तिलांजलि दे देनी होगी। यश ने पिता की शर्त मान ली और महज 300 रुपए लेकर बेंगलुरु के लिए रवाना हो गए।
4: I just went and I joined theater and I did lot of backstage work. Eventually, while doing backstage work, I used to practice for other roles also. Where some actor is late, then I used to give that dialogue cue बोलते हैं उसको। Like that, I used to rehearse and then I was an emergency actor. If somebody is ill or if some actor is not I used to just go and do that. That's how it started. And then I started getting big roles.
0: थिएटर में काम मिलने के बाद तो जैसे यश के अरमानों को पंख लग गए। काम इतनी मेहनत से किया कि उनकी एक्टिंग के चर्चे होने लगे। साल 2004 में यश की किस्मत ने बड़ी करवट ली और उन्हें कन्नड़ टीवी सीरियल नंदा गोकुल में विजय सिंह का किरदार मिल गया। नंदा गोकुल में विजय सिंह के किरदार को यश ने अपनी शानदार एक्टिंग के दम पर इतना जीवंत कर दिया कि दूसरे सीरियल्स के लिए भी ऑफर आने लगे। 3 साल में ही यश छोटे पर्दे के इतने बड़े एक्टर बन गए कि उसकी गूंज फिल्म इंडस्ट्रीज तक सुनाई देने लगी। फिर आया साल 2007 जब यश को बड़े पर्दे पर भी एंट्री मिल गई। इसी साल उन्होंने कन्नड़ फिल्म जम्बडा हुदगी में बड़े पर्दे पर बतौर सेकेंड लीड डेब्यू किया। अगले ही साल यानी 2008 में कन्नड़ फिल्म मोगीना मानासु में यश को लीड रोल निभाने का मौका भी मिल गया। तकदीर भी उन्हीं का साथ देती है जिनके इरादे बुलंद होते हैं। बतौर लीड हीरो यश की पहली ही फिल्म मोगीना मानासु सुपरहिट हो गई। रोमांटिक ड्रामा मोगीना मानासु के लिए यश को फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया। इसके बाद उनके सामने फिल्मों की लाइन लग गई। मोगीना मानासु के बाद यश ने राजधानी, गजकेसरी और मास्टरपीस जैसी फिल्मों में काम किया और उनकी बेहतरीन अदाकारी के दम पर ज्यादातर फिल्में हिट होती चली गईं। हालांकि जिंदगी में खूबसूरत और शानदार मोड़ तब आया जब साल 2018 में KGF चैप्टर 1 रिलीज हुई। KGF चैप्टर 1 में उन्होंने रॉकी का किरदार निभाया जो दर्शकों के दिलों में ऐसे उतर गया कि बॉक्स ऑफिस पर बवंडर आ गया। साल 2022 में KGF का सीक्वल KGF चैप्टर 2 आया जिसने पहले चैप्टर से भी ज्यादा तहलका मचा दिया। KGF चैप्टर 1 और 2 वर्ल्ड वाइड करीब 1500 करोड़ का कलेक्शन कर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाले फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो गई। अपने 19 साल के फिल्मी सफर में यश एक दर्जन से ज्यादा हिट फिल्में दे चुके हैं। टॉक्सिक और रामायण जैसी मेगा बजट वाली फिल्में बॉक्स ऑफिस पर क्या करिश्मा कर पाएंगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन दोनों फिल्मों का रिलीज से पहले जैसा बच क्रिएट हो चुका है इसकी पूरी उम्मीद है कि KGF वाला करिश्मा एक बार फिर दोहराया जाएगा। आपको बता दें कि यश बचपन से ही अपने एक्टिंग करियर को लेकर जिस तरह से कमिटेड थे वैसे ही अपने शरीके हयात राधिका पंडित को लेकर भी हैं। दोनों की पहली मुलाकात कन्नड़ टीवी सीरियल नंदा गोकुल की शूटिंग के दौरान 2007 में हुई थी और पहली मुलाकात में ही आंखें चार हो गईं। उसके बाद यश ने किसी दूसरे विकल्प पर कभी विचार ही नहीं किया। दोनों ने साल 2016 में शादी कर ली। आज यश और राधिका की जोड़ी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सर्वाधिक कमिटेड कपल में शुमार की जाती है।
3: वंदे मेहदम में आज आपने अभिनेता यश के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को जाना। अगले हफ्ते ऐसे ही किसी और बेमिसाल शख्सियत के सफरनामे के साथ हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे यानी कि श्वेता झा को दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
7: बारिश के तेज बुहार के साथ हुई दिल्ली NCR में दिन की शुरुआत, मौसम हुआ सुहाना, उमस और तापमान में आई कमी, आज राजधानी में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। आज देश मना रहा है चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक सफलता की तीसरी वर्षगांठ। 23 अगस्त 2023 को भारत ने चांद के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में की थी सफल सॉफ्ट लैंडिंग। उड़ीसा से 444 किलोमीटर दूर समंदर में देवदूत बने भारतीय नौसेना और कोस्ट गार्ड के जवान। MV एशियन विनर जहाज पर सवार 2 क्रू मेंबर्स को बचाया। अरुणाचल प्रदेश में नदियों के बढ़ते जलस्तर पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का सोशल मीडिया पर संदेश, कहा तैरना ना आता हो तो गहरे पानी में ना जाएं, मॉनसून में बरतें सावधानी। चाइना के ह्यूमनॉइड रोबोट तियानजू ने तोड़ा ओसेन बोल्ट का रिकॉर्ड, 9.39 सेकंड्स में पूरी की 100 मीटर की दौड़।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। शनि की पीड़ा को दूर करने में घोड़े की नाल का क्या कमाल होता है, क्या जादू होता है, आज इस विषय पर बात करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे आपके भाग्य के लिए कुछ विशेष उपाय। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 23 अगस्त 2026 दिन रविवार, तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, नक्षत्र है मूल नक्षत्र शाम के 5:44 तक। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। जैसा सरगम ने आरंभ में बताया कि घोड़े के पैर में लगा हुआ एक लोहे का टुकड़ा है, सामान्य बोलचाल की भाषा में अगर समझें तो घोड़े की नाल घोड़े के खुर में उसके पैर में लगाई जाती है ताकि ना तो घोड़े को चलने में समस्या हो और ना ही घोड़े की सवारी करने वाले को समस्या हो। ये घोड़े की नाल यू की आकृति का होता है और इसके विष

शनि और राहु हमेशा नियंत्रित रहते हैं, लेकिन ये भी आप जान लीजिए कि अगर घोड़े की नाल का गलत तरीके से प्रयोग किया जाए तो ये मुश्किल में डाल सकता है। ये कोई सामान्य लोहे का टुकड़ा नहीं है, इसके अंदर विशेष तरह के चुंबकीय गुण होते हैं जिसकी वजह से ये आपके ग्रहों को रेगुलेट कर पाता है, आपके ग्रहों को कंट्रोल कर पाता है। मेष राशि, स्वास्थ्य आपका कुल मिलाकर ठीक रहेगा, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं, निर्णयों में सावधानी बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, बड़े निर्णयों में सावधानी रखें, संतान की चिंता हो सकती है, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मिथुन राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, धन की प्राप्ति हो सकती है, काफी व्यस्तता रहेगी, सूर्य देव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, करियर में सफलता मिलती दिखाई दे रही है, स्वास्थ्य में सुधार होगा, किसी मित्र का सहयोग प्राप्त होगा, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, शनि का संबंध लौह धातु से है ये हम सब जानते हैं, लेकिन घोड़े की नाल ही क्यों इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है शनि को कंट्रोल करने के लिए? देखिए, शनि जो है वो धीमी गति का, संघर्ष का और मेहनत का ग्रह है। घोड़े की गति धीमी तो नहीं होती, लेकिन गति उसके पास भी होती है, मेहनती बहुत होता है, संघर्ष का प्राणी है, और ये गुण घोड़े की नाल में पाया जाता है। घोड़े की नाल घोड़े के पैरों में लगी होती है और इसी कारण गतिशील अवस्था में यानी मूवमेंट में बनी रहती है। घोड़े की नाल घोड़े के पैरों में लगी होने की वजह से जब घोड़ा चलता है तो ये नाल जमीन से बार बार घिसती है और टकराती है। रगड़ खाते रहने के कारण इसमें चुंबकीय प्रभाव आ जाता है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है, लगातार जमीन से रगड़ खाने की वजह से विशेष तरह की तरंगे और विशेष तरह की ऊर्जा उसके अंदर आ जाती है, और इसी चुंबकीय प्रभाव के कारण घोड़े की नाल शनि को नियंत्रित कर पाती है। घोड़े की नाल जितनी पुरानी होगी, जितनी घिसी हुई होगी, उसकी तरंगे उतनी प्रभावशाली होंगी और उसकी तरंगों के फायदे से आप शनि को कंट्रोल कर पाएंगे। सिंह राशि, करियर की समस्या हल हो

होगी, अतिथि का आगमन होगा, स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, करियर में लापरवाही ना करें, अपयश से बचाव करें, वाहन सावधानी से चलाएं, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तुला राशि, करियर में आपके सुधार होता दिखाई दे रहा है, कर्ज की समस्या हल होगी, धन की प्राप्ति होगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, समस्या से मुक्ति मिलेगी, कोई शुभ समाचार मिलेगा, खान पान में थोड़ी सावधानी रखें, सूर्य देव को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, घोड़े की नाल अगर पुरानी है, घिसी हुई है, तो इसका प्रयोग करके आप शनि की पीड़ा को कम कर सकते हैं। कैसे करेंगे? किसी मंगलवार या बृहस्पतिवार को घोड़े की नाल ले लें। ये जितनी ज्यादा पुरानी होगी, जितनी ज्यादा घिसी हुई होगी, उतना ही ज्यादा बढ़िया होगा। इस नाल से एक अंगूठी यानी एक छल्ला बनवा लें, लेकिन ये छल्ला या अंगूठी पीट पीट कर, काट काट कर बनाई जाएगी, इसको आग में नहीं तपाया जाएगा। शनिवार की शाम को इस अंगूठी को सरसों के तेल से धो करके मिडिल फिंगर में, मध्यमा अंगुली में धारण कर लें। अगर शनि की महादशा है, अंतरदशा है, शनि की साढ़े साती है, ढैया है, और इसके वजह से आपको परेशानी हो रही है, तो आप घोड़े की नाल का छल्ला अगर मध्यमा अंगुली में पहन लेंगे तो शनि जो आपको पीड़ा दे रहे हैं वो पीड़ा कम हो जाएगी और उस पीड़ा से आप बचे रहेंगे। धनुराशि, करियर में सफलता मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, महत्वपूर्ण काम मत टालें, अपनी योजनाओं को गोपनीय रखें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, यात्रा पर जा सकते हैं, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं, सूर्य देव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, कोई महत्वपूर्ण काम बन जाएगा, धन संबंधी मुश्किलें दूर होंगी,
परिवार में शुभ कार्य होंगे। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। आप अपने पूरे घर के ऊपर से नकारात्मक प्रभाव को, निगेटिव एनर्जी को हटा सकते हैं घोड़े की नाल का प्रयोग करके। तो घोड़े की नाल का कैसे प्रयोग करें कि घर में सुख शांति आए? घोड़े की नाल मंगलवार या बृहस्पतिवार को घर में ले आए और इसको एक कटोरी में या एक पात्र में सरसों का तेल डालकर उसमें डुबा करके रख दें। शनिवार की शाम को इसे जल से धो लें, कपड़े से पोंछ लें और इसके बाद घर के मुख्य द्वार पर, मेन डोर पर ऊपर बीचों बीच में इसे यू की आकृति में लगा दें और एक नियम बना लें, रोज शाम को जब घर में पूजा करते हैं, धूप बत्ती जलाते हैं, तो रोज शाम को घर के मुख्य द्वार पर धूप बत्ती दिखाइए और नाल के ऊपर से भी धूप बत्ती एक बार घुमा लीजिए, इसको भी दिखा लीजिए। इस नाल को लगाने का फायदा यह है कि ये मुख्य द्वार पर लगा रहेगा, घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी। अगर घर में कोई निगेटिव एनर्जी लेकर के प्रवेश करना चाहेगा तो वो प्रवेश नहीं कर पाएगा। अगर हायर ऑफिशियल्स के साथ, उच्चाधिकारी के साथ संबंध गड़बड़ हो रहे हों, आपके जो उच्च अधिकारी हैं वहां से रिलेशन में प्रॉब्लम हो रही है, तो सूर्य देव को रोज जल चढ़ाइए। जल में जरा सी रोली मिला करके अगर आप सूर्य देव को जल चढ़ाएंगे तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। आप नौकरी करते हैं, बड़ी अच्छी नौकरी करते हैं, लेकिन बार बार नौकरी में समस्या आ जाती है, बार बार नौकरी छूट जाती है, ट्रांसफर हो जाता है, उठा पटक होने लगती है, क्या करना चाहिए? रोज सवेरे जल में रोली डाल करके सूर्य देव को जल अर्पित करें, जितना अर्ली करें उतना अच्छा होगा। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें और एक घोड़े की नाल के लोहे की बनी हुई अंगूठी मिडिल फिंगर में शनिवार को धारण करें, आपको लाभ होगा। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।

0: इस बार क्या है चंद्र ग्रहण की स्थिति, चंद्र ग्रहण का देश दुनिया पर कैसा पड़ेगा प्रभाव, चंद्र ग्रहण अलग अलग राशियों पर कैसे डालेगा असर, जानिए मेरे साथ उप छाया चंद्र ग्रहण के बारे में सिर्फ गुड लक स्पेशल में।
1: सास बहू और बेटिया में आज देखिए टेलीविजन की दुनिया में एंटरटेनमेंट के ढेर सारे रंग। दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।

0: 子यहां इंद्र देवता खूब बरसे हमारे बरसने के पहले, पर कोई बात नहीं, एक ही जने बरसे तो ठीक है। यदि वो भी बरसते हम भी बरसते तो एनर्जी रिफ्लेक्स होती। तो आप लोग बहुत भाग्यशाली हो, लोग भक्ति रस में भींगते थे, आप जल रस में भींग रहे थे। वैसे भी भक्ति के मार्ग में लिखा है कि सराबोर हो जाओ, वो आप हो गए। संत कह रहे हैं कई हजार साल से डूब जाओ भक्ति में, निचोड़ गए। डूबना तो ठीक है, निचोड़ गए, निचोड़। पर बसंत कह रहे हैं इतनी भक्ति करो, इतनी भक्ति करो कि भक्ति का रस टपकने लगे। टपका नहीं, बहका है, बहा है, बिल्कुल नदी जैसी चल गई। तो ये भी एक अलग आनंद है। अपने लिए तो कई बार भींगे होंगे, बालाजी के लिए भींगना एक अलग आनंद देता है। यात्रा में जहां पर छाता नहीं था, मकान नहीं था, बारिश होने लगी तो भींगे होंगे, पर यहां बालाजी के लिए भींगे। कल हम भी भींगे तो रात भर जो है गर्मी बुखार ऐसा चढ़ा कि पूछो मत, पर रात भर हम दरबार लगाए गए, दो ढाई बजे ही गए, तो दो तीन घंटा विश्राम किया, फिर सुबह 5 बजे फिर भूतों का उतारा फिर किया, फिर 6 बजे गए गौशाला, वहां वैदिक गुरुकुलम पर झंडा ऊंचा रहे हमारा विजय विश्व तिरंगा प्यारा। तो स्वतंत्रता दिवस पे हमने बढ़िया जो है जनगणमन गाया, बच्चों की प्रस्तुतियां देखी। अब लौट कर उल्लू घर को आए तो उस विचार था कि शाम को 4-5 बजे उठ जाएंगे, पर विचार विचार है। बिस्तर पे जब गए तो बिस्तर बोला प्रभु एक तो तुम कमाते हो, ऊपर से जल्दी क्यों जा रहे है? रुको। तो फिर बड़ी देर हो गई, देर क्या हो गई, आंख ही नहीं खुली। और जब तक हम उठे स्नान ध्यान करके आए तब तक वो बरसने लगे। तो हमने सोचा वो बरस रहे, हम काहे को बरसे। सुनो ध्यान से, बारिश से बचने के लिए जैसे छाता जरूरी है, वैसे ही संसार सागर में विपत्तियों से बचने के लिए गुरु की छत्र छाया जरूरी है। छाता तन को बचाता है तो गुरु की कृपा जीवन को बचाती है। और मेरे पागलो, एक बात तुम याद रखना, जिंदगी में बारिश की जब बूंद गिरती है तो वो ये नहीं देखती कि हम अमीर की महल में गिर रहे हैं या गरीब की झोपड़ी पर गिर रहे हैं। बारिश की बूंद तो गिरती है, उसे फर्क नहीं पड़ता कि गरीब की झोपड़ी में पानी भर रहा, आटा गीला हो रहा या अमीर बारिश का मजा ले रहा। बारिश की बूंद तो गिरती है, वो अमीरी गरीबी ना देखती। वैसे ही गुरु है, गुरु अपना पराया नहीं देखता है। मेरे पागलों, बारिश की बूंद गिरती है पर ठहरती वहां है जहां गड्ढा होता है, खड्डा होता है, गहराई होती है। समतल नहीं, गहरा पर्वत पर बारिश की बूंद नहीं टिकती, दीवालों पर बारिश की बूंद नहीं टिकती, पेड़ के तने पर बारिश की बूंद नहीं टिकती। वो तो गिरती है नीचे तो खोजती है ऐसी जगह जहां मैं ठहर जाऊं। भागती है नदी की तरफ, नाले की तरफ कि मैं ठहर जाऊं, और नदी भी भागती है कि मैं भी ठहर जाऊं। और नदी के जीवन में हजारों मोड़ ऐसे आते हैं रुकने के, कभी पर्वत रोकते, कभी बड़े बड़े बांध रोकते, कभी बड़े बड़े पेड़ रोकते, पर नदी फिर भी रास्ता बनाती, पत्थरों को चीरती, पहाड़ों को काटती, किनारों की मिट्टी ले जाती, बहा ले जाती पूरी संसार की कायनात को, लेकिन वो तब तक ना रुकती जब तक उसे सागर का किनारा ना मिल जाता, तब तक वो बहती रहती। वैसे ही मन है, तब तक बहते रहना चाहिए जब तक परमात्मा का किनारा ना प्राप्त हो जाए। और मेरे पागलो, नदी बनना भी बड़ा कठिन है। नदी भी बनो तो पत्थरों से लड़ो, बांधों से लड़ो, और बांधों में भी आजकल ऐसे ऑटोमेटिक गेट आ गए, उनसे लड़ो, इंजीनियरों से लड़ो, बड़े बड़े पेड़ों से लड़ो, लेकिन वो लड़ती है तब तक जब तक वो सागर में ना मिल जाती। मेरे पागलो, तुम भी लड़ो, विपत्तियों से लड़ो, संकटों से लड़ो, तब तक जब तक तुम्हें परमात्मा प्राप्त ना हो जाए। सागर से तुम रहना सीखो, नदियों से तुम बहना सीखो। सागर रहना सिखाता, नदियां बहना सिखाती। और मेरे पागलो, बारिश की बूंद का एक और करामात है कि बारिश की बूंद जब पृथ्वी पर आती है तो वो खड्डा खोजती है और ठहर जाती है। कृपा की भी एक करामात है, वो भरोसा और श्रद्धा देखती है, और जहां भरोसा और श्रद्धा होती वहीं कृपा ठहर जाती है। तुमने कभी पर्वतों पर पानी भरा हुआ देखा? कभी दीवारों पर पानी भरा हुआ देखा? कभी पेड़ों पर पानी भरा देखा? पर गड्ढों में तो भरा देखा होगा। ऐसे ही इनकी कृपा है बालाजी की, वो 24 घंटे बरस रही, हर पल बरस रही, पर कृपा ठहरेगी कहां? जिसके अंदर श्रद्धा का, भरोसे का गड्ढा होगा, वहां बालाजी की कृपा ठहरेगी। अब तुम्हारे ऊपर है, यदि तुम्हें पानी की बूंदों को संचय करना है तो एक खड्डा खोदना चाहिए। बारिश की बूंदों का पानी रखना है तो तुम्हें बर्तन को सीधा रखना पड़ेगा। बर्तन को तुम सीधा रखोगे, बारिश की टिप टिप करती हुई बूंदें पानी की भर करके रह जाएंगी, ठहर जाएंगी। ऐसी बालाजी की कृपा की बूंदें यदि तुम्हें अपने जीवन में भरनी है तो तुम्हें भरोसा और श्रद्धा का घड़ा ऊपर की तरफ रखना पड़ेगा, उनके उनकी तरफ रखना पड़ेगा। एक बात और सुने, अंतिम बात, पागलो, जीवन में मौसम सब आएंगे, गर्मी है तो सर्दी आएगी, और सर्दी है तो बारिश आएगी, और बारिश के बादल है तो धूप भी आएगी, अभी रात है तो दिन भी आएगा। ऐसे ही जीवन है तो सुख है तो दुख भी आएगा, लेकिन यदि दुख है तो तय है सुख भी आएगा। कब आएगा ये हमें पता नहीं, आएगा ये पता है, क्योंकि दुख का झूला, कभी झूले पे बैठे हैं आप, झूला जितना पीछे ले जाओगे वो उतना ही आगे आता है। ऐसे जीवन है, जितना दुख पाओगे सुख का झूला भी उतने आगे आएगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम दुख का झूला खुद ही पीछे खींचो। इसका अर्थ यह नहीं है, जो हो रहा है होने दो, जो चल रहा है चलने दो, और तुम कर ही क्या सकते। मान लो जो हो रहा उसे रोक थोड़ी सकते, अभी फिर से पानी बरसने लगे तो तुम रोक दोगे? जो बरसा तो ऐसा कर सकते हो क्या? बोलो बोलो बोलो, अरे जरा जम के बोलो। जोर से बोलो। तो जो हो रहा है वो, जो चल रहा है वो, अरे तुम मजे लो, आनंद लो। यहां गम किसको कम है और तुम्हें क्या गम है, हम है। यहां गम किसको कम है, सबको गम है, पर तुम मजे लो, हम है। यहां दुनिया में सब दुखी है, तुम बताओ कौन दुखी नहीं है। तुमने देखा नहीं धाम पर भारत के बड़े बड़े अमीर भी आते, सरपंच भी आता है तो प्रधानमंत्री भी आते। चूहा की टेंशन है कि सांप ना खा जाए, सांप की टेंशन है मोर ना मिल जाए, आदमी की टेंशन है शेर ना मिले, और शेर की टेंशन है आदमी ना मिल जाए। सबकी टेंशनें चल रही है, घरवाली पति से हैरान है, और पति देव हस्बैंड पत्नियों से हैरान। कुछ लोग इसलिए हैरान है कि बच्चे नहीं है, और कुछ लोग यहां ऐसे बैठे कि बच्चे क्यों हैं। कुछ लोग इसलिए आए भैया शादी करवाओ गुरुदेव, और कुछ लोग इसलिए भी आए हमारी हो गई छुड़वाओ गुरुदेव। सबको यहां टेंशन है, सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम है। कुछ लोग पतले लोग हैं जो वो कह रहे काश वजन बढ़ जाए, और जिनका ऑलरेडी वजन है उनसे पूछो वो कह रहे घटा ही नहीं रहा, कुछ खाते नहीं फिर भी बढ़ ही रहा। इनके अलग टेंशन है। जो काले हैं वो गोरे हो रहे हैं, लगा रहे क्रीम है कलर फाउंडेशन, और जो गोरे हैं अंग्रेज वो सनलाइट लेने भारत आते। उनसे पूछा जाए, हम अभी बाली में थे तो कुछ अंग्रेज नंगे पुंगे घूम रहे थे, अरे हमने कहा भाई इनसे बोलो कपड़े पहने, धूप तेज है काले पड़ जाएंगे। जब बाद में हमें रहस्य पता लगा हम चौंक गए, हमें ट्रांसलेटर ने बताया कि वो काले होने के लिए ही आए। हमका गजब है भाई, उसको अंग्रेजी में वो कहते हैं सनवर्ण, वो सनवर्ण होने के लिए 15 लाख खर्च करते, काले होने के लिए 15 लाख खर्च कर रहे। हमका भैया हमारे भारत में तो ऐसे बहुत लोग हैं, सबकी अपनी अपनी टेंशन है। और इस टेंशन का सबसे बड़ा कारण है कि जिसके पास जो है उसकी कद्र नहीं है, और जो नहीं है उसकी इज्जत कर रहा है। जो धाम नहीं आ पाए वो घर बैठकर YouTube पे देख के यही तो कहते कितने भाग्यशाली हैं लोग जो धाम जाके दरबार में बैठ जाते, और जो यहां आते वो ये टेंशन में है हमें कब बुलाया जाएगा, नंबर कब आएगा, और जो मंच पर चढ़ जाते पर्चा और बना दे, और जिनका पर्चा बन जाता शादी कब होगी गुरुजी, अरे भाई टेंशन ना लो 2 साल में हो जाएगी, 2 साल में किससे होगी, अरे लड़की से होगी, लड़की से होगी, जाओ आशीर्वाद अच्छी होगी, अच्छी होगी, जाओ गुरुजी गुरुजी रखो एक मिनट, नाम क्या होगा, अरे भाई मुन्नी माई, अब चलो चलो चलो नीचे उतरो गुरुजी गुरुजी, गोरी होगी के काली, अरे तुम दिमाग खराब, गोरी होगी अच्छी होगी, अच्छी होगी गोरी होगी, गोरी अब जा गुरुजी कहाँ रहती है वो, अरे भाई दिल्ली में रहती गुड़गांव में, चलो अब जा, जा दूसरे का नंबर आने दो, जाओ गुरुजी गुड़गांव तो बहुत बड़ा है गुरुजी, बाप का नाम और बता दो, भाई चंगीलाल अब जा बच्चे कितने होंगे? दो। बेटा के बेटी? दोनों बेटा। मकान बन जाएगा? हाँ बन जाए। मकान दो फ्लैट बनेंगे कि एक? दो। एसी लगेगी? बच्चे सही तो चलेंगे, सही निकलेंगे, खराब तो नहीं निकले? नहीं, सही हूं, सही हूं, तुम्हारी बात मान। दुकान का क्या होगा? पर्चा खत्म हो जाएंगे, चर्चा खत्म ना हो। प्रश्न खत्म ना होंगे। इसलिए मेरे पागलों, आज हम तुम्हें एक बात कहना चाह रहे, तुम अलग अलग अर्जी लगाना चाह रहे या पूरी अर्जियों का उपाय पाना चाह रहे? क्योंकि तुम्हारे यहां मुसीबत तो आती रहनी है। पेट दर्द ठीक होगा तो सिर दर्द होगा, सिर का दर्द ठीक होगा तो लुगाई दर्द करेगी, या पड़ोसी दर्द करेगा, या पड़ोसन दर्द करेगी, या रिश्तेदार। कौन कौन ऐसा व्यक्ति है जो जीवन भर के हर प्रश्न का उत्तर पाना चाहता? एक प्रश्न का नहीं, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पाना चाहता। पक्का? अरे जोर से बोलो, पक्का? पक्का? हाथ नीचे करो। सदा सदा के लिए बालाजी के हो जाओ। किसके हो जाओ? बालाजी के। हम भी तुम्हारी तरह प्रश्न करते तो शायद हम पे गुरु कृपा ना हो पाती। हमने प्रश्न नहीं मांगा, हमने बालाजी को मांगा, तो आज अर्जी लगाने वाले बन गए। हम तुमसे यही कहेंगे, बालाजी से मत मांगो, बालाजी को ही मांगो, काम हो जाए।
1: इस बार क्या है चंद्र ग्रहण की स्थिति? चंद्र ग्रहण का देश दुनिया पर कैसा पड़ेगा प्रभाव? चंद्र ग्रहण अलग अलग राशियों पर कैसे डालेगा असर? जानिए मेरे साथ उपछाया चंद्र ग्रहण के बारे में, सिर्फ गुड लक स्पेशल में।
2: बहू और बेटियां में आज देखिए टेलीविजन की दुनिया में एंटरटेनमेंट के ढेर सारे रंग। दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी जोड़ों का दर्द है, यानी घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे का दर्द, तो ये शो आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जिनकी उम्र 70 साल से 100 साल तक है, और इस उम्र में भी इन लोगों को जरा भी जोड़ों का दर्द नहीं है, यानी ये लोग इस उम्र में भी कहीं जाने के लिए, उठने बैठने के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं है। एक लाइन में कहें तो ये लोग इस उम्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर है।
7: मैं पिछले 1 साल से आयुर्वेदिक महाशक्तिशाली फॉर्मूला ले रहा हूँ, फौजी 360 इसका नाम है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में, यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
8: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है, अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
9: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैनू जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है, अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
6: फौजी 360 को अब तक जितने भी लोगों ने इस्तेमाल किया है, उन सभी लोगों को जोड़ों के पुराने से पुराने दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे के दर्द से पूरी तरह आजादी मिली है। और ये दावा हम नहीं, वो लोग खुद कर रहे हैं जो फौजी 360 इस्तेमाल कर चुके हैं।
10: इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं, और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
11: और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि इसे हर बंदा ले सकता है, डायबिटीज वाला मरीज ले सकता है, ब्लड प्रेशर वाला मरीज ले सकता है, और मेरा खुद का दर्द खत्म हुआ यार, इसीलिए मैं खुल के बताता हूँ कि ये फौजी गजब की चीज है।
6: फौजी 360 के सिर्फ एक कोर्स के बाद 80-90 साल के बुजुर्ग भी जवानों की तरह सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पोते पोतियों को गोदी में लिए घंटों उनके साथ खेल रहे हैं।
12: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने।
6: ये बात सुनने में बड़ी हैरान करने वाली है, पर इन बुजुर्गों ने इंटरनेट पर प्रूफ के साथ वीडियोस भी अपलोड करे हैं, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है और जोड़ों के दर्द के तेल और स्प्रे बेचने वाले दुकानदार परेशान है, क्योंकि फौजी 360 लेने के बाद कोई भी व्यक्ति कभी भी इन जोड़ों के दर्द को ठीक करने वाली दवाएं जैसे तेल, गोली और स्प्रे के चक्कर में दोबारा कभी नहीं फंसेगा।
13: 3 साल से आंटी जी के घुटनों में इतना दर्द था कि इनका घुटना मुड़ता भी नहीं था, जरा भी नहीं मुड़ता था। और आज की स्थिति देखते हैं आप, ये देखिए इनका पूरा घुटना मुड़ रहा है, हॉस्पिटल खुद चल के आई हैं, और ये सब कमाल हुआ है फौजी 360 से। हम रिपोर्ट से समझते हैं, देखिए इनके पुरानी रिपोर्ट है, पूरी घुटने जकड़ चुके थे, जाम हो चुके थे, जिसके कारण घुटनों में पूरी तरीके से मूवमेंट खत्म हो गया था। और आज की डेट है जब से इन्होंने फौजी 360 यूज करना शुरू किया है, उसके बाद उनके घुटनों में एक तरीके से नई जान आई है। और हमें इतना अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि लोगों के पैसे बच रहे हैं और लोगों को फौजी 360 जैसे नेचुरल प्रोडक्ट से आराम मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जिन भी लोगों को जोड़ों से संबंधित कोई भी समस्या है, एक बार फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
6: फौजी 360 के इफेक्ट्स और रिजल्ट्स को जानने के लिए हमने बहुत से एक्सपर्ट से बात करी, और लगभग सभी का यही कहना था कि फौजी 360 जोड़ों के दर्द जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे के दर्द के लिए राम बाण की तरह काम करता है।
14: किट में मिलने वाले जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं जैसे तेल, स्प्रे, ये सिर्फ ऊपरी और टेम्पररी राहत देते हैं, और वहीं फौजी 360 शरीर के अंदर जाकर जोड़ों को, हड्डियों को, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
15: ये साहिल जी हैं, 2 महीने पहले आए थे, कह रहे थे मेरे दोनों घुटने बदल दो क्योंकि बहुत परेशानी हो रही थी इन्हें चलने फिरने में। मैंने कहा हम पैसे बर्बाद नहीं करेंगे, आप फौजी 360 का एक कोर्स लेके देखिए, फिर मिलते हैं। आज आए हैं, बताइए सर कैसे रिजल्ट मिले आपको, क्या स्थिति है अभी?
14: पहले तो जितना धन्यवाद आपको दूं उतना कम है डॉक्टर साहब, क्योंकि पूरा चल लेता हूं मैं मोटरसाइकिल चलाने लगा हूं वापस से अपनी, अब बिल्कुल भी बुरी स्थिति नहीं है, एकदम बिल्कुल दर्द खत्म हो चुका है। अब तो आप मुझे बोलो 5 किलोमीटर चले जाओ, मैं बिल्कुल चले जाऊंगा, अभी भी सीढ़ी चढ़ के आया हूं हॉस्पिटल में।
6: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं, फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
12: 2 साल से घुटने और कमर के कारण पलंग पकड़ लिया था, सब पलंग पे हो रहा था, अग्ना मुतना भी पलंग पे हो रहा था, जरा भी नहीं चल पाता था। 3 महीने से ये फौजी 360 पाउडर ले रहा हूँ, अब खुद से उठ जाता हूँ, बाथरूम हो जाता हूँ, चल फिर लेता हूँ, बहुत आराम है, बहुत राहत है।
6: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है, और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है, और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
10: रोज 150 सीढ़ी चढ़कर मैं मेरे भोले बाबा के मंदिर जाती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है मेरे घुटनों में, और ये कमाल किसी तेल या स्प्रे से नहीं हुआ है, क्योंकि उनसे कुछ होता ही नहीं है। मुझे तो फायदा हुआ है फौजी 360 से, अरे कमाल का ट्रीटमेंट है। इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं है, और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
6: दुनिया के किसी भी तेल या स्प्रे के साथ कभी भी कोई गारंटी नहीं मिलती, यानी दर्द खत्म होगा या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं, लेकिन फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है। यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले, तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
16: 15 साल पहले चिकनगुनिया हुआ था, तब से शरीर के हर कोने में दर्द बना रहता था, होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी, ये तेल, वो स्प्रे, सब ट्राई कर लिया, मगर आराम मिला 3 महीने पहले इस फौजी 360 से। अब कसम खा के बता रहा हूँ, जरा भी दर्द नहीं है शरीर में।
10: घुटने के दर्द के कारण मैं चल भी नहीं पाती थी, पर ये जब से फौजी 360 लिया है ना, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। अब आप देखो मैं घर का पूरा काम खुद कर लेती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है।
17: 5 साल से तो मैंने नमाज भी अदा नहीं की थी क्योंकि घुटना मेरा मुड़ता ही नहीं था। अब घुटने बदलवाने के लिए जितने पैसे भी नहीं थे कि घुटने बदलवाने इस उम्र में, फिर ये फौजी 360 जब से लेना शुरू किया है अब मैं खुद चल लेता हूँ, खुद का काम पूरी तरीके से कर लेता हूँ, और जो मैंने पलंग पकड़ लिया था ना वो वहाँ से बच गया हूँ मैं। अब ये तो ताकत है फौजी 360 की, अल्लाह की दुआ से कम नहीं है फौजी 360। अब खुद का काम मैं खुद से करता हूँ बिल्कुल।
18: हमारे नेपाल में पहाड़ी इलाका है तो चलना फिरना बहुत होता है, जोड़ों में बहुत दर्द का प्रॉब्लम शाप को रहता है, पर हमने कभी तेल या स्प्रे नहीं लगाते, कुछ नहीं होता उससे। सारे लोग मेरी उम्र के यहाँ फौजी 360 लेते हैं, बहुत कमाल का दवाई है, बिल्कुल भी जोड़ों में दर्द नहीं है इसको लेने से।
6: अगर आप चाहते हैं कि आपके जोड़ों का दर्द अंदर से पूरी तरह ठीक हो सके और आपको पूरी तरह आराम मिल सके, तो सिर्फ एक कॉल करके इस कमाल के आयुर्वेदिक फॉर्मूले फौजी 360 को अपने घर मंगा सकते हैं और जोड़ों के दर्द से पूरी तरह आजादी पा सकते हैं।
19: बॉलीवुड का एक गाना है ना, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। तो मेरी कहानी भी ऐसी है कि मैं दुनिया के लगभग बहुत से बड़े बड़े देशों में रहा हूँ और मैंने सब जगह ये जोड़ों के दर्द, स्पेशली घुटने के दर्द का इलाज कराया, बट कहीं भी वैसा रिजल्ट नहीं मिला। 2 years back when we shifted to India, तब ये फौजी 360 के बारे में पता पड़ा, we started using it, मुझे और मेरी वाइफ दोनों को इतना कमाल का रिलीफ मिला कि ऐसा रिलीफ किसी भी ट्रीटमेंट से आज तक नहीं हुआ था।
6: फौजी 360 के बारे में और डिटेल में जानने के लिए हमारी टीम उस आयुर्वेदिक आश्रम तक पहुंची जहां फौजी 360 बनाया जाता है और उन एक्सपर्ट से बात करी और वो सीक्रेट जानने की कोशिश करी कि कैसे सिर्फ एक फॉर्मूले से लोगों के जोड़ों का दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, पूरी तरह ठीक हो रहा है।
20: इसमें कुछ ऐसी औषधियां हैं जो आपकी बोन्स को मजबूत बनाता है, जो आपके लिगामेंट में जो फ्लूइड की कमी हो गई है ये उसे दोबारा रिस्टोर करने में मदद करता है, और साथ ही दूसरी दवाओं से ये बेहतर इसीलिए है कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसे डायबिटिक पेशेंट ले सकता है, इसे ब्लड प्रेशर का मरीज ले सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह सुरक्षित है और आपको पहले दिन से फायदा दिखने लगेगा। ये ताकत है फौजी 360 की। बस यही कारण था कि हमने सोचा कि अब समय आ चुका है लोगों की, जनता की सेवा करने का और घर घर इसे भिजवाने का। तो जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं आप इस पर फोन कर सकते हैं, हमारे केंद्र पर डायरेक्ट फोन होगा, आप अपनी समस्या बताइए। अगर आपको बात सही लगती है, फौजी 360 आपको लगता है कि हाँ अब समय है कि जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक करना है, तो आप इसे मंगा सकते हैं। और साथ ही इसमें कुछ ऐसी औषधियां भी हैं जो आपको पूरे समय आपके शरीर में चुस्ती बनाए रखता है।
6: फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
13: फौजी 360 मार्केट में मिलने वाले दूसरे जो पेन किलर ऑयल्स होते हैं, स्प्रे होते हैं, उनसे कैसे अलग है मैं आपको साइंटिफिकली समझाता हूँ कि ऐसा क्या है इस ट्रीटमेंट में जो इसके रिजल्ट्स बहुत ही शानदार है। देखिए, कोई भी तेल या स्प्रे कैसे काम करता है सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। आपके दर्द वाले हिस्से पे जब आप तेल लगाते हैं तो ये बाहर से आपके उस पर्टिकुलर एरिया को सुन्न कर देता है, मतलब आपके बॉडी के अंदर दर्द तो रहता है, उस जोड़ के अंदर दर्द तो है, और वहीं फौजी 360 जो है ये अंदर से काम करता है, क्योंकि जब आप इसे कंज्यूम करते हैं बॉडी को वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जो जोड़ों को मजबूत बनाता है अंदर से, जो जोड़ों की चिकनाहट कम हो गई है ना ये उसको दोबारा लौटाता है। तो ये एक अंदर से काम करने वाली चीज है, यानी ये पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से ठीक करता है, और वहीं तेल और स्प्रे सिर्फ टेम्परेरी राहत देते हैं। तो आप अगर अभी भी जोड़ों के दर्द के लिए तेल या स्प्रे यूज कर रहे हैं तो आप आज से ही वो सब बंद कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ पैसे बर्बाद करने की बात है और टेम्परेरी रिलीफ की बात है। अगर आप पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से मजबूत बनाना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो आप एक बार ये फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
21: पिछले महीने मैं बाथरूम में स्लिप हो गई थी तो बहुत दर्द रहता था पेट में, डॉक्टर ने कहा कुछ L1 L2 का कुछ तो बताया था, पर इन्होंने फौजी 360 लाके दिया और उससे इतना आराम हुआ है कि अब जरा भी दर्द नहीं है। मम्मी पापा जी ने भी लेना शुरू किया है और उनको भी जो घुटनों में दर्द था उन्हें भी राहत मिली है। तो हर घर में मुझे लगता है ये फौजी 360 होना ही चाहिए।
8: मैं तो 12 महीने ही केदारनाथ बाबा के चरणों में ही रहता हूँ और यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि ठंड के चक्कर में पूरे समय शरीर अकड़ा हुआ रहता है, सारे जोड़ में बड़ा दर्द बना रहता था, पर जब से ये फौजी 360 किया है ना शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता, बर्फ में भी चल लेता हूँ, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। ये ताकत है इस आयुर्वेदिक फौजी 360 की।
6: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
1: टीवी पे फौजी के बारे में देखा तो मैंने फोन करके फौजी 360 को सीधा घर मंगा लिया, क्योंकि 3 साल से कमर में इतना भयंकर दर्द था कि घर के सारे कामों के लिए मैं पूरी तरीके से बाइयों पे निर्भर हो चुकी थी। सिर्फ 15 दिन हुए हैं और अब बिल्कुल भी दर्द नहीं है, कमर में जरा भी दर्द नहीं है। इतना शक्तिशाली है ये फौजी 360।
2: बिना सहारे के मैं 2 कदम भी नहीं चल पाती थी, पूरे समय बहू और बेटे की मदद ही लेनी पड़ती थी, पर जब से ये फौजी 360 लिया है कमर में घुटने में जरा भी दर्द नहीं है। अब सीढ़ियां चढ़ जाती हूँ, उतर जाती हूँ, चल लेती हूँ आराम से, इधर का सारा काम कर लेती हूँ। अब दर्द में पूरी तरीके से राहत है।
22: मेरी उम्र 88 साल है, रोज 5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ, लेकिन फिर भी जरा भी दर्द नहीं है। ये शक्ति है फौजी 360 की।
6: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
7: 1 साल पहले दोनों घुटने बदलने के लिए बोल दिया था, मगर मैंने घर बैठे आयुर्वेद के एक फॉर्मूले से अपने घुटने और जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक किया है और अब मैं वो सब कर सकता हूँ जो जवान आदमी भी नहीं कर सकता। आप में दम हो, आप करके बताओ। जोड़ों के दर्द के लिए जो भी लोग तेल या स्प्रे लगाते हैं ना, उन्हें आज से ही ये सब बकवास चीजें बंद करना चाहिए। इससे कुछ नहीं होता है, क्योंकि जोड़ों के दर्द का इलाज अंदर से होता है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में, यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
6: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
8: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
9: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैंने जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
6: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
2: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने का।
6: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 अपने घर मंगा सकते।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आ रही है।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
23: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
0: बारिश के तेज बहारों के साथ हुई दिल्ली NCR में दिन की शुरुआत, मौसम हुआ सुहाना, उमस और तापमान में आई कमी, आज राजधानी में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। आज देश मना रहा है चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक सफलता की तीसरी वर्षगांठ। 23 अगस्त 2023 को भारत ने चांद के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में की थी सफल सॉफ्ट लैंडिंग। ओडिशा से 444 किलोमीटर दूर समंदर में देवदूत बने भारतीय नौसेना और कोस्ट गार्ड के जवान। एमवी एशियन विनर जहाज पर सवार दो क्रू मेंबर्स को बचाया। अरुणाचल प्रदेश में नदियों के बढ़ते जलस्तर पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का सोशल मीडिया पर संदेश, कहा तैरना ना आता हो तो गहरे पानी में ना जाएं, मॉनसून में बरते हैं सावधानी। चाइना के ह्यूमनॉइड रोबोट तियानजू ने तोड़ा ओसेन बोल्ट का रिकॉर्ड, 9.39 सेकंड्स में पूरी की 100 मीटर की दौड़।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: Thank you.

0: नए दौर का सबसे घातक हथियार। जो युद्ध की दिशा और दशा बदलने की क्षमता रखता है। रणक्षेत्र में जब ये उतरता है तो सरहदें छोटी लगने लगती हैं। दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को भी चकमा देने की ताकत है इसके पास। मॉडर्न वॉरफेयर का यह हथियार है अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जिसे दुनिया ड्रोन के नाम से जानती है।
1: हाल के दिनों में हमने देखा कि किस तरीके से इसराइल ने हुती हमास और ईरान पर अपनी ड्रोन ताकत का इस्तेमाल किया। रूस और यूक्रेन वॉर में भी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है। अमेरिका अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए ड्रोन का ही सहारा ले रहा है और अब भारत भी इसमें पीछे नहीं है। भारत भी ऐसे ऐसे ड्रोन को अपने बेड़े में शामिल कर रहा है जिनके सामने दुश्मन का टिक पाना नामुमकिन होगा।
0: ड्रोन साइज में छोटे होते हैं, इसलिए रडार की पकड़ में आसानी से नहीं आते। साथ ही दुर्लभ इलाकों में भी ये गुपचुप घुसपैठ कर सकते हैं और यही वजह है कि सेना में इनका इस्तेमाल बढ़ने लगा है। ड्रोन हमले दो प्रकार से संभव हैं। एक तरीका ये है कि ड्रोन में हथियार या फिर विस्फोटक लगा दिए जाते हैं और ड्रोन इन हथियारों या विस्फोटक को लक्ष्य पर ड्रॉप कर देते हैं। ड्रोन से हमले का दूसरा तरीका है ड्रोन को खुद ही एक विस्फोटक में तब्दील कर दिया जाए, यानी खुद ही विस्फोटक के साथ टारगेट से टकरा जाए, जिसे कैमिकेज यानी कि सुसाइड ड्रोन भी कहा जाता है।
2: आज ड्रोन बहुत ही आधुनिक हो गए हैं और ड्रोन एक घातक हथियार है। इसके अंदर आपके पास कामिकाजी ड्रोन भी हैं जो कि सुसाइडल ड्रोन माने जाते हैं, और इसके अंदर सर्विलेंस वाले ड्रोन भी हैं जो रेकी एंड सर्विलेंस करते हैं। इसके पास वो ड्रोन भी हैं जो जाके डीप इनसाइड दुश्मन के इलाके में एक प्रकार से सटीक वार कर सकते हैं।

0: सबसे खास है। इसे सुसाइड ड्रोन भी कहा जाता है। दहशतगर्दों के ट्रेनिंग सेंटर पर बारूद बरसाने से लेकर घात लगाए बैठे दुश्मनों को हमेशा के लिए खामोश करना कैमिकेज ड्रोन के लिए बाएं हाथ का काम है। आकार में छोटा होने के बावजूद ये बड़ी तादाद में तबाही मचाने की ताकत रखते हैं। भारतीय सेना के पास हार्पी ड्रोन की ताकत है जिसे इसराइल से लिया गया है। हार्पी सुसाइड ड्रोन है जिसे इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने तैयार किया है। साल 1989 में पहली बार हार्पी ड्रोन का परीक्षण किया गया था जिसमें यह हमारी उम्मीदों पर खरा उतरा और आज ये भारतीय सेना की ताकत का हिस्सा बन चुके हैं। हार्पी को दुश्मन के रडार सिस्टम और एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने के लिए तैयार किया गया है। इसमें एंटी रेडिएशन सीकर लगाया गया है जिसकी मदद से रेडिएशन के स्रोतों का आसानी से पता लगाया जा सकता है। ये रेडियो सिग्नल्स का पता लगाकर हमला करता है। इसे ऑटोनॉमस और मैनुअल दोनों मोड पर ऑपरेट किया जा सकता है।
1: वो बहुत ही आधुनिक है, वो एक प्रकार इजराइल का बना हुआ है, भारत के पास है और वो एयर डिफेंस सिस्टम को जो है एक प्रकार चकमा दे देता है, उसको एयर डिफेंस सिस्टम डिटेक्ट नहीं कर पाता इन एनी वे। क्योंकि ये सच्चाई है कि जो ये ड्रोन भारत ने लिया इजराइल से बहुत ही सटीक हमला करता है और एक ये डिटेक्ट नहीं हो सकता, लो हाइट पे चलता है और रडार इसको पकड़ नहीं पाते।
0: हार्पी ड्रोन तो ट्रक और जहाज से लॉन्च किया जा सकता है और इसकी सबसे खास बात यह है कि इसे लॉन्च करने के बाद ऑपरेटर की जरूरत नहीं होती, ये खुद टारगेट को डिटेक्ट कर उसे तबाह कर देता है। हार्पी ड्रोन लगातार 6 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम है और इसकी ऑपरेशनल रेंज 1000 किलोमीटर तक है, जिससे सेना को बिना किसी जोखिम के दुश्मन को निशाना बनाने में मदद मिलती है। स्पीड की बात की जाए तो ये 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने में सक्षम है और ये अपने साथ 32 किलो तक का हथियार ले जा सकता है। दिन हो या रात किसी भी समय हमला करने में सक्षम ये ड्रोन हमले के बाद दुश्मन के हाथ नहीं आता, क्योंकि ये अपना मिशन पूरा करने के बाद खुद ही नष्ट हो जाता है और यही वजह है कि इसे फायर एंड फॉरगेट कैटेगरी में रखा जाता है।
2: भारत के पास इजराइल से आया एक और ड्रोन है जिसका नाम है हेरॉन और हेरॉन का असली काम है निगरानी करना, जानकारी जुटाना और युद्ध के मैदान में ये दुश्मन की हर खुफिया जानकारी का पता लगा सकता है, सर्विलेंस का काम भी आसानी से कर सकता है।
0: हेरॉन इतना शक्तिशाली है कि इसका इस्तेमाल सर्जिकल स्ट्राइक तक में किया जा सकता है। अभी भारत के पास हेरॉन मार्क 2 है और ये करीब 35,000 फीट की ऊंचाई पर एक बार में लगातार 36 घंटे तक उड़ान भर सकता है। इसकी अधिकतम रेंज करीब 3000 किलोमीटर है और ये 250 किलो तक का वजन लेकर उड़ सकता है।
1: देखो हेरॉन ड्रोन भी इजराइल का है, बहुत ही अच्छा ड्रोन है और इसकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इसकी इंड्योरेंस ज्यादा है और ये जो है सर्विलेंस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, रेकी के लिए भी किया जाता है और दुश्मन के ऊपर हमला करने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है।
0: सैटेलाइट से कंट्रोल होने वाला ड्रोन है जो हर मौसम में अपना मिशन पूरा करने में सक्षम है। इसमें एंटी जैमिंग तकनीक लगी है जिससे हेरॉन ड्रोन को किसी भी तरह से जैम नहीं किया जा सकता। हेरॉन ड्रोन में कई तरह के सेंसर्स और कैमरा लगे होते हैं, जैसे कि थर्मोग्राफिक कैमरा यानी इंफ्रारेड कैमरा जो रात में अंधेरे में देखने में इसकी मदद करता है। इसके अलावा विजिबल लाइट एयरबॉर्न ग्राउंड सर्विलांस जो कि दिन की रोशनी में तस्वीरें लेता है, साथ ही इंटेलिजेंस सिस्टम समेत कई तरह के रडार सिस्टम मौजूद हैं। हेरॉन ड्रोन की सबसे बड़ी बात यह है कि आसमान से ही टारगेट को लॉक करके उसकी सटीक पोजीशन आर्टिलरी यानी टैंक या फिर इंफ्रारेड सीकर मिसाइल को दे सकता है, यानी सीमा के इस पार से ड्रोन से मिले सटीक टारगेट पर हमला किया जा सकता है।

0: ने हाल के सालों में रक्षा क्षेत्र में ऐसी छलांग लगाई है जिसने न सिर्फ क्षेत्रीय संतुलन को बदला है बल्कि इंटरनेशनल भी भारत की इमेज और ज्यादा अच्छी हो गई है। भारत अपने ही देश में ऐसे ऐसे हथियार, ऐसे ऐसे ड्रोन की ताकत को बना रहा है जो दुश्मन को मिनटों में नेस्तनाबूद कर सकते हैं।
1: अब भारत सिर्फ रक्षा ही नहीं करता बल्कि आसमान पर नियंत्रण भी रखता है। भारतीय सेना ने खरगा कामिकेज ड्रोन को अपने बेड़े में शामिल कर लिया है। ये ड्रोन खुफिया और निगरानी भूमिकाओं में अहम है। भारतीय सेना ने इस ड्रोन को मदर ड्रोन का नाम दिया है, जिसके साथ दो छोटे ड्रोन भी अटैच किए जाएंगे। ये ड्रोन एमुनेशन यानी कि RDX 7 लेकर उड़ने में सक्षम है। दिन हो या रात, तूफान हो या बरसात, हर हालात में अपने मिशन को पूरा करने में सक्षम है भारत का खरगा कामिकेज ड्रोन। GPS, नेविगेशन सिस्टम और हाई डेफिशिएंसी कैमरा से लैस खरगा ड्रोन 700 ग्राम तक विस्फोटक ले जा सकता है।
2: देखिए, 700 ग्राम का जो एक्सप्लोसिव होता है वो काफी कारगर होता है, बहुत इफेक्टिव होता है। अगर जिस इलाके में वो गिरेगा वहां पे तबाही मचाएगा और तकरीबन 20 से 25 मीटर के दायरे में जो भी कुछ होगा उसको पूरी तरीके से खत्म कर देगा। देखिए, इसमें एक बख्तरबंद गाड़ी या एक ट्रूप जो टैंक का होता है वो नुकसान हो सकता है। अगर किसी बिल्डिंग के ऊपर गिरेगी तो वो बिल्डिंग धाराशाही हो सकती है। अगर ट्रूप सेन ओपन है, अगर वहां गिरता है तो पूरे पूरे जो प्लटून है, जो सेक्शन है, वो वहां तबाह हो सकता है।
1: खरगा कामिकेज ड्रोन आर्मी के ग्राउंड ऑपरेशन के समय दुश्मन की खुफिया जानकारी इकट्ठा कर सकता है। ये ड्रोन लंबे समय तक टारगेट वाले इलाके में उड़ सकता है। खरगा की रेंज करीब 1.5 किलोमीटर है और ये 40 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से उड़ने में सक्षम है। खरगा कामिकेज ड्रोन की खासियत है कि ये वजन में बेहद हल्का है, तो एक लॉन्च और हवाई टारगेट करने में भी आसान है।
2: जो खरगा कामिकेज ड्रोन है वो एक हाई टेक्नोलॉजी ड्रोन है। ये लो फ्लाइंग करता है जिससे रडार इसको डिटेक्ट नहीं कर पाते। इसमें HD कैमरा लगा रहता है। ये इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए और सर्वेलेंस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है।
1: खरगा कामिकेज ड्रोन की और खास बात यह है कि ये रडार की रेंज में आए बगैर दुश्मन या उसके ठिकानों को तबाह कर सकता है। अगर दुश्मन ने इसे देख भी लिया तो वो इसके पास दुश्मन के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जैमिंग के लिए जवाबी उपाय भी है।
2: इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जैमिंग की जब हम बात करते हैं तो वो उस फ्रीक्वेंसी बैंड को जैम करता है जिसपे ये ड्रोन ऑपरेट करता है। और इसमें ये प्रोविजन दिया गया है कि इसमें उसका काउंटर मेजर अवेलेबल है। ये फ्रीक्वेंसी हॉपिंग कर सकता है स्पेक्ट्रम टेक्निक द्वारा, या इसका एंटीना जो है वो इस तरीके से बनाया गया है कि वो जैमर को बरखिलाफ काम किया जा सकता है। और तमाम तरीके के एंटी जैमिंग मेजर्स हैं उसका इसमें इस्तेमाल किया गया है। कहने का मतलब यह है कि अगर दुश्मन चाहे इसको डिस्ट्रॉय करना या इसको मिसगाइड करना तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि रडार इसको कैच नहीं कर सकता, जैमर इस पे इफेक्टिव है नहीं।
1: युद्ध के मैदान में ड्रोन ने एंट्री लेते ही अपना वर्चस्व दिखाना शुरू कर दिया है। अब आपके मन में भी सवाल उठ रहा होगा कि ड्रोन को किसने तैयार किया और कब तैयार किया। ड्रोन बनाने का क्रेडिट इराकी मूल के अमेरिकी इंजीनियर इब्राहिम करीम को जाता है। इब्राहिम करीम ने पहला ड्रोन इजरायली सेना के लिए साल 1973 में योम कपूर वॉर के समय तैयार किया था। आज ये ड्रोन कई कैटेगरी की तरह कई रूप ले चुका है। सबसे पहले ड्रोन की कैटेगरी और उनके इस्तेमाल के बारे में बताते हैं। पहला है नैनो ड्रोन। 250 ग्राम क्षमता वाले इस ड्रोन का इस्तेमाल हॉबी टॉय से लेकर स्पाई कैमरा के लिए होता है। अगला है माइक्रो ड्रोन। इसकी क्षमता 2 किलो तक की होती है। इसका इस्तेमाल मैपिंग और सर्वे के लिए किया जाता है। स्मॉल ड्रोन की क्षमता 2 किलो से 25 किलो तक है। इसका इस्तेमाल ज्यादा दूरी तक मैपिंग और सर्वे करने में होता है। वहीं मीडियम ड्रोन की क्षमता 25 किलो से लेकर 150 किलो तक होती है। इसका इस्तेमाल एग्रीकल्चर सेक्टर में सामान की डिलीवरी करने में होता है। हैवी ड्रोन की बात करें तो ये 150 किलो से ज्यादा वजन लेकर उड़ान भर सकता है। इसका इस्तेमाल डिफेंस सेक्टर में होता है। ड्रोन अपने छोटे आकार और लो फ्लाइंग की वजह से रडार की पकड़ में नहीं आते, लिहाजा सर्विलांस से लेकर अटैक में ड्रोन का इस्तेमाल तेजी से बढ़ता जा रहा है।
0: रक्षा जानकारों का मानना है कि आने वाले सालों में युद्ध का तौर तरीका पूरी तरह से बदल जाएगा। यहाँ पर सैनिकों की जगह रोबोट्स लेंगे, यानी कि तकनीक का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल होगा, रोबोट्स का इस्तेमाल होगा, हवाई हमलों का इस्तेमाल होगा। ड्रोन की ताकत आने वाले सालों में और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि युद्ध इसी तरीके से लड़े जाएंगे और इसी को समझते हुए भारत भी अपनी ताकत को और ज्यादा मजबूत कर रहा है। भारत खुद को तकनीकी रूप से इतना सशक्त बना रहा है कि वो युद्ध के मैदान में दुश्मन को पटखनी दे सके।
1: दुनिया के ज्यादातर देश समझ चुके हैं कि ड्रोन ही वो हथियार है जो युद्ध में गेम चेंजर साबित हो सकता है, यानी जिसका ड्रोन जितना ताकतवर होगा, युद्ध में जीत उसी की सुनिश्चित होगी। सेनाध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे ने कहा था कि भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए भारत तैयार है और वो अपनी तैयारियों को धार दे रहा है।
0: भारतीय सेना को लॉयटरिंग म्यूनिशन यानी कि आत्मघाती ड्रोन नागास्त्र एक मिल चुका है। इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत भारत ने इसे लिया है और अब ये हमारी सेना का एक अहम हिस्सा बन चुका है।
1: भारत में तैयार पहला स्वदेशी लॉयटर म्यूनिशन नागास्त्र एक ड्रोन है। इसे इतना ताकतवर बनाया गया है कि आसानी से सीमा पर पनपती साजिशों को राख में मिला सकता है। आत्मघाती ड्रोन को साइलेंट मोड में 1200 मीटर की ऊंचाई से ऑपरेट किया जा सकता है, जिससे इसे पहचानना मुश्किल हो जाता है। नागास्त्र एक अपने साथ करीब 2 किलो एक्सप्लोसिव लेकर उड़ सकता है, जो 15 किलोमीटर दूर तक टारगेट को तबाह कर सकता है। लॉन्चिंग म्यूनिशन एक एरियल वेपन सिस्टम है। ये ड्रोन हवा में टारगेट के आसपास घूमते हैं और कमांड मिलते ही आत्मघाती हमला कर देते हैं। इसे आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि ड्रोन अपने साथ 2 से ज्यादा ग्रेनेड लेकर उड़ते हैं। अब जरा सोचिए कि बॉर्डर पर दुश्मन घात लगाए बैठा हो और घुसपैठ की फिराक में नागास ड्रोन हमला कर दुश्मन के परखचे उड़ा दे।
3: देखो, नागशस्त्र ड्रोन जो है ये एक भारत ने अपने इंडिजिनसली बनाया है और इसके अंदर जो सामान इस्तेमाल किया गया 75% जो है आत्मनिर्भर भारत के तहत बना है और ये एक कामिकाजी ड्रोन है और एक ये गेम चेंजर है, फोर्स मल्टीप्लायर। ये एक छोटा ड्रोन है जो कि मिक्सचर है एक प्रकार से आपका मिसाइल और यूएवी का। ये 30 kg के करीब है, ये पैक्ट ले जाया जा सकता है और इसकी 3-4 बड़े इंपॉर्टेंट खसूसियत हैं। एक तो ये ऑलमोस्ट 100% अपने टारगेट को हिट करता है और ये लॉटरिंग अम्यूशन है। ये एक प्रकार डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल है दुश्मन से, बिकॉज ये जमीन के बहुत नजदीक उड़ता है और ये 15 किलोमीटर तक जो वार कर सकता है और जो 30 किलोमीटर का इसका दायरा है और ये एक प्रकार से उस इलाके के अंदर लॉटर करता है और उसके बाद जब टारगेट को जीपीएस की तरह से सिलेक्ट कर लेता है।
1: नागास ड्रोन एक सुसाइडल ड्रोन है जिसकी ताकत और नजरों से बचना दुश्मन के लिए आसान नहीं होता। ये ड्रोन खुद को खत्म कर दुश्मन का सर्वनाश कर सकता है।
3: कामिकाज़ी ड्रोन बोलते हैं जिसको सुसाइडल ड्रोन भी बोलते हैं। तो ये ड्रोन जो है एक बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है कि ये एक प्रकार अपने टारगेट को जाके हिट करता है, अपने आप भी बर्बाद हो जाता है और टारगेट को भी बर्बाद करता है। देखो, ये चली थी प्रथा जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जिस प्रकार से जापानीज थे वो अपना छोटा एयरक्राफ्ट लेके बड़ी बड़ी शिप है उसके ऊपर हमला करते थे, जाके उसके इंजन के अंदर घुस जाते थे, खुद तो एक्सप्लोड हो जाते थे मगर पूरे शिप को बर्बाद कर देते थे। तो ये सच्चाई है, इसीलिए इसका नाम कामिकोजी ड्रोन पड़ा है। और ये एक जो कामिकोजी ड्रोन है वो बहुत ही ज्यादा पुख्ता है और वो बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं, और वो 100% अपने टारगेट को हिट करके खुद भी जो है बर्बाद होते हैं मगर टारगेट को बर्बाद कर देते हैं।
1: नागास ड्रोन को युद्ध क्षेत्र में आसानी से असेंबल किया जा सकता है, इसे ग्राउंड बेस्ड लॉन्चर सिस्टम या फिर हाथ से भी लॉन्च किया जा सकता है। नागास वन ड्रोन का वजन करीब 10 किलो है जो आसानी से 60 मिनट यानी कि एक घंटे तक उड़ान भर सकता है, और अगर टारगेट न मिले तो ये वापस भी आ जाएगा। पैराशूट के जरिए इसकी सॉफ्ट लैंडिंग कराई जा सकती है।
3: ड्रोन्स हैं, अगर वो सुसाइडल हैं, अगर वो अपने टारगेट को हिट करने में सक्षम नहीं है या टारगेट जो है मूव कर जाता है, तो उसके बाद उसको सॉफ्ट लैंडिंग कराया जा सकता है पैराशूट की मदद से, तो उसको रिट्रीव किया जाता है। हम बात कर रहे थे नागशास्त्र की, उसके अंदर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यही है कि उसके अंदर वो अपने टारगेट को खुद सेलेक्ट करता है, वो जो एरिया है उस पर लॉयटर करता है, और उसके बाद जब वो जीपीएस से टारगेट को डिटेक्ट कर लेता है तो फिर जाके टारगेट को हिट करता है, और टारगेट जो है 100% के करीब बर्बाद हो जाता है। इसकी एक्यूरेसी 2 मीटर तक की है। तो ये है कि जो सुसाइडल बॉम्ब हैं इनको जो कामिकोजी ड्रोन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और अगर ये इनका मिशन अनसक्सेसफुल हो जाता है या मिशन अबॉर्ट हो जाता है तो इसको वापिस भी बुलाया जा सकता है।
1: जीपीएस एनेबल नागास ड्रोन 2 मीटर की सटीकता के साथ किसी भी खतरे को बेअसर कर सकता है।
4: वंस वी मैन्युअली फीड द टारगेट एरिया और इट कैन ऑटोमेटिकली आल्सो एक्वायर द टारगेट, इट डाइव्स ऑन टू द टारगेट एंड इट डिस्ट्रॉयज द टारगेट अलोंग विद इटसेल्फ। द एक्यूरेसी ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्विपमेंट इज लेस देन 2 मीटर्स दैट वी वर एबल टू अचीव।
1: ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम और ग्राउंड डेटा टर्मिनल की मदद से नागास्त्र को कंट्रोल किया जाएगा। दुश्मन दिखा नहीं कि उसकी तबाही का काउंटडाउन शुरू। नागास्त्र दरअसल एक फिक्स विंग ड्रोन है जिसके मिडल में विस्फोटक रख के इसे दुश्मन पर हमला किया जा सकता है, और इसे ट्राइपॉड या फिर हाथ से भी उड़ाया जा सकता है। फिलहाल नागास्त्र 2 पर भी काम चल रहा है जो नागास्त्र 1 का अपग्रेडेड वर्जन होगा। नागास्त्र की अगर बात की जाए तो ये 25 किलोमीटर तक और 90 मिनट तक उड़ान भर सकता है।

0: रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: इस बार क्या है चंद्र ग्रहण की स्थिति, चंद्र ग्रहण का देश दुनिया पर कैसा पड़ेगा प्रभाव, चंद्र ग्रहण अलग अलग राशियों पर कैसे डालेगा असर, जानिए मेरे साथ उप छाया चंद्र ग्रहण के बारे में सिर्फ गुड लक स्पेशल में।
3: सास बहू और बेटिया में आज देखिए टेलीविजन की दुनिया में एंटरटेनमेंट के ढेर सारे रंग। दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।

0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।

0: मैचिंग मिनेशन या आत्मघाती ड्रोन को कैमिकेज ड्रोन भी कहा जाता है। सुसाइड ड्रोन को कैमिकेज कहे जाने की भी एक दिलचस्प कहानी है। कैमिकेज ड्रोन का नाम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में जापानी कैमिकेज पायलट से लिया गया था, जिन्होंने जानबूझकर विस्फोटक से भरे विमान को दुश्मन के ठिकानों पर गिराकर आत्मघाती हमले किए थे। विश्व युद्ध के दौरान जापान के करीब 19% कैमिकेज हमले पूरी तरह से सफल रहे। जापान ने मित्र देशों के हवाई हमलों को रोकने के लिए इनका इस्तेमाल किया था। कैमिकेज दरअसल ऐसा सटीक हमला करता है कि जिससे दुश्मन का पूरी तरह से खात्मा हो सके। जापान की कैमिकेज दस्तों को बनाने की भी एक खास वजह थी। दूसरे विश्व युद्ध के आगे बढ़ने के साथ ही जापान की सेना जब कई अहम युद्ध हार चुकी थी, जापानियों के कई बेहतरीन पायलट्स मारे जा चुके थे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान के कई विमान पूरी तरह से तबाह हो चुके थे और उस समय जापान के पास इतना समय नहीं था कि वो अपने पायलट्स को फाइटर जेट की ट्रेनिंग देता और ऊपर से उनकी औद्योगिक क्षमता भी काफी कम हो चुकी थी और यहीं से शुरुआत हुई कैमिकेज रणनीति की। हार, कब्जा और शर्म की जगह मौत की परंपरा जापानी सैन्य संस्कृति में गहराई से समाई है। समुराई जीवन और बुशिडो कोड ये कहता है कि हार से बेहतर है कि मौत को गले लगा ले। ऐसी मृत्यु को वफादारी और सम्मान माना जाता है। केवल कैमिकेज ही नहीं, जापान ने आत्मघाती गोताखोरों का भी इस्तेमाल किया था। कहा जाता है कि जापान का पहला कैमिकेज ड्रोन मिशन 13 सितंबर 1944 को हुआ था। नोग्रोस द्वीप पर जापानी सेना ने 31वें फाइटर स्क्वाड्रन के पायलट के एक समूह ने आत्मघाती हमला करने का फैसला किया। इसके लिए लेफ्टिनेंट ताकेशी कोसाई और एक सार्जेंट को चुना गया। दो लड़ाकू विमानों में 200 किलोग्राम के बम लगाए गए। पायलट्स ने सुबह सबसे पहले उड़ान भरी ताकि वो अपने टारगेट से टकरा सके। मिशन पर निकला आत्मघाती विमान और पायलट भी कभी वापस नहीं लौटे।
1: सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर अगर आप देखें कि जो बड़ी बड़ी शिप थी वो एक प्रकार से बहुत ही ज्यादा थी समुद्र की लड़ाई में और उनको बर्बाद करना इतना आसान नहीं था। और जो जापान ने एक नई स्ट्रेटेजी निकाली थी जिसको बोलते थे कामिकाजी, वहीं से नाम आया था कि एक छोटे एयरक्राफ्ट में जो जापानीज पायलट थे वो अपना जहाज ले जाके और जो बड़ी शिप थी उसके इंजन के अंदर घुस जाते थे, तो खुद तो बर्बाद हो जाते थे मगर पूरे बड़े शिप को उन्होंने बर्बाद किया। इस प्रकार से अगर आप देखें सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो जापानीज के ने काफी नुकसान किया था बड़े बड़ी शिप, और एक डर पैदा हो गया था जापान का कि वो कामिकाजी जो कारण जिसको बोलते हैं, वहीं से नाम इसका पड़ा कि सुसाइडल, जिस प्रकार से एक छोटे एयरक्राफ्ट में उड़ के और वो शिप के जो इंजन था उसके अंदर घुस जाते थे, उधर अटैक करके अंदर अपने आप को भी तो बर्बाद कर लेते थे मगर पूरा का पूरा शिप बर्बाद हो जाता।
0: आज रूस यूक्रेन युद्ध से लेकर मिडिल ईस्ट तक कैमिकेज ड्रोन का इस्तेमाल होता है और इसकी सबसे बड़ी वजह है कम लागत में विध्वंसक ताकत वाला हथियार। आत्मघाती ड्रोन ये सारी जरूरतें पूरी करता है। भविष्य के इस गेम चेंजर की ताकत जिसके पास भी होगी रण क्षेत्र में, उसी का पलड़ा ज्यादा भारी होगा और भारत इस बात को बहुत अच्छे से जानता है, समझता है और इसीलिए मेक इन इंडिया के तहत भारत अपने यहां ही इस तरह की टेक्नोलॉजी को और ज्यादा विकसित कर रहा है ताकि युद्ध के मैदान में वो दुश्मन के आगे टिका रहे और दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दे। आज दुनिया के कई देश ड्रोन शक्ति को बढ़ाने में जुटे हैं। उन्हें पता है कि दुर्गम इलाके में दुश्मनों पर नजर रखना हो या फिर उसकी गुस्ताखी का मुंहतोड़ जवाब देना हो, इसमें ड्रोन एक कारगर हथियार साबित होगा। लिहाजा भारत भी अपनी सेना के तरकश में ताकतवर ड्रोन का जखीरा जमा करने में जुटा हुआ है। नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज भारत का खुद का कैमिकेज ड्रोन बना रहे हैं। दावा यह है कि मेड इन इंडिया कैमिकेज ड्रोन 1000 किलोमीटर तक उड़ान भरने में सक्षम होगा, जो अपने साथ 25 किलोग्राम विस्फोटक लेकर उड़ सकेगा। और इसकी उड़ान क्षमता करीब 9 घंटे होगी, यानी कि एक बार लॉन्च करने के बाद यह आसमान में लगातार मंडराता रहेगा। करीब 120 किलो वजनी कैमिकेज ड्रोन को दूर बैठा कोई भी व्यक्ति कंट्रोल कर सकता है। विस्फोटक लगा होने की वजह से इनकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। ये टैंक से लेकर बख्तरबंद गाड़ी तक को तबाह कर सकते हैं। स्वदेशी कैमिकेज ड्रोन को ताकत देने के लिए इसमें 30 हॉर्स पावर वाला वेंकल इंजन का इस्तेमाल भी किया जाएगा, जिससे ये 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने में सक्षम होगा। कैमिकेज ड्रोन को झुंड में यानी कि कई ड्रोन एक साथ भी भेजे जा सकते हैं। इससे दुश्मन के रडार और डिफेंस को चकमा देकर अपने टारगेट पर हमला कर सकते हैं।

0: भारत ने पिछले साल ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर का पहला फ्लाइट टेस्ट किया था, जो ड्रोन टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर को पेश करता है। ये भारत का स्टेल्थ ड्रोन है जो भविष्य में पाकिस्तान और चीन की नाक में दम कर देगा। अमेरिका के B-2 बॉम्बर की तरह दिखने वाला ये विमान पूरी तरह से ऑटोमेटिक था। इसने खुद ही टेक ऑफ लिया और आसानी से लैंडिंग की, जो ड्रोन सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत की ताकत को दिखाता है।
1: जो ड्रोन ऑपरेट करता है ये बड़े ही हाई स्पीड से लॉन्च करता है। इस कहने का मतलब यह है कि ये रडार को चकमा देता है, इसमें बहुत ही हाई एवियोनिक्स होता है, इसका जो ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन होता है वो बहुत एडवांस होता है, साथ में ये रियल टाइम इंफॉर्मेशन देता है। कहने का मतलब यह है कि ये एक डिफरेंट टेक्नोलॉजी है। ये हाई एंड टेक्नोलॉजी किसी किसी देश के पास है। हिंदुस्तान ने इसका डेमोन्स्ट्रेशन किया और हिंदुस्तान ऐसे इलीट ग्रुप में शामिल हो गया जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है।
0: ताकतवर ड्रोन एक्सपोर्ट के साथ साथ भारत देश में ही अलग अलग कैटेगरीज और अलग अलग क्षमता के ड्रोन विकसित कर रहा है, जिसमें एक नाम है वेपनाइज्ड हेक्सोकॉप्टर, जिसे रुद्रास्त्र भी कहा जाता है। रुद्रास्त्र ड्रोन 5 किलो का बॉम्ब लेकर उड़ने में सक्षम है। इसमें 1-1 किलो के 4 बम भी एक साथ लगाए जा सकते हैं, यानी कि इसमें एक साथ अलग अलग टारगेट्स पर हमला करने की ताकत है। रुद्रास्त्र ड्रोन लगातार 30 मिनट तक उड़ान भर सकता है। ये एक बार में 10 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है और साथ ही इस ड्रोन में लगे बॉम्ब GPS से कनेक्टेड होंगे, जिससे सटीक निशाना लगाया जा सकेगा। रुद्रास्त्र में हाई रेजोल्यूशन कैमरा भी लगा है, जिससे आसानी से टारगेट को लोकेट किया जा सकता है और फिर दुश्मन का काम तमाम। रुद्रास्त्र ड्रोन जहां हमला करता है उसके 20 मीटर के दायरे में भारी तबाही मचाता है।
1: रुद्रास्त्र जो है वो भी एक शॉर्ट रेंज ड्रोन है। ये इसका जो मारक क्षमता है वो 10 से 15 किलोमीटर दुश्मन के इलाके में जा सकती है। ये एक शोल्डर फायर ड्रोन है जो कि आगे जो ट्रूप्स इन कांटेक्ट है वो इसकी मदद से यूज करते हैं। इसका भी सक्सेसफुल डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है और इसको भी डिफरेंट डिफरेंट पेलोड में आप यूज कर सकते हैं। ये मैक्सिमम 10 से 15 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकता है। इमीडिएट टारगेट जो विसिनिटी में है 10 से 15 किलोमीटर उस पर लॉन्च किया जा सकता है।
0: भारत में रुद्रास्त्र, नागास्त्र और तपस जैसे स्वदेशी ड्रोन की एक फौज तैयार हो रही है। भारतीय सेना तपस BH-201 का इस्तेमाल आर्म्ड मिशन और सीमा पर निगरानी के लिए करेगी। तपस BH-201 ड्रोन एक अटैकिंग ड्रोन है जो 350 किलोग्राम के पेलोड के साथ उड़ान भरने में सक्षम है। 224 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़कर ये 1000 किलोमीटर की रेंज में सर्विलांस और अटैक कर सकता है। तपस ड्रोन की दूसरी खूबियों की बात की जाए तो ये 28,000 फीट की ऊंचाई पर 18 घंटे तक उड़ान भर सकता है।
1: इसका जो ऑपरेटिंग रेंज है जितनी हाइट पे जा, ये 30,000 फीट की हाइट तक जा सकता है और इसका पेलोड 500 से 6 किलोग्राम होता है और इसका इंड्योरेंस 17 से 18 घंटे के आसपास का होता है। डिपेंड करता है आप कहां से लॉन्च करें। अगर आप बॉर्डर एरिया से लॉन्च करेंगे तो यह दुश्मन के इलाके में जाएगा और वहां से देखिए जो इसके जो प्रिसीजन गाइडेड मिशन इसमें जो लोड होता है, जो इसका पेलोड है, उससे वो स्ट्राइक कर सकता है। तो लिहाजा आप इसको हवा में लॉन्च करके वेट कर सकते हैं टारगेट के अपीयर होने के।
0: तपस ड्रोन को भारतीय कंपनी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने बनाया है। इस ड्रोन को अमेरिका के MQ-1 प्रेडेटर ड्रोन की तर्ज पर विकसित किया गया है। तपस ड्रोन को पहले रुस्तम 2 के नाम से जाना जाता था और तपस की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह खुद ही लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकता है और रात के अंधेरे में भी हमला करने में सक्षम है। भारतीय सेना को मॉडर्नाइज और ताकतवर बनाने की मुहिम के तहत दुनिया के सबसे ताकतवर ड्रोन में शुमार MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन को खरीदने का रास्ता साफ हो चुका है। भारत अमेरिका की MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन डील ने चीन और पाकिस्तान की हलक को सुखा दिया है। ये ऐसा आसमानी योद्धा है जो दूसरे ड्रोन से ताकत और तकनीक के मामले में कोसों आगे है। अमेरिका से जो 31 MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन लिए जाएंगे उनमें 15 MQ-9B सी गार्जियन और 16 स्काई गार्जियन होंगे। 15 सी गार्जियन भारतीय नौसेना को मिलेंगे, वहीं भारतीय थलसेना और एयरफोर्स को 8-8 स्काई गार्जियन मिलेंगे। प्रेडेटर ड्रोन तालिबान और आईएसएस के खिलाफ अमेरिका का सबसे कामयाब हथियार साबित हुआ है। ज्यादा ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन ऐसी ताकतवर मिसाइलों से लैस हैं जो कि दुश्मन के ठिकाने पर एकदम सटीक वार करते हैं।
2: ये एयरक्राफ्ट की एंड्योरेंस बहुत ज्यादा है, ये 30 घंटे से ज्यादा देर उड़ सकता है और 40,000 फीट तक ये एयरक्राफ्ट उड़ सकता है। ये एयरक्राफ्ट 2,000 से ज्यादा नॉटिकल माइल दूर जा सकता है, जिससे कि हमारा पूरा भारत इंडियन ओशन रीजन कवर होता है और कोई भी गतिविधि जो कि इंडियन ओशन रीजन में हो रही है उसकी हमें तुरंत खबर पता चलती है, जो कि तुरंत लाइव वीडियो फीड हम हेडक्वार्टर को दे देते हैं।
0: प्रेडेटर ड्रोन भारत के पास आने के बाद देश की सरहद और हिंद महासागर के बीच पूरी निगरानी रखी जा सकेगी। जमीन और समंदर दोनों में किसी भी मिशन को इससे अंजाम दिया जा सकता है।
3: कि ये पायलटलेस एयरक्राफ्ट है, फुल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सो दिस कैन बी वेरी इफेक्टिवली यूज्ड अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल बॉर्डर एरियाज, वेयर आप अपने एयरक्राफ्ट नहीं भेज सकते हैं दूसरे के वायु सीमा के अंदर। और ये जो ड्रोन होते हैं इनका साइज बहुत कम होता है, इनके सिग्नेचर्स बहुत छोटे होते हैं, तो इनको डिटेक्ट करने में एनिमी रेडार्स की बहुत मुश्किल होती है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कलेक्ट करने के लिए ड्यूरिंग एंड बिफोर द वॉर दीज ड्रोन्स कैन बी फ्लोन अक्रॉस द बॉर्डर एरियाज, अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल।
0: प्रेडेटर ड्रोन को हंटर किलर यूएवी भी कहते हैं। ये एक पायलटलेस विमान की तरह है जिसे रिमोट से उड़ाया जाता है। MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन दो वर्जन में है, पहला स्काई गार्जियन और दूसरा सी गार्जियन। स्काई वर्जन किसी भी मौसम में 40 घंटे से ज्यादा उड़ान भर सकता है, सी गार्जियन 30 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम है। दोनों ड्रोन में कोई खास अंतर नहीं है, सिर्फ पानी और जमीन के हिसाब से लगाई गई मशीनरी अलग अलग है। MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन को ताकत देने के लिए इसमें वाइड एरिया मैरिटाइम रडार, ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर्स और एक सेल्फ कंटेन्ड एंटी सबमरीन वॉरफेयर यानी कि ASW किट से इसे लैस किया गया है, जिसे भारतीय वायुसेना के अधिकारी कंट्रोल रूम में बैठकर ऑपरेट कर सकते हैं।
3: रडार का काम होता है किसी भी टारगेट को डिटेक्ट करना, तो ये जो ड्रोन है इसके ऊपर लेटेस्ट रडार टेक्नोलॉजी यूज की हुई है, तो जब ये हवा में उड़ता है सो इट कैन डिटेक्ट एनिमी टारगेट्स और जो भी टारगेट्स डेजिग्नेट किए हुए हैं और आइडेंटिफिकेशन सिस्टम भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर एनिमी की तरफ से रडार चल रहा है या कोई और एयरक्राफ्ट एयरबॉर्न है तो उसके जो सिग्नेचर्स हैं वो ये ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम पिकअप कर सकता है। सो दिस इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द ड्रोन वेपन सिस्टम।
0: MQ-9B प्रेडेटर की सबसे बड़ी खास बात यह है कि यह दुश्मन पर चुपके से नजर रखता है और जरूरत पड़ते ही जमीन पर मिसाइल से हमला कर देता है। पनडुब्बियों को ढूंढकर उसे भी तबाह करने की ताकत है इसमें। 2721 किलोग्राम की मिसाइल को अटैच किया जा सकता है, जिसमें लेजर गाइडेड मिसाइल, एंटी टैंक मिसाइल और एंटी शिप मिसाइल शामिल है। प्रेडेटर ड्रोन को ताकत देने के लिए इसमें दो लेजर गाइडेड AGM-114 हेलफायर मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। 40,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर उड़ने के कारण दुश्मन इस ड्रोन को आसानी से पकड़ भी नहीं पाएगा।
2: अभी इस एयरक्राफ्ट में केवल कैमरा और रडार है, जब ये इंडक्ट होगा तब इस एयरक्राफ्ट में बोला जा रहा है कि इसमें मिसाइल, बॉम्ब, एंटी सबमरीन किट और इसमें आपके कोलिजन अवॉइडेंस किट्स भी ऐड होंगी।
0: भारत के लिए प्रेडेटर ड्रोन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि चीन पाकिस्तान को ड्रोन ताकत से लैस कर रहा है, जो कि भारत के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। जो पाकिस्तान को ड्रोन दिए हैं वो 370 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला कर सकते हैं और 20 घंटे तक हवा में उड़ान भर सकते हैं। लेकिन भारत के MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन की अगर बात की जाए तो ये 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। और सबसे बड़ी और खास बात यह है कि ज्यादा देर तक हवा में रहने की वजह से इसकी ताकत और निगरानी क्षमता और ज्यादा बढ़ जाती है। MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन का इस्तेमाल निगरानी, जासूसी और सैन्य कार्रवाई में कई तरह के कामों में हो सकता है, जैसे कि एंटी सरफेस वॉरफेयर, यानी कि नौसेना इसे जमीन पर रखे हथियार को तबाह कर सकती है। वहीं एंटी सबमरीन वॉरफेयर में MQ-9B ड्रोन के जरिए नौसेना दुश्मन की पनडुब्बी को तबाह कर सकती है। प्रेडेटर ड्रोन के जरिए लॉन्ग रेंज इंटेलिजेंस गैदरिंग की जा सकती है, सवलान हो सकता है, हवाई हमलों को रोकने में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। आपदा के समय राहत कार्यों में भी प्रेडेटर ड्रोन काफी काम आते हैं। साल 2020 में भारतीय नौसेना को अमेरिका की तरफ से 2 MQ-9BC गार्जियन ड्रोन लीज पर मिले थे और जरूरत के मुताबिक इसकी लीज को थोड़ा और आगे बढ़ा दिया गया। पानी की सतह के ऊपर और अंदर दोनों ही जगहों की निगरानी या फिर छानबीन के लिए प्रेडेटर ड्रोन एक बेहतर विकल्प है। इसमें 80 से ज्यादा जी साइज के सोनोबॉय लगाए गए हैं। सोनोबॉय वो डिवाइस है जो कि रेडियो सिग्नल के जरिए पानी के भीतर हो रही आवाजों को डिटेक्ट करता है। इसे गहरे पानी में छिपी पनडुब्बियों को प्रेडेटर आसानी से ढूंढ लेता है और मिसाइल से उन्हें अटैक कर सकता है। प्रेडेटर ड्रोन एक बार उड़ान भरने के बाद 1900 किलोमीटर एरिया की निगरानी कर सकता है और इसकी मदद से LAC से लेकर LOC तक दुश्मन पर नजर रखी जा सकती है। वहीं समुद्री निगरानी में भी प्रेडेटर काफी मददगार साबित होता है। MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन में लगे 360 डिग्री कैमरे से समंदर से लेकर आसमान और फिर जमीन तक पर निगरानी रखी जा सकती है। हिंद महासागर इलाके में PLA युद्धपोतों समेत चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियों पर पैनी नजर रखने के लिए MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन बेहद कारगर साबित होंगे। क्षेत्र में मेरी यानी नवजोत रंधावा के साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: इस बार क्या है चंद्र ग्रहण की स्थिति, चंद्र ग्रहण का देश दुनिया पर कैसा पड़ेगा प्रभाव, चंद्र ग्रहण अलग अलग राशियों पर कैसे डालेगा असर, जानिए मेरे साथ उप छाया चंद्र ग्रहण के बारे में सिर्फ गुड लक स्पेशल में।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
5: सावन की रिमझिम फुहारों के बीच सदियों की प्रतीक्षा के बाद अयोध्या के श्रीराम मंदिर में अद्भुत अलौकिक आयोजन हो रहा है। यहां मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामलला अपने भव्य भवन में दिव्य झूलनोत्सव मना रहे हैं। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं रामलला के दरबार में और दिखाते हैं झूलनोत्सव की शानदार छटा।

0: लगता है जैसे अयोध्या में त्रेता युग जीवंत हो उठा है। भव्य श्री राम मंदिर में रामलला झूलनोत्सव मना रहे हैं। देखिए इन तस्वीरों को। गर्भगृह में विशेष रूप से तैयार किए गए सोने चांदी के भव्य झूले पर रामलला विराजमान है। झूलनोत्सव के लिए प्रभु को विशेष रेशमी और जरी के वस्त्र पहनाए गए हैं। भजन कीर्तन के बीच यहाँ का माहौल श्रद्धा और भक्ति से सराबोर नजर आ रहा है। अब एक बार फिर से यहाँ पर सावन का ये उत्सव त्रेता युग की याद दिला रहा है, जब पूरी अयोध्या आनंद में डूबी रहती थी। श्री राम मंदिर परिसर में रामलला का ऐतिहासिक झूलनोत्सव इस बार 15 अगस्त को श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को शुरू हुआ। संत महात्माओं की पावन उपस्थिति में भगवान श्री राम की उत्सव मूर्ति को भाइयों के साथ विधि विधान पूर्वक झूले पर विराजमान कराया गया। इस दौरान मंदिर परिसर में भक्ति परंपरा और आध्यात्मिक उल्लास का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। ये उत्सव रामलला के प्रति भक्ति की भावना से प्रेरित है। सावन की उमस और गर्मी से राहत देने के लिए भक्त भगवान को फूलों और चंदन से सजे ठंडे झूले पर बिठाकर धीरे धीरे झूला झुलाते हैं, ताकि उन्हें सुख मिल सके। आराध्य को छोटे बच्चे के रूप में देखते हैं और हिंडोले पर बिठाकर पंखा चलते हुए उन्हें झूला झुलाते हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ओर से झूला उत्सव का खास वीडियो जारी किया गया है। श्री राम मंदिर में झूलनोत्सव का ये दृश्य श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। दरमियान यहां मंदिर परिसर में संत महात्माओं की मौजूदगी में लगातार धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं, जो अयोध्या की इस युगों पुरानी आध्यात्मिक परंपरा को और भव्यता प्रदान कर रहे हैं। खास बात ये है कि 12 दिनों के झूलनोत्सव के दौरान हर दिन शाम को रामलला को पालकी में बिठाकर कुबेर टीला ले जाया जाता है और वहाँ उनके दर्शन की विशेष व्यवस्था रहती है। केवल राम जन्मभूमि ही नहीं बल्कि पूरी अयोध्या इस समय उत्सव के रंग में सराबोर है। सरयू के तट से लेकर कनक भवन तक और तमाम मंदिरों में भी हर तरफ इन दिनों उत्सव का माहौल है। सावन शुक्ल तृतीया से शुरू हुआ ये झूलनोत्सव पूर्णिमा तक इसी तरह पूरी भव्यता के साथ जारी रहेगा। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: और अब बात करते हैं जन्माष्टमी की। जन्माष्टमी का त्यौहार 4 सितंबर को मनाया जाएगा। इस शुभ अवसर पर दिल्ली में मटकी फोड़ लीग का आयोजन होगा। मटकी फोड़ लीग में 26 गोविंदा टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला होगा और एमपीएल का ये दूसरा साल है और एक कार्यक्रम में आधिकारिक एंथम सॉन्ग और मस्कट मटकू लॉन्च किया गया है।

0: बार फिर आएंगे कान्हा। मटकी फोड़ेंगे कृष्ण मुरारी गिरधारी, नंद गोपाल मुरलीधर कुंज बिहारी, गोवर्धन धारी गोविंदा बाके बिहारी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर खूब जमेगा रंग। जब दिल्ली के कोने कोने से आई गोविंदाओं की टोलियां ऊंचे ऊंचे मानव पिरामिड बनाएगी, दही हांडी की मटकी फोड़ने के लिए एक बार फिर अपना दमखम दिखाने के लिए जुटेंगी, जोश और उत्साह चरम पर होगा। जब राजधानी दिल्ली में मटकी फोड़ ली यानी एमपीएस सीजन 2 का भव्य आयोजन होगा। माखन की मटकी फोड़ने की सदियों पुरानी परंपरा शानदार खेल प्रतियोगिता के रूप में जीवंत होगी। राजधानी में पिछले 23 वर्षों से आयोजित हो रहे श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की परंपरा को इस वर्ष एमपीएल के साथ और अधिक भव्य और आकर्षक स्वरूप देने की तैयारी की गई है। इसी सिलसिले में अब एमपीएल का अपना एंथम और मैस्कॉट मटकू भी लॉन्च कर दिया गया है।
1: हमारे हिंदुस्तान में ऐसा कोई खेल नहीं है जिसमें 40 से 50 लोग एक साथ एक टीम के रूप में खेलें। तो हमारा ये मटकी फोड़ जो खेल है, गोविंदाला ये मटकी फोड़ जो खेल है, ये ऐसा खेल है जिसमें 40 से 50 लोग एक साथ टीम के रूप में पैरामिड बनाते हैं और मटकियों को फोड़ने का जो प्रभु लीला का प्रदर्शन है वो करते हैं। तो हम इस बार इसको बड़े स्केल पे बड़े लेवल पे लेके जा रहे हैं।
0: दिल्ली में इस बार मटकी फोड़ लीग यानी एमपीएस सीजन 2 का आयोजन 3 और 4 सितंबर को किया जाएगा। पूर्वी दिल्ली के यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एमपीएल में शामिल गोविंदा टीमों के बीच मुकाबला होगा। इसमें इस बार 26 गोविंदा टीमें भाग ले रही हैं, जिनमें से 10 टीमें लड़कियों की हैं। टीमों ने इसके लिए पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी है।
2: 2 महीने से लगभग ट्रेनिंग कर रहे हैं ये लोग और सबसे बड़ी बात ये है कि इस लीला को अब एक स्पोर्ट्स के रूप में देखना शुरू कर दिया गया है। लगभग दिल्ली में आप खुश होंगे ये जानकर के कि इस लीला के माध्यम से जो ये स्पोर्ट्स बन गया है, अब लगभग 1000 से ज्यादा बच्चे आज हमारे स्पोर्ट्स से जुड़ गए हैं। जो स्पोर्ट्स से नहीं थे वो एथलीट्स बनने जा रहे हैं।
0: आपको बता दें कि दिल्ली से पहले मुंबई में प्रो गोविंदा लीग सीजन 4 होने जा रहा है। 25 से 27 अगस्त 2026 तक वर्ली के स्टेडियम में प्रो गोविंदा लीग में मुंबई सहित महाराष्ट्र के दूसरे इलाकों से आए गोविंदाओं की टीमें मटकियां फोड़ने के लिए जोर आजमाइश करेंगी। इस दौरान विजेता टीमों को लाखों रुपए के पुरस्कार भी दिए जाएंगे। महाराष्ट्र सरकार ने पारंपरिक दही हांडी उत्सव को एडवेंचर स्पोर्ट्स का दर्जा दिया है। इसी के बाद से इसे प्रोफेशनल खेल के रूप में बढ़ावा देने के लिए प्रो गोविंदा लीग की शुरुआत की गई और अब महाराष्ट्र के बाद दिल्ली में भी इसे बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिए जाने की कोशिश हो रही है, ताकि किशोरों और युवाओं को अपनी संस्कृति और परंपराओं से जोड़ा जा सके और साथ ही साथ इनमें टीम भावना, अनुशासन, साहस, नेतृत्व, शारीरिक क्षमता और आपसी सहयोग की भावना को मजबूत किया जा सके। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
3: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
4: सास बहू और बेटियां में आज देखिए टेलीविजन की दुनिया में एंटरटेनमेंट के ढेर सारे रंग। दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथ पेस्ट कम्प्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
8: नेशनल स्पेस डे पर पीएम मोदी का देश के स्पेस स्टार्टअप्स और उनके सीईओस के साथ खास संवाद, इनोवेशन और युवाओं की भूमिका पर की चर्चा। रक्षाबंधन पर पर्यावरण संरक्षण का संदेश, गाय के गोबर से बनाई जा रही राखी और अन्य सजावटी सामान, गया के बाजारों में जमकर हो रही है राखी की खरीदारी। जन्माष्टमी को लेकर स्कोन मंदिरों में तैयारियां हुई तेज, दिल्ली के स्कोन मंदिर में कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर खास तैयारियां। बनासकांठा के बादलगढ़ गांव में 1 सितंबर से पान मसाला गुटखा और शराब की बिक्री पर लगा बैन, कानून उल्लंघन पर लगेगा जुर्माना। बारिश की तेज फुहारों के साथ हुई दिल्ली NCR में दिन की शुरुआत, मौसम हुआ सुहाना, उमस और तापमान में कमी, आज राजधानी में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। चाइना के ह्यूमनॉइड रोबोट तियानजू ने तोड़ा उसेन बोल्ट का रिकॉर्ड, 9.39 सेकंड में पूरी की 100 मीटर की दौड़।
9: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे चंद्र ग्रहण के बारे में, और ये चंद्र ग्रहण बहुत विशेष है क्योंकि ये पड़ रहा है श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को, यानी रक्षाबंधन के पावन अवसर पर। क्या है इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव, कौन से नियम, कौन सी सावधानियां रहेंगी, और इस चंद्र ग्रहण का अलग अलग राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, आज इस विषय पर बात करेंगे। तो आपको बताएंगे कि अलग अलग राशियां अगले 15 दिनों तक, अगले 1 महीने तक किन चीजों से हो करके गुजरेंगी और चंद्र ग्रहण के साथ उनको कौन सा उपाय करना चाहिए। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं सप्ताह का मंत्र। सप्ताह का मंत्र है ओम रोहिणीशः सुधा मूर्तिः सुधा गात्रः सुधाशन। ओम रोहिणीशः सुधा मूर्तिः सुधा गात्रः सुधाशन। विषम स्थान संभूताम पीड़ाम हरतु मे विधु। विषम स्थान संभूताम पीड़ाम हरतु मे विधु। देखिए ये चंद्र की पीड़ा को दूर करने वाला मंत्र है। अगर चंद्रमा की स्थिति आपकी कुंडली में बेहतर नहीं है और चंद्रमा की निगेटिव स्थिति की वजह से आपको दिक्कतें हो रही हैं, आपको समस्या हो रही है, तो रोज शाम को 108 बार मोती की माला से या रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का जप करिए। चंद्रमा संबंधी

हम आज बात कर रहे हैं चंद्र ग्रहण के बारे में। इस बार चंद्र ग्रहण की स्थिति क्या है, चंद्र ग्रहण का पूरा मामला क्या है। देखिए, ये जो चंद्र ग्रहण है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये विशिष्ट चंद्र ग्रहण नहीं है। ये विशिष्ट चंद्र ग्रहण ना होकर एक उपछाया चंद्र ग्रहण है, मालिन्य चंद्र ग्रहण है। इसकी शुरुआत 28 अगस्त को हो रही है और भारतीय समय के अनुसार ये 28 अगस्त को सुबह 6:53 पर आरंभ होगा और इसका समापन पूरी तरह से 28 अगस्त को दोपहर 12:31 पर होगा। अगर ज्योतिष के हिसाब से हम समझें तो ये उपछाया ग्रहण कुंभ राशि और शतभिषा नक्षत्र में लगेगा। शतभिषा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है और कुंभ राशि शनि की राशि है, यानी इस उपछाया

कि ये उपछाया ग्रहण है, और दूसरी बात ये है कि ये भारत वर्ष में दृश्य नहीं होगा, उपछाया ग्रहण भी है और भारत में दिखाई नहीं देगा। तो देखिए, ग्रहण बहुत प्रकार के होते हैं, पूर्ण ग्रहण, आंशिक ग्रहण, खग्रास, खंडग्रास, लेकिन ये वास्तव में एग्जैक्ट ग्रहण नहीं है। इसमें चंद्र के ऊपर पृथ्वी की हल्की सी छाया पड़ेगी, इसीलिए इसको मालिन्य चंद्र ग्रहण या उपछाया चंद्र ग्रहण कहा जाता है। देखिए, ग्रहण आपके देश में दिखे या ना दिखे, लेकिन ग्रहण में चूंकि चंद्रमा प्रभावित हो रहा है, इसीलिए हम सब के ऊपर और देश दुनिया पर इस ग्रहण का प्रभाव पड़ेगा। देश दुनिया पर कैसा प्रभाव पड़ेगा? भारत के सीमावर्ती देश जो हैं, वहां से समस्या बढ़ सकती है, खास तौर से पाकिस्तान की तरफ से, अफगानिस्तान के साइड से दिक्कतें अचानक आ सकती हैं, दिक्कतें बढ़ सकती हैं। प्राकृतिक आपदाओं की संभावना भी बन रही है, समुद्र तटीय इलाकों में वर्षा की वजह से आपदाएं आ सकती हैं, पहाड़ों पर आपदाएं आ सकती हैं, और भूकंप जैसी नौबत भी आती हुई दिखाई दे रही है। वायु तत्व की राशि का ग्रहण है ये, इसीलिए वायुयान दुर्घटना और अग्नि से आपदा हो सकती है, वायुयान दुर्घटना और अग्नि से सावधान रहना होगा। जो महिला राजनीतिज्ञ हैं, उनको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान देना होगा, जो महिला राजनेताएं हैं या जो महिलाएं उच्च पदों पर हैं, उनको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। देखिए, कुंभ राशि, राहु का इन्वॉल्वमेंट, शनि की राशि में ग्रहण का होना जनता के मन में आक्रोश बढ़ाएगा, इसीलिए लगातार आंदोलन पूरे देश में अलग अलग मुद्दों को लेकर इस समय बढ़ेंगे। इस समय आंदोलनों को रोक पाना थोड़ा कठिन होगा। देखिए, जब भी कोई ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण लगे या चंद्र ग्रहण लगे, उस ग्रहण के साथ बहुत सारे नियमों का पालन किया जाता है, ताकि ग्रहण का दुष्प्रभाव आपके ऊपर ना पड़े। इस चंद्र ग्रहण में किस तरह के नियमों का पालन करना होगा? देखिए, ये सामान्य चंद्र ग्रहण नहीं है। सामान्य चंद्र ग्रहण में बहुत सारे नियम और बहुत सारी सावधानियों का पालन करना होता है। ये उपछाया ग्रहण है, जिसमें ग्रहण जैसा आभास होता है। उपछाया ग्रहण अगर भारत में दिखाई देता तो भी इसका ग्रहण जैसा मूल्य नहीं होता, इसमें केवल ग्रहण जैसा आभास होता है। और जब उपछाया ग्रहण हो, चाहे दिखाई दे चाहे दिखाई ना दे, उसमें किसी तरह के नियम लागू नहीं होंगे। उपछाया ग्रहण दिखेगा तब भी कोई नियम लागू नहीं होगा। आप अपनी सामान्य दिनचर्या

0: क्या जी सकते हैं। कोई भी सूतक का नियम लागू नहीं होगा, मंदिरों के पट बंद नहीं होंगे, खान पान सोने और जगने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। आप अपना सामान्य जीवन जी सकते हैं भोजन विश्राम पूजा करने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, उपछाया ग्रहण में कोई प्रतिबंध नहीं होता। गर्भवती महिलाओं को किसी तरह के चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। जब ग्रहण लगता है तो सबसे ज्यादा गर्भवती महिलाएं परेशान होती हैं कि ग्रहण का प्रभाव उनकी संतान के ऊपर या उनके गर्भ के ऊपर बुरा ना पड़े। लेकिन ये उपछाया ग्रहण है, गर्भवती महिलाओं को भी किसी नियम या किसी सावधानी का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। तो ग्रहण में कोई सूतक नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई सावधानी नहीं है, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन जब ग्रहण चलेगा उस समय में क्या करें कि हमें इस ग्रहण से फायदा हो, हमें इस ग्रहण से लाभ हो। ग्रहण काल में जिस समय ग्रहण होता है उस समय में मंत्र का जप करना, स्तुति करना और ध्यान करना विशेष लाभदायक होता है। अगर आप ग्रहण काल में मंत्र जपें, स्तुति करें, ध्यान करें तो आपको बहुत फायदा होगा। और ग्रहण दिखाई दे या न दिखाई दे, ग्रहण के समय में अगर आप पूजा प्रार्थना करते हैं तो आपकी पूजा प्रार्थना निश्चित रूप से स्वीकार होती है। अगर आप कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं या दीक्षा लेना चाहते हैं तो ये भी ग्रहण में करना बहुत शुभ होता है। ग्रहण काल में मंत्र जप करना, मंत्र सिद्ध करना, किसी गुरु से दीक्षा लेना आपके लिए कल्याणकारी होगा। ग्रहण के बाद स्नान करके किसी निर्धन व्यक्ति को कुछ न कुछ दान करना चाहिए। ऐसा करने से ग्रहण का दुष्प्रभाव आपके लिए कम होगा। तो ग्रहण भले ही आपके देश में भारत में दिखाई ना दे, लेकिन जो ग्रहण का समय हमने आपको बताया उस समय में आप भगवान के नाम का स्मरण करिएगा, भगवान के नाम का मंत्र जप करिएगा और ग्रहण समाप्त हो जाने के बाद किसी निर्धन व्यक्ति को चंद्रमा की वस्तुओं का दान करिएगा, ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचे रहेंगे। तो ग्रहण की मुख्य बातें तो हमने आपको बताई, अब आपको बताते हैं कि इस चंद्र ग्रहण का आपकी राशियों पर, आपके जीवन पर अगले 15 दिन से एक महीने तक कैसा प्रभाव पड़ेगा या कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। और ग्रहण के साथ आप अपनी राशि के अनुसार कौन सा उपाय करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए चंद्र ग्रहण बहुत ही अनुकूल है और मेष वाले अगर प्रयास कर रहे हैं या अगर प्रयास करेंगे तो उनको करियर में कोई बड़ा अवसर इस समय मिल सकता है, करियर में कोई बड़ी सफलता मिल सकती है। मेष वालों के स्थान परिवर्तन के योग भी बन रहे हैं, अगर प्रयास करेंगे कोशिश करेंगे तो आपका चेंज ऑफ प्लेस होगा, आपका स्थान परिवर्तन होगा जो कुल मिलाकर आपके लिए लाभकारी होगा। देखिए मेष वाले सिर्फ इतना ध्यान रखें कि अगले 15 दिन से एक महीने के अंदर यात्राओं में सावधानी रखेंगे, यात्राओं के मामले में किसी तरह की लापरवाही नहीं करेंगे और करियर के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, करियर में जो परिवर्तन की कोशिश कर रहे हैं, इस समय मेष वालों को उस रास्ते पर फायदा हो सकता है। जब 28 अगस्त को दोपहर में ग्रहण समाप्त हो जाएगा उसके बाद शिव जी के मंदिर जाइएगा और शिव जी को जल अर्पित कर दीजिएगा। अगर आप ग्रहण के बाद शिव जी को जल अर्पित करते हैं तो ग्रहण के परिणाम आपके लिए बहुत शुभ होंगे और ग्रहण से आपको लाभ होगा और करियर के लिए जो कोशिश करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। वृषभ राशि, चंद्र ग्रहण का प्रभाव वृषभ वालों पर कैसा दिखाई दे रहा है? वृषभ वालों के तमाम रुके हुए काम इस समय पूरे होंगे। अगर वृषभ वाले कोशिश करें बड़े से बड़ी समस्या इस समय सुलझ जाएगी। अगर कोई वाद विवाद है, कोई झगड़ा झंझट है, कोई मुकदमा है तो उससे भी वृषभ वालों को छुटकारा मिलेगा, काम में सफलता मिलेगी, पुरानी समस्याएं आपकी हल होंगी। करियर आपका बेहतर चल रहा है, करियर में आपको लापरवाही करने की जरूरत नहीं है और अभी करियर में किसी तरह का कोई जोखिम कोई रिस्क इस समय मत लीजिएगा। आराम से काम चलने दीजिए और अपने महत्वपूर्ण काम इस समय अगर आप निपटाएं तो आपको लाभ होगा। इस 15 दिन से एक महीने के समय में आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए, आप अपने कार्यों में सफलता पाएंगे। ग्रहण के बाद शिव जी को जल अर्पित करिएगा। 28 अगस्त को दोपहर में ग्रहण समाप्त होगा, इसके बाद एक लोटा जल शिव जी को चढ़ा दीजिएगा। ऐसा करने से ग्रहण के शुभ प्रभाव आपको ज्यादा मिलेंगे। मिथुन राशि, चंद्र ग्रहण का प्रभाव आपके लिए बेहतर नहीं है। मिथुन राशि के लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान दें, बेवजह की मुकदमेबाजी बेवजह का वाद विवाद आपके जीवन में आ सकता है, तो स्वास्थ्य मुकदमेबाजी और वाद विवाद का ध्यान रखें। संतान को लेकर आपकी चिंताएं बढ़ सकती हैं, संतान के करियर और उसके स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी समस्या आपके लिए दिखाई दे रही है, तो संतान पक्ष को आपके समस्या हो सकती है, थोड़ा सा आपको सावधान रहना चाहिए और इस समय अपनी संतान से बात करिए, उसकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करिए। यात्राओं के मामले में विशेष सावधानी बनाए रखें। अगर बहुत मजबूरी ना हो तो लंबी यात्राओं से बचाव करिएगा, यात्राओं में आपको दिक्कतें हो सकती हैं। तो मिथुन वालों के लिए अगला 15 दिन एक महीने का समय अच्छा नहीं है। अपने स्वास्थ्य का, अपने पारिवारिक जीवन का बहुत ध्यान दीजिएगा। ग्रहण समाप्त हो जाने के बाद अगर आप दूध का दान करें, 28 अगस्त को दोपहर में ग्रहण समाप्त होगा, उसके बाद किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप दूध का दान कर दें तो चंद्र ग्रहण की मुश्किलें आपको परेशान नहीं करेंगी। कर्क राशि। कर्क राशि के अष्टम भाव में ग्रहण है। कर्क के लिए ग्रहण ज्यादा निगेटिव दिखाई दे रहा है, इसलिए कर्क वालों को अपने करियर में काफी मेहनत करनी पड़ेगी। आप अपनी नौकरी और व्यापार को लेकर के सतर्क हो जाइए। इस समय करियर में लापरवाही मत करिए, वरना करियर में आपको दिक्कतें हो सकती हैं। स्वास्थ्य की समस्याओं से और आकस्मिक दुर्घटनाओं से बचिएगा। सेहत आपकी बिगड़ सकती है और बेवजह चोट चपेट या दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं, इसको लेकर के सावधानी बनाए रखें। अपने स्वास्थ्य के अलावा अपनी माता के, पत्नी के, बेटी के, बहन के, यानी माता और स्त्री पक्ष के स्वास्थ्य का ध्यान कर्क वालों को बनाए रखना होगा। कर्क वालों के लिए सारा मामला अगले एक महीने तक स्वास्थ्य के मामले में अच्छा नहीं है और साथ ही साथ काम का प्रेशर उतना ही पालिएगा जितना आप हैंडल कर सकें। ग्रहण जब समाप्त हो जाता है 28 अगस्त को दोपहर में, तो ग्रहण के बाद किसी निर्धन व्यक्ति को चीनी का दान करिएगा। कोई भी क्वांटिटी, कोई भी मात्रा हो सकती है। अगर आप ग्रहण के बाद चीनी का दान कर देंगे तो समस्याओं से बचे रहेंगे। वैसे मैं फिर से कर्क वालों को बता दूं कि आपके लिए स्वयं भी और आपके परिवार में भी स्वास्थ्य का मामला ज्यादा निगेटिव दिखाई दे रहा है। सिंह राशि। चंद्र ग्रहण का प्रभाव आपकी भी सेहत बिगाड़ सकता है। स्वास्थ्य में अचानक समस्या आपको हो सकती है और स्वास्थ्य में विशेषतः अपने डाइजेशन का, हड्डियों का, हड्डियों के फ्रैक्चर का ध्यान रखिएगा। एकदम से सेहत आपकी बिगड़ सकती है। करियर के मामले में कोई रिस्क मत लीजिएगा, करियर के मामले में कोई लापरवाही मत करिएगा, क्योंकि करियर में आपके समस्या आ सकती है और अगर लापरवाही करेंगे और नौकरी वाले आदमी हैं तो नौकरी जा सकती है। सिंह राशि के लोग अपने पारिवारिक जीवन का बहुत ध्यान रखें। वैवाहिक जीवन में दिक्कत आने की संभावना बन रही है, लेकिन सिंह वालों को सबसे ज्यादा सतर्क रहना होगा अपनी नौकरी और अपने करियर के मामले में, क्योंकि वहां पर ज्यादा दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। ग्रहण के बाद अगर आप चावल का दान कर दें किसी निर्धन व्यक्ति को 28 अगस्त को दोपहर में, ग्रहण के बाद अगर चावल का दान करें तो आपके लिए बेहतर होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य की समस्या का ध्यान रखें, चोट चपेट ना लगे, दुर्घटना ना हो, उससे भी कन्या वालों को बचना चाहिए। हालांकि कन्या वालों के लिए मामला उतना गंभीर नहीं है, लेकिन लापरवाही मत करिएगा, सेहत में कान नाक गले का थोड़ा ध्यान रखिएगा। लिखा पढ़ी के काम में सावधानी रखिए, आप जो भी लिखा पढ़ी करते हैं उसमें थोड़ा अलर्ट रहिए, पेपर देने में, लेने में, पैसे रुपए के लेन देन में थोड़ी सतर्कता बनाए रखें। और रिश्तों के मामले में, परिवार के मामले में, पारिवारिक रिश्तों के मामले में आपको अपयश मिल सकता है, बेवजह की बदनामी मिल सकती है, उसका ध्यान बनाए रखना आपके लिए जरूरी है। कन्या वालों के लिए ग्रहण इतना नकारात्मक नहीं है, लेकिन कन्या वालों को छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर आप लापरवाही करेंगे तो ये छोटी बातें बड़े तौर से आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। ग्रहण के बाद अगर आप दूध का दान कर दें तो बहुत हद तक ग्रहण की मुश्किलों से और ग्रहण के दुष्प्रभाव से बच सकेंगे। तुला राशि, चंद्र ग्रहण का प्रभाव अचानक पैसे का नुकसान करवा सकता है, अचानक धन की हानि करवा सकता है, इसलिए धन हानि से बचें, पैसे का नुकसान ना हो जाए, इस बात को लेके सावधान रहें। और तुला वाले भी आकस्मिक दुर्घटनाओं से बचें तो उनके लिए बेहतर होगा, बेवजह की चोट लग सकती है और आपके डाइजेशन में, आपके पेट में दिक्कतें आ सकती हैं। तुला वाले अपने करियर का बहुत ध्यान रखेंगे, करियर के मामले में कोई लापरवाही ना करें, और अगर नौकरी करते हैं तो उसमें गड़बड़ी मत करिएगा, वरना आपकी नौकरी जा सकती है। तुला वाले अपने खान पान को लेके सतर्क रहें और अपनी नौकरी के मामले में कोई लापरवाही ना करें। ग्रहण के बाद यानी 28 अगस्त को दोपहर के बाद किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप चीनी का दान कर दें तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, पारिवारिक जीवन में मुश्किलें आ सकती हैं, खास तौर से माता पिता के साथ, पति पत्नी के आपसी संबंधों में दिक्कतें आ सकती हैं, बेवजह के विवाद हो सकते हैं, बेवजह का तनाव आपका बढ़ सकता है, धन और संपत्ति का नुकसान इस समय हो सकता है, पैसे के मामले में, प्रॉपर्टी खरीदने बेचने में, पैसा लगाने में इस एक महीने तक शांति रखें, वरना पैसा आपका बेवजह डूबेगा, धन और संपत्ति का नुकसान आपको हो सकता है। वैवाहिक मामलों में और रिश्तों में समस्या हो सकती है, मित्रों के साथ दोस्ती यारी में रिश्ते टूट सकते हैं, इस बात को लेके वृश्चिक वाले सतर्क रहें। ग्रहण जब समाप्त होता है 28 अगस्त को दोपहर में, तो ग्रहण के बाद आपको दूध का दान करना चाहिए, ऐसा करने से चंद्र ग्रहण का दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। और वृश्चिक वाले सबसे ज्यादा ध्यान दें अपने रिश्तों के मामले में, अपने संबंधों के मामले में, क्योंकि उनके पुराने संबंध, उनके नजदीकी रिश्ते इस समय टूट सकते हैं, जो उनके लिए बेहतर नहीं होगा। धनु राशि, चंद्र ग्रहण का प्रभाव अच्छा दिखाई दे रहा है और चंद्र ग्रहण आपको एकदम से सडनली फायदा पहुंचा सकता है। जो चली आ रही रुकावटें हैं आपके काम में, आपके करियर में, आपकी चली आ रही रुकावटें इस समय दूर होंगी। खास तौर से अगर करियर का कोई काम रुका हुआ है, करियर की कोई बात रुकी हुई है, तो उसमें आपको सफलता की संभावना बन रही है। धन संबंधी समस्याओं में आपके सुधार होता दिख रहा है, रुका हुआ पैसा मिलेगा। बहुत समय से जो डूबा हुआ फंसा हुआ पैसा था वो इस समय आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। धनु राशि की चीजें बेहतर होंगी, करियर और पैसे के मामले में फायदा होगा और अगर धनु वाले कोशिश करें तो उनके तमाम रुके हुए काम इस समय पूरे होंगे। लेकिन धनु राशि के लोग अपने भाई और बहन के साथ अपने संबंधों का ध्यान रखेंगे, क्योंकि भाई बहन के साथ रिश्तों को लेकर के दिक्कतें हो सकती हैं या आपके भाई या आपकी बहन की सेहत इस समय बिगड़ सकती है। तो धनु वालों के लिए अगला एक महीना बहुत अच्छा है, अगर बुद्धिमानी से चलेंगे तो चंद्र ग्रहण का पूरा फायदा उठा पाएंगे। ग्रहण के बाद शिव मंदिर चले जाइएगा 28 अगस्त को दोपहर के बाद, एक लोटा जल शिव जी को चढ़ा के प्रार्थना करिएगा, ग्रहण के परिणाम आपके लिए शुभ होंगे। मकर राशि, सेहत को लेके बहुत सतर्क रहें, कान नाक गला और आंखों को लेकर, कान नाक और गले को लेकर आपकी सेहत में दिक्कतें हो सकती हैं, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान मकर राशि वाले इस समय बनाए रखें। नौकरी या व्यापार जैसा चल रहा है वैसा चलने दें, करियर में किसी तरह का कोई रिस्क कोई जोखिम ना लें। और अगर कोई बड़ा निर्णय लेना है कि चेंज ऑफ प्लेस करेंगे, नई प्रॉपर्टी खरीदेंगे, नई जगह पे जाएंगे, कोई बड़ा निर्णय अगर इस समय लेना चाहते हैं तो बड़े निर्णय लेने में इस समय आप जल्दबाजी मत करिएगा, आपका निर्णय इस समय गलत हो सकता है। और करियर के मामले में जरा भी जोखिम मत लीजिएगा वरना आप मुसीबत में पड़ेंगे। ग्रहण जब समाप्त हो जाए 28 अगस्त को दोपहर में, तो ग्रहण के बाद चावल का दान किसी निर्धन व्यक्ति को कर दीजिएगा, निश्चित रूप से ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचेंगे। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि इस ग्रहण का प्रभाव आपकी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य में लापरवाही ना करें, जो आपके रिश्ते नाते हैं, जो आपके संबंध हैं, उनको लेकर सतर्क रहें। और महत्वपूर्ण काम जो करियर का है, जीवन का है, उसको टालिए नहीं। अगर महत्वपूर्ण काम टालेंगे, लापरवाही करेंगे, तो सारे के सारे बड़े काम आपके रुक जाएंगे। कुंभ वालों को सतर्क रहने की जरूरत है अपने स्वास्थ्य के मामले में, और रिश्ते न टूटें, क्रोध या विवाद में कोई झंझट ना हो जाए, इसका ध्यान रखिएगा। ग्रहण के बाद 28 अगस्त को दोपहर के बाद किसी निर्धन व्यक्ति को दूध का दान कर दीजिएगा। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो चंद्र ग्रहण से मुश्किलें आपको परेशान नहीं करेंगी। मीन राशि, चंद्र ग्रहण का प्रभाव आपके मन पर असर डाल रहा है, आपकी मानसिक चिंताएं बढ़ सकती हैं, आपकी टेंशन बढ़ सकती है, आपकी तनाव की स्थिति ज़्यादा दिखाई दे रही है, बेवजह की चिंता और तनाव की नौबत बन रही है। मीन राशि वालों का इस समय चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है, इस समय स्थान परिवर्तन हो सकता है, ये संभावना भी मीन वालों के लिए फिलहाल दिखाई दे रही है। मीन वाले इमोशनली मेंटली अपने आप को ठीक रखें, वरना भावनात्मक रूप से समस्या होगी। और इस समय जल्दीबाजी में दौड़ भाग कर काम मत करिएगा, इस समय दुर्घटनाओं को लेकर सावधान रहें। ग्रहण के बाद अगर चीनी का दान कर दें, ग्रहण समाप्त होने के बाद किसी निर्धन व्यक्ति को थोड़ी सी चीनी का दान कर दीजिएगा, ग्रहण का दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। तो ये जो चंद्र ग्रहण है ये 28 अगस्त को लग रहा है और 28 अगस्त को पूरी देश दुनिया में रक्षाबंधन का पर्व भी मनाया जाएगा। देखिए, रक्षाबंधन के पर्व में ग्रहण का विचार नहीं किया जाता, केवल भद्रा का विचार किया जाता है। और इस बार 28 अगस्त को भद्रा प्रातः काल ही खत्म हो जाएगी 4:30-5 बजे के आसपास, तो दिन भर कोई भी भद्रा नहीं रहेगी। तो आप दिन में शाम को जब भी चाहें रक्षाबंधन का पर्व मना सकते हैं। और ग्रहण का रक्षाबंधन से कोई लेना देना नहीं है, तो ग्रहण दिखाई दे दिखाई ना दे उसका रक्षाबंधन के मनाने से कोई संबंध नहीं है। हालांकि ये उपछाया ग्रहण है और भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए किसी तरह के तनाव चिंता में पड़ने की जरूरत नहीं है। इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा का कोई प्रभाव नहीं है, आप सुबह से शाम तक रक्षाबंधन का पर्व मना सकते हैं। और ग्रहण को लेकर के रक्षाबंधन के पर्व में कोई रुकावट करने की, कोई पूजा करने की, कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है। तो गुड लक स्पेशल में आज के लिए बस इतना ही। आपका आने वाला सप्ताह शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
1: सास बहू और बेटिया में आज देखिए टेलीविजन की दुनिया में एंटरटेनमेंट के ढेर सारे रंग। दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
3: नेशनल स्पेस डे के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के स्पेस स्टार्टअप्स और उनके सीईओस के साथ खास संवाद किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने भारत के बढ़ते स्पेस सेक्टर इनोवेशन और युवाओं की भूमिका पर चर्चा की। पीएम ने कहा कि भारत का स्पेस सेक्टर अब सिर्फ सरकारी संस्थानों तक सीमित नहीं है, बल्कि प्राइवेट कंपनियां और युवा स्टार्टअप्स भी भारत की अंतरिक्ष यात्रा को नई रफ्तार दे रहे हैं। इस संवाद में स्पेस स्टार्टअप्स के सीईओस ने अपने इनोवेशन, भविष्य की योजनाओं और अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की संभावनाओं को प्रधानमंत्री के सामने रखा। प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप से कहा कि नई सोच, तकनीक और आत्मविश्वास के साथ भारत को स्पेस सेक्टर में नई ऊंचाइयों तक ले जाना है। सरकार की कोशिश है कि देश में ऐसा इकोसिस्टम तैयार हो जहां युवा सिर्फ स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ना करें, बल्कि दुनिया के लिए नई तकनीक भी तैयार करें।
4: चलिए आपके लिए ताकि एक याद बनी रहे कि आपकी ओपनिंग जो आपने ओपन किया था प्राइवेट सेक्टर, उससे जो प्राइवेट सैटेलाइट है उससे भारत की ब्यूटी जो दिख रही है। चलिए आपके लिए ताकि एक याद बनी रहे कि आपकी ओपनिंग जो आपने ओपन किया था प्राइवेट सेक्टर, उससे जो प्राइवेट सैटेलाइट है उससे भारत की ब्यूटी जो दिख रही है।
5: एक नए क्षेत्र में साहस दिखाया है, सबसे बड़ी बात है कि आपने सरकार की बात पे भरोसा किया। मेरा एक मत रहा कि जो भी हम निर्णय करें हम उसमें कंसिस्टेंट रहे, हम बार बार उसमें बदलाव न करें, ताकि कोई भी रिस्क लेना चाहता है तो उसको भरोसा रहे कि भाई ठीक है मेरी गलती के कारण कुछ गड़बड़ होगा तो ठीक है, लेकिन कोई मेरा हाथ नहीं छोड़ देगा, और ये विश्वास पैदा करने का हमारा प्रयास है।
3: और चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको बता दें रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर बाजारों में रौनक छाई हुई है। रंग बिरंगी राखियों से बाजार सजे हुए हैं और बड़ी संख्या में बहनें अपने भाइयों के लिए राखी की खरीदारी करती हुई दिख रही हैं। बाजारों में खरीदारों की भीड़ से कारोबारियों के चेहरे भी खिले हुए हैं। 28 अगस्त को भाई बहन के पवित्र रिश्ते का पर्व है, देश भर में धूमधाम से इसे मनाया जाएगा, लेकिन उससे पहले बाजारों की रौनक देखते ही बन रही है। इस साल बाजारों में इको फ्रेंडली राखी की भी खूब धूम नजर आ रही है। आपको बता दें गाय के गोबर से न सिर्फ एक से बढ़कर एक रंग बिरंगी राखी बनाई जा रही है, बल्कि घर के अन्य सजावट का सामान भी बनाया जा रहा है और खरीदारों को भी बाजार की ये पहल खूब पसंद आ रही है। लोग जमकर इको फ्रेंडली राखी खरीद रहे हैं और पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दे रहे हैं।
6: मेरे लिए तो मेरे भाई और सब कुछ है, वो लाइक दे आर ऑलवेज रेडी टू प्रोटेक्ट मी, तो जब भी राखी आती है तो एक बहुत ही स्पेशल मोमेंट बन जाता है कि भाई और बहन का रिश्ता तो होता ही इतना अच्छा है कि वो उसके जैसा कोई रिश्ता हो ही नहीं सकता। सबसे पवित्र रिश्ता होता है बहन भाई का, और ये साल बाद ही त्योहार आता है। मैं तो यही कहूंगी सभी बहनें आए, राखी खरीदें, अच्छे से अपने भाई को खुश करें और आप भी खुश होए, अच्छी अच्छी राखियां खरीदें, क्योंकि ये फेस्टिवल एक साल के बाद ही आता है और ये सबसे पवित्र एक रिश्ते का मतलब की फेस्टिवल है।
3: पूर्वी उत्तर प्रदेश और खासकर गोरखपुर को नई सौगात मिलने जा रही है। आपको बता दें लखनऊ और अहमदाबाद की तर्ज पर वहां भी अब रिवर फ्रंट विकसित करने की तैयारी है। ये रिवर फ्रंट राप्ती नदी के किनारे विकसित किया जाएगा। देखिए रिपोर्ट।
7: कल बहती राप्ती नदी का और उनके किनारों का ये मनमोहक नजारा बेहद आकर्षक है। नदी किनारे बने घाटों पर बैठकर सुकून के कुछ पल गुजारने का अपना ही मजा है। अब इस इलाके को और भी आकर्षक बनाने की तैयारी हो रही है। गोरखपुर में राप्ती नदी के तट का अब कायाकल्प होने जा रहा है। लखनऊ के गोमती और अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर राप्ती नदी के किनारे शानदार रिवर फ्रंट विकसित करने की योजना बनाई जा रही है। इसे अब साकार करने की दिशा में काम शुरू हो रहा है।
8: इसी योजना के क्रम में जो है एक प्रारंभिक जो है रिपोर्ट जो संबंधित वेंडर था उनके द्वारा जो है प्रस्तुत की गई है। क्योंकि ये प्रारंभिक रिपोर्ट है तो उसमें इन्होंने कुछ चीजें जो मेंशन करी हैं, जिसमें इसमें पार्क भी है, इसमें ग्रीन स्पेसेस भी हैं, इसमें पब्लिक के लिए भी कन्वेंशन सेंटर लेकर ये रिवर फ्रंट की बात यहाँ पर चल रही है।
7: राप्ती रिवर फ्रंट के प्रोजेक्ट की डीपीआर तैयार हो चुकी है। इस पर करीब 1,303 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसके तहत गोरखपुर के राजघाट से डोमिनीगढ़ तक राप्ती नदी के करीब 3.5 किलोमीटर लंबे तट को रिवर फ्रंट के रूप में विकसित किया जाएगा। इसमें नदी के तट से हर्बर्ट बांध पर बनी 4-लेन सड़क की ओर करीब 150 मीटर चौड़ाई में विकास कार्य कराया जाएगा, ताकि आम लोग इसका पूरा लाभ उठा सके।
8: जब आप नदी के किनारे विभिन्न आयामों में आप वहाँ पे टूरिज्म की तमाम गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं, जैसे चाहे वो बोटिंग हो, चाहे वो घाट पे बैठना हो, चाहे वो आसपास पार्क में सुबह की सैर करना हो, शाम की सैर करना हो, या कोई भी कॉलेज का इवेंट हो, कोई कल्चरल इवेंट हो, कोई पारिवारिक इवेंट हो, तो वो भी रिवर फ्रंट पे एक जैसे कहते हैं कि एक लाइवली माहौल वहाँ पर एक कल्चरल एक संध्या के रूप में आप देखें, सुबह भी आप टहलने वहाँ जा सकें और बच्चों के साथ भी वहाँ और परिवार का समय व्यतीत कर सकें, इस तरह की पूरी परिकल्पना जो है इस रिवर फ्रंट पर की जाती है।
7: राप्ती रिवर फ्रंट के पूरे प्रोजेक्ट को 3 चरणों में पूरा करने की योजना है। सड़क तक विकसित किए जाने वाले हिस्से को ग्रीन बेल्ट के रूप में विकसित किया जाएगा। साथ ही यहां पर अर्बन हॉट, योग सेंटर और कन्वेंशन सेंटर जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इसके अलावा जगह जगह बोटिंग की सुविधा देने की भी तैयारी है। माना जा रहा है कि परियोजना पूरी होने के बाद राप्ती नदी का ये इलाका गोरखपुर के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल हो सकता है। गोरखपुर से गजेंद्र त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: और चलिए अब आपको दिखाते हैं चीन में रोशनी के उत्सव की शानदार तस्वीरें। दक्षिण पश्चिम चीन के चोंगकिंग के फुलिंग जिले में पहला फ्लावर सी लैंटर्न फेस्टिवल मनाया गया। इस दौरान यहां पर जगह जगह पर 68 एसी आकृतियां लगाई गई, जिसने पूरा इलाका जगमगा दिया। खासतौर से सीढ़ीदार फूलों के खेतों, झील के किनारे और जंगल के रास्तों पर रोशन इन आकृतियों से बेहद शानदार और खूबसूरत नजारा दिखा। यह फेस्टिवल इलाके की खास पहचान और इसके हजारों साल पुराने इतिहास को इस तरह की सजावट के जरिए पेश करता है। और खास बात यह है कि इसके लिए किसी मशीन का इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि 100 से ज्यादा कारीगरों ने इन्हें पूरी तरह से हाथ से बनाया है। इन आकृतियों को बनाने में पारंपरिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जो सिचुआन की अनोखी सांस्कृतिक विरासत है। इस लाइट डिस्प्ले में पत्थर की मछली, अलग अलग दौर के विद्वानों के शिलालेख और पानी से जुड़ी नक्काशी के पैटर्न को दिखाया गया है। हांगकांग का आसमान मशहूर क्विक्सी फेस्टिवल के मौके पर ड्रोन की रोशनी से जगमगा उठा। इस फेस्टिवल में 2000 ड्रोन्स ने विक्टोरिया हार्बर के ऊपर चीनी लोक कथा की खूबसूरत तस्वीरें पेश की। ड्रोन से आसमान में मैगपाई ब्रिज की आकृति बनाई गई। ये वही पुल है जो चीनी लोक कथा के न्यूलांग और वीवर गर्ल को साल में एक बार मिलता है। इसके अलावा ड्रोन से प्यार में डूबे जोड़ों और खिलते हुए विशाल गुलाबों की आकृतियां भी बनाई गई। आसमान में बदलती इन तस्वीरों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। क्विक्सी फेस्टिवल चीनी चंद्र कैलेंडर के सातवें महीने के सातवें दिन मनाया जाता है। करीब 2000 साल पुरानी ये प्रेम कहानी आज भी लोगों को आकर्षित करती है। पारंपरिक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आयोजित इस ड्रोन शो ने सदियों पुरानी कहानी को आधुनिक अंदाज में पेश किया। आसमान पर बनी रंग बिरंगी आकृतियां दर्शकों के लिए यादगार अनुभव बन गई।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
9: सास बहू और बेटियां में आज देखिए टेलीविजन की दुनिया में एंटरटेनमेंट के ढेर सारे रंग। दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
7: नेशनल स्पेस डे पर पीएम मोदी का देश के स्पेस स्टार्टअप्स और उनके सीईओस के साथ खास संवाद, इनोवेशन और युवाओं की भूमिका पर चर्चा की। रक्षाबंधन पर पर्यावरण संरक्षण का संदेश, गाय के गोबर से बनाई जा रही राखी और अन्य सजावटी सामान, गया के बाजारों में जमकर हो रही है राखी की खरीदारी। मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में काली घटा आयोजन, मंदिर में दिखा सावन का मनमोहक नजारा, ठाकुर जी के दर्शन कर गदगद नजर आए भक्त। जन्माष्टमी को लेकर इस्कॉन मंदिरों में तैयारियां तेज, दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर खास तैयारी। बनासकांठा के गांव में 1 सितंबर से पान मसाला, गुटखा और शराब की बिक्री पर लगा बैन, कानूनी उल्लंघन पर लगेगा जुर्माना। चाइना की ह्यूमनॉइड रोबोट तियानजो ने तोड़ा उसेन बोल्ट का रिकॉर्ड, 9.39 सेकंड में पूरी की 100 मीटर की दौड़।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
7: देश आज मना रहा है चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक सफलता की तीसरी वर्षगांठ, 23 अगस्त 2023 को भारत ने चांद के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में की थी सफल सॉफ्ट लैंडिंग। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी, बड़े सपने देखने और नई ऊंचाइयों को छूने का आह्वान दिया। अमित शाह ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। चंद्रयान 3 की सफलता और इसरो के वैज्ञानिकों की सराहना की। राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर शुभकामनाएं दी। चंद्रयान से गगनयान तक भारत की अंतरिक्ष यात्रा की सराहना की। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के मौके पर इसरो ने लोगों से की जश्न में जुड़ने की अपील। देश की अंतरिक्ष उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने पर जोर। नेशनल स्पेस डे पर पीएम मोदी ने स्पेस स्टार्टअप्स के सीईओ फाउंडर्स से बात की, भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की। पीएम मोदी ने रॉकेट सैटेलाइट से लेकर एआई तक की चर्चा की। स्पेस टेक्नोलॉजी और नए इनोवेशन को लेकर भी हुई बात। मुलाकात के दौरान 20 स्पेस स्टार्टअप्स के सीईओ और फाउंडर्स मौजूद रहे। पीएम मोदी ने स्पेस से जुड़ी तकनीक को भी समझा। पीएम मोदी ने भारत के स्पेस सेक्टर में काम कर रहे स्टार्टअप्स की तारीफ की। सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, भारत के सबसे प्रतिभाशाली स्पेस स्टार्टअप्स से मुलाकात की। अहमदाबाद में नेशनल स्पेस डे को लेकर समारोह का आयोजन हुआ। इसरो की यात्रा को लेकर वीडियो जारी किया गया। दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश में स्थित इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी की तैयारियां शुरू हुई। 4 सितंबर को मंदिर में मनाया जाएगा भगवान कृष्ण का भव्य जन्मोत्सव। जन्माष्टमी से पहले रंग बिरंगी लाइटों से सजाया जा रहा है इस्कॉन मंदिर परिसर में। सजावट और रंग रोगन का काम जारी। जन्माष्टमी को लेकर मंदिर परिसर में लगाए जा रहे हैं रंग बिरंगे टेंट। बड़े संख्या में भक्तों के पहुंचने को देखते हुए की जा रही है तैयारी। जन्माष्टमी के मौके पर लाखों भक्त भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए पहुंचते हैं इस्कॉन मंदिर। करीब 2 महीने पहले से शुरू कर दी जाती हैं तैयारियां। इस्कॉन मंदिर में इस बार भी जन्माष्टमी पर होगा भव्य आयोजन। मंदिर को सजाने और श्रद्धालुओं के स्वागत की तैयारियां तेज। हिमाचल प्रदेश के मंदिरों में दान को लेकर बने रिकॉर्ड। 36 मंदिरों में 1 जनवरी 2024 से 1 अगस्त 2026 तक करीब 420 करोड़ रुपए का चढ़ावा। सबसे ज्यादा चढ़ावा हमीरपुर के बाबा बालकनाथ देवता सिद्ध मंदिर में आया। यहां 99 करोड़ रुपए से ज्यादा का चढ़ावा मिला। बिलासपुर के नैना देवी मंदिर में 86 करोड़ रुपए से ज्यादा मिला चढ़ावा। माता चिंतपूर्णी मंदिर में 85 करोड़ रुपए से ज्यादा भक्तों ने किए दान। हरिद्वार में हर की पौड़ी में दिखा आस्था का अनोखा संगम। मुल्तान समाज के लोगों ने मां गंगा के साथ खेली दूध की होली। मुल्तान समाज की ओर से लोगों को रंगा गया, स्वच्छता का दिया गया संदेश। एक दूसरे को गुलाल लगाकर सबके कल्याण के लिए प्रार्थना की। देशभर में रक्षाबंधन को लेकर बाजारों में छाई रौनक। राखी से लेकर गिफ्ट की दुकानों में बिक्री बढ़ी। सूरत के स्पेशल स्कूल में बच्चे तैयार कर रहे हैं खास राखी। लोगों को आ रही है काफी पसंद। स्पेशल बच्चों को स्कूल के टीचर दे रहे हैं राखी बनाने का प्रशिक्षण। बच्चे अपने मन के डिजाइन से राखी तैयार करते हैं। गया में रंग बिरंगी राखियों से सज गया बाजार। बहनें अपने भाइयों के लिए खरीद रही हैं पसंदीदा राखियां। पाली में पर्यावरण की रक्षा के लिए गोबर से बनी राखियों की बढ़ी डिमांड। उपहार के लिए आकर्षक गहने भी तैयार किए गए। रक्षाबंधन को लेकर करनाल के बाजारों में छाई रौनक। बहनें अपने भाइयों के लिए जमकर खरीद रही हैं राखियां। मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में काली घटा का आयोजन। मंदिर में दिखा सावन का मनमोहक नजारा। ठाकुर द्वारकाधीश महाराज को काली घटा में कराया गया विराजमान। मंदिर परिसर को काले वस्त्रों, आकर्षक रोशनी और फूलों से सजाया गया। काले बादलों की गड़गड़ाहट, चिड़ियों की चहचहाट और बिजली की घनघोर आवाजों से बनाया गया बारिश का माहौल। ठाकुर जी के दर्शन कर श्रद्धालु हुए भाव विभोर। ठाकुर जी को बाहर के मौसम का एहसास कराने के लिए किया जाता है यह आयोजन। विशेष आयोजनों को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल है। लखनऊ में स्वतंत्रता सेनानी गुलाब सिंह लोधी के शहादत दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम योगी ने अर्पित की श्रद्धांजलि। लखनऊ में मिड डे मील रसोइयों का सम्मान समारोह का आयोजन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी शिरकत की। वाराणसी में जापानी प्रतिनिधिमंडल ने काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचकर भगवान शिव के किए दर्शन, पूजन, पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। तमिलनाडु के वेल्लोर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुई दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, छात्रों को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। हरियाणा में नारनौल लॉजिस्टिक हब में रेल कनेक्टिविटी शुरू हुई, सीएम नायब सिंह सैनी ने पहली मालगाड़ी को दिखाई हरी झंडी। झमाझम बारिश के साथ हुई दिल्ली एनसीआर के दिन की शुरुआत, वीके धुआ कूल कूल। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में रेनी संडे का लुत्फ उठाने के लिए निकले लोग, रिमझिम बारिश के बीच लिया मौसम का लुत्फ। दिल्ली एनसीआर में बारिश के चलते लोगों को उमस से भी मिली राहत, तापमान में दर्ज की गई कमी। दिल्ली एनसीआर में अगले दो दिनों तक बने रहेंगे बारिश के आसार, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। गाजियाबाद से लेकर गुरुग्राम तक मौसम ने अचानक करवट ली, काले बादलों के साथ हुई मूसलाधार बारिश। देश के कई हिस्सों में मॉनसून सक्रिय, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा और चंडीगढ़ में बारिश का अलर्ट। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश जारी, बांदा में भीषण बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ, सड़कें बनी तालाब। उत्तराखंड के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ जारी रहेगा बारिश का दौर, पौड़ी, नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली और उत्तरकाशी के लिए अलर्ट। देवभूमि उत्तराखंड में फिर बदला मौसम का मिजाज, देहरादून में देर रात हुई झमाझम बारिश। बिहार के दानापुर दियारा में बढ़ा गंगा नदी का जलस्तर, नाव से नदी पार करने वाले लोगों को सुरक्षा की चिंता। बेगूसराय में लगातार बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर, सड़कों पर बह रहा है 2 फीट तक का पानी। प्रयागराज में गंगा और यमुना के जलस्तर बढ़ना जारी, कई घाट डूबे, निचले इलाकों में बढ़ा बाढ़ का खतरा। हापुड़ में गंगा से सटे ग्रामीण इलाकों में बाढ़ के हालात, जिला अधिकारी ने प्रभावित इलाकों में बंटवाई राहत सामग्री। यूपी के मुरादाबाद में लगातार बारिश का दौर जारी, कई इलाकों में हुआ जलभराव। श्रीनगर में बारिश के बाद मौसम सुहाना हुआ, पर्यटक जमकर उठा रहे हैं मौसम का लुत्फ। राजस्थान की राजधानी जयपुर में मिलावटखोरों पर प्रशासन का शिकंजा, संदिग्ध मूंगफली तेल का 6,900 लीटर स्टॉक सीज किया गया। खाद्य सुरक्षा विभाग ने प्रदेश भर में 60 जगहों पर मारे छापे, कार्रवाई के दौरान लिए गए 101 खाद्य नमूने। उदयपुर में 600 लीटर नकली दूध किया गया नष्ट, कई जिलों में बासी मिठाई, मावा, घी और तेल पर भी कार्रवाई हुई। जालना के वाघाड़ी गांव में आजादी के बाद पहली बार शुरू हुई नियमित बस सेवा, उच्च शिक्षा के लिए बेटियों का सफर आसान होगा।

0: आर्ट थेरेपी का आयोजन किया गया। मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने भी शिरकत की। आर्ट थेरेपी वर्कशॉप में मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने भारत माता की बनाई पेंटिंग। लोगों ने प्रकृति से लेकर सपनों से जुड़े आर्ट बनाए। फिट इंडिया मिशन के तहत विशाखापट्टनम में साइकिल इवेंट का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। विशाखापट्टनम साइकिल इवेंट में मंत्री मनसुख मांडविया भी शामिल हुए। लोगों को गुड हेल्थ के लिए जागरूक किया। पंजाब यूथ रन के तहत मॉडल टाउन मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। 5 किलोमीटर की दौड़ प्रतियोगिता में सैकड़ों बच्चे, महिलाओं और युवाओं ने हिस्सा लिया। इस साल नवंबर के महीने में पीएम मोदी कर सकते हैं दरभंगा एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन। निर्माण कार्य ने पकड़ी रफ्तार। दरभंगा एयरपोर्ट से जल्द शुरू होगी रात्रि विमान सेवा। फिलहाल यहां से सिर्फ दिन में उड़ानों का हो रहा है संचालन।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: सास बहू और बेटिया में आज देखिए टेलीविजन की दुनिया में एंटरटेनमेंट के ढेर सारे रंग। 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आ रही है।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

सभी भाइयों और बहनों को बाबा रविगिरी का स्नेहिल आशीर्वाद। तो भाइयों और बहनों, मेरा नाम बाबा रविगिरी है, मैं 78 साल का हूं और पिछले 50 वर्षों से सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हूं, प्राकृतिक शुद्ध और गारंटेड इलाज देना। मैंने जीवन के पूरे 78 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से

0: रोगों का इलाज करना। आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं, और उसका नाम क्या है? बवासीर। अरे भाई और बहनों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर का रोग है। और जैसे सिर में दर्द होता है, वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है। और सबसे ज़्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है, न पैसा देखता है, न पद या ओहदा देखता है। बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन, दर्द, खून आना, बैठ भी ना पाए, मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए। और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा, ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो। मैंने जड़ी बूटियों को परखा, हजारों नुस्खे आजमाए और फिर तैयार की एक ऐसी औषधि जो आज मैं गर्व से कहता हूँ गारंटी से बवासीर को ठीक करती है। तो भाइयों और बहनों, आपने पाइल्स के बहुत सारे इलाज कराए होंगे, कई दवाइयाँ खाई होंगी, लेकिन आपकी बवासीर ठीक नहीं हुई होगी। मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूँ कि आपकी पुरानी से पुरानी पाइल्स ठीक होगी, और ये मेरी गारंटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर, एक हफ्ते में आराम और 21 दिन में बीमारी जड़ से खत्म, ना ऑपरेशन ना साइड इफेक्ट। मैंने ये दवा उन्हीं जड़ी बूटियों से बनाई है जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने आजमाया था, और आज देश भर से लोग फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा जी, आपने तो हमें एक नया जीवन दान दे दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, इलाज चाहिए तो आयुर्वेद अपनाओ, और अगर गारंटी इलाज चाहिए तो मेरे 50 वर्षों के अनुभव लो, नहीं फायदा हुआ तो पैसे वापिस, इतना भरोसा है मुझे अपने इलाज पर। तो भाई और बहनों, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि बवासीर क्या होती है और क्यों होती है। बवासीर क्या है? हमारे मल द्वार या एनस जिसको बोलते हैं, एनस के अंदर या फिर बाहर छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल होती है जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर, और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है, जलन, दर्द और खुजली होती है तो वो कहलाती है बादी बवासीर। अब सवाल आता है कि ये होती क्यों है? तो सुनिए, इसके मुख्य कारण है कब्ज। अगर पेट साफ नहीं होता, मल सख्त आता है और रोज जोर लगाना पड़ता है तो धीरे धीरे नसें फूल जाती है। दूसरा, लंबे समय तक बैठना। जो लोग घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस में गाड़ी चलाते हुए या फिर मोबाइल पर, तो उनमें रक्त संचार घटता है और नसों पर दबाव पड़ता है। तीसरा कारण है तीखा और भारी खाना खाना। बहुत ज्यादा लोग क्या होते हैं कि मिर्ची मसाले, तली चीजें और कम पानी, ये शरीर को गर्म करते हैं और अंदर जलन पैदा करते हैं। चौथा कारण होता है वंशानुगत कारण, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर आपके घर में माता पिता को बवासीर रही है तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको भी हो सकती है। यह रोग सिर्फ शरीर को नहीं, इंसान की आत्मा तक को थका देता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसका आहार संतुलित नहीं है, उसका कुछ भी संतुलित नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही सभी रोगों की जड़ का मुख्य कारण है। फिर जीवन शैली और पाइल्स यानी बवासीर तो मुख्य रूप से आहार से संबंधित है। आहार और विचार दोनों आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार से अभिप्राय है, जीवन शैली से है, पर लोगों की इसी अनियमितता को देखते हुए मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया है बवासीर यानी पाइल्स के लिए। बवासीर के मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, कई तो दो तीन बार ऑपरेशन करवा चुके होते हैं फिर भी कोई आराम नहीं होता। वो इतनी आस लेकर आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बवासीर का मेरे पास एक बहुत ही कारगर फार्मूला है जो मैंने अब कुडोस आयुर्वेदा से बनवाया है। बवासीर एक बहुत ही कॉमन आम समस्या बन गई है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पाइल्स होने के चांसेस भी एक व्यक्ति में बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और एक बात याद रखो, तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे गुस्सा आना, काम का तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब पेट को खराब करते हैं और पेट की गड़बड़ी बवासीर को बुलाती है। मैंने देखा है लोग बवासीर से पीड़ित होते हैं पर डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं। औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती, और फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है, रोग को समझो, शरीर की पुकार सुनो और जीवन शैली सुधारो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए नुस्खे अपनाओ और बवासीर को जड़ से खत्म करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको जल्दी आराम मिलेगा, ये कोई मामूली। लेकिन उससे पहले इसका सही पहचानना जरूरी है। अगर ये लक्षण आपको दिखें, खून आना, सूजन होना, खुजली या जलन, मांस का टुकड़ा सा बाहर निकल आना, तो समझ लीजिए ये बवासीर की दस्तक है और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा रविगिरी हूं ना, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनसे बवासीर जड़ से ठीक हो जाती है। पर पहले रोग को जानो, स्वीकार करो, फिर उपचार करो। ये लाइलाज नहीं है और आयुर्वेद में इसका स्थायी समाधान है। मैंने खुद देखा है हजारों लोगों को इससे मुक्ति पाते हुए। तो भाइयों और बहनों, यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। हर रोग का है समाधान जब हो मन में विश्वास का ध्यान। आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाइयों और बहनों, मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पाइल्स की दिक्कतों को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूं। अगर मेरे बताए गए नुस्खे अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल, चित्रक, छव्य, सूर्णकंद, अपामार्ग, अमलतास और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हरड़ के फायदे। ये हरड़ है, औषधीय गुणों से भरपूर है। हरड़ के आयुर्वेद में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन, प्रोटीन, जीवाणु रोधी, एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये हरड़। बवासीर की बीमारी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हुई है। जीरा जो छोंक में यूज करते हैं, ये वही जीरा है। ये कब्ज हो चाहे बवासीर हो, इन सब में बहुत कारगर है। बवासीर का असली कारण खाना अच्छी तरह से न पचना और कब्ज का हो जाना होता है। जीरा लीवर से एंजाइम्स बनाकर खाने को पचवाता है, अपच को दूर करता है और सख्त लेटिन को मुलायम करता है। अगला है काली मिर्च, जो पाचन क्रिया को मजबूत करती है। इसके बाद में है पीपली मूल, ये आंतों में अगर कीड़े हैं तो उनको खत्म करता है, आंतों में सूजन को खत्म करता है। इसके बाद में है चित्रक, चित्रक की रेचिन प्रकृति मानी गई है, यह एक नेचुरल लेग्जेटिव है जो लेटिन को धक्का मारता है, आंतों में पड़ा नहीं रहने देता, रेचन करने वाला है। इसके बाद में है सूरनकंद, यह है सूरनकंद, ये एक प्रोबायोटिक है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। और ये है अपामार्ग, क्षार सूत्र की असली जड़ी बूटी है ये, इसमें सूजन घटाने वाले तत्व है जो बवासीर के मसों को शरीर से काट देते हैं। इसके बाद में है ये अमलतास, अमलतास पर बड़े शोध हुए हैं बड़ी बड़ी लेब में, और पता चला है कि इसमें प्रस्तुत है एंथ्राक्विनोनेज जो बवासीर पर काम करता है, पाचन शक्ति को मजबूत और जड़ पर काम करती है और बवासीर को जड़ से खत्म कर देती है। इसके बाद में है लज्जालू, लज्जालू पर जनरल ऑफ आयुर्वेद ने बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई भी डिग्री का बवासीर हो सब पर ये काम करता है। इसके बाद में है कचनार, कचनार की छाल काम दिया करती है, ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी, ये वातनाशक है, वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है मसों में, ये निर्गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन को घटाता है और मसों का नाश कर देता है। आखिर में यह है इंद्रायन, यह है इंद्रायन की जड़, इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स, बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड, ये सारे गुण इसमें होते हैं जो बवासीर में आराम देते हैं। तो ये जितनी भी मैंने जड़ी बूटियां आप देख रहे हो मैंने बताई है, ये सब मिलाकर मैंने बवासीर के लिए एक नुस्खा तैयार किया है और मैंने हजारों लोगों को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई है, बिना ऑपरेशन, बिना किसी साइड इफेक्ट, सिर्फ शुद्ध और आयुर्वेदिक नुस्खों से। मेरे बताए नुस्खे अपनाओ, रोज नियम से इन्हें निभाओ, बवासीर को जड़ से मिटाओ, फिर लौट के कभी ना आए वो दर्द पुराना। और हाँ, खान पान में संयम जरूर रखिए, मिर्च मसाले कम, पानी ज्यादा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपने मेरे बताए हुए नुस्खे नियम से अपनाए तो बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। तो अब ऑपरेशन नहीं, अपनाओ रविगिरी के नुस्खे और कहो बवासीर तुझे जड़ से अलविदा। अब देर मत करो, मुझे तुरंत संपर्क करो और ये आयुर्वेदिक दवाई मंगवाओ ताकि बवासीर को हमेशा के लिए अलविदा कह सको। अब मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
3: नेशनल स्पेस डे पर पीएम मोदी का देश के स्पेस स्टार्टअप्स और उनके सीईओ के साथ खास संवाद, इनोवेशन और युवाओं की भूमिका पर चर्चा की। रक्षाबंधन पर पर्यावरण संरक्षण का संदेश, गाय के गोबर से बनाई जा रही राखी और अन्य सजावटी सामान, गया के बाजारों में जमकर हो रही है राखी की खरीददारी। मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में काली घटा आयोजन, मंदिर में दिखा सावन का मनमोहक नजारा, ठाकुर जी के दर्शन कर गदगद नजर आए भक्त। जन्माष्टमी को लेकर स्कॉन मंदिरों में तैयारियां हुई तेज, जिले के स्कॉन मंदिर में कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर खास तैयारियां। बनासकांठा के बादरगढ़ गांव में 1 सितंबर से पान मसाला गुटखा और शराब की बिक्री पर लगा बैन, कानून उल्लंघन पर लगेगा जुर्माना। चाइना की ह्यूमनॉइड रोबोट तियानजोंग ने तोड़ा उसेन बोल्ट का रिकॉर्ड, 9.39 सेकंड में पूरी की 100 मीटर की दौड़।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की
4: तो दोस्तों मैं हूँ चिंकी भाभी और आप देख रहे हैं सास बहू और बेटियां, जहां आपको मिलता है सीरियल, ओटीटी और एंटरटेनमेंट की दुनिया का हर मसाला। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर, और सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। सास बहू और बेटियां की एंटरटेनमेंट से भरी गुड न्यूज में आज देखिए, अरमान को याद आएंगी अपनी बहनें, घर पर मनाया जाएगा रक्षाबंधन का त्योहार।

0: फिर एक बार मियाँ बीवी में होंगी गलत फहमियाँ, गुरु और रूहानी के बीच फिर छिड़ेगी नई जंग।
1: तुम्हारे हाथ सब झूठ है, सब धोखा है। अरे मैं जैसे पीछे काले गाना करके चले चौधरी बाहुबली हो तो तुम जैसा।
0: राधिका और वीर शुरू करेंगे अपना नया संसार। प्रथम की तबीयत, बुरा होगा राध्या का हाल।

0: खतरों से खेलते नजर आएंगे आपके फेवरेट कलाकार।
1: कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, बहुत बढ़िया।
0: और होगी पुष्पा इम्पॉसिबल के चिराग यानी कि नितिन बाबू से खास मुलाकात सिर्फ और सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
2: नितू

0: सीरियल इश्क जुनूनी में गुरु अपनी बीवी रूहानी और पापा नागेश्वर के बीच फंसा हुआ है। एक तरफ बीवी का प्यार है तो दूसरी तरफ पापा की जिद। अब ऐसे में गुरु क्या करता है, चलिए देखते हैं।
1: हम अपने वादा तोड़े नहीं हैं।
2: अरे बस, तब भी झूठ कहा था और अब भी झूठ कह रहे हो तुम। तुम्हारे हाथ सब झूठ है, सब धोखा है।
3: गुरु से नाराज हुई रूहानी।
2: अरे मैं जैसे ही पीछे काले गाना लगाकर चले आए। वाह वाह गुरु चौधरी, बाहुबली हो तो तुम जैसा।
3: टूटा रूहानी का दिल।
1: हेलो
4: गुरु, गुरु मम्मी, मम्मी बेहोश हो गई। उन्होंने दी वाला पाउडर दूध में मिला के पिया था, तब से उठी नहीं रही है।
3: गुरु की नई मुश्किल। दंगल टीवी के सीरियल इश्क जुनूनी में जैसे ही रूहानी को पता चला कि गुरु ने अपने पापा की बात मानते हुए बंदूकों की तस्करी की है, तब से रूहानी गुरु से नाराज है और उसे धोखा महसूस हो रहा है। तभी तो देखिए कैसे वो गुरु को ले आई है गोडाउन में और जता रही है गुरु पर अपनी नाराजगी।
2: क्या है? जब तुमने मुझसे क्या कहा था? पापा जी को भ्रम नहीं बनेगी हम बहू, लेकिन मैंने तब भी विश्वास कर लिया। लेकिन अब पता चला कि बहुत बड़ी गलती कर ली, क्योंकि तुम्हारा हर वादा, हर इरादा सब कुछ झूठ था।
1: हम झूठ नहीं कहेंगे, हम कोई धोखेबाजी नहीं करेंगे। तुमने जो वादा किए थे उसे निभाए, हम अपना वादा तोड़े नहीं हैं।
2: अरे बस, तब भी झूठ कहा था और अब भी झूठ कह रहे हो तुम। तुम्हारे वादे, हर कसम सब झूठ है, सब धोखा है। शुरू से लेकर अब तक सिर्फ तुम झूठ कह रहे हो। सच तो ये है जो मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ।
1: ये हमारा सच नहीं है कंपाउंड, हम पिस्टल तक नहीं उठाए, हम कोई बंदूक नहीं चला।
3: अब गुरु ने भले ही अपने पापा का कहा माना है, लेकिन उसने रूहानी को किया वादा तोड़ा नहीं है। और वही बात वो रूहानी को बार बार बता रहा है कि उसने बंदूक को हाथ तक नहीं लगाया, लेकिन रूहानी ये मानने के लिए तैयार नहीं है। उसका तो आज दिल टूट गया है।
2: जब तुमने पूरा दिल मेरे साथ बिताने का फैसला लिया तो मुझे लगा कि तुम यहाँ पे हथियार पहुँचाने नहीं आओगे, प्यार के रास्ते पर चलो, बाहुबली नहीं बनो। पर तुमने क्यों किया? मुझे मुझे धोखा दिया। अरे मैं जैसे ही सोई पीठ पीछे काले गाना लगाकर चले आए। वाह वाह गुरु चौधरी, बाहुबली हो तो तुम जैसा। मुझे सब समझ आती है, तो अंकल जी की जबरदस्ती से खुद की मर्जी से बाहुबली का काम कर रहे हैं। खुद को बाहुबली बोलो या ना बोलो क्या फर्क पड़ता है? हाँ, लेकिन एक बात सुन, मैं सब कुछ हार गई गुरु।
1: देखो हमारी बात,
2: अरे कुछ नहीं सुना है मुझे।
1: हमारी बात तो सुनो,

0: sono admirato con Paolo, vai con me.
1: Hello?
2: Guru, मम्मी बेहोश हो गई है। उन्होंने दी वाला पाउडर दूध में मिला के दिया था, तब से उठ ही नहीं रही है। मैंने कितनी कोशिश की, उनके हाथ पर ठंडे पड़ गए। प्लीज गुरु कुछ करो।
1: निकी तुम पहले रोना बंद करो, हम अभी आ रहे हैं। हाँ, तुम रोना बंद करो, आ रहे हैं।
3: भाई रूहा ने तो गुरु को छोड़कर वहाँ से चली गई, लेकिन गुरु अब उसकी नई परेशानी सामने आ गई है और वो है रूहानी की माँ जिनकी तबीयत बिगड़ गई है। अब देखना होगा क्या रूहानी को ये पता चल पाएगा कि गुरु ही उसकी माँ का रक्षक है। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
4: प्रथम और राध्या की जिंदगी में कोई ना कोई परेशानी आती रहती है और हर परेशानी का राध्या करती है डटकर सामना। तो चलिए देखते हैं फिलहाल किस परेशानी का सामना कर रही है राध्या।

0: की बढ़ती मुश्किलें।
1: ये देख यही उम्र है कर ले, गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले।
0: कभी सर दर्द से परेशान तो कभी पेट खराब से,
1: यही उम्र है कर ले, गलती से मिस्टेक बेटा।
0: राध्या के नुस्खे ने बजाई प्रथम की बैंड।

0: टीवी के सीरियल मन अति सुंदर में भैयाज प्रथम का सर दर्द से फटा जा रहा है। ऐसे में उसने राध्या से मांग ली दवाई, लेकिन भाई राध्या को आज क्या सूझा कि उसने दवाई के बदले प्रथम को काढ़े की एडवाइस दे दी। लेकिन भाई राध्या को क्या पता था कि ये काढ़ा प्रथम की सिट्टी पिट्टी गुल कर देगा। जी हाँ, क्योंकि इस काढ़े ने प्रथम के सर दर्द को तो गायब नहीं किया, लेकिन पेट खराब जरूर कर दिया। यानी कि एक मुसीबत पर एक मुसीबत फ्री। जी हाँ, जो अब तक सर दर्द से परेशान था भाई, अब वो पेट खराब होने के चलते बार बार लगातार वॉशरूम जाकर थक हार गया है। ऐसे में देखिए कैसे भाई राध्या भी उसकी चिंता को देखकर काफी परेशान हो रही है।
1: Thank you.

0: anyways, मैं जल्दी दिल्ली जाऊंगा।
1: छुट्टी हो।

0: अरे सेफ्टी बच गई।
1: ऐसे में आखिरकार लास्ट में राध्या को प्रथम की बात माननी ही पड़ी और उसने उसे थमा दी टैबलेट और अब प्रथम आराम कर रहा है। भाई राध्या को तो बड़ा अफसोस हो रहा है कि उसने किस तरीके से प्रथम की मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। लेकिन भाई आपको बता दे कि इन सब के पीछे राध्या का नहीं बल्कि दादी का हाथ है। दादी चाहती थी कि राध्या इस काढ़े को पीकर अपने पेट को खराब कर ले और उसके बाद वो कोई भी खाना नहीं खाए, जिसके चलते उसका वजन तेजी से घटने लगेगा। लेकिन भाई दादी को कौन समझाए, भाई एक दिन के पेट खराब होने में किसी का भी वजन कम नहीं होता।
2: दरअसल प्रथम के सर में बहुत दर्द हो रहा है तो प्रथम बोलते हैं कि दवाई दे दो, तो राध्या का कहना है कि हर चीज़ के लिए दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है, काढ़ा पी लो, काढ़े से ठीक हो जाता है। तो वो जाती हैं काढ़ा बनाने के लिए, लेकिन वहाँ पे पहले से ही काढ़ा बना रखा होता है, रजनी का बनाया हुआ काढ़ा रहता है। पर उससे पहले दादी भी एक काढ़ा बना के गई तो दो ग्लासेस रखे हैं और उसमें से कन्फ्यूजन हो जाता है, तो राध्या दादी वाला लेके चली जाती हैं। तो दादी ने काढ़ा बनाया कि राध्या का पेट खराब हो जाए, उनको लूज मोशन स्टार्ट हो जाएंगे, तो राध्या कुछ खाएगी नहीं तो वेट गेन कैसे होगा। बेसिकली उनकी फ्रेंड्स ने उनको बोल दिया है तो दादी को ऐसा लग रहा है कि जल्द से जल्द वेट लॉस हो जाए। तो अब बाजी आई थिंक दादी की पलट गई है, उनके पोते को ही हार्म हो गया, उसने काढ़ा पी लिया है, वो बार बार बाथरूम के चक्कर लगा रहा है, उसकी इतनी तबीयत खराब हो गई है। तो राध्या बड़ी परेशान है उसको लेके कि कैसे प्रथम ठीक हो जाए या फिर काढ़े में ऐसा क्या था आउट ऑफ सडन जिसकी वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई, क्योंकि माँ को भी काढ़ा बनाना आता है, रजनी जी को काढ़ा बनाना आता है, ऑफ कोर्स तो क्या ही हो गए। तो फिलहाल तो प्रथम को दवाई देकर सुला दिया है, अब राध्या निकलेंगी तो पूछेंगी एग्जैक्टली कि हुआ कैसे है, अब ये बात फैमिली के सामने आएगी तब जाके पता चलेगा कि एग्जैक्टली किसने किया है क्या किया है। तो बस देखते हैं कि दादी अपना जितना भी क्या बोलते हैं कांड किया है वो किसके ऊपर थोपेंगी, तो वो तो आगे जाके पता चलेगा हमें।
1: ऐसे में अब देखना होगा कि भाई दादी अपनी गलतियों का भार फिर एक बार राध्या पर डालेगी या फिर राध्या सच का पता लगा ही लेगी। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
3: सास बहू और बेटियां में आज हमारी खास मेहमान है निक्की अनेजा, जिनसे की है हमने ढेर सारी बातें और जाना उनकी जिंदगी के बारे में।
4: कहां से आई हो अजनबी हसीना, दीवाना बना गई हो तुम।
5: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और लेकर हाजिर हूं टेलीविजन की दुनिया का लेटेस्ट अपडेट। टेलीविजन, यू नो 80s और 90s में जो टेलीविजन होता था बहुत प्रोग्रेसिव था, बहुत मॉडर्न था, कहानियां होती थी छोटी छोटी लेकिन बहुत असरदार। पता नहीं वक्त का ऐसा पलड़ा घूमा कि आज फैमिली ड्रामास हावी हो गए हैं, जो औरतें जो है किचन पॉलिटिक्स में ज्यादा बिजी रहने लगी हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो 80s और 90s की हमारी जो फीमेल प्रोटैगनिस्ट होती थी वो बहुत अलग होती थी, और उन्हीं में से कुछ ऐसे कलाकार हैं जो आज भी काम कर रहे हैं और उनका लेकिन उस वक्त का काम जो है आज भी लोग उनको जब मिलते हैं तो उससे याद दिलाते हैं। तो आज मेरे साथ ऐसी अदाकारा है, तो मेरे साथ है निक्की अनेजा वालिया, और इनको देखते मेरे मुंह से एक शब्द निकला, डॉक्टर सिमरन माथुर। कैसे हैं आप?
6: मैं बहुत बढ़िया हूँ, सो लवली टू मीट यू अमित।
5: तो निक्की, मैंने कहा कि आप जो किरदार प्ले करते थे ना, हर वो आपके साथ जुड़े रहते हैं, आपको देखते मुझे डॉक्टर सिमरन माथुर याद आती है। क्योंकि मुझे याद है कि 2001 में जो हमारी सदी बदली थी, तो आपने इस किरदार को टेलीविजन पर निभाया और बहुत ही प्रोग्रेसिव था, यू नो उस वक्त डॉक्टर एक प्रोटैगनिस्ट एक आई थी, और उसके बाद मुझे लगता है कि हम उल्टे चलते गए, औरतें किचन में ज्यादा चली गई, अब वापस लौट कर आ रही हैं। समवेयर इज लाइक अ राउंड सर्कल, वी आर जस्ट डूइंग व्हाट एक्चुअली स्टार्टेड ऑफ द टेलीविजन जिससे शुरू हुआ था।
6: आपको लग रहा है वापस आ रही
5: है? लग रहा है कि अब आजकल औरतें मतलब जो हमारी फीमेल प्रोटैगनिस्ट अब डॉक्टर आपको अलग अलग प्रोफेशन नजर आ रही, बीच में वो केवल गृहिणी बन के रह गई थी, इट्स नथिंग रॉन्ग बीइंग अ गृहिणी।
6: हां एब्सोल्युटली,
5: बट जो उस वक्त का टेलीविजन था, आई थिंक आपका चाहे सिमरन माथुर हो, सी हॉक्स आपका एक और शो,
6: सी हॉक्स डॉक्टर नताशा, उसमें भी मैं डॉक्टर ही थी
5: जी। तो मतलब इट वाज अ वेरी प्रोग्रेसिव टेलीविजन, देन वेंट रॉन्ग।
6: What went wrong? I think there were a few makers who kind of took over because they were catering to a certain status of people. जो घर पे lunch time पर जो औरतें बैठती थीं, जो उनके house help के साथ बैठती थीं, तो the show started favoring those kind of people, है ना? And you are right, we were a lot more ahead of our time with, especially with shows like Astitva. बहुत ही फॉरवर्ड थे हम. आई एम एक्चुअली हैप्पी टू हियर आप मुझे कह रहे हैं, क्योंकि मुझे काफी वक्त से मैं ओटीटी और फिल्म स्पेस में हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये सुन के दे आर अगेन मेकिंग शोज विच यूज टू बी लाइक आर 90s शोज. ऐसा अगर सब्जेक्ट बन रहे हैं तो प्लीज पार्डन माई इग्नोरेंस, लेकिन मुझे इतना वक्त नहीं मिलता ऑब्वियसली, क्योंकि इंग्लैंड में आप अपना घर जैसे देखते हैं. एंड लाइक ही सेड, देयर इज नथिंग रॉन्ग बीइंग अ हाउसवाइफ. आई हैव एंजॉयड बीइंग अ हाउसवाइफ फॉर मेनी मेनी इयर्स. बट जिस तरह से उन्हें दिखाया जाता है, जो घर की पॉलिटिक्स और फैमिली पॉलिटिक्स में घुसी होती है या इधर चुगली उधर चुगली, वो रोज रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे होता नहीं है.
5: निकी शादी से पहले निकी अनेजा थी, और निकी अनेजा के एक कजन है जो बहुत ही पॉपुलर है, और उनकी भाभी जो है वो उतनी ही पॉपुलर है.
6: हाँ जी.
5: तो निकी का फिल्मी कनेक्शन स्टार्ट्स फ्रॉम हिज कजन परवीन सेठी एंड उनकी वाइफ अर्चना पूरन सिंह. एंड कहीं ना कहीं आपको लाने में इन दोनों का भी हाथ है, क्योंकि पेरेंट्स, आई हर्ड योर पेरेंट्स वर डेड अगेंस्ट जॉइनिंग फिल्म्स, बट दीस टू योर भैया भाभी एक्चुअली कजोल्ड यू एंड यू नो ऑलवेज मोटिवेटेड यू टू ट्राई स्टंट इन बॉलीवुड.
6: भैया पुट द सीड इन माय हेड.
5: ओके.
6: तो एक्चुअली मुझे था कीड़ा पायलट बनने का. आई वॉन्टेड टू बी अ पायलट एंड आई टोल्ड माई फादर कि मुझे जाना है ह्यूस्टन टेक्सस, बिकॉज इंडिया में अनफॉर्चुनेटली जब मैंने सोचा मैं पायलट बनूंगी, उस वक्त उन्होंने फ्रॉम बीए क्वालिफिकेशन बीएससी कर दिया था. तो मैं अब अपना बीए को बीएससी तो नहीं कर सकती फॉर फ्लाइंग, दे हैड चेंज द रूल्स. सो द ओनली वे फॉर मी टू लर्न इट वुड बी टू गो टू अमेरिका, एंड ह्यूस्टन टेक्सस में एक कोर्स था फ्लाइंग का जो मेरे फादर ने फंड करने से मना कर दिया. एंड ही सेड मजाक मजाक में, तू तो प्लेन लेके डूबेगी, तेरे साथ सारे पैसेंजर्स भी जाएंगे, तू नहीं जाएगी, तू नहीं पायलट बनेगी. हंसी में कहा था ऑब्वियसली, बिकॉज ही डिडंट वांट टू लेट गो ऑफ मी एंड लेट मी गो अवे टू अमेरिका सो यंग सो अर्ली, यू नो. सो मैंने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं, मुझे बनना है, मुझे बनना है. एंड जिद्दी तो मतलब मैं थी, आज भी हूं. किसी चीज का मैंने माइंड बना लिया, मैं करके ही छोड़ती हूँ. और अनदर नेचर आई हैव इज आई एम एक्सट्रीमली पॉजिटिव, सो वो जो ना वर्ड होता है ना, वो मुझे बहुत खटकता है.
5: निकी अनेजा ने एज शालू अनेजा डेब्यू किया था फिल्म मिस्टर आजाद में. थिएटर में पिक्चर देखी ना, आई वाज लाइक मेस्मराइज्ड, एक इंस्पेक्टर के कपड़ों में लड़की क्यों झूमता हुआ.
6: ओह माय गॉड.
5: एंड द सॉन्ग्स वर वेरी गुड,
6: वेरी पॉपुलर. The songs were so catchy. Even today, sometimes when I hear it, the
5: tataya,
6: beats.
5: Tataya.
6: I love this. I love it. Yeah.
5: Picture तो मतलब आपका role काफी inspector of वर्दी में भी आती हैं, आप उसमें glamorous भी लगी.
6: Yeah, but the funny part of the thing was that they made me wear shorts. The inspector for the song was wearing shorts. हाँ उचलता था और मैं घबरा जाती थी ऐसे, मुझे अगर किसी पुलिस लेडी कांस्टेबल ने रोक दिया और बोला हम कच्चे नहीं पहन के नाचते. It is too funny. And I told Talaji, हाँ कोई लॉजिक नहीं होता था. So all my Amrapali outfits were brilliant. Nita Lulla, brilliant designer. So, but the minute they showed me in the inspector outfit in the song, I was so nervous. I mean, I was like, okay then. But then obviously at that time, you just had to go with what was asked. But yeah, what days those were. But my name, I think aap woh pooch rahe the.
5: Haan ji, Shalu Aneja kahan se, Nikki Shalu?
6: Pehlam ji.
5: Achha, he changed your name.
6: Bahut modern naam hai tumhara Nikki.
5: Achha.
6: And he said, Nikki kaun hota hai? So, main woh. Matlab, maa-baap ne naam rakha hai, woh use karenge. Nahin, nahin. शालू ना मेरी नीस का नाम है और वो मेरे लिए बहुत गुड लक है, तो तुम इंडस्ट्री में शालू अनेजा के नाम से आओगी. मेरा नाम शालू नहीं है. बट देन फर्स्ट फिल्म आई वाज टू न्यू टू द इंडस्ट्री. ऑनेस्टली ट्राई ही कर रही थी कि मेरे लिए ये ठीक है कि नहीं, बिकॉज़ आई
5: हैड ड्रीम डेब्यू विद अनिल कपूर वाज अ सुपरस्टार एट दैट टाइम.
0: मेरे गले में ये मंगलसूत्र पहनाकर मांग में सिंदूर भरते जाओ.
6: It wasn't my dream. I tried it out because, and I'm not saying this out of any, don't get me wrong, मैं नहीं कह रही हूँ मुझे एक्ट्रेस नहीं बनना था. मैं चाह रही थी मैं मॉडलिंग करूंगी, पैसे सेव करूंगी और अमेरिका जाके पायलट बनूंगी.
5: अच्छा, कहीं ना कहीं वो सपना था.
6: मैं जब कोरिया गई ना, मैं बीच में मिथिबाई से, there was this lady who was meeting students for Miss World University.
5: Okay.
6: तो ये एक पेजेंट था कोरिया में, फॉर विच आई हैड टू गो देयर एंड स्टे इन कोरिया फॉर 2 months इन सियोल, एंड आई वाज द रनर अप. तब प्रहलाद जी ने मुझे फोन किया. एक्टिंग वॉज नेवर माई ड्रीम. एंड मॉडलिंग करते करते आई हैड ऑल्सो स्टार्टेड डूइंग एड्स फॉर प्रोडक्ट्स. ओके,
5: मुकुल आनंद ने कुछ आपको बोला?
6: हाँ,
5: थोड़ा मैं चाहता हूँ.
6: हाँ जी,
5: इसी से जुड़ा है वो?
6: इसी से जुड़ा है. जब मैं मॉडलिंग कर रही थी तो ऑब्वियसली फर्स्ट आई स्टार्टेड विद रैंप मॉडलिंग, फैशन मॉडलिंग, एंड देन आई डिड सम ज्वेलरी कैंपेन्स फॉर दाना भाई एंड सियाराम के कपड़े, ऑल दैट. उस दौरान मुझे कमर्शियल्स आने लग गए थे, तो काफी कमर्शियल्स. हाँ जी, जो वीडियो एड्स होते हैं. आई हैड डन पॉन्स ड्रीम फ्ला टैल्क, आई हैड डन,
5: मुझे अभी भी आई विल कट टू एंड वांट टू प्ले द वीडियो ऑफ पॉन्स ड्रीम फ्ला टैल्क. नाश्ता सोचता था कि वो ड्रा जो खुशबू अभी भी आपका
6: कहां
5: नाम
6: से आई वो अजनबी हसीना दीवाना बना गई हो तुम. दैट्स द वन. ओह माय गॉड,
5: वो मेरे ज़हन में अभी भी
6: पॉन्स, सच अ फ्लैशबैक.
5: आई डोंट नो अभी आता है कि नहीं.
6: वो कैंपेन इतना फेमस था,
5: बहुत ज्यादा,
6: एंड उससे ट्रैक्शन करते करते देन आई स्टार्टेड meeting bigger brands, and Coca-Cola ka audition chal raha tha, and Mukulji was auditioning me. The ad Aishwarya got, but I was auditioning, and I will never forget that moment, because when I finished the audition, Mukulji just turned from the camera and he said, you know what, Nikki, you should not sell products, you should sell characters.
5: Very poignant line.
6: You should sell characters. And it just went, you don't realize, right? You have that like little moment where something just sits with you.
5: So, Mr. Azad ke baad, what happened? There was no, aapne kuch filmi career itna pursue nahi kiya, but, and of course, Shalu, ek picture ke baad hi khatam hui.
6: Good. I never liked
5: Nikki
6: that name.
5: Nikki Aneja came back.
6: I never liked that name because it was not me. Khatam kuch nahi hua tha. Amit, I lost my father soon after Mr. Azad was released.
5: Okay.
6: Soon after. And they were not the best circumstances that he passed. Mm-hmm. He had a heart attack instantaneously, mm-hmm. Because there was some family issues. Sage Studios bhi band ho gaya tha. Business was suffering very heavily. Live location start ho gayi thi. Studios kam hire ho rahe the.
5: Mm-hmm.
6: So the business had anyway started going down a little, and there was an issue with my father and his brother.
5: Okay.
6: So wo thoda discrepancies mein, we didn't realize कुछ बैड माहौल थे. माई फादर गॉट अ हार्ट अटैक एंड आई सडनली फ्रॉम निक्की बिकेम द घर का वड्डी, द एल्डेस्ट इन द फैमिली, बिकॉज आई वॉज द ओनली अदर अर्निंग मेंबर इन द फैमिली एट दैट टाइम. सो फिल्म फिल्म के दौरान, आजाद के दौरान भी ऐसी कई चीजें होती थी जिससे मैं रेजोनेट नहीं करती थी, और मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, मेरे फादर ने जब मुझे कहा नहीं बिल्कुल नहीं निकी तुम फिल्म्स नहीं करोगी, ही न्यू माय नेचर. उन्हें पता था कि मैं एक नो नॉनसेंस लड़की हूँ. मेरे अगर कोई चीज यहाँ है यहाँ है, मुझे डिप्लोमेसी नहीं आती. मैं एक जो होता ना कि मस्का लगा के या किसी को अननेसेसरी प्रेज करके या अपने आप को, I could never do those kind of things to pitch myself for getting more work or anything. मेरा होता था कि मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसा काम करती हूँ, मैं ऐसे लगती हूँ, आप देख लो, अगर आपको चाहिए तो great, if not, no. And I thought आजाद के बाद I will carry on in the industry because I had started enjoying it.
0: मैं और तुमसे प्यार, सूरत देखिए अपने आईने में. सूरत.
6: Dad की death के बाद there was something inside me जो बहुत ही majorly shift हुआ. एंड उनकी बातें बार बार मुझे रेजोनेट हो रही थी कि तुम ये इंडस्ट्री के लिए नहीं बनी हो, तुम ये इंडस्ट्री, क्योंकि वो जानते थे कि मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी. कास्टिंग काउच उस वक्त इतना ज्यादा होता था,
5: अंडरवर्ल्ड भी था कास्टिंग,
6: ऑनेस्टली अंडरवर्ल्ड तक तो ऐसा कुछ नहीं आया मुझे, बट इनडिसेंट प्रपोजल्स, अननेसेसरी डिमांड्स, वो काफी हुई मेरे साथ. और मुझे वेरी आउट ऑफ बॉडी ऐसा लगता था कि ये सॉरी. सो इससे पहले कि इंडस्ट्री निकी को निकाल दे, निकी ने इंडस्ट्री को गुड बाय कह दिया. मुझसे नहीं हो पा रहा था वो सब.
5: कपूर फैमिली,
6: हाँ है ना,
5: अनिल कपूर फर्स्ट हीरो,
6: या एंड आई
5: बुरुल टीवी,
6: दैट्स राइट, आई हैव जस्ट डन अ फिल्म विद हिम, भाई तेरा स्टार है,
5: यस,
6: अनिल
5: खानदान के साथ,
6: कपूर खानदान के साथ है. माय वेरी क्लोजेस्ट फ्रेंड इज गीता कपूर, इफ इट्स नॉट दैट कपूर इट्स अनदर कपूर. या बट या इट्स बीन अमेजिंग. इनफैक्ट दिल संभल जा जरा आल्सो हैपेंड बिकॉज मैंने बहुत क्लेवरली ना, जब शानदार आई थी लंदन, तो विक्रमादित्य मोटवानी को मैंने खुद फोन किया और मैंने कहा कि कैसा भी रोल हो मुझे शानदार का एक पार्ट बनना है. एंड एट दैट टाइम अमित, आई हैड मेंटली डिसाइडेड अब बच्चे 10 साल के हो गए, अब मुझे दोबारा काम करना है, तो मैं कैसे इंडस्ट्री को एकदम से बताऊं कि आई एम ओके एंड ओपन फॉर वर्क.
7: क्यों ना हो, मामी जी ने पैसे जो खर्च किए इतने. वैसे आप सबकी खुशी खत्म हो गई हो तो हम अंदर चलें, मामी जी इंतजार कर रहे हैं.
6: आइडिया ऑफ डूइंग शानदार वाज टू पुट माय फुट बैक इन द डोर के क्वीन के बाद विकास बाल की फिल्म देखने तो लोग जाएंगे ही जाएंगे, और अगर मैं उसमें अपियर हो गई तो ये जो लोगों को ये फील है कि मैं यूके में रहती हूँ, मैं अभी एक्टिंग नहीं कर रही हूँ, वो मैं ब्रेक कर दूंगी. एंड आई गॉट दिल संभल जा जरा 2 months आफ्टर शानदार, बिकॉज गोल्डी बहल अपना सिद्धार्थ, नॉट गोल्डी बहल, सिद्धार्थ सेन गुप्ता जिनको मैं प्यार से गोल्डी बुलाती हूँ, उनका निकनेम गोल्डी है. तो गोल्डी का मुझे कॉल आया, अरे मैंने तुम्हें शानदार में देखा, तुम एक्टिंग के लिए रेडी हो? सो जो मैं चाह रही थी, जो इफेक्ट चाह रही थी उस फिल्म से, फिल्म नहीं लोगों को समझ आई, नहीं चली, मुझे तो बहुत अच्छी लगी, सॉरी, आई लव शानदार, बट
5: आई थिंक वो भी इतिहास में याद रखी जाएंगी कुछ फिल्में जो बाद में देखते हैं ना लोग,
6: हाँ,
5: वॉच करते हैं.
6: आई थिंक टुडे द जनरेशन सॉ इट, दे विल अप्रिशिएट
5: इट. यस, दे विल, दे विल.
6: इट्स आल्सो हु योर ऑडियंस इज, आपने किस टाइम पर एक फॉरवर्ड फिल्म बनाई
5: है. गुलाबो गाना जरूर बजता है.
6: या एब्सोल्युटली. सो आई गॉट दिल समझ जा जरा बिकॉज आई डिड शानदार. And then I did, and this is again, this is the first show I did as a antagonist. मैंने 28 shows as a main lead protagonist किया है. Antagonist की तरह Star Plus पे मैं पहली बार,
5: हाँ जी,
6: पहले show में.
5: But लेकिन जब तक अभी antagonist नहीं कह सकते हैं, आजकल roles grey होते हैं. अभी
6: हाँ, TV में भी. बिल्कुल, और वो actually character, you're right.
5: खत्म हो गया है concept.
6: Yeah, and you're right. Leela's character in Dil Samal Ja Zara was not an out and out antagonist. It was a very grey character. Yeah.
5: I think that shift has happened. Yeah. And I'm sure आपने देखा होगा.
6: भाई तेरा स्टार है, रिलीज हो गई है, एंड अगेन शानदार की तरह कुछ लोगों को समझ आ रही है, कुछ लोगों को नहीं समझ आ रही है, बट इट्स अ ब्यूटिफुल फिल्म. इट्स ब्यूटिफुली शॉट इन अ वन शॉट फॉर्मेट. द बिगेस्ट थिंग दैट अट्रैक्टेड मी टू डू द फिल्म वाज व्हेन विवेक टोल्ड मी के हम लोग ये पूरी फिल्म वन शॉट में कर रहे हैं. ऑब्वियसली इट वाज अ वन शॉट फॉर्मेट पर सीन, एंड देन द फिल्म वाज स्टिच्ड टू मेक इट लुक लाइक अ सीमलेस फिल्म.
5: तो उम्मीद करते हैं कि निक्की ने अब तक अपने किरदारों से सबका दिल चुराया है, तो उम्मीद है कि इस नई इनिंग में एक नया अभी जो ऐसा फेज है, ब्यूटीफुल ओटीटी भी है, टेलीविजन भी है, फिल्में भी है.
6: हाँ जी,
5: तो आई एम श्योर लॉट्स टू ऑफर, एंड
6: मुझे सब करना है, मुझे सब करना है. यस, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग.
5: So,
6: हाँ जी,
5: तो सच अ प्लेजर टू टॉक टू यू, एंड वी हैव लव्ड यू फ्रॉम वेरियस कैरेक्टर्स, एंड होप सो कि आगे भी हम मिलते रहेंगे, बातें करते रहेंगे.
6: 100% अब तो मैं हूँ यहाँ पर, डेफिनेटली, और मिलेंगे और बातें करेंगे.
5: Thank you so much for talking to us.
6: Thank you. Thank you.
3: आज बहू और बेटियां में आज हमारे खास मेहमान हैं पुष्पा इम्पॉसिबल के चिराग यानी के नितिन बाबू, जिनके साथ हमने बिताया है एक दिन. तो कैसा रहा ये डे आउट, चलिए देखते हैं.

0: पुष्पा इम्पॉसिबल के चिराग हो।
1: यही ना प्रॉब्लम है सीनियर सिटीजन की, आते बाद में हो, बागबान पहले ही शुरू कर देते हो।
2: ए, मैं सीनियर सिटीजन नहीं हूँ।
0: अनुपमा के सागर हो।
3: तो वैसे भी दिन रात बैंड बाजा के सपने देखे अपनी जानो शर्मा के साथ।
0: या फिर हो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि रोहन
3: ब्याह हो जाएगा ना, तो मैंने क्या हजार डेढ़ हजार बच्चा देने थारे।
0: बहन के किरदार तो अनेक है, लेकिन हर किरदार है लाजवाब, क्योंकि फैंस का ये दिल जीत लेते हैं। हम बात कर रहे हैं नितिन बाबू की, जो हाल फिलहाल में नजर आ रहे हैं पुष्पा इम्पॉसिबल में चिराग के किरदार में।
4: मम्मी तू ही से हमारी जिंदगी में लेकर आई थी ना, अब इसे जिंदगी भर की सजा दो तो हमें।
5: सजा तो मैं दूंगी तुझे, जिंदगी भर की नहीं, सात जन्मों की।
0: भाई आज हम जानेंगे कि पुष्पा का बेटा रियल लाइफ में कैसा है। कैसा है उनका दिनचर्या, देखेंगे उनका फिटनेस फंडा। करेंगे घर से सेट तक का सफर। देखेंगे कैसे वो नितिन से चिराग बनते हैं। साथ ही मिलेंगे चिराग की बीवी शनाया से, देखेंगे शनाया और चिराग की केमिस्ट्री। तो चलिए बिना देर किए सीधा करते हैं इस डे आउट की शुरुआत। चिराग यानी कि नितिन अपने दिन की शुरुआत करते हैं जिम से। भाई फिटनेस पर ये खासा ध्यान देते हैं और जब भी इन्हें मौका मिलता है ये एक्सरसाइज करने से चूकते नहीं, डाइटिंग का भी पूरा पूरा ख्याल रखते हैं, तभी तो है ना चिराग एकदम फिट एंड फाइन। भाई चिराग एक पुलिस ऑफिसर का किरदार निभा रहे हैं, ऐसे में इन्हें तो फिटनेस पर खासा ध्यान देना ही है, ऑन स्क्रीन के लिए भी और ऑफ स्क्रीन के लिए भी। तो चलिए सबसे पहले करते हैं शुरुआत जिमिंग सेशन से और देखते हैं कैसे ये वर्कआउट करते हैं और रहते हैं एकदम फिट।
6: हेलो, दिस इज नितिन बाबू और आप मुझे पुष्पा इम्पॉसिबल में आज चिराग देखते हैं। अभी हम हैं मेरी जिम में और दिन की शुरुआत हम यहीं से करते हैं और हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे कुछ वार्म अप से, उसके बाद हम थोड़ा कार्डियो करेंगे और उसके बाद हम करेंगे वेट लिफ्टिंग। फिटनेस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहली बात, आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं। दूसरी बात, फिटनेस से आपको अंदर से जो एक फीलिंग आती है कॉन्फिडेंस वाली, ऐसे भी चीज़ बोल रहा हूँ मैं। और तीसरी चीज़ क्या है कि फिटनेस मेरे लिए इतनी इसलिए इम्पोर्टेंट क्योंकि मैं ऑन स्क्रीन एक पुलिस वाले का रोल कर रहा हूँ, तो वो पुलिस वाला फिट ना हो तो फिर कौन होगा। जी मैं बिल्कुल कोशिश करता हूँ। और सुबह वैसे तो मेरा मतलब मुश्किल होता है मेरे लिए सुबह जिम करना, लेकिन मैं तब भी कोशिश करता हूँ क्योंकि शाम को जिम आना बहुत ही मुश्किल हो जाता है क्योंकि हमारे शेड्यूल वैसा होता है कि हमें पता नहीं है कि पैकअप कब होगा, तो इसलिए दिन की शुरुआत अगर जिम से हो जाए तो अच्छा। जिम मैं वैसे तो बहुत समय से कर रहा हूँ, फिर ऑन एंड ऑफ हो जाता है, कभी शूट की वजह से आना मुश्किल हो जाता है, फिर बीच में फिर स्टार्ट कर देता हूँ जब लगता है कि नहीं अब थोड़ा ज़्यादा हो रहा है तो इसलिए स्टार्ट करता हूँ। जब मैं जिम नहीं जाता हूँ तो तब मैं अपने मतलब 10,000 स्टेप्स पूरे करने की कोशिश करता हूँ सेट पे, या फिर जिस दिन ऑफ होता है उस दिन मैं रनिंग पे चला जाता हूँ। मुझे जिम से ज़्यादा बेटर थोड़ा बाहर रनिंग करना ज़्यादा अच्छा लगता है, बट अभी मानसून है मुंबई में वजह से तो जिम।

0: तो जिमिंग सेशन की शुरुआत हुई कार्डियो से और फिर बाकी एक्सरसाइजेस जैसे मसल्स के लिए। और बाकी तो नितिन बता ही रहे हैं कि वो क्या एक्सरसाइजेस करते हैं और कैसे अपने डोले शोले बनाते हैं।
1: Let's go.

अभी हमारा बेसिक वार्म अप हो चुका है और ट्रेडमिल पे रनिंग हो चुकी है। अब हम करेंगे साइकिलिंग और उसके बाद वेट लिफ्टिंग। जब हम जिम में आते हैं तो हमारे मसल्स रिलैक्स होते हैं और एकदम से अगर हम वेट लिफ्टिंग करने जाएंगे तो क्रैम्प्स हो सकते हैं, मसल पुल हो सकता है। तो इसलिए वार्म अप करना ज़रूरी है ताकि आपकी बॉडी जो है बेसिकली थोड़ी हीट अप हो जाए, उसके बाद फिर आप जो वर्कआउट करेंगे उसमें इंजरी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो इसलिए स्ट्रेचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम करेंगे साइकिलिंग और उसके बाद वेट लिफ्टिंग।

अभी हमारी कार्डियो कंप्लीट हो चुकी है और हमने वेट ट्रेनिंग स्टार्ट की है, और आज हम कर रहे हैं चेस्ट जिसमें हमने बेंच प्रेस मारा है। और वेट ट्रेनिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है इससे, और अगर आप सिर्फ कार्डियो करते हैं तो आप लीन दिख सकते हैं, पतले हो जाएंगे, फैट लॉस हो जाएगा। बट अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा आपका फैट लॉस जल्दी हो, आपके मसल्स अच्छे दिखें, तो इसलिए वेट ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। देखिए, प्रोटीन इनटेक बहुत ज़रूरी है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो प्रोटीन पाउडर्स लीजिए, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो आप नेचुरली भी उसको अचीव कर सकते हो। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप प्रोटीन खा सकते हैं, आप अगर नॉनवेज खाते हो तो आप एग्स खा सकते हो, चिकन खा सकते हैं, तो उससे आपका प्रोटीन पूरा हो जाएगा। आपकी पल्सेस में प्रोटीन होता है, आप जो भी नेचुरल सोर्सेज होते हैं प्रोटीन के आप वो ले सकते हैं। प्लस मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रोटीन पाउडर्स जो हैं उसके एक मिथ ऐसी फैलाई गई है कि वो अनसेफ होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। प्रोटीन पाउडर्स आप ले सकते हैं, वो एक हेल्थ सप्लीमेंट ही है।

0: ऐसा कुछ नहीं है, मैं एंजॉय ही करता हूँ। अब देखो हम हमेशा अच्छाई की उम्मीद तो नहीं कर सकते, लाइफ भी ऐसे ही है, कभी ट्रैफिक कभी स्मूथ रास्ते, तो सब एंजॉय करो।
1: वैसे सफर के दौरान नितिन पहुंचे नारियल पानी पीने, भाई जिम सेशन के बाद खुद को हाइड्रेट रखना भी तो जरूरी है, और नारियल पानी से बेस्ट भला क्या हो सकता है।
0: हम नारियल पानी पिए, जिम करने के बाद आपको इलेक्ट्रोलाइट्स की जरूरत होती है और रिफ्रेशिंग फीलिंग है, और सुबह सुबह नारियल पानी मिल जाए तो पूरा दिन नारियल की नारियल।

0: अभी सुबह का कॉल टाइम है और सुबह का समय मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि चारों तरफ देखिए हर एक इंसान उम्मीद लेके उठा है, कोई काम पे जा रहा है, कोई ज़िंदगी की चाह से उठे हैं ऊपर। सो सुबह का समय मुझे सबसे अच्छा लगता है। और अभी जिम करने के बाद नारियल पानी पिया है। सो पुष्पा इम्पॉसिबल के फैंस को हेल्दी चिराग की ज़रूरत है, तो इसीलिए अपने आप को फिट रखना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, पुलिस वाला है तो पुलिस वाले को तो सबसे ज़्यादा नारियल पानी पीना चाहिए क्योंकि सबसे ज़्यादा बीपी हाई उन्हीं का होता है काम पे, तो नारियल पानी जो है, नारियल पानी पीने से इंसान थोड़ा कूल रहता है, तो इसीलिए सुबह सुबह नारियल पानी। नंदी जी महाराज, जय शिव शंभू। तो चलें पुष्पा इम्पॉसिबल के सेट पे और देखिए मुझे चिराग के किरदार में।
1: तो चलिए फिर से करते हैं सेट के इस सफर की शुरुआत। और इस सफर में चिराग यानी कि नितिन ने हमें बताई ढेर सारी बातें।
0: सो बेसिकली मैं जम्मू कश्मीर से हूँ और मैं मुंबई 5 साल पहले आया हूँ। और मेरा फर्स्ट जो ब्रेक है वो राजन सर के साथ था, ये रिश्ता। और उसके बाद जर्नी जो है कंटिन्यू हुई और अभी पुष्पा इम्पॉसिबल एज चिराग इतने साल और इतने सारे किरदार करने के बाद आई एम जस्ट एंजॉयिंग माई जर्नी। और एज एन एक्टर जितने मेरे लिए पिछले सारे किरदार ज़रूरी रहे उतना ही चिराग भी इम्पोर्टेंट है। और आने वाले बहुत सारे किरदार जो मुझे अभी करने हैं वो भी मुझे लगता है कि मैं इतनी शिद्दत से निभाना चाहूँगा जितनी शिद्दत से मैंने अभी तक अपना काम किया है। नहीं, एक्चुअली मेरी एक्टर बनने की कभी कोई ऐसी सोच नहीं थी। मेरी फैमिली में सब जो है वो गवर्नमेंट सर्विस में है, तो हमेशा से यही था कि IAS करना है या फिर कुछ और जो गवर्नमेंट सेक्टर में ही हो। तो मैं भी उसी चीज़ की तैयारी कर रहा था। सो आफ्टर IIT JEE मेंस मैंने

अपनी इंजीनियरिंग की, सिविल इंजीनियरिंग में. तो मैं बेसिकली क्या है कि बचपन से ना बहुत ही इंट्रोवर्ट रहा हूँ और अभी भी हूँ, लेकिन अब मैं शाय वाला इंट्रोवर्ट हूँ, अब मैं बातों की इंट्रोवर्ट हूँ. तो अब मैं उतना इंट्रोवर्ट नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं पहले बहुत इंट्रोवर्ट था. सो मुझे स्टेज पे भी जाने से प्रॉब्लम होती थी, बात करने से प्रॉब्लम होती थी, मैं इतना खुल के बात नहीं कर पाता था. सो कॉलेज में फर्स्ट टाइम मैं थिएटर में एनरोल हुआ, तो वहाँ पे मुझे ये चीज़ फील हुई कि कुछ ऐसा है जो मैं कर सकता हूँ पढ़ाई के अलावा. तो बस फिर वहाँ से मैंने अपना थिएटर स्टार्ट किया और फिर मुझे लगा कि इस चीज़ को मैं आगे एज करियर परसीव कर सकता हूँ. सो फिर मुंबई आ गया और तब से अपनी जर्नी स्टार्ट हुई है.

0: पहली बातें करते करते हम पहुंच गए हैं पुष्पा इम्पॉसिबल के सेट पर, जहां अब नितिन चिराग के किरदार में ढलेंगे। तो चलिए सीधा चलते हैं इनके मेकअप रूम में।
1: तो अभी हम पहुंच गए अपने पुष्पा इम्पॉसिबल के सेट पे और अब हम रेडी होंगे और चिराग की भूमिका निभाएंगे। सुबह सुबह यहाँ पहुँच कर बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है जैसे अपने घर आ गए। 12 घंटे हम लोग यहाँ पे रुकते हैं और फिर यही जीवन हो जाता है। घर तो सिर्फ सोने के लिए जाते हैं, तो असली घर यही है। तो आज आपको मैं अपने परिवार से भी मिलाऊंगा। चिराग का रूम और ये हो गया लाइट्स ऑन। आइए, यही है वो कमरा जहाँ पे हम नितिन से चिराग बनेंगे और अपनी स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, अपने इमोशंस को यहाँ पे हम जनरेट करते हैं। सो आई कॉल दिस इज एज ए जनरेटर रूम।
0: वैसे नितिन की एक खास बात ये भी है कि वो अब भी पढ़ाई करते हैं। जी हाँ, क्वांटम फिजिक्स, ये है इनका फेवरेट टॉपिक। और ऐसे में देखिए कैसे वो जब भी इन्हें टाइम मिलता है वो नोट्स बनाते हैं।
1: बैग में से सबसे पहली जो चीज निकलती है वो है क्वांटम फिजिक्स की बुक, और जब भी खाली टाइम होता है इसमें पढ़ता हूँ मैं थोड़ा बैठ के, यहाँ पे कोशिश करता हूँ। सो ये है मेरे नोट्स जो मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कोई स्टूडेंट हूँ अभी, बट मुझे शौक है, फिजिक्स पढ़ने का शौक है मुझे। और ये इंजीनियरिंग के टाइम से ही, मतलब 12th के टाइम से ही मुझे फिजिक्स का थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट था उसमें। तो अभी आफ्टर इंजीनियरिंग मैं उस चीज़ को कंटिन्यू करता हूँ, पढ़ता ही हूँ मैं। और अभी एक फिजिक्स का टूर्नामेंट है जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया है, तो उसके लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ। सो फिंगर्स क्रॉस्ड, जब भी टाइम मिलता है तो मैं पढ़ने बैठ जाता हूँ। तो एटलीस्ट एक या दो टॉपिक भी कवर हो गए तो मेरा हो गया। तो क्वांटम फिजिक्स मुझे इसीलिए पसंद है क्योंकि ये शायद कहीं ना कहीं हमारी रियल लाइफ के साथ भी रिलेट करती है। तो बेसिकली साइंस ये बोलती है कि हमें उन सवालों के जवाब ढूंढने हैं जो शायद अभी तक किसी को मिले नहीं है। हमारी एग्जिस्टेंस कहाँ से आई है, हम यहाँ पे कैसे पहुँचे हैं, और हमारा फ्यूचर क्या है, हमारी अर्थ का फ्यूचर क्या है, हमारे स्पेस का फ्यूचर क्या है। सो फिजिक्स जो है वो उन सब की खोज है, तो हम वही इन फॉर्मूलों के थ्रू ढूंढने की कोशिश करते हैं। सो ये टॉपिक हैंडबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है। इसमें ये बोला जाता है कि हमारी यूनिवर्स में सब कुछ अनसर्टेन है। अगर आप जैसे किसी एटम के अंदर, जैसे न्यूक्लियस होता है उसके अंदर प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर आप किसी प्रोटॉन की पोजीशन का पता करना चाहेंगे तो वो आप शायद से उसका मोमेंटम खो देंगे। अगर आप उसके मोमेंटम का पता करना चाहेंगे तो आप उसकी एग्जैक्ट पोजीशन पता नहीं कर पाएंगे। सो यूनिवर्स अपने आप में इतना रहस्यमय है कि वो आपको अपने राज बताना ही नहीं चाहता है। सो दिस इज इट, हम बस कोशिश कर सकते हैं। और रियल लाइफ से मैं इस चीज़ से इसलिए रिलेट करता हूँ, जैसे मैं करना कुछ और चाहता था, इंजीनियरिंग करना चाहता था मैं। इंजीनियरिंग मैंने की भी, मैंने उसके बाद एज हाईवे इंजीनियर मैंने जॉब भी की 1 साल। और बट अनसर्टेनिटी हैंडबर्ग्स जैसे बोलते हैं, तो आज मैं एक्टर हूँ, कुछ और कर रहा हूँ। सो बेसिकली ये है कि कुछ प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं है, जो होना है जिस टाइम पे वो होना ही है, तो आप बस अपना कर्म करते चलो। सो दैट्स इट, ये है। और बाकी मेरे बैग में एक ये है जॉन एलिया की किताब, जो मैं कभी कभी पढ़ लेता हूँ शौक के तौर पे। तो इसकी मैं आपको कुछ पढ़ के बताता हूँ। उम्र गुजरेगी इम्तिहान में ही क्या, दगा ही देंगे मुझको दान में क्या, मेरी हर बात बेअसर ही रही, नुक्स है कुछ मेरे बयान में क्या, मुझको तो कोई टोकता भी नहीं, यही होता है खानदान में क्या, अपनी महरूमियता छुपाते हैं हम गरीबों की आन बान में क्या, खुद को जाना जुदा जमाने से आ गया था मेरे गुमान में क्या। That's it। और ये मेरे मेकअप का सामान है, और ये ड्रायर है, और ये कैलकुलेटर है, और ये कॉम है, और ये हेयर स्प्रे है, और ये कुछ नहीं है। सो अब हम मेकअप स्टार्ट करेंगे।
0: तो हमने नितिन के शौक के बारे में भी जान लिया और इनके बैग में क्या है ये भी देख लिया। अब बारी है मेकअप की। वैसे आपको बता दे कि नितिन अपना मेकअप खुद ही करते हैं।
2: तो सबसे पहले हम मॉइस्चराइज करेंगे स्किन को।

0: सबसे पहले बेस आएगा और अंडर आईज। ज्यादा कुछ करता नहीं हूँ मेकअप में, बस हल्का हल्का ही।
1: वो आपकी खास बात है, आप जैसे भी दिखते हैं, और बस ये है कि कैमरा जो है वो बहुत ही सुपर एचडी होता है और उसमें आपको आपकी स्किन थोड़ी फ्लॉलेस दिखना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए हम मेकअप करते हैं। और बाकी मेकअप अगर आप इन जनरल यूज़ करते हैं अपने रियल लाइफ में, तो वो सिर्फ आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए। अगर आपको विदाउट मेकअप भी कॉन्फिडेंस फील होता है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं मेकअप करने की, हटाओ इसको।
0: हम यूज करेंगे

0: तो फाइनली हो चुका है नितिन का मेकअप और हेयर स्टाइलिंग, और अब चेंज कर पूरी तरह वो चिराग के किरदार में ढल जाएंगे।
1: तो दोस्तों, समय आ चुका है नितिन से चिराग बनने में, और ये रही मेरी कॉस्ट्यूम। अब मैं अपनी कॉस्ट्यूम चेंज करके चिराग बन के आपसे मिलता हूँ। तो गाइस, चिराग इज रेडी। एक इंटेंस आवाज, तो ये है चिराग की जैकेट, टी शर्ट, जीन्स और चिराग के ऐतिहासिक शूज। हाँ, देखिए, मैं रियल लाइफ में थोड़ा सा शांत भी रहता हूँ, लेकिन थोड़ा चुलबुला भी हूँ मैं, और चिराग जो है थोड़ा सा इंटेंस है और थोड़ी चीज़ों को गंभीरता के साथ लेता है। तो ये कॉस्ट्यूम पहनने के बाद एकदम से मेरे अंदर वो चीज़ आ जाती है कि नहीं, मुझे अब थोड़ा सीरियस ही रहना है, तो मैं कम स्माइल करूँगा। अभी फिलहाल चिराग की ज़िंदगी में खुशी का कोई कारण है नहीं, सिर्फ उसकी फैमिली, उसकी माँ और घर जो है वो है। अभी घर चला गया था, वापस मिल गया है, तो खुशी का एक कारण है, लेकिन वो कहीं ना कहीं मनवा से भी अटैच था और उसे उम्मीद थी कि अब शनाई से डिवोर्स हो जाएगा, उसके बाद उससे शादी हो जाएगी, लेकिन मनवा जा चुकी है और अब चिराग कैसे संभलेगा, आगे कैसे बढ़ेगा, वो देखने वाली बात है।
0: तो भाई, अब पूरी तरह से नितिन चिराग बन चुके हैं और अब बारी सेट पर जाने की, लेकिन उससे पहले मिलते हैं इनकी बीवी शनाया से।
1: चिराग तो रेडी हो गया है, लेकिन अब हम देखेंगे शनाया को अनफिल्टर्ड। आइए, अभी हम जाएंगे सेट पे। हेलो शनाया, हाउ आर यू? बहुत बढ़िया। और अभी हम आपको शनाया का असली रूप दिखाएंगे, अनफिल्टर्ड वाला, लेकिन हम जा रहे हैं अभी सेट पे क्योंकि हमारा सीन लग चुका है, और उसके बाद हम आपसे मिलेंगे और करेंगे बहुत सारी
2: बातें।
1: ये
0: तो भाई, शनाया और चिराग की बातें और भी होंगी, लेकिन उससे पहले सीन शूट कर लिया जाए जहां पर देखने को मिली चिराग और शनाया की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री। भाई, ऑन स्क्रीन ही नहीं बल्कि ऑफ स्क्रीन भी इनकी दोस्ती काफी अच्छी है, क्योंकि इनका है अनुपमा कनेक्शन। जी हाँ, मुस्कान भी अनुपमा में बाकी का किरदार निभा चुकी है, तो वहीं सागर का किरदार निभा चुके हैं नितिन, और अब फिर एक बार पुष्पा इम्पॉसिबल में ये दोनों साथ काम कर रहे हैं। ऐसे में इनकी दोस्ती और भी ज्यादा पक्की हो चुकी है।
1: तो हमारा सीन कंप्लीट हो चुका है और अब मैं आपको मिलवाता हूँ शनाया जी से। तो शनाया जी, कैसी हैं आप?
2: मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए आप कैसे?
1: मैं तो बढ़िया ही होता हूँ हमेशा।
2: क्या चल रहा है सुबह से, ये बताइए।
1: सुबह से सबसे पहले आके हम रोए हैं और थोड़ा सा रुलाए हैं।
2: हाँ।
1: आंखों में तो आंसू आपके भी लग रहे हैं।
2: बहुत रुलाया।
1: तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे फैंस की ना एक शिकायत है हमसे, वो कह रहे हैं कि आप ऑन स्क्रीन झगड़ा करते रहते हो हमेशा, तो बताओ
2: इनके बारे में। हाँ। ये बहुत ही बढ़िया इंसान है, और सबसे खास बात जो है, ये बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, मतलब मजा ही आ जाता है। अगर कभी आप सभी को मौका मिले तो प्लीज,
1: हमें ढाबा खोलने वाला एक ढाबा खोलने वाला,
2: इनवाइट कीजिए प्लीज सभी को।
1: सभी को इतना बना दूंगा मैं। डन है, सब
2: बहुत अच्छा खाना मिलेंगे, बनाते खाएंगे। हैं और मजा ही आ जाता है खाके। आप बहुत दिन हो गए आपने कुछ बना के।
1: तो अब देखिए, शनाया जी ने फरमाइश की है तो फिर पूरी करनी पड़ेगी। तो बुलाओ रे कुकर, गैस ऑन करो।
2: अभी नहीं, बाद में जब आपका मन।
1: हाँ, तो फिर फैंस की फरमाइश पूरी कर दी जाए। हाँ। थोड़ा सा डांस करके दिखाएं।
2: डांस
1: है ना? हाँ। मैं तो नहीं करूंगा, आप नचाओ मेरे को। ऑन स्क्रीन भी नचा ही रही है, ऑफ स्क्रीन भी नचा दो।
2: नहीं, अभी तो शनाया नाच रही है ना चिराग के आगे पीछे, बताओ।
1: ओहो हाँ, आपको क्या शनाया को चिराग में क्या पसंद आया?
2: यही कि वो बहुत ही लॉयल है और अच्छा अच्छा बच्चा है।
1: बच्चा?
2: हाँ, अच्छा बच्चा है।
1: हांजी हांजी, ठीक है। थैंक यू सो मच। सो चलो हो जाए थोड़ा डांस।
0: तो भाई, फैंस के लिए चिराग और शनाया का एक डांस तो बनता ही है।

0: मतलब सेम टाइम पे नहीं थे लेकिन अलग अलग
1: थे
0: तो अभी जब हमने ये शो ज्वाइन किया था तो तब मुझे पता चला कि मुस्कान आ रही है और वो भी अनुपमा का हिस्सा रह चुकी है, तो एक हमारे पास एक कॉमन पॉइंट था बात करने के लिए, हमारे पास वो डिस्कस करने के लिए था, तो हम बस वही डिस्कस करते रहते थे
1: कैसा मस्त मजा आता था ये वो, तो काफी
0: सो
1: काफी बातें की और अच्छा था एक्सपीरियंस।
0: हाँ, अच्छा
1: मैं तो पहले ही चले गई थी, फिर आके कहा,
0: फिर मैं भी चला गया फिर हम चले गए, फिर हम यहाँ
1: पहुंचे,
0: चलते चलते यहाँ पहुंचे
1: जी बिल्कुल, और लोगों से बहुत प्यार मिल रहा है तो उसके लिए बहुत बहुत बहुत थैंक यू।
0: थैंक यू।
2: तो देखा आपने, कुछ ऐसी है इन दोनों की ये दोस्ती। तो अब वक्त हो चला है नितिन बाबू को बाय बाय कहने का, क्योंकि अब इन्हें पूरा दिन शूटिंग जो करनी है। लेकिन उम्मीद है कि आपने नितिन बाबू के बारे में ढेर सारी बातें जानी होंगी, और हम तो यही कहेंगे कि यूं ही नितिन अपने दर्शकों को एंटरटेन करते रहे।
0: तो ये था मेरा डे आउट, और आज का दिन बहुत ही इंटरेस्टिंग था, बहुत ही मज़ा आया, मुझे तो बहुत मज़ा आया, उम्मीद करता हूँ कि आपको भी बहुत मज़ा आया होगा। हमने शुरुआत जिम से की, फिर बहुत अच्छे तगड़े वर्कआउट के बाद हमने नारियल पानी पिया, फिर हम वहाँ से सेट पे आए, हमने ये मैंने ये दिखाया कि मेकअप कैसे होता है, मैं नितिन से चिराग में कैसे कन्वर्ट होता हूँ, फिर उसके बाद थोड़ा सा हमारा डांस सीक्वेंस हुआ, मेरी अर्धांगनी, मेरी जो शनाया ऑन स्क्रीन पत्नी है उनके साथ। तो मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही इन फ्यूचर हम बहुत सारे सेगमेंट्स लेके आएंगे और हम बहुत अच्छा अच्छा अपने बारे में और चीज़ें आपको बताते रहेंगे। मेरे बारे में भी बहुत कुछ है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, तो वो इस वाले सेगमेंट में शायद पूरा नहीं हो सकता है, इसीलिए उसके लिए आपको अगले पार्ट्स देखने पड़ेंगे। सो तब तक के लिए बाय बाय।
2: मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
3: सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में मनाया जा रहा है रक्षाबंधन का त्योहार, जहां मुक्ति और मायारा बांध रहे हैं अपने पापा को राखी। तो चलिए हम भी शामिल हो जाते हैं उनके इस राखी सेलिब्रेशन में।

तैयारी जन्माष्टमी के त्योहार की। स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आज पोद्दार हाउस में हो रहा है रक्षाबंधन का सेलिब्रेशन, जहां पर आज काजल बेहद खुश नजर आ रही है। तभी तो देखिए कैसे अपने भाई माधव और मनीष दोनों को अपने हाथों से राखी पहना रही है, लेकिन दूर खड़ा अरमान उसका चेहरा मायूस है और वो लिफाफे में राखियां देख रहा है, क्योंकि उसकी बहनें उसके पास जो नहीं है और उसे अपनी बहनों की बहुत याद आ रही है। ऐसे में उसकी बहनों का सहारा बन पहुंच जाती है अरमान की दोनों बेटियां मायरा और मुक्ति, और देखिए कैसे अपने पापा के चेहरे पर खुशी लाने के लिए दोनों बहनें मिलकर अपने पापा के हाथों में राखी बांध

वह अपनी बेटियों का ये प्यार देखकर अरमान बेहद खुश है। इतना ही नहीं, मायरा और मुक्ति तो कृष को भी राखी बांधती हैं और दोनों को बहनों की कमी महसूस होने नहीं।

टीवी के सीरियल लक्ष्मी निवास में वही अपने ही घर से बेघर होने के बाद वीर और राधिका ने एक चौल में अपनी नई जिंदगी गुजारने का फैसला किया है अपनी छोटी बिटिया रानी के साथ। ऐसे में आज उनका सहारा बनने के लिए पहुंच गई है राधिका की मम्मी और साथ ही नजर आ रहा है उनका परिवार भी जो एक साथ बैठकर यहां पर खाना खा रहे हैं।

पर इतना ही नहीं, आज तो देखिए कैसे लक्ष्मी जी वीर को अपने हाथों से खाना खिला रही हैं, ताकि उसे अपने घर की याद आए। और बस क्या, इस मोमेंट को देखकर भाई वो दोनों ही बेहद इमोशनल हो गए। भाई आंखों से आंसू झलकने लगे, क्योंकि अपनी माँ की ममता को याद कर भाई लक्ष्मी रो रही है, तो वहीं दूसरी ओर वीर भी अपनी माँ को याद कर रहा है। और इस तरीके से जीवन बताने की भाई अब उसने तो ठान ही ली है। पूरा माजरा देखकर कहीं ना कहीं भाई राधिका भी इमोशनल हो रही है, हालांकि खुश भी है कि किस तरीके से उसका पूरा परिवार उसके साथ है।

0: भाई ऐसे में एक खुशहाल परिवार जिंदगी बिताने का फैसला राधिका वीर और निया ने साथ में कर ही लिया है, लेकिन क्या इनकी जिंदगी इतनी ही खुशियों से भरी होंगी या फिर आएंगे इनकी जिंदगी में कांटे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
1: चलिए अब चलते हैं गेम रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी के सेट पर और देखते हैं कि आज खिलाड़ी बने सितारे कौन सा नया स्टंट करने में लगे हुए हैं।
2: कुछ नहीं होगा, बहुत बढ़िया।
3: दोनों अपने स्ट्रेंथ पे जा रहे हैं, जैसे भाई भाई पीछे हैं ऐसे, आज फराना ऐसे, दोनों अपने अपने स्ट्रेंथ पे जा रहे हैं।
4: मैं जितना मुझे एक्चुअली ना, ये जैसे सेंटर में आते हैं ना, वो डिस्टेंस बढ़ जाता है।
2: बहुत बढ़िया जा रहे हैं,
3: वेरी नाइस।
2: ऐसे ही चलेंगे भाई, यही पकड़ के रखना, बहुत बढ़िया।
3: धीरे धीरे आराम से भाई,

0: हाँ भाई हेलमेट में अटकेगा, संभालना थोड़ा सा बस।
1: लंबा कदम, लंबा लंबा
0: हेलमेट में अटकेगा, संभालना
1: कदम लंबा रखो, कदम लंबा रखो।
2: फराना पहुंच चुकी है, करण का वेट कर रही है।
1: ओके
3: ओके सर।
1: फराना रस्सी मत छोड़ना, ऊपर वाली कुछ भी हो। सबा सबा
3: चलो करण,
0: आराम से भाई आराम से, बहुत बढ़िया बैलेंस
3: हो रहा है, हो रहा है।
4: ये क्या किया है इसने?
0: फराना ग्रिप नॉर्मल कर ले।
1: तो पहले ग्रिप थी,
5: उसे उसे एल्बो डाल दिया।
0: बस बस ऐसे ही रहो, ऐसे ही रहो।
1: ग्रिप राइट कर। मैं थक रही हूँ यार।
5: अरे अरे देख इसका
3: फराना होल्ड, पहुंच गई है तू।
1: फराना एल्बो मत यूज करना
2: भाई, हेलमेट के ऊपर रख, हेलमेट के ऊपर भाई, भाई हेलमेट सेफ नहीं, यहाँ ऐसा रख।
6: वेट वेट वेट,
4: आराम से आराम से।
6: मेरे मेरे बाल एग्जॉस्ट हो चुके हैं।
4: प्रोमो प्रोमो से
0: आराम से, बहुत टाइम है, आराम से आराम से।
1: कोई भाई नहीं,
0: रस्सी किसी भी हाल में नहीं छोड़ेंगे भाई। बैलेंस ले ले, पहले बैलेंस ले ले।
4: हाँ छूट रहा है। प्राण जा तू, जा जा जा।
1: धीरे चल तू,
6: करीब थक रही है, मैं नहीं रुक सकती।
0: ऑलमोस्ट फराना पहुंच गई है, ऑलमोस्ट पहुंच गई है, उसके बाद इजी है।
4: टूट रही है तार,
0: रस्सी नहीं छोड़ना भाई, रस्सी पकड़।
4: नहीं जा रहा आज, उंगली नहीं उड़ रही है।
3: ये पहुंच गई फराना,
0: पहुंच गई है। चल फराना पहुंच गई,
3: चल तू भी चल, निकलो अभी निकलो आराम से। वेरी गुड फराना,
2: गुड गुड
3: फराना, वेरी गुड।
4: बैठ
2: पानी भेज दे।
1: बहुत बढ़िया भाई,
4: श्री राम।
0: चलो इस डाने, इस डाने नाउ जेसी,
1: वेरी गुड गाइस।
0: हाँ गाई नहीं करना बेटे भाई, पहुंच गया, बस कदम रख दे।
3: वेरी गुड।
7: लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर नॉट रेडी फॉर दिस।
2: जितने भी खिलाड़ी हैं, सब खिलाड़ी बोलते हैं, लेकिन एक है हमारे पास जो खिलाड़ी मम्मी है। ये सब जानते हैं कि वो कौन है, रुबीना जी।
8: रुबीना जी,
1: अरे मैं दो बेटियों की माँ हूँ, सबकी मानी हूँ मैं यार।
2: बिल्कुल, हम कहाँ मना कर रहे हैं, हम लोग एकदम अग्री कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं उसमें। लेकिन आपने जो डर का माहौल बना रखा है, आपको आइडिया नहीं है कि कितने लोग डर रहे हैं यहाँ पे।
3: हाँ भाई, तुमसे बहुत फटती है हमारी।
1: धन जाने धनिया की तरह कूटूंगी मैं।
4: एक तो ज्ञान देती है, उसके बाद वाइवा भी लेती है हमारा।
2: इनका ये आदत सब एग्री करेंगे, ये यूं यूं कर रही होती है सुबह सुबह पास में। इसका वीडियो है सर मेरे पास, इन्होंने औरी के साथ भी खतरनाक चीज की है।
4: अरे बाप रे,
1: अरे इसलिए मैं पीछे बैठी थी।
4: एक तो राखी सावंत की लग रही हो। तुम हो
1: सर? प्राणायाम भस्त्रिका कर रही हूँ सर।
4: ये ऐसा प्राणायाम नहीं है, डराने वाला नाम है कुछ तो।
2: सर एक छोटी बच्ची रूहानिका, बेटा बताओ, बेटा बताओ क्या बोला था मुझे उस दिन, एकदम एग्जैक्ट वर्ड बताओ।
9: रूही, रुबीना जी मुझे प्यार से बिल्कुल मम्मी की तरह खिलाती रहती है। हर दो सेकंड में कुछ ना कुछ उनके बैग में से निकलता है, कभी जूस, कभी घी, कभी बिस्किट, कभी क्रोसॉन, पूरा होटल का का ब्रेकफास्ट उनके छोटे से बैग में होता है।
2: ये भी डर से नहीं बोल रही है, वहाँ मेरे को बोलती है आई डोंट वॉन्ट टू बी विद हर, अभी ना जब भी खा लो मुझे कुछ ना कुछ बोलती है, बेटा ये भी खा लो वो भी खा लो, मेरे को नहीं खाना है, मैं खा चुकी होती हूँ। बेटा तुम्हारे लिए बोले तुम बोल दिया करो।
4: एक मिनट, और ही कुछ कहना चाहते हैं?
8: मैं मेरा बंटी के साथ बहुत खुश है, सब लोग उसको पूरा नफरत कर रहे हैं। जब मैं वो रस्सी पर था, वो रस्सी मेरा हाथ को पार रहा था, मैं रुबीना को देख रहा था, मुझे इतना एड्रेनलिन रश मिला कि मैं ऐसा राक्षस की जैसा नीचे खींचा, कोई और मुझसे नहीं हो पाता था।
4: बट बाकी लोग आपको लगता है रुबीना के खिलाफ है सब?
10: कोई रुबीना के खिलाफ
4: नहीं सर, हम लोग को तो बड़ा अच्छा लग रहा है।
10: वो कोई भी खिलाफ,
4: रुबीना अपने बच्चे छोड़ के आई है ताकि हमारी माँ बन सके।
1: किसी की मानी बनना यार,
8: मेरा पार्टनर।
4: एंड थ्री टू वन गो।
10: धीरे धीरे जा अविनाश, धीरे धीरे। सही जा रहा है, सही जा रहा है, सही जा रहा है, सही जा रहा है।
4: आराम से चले, नीचे अविनाश,
10: अविनाश नीचे,
4: अविनाश वो ऊपर नहीं आ पाएगा, नीचे नहीं आएगा तो।

0: Vishal.
1: Avinash, नीचे क्यों नहीं आ रहा
2: है? दिखा, ये देखो, ये one,
3: two,
2: three, ये
3: साइड लगा, साइड ऊपर ला, ऐसे क्रॉस ही है, ऐसे येलो चाहिए,
2: येलो,
3: ऐसे येलो चाहिए, चल,
2: ये, one, two,
3: बोला ना खोला बोला,
2: ये कौन सा
3: बोला, कौन बोला, किधर रख रख रख
2: यहाँ पे
3: हाँ नहीं सर राइट लेफ्ट लेफ्ट बेटा
2: उल्टा रख
3: ऐसे रख ऐसे ऐसे
2: यस
3: सर आगे रख देखो कौन कंट्रोल कर रहा है वो लगा लगा लगा लगा लगा लगा लगा लगा लगा हो लगा
2: हाँ
3: वो लगा
2: नीचे जाना है
3: हाँ जा नीचे जाते हैं
2: भाई सांस लो
4: जा नीचे जा नीचे
2: नीचे
4: जाना
5: एक बार नीचे जाके ध्यान से देख
2: कम से कम दो तो सही लगाए मैं जा रहा हूँ चल विशाल हाथ छोड़
5: चल हाथ छोड़ लग जाएगा बेटा
1: विशाल हाथ छोड़ने लगेगी तेरे को
5: देख वो देख वो देख
1: नहीं वो लंबा
2: है
3: अरे तेरे भाई रुक रुक
5: अरे कोई हाथ ज्यादा मत हिला काम
3: सर पे लगा है
2: ओ बॉय ओ
3: वो लगा था बीच में
2: Is this?
4: Yeah. Very nice.
2: Okay.
4: Very nice.
2: Okay.
4: Very nice.
3: Yeah.
1: Shabash, shabash, shabash.
3: Yeah, yeah, yeah.
2: This is it?
3: Yeah, this is it.
2: Great, great, great.
1: Current maro, yaar.
2: Oh, boy. Oh!
3: Oh, look. Ah, ठीक है.
2: This is it?
6: Vishal, check kar andar.
2: Sirf right ka dekhna.
1: Are wa, eight.
4: आराम से
5: अरे
4: इजी
5: केबल छोड़ दे अरे रिलैक्स हो जा केबल छोड़ दे
2: ओह माय
3: मेरा शोल्डर
5: क्या करना है
3: मेरा शोल्डर ये वॉट नहीं कर रहा है
4: ठीक है एक हाथ से कर ले अगर कर सकता है रोक सकता है खुद को
5: तो अबॉर्ट करना है
2: नहीं
4: मत कर अभी अबॉर्ट
2: कुछ करेक्ट है फिर बीच का हटाओ ओके वन सेकेंड ये ओके ओके ओके
3: गया भगवान लगाना यार
2: ओके वन सेकेंड
5: टेन
4: फाइव
5: फोर थ्री टू वन स्टॉप
4: नॉट बैड विशाल वेरी गुड
7: चलिए अब चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर जहां हम दिखाते हैं आपको एंटरटेनमेंट जगत की रॉकिंग और शॉकिंग न्यूज
8: पेश है बॉलीवुड ओटीटी और टेलीविजन की रॉकिंग और शॉकिंग खबरें रॉकिंग और शॉकिंग खबरों में बात करते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है फेम मोहसिन खान की इन्होंने एंगेजमेंट कर ली है अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड तमन्ना के साथ ऐसे में सामने आई है ये बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें उनकी एंगेजमेंट पार्टी से आइए डालते हैं इन पर एक नजर

देख लीजिए कन्वर डिल्लों की बहना की शादी का ये वीडियो, जहां चूड़े की रस्म में इमोशनल हो गया है पूरा परिवार।

0: की लक्ष्मी फेम मायरा मिश्रा ने करवाया अपना मैटरनिटी फोटोशूट। आइए डालते हैं इन पर एक नजर। देख लीजिए कलर्स टीवी के सीरियल मन्नत का ये प्रोमो, जहां विक्रांत ने जड़ दिया है मान्यता को थप्पड़।
1: অগস্ট থেকে একটা নতুন খেলা, আর সেই খেলার ময়দান এই দুর্গের ভেতর।
0: শুরুয়াত হো চুকি হ্যায় বিগ বস বাংলা কি, और सौरभ गांगुली कर रहे हैं इस शो को होस्ट। भाई कैसा होगा ये सीजन, ये देखना दिलचस्प होगा।
1: टिके थकते होले जीतते हवे सोनार मुकुट, एखाने मुहूर्ते सब किछु उल्टे जेते पारे, आबार ना चाहले पालते जेते पारे वास्तव।
2: माथार ओपर आकाश देखते गिए एखाने पायर तलार माटी सरे जेते पारे, এখানে ভরসা আর ভয় দুটোকেই সঙ্গে নিয়ে চলতে হয়। হারের দুঃখ কার ভাগ্যে, আর বিজয়ের মুকুট এবার কার মাথায়?
1: দুর্গ জয় সহজ নয়।
0: শুরু হো চুকি হ্যায় আশ্রম ফোর কি শুটিং, এসে মে তৈয়ার হো জাইয়ে ফির এক বার ববি দেওল কা অনোখা অন্দাজ দেখনে কে লিয়ে।
3: सास बहू और बेटियां में आज बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल और दीजिए हमको इजाजत। नमस्कार।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: रिलीज से पहले टॉक्सिक का एडवांस विस्फोट। रॉकिंग स्टार की सिल्वर स्क्रीन पर दमदार चोट। यश के दम पर बेहिसाब पैसा कुर्बान। बालक के बारूद बनने की अनोखी दास्तान। बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
3: रक्षाबंधन पर पर्यावरण संरक्षण का संदेश, गाय के गोबर से बनाए जा रही है राखी और अन्य सजावटी सामान। गाय गया के बाजारों में जमकर हो रही है राखी की खरीदारी। मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में काली घटा आयोजन, मंदिर में दिखा सावन का मनमोहक नजारा, ठाकुर जी के दर्शन कर गदगद नजर आए भक्त। जन्माष्टमी को लेकर इस्कॉन मंदिर में तैयारियां तेज, दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर खास तैयारियां। नेशनल स्पेस डे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश के स्पेस स्टार्टअप्स और राउंड के सीईओज के साथ खास संवाद, इनोवेशन और युवाओं की भूमिका पर चर्चा। बनासकांठा के बादरगढ़ गांव में 1 सितंबर से पान मसाला गुटखा और शराब की बिक्री पर लगा बैन, कानून उल्लंघन पर लगेगा जुर्माना।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
3: देश आज मना रहा है चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक सफलता की तीसरी वर्षगांठ। 23 अगस्त 2023 को भारत ने चांद के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में की थी सफल सॉफ्ट लैंडिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी, बड़े सपने देखने और नई ऊंचाइयों को छूने का आह्वान। अमित शाह ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी, चंद्रयान 3 की सफलता और इसरो के वैज्ञानिकों की सराहना। राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर शुभकामनाएं दी, चंद्रयान ने से गगन तक भारत की अंतरिक्ष यात्रा की सराहना। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के मौके पर इसरो ने लोगों से की जश्न में जुड़ने की अपील, देश की अंतरिक्ष उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाना लक्ष्य। नेशनल स्पेस डे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पेस स्टार्टअप्स के सीईओ फाउंडर से बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रॉकेट सैटेलाइट से लेकर एआई तक की चर्चा की, स्पेस टेक्नोलॉजी और नए इनोवेशन को लेकर भी बात हुई। मुलाकात के दौरान 20 स्पेस स्टार्टअप्स के सीईओ और फाउंडर्स मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के स्पेस सेक्टर में काम कर रहे स्टार्टअप्स की तारीफ की, सोशल मीडिया एक्स पर लिखा भारत के सबसे प्रतिभाशाली स्पेस स्टार्टअप से मुलाकात। अहमदाबाद में नेशनल स्पेस डे को लेकर समारोह का आयोजन किया गया, इसरो की यात्रा को लेकर वीडियो का जारी किया गया। दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश स्थित इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी की तैयारियां शुरू, 4 सितंबर को मंदिर में मनाया जाएगा भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव। जन्माष्टमी से पहले रंग बिरंगी लाइटों से सजाया जा रहा है इस्कॉन मंदिर परिसर में सजावट और रंग बिरंगी रोशनी। जन्माष्टमी को लेकर मंदिर परिसर में लगाए जा रहे हैं रंग बिरंगे टेंट, बड़ी संख्या में भक्तों के पहुंचने का सिलसिला। जन्माष्टमी के मौके पर लाखों भक्त भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं इस्कॉन मंदिर, करीब 2 महीने पहले शुरू हो जाती है तैयारियां। इस्कॉन मंदिर में इस बार भी जन्माष्टमी पर होगा भव्य आयोजन, मंदिर को सजाने और श्रद्धालुओं के स्वागत की तैयारियां। हिमाचल प्रदेश के मंदिरों में दान को लेकर बने रिकॉर्ड्स, 36 मंदिरों में 1 जनवरी 2024 से 1 अगस्त 2026 तक करीब 420 करोड़ रुपए का चढ़ावा। सबसे ज्यादा चढ़ावा हमीरपुर के बाबा बालकनाथ देवता सिद्ध मंदिर में आया। बिलासपुर के नैना देवी मंदिर में 86 करोड़ रुपए से ज्यादा का मिला चढ़ावा। माता चिंतपूर्णी मंदिर में 85 करोड़ रुपए से ज्यादा दान। हरिद्वार में हर की पौड़ी में देखा आस्था का अनोखा संगम, मुल्तान समाज के लोगों ने मां गंगा के साथ खेली दूध की होली। मुल्तान समाज की ओर से लोगों को गंगा स्वच्छता का दिया गया संदेश। देशभर में रक्षाबंधन को लेकर बाजारों में छाई रौनक, राखी से लेकर गिफ्ट की दुकानों में बढ़ी डिमांड।

0: स्पेशल बच्चों को स्कूल की टीचर दे रही हैं राखी बनाने की प्रशिक्षण। बच्चे अपने मन की डिजाइन से राखी करते हैं तैयार। गया में रंग बिरंगी राखियों से सजे बाजार। बहनें अपने भाइयों के लिए खरीद रही हैं मनपसंदी राखियां। पाली में पर्यावरण की रक्षा करने के लिए गोबर से बनी राखियों की बड़ी डिमांड। उपहार के लिए आकर्षण गहने भी बने। रक्षाबंधन को लेकर करनाल के बाजारों में छाई रौनक। बहनें अपने भाइयों के लिए जमकर खरीदारी कर रही हैं। मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में काली घटा का आयोजन किया गया। मंदिर में दिखा सावन का मनमोहक नजारा। ठाकुर द्वारकाधीश महाराज को काली घटा में कराया गया विराजमान। काले बादलों की गड़गड़ाहट, चिड़ियों की चहचहाट और बिजली के घनघोर आवाजों से बनाया गया बारिश का माहौल। ठाकुर जी के दर्शन करके श्रद्धालु हुए भाव विभोर। झमाझम बारिश के साथ हुई दिल्ली एनसीआर में मौसम हुआ सुहाना। वीकेंड कूल कूल। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में लोगों ने रेनी संडे का उठाया लुत्फ। रिमझिम बारिश। दिल्ली एनसीआर में बारिश के चलते लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। तापमान में गिरावट। दिल्ली एनसीआर में अगले दो दिनों तक बने रहेंगे बारिश के आसार। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। गाजियाबाद से लेकर गुरुग्राम तक मौसम ने अचानक करवट ली। काले बादलों के साथ मूसलाधार बारिश। देश के कई हिस्सों में मॉनसून सक्रिय। पश्चिम बंगाल, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के अलावा हरियाणा और चंडीगढ़ में बारिश का अलर्ट। उत्तर प्रदेश में कई जिलों में तेज बारिश जारी। बांदा में भीषण बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। उत्तराखंड के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ जारी रहेगा बारिश का दौर। पौड़ी, नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली और उत्तरकाशी के लिए अलर्ट। देवभूमि उत्तराखंड में फिर बदल गया मौसम का मिजाज। देहरादून में देर रात बारिश। बिहार के दानापुर दियारा में बढ़ा गंगा नदी का जलस्तर। नाव से नदी पार करने वाले लोगों को सुरक्षा की चिंता। बेगूसराय में लगातार बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर। सड़कों पर बह रहा है 2 फीट तक पानी। प्रयागराज में गंगा और यमुना के जलस्तर बढ़ना लगातार जारी। कई घाट डूबे। हापुड़ में गंगा से सटे ग्रामीण इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। जिलाधिकारियों ने प्रभावित इलाकों में बंटवाई राहत सामग्री। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में लगातार बारिश का दौर जारी। कई इलाकों में जलजमाव। श्रीनगर में बारिश के बाद मौसम हुआ सुहाना। पर्यटक जमकर उठा रहे हैं लुत्फ। राजस्थान की राजधानी जयपुर में मिलावट खोरों पर प्रशासन का शिकंजा। संदिग्ध मूंगफली तेल का 6,900 लीटर स्टॉक सीज। खाद्य सुरक्षा विभाग ने प्रदेश भर में 60 जगहों पर मारे छापे। कार्रवाई के दौरान 101 खाद्य नमूने पाए गए। उदयपुर में 600 लीटर नकली दूध नष्ट किया गया। कई जिलों में बासी मिठाई, मावा, घी और तेल पर कार्रवाई। जालना के बाघाड़ी गांव में आजादी के बाद पहली बार शुरू हुई नियमित बस सेवा। ग्रामीणों ढोल ताशों के साथ बस का फूलों से किया स्वागत। कोलकाता में सीनियर सिटीजन्स को लेकर क्रिएटिविटी नेवर रिटायर्स आर्ट थेरेपी का आयोजन किया गया। आर्ट थेरेपी वर्कशॉप में मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने भारत माता की बनाई पेंटिंग। फिट संडे मिशन के तहत विशाखापट्टनम में साइकिल इवेंट का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। विशाखापट्टनम साइकिल इवेंट में मंत्री मनसुख मांडविया भी शामिल हुए। लोगों को गुड हेल्थ के लिए जागरूक किया। पंजाब यूथ रन के तहत मॉडल टाउन में मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। इस साल नवंबर महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं दरभंगा एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन। निर्माण कार्य ने पकड़ी रफ्तार। दरभंगा एयरपोर्ट से जल्द शुरू होगी रात्रि विमान सेवा। फिलहाल यहां से सिर्फ दिन में उड़ानों का हो रहा है संचालन। दरभंगा एयरपोर्ट को धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के तौर पर किया जा रहा है विकसित। दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने रन फॉर वंदे मातरम देशभक्ति दौड़ का किया आयोजन। दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में सेक्रेड टाइगर टेल्स बुक लॉन्च हुई।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: भाई और बहनों नमस्कार। मैं बाबा रवि गिरी आज जो कार्यक्रम लेके आया हूं वो आपकी आंखें खोल देगा। क्या आप जानते हैं कि मैं 78वें वर्ष में चल रहा हूं, लेकिन आपको शायद ये जानकर विश्वास ना हो कि मैं आज भी रोज कई किलोमीटर आराम से चलना ही नहीं बल्कि दौड़ भी लगा सकता हूं। इस उम्र में जहां लोग दर्द से, खासकर जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं, मैं इस उम्र में भी पूरी तरह फिट हूं। न मुझे जोड़ों का कोई भी दर्द है और ना मेरी एनर्जी कम है। आप जानते हैं कि ऐसा कैसे संभव हो पाया? तो मैं आपको बता दूं कि मेरे बनाए नुस्खों की वजह से, जो इस उम्र में भी मुझे हाथ पैर कंधे घुटने के दर्द से दूर रखते हैं। और आज के कार्यक्रम से ये आपके साथ भी मैं साझा कर रहा हूं, आप भी अगर जोड़ों के दर्द से जूझ रहे हैं, दवाएं खाते खाते परेशान हो गए हैं, तो एक बार मेरे नुस्खों को आजमा कर देखें, आपको 100% लाभ मिलेगा। ये मेरा आपसे वादा है। और ये नुस्खे कितने कारगर हैं इसका जीता जागता सबूत मैं आपके सामने बैठा हूं। इस उम्र में भी मेरे शरीर के सारे जोड़ चुस्त हैं, दुरुस्त हैं। मैंने ये नुस्खे अपने 50 वर्षों से भी अधिक के आयुर्वेदिक अनुभवों के ज्ञान और लंबे शोध के बाद तैयार किए हैं और हजारों लोगों को मैंने ठीक भी किया है। अगर आपको कई सालों से जोड़ों के दर्द की समस्या है, कोई चोट की वजह से दर्द है, बढ़ती उम्र के साथ दर्द बढ़ रहा है, या फिर कम उम्र में ही जोड़ों में, खासकर घुटनों में दर्द रहने लगा है, जोड़ों में ग्रीस कम हो गया है, गैप आ गया है, या फिर पानी भर गया है, समस्या चाहे जो भी हो और आपकी उम्र भी चाहे जो भी हो, आपको मेरे बनाए नुस्खे जरूर फायदा देंगे। ये मेरा आपसे वादा है। आपको बता दूं कि पुरुषों के मुकाबले जोड़ों के दर्द की समस्या महिलाओं को जल्दी और ज्यादा होती है, जिसका कारण हार्मोनल असंतुलन की वजह से, यानी मेनोपॉज भी आपको हो सकता है। लेकिन मैं बाबा रवि गिरी आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी ये सभी समस्याएं मेरे नुस्खों से बिल्कुल ठीक हो सकती है और जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाकर आप बिना दर्द के चलना फिरना ही नहीं दौड़ना भी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए ये जो नंबर हैं इन पे कॉल करना है, आपको आपकी सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। तो भाइयों और बहनों, अगर आपको लगता है कि बढ़ती उम्र में जोड़ों का दर्द होता ही होता है, तो मैं आपको बता दूं कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। अगर आप ध्यान देंगे, सही दिनचर्या अपनाएंगे और अपने जोड़ों का ध्यान रखेंगे, तो आपके जोड़ आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, बल्कि उम्र भर आपके शरीर का अच्छे से बोझ उठाएंगे और आपको चुस्त और दुरुस्त रखेंगे। और ऐसा करने में आपको मेरे नुस्खे हर तरह से मदद करेंगे। इन नुस्खों को मैंने इन्हीं सभी बातों को और समस्याओं को ध्यान में रखकर बनाया है। यदि हिम्मत और दृढ़ निश्चय हो तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। आपकी सोच और आपके प्रयास ही आपको आगे बढ़ाते हैं। जब मैं इस उम्र में भी आराम से कई किलोमीटर तक दौड़ सकता हूं, तो आप क्यों नहीं दौड़ सकते? तो आप अभी ये नीचे जो नंबर दिए गए हैं इन पे कॉल करके मेरे नुस्खों का फायदा उठाएं और अपनी दवा बुक करें। अगर आप सुबह उठते ही अपने घुटनों या पीठ में दर्द महसूस करते हैं तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्या आपको वो दिन याद है जब आप बच्चों के साथ पार्क में दौड़ा करते थे या बिना थके सीढ़ियां चढ़ लेते थे और अब थोड़ा सा चलना भी भारी लगने लगता है। जोड़ों का दर्द ना सिर्फ हमारे शरीर को तकलीफ देता है बल्कि हमारी जिंदगी के कई खूबसूरत पलों को भी हमसे छीन लेता है। न रोज के काम अच्छे से कर पाते हैं और न ही हर दिन की भागदौड़ में वो आत्मविश्वास रह जाता है। जरा सी सीढ़ियां चढ़ने पर घुटनों में दर्द होने लगता है, जमीन पर बैठना मुश्किल हो गया है और चलने में भी डर लगता है कि कहीं दर्द और ना बढ़ जाए। सच तो ये है कि जोड़ों का दर्द सिर्फ शारीरिक तकलीफ नहीं देता, ये हमारे अंदर की हिम्मत को भी गिरी पाए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये दर्द होता क्यों है? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे आम कारण है गठिया यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये सबसे आम प्रकार है जो उम्र बढ़ने के साथ साथ जोड़ों की घिसावट की वजह से होता है। इसमें कार्टिलेज जो हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है जिससे जोड़ों में दर्द और अकड़न होती है। क्या आप जानते हैं कि गठिया के 100 से ज्यादा प्रकार हैं जिनमें हल्के से लेकर गंभीर दर्द का सामना करना पड़ सकता है। रोमेटॉइड आर्थराइटिस जोड़ों के दर्द की ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की इम्यून सिस्टम खुद ही जोड़ों पर हमला करने लगती है। इससे जोड़ों में सूजन, दर्द और समय के साथ हड्डियों की बनावट तक बदल सकती है। तो भाइयों और बहनों, मेरे नुस्खे इन सारी समस्याओं में असरकारक है क्योंकि इनमें ढेरों शक्तिशाली जड़ी बूटियों को मैंने अपने 50 साल से ज्यादा के अनुभव से अलग अलग फार्मूलेशन में मिलाया है जो आपको आपकी समस्या के हिसाब से बनाकर दी जाती है। इसलिए ये बिल्कुल सीधा असर करती है। मैंने ये नुस्खे पुरुष हो चाहे महिला हो, उम्र चाहे 20 साल हो चाहे फिर 70-80 साल हो, चलने में दिक्कत हो, सीढ़ियां चलने में दर्द होता हो, जोड़ों से कटकट की आवाज आती हो, इन सभी समस्याओं पर गहन चिंतन और शोध के बाद ही ये नुस्खे तैयार किए हैं जिनका असर अचूक है। चलती रहनी चाहिए जिंदगी बिना दर्द के और बिना रुकावट के। मैं बाबा रविगिरी आपको कुछ ऐसे नुस्खे और जड़ी बूटियां बताऊंगा जिससे आप अपने जोड़ों का समाधान तुरंत पा सकते हैं। जोड़ों के दर्द में प्रयोग की जाने वाली आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो मैं बताने जा रहा हूं उनमें सबसे पहला है तेलपर्ण। इसको तेलपर्ण क्यों कहा जाता है कि इसके पत्तों में तेल होता है, इसलिए इसको तेलपर्ण कहते हैं। वैसे आम भाषा में इसको नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो है ये है सती तेल। ये सूजन को घटाता है, अंदर तक समाकर ये सूजन बढ़ाने वाले इंटरल्यूकिन स्तर को कम करता है और सूजन को घटाता है। इसके बाद में है ये तेजोवती। इसमें मौजूद लिनालूल और लिमोनेन कफ दोष शमन करके और सूजन को घटाता है। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर यानी TNF और इंटरल्यूकिन 6 के बढ़े हुए लेवल्स को घटाता है ये। इसके बाद में है ये तेज पत्ता यानी त्वक पत्तर। ये जोड़ों में जकड़न से निजात दिलाता है, जोड़ों में गतिशीलता देता है। इसके बाद में यह है ज्योतिषमती, ये वात और कफ को संतुलित करके जोड़ों के दर्द में आराम दिलाता है। ये है गंध पत्र, ये गंधपुरा पत्र में 85 से 99% तक मिथाइल सिलिसिलेट होता है जो दर्द निवारक है। तो इससे मांसपेशियों, जोड़ों, हड्डियों के दर्द में आराम मिलता है। इसके बाद में ये है लवंग, इसमें प्रस्तुत यूजेनॉल दर्द को और सूजन को कम करता है और अंदर के इन्फेक्शंस को खत्म कर देता है। इसके बाद में यह है तिल का तेल, बहुत अच्छी चीज है ये। तिल के तेल में एंटी इंफ्लामेटरी गुण पाया जाता है जो घुटनों में होने वाली सूजन और दर्द को कम करने में प्रभावी होता है। इसके बाद में ये तेल है, ये मेजन करी तेल, इस पौधे में औषधीय गुण होते हैं और इसका उपयोग पारंपरिक रूप से विभिन्न बीमारियों जैसे पेट दर्द और गैस्ट्रो इंट्राइस्टिस के साथ साथ मधुमेह, एडिमा, सर्दी, गठिया, अस्थमा और दर्दनाक चोट के इलाज के लिए किया जाता है। उसके बाद में यह है सुरंजन कटु, ये सूजन रोधी एवं दर्द निवारक प्रभावों के लिए जाना जाता है। यह एक प्रोपेरिएटरी मेडिसिन है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के गठिया में मसल्स और हड्डियों के समर्थन के लिए किया जाता है। इसके बाद में यह है चित्रक मूल, ये गठिया के लक्षणों को कम करने के लिए यानी चित्रक की जड़ अत्यंत फायदेमंद मानी जाती है। यह एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है, यह दर्द निवारक, सूजन को कम करने वाली, एक बैक्टीरिया और फंगस का नाश करने वाली भी है। यह है ट्रिक टू, इसमें मौजूद बायो एक्टिव कंपाउंड जोड़ों के दर्द, सूजन, लालिमा एवं जोड़ों की कठोरता को कम करने में मदद करता है। यह है अजवाइन, अजवाइन पाचन को दुरुस्त करता है, टॉक्सिन को बाहर निकालता है, प्रोटीन, फैट, फाइटोकेमिकल, फाइबर, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन जैसे पोषक तत्व इसमें प्रचुर मात्रा में भरे हुए हैं। आखिर में है अबरक भस्म, यह कफ को संतुलित करके आरए फैक्टर को कंट्रोल करता है और सर्दियों में जो जोड़ों का दर्द ठंड की वजह से बढ़ जाता है उसको नियंत्रित करता है। साइटिका से आजकल बहुत लोग परेशान है, साइटिका आप सभी जानते हैं कि एक टांग में होने वाला दर्द है जिसका उद्गम रीढ़ की हड्डी से शुरू होता है क्योंकि वहां की नस हिल जाती है। मेरे पास ऐसी अभिमंत्रित ताबीज भी है जो इस दर्द को दूर कर देगी। जोड़ों का दर्द एक असहनीय रोग है, यह एक व्यक्ति से उसकी आत्मनिर्भरता छीन लेता है। तो मेरी एक ही सलाह है, अब गोलियों से नहीं इलाज सिर्फ नुस्खों से करें क्योंकि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और असर 100% मिलेगा। ये मेरा यानी बाबा रविगिरी का वादा है। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करना है और अपने लिए मेरे नुस्खे मंगवाने हैं। फिर देखिए दर्द कैसे खुद ब खुद भागता है, ये मेरा वादा है। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए और तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। तो राम राम भाई और बहनों, नमस्कार।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं। तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: रक्षाबंधन पर पर्यावरण संरक्षण का संदेश, गाय के गोबर से बनाई जा रही हैं राखियां और अन्य सजावटी सामान, गया के बाजार में जमकर हो रही है राखी की खरीदारी। मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में काली घटा आयोजन, मंदिर में दिखा सावन का मनमोहक नजारा, ठाकुर जी के दर्शन कर गदगद नजर आए भक्त। जन्माष्टमी को लेकर स्कॉन मंदिरों में तैयारियां तेज, दिल्ली के स्कॉन मंदिर में कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर खास तैयारियां। नेशनल स्पेस डे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश के स्पेस स्टार्टअप्स और उनके सीईओस के साथ खास संवाद, इनोवेशन और युवाओं की भूमिका पर चर्चा। बनासकांठा के बादरगढ़ गांव में 1 सितंबर से पान मसाला गुटखा और शराब की बिक्री पर लगा बैन, कानून उल्लंघन पर लगेगा जुर्माना।

नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं पूजा पराशर। शिव ही सत्य है, शिव अनंत है, शिव ही सृष्टि का आधार है। महादेव की महिमा का जितना गुणगान किया जाए तो कम है। वैसे तो महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और मान्यता ये है कि 2 शिवलिंग ऐसे हैं जिनका एक सिरा है उत्तराखंड में और दूसरा छोर माना जाता है नेपाल में। और आज हम आपको महादेव के 2 ज्योति स्वरूपों के बारे में बताएंगे जिनका इतिहास महाभारत काल से जुड़ा बताया जाता है। आखिर वो कौन सी अलौकिक घटना हुई थी द्वापर युग में जिसने केदारनाथ और पशुपति नाथ के शिवलिंग को एक दूसरे से जोड़ दिया है, वो देखिए।

वो क्षण में प्रसन्न होने वाले हैं। भक्तों के कष्टों को हरने वाले हैं। शिव जो शुभ और पवित्र हैं, वो ही प्रकृति है। ब्रह्मांड के कण कण में शंकर का वास माना गया है।

0: शिव अनादि है, आदि है, मध्य है और अनंत भी। शिव ही प्रथम है और शिव ही अंतिम। शिव से ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष है। पूरी सृष्टि शिव की शरण में है। शिव जगत के गुरु और परमेश्वर है। शिव का अर्थ है जो शून्य है।
1: ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
0: कहते हैं कि सृष्टि में सब कुछ शून्यता से आता है और वापस शून्य में ही चला जाता है। इस सृष्टि में आपको जो भी चलता फिरता दिखता है वो शून्य से ही उपजा है और शून्य में ही समाहित होता है। शिव ही वो गर्भ है जिसमें सब कुछ जन्म लेता है और उनमें ही समा जाता है। शिव के 12 ज्योतिर्लिंग की महिमा तो आप जानते ही हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि महादेव के 2 ज्योति स्वरूप शिवलिंग आपस में एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं? आज हम आपको वही कथा विस्तार से बताएंगे। शिव जी की एक ही ज्योति के 2 स्वरूप। वैसे तो शिव जी के सारे ज्योतिर्लिंग आपस में विशेष रूप से जुड़े हुए हैं, परंतु शिव जी के 2 ज्योतिर्लिंग आपस में विशेष रूप से जुड़े हुए हैं। एक है केदारनाथ और दूसरा है पशुपतिनाथ। ये शिव जी की एक ही ज्योति के 2 भाग है।
2: यूं तो क्षणे रुष्टे, क्षणे तुष्टे, रुष्टे तुष्टे, क्षणे क्षणे, भगवान शिव के लिए कहा जाता है, क्षण में प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा कोई देवता नहीं, ऐसा कोई भगवान नहीं जो एक लोटा जल से प्रसन्न हो जाए आपसे। भगवान ऐसे भी हो जाते हैं। सभी समस्त सृष्टि का हलाहल पी के कष्ट दूर करने वाले भगवान शिव को एक लोटा जल चढ़ाने से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं।
0: बाबा के ये दोनों स्थल पर्वतों की सुरम्य वादियों में बने हैं। कैलाशपति का वास तो माना ही गया है हिमालय में। आगे हम आपको शिव के दोनों ज्योति स्वरूपों की महिमा के बारे में विस्तार से बताएंगे और जानेंगे कि पशुपतिनाथ और केदारनाथ के बारे में क्या कहती है कथा। आप देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार।
3: धर्म ग्रंथ कहते हैं कि शिव एक लोक के नहीं है, वो एक काल के नहीं है, बल्कि वो तीनों लोकों के हैं। भूत, भविष्य, वर्तमान सब शिव के समाये हुए हैं। शिव यानी सत्य, शिव यानी सनातन, शिव यानी संपूर्ण ब्रह्मांड। उन्हीं महादेव का ज्योतिर्लिंग बना है नेपाल के काठमांडू में, जिसे भक्त पशुपतिनाथ के नाम से जानते हैं। क्या है पशुपतिनाथ की महिमा और इस धाम से वो कौन सी कथा जुड़ी है, चलिए जानते हैं।

0: अद्भुत है महादेव का स्वरूप।
1: बड़े भोले भाले
0: वो आदि योगी है, शिव स्वयं ब्रह्मा है। ये कथा है शिव की शक्ति और उनकी महिमा की। ये कथा है पशुपतिनाथ मंदिर की।
1: विश्वनाथ नाथों के नाथ है आदि नाथ शिव भोले।
0: नेपाल की धरती शिव के इस विराट स्वरूप को देखकर धन्य है। कहते हैं पशुपतिनाथ मंदिर वो मंदिर है जहां आज भी शिव का वास है। पशुपतिनाथ नेपाल में स्थित एक पवित्र स्थल है। ये शिव जी का एक विशेष मंदिर है जिसमें शिव जी पंचमुखी स्वरूप में विद्यमान है। ये नेपाल के बागमती नदी के तट पर स्थित है। नेपाल जब हिंदू राष्ट्र था तब पशुपतिनाथ को राष्ट्र देवता माना जाता था। भगवान शिव की विशेष कृपा पाने के लिए पशुपतिनाथ का दर्शन और पूजन अत्यंत कल्याणकारी माना जाता है।
1: जन्म मरण से मुक्ति दे, मोक्ष का तू दे तावर।
2: भगवान का कई जगह कथा में उल्लेख आता है कि भगवान पंचमुखी हैं, परंतु भगवान के चतुर्मुख रूप स्पष्ट धरती पे दर्शन देते हैं और चार दिशाओं और चार जो हमारे मनुष्य जीव के प्रयोजन है धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाले हैं। भगवान के हर स्वरूप के दर्शन करना हर एक व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। केवल हिंदू सनातन धर्मी ही भगवान की चार मुख के दर्शन कर सकते हैं।
0: पशुपतिनाथ मंदिर की कथा का एक सिरा महाभारत काल से जुड़ा है। ये उस वक्त की बात है जब महाभारत का महायुद्ध चल रहा था। कौरवों और पांडवों की सेनाएं आमने सामने थी। धर्म और अधर्म के युद्ध में पांडव अपने सगे संबंधियों का रक्त बहा रहे थे। 18 दिनों तक महाभारत का युद्ध चला। कहते हैं पांडवों ने अपने सगे संबंधियों का इतना रक्त बहाया कि भगवान शिव उनसे क्रोधित हो गए। कहते हैं शिव के क्रोध को शांत करने के लिए पांडवों के पास कोई उपाय नहीं था। ऐसे में कृष्ण ने पांडवों से भगवान शिव से माफी मांगने को कहा। पांडव भगवान शिव से माफी मांगने निकल पड़े। कहते हैं पांडव भगवान शिव को खोजते हुए पहले गुप्त काशी पहुंचे, लेकिन भगवान शिव वहां से विलुप्त होकर केदारनाथ चले आए। पांडव अपनी जिद पर अड़े थे और चाहते थे कि शिव उन्हें माफ कर दे, जिसके लिए पांडव शिव का पीछा करते हुए केदारनाथ पहुंच गए। कथा है कि भगवान शिव पांडवों के केदारनाथ आने से पहले ही बैल का रूप लेकर वहां खड़े बैलों के झुंड में शामिल हो गए, लेकिन पांडवों ने महादेव को पहचान लिया। इसकी भनक लगते ही भगवान शिव बैल के रूप में भूमि में समाने लगे। धरती में समाते शिव को रोकना जरूरी था। भीम आगे बढ़े और शिव को रोकने लगे। शिव के बैल रूप के पिछले हिस्से को तो भीम ने पकड़ लिया। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने तत्काल दर्शन देकर पांडवों को पाप मुक्त कर दिया।
2: ऐसा माना जाता है कि एक बार जब पांडवों ने अपने भ्रात हत्या और अपने वंश का नाश करने का लगने वाले पाप का ज्ञान करने के पश्चात उससे मोक्ष की कामना की और भगवान के दर्शन करने के लिए काशी गए, तो उन पापात्माओं को जानकर भगवान शिव ने उनको दर्शन नहीं दिए और काशी से वो सीधे केदारपुरी में जाकर दर्शन हुए। उनका पीछा करते हुए पांडव उनको ढूंढते वहां पहुंच गए, तो भगवान ने एक बैल का स्वरूप, इसीलिए तो उनका नाम पशुपतिनाथ भी कहलाता है, पशुओं के अधिपति। परंतु भगवान का तेज इतना सुंदर था कि पांडव पहचान गए उनको कि यही भगवान शिव है। तब भगवान को जिस स्थान पर पकड़ा भीम ने, तब भगवान उसी समय धरती में समा गए और जिस जगह धरती पर समाए भगवान की जो पीठ है, कुबड़ है, वो भीम के हाथ में आए। भगवान उसकी इस प्रयास से अति प्रसन्न हो गए। भगवान क्षण में प्रसन्न हो जाते हैं, क्षण में नाराज भी होते हैं। प्रसन्नता में भगवान ने उनको शाप से मुक्त किया, पाप से मुक्त किया और आशीर्वाद दिया था, तो वही स्वयंभू शिवलिंग केदारनाथ कहलाता है।
0: उसी समय से भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति के रूप में श्री केदारनाथ में पूजे जाते हैं। माना जाता है कि जब भगवान शंकर बैल के रूप में अंतर्ध्यान हुए तो उनके धड़ से ऊपर का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ। केदारनाथ और पशुपतिनाथ, अब वहाँ पशुपतिनाथ का मंदिर है। शिव की भुजाएं तुंगनाथ में हैं, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मद मदेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुए, इसलिए इन चारों स्थानों सहित श्री केदारनाथ को पंच केदार कहा जाता है। यहाँ शिव जी के भव्य मंदिर बने हुए हैं। हिंदुओं में पशुपतिनाथ मंदिर की विशेष मान्यता है। इसे शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। कहते हैं पशुपतिनाथ मंदिर के बिना केदारनाथ मंदिर अधूरा है और केदारनाथ के बिना पशुपतिनाथ मंदिर का महत्व पूरा नहीं होता। कैसा है मंदिर का और शिव जी का स्वरूप? ज्यादातर मंदिर का निर्माण लकड़ी से हुआ है। मंदिर का शिखर स्वर्णिम है और वहाँ त्रिशूल और डमरू विद्यमान है। मंदिर के चारों ओर चार दरवाजे हैं। मुख्य मंदिर में महिष रूपी भगवान शिव का शिरोभाग है। इसके शिवलिंग में 5 मुख हैं। 4 मुख 4 दिशाओं में हैं और 1 मुख ऊपर की ओर है। पहला दक्षिण मुख अघोर कहलाता है, दूसरा पूर्व मुख तत्पुरुष है, तीसरा उत्तर मुख अर्धनारीश्वर और चौथा पश्चिम मुख सद्योजात कहा जाता है। इस शिवलिंग का 5वां मुख जो ऊपर की ओर है उसे ईशान कहते हैं और यही पशुपतिनाथ का सर्वश्रेष्ठ मुख माना जाता है।
2: पशुपतिनाथ भगवान का ऐसा ज्योतिर्लिंग, भगवान का ऐसा स्वरूप है जो सीधा सीधा केदारनाथ से जुड़ा हुआ है। उसके बारे में 2 प्रकार की मान्यता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव जब बैल स्वरूप धरती में अवतरित हुए तो उनका मुख जिस स्थान पर निकला वो स्थान पशुपतिनाथ के रूप में दर्शन देता है। बागमती नदी के किनारे उसके दर्शन होते हैं और इसके जो मुख्य अंश है भगवान का चतुर्भुज रूप है। कई लोग पंचमुखी रूप दर्शन बताते हैं इसके, पर 4 दिशाओं में चतुर्दिक दिशाओं में दर्शन देने वाले भगवान के 4 मुख इसके दिखाई देते हैं।
0: केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का आधा हिस्सा होने के चलते पशुपतिनाथ मंदिर हिंदुओं के तीर्थों में से एक है। कहते हैं पशुपतिनाथ मंदिर के जो दर्शन करता है उसे कभी पशु योनि प्राप्त नहीं होती। पशुपतिनाथ मंदिर कब बना इसकी जानकारी आज तक किसी को नहीं है। माना जाता है कि ये मंदिर काठमांडू का सबसे पुराना हिंदू मंदिर है। आस्था के तमाम तीर्थों में पशुपतिनाथ मंदिर एक तीर्थ है। शिव की आराधना यहाँ आए बगैर अधूरी है। आगे हम आपको बाबा केदारनाथ की महिमा बताएंगे। जब तक आप बने रहिए हमारे साथ।
3: इस ज्योतिर्लिंग की शक्ति का प्रमाण तो साल 2013 में आई प्राकृतिक आपदा में ही मिल गया था, जब केदारनाथ की भीषण विनाश लीला में भी केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह को कोई भी नुकसान नहीं हुआ था। और आज केदारनाथ जाने वाले भक्तों की तादाद बढ़ती ही जा रही है। चलिए जानते हैं बाबा के दरबार केदारनाथ की क्या है ये महिमा।

0: शिव सत्य है, शिव ही सुंदर है। भक्तों के लिए शिव सौम्य है तो दुष्टों के लिए रौद्र रूप धारण कर लेते हैं। मान्यता है कि शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 11वां ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में हिमालय की वादियों में कलकल बहती मंदाकिनी और सरस्वती नदी के मुख पर भगवान शिव का ये धाम बसा है। केदारनाथ मंदिर तीन तरफ से पहाड़ियों से घिरा है। यहाँ का दृश्य अलौकिक है। क्या है केदारनाथ का महत्व?
1: केदारनाथ मंदाकिनी सरोवर के तट पर स्थित इतना सुंदर भगवान का ऐसा स्थान है, जहाँ पर भगवान विष्णु ने नर नारायण स्वरूप में जब लीला की तब स्वयं तपस्या की थी, और भगवान की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव जिस स्थान पर स्वयंभू रूप से अवतरित हुए वो स्थान केदारनाथ कहलाता है।
0: उत्तराखंड के चार धाम में एक धाम केदारनाथ माना जाता है। ये हिमालय की केदार चोटी पर स्थित है। इस धाम में भगवान शिव का दिव्य ज्योतिर्लिंग विराजमान है। यह धाम अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। माना जाता है कि बिना केदारनाथ के दर्शन के बद्रीनाथ का दर्शन सफल नहीं होता। जो भी केदार तीर्थ में जाकर ज्योतिर्लिंग का पूजन करके जल पी लेते हैं उसका पुनर्जन्म नहीं होता।
1: भगवान का जो हाथ है वो करीबन एक हाथ से अधिक तो मोटाई है भगवान के, जो शिवलिंग स्वयंभू स्वरूप है, और चार हाथ के लगभग की उनकी चौड़ाई कहलाती है। उसमें स्पष्ट प्राकृतिक रूप से बना हुआ एक यज्ञोपवीत के भी दर्शन होते हैं, श्रीयंत्र भी उस पर स्पष्ट अवतरित होता है, और वहां के जो मूल ब्राह्मण हैं पांडवों के पुत्र पौत्रों ने उनको उसकी पूजा का अधिकार दिया। दक्षिण से आने वाले जंगम रावल जो है इसके मुख्य पुजारी होते हैं, और इस भगवान के शिव का स्वरूप ऐसा सुंदर है जैसे भगवान की पीठ या कुबड़ है, और ऐसा कहा जाता है कि जो भगवान के दर्शन करके उनको घी चढ़ाता है वो अपने जीवन में मोक्ष प्राप्त कर लेता है, रोग मुक्त हो जाता है।
0: केदारनाथ मंदिर 6 फीट ऊंचे चौकोर प्लेटफॉर्म पर बना हुआ है। मंदिर में मुख्य भाग मंडप और गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ है। बाहर प्रांगण में नदी बैल वाहन रूप में विराजमान है। केदारनाथ धाम का स्वरूप कैसा है? केदारनाथ मंदिर की ऊंचाई 80 फुट है, जो एक विशाल चौकोर चबूतरे पर खड़ा है। इस मंदिर के निर्माण में भूरे रंग के पत्थरों का उपयोग किया गया है। मंदिर के ऊपर स्तंभों के सहारे लकड़ी की छतरी निर्मित है, जिसके ऊपर तांबा गढ़ा गया है। मंदिर के गर्भगृह में केदारनाथ का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है, जो अनगढ़ पत्थर का है। इस लिंग की पूजा, उपासना और परिक्रमा की जाती है। केदारनाथ से जुड़ी पांडवों की कथा और व्यथा हम आपको पहले ही बता चुके हैं। स्कंद पुराण में केदारनाथ धाम को सबसे ज्यादा फलदायी बताया गया है। स्कंद पुराण में ये भी बताया गया है कि भगवान शिव से माता पार्वती ने कहा था कि ये स्थान उन्हें अत्यंत प्रिय है। यही वजह है कि यहाँ वो अपने गणों के साथ निवास करते हैं। ये भी कहा जाता है कि ये भगवान शिव का संसार है। जब आप केदारनाथ पहुँचते हैं तो एक तरह से शिव के संसार का दर्शन कर रहे होते हैं। इस मंदिर से जुड़ी कई सारी पौराणिक कथाएं, कहानियां हैं, ढेर सारा इतिहास है, लेकिन सबसे दिलचस्प बात ये है कि इस मंदिर के कपाट साल में 2 बार बंद किए जाते हैं और 6 महीने बाद दोबारा खोल दिए जाते हैं। यानी कि 6 महीने आप इस मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। 6-6 महीने पूरे तरीके से कपाट बंद रहते हैं। 6 महीने के लिए बाबा केदार अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ऊखी मठ में प्रवास करते हैं, इसलिए ऊखी मठ को सर्दियों का केदारनाथ कहा जाता है। ऊखी मठ केदारनाथ से करीब 25 किलोमीटर दूर है। जब कपाट बंद किए जाते हैं तो पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। दोबारा कपाट खोला जाता है तो वही विधि विधान किया जाता है। जब मंदिर के कपाट बंद होते हैं तब यहाँ के पुजारी एक दीपक मंदिर के भीतर जलाते हैं। 6 महीने बाद जब कपाट खुलते हैं तो दीपक की लौ जो की त्यो बनी रहती है। कहते हैं जब मंदिर के कपाट बंद होते हैं तो बाबा भैरव स्वरूप इस मंदिर की रक्षा करते हैं। केदारनाथ की यात्रा दुर्गम जरूर है लेकिन इतनी दुरूह भी नहीं। कि आप बाबा के दर तक ना पहुंच सके, तो आप भी समय निकालकर बाबा के धाम जाएं, जिससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और आपकी प्रार्थना होगी स्वीकार।
2: प्रार्थनाओं स्वीकार में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए और खबरों के लिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: पूर्वी उत्तर प्रदेश और खासकर गोरखपुर को नई सौगात मिलने वाली है। लखनऊ और अहमदाबाद की तर्ज पर वहां भी अब रिवर फ्रंट विकसित करने की तैयारियां हैं। ये रिवर फ्रंट राप्ती नदी के किनारे विकसित किया जाएगा। रिपोर्ट देखिए।
7: कल बहती राप्ती नदी का और उनके किनारों का ये मनमोहक नजारा बेहद आकर्षक है। नदी किनारे बने घाटों पर बैठकर सुकून के कुछ पल गुजारने का अपना ही मजा है। अब इस इलाके को और भी आकर्षक बनाने की तैयारी हो रही है। गोरखपुर में राप्ती नदी के तट का अब कायाकल्प होने जा रहा है। लखनऊ के गोमती और अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर राप्ती नदी के किनारे शानदार रिवर फ्रंट विकसित करने की योजना बनाई जा रही है। इसे अब साकार करने की दिशा में काम शुरू हो रहा है।
8: इसी योजना के क्रम में जो है एक प्रारंभिक जो है रिपोर्ट जो संबंधित वेंडर था उनके द्वारा जो है प्रस्तुत की गई है। चूंकि ये प्रारंभिक रिपोर्ट है तो उसमें इन्होंने कुछ चीजें जो मेंशन करी है, इसमें पार्क भी है, इसमें ग्रीन स्पेसेस भी हैं, इसमें पब्लिक के लिए भी कन्वेंशन सेंटर लेकर ये रिवर फ्रंट की बात यहाँ पर चल रही है।
7: राप्ती रिवर फ्रंट के प्रोजेक्ट की डीपीआर तैयार हो चुकी है। इस पर करीब 1,303 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसके तहत गोरखपुर के राजघाट से डोमिनीगढ़ तक राप्ती नदी के करीब 3.5 किलोमीटर लंबे तट को रिवर फ्रंट के रूप में विकसित किया जाएगा। इसमें नदी के तट से हर्बर्ट बांध पर बनी 4-लेन सड़क की ओर करीब 150 मीटर चौड़ाई में विकास कार्य कराया जाएगा, ताकि आम लोग इसका पूरा लाभ उठा सके।
8: जब आप नदी के किनारे विभिन्न आयामों में आप वहाँ पे टूरिज्म की तमाम गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं, जैसे चाहे वो बोटिंग हो, चाहे वो घाट पे बैठना हो, चाहे वो आसपास पार्क में सुबह की सैर करना हो, शाम की सैर करना हो, या कोई भी कॉलेज का इवेंट हो, कोई कल्चरल इवेंट हो, कोई पारिवारिक इवेंट हो, तो वो भी रिवर फ्रंट पे एक जैसे कहते हैं कि एक लाइवली माहौल वहाँ पर एक कल्चरल एक संध्या के रूप में आप देखें, सुबह भी आप टहलने वहाँ जा सकें और बच्चों के साथ भी वहाँ और परिवार का समय व्यतीत कर सकें, इस तरह की पूरी परिकल्पना जो है इस रिवर फ्रंट पर की जाती है।
7: राप्ती रिवर फ्रंट के पूरे प्रोजेक्ट को 3 चरणों में पूरा करने की योजना है। सड़क तक विकसित किए जाने वाले हिस्से को ग्रीन बेल्ट के रूप में विकसित किया जाएगा, साथ ही यहां पर अर्बन हॉट, योग सेंटर और कन्वेंशन सेंटर जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इसके अलावा जगह जगह बोटिंग की सुविधा देने की भी तैयारी है। माना जा रहा है कि परियोजना पूरी होने के बाद राप्ती नदी का ये इलाका गोरखपुर के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल हो सकता है। गोरखपुर से गजेंद्र त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: बीजिंग में दूसरा वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स यानी रोबोट ओलंपिक चल रहा है। इनमें 2000 से ज्यादा ह्यूमनॉइड रोबोट न केवल फुटबॉल, टेनिस, बॉक्सिंग, बैडमिंटन और एथलेटिक्स में अपना हुनर दिखा रहे हैं, बल्कि नए नए रिकॉर्ड बनाकर भी इंसान को दंग कर रहे हैं। इनमें से एक रोबोट ने मशहूर धावक उसैन बोल्ट का रिकॉर्ड तोड़ दिया, तो एक ने हाई जंप में इंसान को पीछे छोड़ दिया। रिपोर्ट देखिए।
9: रॉकेट जैसी रफ्तार, दौड़ शानदार, ह्यूमनॉइड रोबोट रेसिंग की ये तस्वीरें बीजिंग की हैं, जहां 100 मीटर की दौड़ में नया इतिहास रचा गया। यहां पर तियानजोउ नाम के ह्यूमनॉइड रोबोट ने दुनिया के सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट के 100 मीटर के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। तियानजोउ रोबोट ने 100 मीटर की दौड़ सिर्फ 9.39 सेकंड में पूरी कर ली, जबकि जमैका के धावक उसेन बोल्ट ने ये दूरी 9.58 सेकंड में पूरी की थी। बोल्ट ने 2009 में बर्लिन में हुई वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सबसे कम समय में 100 मीटर दौड़ पूरी करने का शानदार रिकॉर्ड कायम किया था। 100 मीटर की दौड़ में बोल्ट का ये रिकॉर्ड 17 सालों से कायम है और कोई इंसान तो इसे अब तक नहीं तोड़ सका है। लेकिन अब एक रोबोट ने बोल्ट के उस ऐतिहासिक रिकॉर्ड को ध्वस्त करके नई मिसाल कायम कर दी है। जिस रोबोट ने ये कमाल कर दिखाया है उसे बीजिंग इनोवेशन सेंटर ऑफ ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स ने बनाया है। वहीं इससे पहले एक टेस्ट रन में चीनी कंपनी ऑनर के रोबोट ने 100 मीटर की दूरी तय करने में केवल 9.32 सेकंड का समय लिया था। बीजिंग में चल रहे ह्यूमनॉइड रोबोट्स के मुकाबले में नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। इसी दरमियान एक रोबोट ने स्टैंडिंग हाई जंप में 2.88 मीटर से ऊंची छलांग लगाकर इंसानों और पिछले सभी रिकॉर्ड्स को पीछे छोड़ दिया। चीन की रोबोटिक्स कंपनी यूनिट्री के ह्यूमनॉइड रोबोट ने हाई जंप में ये कमाल कर दिखाया है। स्टैंडिंग हाई जंप की स्पर्धा में रोबोट ने 2.8843 मीटर तक ऊंची कूद का नया रिकॉर्ड कायम कर डाला। और हाई जंप में भी इंसानों यानी मानव एथलीट के पुराने रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया। बीजिंग में शनिवार को दूसरे वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स का शुभारंभ हुआ। ओपनिंग सेरेमनी में हुई 400 मीटर रेस में चाइना के तियांगोंग ह्यूमनॉइड रोबोट ने 39.7 सेकंड का समय निकालकर पहला स्थान हासिल किया। इससे पहले ओपनिंग सेरेमनी के दौरान हुए रंगारंग कार्यक्रम में इंसान केवल दर्शक थे, जबकि स्टेडियम में ट्रैक से लेकर पूरे एरिना में मौजूद 1000 से ज्यादा ह्यूमनॉइड रोबोट्स ने अपनी तकनीकी क्षमता का अनूठा प्रदर्शन किया, जिसे देखकर लोग दंग रह गए। मनमोहक म्यूजिकल परफॉर्मेंस से लेकर नेशनल स्पीड स्केटिंग ओवल में टीमों के मार्चिंग दस्ते के रूप में हर इवेंट में शानदार तालमेल के साथ रोबोट फॉर्मेशंस दर्शकों को अलग ही कल्पना लोक में ले गए, जिसे वे अपनी आंखों के सामने साकार होते देख रहे थे। इस दौरान 36 रोबोट्स की टीम ने मेलेडी ऑफ द फ्यूचर के नाम से भव्य संगीत और सुरों का समा बांध दिया। वहीं स्पर्धाएं शुरू होने से पहले ओपनिंग सेरेमनी में ही तमाम रोबोट्स ने अलग अलग खेलों में अपने हुनर की झलक पेश की। बीजिंग में 5 दिन के वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स में 16 देशों के 2056 रोबोट्स की 666 टीमें भाग ले रही हैं। ये रोबोट 51 इवेंट्स की 1300 से ज्यादा स्पर्धाओं में अपना कमाल दिखाएंगे और ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि आने वाला कल इनका ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आ रहा है।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है।
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
6: रक्षाबंधन पर पर्यावरण संरक्षण का संदेश, गाय के गोबर से बनाई जा रही है राखियां और अन्य सजावटी सामान, गया के बाजारों में जमकर हो रही है राखी की खरीदारी। मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में काली घटा आयोजन, मंदिर में दिखा सावन का मनमोहक नजारा, ठाकुर जी के दर्शन कर गदगद नजर आए भक्त। जन्माष्टमी को लेकर इस्कॉन मंदिर में तैयारियां तेज, दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर खास तैयारियां। नेशनल स्पेस डे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश के स्पेस स्टार्टअप्स और उनके सीईओज के साथ खास संवाद, इनोवेशन और युवाओं की भूमिका पर चर्चा। बनासकांठा के बादरगढ़ गांव में 1 सितंबर से पान मसाला, गुटखा और शराब की बिक्री पर लगा बैन, कानून उल्लंघन पर लगेगा जुर्माना।

0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं गोल्ड यानी कि सोने की, जो एक बार फिर घोड़े पर सवार है। अरसे से सुस्त पड़ा सोना अब 1,60,000 पार जा चुका है और चांदी भी पीछे नहीं। त्योहारी सीजन में सोने चांदी की कीमतों में इस उछाल का क्या असर हो सकता है, आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। समझेंगे कि सोने और चांदी की कीमतों में अचानक उछाल क्यों आया है, अमेरिका और डॉलर का गोल्ड से क्या कनेक्शन है। इस वक्त ग्राहकों के मन में सबसे बड़ी उलझन इस बात को लेकर है कि गहने अभी खरीदे जाएं या कीमत घटने का इंतजार किया जाए। दुविधा ये भी है कि अगर अभी चूक गए तो कहीं ज्यादा कीमत ना देनी पड़े। इन सभी सवालों पर जानकारों की राय आपको बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सोने और चांदी की कीमतों में आई अचानक तेजी से। सोने चांदी के दाम पिछले कुछ महीनों से गिर रहे थे, लेकिन अब फिर से इनमें बढ़त दर्ज की जा रही है। सोने का भाव पिछले 3 महीने में सबसे ज्यादा हो चुका है और जानकार मान रहे हैं कि ये तेजी अगले महीनों तक यूं ही बरकरार रहने वाली है। सभी के जहन में यह सवाल है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि सोना घोड़े पर सवार हो गया है। जानकार मान रहे हैं कि इसकी वजह अमेरिका है। दुनिया में इस वक्त जो अनिश्चितता का माहौल है, उसकी वजह से सुरक्षित निवेश के लिए सोना ही सबसे मुफीद है। लेकिन इस वक्त लाख टके का सवाल यह है कि क्या सोना जल्दी ही 2 लाख के आसपास चला जाएगा। चलिए जानकारों से समझते हैं।
1: हर चमकती चीज सोना नहीं होती, क्योंकि सिर्फ सोना ही है जिसकी चमक कभी कम नहीं होती। ना चमक घटती है और ना कीमत, बल्कि अब तो ये हाल है कि चंद रोज पहले जहां सोने की दुल्की चालती, अब सरपट दौड़े जा रहा है और चंचल चांदी भी सोने का खूब साथ दे रही है। सीधे शब्दों में कहें तो अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू बाजार में सोने चांदी की कीमतों में जबरदस्त तेजी है। 2 दिनों में मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया यानी MCX पर सोना 3,000 रूपए से ज्यादा चढ़ चुका है। इस तरह सोने की कीमत 1,200 रूपए चढ़कर 1,61,000 रूपए प्रति 10 ग्राम तक जा चुकी है और इसके साथ चांदी की कीमतों में करीब 10,000 रूपए की तेजी आई है, जबकि चांदी की कीमत 2,100 रूपए चढ़कर 2,45,000 रूपए प्रति किलो है। अब सवाल लाजमी है, कुछ दिन पहले जहां सुस्ती थी, अचानक ऐसा क्या हुआ कि सोने की कीमत उछल गई? तो जान लीजिए कि इसका कनेक्शन अमेरिका से है। आर्थिक हालत ठीक कहने के लिए अमेरिका ने अपने बॉन्ड वापस खरीदने शुरू किए, तो इसका असर ये हुआ कि डॉलर सस्ता हो गया और जब भी डॉलर सस्ता होता है सोने की कीमत बढ़ जाती है।
2: ये जो हाल की तेजी आई, ये तेजी आने का कारण डॉलर का कमजोर होना था। और डॉलर कमजोर क्यों हुआ है, क्योंकि अमेरिका के जो 30 साल के बॉन्ड थे, उस 30 साल के बॉन्ड्स की जो एक्सपायरी थी वो बहुत लंबी थी, तो अमेरिका को लगा कि इसकी यील्ड बहुत बढ़ रही है। जब आप बहुत दूर होते हैं एक्सपायरी के नजदीक आते हैं जैसे जैसे, तो यील्ड बढ़ जाती है, कीमत कम हो जाती है। तो यील्ड बढ़ने से अमेरिका में पैसा महंगा हो रहा, अब मकान नहीं बिक रहे थे, मॉर्टगेज करने में लोगों को दिक्कत आ रही थी, लोगों को पैसा बाजार से उठाने में दिक्कत आ रही थी। डोनाल्ड ट्रंप, आपको पता है, बिजनेसमैन है, उनको पैसा सस्ता चाहिए, तो उन्होंने अमेरिकन ट्रेजरी को कहा कि आप बॉन्ड का बायबैक करिए, तो उन्होंने बॉन्ड खरीदे जिससे वो नए बॉन्ड इशू कर सके। इससे क्या हुआ कि डॉलर मार्केट में बहुत सारा आ गया और डॉलर के आने से

0: जमकर सोने की खरीदारी शुरू हो जाती है और नतीजा इसकी कीमत बढ़ जाती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है।
1: अब सेफ हेवन नहीं रहा है इन्वेस्टर्स के लिए, ऐसा मानते हुए जो इन्वेस्टर्स हैं उनका मूव डॉलर टू गोल्ड की तरफ जाते हुए दिख रहा है और यूएस डॉलर का लगभग जो रिजर्व में हिस्सा है वो 57.13% से लेकर के मतलब 57 से 58% के आसपास है। अभी डॉलर अभी भी प्रमुख रिजर्व मुद्रा है, लेकिन रिजर्व विविधीकरण भी जारी है और रिजर्व से डॉलर से हटकर के गोल्ड की तरफ जाने के कारण निश्चित रूप से गोल्ड के भाव बढ़े हैं।
0: ये बात तो सभी जानते हैं कि सोने से सिर्फ श्रृंगार नहीं होता, बल्कि ये पीली धातु पर दुनिया के बाजार का दारोमदार है। यानी जिस देश के पास जितना सोना, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसकी उतनी ताकत। इसीलिए चीन अमेरिकी डॉलर से मुकाबला करने के लिए सोने की ताबड़तोड़ खरीदारी कर रहा है। सिर्फ चीन ही नहीं, कई देशों के केंद्रीय बैंक अपने रिजर्व में सोने की हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। जाहिर है इसी से सोने के भाव बढ़ गए हैं।
2: कि चाइना वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करना चाहता है, चाइना चाहता है कि मैं डॉलर का मुकाबले मेरी करेंसी पूरे वर्ल्ड में चले, तो वो चाइना की खरीदारी है। लेकिन सभी देशों के बैंकों की, सेंट्रल बैंकों की खरीदारी अगर लगातार चलती है तो सोना फिर 2 लाख रुपए के ऊपर भी पहुंच सकता है।
0: कुल जमा बात यह है कि सोने की कीमतों में उछाल भारत के बाजार से तय नहीं होती, इस पर अमेरिकी सरकार के फैसलों का बड़ा असर पड़ता है। इस वक्त जो हालात है, जैसी अनिश्चितता है, उसमें निवेशकों के सामने सोना ज्यादा सुरक्षित विकल्प है। हाँ, पर चांदी की कहानी थोड़ी अलग है। सोने की तरह सरपट भाग रही चांदी की कीमत सिर्फ निवेश की वजह से नहीं है, असल में सोने के उलट चांदी का इंडस्ट्रियल यानी उद्योग धंधों में इस्तेमाल होता है। वहाँ मांग बढ़ती है तो चांदी भी उछल जाती है।
1: तो चांदी की डिमांड बढ़ने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है इंडस्ट्रियल डिमांड। मूल कारण इंडस्ट्रियल डिमांड। तीसरा कारण जो ईवीज है, जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं, उन इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में आने वाले समय में हम वृद्धि देखेंगे और वो मार्केट अप हो रहा है, जिससे कि चांदी की डिमांड बढ़ेगी। और जो दूसरा मूल कारण है, जो मुख्य कारण है, वो कारण है आपका जो है ना एआई सेक्टर का बढ़ता हुआ प्रभाव और एआई की इंडस्ट्री का, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट।
0: अंतर्राष्ट्रीय बाजार के मेयार अपनी जगह है। जहां तक भारत की बात है, सोने चांदी की कीमतों का असर सीधे गहनों की खरीदारी से जुड़ता है और आम आदमी के जहन में बस एक सवाल आता है कि अभी खरीदें या इंतजार करें, कीमत और बढ़ेगी या पहले की तरह घटेगी। इन सवालों का गारंटी से जवाब नहीं दिया जा सकता, क्योंकि सब कुछ अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय हालात पर निर्भर है। हाँ, लेकिन जानकार मान रहे हैं कि आने वाले दिनों में कीमत 1,70,000 के पार जा सकती है, कम से कम नवंबर तक इसके कम होने के आसार नहीं।
3: इस वक्त जहां हम खड़े हैं वहां से मुझे 70% चांस, 70% चांस इसके ऊपर जाने का लग रहा है, 30% चांस इसके करेक्शन का भी लग रहा है। वो क्यों लग रहा है 30%, वो भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि कच्चे तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। अभी भी जब हम बात कर रहे हैं 93-94 डॉलर के आसपास है। मान लीजिए कच्चा तेल, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से, बाबल मंदेब में बार बार बंद करने की धमकी आने से, अगर ये मान लीजिए 100, 110, 120 चला जाता है कच्चा तेल, मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे रहा हूँ, एक काल्पनिक सिचुएशन दे रहा हूँ, तो फिर थोड़ा सा सोने चांदी पर दबाव आ सकता है, क्योंकि ऐसे में फिर अमेरिकन फेड, जो सेंट्रल बैंक है अमेरिका का, उसको रेट बढ़ाने पड़ सकते हैं, महंगाई वहां पर बढ़ सकती है। पर क्योंकि नवंबर में अमेरिका में मिड टर्म पोल्स है नवजोत, और डोनाल्ड ट्रंप को हम सब अच्छी तरह आप जान गए हैं, वो कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे अमेरिकी जनता त्रस्त हो जाए, नाराज हो जाए, उनको वोट चाहिए, नहीं तो उनकी रिपब्लिकन पार्टी हार जाएगी। तो इन सब बातों को देख के मुझे लग रहा है कम से कम नवंबर तक मुझे बहुत बड़ी कोई करेक्शन आने की उम्मीद नहीं लग रही है। हाँ, एक बार इलेक्शन हो जाते हैं अमेरिका में और मान लीजिए उनके रिपब्लिकन पार्टी हार जाती है, तो डोनाल्ड ट्रंप से आप कुछ अटपटे कदम की उम्मीद कर सकते हैं। तो इसलिए दर्शकों को, निवेशकों को तैयार रहना चाहिए। और बड़ी अच्छी बात करी अनुराग जी ने कि सोने के साथ सो जाना चाहिए। सोना रोज रोज खरीदने बेचने की चीज नहीं है।
0: कुछ महंगा हो या कुछ सस्ता, जहां तक सोने चांदी के गहनों की बात है, जरूरत और सुविधा के हिसाब से उसकी खरीद तो लोग करेंगे ही। निवेशक कीमतों की चाल देखते हुए फैसला कर सकते हैं, क्योंकि सोने की चमक कभी फीकी नहीं पड़ने वाली। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: रक्षाबंधन, धनतेरस, दिवाली, यानी कि पर्व त्योहारों का सिलसिला शुरू होने वाला है। जाहिर है इस दौरान शुभ माने जाने वाले सोने की खरीदारी भी होगी। उसके बाद शादी विवाह का सीजन है, लेकिन क्या सोने चांदी की बढ़ी हुई कीमतों से गहनों की खरीदारी पर असर होगा? जानकार मानते हैं कि भारत में सोने की इमोशनल बाइंग होती है, लेकिन

0: डीलर्स और ग्राहकों का क्या मानना है, चलिए सीधे उन्हीं से समझते हैं।
1: बंधन के साथ साथ ही आता है त्योहारों का सीजन और उसी के साथ आता है शादियों का समय, जब सबसे ज्यादा खरीदारी, चाहे वो महिलाएं हों चाहे वो पुरुष हो, हर कोई अपने परिवार सहित खरीदारी करने पहुंच जाता है। और ऐसे में खरीदारी होती है सोने की, चांदी की, अलग अलग आभूषण की, क्योंकि वो भारतीय जो ट्रेडिशंस हैं, जो रिचुअल्स हैं, उनसे काफी ज्यादा जुड़े होते हैं, शुभ माने जाते हैं। ऐसे में क्योंकि इनकी जो कीमतें हैं वो लगातार बढ़ रही हैं, चढ़ाव पर हैं, तो काफी ज्यादा फर्क पड़ता है आम जनता की खरीदारी पर, और बहुत फर्क पड़ रहा है इस ऐसे में जो सेलर्स हैं, जो जौहरी हैं, उनके काम पर भी। तो हम ज्वेलर से ही जानेंगे कितना कुछ फर्क पड़ा है। तो सर, रमाकांत जौहरी जी सर हमारे साथ में मौजूद है। सर आप बताइए कि जब से सोना चांदी महंगा हुआ है तब से कितना कुछ फर्क पड़ा है?
2: एक्चुअली पिछले दो सालों से और गोल्ड की रेट में एकदम से एक्सपेंशन हाई हुआ है, उसकी वजह से मार्केट में परचेजिंग पे कम 30-40% डाउन हो गया है। इसके बाद में भी जब से मोदी जी ने अभी स्पेशली जो ये एक स्टेटमेंट दिया था कि नेशनल नेशन के फेवर के लिए कि गोल्ड को कम खरीदिए ताकि अपन फॉरेन एक्सचेंज को बचाया जा सके, देश हित में काम किया जा सके, उसके लिए भी मोदी जी की अपील का बहुत ज़्यादा असर हुआ है। लेकिन जरूरत की जो जरूरत है, जैसे जिनके शादियाँ या जिसके भी प्रोग्राम है, वो आदमी तो अपना सामान खरीदे, लेकिन जो ओल्ड डेज में इन्वेस्टमेंट के लिए जो ज्वेलरी खरीदते थे उसके ऊपर काफी इम्पेक्ट है, वो लोग अभी बच करके खरीद रहे हैं।
1: तो बढ़ती कीमतों का कितना असर है, क्योंकि जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि नहीं खरीदना, उससे पहले भी जब ये कहा था स्टेटमेंट से पहले कीमतें चढ़ाव पे है लगातार, तो उससे कितना फर्क पड़ रहा है? क्या लोग जो क्वांटिटी है वो कम हुई है या फिर खरीदना ही कम हो गया है, किस तरीके से क्या क्या फर्क पड़ रहा है?
2: नहीं देखिए, गोल्ड के अंदर जो अमाउंट, अभी पहले क्या होता था, वेट से शादी में या प्रोग्राम में अपन वेट से डालते थे कि इसको 100 ग्राम सोना डालना है या 50 ग्राम सोना डालना है। अभी रेट एक्सचेंज बढ़ने के बाद में अभी लोगों का वॉल्यूम अमाउंट का हो गया है, तो अमाउंट का हो गया है कि मेरे को एक्स अमाउंट के अंदर मेरी ज्वेलरी लेनी, वो कितने भी ग्राम वेट आता है वो उतना वेट लेकर के उसको सेटिस्फाइड कर। लेकिन बिजनेस में क्या हुआ है, वैल्यू वाइज बिजनेस कम नहीं हुआ है, लेकिन वॉल्यूम वाइज बिजनेस कम हो गया है। जरूरत पे लोग आज भी सामान खरीद रहे हैं, लेकिन जितना जरूरत हो उतना खरीद रहे हैं। अभी ट्रेंड में चेंज हो गया, अभी हम लेटेस्ट में बॉम्बे एग्जीबिशन में जाके आए हैं तो बहुत ज़्यादा ह्यूज चेंजेस हुआ है। प्रोडक्शन जो यूनिट्स है उनमें जो वेट, कोई भी आइटम पहले 100 ग्राम का बनता था, वही उसी लुक के अंदर आज उसको कोशिश करके लोग 60 ग्राम में बना रहे हैं, ताकि लोगों के पास में एक फैलाव के साथ में चीज़ें दी जा सके। और मैन्युफैक्चरर्स भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, अपने डिज़ाइंस नए डेवलप कर रहे हैं और शोरूम भी नई नई नई चीज़ें ला करके उसको लोगों के लिए प्रिपरेशन में लग गए हैं। हमें अभी जैसे अभी बॉम्बे एग्जिस्ट में जाके काफ़ी सिलेक्शन हमने वहाँ पे लोगों से साथ में किया है, जो अगले आने वाले 10 से 15 दिन में सभी शोरूम्स पे पहुँच जाएगा। उससे आशा है कि आने वाले सीजन के अंदर लोगों को नई वेरायटी लाइट वेट में मिलेगी और जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है सोने के प्रति जो लगाव है वो अपना फुलफिल कर पाएंगे।
1: जी देखिए, बिल्कुल सही बात है, लाइट वेट ज्वेलरी बहुत ज्यादा ट्रेंडी बन गई है जब से जो सोने की रेट्स हैं उसमें खास बदलाव आया है। कुछ कस्टमर्स हमारे साथ में यहाँ पे मौजूद हैं तो हम उनसे बात करेंगे। सर आप हमें बताइए कि क्या कुछ आपने शॉपिंग की है? मैं मानती हूँ कि आपकी शायद शॉपिंग हो चुकी है, बट क्या आज आप यहाँ पे देख रहे थे, क्या पसंद आया और कितना फर्क पड़ा सोने चांदी की कीमतों के बढ़ने से?
3: फर्क तो ये है कि जैसे पहले कोई इंसान समझो या हम लोग ही हैं कि 20 ग्राम सोने की, 30 ग्राम सोने की चेन लेते थे, वो अब 10 ग्राम 12 ग्राम और नीडफुल हो गया एकदम। पहले ऐसा था कि समझो 50 लाख का सोना लेना है अपन को, आजकल ऐसा हो गया कि नहीं, 25-30 जो जरूरत है जितना उतना ही।
0: सोने चांदी की बढ़ती कीमतों ने आम खरीदारों की चिंता बढ़ा दी है, लेकिन त्योहारी और शादी के मौसम में गहनों की खरीदारी पर इसका बड़ा असर पड़ने की उम्मीद नहीं है। जानकारों के मुताबिक भाव बढ़ने पर लोग खरीदारी का वजन कम कर सकते हैं, लेकिन जरूरत और परंपरा के चलते खरीदारी जारी रहेगी। निवेश के लिहाज से भी सोने को लंबे समय के लिए बेहतर विकल्प माना जा रहा है। हालांकि खरीदारी करते वक्त शुद्धता, मेकिंग चार्ज और बिल जैसी जरूरी बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है।

0: यूँ तो छोटी सी ख्वाहिश है, माथे पर झूमर, कानों में झुमका, हाथों में कंगना और उस पर नौलखा हार। लेकिन मुश्किल ये है कि सोने की कीमत काबू में नहीं। एक गहना खरीदना भी आम आदमी के लिए आसान नहीं, तो जाहिर है कुछ ख्वाहिशें पूरी नहीं हो पाएंगी। अब तो ये दलील भी काम नहीं आएगी कि सोना हुआ बड़ा महंगा, मैं चांदी ले आया। चांदी की कीमत भी सोने के टक्कर की है, दोनों जरूरी पर दोनों ही महंगे। हाँ, ये अलग बात है कि गहनों की जैसी चाहत हमारे देश में, खरीदारी रुकती नहीं, दुकानों में भीड़ घटती नहीं। पर इस वक्त जब सोने चांदी की कीमत अचानक तेजी से बढ़ गई है, सवाल है कि इसका त्योहारी सीजन पर क्या असर पड़ेगा। सामने रक्षाबंधन है और उसके बाद शादी विवाह का मौसम, तो क्या इस मौसम में लोग पहले की तरह खरीदारी करेंगे?
1: ये निवेशक सोचते हैं कि आज नहीं खरीदते तो हो सकता है कल कीमत बढ़ जाएगी, ये भावना भी आएगी। हो सकता है कि दिवाली से पहले पहले, हमें लगता है अगस्त सितंबर अगस्त में, क्योंकि हम इसको इमोशनल बाइंग से लेकर के जोड़ते हैं, और ऐसी स्थिति में इन्वेस्टमेंट गोल्ड की मांग बढ़ेगी और बुकिंग बढ़ेगी, तो निश्चित रूप से कैश नहीं रखना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए।
0: भारत में सोने के गहनों की खरीदारी भावना से जुड़ी है, यानी त्योहार होंगे, शादी विवाह होगा तो इमोशनल बाइंग होगी। हाँ, तादाद कम हो सकती है, वजन कम हो सकता है, पर जानकार मान रहे हैं कि त्योहारी सीजन में जिसे खरीदना है वो खरीदेगा, कीमतों में कोई असर नहीं पड़ता।
2: कितनी कीमत हो जाए, जिसने ज्वेलरी बनवानी है, जिसने लेनी है वो लेकर रहेगा, भले 1,40,000 हो, भले 2,00,000 हो, भले 2,50,000 हो, जिसने लेना है वो लेकर रहेगा। तो ज्वेलरी बनाने वालों की जो चाल है और तेजी है, उसमें कोई कमी नहीं आने वाली।
0: एक बड़ा तबका है जो सोना शौक के लिए नहीं बल्कि निवेश के नजरिए से खरीदता है, यानी घर की महिलाओं के लिए झूमर, झुमका और कंगना भी हो जाए और भविष्य के लिए सुरक्षित निवेश भी हो जाए। इस नजरिए से भी जानकार बढ़ी कीमतों पर खरीदारी की सलाह दे रहे हैं।
3: आम के दाम, उठलियों के दाम, वो जो कहावत है कि भाई आप तो ज्वेलरी खरीदो, क्योंकि ज्वेलरी एक सेंटीमेंट भी जोड़ती है। जैसे मैंने पहले भी कहा था, अगर बुलियन की आपने 100 ग्राम की रख दी तो उसको जब मर्जी बेच सकते हैं, लेकिन अगर आपने ज्वेलरी की फॉर्म में रख दी तो उसको बेचने के लिए पूरी होम मिनिस्ट्री हिलेगी, तब वो बिकेगा। तो ये कि इन्वेस्टमेंट पर्पस से ज्वेलरी ही बेटर है और ज्वेलरी ही खरीदनी चाहिए।
0: इस वक्त एक सवाल जो आम लोगों को परेशान कर रहा है वो ये कि भागती हुई कीमतों पर खरीदारी करना ठीक होगा या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आने वाले महीनों में कीमतें कम हो जाए, ऐसा हुआ तो पछताना पड़ेगा। वहीं ये सोच भी है अगर आगे कीमतें बढ़ गई तो और भी पछतावा होगा। घटती बढ़ती कीमतों के बाजार में ये दुविधा हर ग्राहक के दिमाग में है, पर जानकार तो कहते हैं कि परेशान ना हो, पॉकेट के हिसाब से इन्वेस्ट करते रहें।
4: अमेरिका की जो नई पॉलिसी है उसके अंतर्गत ये रैली आई है। अभी कोई नई पॉलिसी उनकी अगर चेंज होती है या कोई भी नया कोई ऐसा घटनाक्रम बीच में घटता है, या ईरान और अमेरिका युद्ध को लेकर कोई नई पॉलिसी आ जाती है, या अन्य कोई देश कूद पड़ता है, तो काफ़ी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। तो हमें लगता है कि दिवाली की बात अभी नहीं। हाँ, ये जरूर है कि मैं एक बात श्योर करता हूँ, सोने और चांदी ने हमेशा अपने पिछले हाई को तोड़ा है, ये हाई भी टूटेगा। जो 1,80,000-85,000 रुपये तक हाई गया है वो भी जल्द ही टूटेगा, चांदी भी अपने रिकॉर्ड हाई को तोड़ेगी। सोना और चांदी ने आज तक कभी दर्शकों को निराश नहीं किया है और ना ही भविष्य में कभी निराश करेगा। आज जो भाव हुआ है वो कल वापस जाएगा, इसलिए उसमें इन्वेस्टमेंट ना कभी घटा है और ना घटेगा, और आम आदमी उसमें हमेशा इन्वेस्ट करता रहा है और करता रहेगा, और यही उसको सलाह है कि करते रहना चाहिए।
0: एक बात तो दावे के साथ कही जा सकती है कि सोने खरीदना कभी घाटे का सौदा नहीं रहा। बेशक शॉर्ट टर्म में नफा नुकसान दोनों हो सकता है, पर लॉन्ग टर्म यानी 2 से 5 सालों तक के लिए अगर सोना खरीदा तो तय मानिए कि फायदा ही होगा। हाँ, पर सोना खरीदते समय कुछ बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है।
2: अभी भी हार्ड फॉर्म में सोना सबसे ज्यादा खरीदा जा रहा है और यही सबसे अच्छा तरीका है। आप उसकी प्योरिटी पर पूरी नजर रखिए, जब भी आप खरीदें ध्यान रखिए कि 24 कैरेट का होना चाहिए, हॉल मार्क्ड होना चाहिए। अब तो कैरेटोमीटर आ गए हैं, आप पोर्टेबल कैरेटोमीटर भी आ गए हैं जिसमें आप चेक कर सकते हैं। पहले तो पत्थर पे रगड़ के चेक किया जाता था, कसौटी जिसको कहते थे, अब तो आप इसको कैरेटोमीटर में चेक कर सकते हैं।
0: युद्ध, तनाव, बाजार में आगे निकलने की होड़ और दूसरे कई आर्थिक राजनीतिक वजह, इनमें से किसी भी कारण से सोना गिरता उछलता रहता है, लेकिन गुजरे दशकों का इतिहास पलट कर देख लीजिए, सोना हर बार संभलता है और आगे ही बढ़ता रहा है। करीब एक दशक पहले सोना 30,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास था, आज ये 1,50,000 रुपए के पार पहुंच चुका है, यानी लंबी अवधि में कीमत कई गुना बढ़ी है। इसीलिए सोने को लेकर बेफिक्र रहें और निवेश के लिए सही पर नौलखा हार की फरमाइश पर गौर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: और अब बात रक्षाबंधन की। राखी का त्यौहार जैसे जैसे करीब आ रहा है, बाजारों की रौनक भी बढ़ती जा रही है। कहीं रंग बिरंगी और डिजाइनर राखियां आकर्षण का केंद्र बनी है, तो कहीं गिफ्ट के सामानों से बाजार पटे पड़े हैं। जयपुर से लेकर दिल्ली तक, राजकोट से लेकर करनाल तक रक्षाबंधन का जोरदार उत्साह है। देखिए ये रिपोर्ट।
6: रक्षाबंधन का त्योहार जैसे जैसे करीब आ रहा है, बाजारों में रौनक बढ़ने लगी है। पिंक सिटी के नाम से मशहूर राजस्थान की राजधानी जयपुर में बाजारों की भव्यता देखते ही बन रही है। दुकानों पर सजी रंग बिरंगी राखियां, खरीदारी के लिए उमड़ती भीड़ और हर तरफ त्योहार की चमक साफ दिखाई दे रही है। कहीं बहनें अपने भाइयों की पसंद की राखी तलाश रही हैं, तो कहीं दुकानदार ग्राहकों को नई डिजाइन और नई वैरायटी दिखाने में जुटे हैं।
7: इस बार मार्केट में क्या नए ट्रेंड्स हैं उसके बारे में बताइए।
8: इस टाइप के राजस्थानी पैटर्न के काफ़ी सारे राखियाँ आई हैं अब आजकल। ये वाला पैटर्न देखो, राधा कृष्णा के पैटर्न पे, ये सब यूनिक पैटर्न्स हैं। बाकी कॉमन तो अपने को सब जगह मिल जाती, कलकत्ता टाइप की राखियाँ तो सब जगह मिल जाती, पर ये राजस्थानी राखियाँ बहुत यूनिक होती हैं और बहुत रेयर मिलती हैं। तो मुझे इस अभी क्या है, कस्टमर्स को भी बहुत अच्छा लग रहा है ये वाला कलेक्शन और काफ़ी अच्छा निकल रहा है, तो इसीलिए मैंने इस पैटर्न पर जाना चाहा।
7: इसके अलावा सबसे ज़्यादा हर एक कस्टमर क्या चाह रहा है इस बार?
8: कस्टमर्स को इस टाइप की राखियाँ बहुत पसंद आ रही हैं इस बार, पेयर्स में और सिंगल राखियाँ राजस्थानी पैटर्न में काफ़ी अच्छा लग रहा है लोगों को और सब अच्छा। लाइक कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है लोग।
7: हम देख पा रहे हैं कि कस्टमर्स की जो पसंद है वो बदल रही है। हमने यहाँ पे आपको कुछ ट्रेडिशनल राखियाँ दिखाई जो राजस्थान की संस्कृति से जुड़ी है, काफ़ी इनोवेटिव लुक जो है वो इनमें आ रहा है। इसके साथ में जैसे मैंने आपको बताया कि इन एग्जीबिशंस में आप जो अपने भाई बहनों को, भाइयों को, भाभीों को जो सामान देते हैं साथ ही में राखी के, चाहे वो मिठाइयों के ऑल्टरनेटिव ऑप्शन हो या गिफ्ट्स हो, वो भी एक साथ मिल रहे हैं। पर एक चीज़ और इन राखियों के ट्रेंड में आई है, वो है कि सिर्फ मीनिंगफुल गिफ्ट ही नहीं, मीनिंगफुल राखी भी देना, यानी कि क्रिस्टल्स जो हैं वो एक नया ट्रेंड बन गए हैं। कि जैसे आपकी ज़िंदगी में एक वो मीनिंगफुल तोहफा भी, तोहफा के रूप में ही वो राखी आपको मिले, जिसको आप पहने तो आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट आने लग जाए, और जो भी इन चीज़ों में मानते हैं उनके लिए काफ़ी लकी ये साबित होती है। तो ऐसे में क्रिस्टल राखी और उससे जुड़े हुए जो तमाम चीज़ें हैं वो भी इस बार बहुत बड़ा ट्रेंड बन गई है। हम यहाँ पर दिखाते हैं कि किस तरीके से ये जो बैंड्स हैं, ये चेन्स के रूप में, ब्रेसलेट्स के रूप में, बैंड्स के रूप में इस बार अलग अलग क्रिस्टल्स नज़र आ रहे हैं, स्टोन्स नज़र आ रहे हैं, जो कि बहने अपने भाइयों के लिए, भाभियों के लिए ले रही हैं।
6: यहाँ किसी को पारंपरिक डिजाइन पसंद आ रहा है तो कोई भाई की पर्सनालिटी के हिसाब से स्टाइलिश राखी चुन रही है।
9: रिसेंटली जो चल रहा है वो एक कश्मीरी वॉच है। जैसे लास्ट टाइम कश्मीरी वॉच और इयररिंग्स चले थे, इस बार वॉचेस आई हैं राखी के लिए। मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ, ये वॉचेस है। ये पूरा हमारा हैंडमेड है, ये मार्केट वाले डिजाइन्स नहीं है, हमने खुद ने कस्टमाइजेशन पे बनाए हैं और सबसे ज़्यादा ट्रेंड में यही है अभी। और अगर बॉयज़ के लिए देखना है तो रुद्राक्ष, जैसे रिसेंटली लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं तो उसके लिए रुद्राक्ष वाले ब्रेसलेट्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं।
6: भाई के कलाई पर बंधने वाली राखी अब सिर्फ एक धागा नहीं बल्कि पसंद, स्टाइल और रिश्ते की भावनाओं को जाहिर करने का जरिया भी बन गई है। राजस्थान से रिदम जैन, गुड न्यूज टुडे।
5: इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे,
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: पूर्वी उत्तर प्रदेश और खासकर गोरखपुर को नई सौगात मिलने वाली है। लखनऊ और अहमदाबाद की तर्ज पर वहां भी अब रिवर फ्रंट विकसित करने की तैयारियां हैं। ये रिवर फ्रंट राप्ती नदी के किनारे विकसित किया जाएगा। रिपोर्ट देखिए।
7: गोरखपुर में कल कल बहती राप्ती नदी का और उनके किनारों का ये मनमोहक नजारा बेहद आकर्षक है। नदी किनारे बने घाटों पर बैठकर सुकून के कुछ पल गुजारने का अपना ही मजा है। अब इस इलाके को और भी आकर्षक बनाने की तैयारी हो रही है। गोरखपुर में राप्ती नदी के तट का अब कायाकल्प होने जा रहा है। लखनऊ के गोमती और अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर राप्ती नदी के किनारे शानदार रिवर फ्रंट विकसित करने की योजना बनाई जा रही है। इसे अब साकार करने की दिशा में काम शुरू हो रहा है।
8: इसी योजना के क्रम में जो है एक प्रारंभिक जो है रिपोर्ट जो संबंधित वेंडर था उनके द्वारा जो है प्रस्तुत की गई है। क्योंकि ये प्रारंभिक रिपोर्ट है तो इसमें इन्होंने कुछ चीजें जो मेंशन करी हैं, इसमें पार्क भी है, इसमें ग्रीन स्पेसेस भी हैं, इसमें पब्लिक के लिए भी कन्वेंशन सेंटर लेकर ये रिवर फ्रंट की बात यहाँ पर चल रही है।
7: राप्ती रिवर फ्रंट के प्रोजेक्ट की DPR तैयार हो चुकी है। इस पर करीब 1,303 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसके तहत गोरखपुर के राजघाट से डोमिनीगढ़ तक राप्ती नदी के करीब 3.5 किलोमीटर लंबे तट को रिवर फ्रंट के रूप में विकसित किया जाएगा। इसमें नदी के तट से हर्बर्ट बांध पर बनी 4-लेन सड़क की ओर करीब 150 मीटर चौड़ाई में विकास कार्य कराया जाएगा, ताकि आम लोग इसका पूरा लाभ उठा सके।
8: जब आप नदी के किनारे विभिन्न आयामों में आप वहाँ पे टूरिज्म की तमाम गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं, जैसे चाहे वो बोटिंग हो, चाहे वो घाट पे बैठना हो, चाहे वो आसपास पार्क में सुबह की सैर करना हो, शाम की सैर करना हो, या कोई भी कॉलेज का इवेंट हो, कोई कल्चरल इवेंट हो, कोई पारिवारिक इवेंट हो, तो वो भी रिवर फ्रंट पे एक जिसे कहते हैं कि एक लाइवली माहौल वहाँ पर, एक कल्चरल एक संध्या के रूप में आप देखें, सुबह भी आप टहलने वहाँ जा सकें और बच्चों के साथ भी वहाँ और परिवार का समय व्यतीत कर सकें, इस तरह की पूरी परिकल्पना जो है इस रिवर फ्रंट पर की जाती है।
7: राप्ती रिवर फ्रंट के पूरे प्रोजेक्ट को 3 चरणों में पूरा करने की योजना है। सड़क तक विकसित किए जाने वाले हिस्से को ग्रीन बेल्ट के रूप में विकसित किया जाएगा। साथ ही यहां पर अर्बन हॉट, योग सेंटर और कन्वेंशन सेंटर जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इसके अलावा जगह जगह बोटिंग की सुविधा देने की भी तैयारी है। माना जा रहा है कि परियोजना पूरी होने के बाद राप्ती नदी का ये इलाका गोरखपुर के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल हो सकता है। गोरखपुर से गजेंद्र त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: से पहले टॉक्सिक का एडवांस विस्फोट। रॉकिंग स्टार की सिल्वर स्क्रीन पर दमदार चोट। यश के दम पर बेहिसाब पैसा कुर्बान। बालक के बारूद बनने की अनोखी दास्तान। बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
3: रक्षाबंधन पर पर्यावरण संरक्षण का संदेश, गाय के गोबर से बनाई जा रही हैं राखियां और अन्य सजावटी सामान। गया के बाजार में जमकर हो रही है राखी की खरीदारी। मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में काली घटा आयोजन, मंदिर में दिखा सावन का मनमोहक नजारा, ठाकुर जी के दर्शन कर गदगद नजर आए भक्त। जन्माष्टमी को लेकर इस्कॉन मंदिरों में तैयारियां तेज, दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर खास तैयारियां। नेशनल स्पेस डे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश के स्पेस स्टार्टअप्स और उनके सीईओ के साथ खास संवाद, इनोवेशन और युवाओं की भूमिका पर चर्चा। बनासकांठा के बादरगढ़ गांव में 1 सितंबर से पान मसाला गुटखा और शराब की बिक्री पर लगा बैन, कानून उल्लंघन पर लगेगा जुर्माना।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
3: देश आज मना रहा है चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक सफलता का तीसरी वर्षगांठ। 23 अगस्त 2023 को भारत ने चांद के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में की थी सफल सॉफ्ट लैंडिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी, बड़े सपने देखने और नई ऊंचाइयों को छूने का आह्वान। अमित शाह ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी, चंद्रयान 3 की सफलता और इसरो के वैज्ञानिकों की सराहना की। राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर शुभकामनाएं दी, चंद्रयान से गगनयान तक भारत की अंतरिक्ष यात्रा की सराहना। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के मौके पर इसरो ने लोगों से जश्न में जुड़ने की अपील की। नेशनल स्पेस डे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पेस स्टार्टअप्स के सीईओ फाउंडर्स से बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रॉकेट, सैटेलाइट से लेकर एआई तक की चर्चा की, स्पेस टेक्नोलॉजी और नए इनोवेशन को लेकर भी हुई बातचीत। इनोवेशन को लेकर बातचीत हुई, मुलाकात के दौरान 20 स्टार्टअप के सीईओ और फाउंडर्स रहे मौजूद। मुलाकात के दौरान 20 स्पेस स्टार्टअप के सीईओ मौजूद रहे। अहमदाबाद में नेशनल स्पेस डे को लेकर समारोह का हुआ आयोजन, इसरो की यात्रा को लेकर वीडियो जारी किया गया। दिल्ली के गेट ऑफ कैलाश स्थित इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी की तैयारियां शुरू, 4 सितंबर को मंदिर में मनाया जाएगा भगवान कृष्ण का भव्य जन्मोत्सव। जन्माष्टमी से पहले रंग बिरंगी लाइटों से सजाया जा रहा है इस्कॉन मंदिर परिसर में, सजावट और रंग रोगन का काम तेज। जन्माष्टमी को लेकर मंदिर परिसर में लगाए जा रहे हैं रंग बिरंगे टेंट, बड़ी संख्या में भक्तों के पहुंचने का सिलसिला। जन्माष्टमी के मौके पर लाखों भक्त भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए इस्कॉन मंदिर में पहुंचेंगे, करीब 2 महीने पहले शुरू कर दी जाती है तैयारियां। इस्कॉन मंदिर में इस बार भी जन्माष्टमी पर होगा भव्य आयोजन, मंदिर को सजाने श्रद्धालुओं के स्वागत की तमाम तैयारियां। हिमाचल प्रदेश के मंदिरों में दान को लेकर बड़े रिकॉर्ड्स निकलकर सामने आए, 36 मंदिरों में 1 जनवरी 2024 से 1 अगस्त 2026 तक करीब 420 करोड़ रुपए का चढ़ावा। सबसे ज्यादा चढ़ावा हमीरपुर के बाबा बालकनाथ देवता सिद्ध मंदिर में आया, यहां 99 करोड़ रुपए से ज्यादा का चढ़ावा मिला। बिलासपुर के नैना देवी मंदिर में 86 करोड़ रुपए से ज्यादा मिला चढ़ावा। माता चिंतपूर्णी मंदिर में 85 करोड़ रुपए से ज्यादा का चढ़ावा। हरिद्वार में हर की पौड़ी में देखा आस्था का अनोखा संगम। मुल्तान समाज के लोगों ने मां गंगा के साथ खेली दूध की होली। मुल्तान समाज की ओर से लोगों को गंगा स्वच्छता का संदेश दिया गया, एक दूसरे को गुलाल लगाकर सबके कल्याण की कामना। देशभर में रक्षाबंधन को लेकर बाजार में छाई रौनक, राखी से लेकर गिफ्ट की दुकानों में बिक्री। सूरत के स्पेशल स्कूल में बच्चे तैयार कर रहे हैं खास राखी, लोगों को आ रही है काफी पसंद। स्पेशल बच्चों को स्कूल की टीचर दे रही हैं राखी बनाने के प्रशिक्षण, बच्चे मन की डिजाइन से राखी करते हैं तैयार। गया में रंग बिरंगी राखियों से सज गए हैं बाजार, बहनें अपने भाइयों के लिए खरीद रही हैं मन पसंदीदा राखियां। पाली में पर्यावरण की रक्षा करने के लिए गोबर से बनी राखियों की बढ़ी डिमांड, उपहार के लिए आकर्षण के गहने भी उपलब्ध। रक्षाबंधन को लेकर करनाल में बाजारों में छाई रौनक, बहनें अपने भाइयों के लिए जमकर कर रहे हैं खरीदारी। मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में काली घटा आयोजन किया गया, मंदिर में देखा सावन का मनमोहक नजारा। ठाकुर द्वारकाधीश महाराज को काली घटा में कराया गया विराजमान, मंदिर परिसर को काले वस्त्रों आकर्षक रोशनी फूलों से सजा। काले बादलों की गड़गड़ाहट, चिड़ियों की चहचहाट और बिजली की घनघोर आवाजों से बनाया गया बारिश का माहौल। ठाकुर जी के दर्शन कर श्रद्धालु हुए भाव विभोर। ठाकुर जी को बाहर के मौसम का एहसास कराने के लिए किया जाता है आयोजन। झमाझम बारिश के साथ हुई दिल्ली एनसीआर में मौसम हुआ सुहाना। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में लोगों ने रेनी संडे का उठाया लुत्फ, रिमझिम बारिश के बीच मौसम का आनंद। दिल्ली एनसीआर में बारिश के चलते लोगों को मजबूरी गर्मी से राहत मिली, तापमान में दर्ज की गई गिरावट। दिल्ली एनसीआर में अगले 2 दिनों तक बने रहेंगे बारिश के आसार, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। गाजियाबाद से लेकर गुरुग्राम तक मौसम ने अचानक करवट ली, काले बादलों के साथ मूसलाधार बारिश। देश के कई हिस्सों में मॉनसून सक्रिय, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के अलावा हरियाणा और चंडीगढ़ में बारिश का अलर्ट। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश जारी, बांदा में भीषण बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। उत्तराखंड के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ जारी रहेगा बारिश का दौर, पौड़ी, नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली और उत्तरकाशी के लिए अलर्ट। देवभूमि उत्तराखंड में फिर बदल के मौसम का मिजाज, देहरादून में देर रात झमाझम बारिश। बिहार के दानापुर दियारा में बढ़ा गंगा नदी का जलस्तर, नाव से नदी पार करने वालों के लिए मुश्किल। बेगूसराय में लगातार बढ़ रहा है गंगा नदी का जलस्तर, सड़कों पर बह रहा है 2 फीट तक पानी। प्रयागराज में गंगा और यमुना के जलस्तर बढ़ना लगातार जारी, कई घाट डूबे, निचले इलाकों में बढ़ा बाढ़ का खतरा। हापुड़ में गंगा से सटे ग्रामीण इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, जिला अधिकारियों ने प्रभावित इलाकों में बंटवाई राहत सामग्री। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में लगातार बारिश का दौर जारी, कई इलाकों में जल ही जल। श्रीनगर में बारिश के बाद मौसम हुआ सुहाना, पर्यटक जमकर उठा रहे हैं लुत्फ। राजस्थान की राजधानी जयपुर में मिलावटखोरों पर प्रशासन का शिकंजा, संदिग्ध मूंगफली तेल का 6,900 लीटर स्टॉक सीज। खाद्य सुरक्षा विभाग ने प्रदेश भर में 60 जगहों पर मारे छापे, कार्रवाई के दौरान 101 खाद्य नमूने सैंपल्स। उदयपुर में 600 लीटर नकली दूध नष्ट किया गया, कई जिलों में बासी मिठाई, मावा, घी, तेल पर भी कार्रवाई। जालना के वाघाड़ी गांव में आजादी के बाद पहली बार शुरू हुई नियमित बस सेवा। ग्रामीणों ढोल ताशों के साथ बस का फूलों से स्वागत किया, छात्राओं के साथ अभिभावकों में दिखा जबरदस्त उत्साह। कोलकाता में सीनियर सिटीजन्स को लेकर क्रिएटिविटी नेवर रिटायर्स आर्ट थेरेपी का आयोजन किया गया। आर्ट थेरेपी वर्कशॉप में मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने भारत माता की बनाई पेंटिंग। फिट संडे मिशन के तहत विशाखापट्टनम में साइकिल इवेंट का आयोजन किया गया, बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। विशाखापट्टनम साइकिल इवेंट में मंत्री मनसुख मंडाविया शामिल हुए, लोगों को गुड हेल्थ के टिप्स दिए। पंजाब यूथ रन तहत मॉडल टाउन मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, 5 किलोमीटर की दौड़ में प्रतियोगिता में सैकड़ों बच्चे शामिल हुए। इस साल नवंबर महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं दरभंगा एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन, निर्माण कार्य लगभग पूरा। दरभंगा एयरपोर्ट से जल्द शुरू हुई रात्रि विमान सेवा, फिलहाल यहां से सिर्फ दिन में उड़ान भर रही है। दरभंगा एयरपोर्ट को धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के तौर पर किया जा रहा विकसित, एयरपोर्ट के विकास के साथ बढ़ाई जा रही है सुविधाएं। दिल्ली विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने रन फॉर वंदे मातरम देशभक्ति दौड़ का आयोजन किया। दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में सेक्रेट टाइगर टेल्स बुक लॉन्च हुई। खेल मंत्रालय ने जापान में होने वाले एशियन गेम्स के लिए 492 खिलाड़ियों के भारतीय दल को दी मंजूरी। भारतीय दल में सबसे ज्यादा एथलेटिक्स खिलाड़ी, टीम में 35 पुरुष 38 महिला। 30 सदस्यीय निशानेबाजी टीम में मनु भाकर प्रमुख नाम, टीम में 15 पुरुष 15 महिला निशानेबाज। 20 सदस्यीय बैडमिंटन टीम में पीवी सिंधु लक्ष्य सेन को मिली जगह। भारतीय दल में नीरज चोपड़ा, मनु भाकर, मीराबाई चानू, लवलीना और अंतिम पंघाल जैसे दिग्गज। लखनऊ में स्वतंत्रता सेनानी गुलाब सिंह लोधी के शहादत दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धांजलि अर्पित की। लखनऊ में मिड डे मील रसोइयों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। सम्मान समारोह से पहले छात्राओं की ओर से लगाई गई प्रदर्शनी में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वाराणसी में जापानीज प्रतिनिधिमंडल ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पहुंचकर भगवान शिव के लिए दर्शन पूजन किया। तमिलनाडु के वेल्लोर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुई दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, छात्रों को उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी। मंडी पठानकोट हाईवे पर मूसलाधार बारिश से लैंडस्लाइड, बड़े वाहनों के बंद किए गए रास्ते पर।

गोरेला में जोरदार बारिश तूफान पर नाले या अमरकंटक की सड़कें नाले में हुई तब्दीली। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में जोरदार बारिश के चलते शहर के अंदर जगह जगह भरा पानी। फर्रुखाबाद में गंगा और राम गंगा दोनों नदियां उफान पर, किनारे के गांवों पर जारी किया गया अलर्ट। मोनाको के मोंटे कार्लो में दुनिया के सबसे तेज बाइक राइडर तादिस ने किया कमाल। 81वीं वेल्टा ए एस्पाना का जीता पहला स्टेज। गोगाकर ने ब्रिटेन के एथन को महज 0.09 सेकंड से पीछे छोड़ा। पहला चरण जीतने के साथ ही पोगाकर ने हासिल कर ली रेस की लीडर रेस जर्सी। स्विस एपिक 2026 माउंटेन बाइक रेस के चौथे चरण में इटली की स्कॉट रेसिंग 2 ने हासिल की जीत। 55 किलोमीटर के मुश्किल ट्रैक पर गोरिया और फोकोली की जोड़ी ने बनाए लाइव। बीजिंग में दूसरे वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स का आयोजन किया गया। उद्घाटन समारोह में 1000 से ज्यादा ह्यूमनॉइड रोबोट्स ने शिरकत की। रोबोट गेम्स में 16 देशों के 666 टीमों ने हिस्सा लिया। ओपनिंग सेरेमनी में 36 ह्यूमनॉइड रोबोट्स ने इंसानी कलाकारों के साथ संगीत की प्रस्तुति दी। रोबोट्स ने फुटबॉल, पिंग पोंग और टेनिस में दिखाया अपना हुनर। उद्घाटन समारोह में रोबोट ने धनुष से तीर चलाकर इंटेलिजेंट चिप के प्रतीक को प्रज्वलित किया। बीजिंग में चल रहे वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स में देखा तकनीक का कमाल। 100 मीटर दौड़ में रोबोट्स ने दिखाई अपनी स्पीड। रेस के दौरान तेज रफ्तार में टकराने वाले रोबोट्स को स्टाफ ने स्ट्रेचर पर ट्रैक से बाहर निकाला। ह्यूमनॉइड रोबोट ने हाई जंप, टेनिस, टेबल टेनिस और फुटबॉल में दिखाया दमखम। बीजिंग के नेशनल स्पीड स्केटिंग ओवल में 5 दिवसीय प्रतियोगिता का शुभारंभ। उद्घाटन समारोह में अलग अलग देशों की टीमें शामिल होंगी। 26 अगस्त तक चलेंगे वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स। बीजिंग वर्ल्ड रोबोट मेले में वायरल चीनी फिल्म न्यू लाई के किरदार को किया गया रोबोट का रूप।

0: उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में 10वें इंटरनेशनल मार्शल आर्ट्स गेम्स के लिए जलाई गई मशाल। मशाल प्रज्वलन समारोह में ताइक्वांडो, वुशु और रॉ कराटे जैसे मार्शल आर्ट्स को किया गया प्रदर्शित। उत्तर कोरिया से मशाल को अक्टूबर में ले जाया जाएगा किर्गिस्तान। के पॉप बैंड बिग बैंग ने दक्षिण कोरिया के गोयांग से की 20वीं सालगिरह के वर्ल्ड टूर की शुरुआत। बिग बैंग ने 19 अगस्त को जारी किया नया सॉन्ग।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आ रही है। गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से
0: सावन की रिमझिम फुहारों के बीच सदियों की प्रतीक्षा के बाद अयोध्या के श्रीराम मंदिर में अद्भुत अलौकिक आयोजन हो रहा है। यहां पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामलला अपने भव्य भवन में दिव्य झूलनोत्सव मना रहे हैं। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं रामलला के दरबार में और दिखाते हैं झूलनोत्सव की शानदार छटा।

0: लगता है जैसे अयोध्या में त्रेता युग जीवंत हो उठा है। भव्य श्री राम मंदिर में रामलला झूलनोत्सव मना रहे हैं। देखिए इन तस्वीरों को। गर्भगृह में विशेष रूप से तैयार किए गए सोने चांदी के भव्य झूले पर रामलला विराजमान है। झूलनोत्सव के लिए प्रभु को विशेष रेशमी और जरी के वस्त्र पहनाए गए हैं। भजन कीर्तन के बीच यहाँ का माहौल श्रद्धा और भक्ति से सराबोर नजर आ रहा है। अब एक बार फिर से यहाँ पर सावन का ये उत्सव त्रेता युग की याद दिला रहा है, जब पूरी अयोध्या आनंद में डूबी रहती थी। श्री राम मंदिर परिसर में रामलला का ऐतिहासिक झूलनोत्सव इस बार 15 अगस्त को श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को शुरू हुआ। संत महात्माओं की पावन उपस्थिति में भगवान श्री राम की उत्सव मूर्ति को भाइयों के साथ विधि विधान पूर्वक झूले पर विराजमान कराया गया। इस दौरान मंदिर परिसर में भक्ति परंपरा और आध्यात्मिक उल्लास का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। ये उत्सव रामलला के प्रति भक्ति की भावना से प्रेरित है। सावन की उमस और गर्मी से राहत देने के लिए भगवान को फूलों और चंदन से सजे ठंडे झूले पर बिठाकर धीरे धीरे झूला झुलाते हैं ताकि उन्हें सुख मिल सके। भक्त अपने आराध्य को छोटे बच्चे के रूप में देखते हैं और हिंडोली पर बिठाकर पंखा चलते हुए उन्हें झूला झुलाते हैं। जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ओर से झूला उत्सव का खास वीडियो जारी किया गया है। श्री राम मंदिर में झूलनोत्सव का ये दृश्य श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस दरमियान यहाँ मंदिर परिसर में संत महात्माओं की मौजूदगी में लगातार धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं, जो अयोध्या की इस युगों पुरानी आध्यात्मिक परंपरा को और भव्यता प्रदान कर रही है। खास बात यह है कि 12 दिनों के झूलनोत्सव के दौरान हर दिन शाम को रामलला को पालकी में बिठाकर कुबेर टीला ले जाया जाता है और वहां उनके दर्शन की विशेष व्यवस्था रहती है। केवल राम जन्मभूमि ही नहीं बल्कि पूरी अयोध्या इस समय उत्सव के रंग में सराबोर है। सरयू के तट से लेकर कनक भवन तक और तमाम मंदिरों में भी हर तरफ इन दिनों उत्सव का माहौल है। सावन शुक्ल तृतीया से शुरू हुआ ये झूलनोत्सव पूर्णिमा तक इसी तरह पूरी भव्यता के साथ जारी रहेगा। अयोध्या से मैं शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: बात करेंगे जन्माष्टमी की। जन्माष्टमी का त्योहार 4 सितंबर को मनाया जाएगा। इस शुभ अवसर पर दिल्ली में होगा मटकी फोड़ लीग का आयोजन। मटकी फोड़ लीग में 26 गोविंदा टीमों के बीच होगा रोमांचक मुकाबला। एमपीएल का ये दूसरा साल है और एक कार्यक्रम के आधिकारिक एंथम सॉन्ग और मस्कट मटकू लॉन्च किया गया है।

0: बार फिर आएंगे कान्हा। मटकी फोड़ेंगे कृष्ण मुरारी गिरधारी, नंद गोपाल मुरलीधर कुंज बिहारी, गोवर्धन धारी गोविंदा बाके बिहारी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर खूब जमेगा रंग। जब दिल्ली के कोने कोने से आई गोविंदाओं की टोलियां ऊंचे ऊंचे मानव पिरामिड बनाएगी, दही हांडी की मटकी फोड़ने के लिए एक बार फिर अपना दमखम दिखाने के लिए जुटेंगी, जोश और उत्साह चरम पर होगा। जब राजधानी दिल्ली में मटकी फोड़ ली यानी एमपीएस सीजन 2 का भव्य आयोजन होगा। माखन की मटकी फोड़ने की सदियों पुरानी परंपरा शानदार खेल प्रतियोगिता के रूप में जीवंत होगी। राजधानी में पिछले 23 वर्षों से आयोजित हो रहे श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की परंपरा को इस वर्ष एमपीएल के साथ और अधिक भव्य और आकर्षक स्वरूप देने की तैयारी की गई है। इसी सिलसिले में अब एमपीएल का अपना एंथम और मैस्कॉट मटकू भी लॉन्च कर दिया गया है।
1: हमारे हिंदुस्तान में ऐसा कोई खेल नहीं है जिसमें 40 से 50 लोग एक साथ एक टीम के रूप में खेलें। तो हमारा ये मटकी फोड़ जो खेल है, गोविंदाला ये मटकी फोड़ जो खेल है, ये ऐसा खेल है जिसमें 40 से 50 लोग एक साथ टीम के रूप में पैरामिड बनाते हैं और मटकियों को फोड़ने का जो प्रभु लीला का प्रदर्शन है वो करते हैं। तो हम इस बार इसको बड़े स्केल पे बड़े लेवल पे लेके जा रहे हैं।
0: दिल्ली में इस बार मटकी फोड़ लीग यानी एमपीएस सीजन 2 का आयोजन 3 और 4 सितंबर को किया जाएगा। पूर्वी दिल्ली के यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एमपीएल में शामिल गोविंदा टीमों के बीच मुकाबला होगा। इसमें इस बार 26 गोविंदा टीमें भाग ले रही हैं, जिनमें से 10 टीमें लड़कियों की हैं। टीमों ने इसके लिए पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी हैं।
2: 2 महीने से लगभग ट्रेनिंग कर रहे हैं ये लोग, और सबसे बड़ी बात ये है कि इस लीला को अब एक स्पोर्ट्स के रूप में देखना शुरू कर दिया गया है। लगभग दिल्ली में आप खुश होंगे ये जानकर के कि इस लीला के माध्यम से जो ये स्पोर्ट्स बन गया है, अब लगभग 1000 से ज्यादा बच्चे आज हमारे स्पोर्ट्स से जुड़ गए हैं। जो स्पोर्ट्स से नहीं थे वो एथलीट्स बनने जा रहे हैं।
0: आपको बता दें कि दिल्ली से पहले मुंबई में प्रो गोविंदा लीग सीजन 4 होने जा रहा है। 25 से 27 अगस्त 2026 तक वर्ली के स्टेडियम में प्रो गोविंदा लीग में मुंबई सहित महाराष्ट्र के दूसरे इलाकों से आए गोविंदाओं की टीमें मटकियां फोड़ने के लिए जोर आजमाइश करेंगी। इस दौरान विजेता टीमों को लाखों रुपए के पुरस्कार भी दिए जाएंगे। महाराष्ट्र सरकार ने पारंपरिक दही हांडी उत्सव को एडवेंचर स्पोर्ट्स का दर्जा दिया है। इसी के बाद से इसे प्रोफेशनल खेल के रूप में बढ़ावा देने के लिए प्रो गोविंदा लीग की शुरुआत की गई, और अब महाराष्ट्र के बाद दिल्ली में भी इसे बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिए जाने की कोशिश हो रही है, ताकि किशोरों और युवाओं को अपनी संस्कृति और परंपराओं से जोड़ा जा सके और साथ ही साथ इनमें टीम भावना, अनुशासन, साहस, नेतृत्व, शारीरिक क्षमता और आपसी सहयोग की भावना को मजबूत किया जा सके। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
3: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती है। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: क्या है सावन के अंतिम सोमवार का महत्व? सावन के अंतिम सोमवार का क्या है पूजा विधान और सावन के अंतिम सोमवार पर मिलेंगे कौन से वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
12: अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर बदली गई धर्म ध्वजा, वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूरे विधि विधान के साथ निभाई गई परंपरा, नए ध्वज पर सूर्य ओम और कुफिदारा वृक्ष के चिन्ह अंकित। मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में काली घटा का आयोजन, मंदिर में देखा सावन का मनमोहक नजारा, ठाकुर जी के दर्शन कर गदगद नजर आए भक्त। जन्माष्टमी को लेकर इस्कॉन मंदिर में तैयारियां तेज, दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर खास तैयारियां। बारिश के लिए जैसलमेर के पुरोहितेश्वर राव महादेव मंदिर में भगवान भोलेनाथ का महारुद्राभिषेक, 121 रुद्रपाठी पंडितों ने किया सामूहिक रुद्री पाठ, मंत्रोच्चार से गूंजा परिसर। नागपुर में 4,000 से ज्यादा युवक युवतियों ने ढोल ताशा बजाकर बनाया अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ नागपुर का नाम। रक्षाबंधन पर पर्यावरण संरक्षण का संदेश, गाय के गोबर से बनाई जा रही हैं राखियां और अन्य सामान, गया के बाजारों में जमकर हो रही है खरीदारी। नेशनल स्पेस डे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश के स्पेस स्टार्टअप्स और उनके सीईओस के साथ खास संवाद, इनोवेशन और युवाओं की भूमिका पर चर्चा।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना

आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। एक बार फिर लेकर एक दमदार शख्सियत का सफरनामा। इस बार जिस शख्सियत का दमदार सफरनामा लेकर हम हाजिर हुए हैं उसकी एक फिनोमिनल मूवी 26 अगस्त को दुनिया भर के सिल्वर स्क्रीन पर दस्तक देने के लिए तैयार है। एक ऐसी मूवी जिसे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़े बजट वाली फिल्म माना जा रहा है। उसी फिल्म के लीड एक्टर की जिंदगी की दास्तान लेकर हम हाजिर हुए हैं। एक ऐसा हीरो शुरुआती दिनों में जिसके पास एक्टिंग का कोर्स करने तक के पैसे नहीं थे,

आप समझ गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के वंडर बॉय रॉकिंग यश हैं। जी हाँ, यही यश, वो यश जिसकी केजीएफ ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। 26 अगस्त को यश की एक और दमदार फिल्म टॉक्सिक अ फेरी टेल फॉर ग्रोनअप्स दुनिया भर के थिएटर्स में रिलीज होने जा रही है। एडवांस बुकिंग का विंडो ओपन होने के बाद टॉक्सिक को जिस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है उसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये फिल्म केजीएफ की कामयाबी को भी पीछे छोड़ने जा रही है। ये वही यश हैं जिनके पास कभी एक्टिंग कोर्स करने तक के पैसे नहीं थे लेकिन आज वो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सबसे महंगे हीरो में शुमार हो चुके हैं।

0: 389 शोज के लिए 1,16,00,000 रुपए से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया।
1: कोई आखिरी ख्वाहिश?
2: ज्यादा कुछ नहीं, तेरे भाई को जला के उसकी राख से लाइन बना के।
0: टॉक्सी के ट्रेलर को जिस तरह सोशल मीडिया पर जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है, इस बात की पूरी उम्मीद है कि यश स्टारर ये फिल्म सबसे बड़े बजट के साथ ही सबसे बड़े कलेक्शन का भी कीर्तिमान स्थापित करेगी। पोस्ट इंडिपेंडेंस गोवा की पृष्ठभूमि पर बनी ये फिल्म जबरदस्त पीरियड गैंगस्टर ड्रामा है जो यश के दोनों किरदारों के इर्द गिर्द घूमती है।
3: I was hoping to have a civilized course.
0: ट्रेलर देखकर पता चलता है कि टॉक्सिक में 1940 से 1970 के बीच गोवा के ड्रग माफिया, उनके बीच होने वाले गैंगवार, रोंगटे खड़े कर देने वाली हिंसा, अपराध, पिता पुत्र के संबंध, वफादारी, विश्वासघात और इंतकाम की भावना के साथ प्यार और रोमांस का डबल डोज है। जाहिर है इस फिल्म में वो सब कुछ है जिसे देखने के लिए सिने प्रेमी थिएटर्स का रुख करते हैं।
4: सो दिस मूवी इज अ वेरी टफ वन बिकॉज द काइंड ऑफ डिसीजंस ऑन द सरफेस लेवल इट वाज नॉट इजी। इट इज नॉट अ परफेक्ट कमर्शियल पैकेज फिल्म वेयर यू कैन जस्ट से दैट ओके दिस इज अ फिल्म ऑफ हीरो इज मेड KGF, दिस इज अ नंबर एंड देन director who has done this film, okay, they can gauge what can happen. But this was a very unique combination and it was a very unique attempt.
0: टॉक्सी का फेरी टेल फॉर ग्रोनअप्स की रिलीज की तारीख भी अपने आप में कई इत्तेफाक समेटे हुए है। फिल्म की रिलीज डेट है 26 अगस्त 2026, यानी 26/8/26। एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक इसका न्यूमेरिक्स 8/8/8 आता है। इत्तेफाक से यश का जन्मदिन भी 8 जनवरी है। इतना ही नहीं, फिल्म का बजट भी 800 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। काबिले गौर है कि टॉक्सिक में लीड रोल निभाने के साथ ही यश इस फिल्म के को प्रोड्यूसर भी है। यश की सबसे बड़ी खासियत यह है कि उनकी सोच का कैनवस बहुत बड़ा है। इस अर्थ में वो इस देश के करोड़ों युवाओं की अनूठी प्रेरणा है। सोचिए कि यश के पिता कर्नाटक स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में ड्राइवर थे, सरकारी बस चलाते थे, माँ एक हाउसवाइफ हैं। इनके दूर दूर के रिश्ते में कोई भी फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाला नहीं है, लेकिन बचपन से ही इनकी सोच बड़ी थी, इरादा मजबूत था, हौसला आसमानी था, आत्मविश्वास प्रगाढ़ था, सफलता की राह में आने वाली दुश्वारियों से लड़ने का मादा था और इन सब के साथ नाकामी में विचलित नहीं होने का धैर्य भी था। तभी तो एक अत्यंत साधारण पृष्ठभूमि में पला बढ़ा लड़का आज इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का ऐसा नगीना बन चुका है कि निर्माता निर्देशक इनके नाम पर कितना भी बड़ा रिस्क लेने को तैयार हैं।

0: दो पार्ट में बनने वाली रामायण का बजट 4000 करोड़ रुपए है। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के नजरिए से देखेंगे तो ये बजट फैंटेसी लगेगा, लेकिन हकीकत यही है कि फिल्म का बजट 4000 करोड़ रुपए है। रामायण के निर्माता नमित मल्होत्रा हैं, जबकि टॉक्सी की तरह यश इस फिल्म के भी को प्रोड्यूसर हैं। रामायण में यश रावण का किरदार निभा रहे हैं।
1: प्रतिशोध लिया जाएगा सुपर्णा। राम की
0: वो चाहते तो राम की भूमिका में भी आ सकते थे, लेकिन यश का साफ कहना है कि उन्होंने राम की बजाय रावण की भूमिका इसलिए चुनी क्योंकि जब तक खलनायक का किरदार दमदार नहीं होगा, नायक का नायकत्व तो निखर कर सामने नहीं आ पाएगा। रामायण का फलक कितना व्यापक है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ऑस्कर विजेता संगीतकार हंस जिमर इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और संगीत तैयार कर रहे हैं। हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर मूवी मैड मैक्स फ्यूरी रोड के एक्शन डायरेक्टर गॉय नॉरिस फिल्म के युद्ध के दृश्यों को डिजाइन कर रहे हैं। अवेंजर्स इन्फिनिटी वार फिल्म टेरी नोटरी फिल्म में परफॉर्मेंस और मोशन कोरियोग्राफी की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। द मैट्रिक्स फिल्म डैन ग्लास के पास फिल्म के विजुअल इफेक्ट्स की कमान है। रामायण की तरह टॉक्सी को भी ग्लोबल एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है। आपको बता दें कि हॉलीवुड की जानी मानी फिल्म जॉन विक और फास्ट एंड फ्यूरियस के एक्शन डायरेक्टर जेजे पेरी ने टॉक्सी के लिए भारत में 45 दिनों तक रहकर बेहद खास एक्शन शेड्यूल शूट किया है। इतना ही नहीं, टॉक्सी को दुनिया भर के 12,000 से अधिक स्क्रीन्स पर रिलीज करने की तैयारी है और इसके इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हॉलीवुड के दिग्गज स्टूडियो 20th Century Fox के साथ पार्टनरशिप की गई है। इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन को ध्यान में रखकर ही टॉक्सी को कन्नड़ के साथ अंग्रेजी भाषा में भी शूट किया गया है। टॉक्सिक और रामायण से पहले यश की साल 2018 में आई KGF चैप्टर 1 और साल 2012 में आई KGF चैप्टर 2 ने हिंदुस्तान के साथ ही दुनिया भर में तहलका मचा दिया था। KGF में यश द्वारा निभाया गया रॉकी भाई का करिश्माई और विद्रोही किरदार दुनिया भर के सिने प्रेमियों के बीच एक आइकॉनिक हीरो के रूप में सामने आया। साफ है कि कर्नाटक के हासन जिले के गुमनाम गांव में जन्मे बच्चे ने बिना किसी पारिवारिक सपोर्ट और बिना किसी गॉडफादर के अपनी इच्छा शक्ति, मेहनत और लगन के दम पर न सिर्फ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में कद्दा और पहचान बनाई, बल्कि अपनी इंडस्ट्री को ग्लोबल स्टेज पर भी पूरी ठसक के साथ मजबूत पहचान दिलाई।
2: यश के एक्टर बनने की दास्तान अत्यंत मर्म स्पर्शी है। इनका जन्म कर्नाटक के हासन जिले के एक साधारण से गांव में हुआ था। यश के पिता बस ड्राइवर थे, लिहाजा आप समझ सकते हैं कि गृहस्थी मुश्किल से ही चलती होगी। लेकिन उसी साधारण परिवार में जन्मे यश के मन में बचपन से ही ये हसरत कुलाचे मारने लगी थी कि उन्हें सिल्वर स्क्रीन का स्टार बनना है। शुरुआती दिनों में यश अपनी हसरत जब दोस्तों के बीच बताते थे तो दोस्त इन पर चुटकी लेते थे, लेकिन साथियों की चुटकियों से विचलित हुए बगैर वो अपने मिशन में काफी कम उम्र से ही जुट गए थे। यश के जीवन की हकीकत भी किसी परी कथा से कम थ्रिलिंग नहीं है।
0: इमेजिनेशन, एनालाइजेशन और एग्जीक्यूशन, अंग्रेजी के इन तीन शब्दों के इर्द गिर्द ही सफलता और असफलता का चक्र घूमता है। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो इमेजिनेशन ना करता हो। हसीन ख्वाब देखना इंसान की बुनियादी फितरत है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो अपने इमेजिनेशन को एनालाइज करते हैं। एग्जीक्यूशन के लेवल तक तो कोई विरला ही पहुंचता है, लेकिन जो पहुंच जाता है वो ही इतिहास के सुनहरे पन्नों में अपना नाम दर्ज कराता है। साउथ के सुपरस्टार यश उन्हीं विरले लोगों में शुमार हैं। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में वंडर बॉय और रॉकिंग स्टार के नाम से पहचान बना चुके यश के शुरुआती जीवन की सच्चाई से जब आप रूबरू होंगे तो जेहन में सवाल उठेगा कि इतनी साधारण पृष्ठभूमि से आने वाला एक शख्स इतना रॉकिंग स्टार कैसे बन गया। कर्नाटक के हासन जिले के छोटे से गांव भुवन हल्ली में 8 जनवरी 1986 को जन्मे यश ने जब से होश संभाला तभी से दिल में रुपहले पर्दे पर स्टार बनकर चमकने की हसरत पलने लगी। घर वाले यश की इस हसरत को कम उम्र की नादानी मानकर बस इतना चाहते थे कि पढ़ लिख कर उनका बेटा एक सरकारी नौकरी पकड़ ले, पर पेरेंट्स को क्या पता था कि यश की एक्टर बनने की ख्वाहिश बाल सुलभ नादानी नहीं बल्कि वास्तविक जुनून है।
3: माय फादर इज फ्रॉम मैसूर, सो आई ग्रो अप इन मैसूर, मोस्ट ऑफ माय चाइल्डहुड वाज इन मैसूर। माय फादर वाज अ बीएमटीसी बस ड्राइवर एंड माय मदर वाज अ हाउसवाइफ, सो जस्ट लाइक एनी अदर मिडिल क्लास दिस थिंग वी वर लीडिंग अ हैप्पी लाइफ एंड देन आई वांट टू बिकम एन एक्टर फ्रॉम चाइल्डहुड आई हैव बीन इंक्लाइंड टुवर्ड्स दिस what do you call it? extra attention we get as an actor, no? For that maybe all the ACT marna, all this I used to like. I used to participate in a lot of fancy dress, mono acting and all of that. And I used to dance. So that used to give me a lot of happiness. So that's how it started and I got into, it's a long story.
0: हासन जिले के गुमनाम गांव के एक साधारण से परिवार में जन्मे बच्चे के इंटरनेशनल स्टार बनने की दास्तान वाकई बहुत लंबी है। नवीन कुमार गौड़ा से रॉकिंग यश बनने की कहानी दिल को छू लेने वाली है। हीरो बनने की हसरत सजोई यश बिना किसी बाहरी मोटिवेशन के स्वयं की प्रेरणा से स्कूल के नाटकों और डांस प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने लगे और उनके परफॉर्मेंस पर जब साथी बच्चे तालियां बजाते तो उन्हें उसी उम्र में रॉक स्टार वाली फीलिंग होने लगती। उधर स्कूल के साथी यहां तक कि टीचर्स भी यश को हीरो कहकर संबोधित करने लगे। दूसरी ओर यश को बचपन में कभी ये महसूस ही नहीं हुआ कि सिल्वर स्क्रीन का स्टार बनना नामुमकिन नहीं तो नामुमकिन जैसा जरूर है।
3: I never realized how difficult it is or this. It's just that I believed it at a very young age because all my teachers, they started calling me, Kya hero, how are you? Matlab, jab baat karte the na, even then they used to be like hero bulate the. Because I'd done some small mono acting this thing where I told that, you know, I'll catch Veerappan and all of that when I was young. So they used to tease me with that thing. If Veerappan's any news used to come out, they used to question me, saying, hey, you used to, kidhar hai, pakda nahi abhi tak. So they used to make fun of those things. And I believed that one day, jaake main actor ban jaunga. I didn't know how difficult it is or how much dedication or lot of things go into becoming an actor or anybody who wants to achieve something. I had no clue about that. But I just wanted to be an actor.
0: रुपहले पर्दे का स्टार बनने की धुन के साथ ही यश ने स्कूलिंग पूरी कर ली, लेकिन प्री यूनिवर्सिटी करने के बाद थोड़ी मैच्योरिटी आई तो उन्हें एहसास हुआ कि स्कूल के स्टेज पर परफॉर्म करने और प्रोफेशनल एक्टिंग में बहुत बड़ा फर्क है। ऐसे में उन्हें आगे कदम बढ़ाने के लिए एक्टिंग का कोर्स करने की जरूरत महसूस हुई, लेकिन घर वालों के पास इतने पैसे थे कहां कि यश को किसी एक्टिंग स्कूल में दाखिला दिलवा सके। पर यश के पास तो दूसरा विकल्प था ही नहीं, लिहाजा एक दिन घर वालों से कह दिया कि वो बेंगलुरु जाएंगे और वहीं एक्टिंग की दुनिया में किस्मत आजमाएंगे। यश के पिता इसके लिए कतई राजी नहीं थे, लेकिन बेटे की जिद देखकर आखिरकार मान गए, पर जाने से पहले एक शर्त रख दी कि अगर वापस लौटने की नौबत आई तो हीरो बनने की हसरत की तिलांजलि दे देनी होगी। यश ने पिता की शर्त मान ली और महज 300 रुपए लेकर बेंगलुरु के लिए रवाना हो गए।
3: I just went and I joined theater and I did a lot of backstage work. Eventually, while doing backstage work, I used to practice for other roles also where some actor is late, then I used to give that dialogue cue बोलते हैं उसको। Like that I used to rehearse and then I was an emergency actor. If somebody is ill or if some actor is not, I used to just go and do that. That's how it started. And then I started getting big roles.
0: थिएटर में काम मिलने के बाद तो जैसे यश के अरमानों को पंख लग गए। काम इतनी मेहनत से किया कि उनकी एक्टिंग के चर्चे होने लगे। साल 2004 में यश की किस्मत ने बड़ी करवट ली और उन्हें कन्नड़ टीवी सीरियल नंदा गोकुल में विजय सिंह का किरदार मिल गया। नंदा गोकुल में विजय सिंह के किरदार को यश ने अपनी शानदार एक्टिंग के दम पर इतना जीवंत कर दिया कि दूसरे सीरियल्स के लिए भी ऑफर आने लगे। 3 साल में ही यश छोटे पर्दे के इतने बड़े एक्टर बन गए कि उसकी गूंज फिल्म इंडस्ट्रीज तक सुनाई देने लगी। फिर आया साल 2007 जब यश को बड़े पर्दे पर भी एंट्री मिल गई। इसी साल उन्होंने कन्नड़ फिल्म जम्बडा हुदगी में बड़े पर्दे पर बतौर सेकेंड लीड डेब्यू किया। अगले ही साल यानी 2008 में कन्नड़ फिल्म मोगीना मानासू में यश को लीड रोल निभाने का मौका भी मिल गया। तकदीर भी उन्हीं का साथ देती है जिनके इरादे बुलंद होते हैं। बतौर लीड हीरो यश की पहली ही फिल्म मोगीना मानासू सुपरहिट हो गई। रोमांटिक ड्रामा मोगीना मानासू के लिए यश को फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया। इसके बाद उनके सामने फिल्मों की लाइन लग गई। मोगीना मानासू के बाद यश ने राजधानी, गज केसरी और मास्टरपीस जैसी फिल्मों में काम किया और उनकी बेहतरीन अदाकारी के दम पर ज्यादातर फिल्में हिट होती चली गईं। हालांकि जिंदगी में खूबसूरत और शानदार मोड़ तब आया जब साल 2018 में केजीएफ चैप्टर 1 रिलीज हुई। केजीएफ चैप्टर 1 में उन्होंने रॉकी का किरदार निभाया जो दर्शकों के दिलों में ऐसे उतर गया कि बॉक्स ऑफिस पर बवंडर आ गया। साल 2022 में केजीएफ का सीक्वल केजीएफ चैप्टर 2 आया जिसने पहले चैप्टर से भी ज्यादा तहलका मचा दिया। केजीएफ चैप्टर 1 और 2 वर्ल्ड वाइड करीब 1500 करोड़ का कलेक्शन कर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो गई। अपने 19 साल के फिल्मी सफर में यश एक दर्जन से ज्यादा हिट फिल्में दे चुके हैं। टॉक्सिक और रामायण जैसी मेगा बजट वाली फिल्में बॉक्स ऑफिस पर क्या करिश्मा कर पाएंगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन दोनों फिल्मों का रिलीज से पहले जैसा बच क्रिएट हो चुका है इसकी पूरी उम्मीद है कि केजीएफ वाला करिश्मा एक बार फिर दोहराया जाएगा। आपको बता दें कि यश बचपन से ही अपने एक्टिंग करियर को लेकर जिस तरह से कमिटेड थे वैसे ही अपने शरीके हयात राधिका पंडित को लेकर भी हैं। दोनों की पहली मुलाकात कन्नड़ टीवी सीरियल नंदा गोकुल की शूटिंग के दौरान 2007 में हुई थी और पहली मुलाकात में ही आंखें चार हो गईं। उसके बाद यश ने किसी दूसरे विकल्प पर कभी विचार ही नहीं किया। दोनों ने साल 2016 में शादी कर ली। आज यश और राधिका की जोड़ी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सर्वाधिक कमिटेड कपल में शुमार की जाती है।
2: तो बंदे में है दम में आज आपने अभिनेता यश के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को जाना। अगले हफ्ते ऐसे ही किसी और बेमिसाल शख्सियत के सफरनामे के साथ हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे यानी कि श्वेता झा को दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
4: कम से कम लोगों को खबरें तो आराम। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: बीजिंग में दूसरा वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स यानी रोबोट ओलंपिक चल रहा है। इनमें 2000 से ज्यादा ह्यूमनॉइड रोबोट न केवल फुटबॉल, टेनिस, बॉक्सिंग, बैडमिंटन और एथलेटिक्स में अपना हुनर दिखा रहे हैं, बल्कि नए नए रिकॉर्ड बनाकर भी इंसान को दंग कर रहे हैं। इनमें से एक रोबोट ने मशहूर धावक उसैन बोल्ट का रिकॉर्ड तोड़ दिया तो एक ने हाई जंप में इंसान को पीछे छोड़ दिया। रिपोर्ट देखिए।
6: रॉकेट जैसी रफ्तार, दौड़ शानदार, ह्यूमनॉइड रोबोट रेसिंग की ये तस्वीरें बीजिंग की हैं, जहां 100 मीटर की दौड़ में नया इतिहास रचा गया। यहां पर तियानजोउ नाम के ह्यूमनॉइड रोबोट ने दुनिया के सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट के 100 मीटर के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। तियानजोउ रोबोट ने 100 मीटर की दौड़ सिर्फ 9.39 सेकंड में पूरी कर ली, जबकि जमैका के धावक उसेन बोल्ट ने ये दूरी 9.58 सेकंड में पूरी की थी। बोल्ट ने 2009 में बर्लिन में हुई वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सबसे कम समय में 100 मीटर दौड़ पूरी करने का शानदार रिकॉर्ड कायम किया था। 100 मीटर की दौड़ में बोल्ट का ये रिकॉर्ड 17 सालों से कायम है और कोई इंसान तो इसे अब तक नहीं तोड़ सका है। लेकिन अब एक रोबोट ने बोल्ट के उस ऐतिहासिक रिकॉर्ड को ध्वस्त करके नई मिसाल कायम कर दी है। जिस रोबोट ने ये कमाल कर दिखाया है उसे बीजिंग इनोवेशन सेंटर ऑफ ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स ने बनाया है। वहीं इससे पहले एक टेस्ट रन में चीनी कंपनी ऑनर के रोबोट ने 100 मीटर की दूरी तय करने में केवल 9.32 सेकंड का समय लिया था। बीजिंग में चल रहे ह्यूमनॉइड रोबोट्स के मुकाबले में नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। इसी दरमियान एक रोबोट ने स्टैंडिंग हाई जंप में 2.88 मीटर से ऊंची छलांग लगाकर इंसानों और पिछले सभी रिकॉर्ड्स को पीछे छोड़ दिया। चीन की रोबोटिक्स कंपनी यूनिट्री के ह्यूमनॉइड रोबोट ने हाई जंप में ये कमाल कर दिखाया है। स्टैंडिंग हाई जंप की स्पर्धा में रोबोट ने 2.8843 मीटर तक ऊंची कूद का नया रिकॉर्ड कायम कर डाला। और हाई जंप में भी इंसानों यानी मानव एथलीट के पुराने रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया। बीजिंग में शनिवार को दूसरे वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स का शुभारंभ हुआ। ओपनिंग सेरेमनी में हुई 400 मीटर रेस में चाइना के तियांगोंग ह्यूमनॉइड रोबोट ने 39.7 सेकंड का समय निकालकर पहला स्थान हासिल किया। इससे पहले ओपनिंग सेरेमनी के दौरान हुए रंगारंग कार्यक्रम में इंसान केवल दर्शक थे, जबकि स्टेडियम में ट्रैक से लेकर पूरे एरिना में मौजूद हजार से ज्यादा ह्यूमनॉइड रोबोट्स ने अपनी तकनीकी क्षमता का अनूठा प्रदर्शन किया, जिसे देखकर लोग दंग रह गए। मनमोहक म्यूजिकल परफॉर्मेंस से लेकर नेशनल स्पीड स्केटिंग ओवल में टीमों के मार्चिंग दस्ते के रूप में हर इवेंट में शानदार तालमेल के साथ रोबोट फॉर्मेशंस दर्शकों को अलग ही कल्पना लोक में ले गए, जिसे वे अपनी आंखों के सामने साकार होते देख रहे थे। इस दौरान 36 रोबोट्स की टीम ने मेलेडी ऑफ द फ्यूचर के नाम से भव्य संगीत और सुरों का समा बांध दिया। वहीं स्पर्धाएं शुरू होने से पहले ओपनिंग सेरेमनी में ही तमाम रोबोट्स ने अलग अलग खेलों में अपने हुनर की झलक पेश की। बीजिंग में 5 दिन के वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स में 16 देशों के 2056 रोबोट्स की 666 टीमें भाग ले रही हैं। ये रोबोट 51 इवेंट्स की 1300 से ज्यादा स्पर्धाओं में अपना कमाल दिखाएंगे और ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि आने वाला कल इनका ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
11: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
13: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
14: अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर बदल गई धर्म ध्वजा, वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूरे विधि विधान के साथ निभाई गई परंपरा, नए ध्वज पर ओम सूर्य और कोविदार वृक्ष के चिन्ह अंकित। मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में काली घटा आयोजन, मंदिर में दिखा सावन का मनमोहक नजारा, ठाकुर जी के दर्शन कर गदगद नजर आए भक्त। बारिश के लिए जैसलमेर के पुरोहितेश्वर महादेव मंदिर में भगवान भोलेनाथ का महारुद्राभिषेक 121 रुद्रपाठी पंडितों ने किया सामूहिक रुद्री पाठ मंत्रोच्चार से गुंजायमान हुआ परिसर। जन्माष्टमी को लेकर इस्कॉन मंदिर में तैयारियां तेज दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर खास तैयारियां। नागपुर में 4,000 से ज्यादा युवक युवतियों ने ढोल ताशा बजाकर बनाया अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ नाम नागपुर का। रक्षाबंधन पर पर्यावरण संरक्षण का संदेश गाय के गोबर से बनाई जा रही हैं राखियां और अन्य सजावटी सामान बाजारों में जमकर हो रही है खरीदारी।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। जीएनटी स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे रक्षाबंधन की। रक्षाबंधन सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि भाई बहन के अनमोल खट्टे मीठे और पवित्र रिश्ते का सबसे बड़ा उत्सव है। वक्त भले ही बदल गया हो, हम सब अपनी अपनी जिंदगियों में मसरूफ हो गए हों, लेकिन इस एक धागे की ताकत आज भी वैसी है। रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है और अपने भाई की कलाई को सजाने के लिए उसके लंबे और सेहतमंद जीवन की दुआ मांगने के लिए बहनें बेताब हैं। इसी प्यार और जज्बात से आज देश के बाजार भी सराबोर नजर आ रहे हैं। दिल्ली के ऐतिहासिक सदर बाजार में अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने के लिए बहनों की भीड़ उमड़ पड़ी है। अलग अलग डिजाइन की राखियां आपको यहां मिल जाएंगी। बच्चों के लिए खास तौर से कार्टून कैरेक्टर वाली राखियां भी आपको मिलेंगी। हालांकि राखी का रूप चाहे जो भी हो, इस धागे के पीछे छिपा बहन का प्यार हमेशा अमर रहता है। तो आइए सीधे लिए चलते हैं सदर बाजार की उन गलियों में जहां हर राखी में धड़क रहा है एक बहन का प्यार।

0: भाई और बहन के प्यार का त्योहार रक्षाबंधन, वो पर्व जब हर बहन और भाई स्नेह की एक ऐसी डोर में बंध जाता है जो उन्हें जीवन भर एक दूसरे से जुड़ कर रखती है। वो पर्व जब हर बहन अपने भाई की कलाई पर दुआओं का वो धागा बांधती है जो हर संकट से उसकी रक्षा करता है। भाई और बहन के प्रेम का त्योहार रक्षाबंधन जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, बाजारों में रौनक बिखरने लगी है। ये तस्वीरें दिल्ली के सदर बाजार की हैं, जहां दुकानों पर अलग अलग किस्म, अलग अलग रंग और अलग अलग तरीके की राखियां मिल रही हैं। रंग बिरंगी राखियों से लेकर फैशनेबल और डिजाइनर राखियां बाजार की रौनक को बढ़ा रही हैं। दुकानों पर सजी रंग बिरंगी राखियां हर आने जाने वाले का मन मोह ले रही हैं। गलियों में पसरी ये चहल पहल और खिलखिलाते चेहरे बता रहे हैं कि भाई बहन के इस पावन पर्व को लेकर लोगों में किस कदर उत्साह है। कहीं बहनें अपने भाई की पसंद की राखी तलाश रही हैं, तो कहीं दुकानदार ग्राहकों को नई डिजाइन और नई वैरायटीज दिखाने में जुटे हैं। सदर बाजार की हर दुकान पर मनमोहक राखियों का अंबार है। दुकानों पर सजी अलग अलग डिजाइन की रंग बिरंगी राखियां जैसे लोगों को अपनी तरफ खींच रही हैं। यहां हर उम्र और हर पसंद के लिए बाजार में विकल्पों की भरमार है। बात अगर इस बार के बाजार और ट्रेंड्स की जाए तो पारंपरिक से लेकर आधुनिकता का एक बेहतरीन संगम देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां भक्ति और विश्वास का प्रतीक माने जाने वाले कलावा और रुद्राक्ष वाली राखियों की भारी डिमांड है, तो दूसरी तरफ स्टोन, बीट्स और कुंदन वर्क वाली डिजाइनर राखियों ने भी बाजार में अपनी मजबूत पकड़ बनाई हुई है। बच्चों की खुशियों के बगैर रक्षाबंधन अधूरा सा लगता है, और उनके लिए सदर बाजार में खास इंतजाम भी हैं। छोटा भीम, डोरेमोन और लाइट जलने वाली कार्टून राखियां बच्चों को खूब लुभा रही हैं। इतना ही नहीं, इस बार पर्सनलाइज्ड राखियों का क्रेज भी जोरों पर है, जहां बहनें अपने भाइयों के नाम या स्पेशल मैसेज वाली राखियां बेहद पसंद कर रही हैं।
1: स्टाइलिश राखियां थोड़ी बच्चों के लिए दिखाएंगे सबसे पहले, तो कि बच्चों के लिए किस किस तरीके के कैरेक्टर्स जो है थोड़ी आपको वो दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि किस तरीके से आपको वैरायटी जो है वो यहाँ पे दिखने वाली है। तो शुरुआत मैं इन्हीं राखियों से करती हूँ कि बच्चों के लिए इस बार मार्केट में जो है क्या क्या ऑप्शन नजर आने वाला है। आप देख सकते हैं कि तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ कि अच्छी खासी वैरायटी जो है आपको वो बच्चों की राखियों की जो है वो यहाँ पर नजर आने वाली है। भैया, अगर मैं ट्रेंड की बात करूँ तो क्या है बच्चों के लिए खास ट्रेंड, बच्चों के लिए इस वक्त क्या राखियाँ मार्केट में?
2: यही है मैडम, ये कॉपी कलम वाली है, पेंसिल वाली है।
1: मुझे कुछ नया यूनिक नजर आ रहा है कि कुछ इस तरीके के डिजाइन आपको जो है वो दिखने वाले हैं, कि एक छोटा सा आपको इसके अंदर जो है नोटबुक दिख जाएगा कि बच्चे जो है उसमें लिख सके, साथ ही साथ आपको ये राखी जो है वो नजर आ जाएगी। इस तरीके के डिजाइन जो है आपको वो नजर आने वाले, आप देख सकते हैं।
3: लाइटिंग की आ जाएगी, ये लाइटिंग की राखी आ जाएगी, फोटो मेरा नहीं।
1: अच्छा,
3: ये लाइटिंग की राखी आ जाएगी। सॉफ्ट में टेडी बियर आ जाएगा जिसमें म्यूजिक है, टेडी बियर आ जाएगा। ये आ जाएंगे सारे अलग अलग डिजाइन आ जाएंगे। ये टेडी बियर में आ जाएगा, ये म्यूजिकल है, ये सारी लाइट और म्यूजिकल है। हाँ, इसके सारे अलग अलग डिजाइन है, ये बहुत अच्छे प्यारे डिजाइन है। इसमें ये जो है मिक्की माउथ वगैरह के सारे डिजाइन आ जाएंगे।
1: हाँ,
3: कृष्णा जी दिख जाएंगे, मिक्की माउथ वगैरह दिख जाएंगे, और ये सब अलग अलग डिजाइन दिखेंगे। इस तरीके की वैरायटी पूरी दिखेगी। ये सेंसर वाली आपको जो है घड़ी दिखेंगी बच्चों की, में आपको गिफ्ट में वो दिखेंगे, पेंसिल बॉक्स दिखेगा उस तरफ लग रहा है।
1: तो आप देख सकते हैं कि कुछ आपको इस तरीके से गिफ्ट हैम्पर्स वाली राखियां भी जो है वो नजर आने वाली है, जिसमें आपको राखी तो दिखेगी लेकिन इसके साथ आपको पूरा स्टेशनरी का एक जो है वो सेटअप नजर आने वाला है। चाहे फिर वो पेंसिल्स की बात हो, स्केल हो, मतलब पूरा स्टेशनरी आइटम जो है आपको इस कॉम्बो में जो है वो दिख जाएगा। एक ये आपको अलग से यूनिक प्रोजेक्टर वाली मिलने वाली
2: जी। हाँ, इसमें अलग अलग कार्टून के करेक्टर आते हैं प्रेस करने से।
1: तो देखिए आपको मार्केट में किस तरीके के ऑप्शंस जो है वो इस वक्त आपको नजर आने वाले हैं। अच्छी खासी रेंज है, खास तौर पर इस तरीके के आइटम जो है वो दिखेंगे, जिसके अंदर एक नोटबुक है, पेन है, और साथ ही साथ आपको राखी जो है वो दिखने वाली है। तो बच्चों के ऑप्शंस अच्छे खासे जो है वो आपको यहाँ पर मार्केट के अंदर जो है उनकी धूम जो है वो नजर आने वाली है।
0: सिर्फ राखियां ही नहीं, बाजार में रक्षाबंधन से जुड़े दूसरे सामान की भी जबरदस्त डिमांड है। सजावटी पूजा की थालियों से लेकर स्पेशल पैक्स और आकर्षक गिफ्ट पैकिंग के लिए भी काफी कुछ मौजूद है। बहनें अपने भाइयों के लिए खास सरप्राइज गिफ्ट और हैम्पर्स चुनने में कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। सदर बाजार का ये माहौल साफ बता रहा है कि त्योहार सिर्फ तारीखों का नाम नहीं बल्कि अपनों के साथ खुशियों को बांटने का बहाना है। रेशम के ये धागे एक बार फिर भाई बहन के रिश्ते को और मजबूत करने के लिए तैयार है। दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: अब देखिए, रक्षाबंधन का त्यौहार आते ही गुलाबी नगरी जयपुर में भी अलग ही रौनक देखने को मिलती है। बाजारों में उमड़ी बहनों की भारी भीड़ सिर्फ शॉपिंग नहीं कर रही बल्कि अपने भाई के लिए उस सबसे खास धागे का चुनाव कर रही है जिसमें उनके जज्बात छिपे होते हैं। यही वजह है कि इस बार जयपुर के बाजार में परंपरा और इनोवेशन का एक अनोखा मेल दिखाई दे रहा है। अपने भाई की कलाई पर राजस्थान की आन बान शान सजाने के लिए बहनें खम्मा घणी पगड़ी राखी पसंद कर रही हैं, तो भाई के जीवन में सुख समृद्धि के लिए राधा कृष्ण की जोड़ी वाली पावन राखी भी मौजूद है। लेकिन सबसे ज्यादा डिमांड है हीलिंग स्टोन थेरेपी राखी की। तो चलिए जयपुर के उन खूबसूरत बाजारों में जहां हर एक धागे में धड़क रहा है भाई बहन के अटूट प्यार का एहसास।

0: रक्षाबंधन त्योहार से ज्यादा एक संस्कार है, वो संस्कार जो हजारों साल से हमारी पहचान रहा है। हमारी संस्कृति इस पहचान के बिना अधूरी है। ऐसे में इस त्योहार की रौनक अलग ही नजर आती है। बहनें अपने भाइयों की कलाई पर बांधने के लिए अलग अलग तरह की राखियां तलाश करती हैं। ऐसे में रक्षाबंधन से पहले गुलाबी नगरी जयपुर के बाजार भी गुलजार हैं। बाजारों में अलग ही रौनक दिखने को मिल रही है। रंग बिरंगी पारंपरिक डिजाइन वाली राखियों से लेकर नए नए डिजाइन की बेहद आकर्षक और लुभावनी राखियां भी बाजार में मौजूद हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे चारों तरफ नई नई किस्मों की राखियों का अंबार सा लग गया है।
1: मुझे स्पेशली राधा कृष्ण जी की राखी बहुत पसंद आ रही है, बिकॉज मेरे को मेरी भाभी के लिए लेनी है एंड शी इज जस्ट गोइंग टू गेट मैरिड टू माई ब्रदर एंड आई वुड लव टू वियर सच अ ग्रेट नाइस बिग लुम्बास। आई वुड लव टू एंड इट्स सच अ प्रिटी कलेक्शन। आई वुड से आई वुड लव इट ऑन हर हैंड्स बेसिकली।
0: इस बार बाजार में राखियों की अनोखी वैरायटी देखने को मिल रही है, जिसमें परंपरा के साथ आधुनिक इनोवेशन का एक बेहद खूबसूरत मेल दिखाई दे रहा है।

लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान खींच रही है राजस्थानी शान के प्रतीक खम्मा घड़ी राखी। छोटे आकार की रंग बिरंगी राजस्थानी पगड़ी और मारवाड़ी अंदाज वाली ये राखियाँ भाई की कलाई पर राजस्थान की संस्कृति को जीवंत कर रही है। इसके अलावा इस राधा कृष्ण की जोड़ी वाली राखी की डिमांड भी काफी ज्यादा है, जो भाई बहन के पवित्र रिश्ते में प्रेम और भक्ति का रस घोल रही है, जिसे बहनें सबसे ज्यादा पसंद कर रही हैं।

0: राखी में अब कुछ ही दिन बचे हैं और मार्केट का माहौल कुछ ऐसा है जैसे सारी बहनें अपने भाइयों के लिए, अपनी भाभियों के लिए राखियां लेने अभी से मार्केट में उमड़ चुकी हैं। और हमें वो भीड़ जयपुर के बाजारों में नजर आ रही है, जहां पे बाजारों के अलावा जगह जगह पे हर दिन एग्जिबिशंस लगाई जा रही है, जहाँ पे सिर्फ राखी नहीं पर साथ ही में गिफ्टिंग का भी काफी सारा सामान मिल रहा है। और आप राखी पे आजकल क्योंकि मिठाइयों के ऑल्टरनेटिव्स बहुत ज्यादा चलते हैं, तो उसकी जगह पे आप अपने भाई के लिए क्या ले जा सकते हैं, उनके ऑप्शंस भी इन एग्जिबिशन पे साथ में मिलते हैं। बहुत ही यूनिक राखियां इस बार हमें इन जगह पे देखने को मिल रही है, जहाँ पे क्योंकि हम आपको जयपुर की झलक ये दिखा रहे हैं, तो जयपुर में राजस्थानी कल्चर जो है वो भी इन राखियों में देखने को मिल रहा है, जहाँ कोई राखी खम्मागणी बोल रही है तो कोई राम राम सा बोल रही है। और ये पगड़ी देख के, ये हाथ जोड़े जो राजस्थानी मनवार होता है वो देख के हर किसी को पता चलेगा कि ये जो राखी बांधी गई है ये किसी राजस्थानी ने बांधी है। और इसके अलावा भी कई सारी यूनिक राखियां यहाँ पे नजर आ रही है, जैसे राधा कृष्ण की जो राखी होती है वो इस बार बहुत ट्रेंडी हो रही है। अक्सर हम लोग देखते हैं कि ऐसे एग्जीबिशंस में लड्डू गोपाल की जो पोशाक होती है वो मिलती है, पर इसी थीम में इस बार ये राखियां भी आई है, क्योंकि बहनों का कहना होता है कि हमारा भाई जो है वो कृष्ण समान है और उसकी अगर जोड़ी बने तो वो राधा कृष्ण की जोड़ी जैसी हो।
1: राखी अब सिर्फ एक पारंपरिक सूती डोर नहीं रह गई है। युवा पीढ़ी की पसंद को देखते हुए इस बार बाजार में क्रिस्टल राखी का जबरदस्त ट्रेंड छाया हुआ है। इसके अलावा राखी के साथ दिए जाने वाले गिफ्ट्स की भी अलग अलग वैरायटी मौजूद है।
2: इस टाइप के राजस्थानी पैटर्न के काफी सारे राखियां आई हैं अब आजकल। ये वाला पैटर्न देखो राधा कृष्ण के पैटर्न पे, ये सब यूनिक पैटर्न्स हैं। बाकी कॉमन तो अपने को सब जगह मिल जाती, कलकत्ता टाइप की राखियां तो सब जगह मिल जाती, पर ये राजस्थानी राखियां बहुत यूनिक होती हैं और बहुत रेयर मिलती हैं। तो मुझे इस अभी क्या है, कस्टमर्स को भी बहुत अच्छा लग रहा है ये वाला कलेक्शन और काफ़ी अच्छा निकल रहा है, तो इसीलिए मैंने इस पैटर्न पे जाना चाहा।
0: इसके अलावा सबसे ज़्यादा हर एक कस्टमर क्या चाह रहा है इस बार?
2: कस्टमर्स को इस टाइप की राखियां बहुत पसंद आ रही हैं इस बार, पेयर्स में और सिंगल राखियां राजस्थानी पैटर्न में काफ़ी अच्छा लग रहा है लोगों को और सब अच्छा। लाइक कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है लोग।
0: एक चीज मैं जानना चाहूंगी पर्सनली आपसे कि मैम मिनिमल चीजों का आजकल बड़ा ट्रेंड आ गया, छोटी से छोटी चीज अक्सर कोई पसंद करता है, राखियां भी ऐसे होते हैं कि जितनी छोटी और लंबे समय तक चलती हैं, तो लोग ऐसी फंकी राखियों पे जाना ज्यादा पसंद कर रहे हैं या फिर जैसे हर चीज में मिनिमलिस्टिक चीजें चाह रहे हैं तो वैसे राखियों में भी छोटी राखियां ही पसंद की जा रही है?
2: जैसे लोगों की अपनी अपनी चॉइस है, कई लोग छोटी राखियों पे भी जाते हैं, कई लोग बड़ी राखियों पे भी जाते हैं, पर ये वाला कंसेप्ट नया है, इस कंसेप्ट पे लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं इस कंसेप्ट को।
1: बाजार में जो सबसे अनोखा और चौंकाने वाला ट्रेंड देखने को मिल रहा है वो है हीलिंग स्टोन राखी। भाई की कलाई पर सजने वाला ये धागा अब केवल एक रक्षा सूत्र नहीं बल्कि सेहत और सकारात्मक ऊर्जा का माध्यम भी बन गया है।
0: कि सिर्फ मीनिंगफुल गिफ्ट ही नहीं, मीनिंगफुल राखी भी देना, यानी कि क्रिस्टल्स जो हैं वो एक नया ट्रेंड बन गए हैं, कि जैसे आपकी ज़िंदगी में एक वो मीनिंगफुल तोहफा भी, तोहफा के रूप में ही वो राखी आपको मिले, जिसको आप पहने तो आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट आने लग जाए और जो भी इन चीज़ों में मानते हैं उनके लिए काफ़ी लकी ये साबित होती है। तो ऐसे में क्रिस्टल राखी और उससे जुड़े हुए जो तमाम चीज़ें हैं वो भी इस बार बहुत बड़ा ट्रेंड बन गई है। हम यहाँ पे दिखाते हैं कि किस तरीके से ये जो बैंड्स हैं ये चेन्स के रूप में, ब्रेसलेट्स के रूप में, बैंड्स के रूप में इस बार अलग अलग क्रिस्टल्स नज़र आ रहे हैं, स्टोन्स नज़र आ रहे हैं, जो कि बहनें अपने भाइयों के लिए, भाभियों ले रही हैं। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप कोई भी क्रिस्टल ले रहे हैं, आपको बाकायदा बताया जा रहा है कि उनके लिए, जिनके लिए भी आप ये ले रहे हैं तो कौन सा बेहतर है, किस रूप में बेहतर है वो बताया जाता है, सजेस्ट किया जाता है कि कौन सा स्टोन सबसे अच्छा रहेगा, आपको मल्टीपल स्टोन्स लेने चाहिए या सिंगल स्टोन का ही लेना चाहिए। उसके अलावा भी कैंडल्स ऐसी हैं जिनकी फ्रेग्रेंस भी हीलिंग के लिए काम करती है।
1: नेचुरल क्रिस्टल्स और सेमी प्रेशियस स्टोन से बनी ये राखियाँ एक तरह की हीलिंग थेरेपी का काम करती हैं, जो न सिर्फ तनाव दूर करने में मददगार है बल्कि रिश्तों में प्यार बढ़ाने से लेकर मानसिक शांति के लिए भी फायदेमंद है। ऐसे में बहनें अपने भाई की राशि और जरूरत के हिसाब से इन थेरेपी राखियों को चुन रही हैं।
3: सारी बहनें क्योंकि अपने भाइयों से इतना प्यार करती है तो वो चाहती है कि राखी का धागा सिर्फ भाव नहीं हो, उसके साथ उसमें कुछ प्रोडक्टिव भी ऐसा मिले कि वो उनके बेटरमेंट के लिए काम आए। जैसे एक बच्ची ने मुझे बोला कि मेरे भाई को एक्सप्रेशन करने में बहुत दिक्कत होती है, वो जो भी फील करता है बोलता नहीं है, तो मैंने उसको सजेस्ट किया कि आप लैपिस का उसको पहनाओ, इससे उसका जो थ्रोट चक्रा है वो एक्टिवेट होगा और वो अपने आप को बेटर एक्सप्रेस कर पाएगा। जब वो बेटर एक्सप्रेस करेगा तो उसकी लाइफ ईजियर होगी और वो अपने पोटेंशियल में और ज़्यादा अच्छा कर सकेगा। हमारे देश का और इस विश्व के भविष्य के लिए ये बच्चे जो है ये हमारा फ्यूचर है, तो इनके बेटरमेंट हो। जिन लोगों को, जैसे मान लीजिए किसी को बोन्स की या ब्लड रिलेटेड इशू है, तो उनको मैं रेड जैस्पर सजेस्ट करती हूँ कि आप ये पहनोगे तो आपका रूट चक्रा स्ट्रांग होएगा और आपके ये इश्यूज निकलेंगे। तो राखी के धागे के साथ, बहन के प्यार के साथ, अगर एक स्टोन और उसमें कुछ एड ऑन कर रहा है तो लोग इसको काफी पसंद कर रहे हैं। अभी
1: भाई की कलाई को सबसे जुदा और ट्रेंडी बनाने के लिए बहनें घंटों वक्त बिताकर इन नए डिजाइनों को चुन रही हैं। सिंपल धागे की जगह अब स्टाइलिश कड़े और फैंसी ब्रेसलेट बैंड्स ने ले ली है। इसके अलावा युवाओं के लिए क्रिस्टल राखी और कश्मीरी वॉच राखी का जबरदस्त क्रेज है, जो कलाई पर सस्ते है। घड़ी और राखी दोनों का एक साथ लुक देती है।

0: महिलाओं में भी वॉचेस के रूप में जो राखियां हैं, जैसे कश्मीरी चूड़ियां जो अभी हाल ही में एक ट्रेंड बनी थी, वैसे ही कश्मीरी लुक वाली जो वॉचेस हैं वो मार्केट में आ रही हैं, जिसको एक नया ट्रेंड सेट किया जा रहा है, पसंद किया जा रहा है, हर महिला चाह रही है क्योंकि बहुत बजट फ्रेंडली है तो वो इसको खरीदे। और कुछ डिजाइन ऐसी भी हैं जो महिलाएं अपने भाई या भाभी के लिए नहीं पर इस बार खुद के लिए लेना भी पसंद कर रही हैं। कैमरामैन मनोज के साथ रिदम जैन, गुड न्यूज़ फॉर डिजाइन।
1: रक्षाबंधन के पर्व में रंग उमंग के साथ देशभक्ति का जोश और जज्बा भी देखने को मिल रहा है। कहीं बहनों की राखियां सरहद पर तैनात जवानों के लिए देशभक्ति का संदेश लेकर रवाना हो रही हैं, तो कहीं डाक विभाग सात समंदर पार बैठे भाइयों तक बहनों का प्यार सुरक्षित पहुंचाने में जुटा है। साथ ही ये त्यौहार महिलाओं के हुनर को आत्मनिर्भरता का नया मंच भी दे रहा है। यानी इस बार राखी की कलाई पर सिर्फ प्यार का धागा नहीं बंधेगा, बल्कि इसमें देश प्रेम की ताकत, भाईचारे की मिठास, आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी नजर आएगा।

0: रक्षाबंधन प्यार, विश्वास और स्नेह का वो अटूट धागा है जो न केवल रिश्तों को जोड़ता है बल्कि देश प्रेम, सामाजिक सौहार्द और महिला सशक्तिकरण की एक नई मिसाल भी पेश करता है। इस बार रक्षाबंधन का पर्व देश के कोने कोने में अलग अलग रंगों, उमंगों और देशभक्ति के जोश के साथ मनाया जा रहा है। राखी के धागे में सिर्फ भाई बहन का रिश्ता नहीं बनता, इसमें बंधा होता है प्यार, विश्वास, अपनापन और एक दूसरे की हिफाजत का वादा। लेकिन जब यही धागा घर की चौखट पार कर सरहद तक पहुंचता है तो इसका मतलब और भी बड़ा हो जाता है। कहीं बहनों की राखियां लेकर रक्षा रथ सरहद की ओर रवाना हो रहा है, कहीं डाक विभाग ने राखी को सुरक्षित विदेश तक पहुंचाने का इंतजाम किया है, तो कहीं 32 साल से एक मुस्लिम परिवार राखियां बनाकर भाईचारे की डोर को मजबूत कर रहा है, और कहीं राखी मेले में महिलाओं की मेहनत, हुनर और स्वदेशी उत्पादों की चमक दिखाई दे रही है। यानी इस बार राखी सिर्फ कलाई पर नहीं सजेगी, राखी का रंग रिश्तों से निकलकर देश प्रेम, भाईचारे, महिला सशक्तिकरण और हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब तक पहुंच रहा है। त्योहार की पहली खूबसूरत तस्वीर आई है महाराष्ट्र के शिरडी से, जहां साईं दरबार से रक्षा रथ रवाना किया गया। एक राखी जवानों के नाम अभियान के तहत निकली इस विशेष रथ यात्रा में देश की सीमाओं पर तैनात वीर जवानों के लिए हजारों राखियां भेजी गईं। बहनों ने जवानों की लंबी उम्र और सुरक्षा की कामना के साथ इन राखियों को रथ में सौंपा, जो कच्छ और अन्य सीमावर्ती इलाकों में तैनात सैनिकों तक पहुंचेंगे। शिरडी के स्थानीय संस्थाओं और युवाओं ने ये पहल की है ताकि सरहद पर देश की रक्षा कर रहे सैनिकों तक बहनों का प्यार और सम्मान पहुंचाया जा सके।
1: राखी वीर जवानों के लिए हम यहाँ से हमारे जो जवान भाई है उनके लिए राखी भेज रहे हैं यहाँ से, और वो तो यहाँ नहीं आ सकते इसलिए हम हमारी राखी वहाँ पर भेज रहे हैं। वो हमारी रक्षा करते हैं, भारत की रक्षा करते हैं, और हमारे देश के सारे वासी एकदम सुरक्षित महसूस करते हैं, तो उन्हीं की वजह से करते हैं, इस वजह से हम उन्हें राखी भेज रहे हैं, हम उनकी बहनें हैं।
2: हमारे यहाँ के छात्रों से के माध्यम से साई दरबार के थ्रू ये जो राखियाँ भेजी जा रही हैं वीर जवानों को, बॉर्डर पे जो सुरक्षा कर रहे हैं हमारी 24 घंटे 12 महीने लगे रहते हैं, और इस तरह से छात्रों द्वारा ये मार्ग अगर सशक्त किया जा रहा है तो बहुत अच्छी चीज है और इसका हम सबको समर्थन करना चाहिए।
0: वही सात समंदर पार कर अपनों का प्यार पहुंचाने के लिए भारतीय डाक विभाग ने भी खास तैयारी की है। हरियाणा के करनाल में डाक विभाग ने बहनों की सुविधा के लिए महज 10 रुपए में खास वाटरप्रूफ लिफाफे तैयार किए हैं। इससे बारिश के मौसम में भी बहनों की भेजी राखी सुरक्षित अपने भाइयों तक पहुंचे, चाहे वे देश के किसी भी राज्य में हों या विदेश में। ये पहल सभी का दिल जीत रही है।
3: डाक विभाग भारत सरकार ने राखी के जो पावन पर्व हमारा आ रहा है 28 तारीख को, इसके लिए ये पहल की है कि हमने स्पेशल लिफाफा इसके लिए डिजाइन किया है, जिसके माध्यम से हमारी बहनें, माताएं अपने भाइयों को करनाल में या दूसरे जिले में या किसी और राज्य में और विदेश में कहीं पे भी इस लिफाफे के माध्यम से राखी भेज सकती हैं, और ये मार्केट में उपलब्ध जो भी सर्विसेज में सबसे कॉम्पिटिटिव रेट में सबसे हमारा सस्ता पड़ता है, और इसमें जैसे विदेश में हमारे करनाल के काफ़ी सारे बच्चे हैं या बच्चियाँ हैं जो विदेश में रहते हैं, तो इसके माध्यम से जो है विदेश में आप जो है राखी भेज सकते हैं।
4: कहना चाहूंगी डाक विभाग ने बहुत अच्छी स्कीम चलाई है बहन भाई के पवित्र रिश्ते पे, रक्षाबंधन के पवित्र रिश्ते पे इन्होंने 10 रुपए में वाटर प्रूफ एनवेलप चलाया है। हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि इस स्कीम में ये जो डाक विभाग पहले भी काफी स्कीमें चलाता रहा है और जो इस बार चलाई है वो रक्षाबंधन पे सबके लिए बहुत अच्छी चलाई है, जो अब हम बहुत खुश हैं बहन भाई आपस में सिर्फ 10 रुपए में कुरियर करवा सकते हैं, वो भी जहाँ भी कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ भी भिजवाना चाहे। तो मैं तो बहुत खुश हूँ, आज मैंने भी यहाँ से पोस्ट करवाई है कैनेडा में, इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ।

0: राखी का ये पर्व सामाजिक एकता और भाईचारे की मिसाल भी पेश कर रहा है। छत्तीसगढ़ में रायपुर के बाजारों में जहां एक तरफ भारी रौनक है, वहीं दूसरी तरफ एक मुस्लिम परिवार पिछले 32 सालों से राखियां बना रहा है। ये परिवार न सिर्फ राखियां तैयार करता है बल्कि पूरे उत्साह के साथ रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाता है, जो सामाजिक ताने बाने और गंगा जमुनी तहजीब की खूबसूरत तस्वीर पेश करता है।
1: यहाँ पे जो योजनाएं लगाई हुई है, तो जो घर पे बैठ के जो महिलाएं अपने विकास के लिए कार्य करती है, तो महिला बाल विकास केंद्र में जो यहाँ पे जो स्टॉल लगाया है, ये इसमें सारी अपनी प्रतिभाएं दिखा रही है और वो सारी प्रतिभाएं अपनी अलग अलग स्टॉल पे, जैसे कि राखी बना रही है कोई बहने ऐसे मेरे तरफ क्रिस्टल के ब्रेसलेट बना रही है, कोई हैंडमेड कपड़े का मतलब एम्ब्रॉयडरी वर्क करके बना रही है, तो ये सारी बहुत सारी चीजें यहाँ पे है
2: और सरकार की अच्छी मदद है, जैसे हम स्टॉल करके हमारा काम चला सकते हो। दूसरी बात के मैं ये राखी के इससे पहले भी मैंने स्टॉल लगाया था, वहाँ भी मेरे के लिए एक महिला के लिए अच्छी बिकती थी और यहाँ भी इस 14 तारीख से यहाँ मैं स्टॉल रखा है राखी का ही, तो धीरे धीरे चला रहे हैं।
0: रक्षाबंधन का त्यौहार आज महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का जरिया भी बन रहा है। गुजरात के राजकोट में गुजरात महिला आर्थिक विकास निगम और महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से विशेष राखी मेले का आयोजन किया गया है। इस मेले का मकसद स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देना और महिला कारीगरों को आत्मनिर्भर बनाना है। यहाँ हाथों से बनी तरह तरह की राखियाँ लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। सीमा पर तैनात सैनिकों के लिए बहनों की दुआएं हों, सरहद पर भेजता डाक विभाग का विश्वास हो, रायपुर में दिखती कौमी एकता की मिसाल हो या राजकोट में झिलमिलाता महिला सशक्तिकरण, ये सब यही बता रहे हैं कि ये रक्षाबंधन हर मायने में बेहद खास है। शिरडी से नितिन मिराणे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: देखिए, रक्षा सूत्र अभी खरीद सकते हैं क्योंकि ऑप्शंस हमने आपको बहुत सारे दे दिए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, अच्छे खबरों के लिए देखते रहिए जीएनटी।

खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: क्या है सावन के अंतिम सोमवार का महत्व? सावन के अंतिम सोमवार का क्या है पूजा विधान? और सावन के अंतिम सोमवार पर मिलेंगे कौन से वरदान? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
3: अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर बदली गई धर्म ध्वजा, वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूरे विधि विधान के साथ निभाई गई परंपरा, नई ध्वजा पर सूर्य ओम और कोविदार वृक्ष के चिन्ह। मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में पारंपरिक काली घटा आयोजन, काले वस्त्रों, फूलों और आकर्षक लाइटों से सजाया गया मंदिर, सावन का मनमोहक नजारा, ठाकुर जी के दर्शन कर गदगद हुए भक्त। जन्माष्टमी को लेकर स्कॉन मंदिर में तैयारियां तेज, दिल्ली के स्कॉन मंदिर में कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर खास तैयारी। बारिश के लिए जैसलमेर के पुरोहितेश्वर महादेव मंदिर में भगवान भोलेनाथ का महारुद्राभिषेक, 121 रुद्रपाठी पंडितों ने किया सामूहिक रुद्री पाठ, मंत्रोच्चार से गुंजायमान परिसर। नागपुर में 4,000 से ज्यादा युवक युवतियों ने ढोल ताशा बजाकर बनाया अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ नागपुर का नाम। रक्षाबंधन पर पर्यावरण संरक्षण का संदेश, गाय के गोबर से बनाई जा रही है राखियां और अन्य सजावटी सामान, गया के बाजारों में भयंकर रौनक।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आज गोलमेज की यह चर्चा यानी राउंड टेबल पर हम आज एक बहुत ही विशिष्ट अतिथि के साथ जुड़े हुए हैं। बागेश्वर सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हमारे साथ हैं, नेहा बाथम, सईद अंसारी, राजीव ढोंडियाल और पूजा शर्मा, हम पांच साथ मिलकर आपसे आज प्रश्न पूछेंगे। असल में प्रधानमंत्री जी ने ही कुछ दिन पहले IIT में एक संबोधन में कह दिया
5: जी
4: कि मैं बाग बाग बागेश्वर नहीं हूं जो आपके मन की बात जानूं।
5: जी,
4: युवाओं के बीच बैठे थे वो
5: जी,
4: क्या बाबा बागेश्वर युवाओं के मन की बात जानते हैं, और जानते हैं तो जेन जी की उस बात को कैसे रखें?
5: देश के नायक के रूप में प्रधानमंत्री जी मन की बात जानते भी हैं, समय परिस्थिति को भी नहीं जानते, और ये हमारे लिए और हम सबके लिए विशिष्ट बात ये है कि ऐसे वो जननायक हैं, 140 करोड़ लोग हैं, अनेक महापुरुष संत, और वो हमारे जैसे छोटे से व्यक्तित्व को, छोटे से आदमी को स्मरण रखते हैं, ये बहुत बड़ी बात है, और उनकी असाधारण प्रतिभा के वो धनी है, इसमें कोई संदेह नहीं। दूसरी बात, आपको एक बात हम बहुत मजेदार बताएंगे, हम एक साल चूक गए हैं जैन जी होने से।
6: हमारा मेरी दृष्टि में तो आप जैन
5: जी, आप जी, 1996 में हम आए और 97 के बाद में जो है जैन जी के लिए कहा गया, तो
6: हम चेंज कर देते हैं उसको।
5: ऐसा यदि हो जाए,
6: हो गया, हो गया,
5: बहुत धन्यवाद।
4: ये दोनों मध्य प्रदेश के लोग बैठ के आपस में कोई साजिश न बुनाई कर रहे हैं।
5: जी जी, लेकिन हमें पता है कि हम कितनी भी सांठगांठ कर लें, आप लोगों के अंदर जो भगवत कृपा है, देवी अनुकंपा है, और जो आपका अध्ययन है, जो आपके पास लॉजिक तर्क है, हम लोगों की सांठगांठ चलेगी नहीं। जब देश की सांठगांठ नहीं चलती तो हम लोगों की सांठगांठ कहाँ चलेगी।
6: श्वेता ने मुझसे पूछा क्या पूछोगे, मैंने कद्दू पूछेंगे सारा, तो आप जानते हैं मन की बात।
7: बागेश्वर, ये जो जेन जी का क्योंकि जिक्र चला है, जिस तरीके से प्रदर्शन के जरिए सारी बांगों को उठवाया जा रहा है, एक नया ये ट्रेंड शुरू हुआ है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं, क्या ये सही है?
5: अपनी बात रखना ठीक है, आंदोलन करना ठीक है, हक के लिए लड़ना ठीक है, पर आंदोलन सबसे अंतिम सीमा है अपनी बात रखने का। अनेक माध्यम है, पत्राचार माध्यम है, संवाद माध्यम है, केवल अपने बयान देना एक माध्यम है, सबसे लास्ट में है आंदोलन। लेकिन आंदोलन हो, लेकिन वो उसमें फुहड़ता ना हो, देश में अराजकता ना फैले, देश में हिंसा ना फैले, और हम किसी की भी माँ बहन को गाली ना, ये इतना ख्याल रखें कि हम अपनी बात रखें लेकिन देश में अराजकता ना। दूसरी बात, टेबल राउंड के इस माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम एक प्रार्थना करना चाहते हैं, विशेष रूप से जैन जी सड़कों पर ही न आए, हम चाहते हैं सरकार एक नया रास्ता चुने, सरकार ही जैन जी के पास जाए, एक ऐसा दरवाजा चालू किया जाए, एक ऐसा डोर खोला जाए कि जैन जी को आंदोलन करना ही ना पड़े।
8: कुछ मन में है आपके, कैसे हो गई?
5: अरे ऐसे मन में कुछ है नहीं, बस इतना से ख्याल है, इस देश में बहुत बौद्धिक लोग हैं, प्रतिभा के धनी लोग हैं, प्रज्ञा मेधा के धनी लोग हैं, वो इस पर कार्य कर सकते हैं, पर हमारे मन में इतना है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिससे देश की जैन जी अपनी बातें सरकार से सीधी कर पाए।
7: आजकल जैन जी थोड़ा डिल्यूजनल में भी जी रहा है, एक अपना उनका एक वर्ल्ड है,
6: आपने अपने शब्द है मोए मोए है, और ये भी है, और ये भी है,
7: ठीक है, प्यार जी
5: हमने दो दिन में अभी सीखा है, जब से दिल्ली आए तब से आप लोगों की ही ये संगत का असर पड़ा, आप लोगों की संगत का असर पड़ा,
7: हम लोगों को भी इतना नहीं पता है जितना बहुत
5: हमने इंटरव्यू में ही, और पत्रकार आपके भाई बहन थे वो हमें सिखा रहे।
7: तो रील से जो ये पॉपुलैरिटी मिलती है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं, कहाँ तक सही मानते हैं, क्या ये आज का नजरिया है, और इसमें शामिल होना क्या बाबा बागेश्वर के लिए भी एक मजबूरी है?
5: वर्तमान में के पहले भारत में एक एडिक्शन था, एडिक्ट थे लोग, ड्रग एडिक्ट, अब एक नए एडिक्ट हो गए लोग, ड्रग के बाद सोशल मीडिया एडिक्ट, हम देश को नेशनल लव एडिक्ट करना चाहिए, राष्ट्र
8: महाराज जी आपके भी रील वायरल
5: था, एडिक्ट हम भी बनाते, रील बनाना बुरा नहीं, उसी सोशल मीडिया पर सुविचार हैं, संदेश हैं, टेक्नोलॉजी है, जानकारियां हैं, बड़े बड़े विचारकों के संवाद हैं, लेकिन उसी सोशल मीडिया पर कुछ लोगों के दिमागी कचड़े भी, उन्होंने अपने कचड़े उस पर भर रखे, उस कचड़े से संस्कारों पर कुछ प्रभाव पड़ रहा, हमें एक बात समझनी होगी, इस चैनल पर हमें एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहिए, इंस्टाग्राम कहां से हैंडल हो रहा, अमेरिका से, FB कहां से हैंडल हो रही, अमेरिका से, यूट्यूब कहां से हैंडल हो रहा, अमेरिका से, एक्स कहां से हैंडल हो रहा, अमेरिका से, इस देश का एल्गोरिदम किसके हाथ में, अमेरिका के हाथ में, हमें ये बात समझने से बिल्कुल नहीं चूकना चाहिए कि वो अमेरिका जो भारत पर लगातार दबाव बनाना चाहता, व्यापारिक दबाव, मानसिक आर्थिक और लगातार जो है टैक्स भरने के लिए मजबूर करना चाहना,
6: आप
5: तो कहीं हो ना कि हम विदेशी हाथों की कठपुतली ना बन जाए।
6: क्या आप ये कहना चाहते हैं कि ये जो जैन जी आंदोलन में हमने युवाओं की भाषा देखी, वो हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति पर भी अटैक कर रहे हैं?
5: कुछ बच्चे
6: अमेरिका या विदेशी शक्तियां विदेशी के माध्यम से
5: जी,
6: या वो हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति पर अटैक कर रहे हैं उस पर
5: पूर्ण रूप से इस बात से सर, निश्चित रूप से कुछ तो ऐसा हो रहा

0: जैसे हालात करवाना चाहे, कुछ लोग भारत में पाकिस्तान जैसे हालात कराना चाहे। हम चाहते हैं कि आंदोलन हो, और आंदोलन देश विरोधी ना आंदोलन हो, आंदोलन तिरंगा विरोधी ना आंदोलन हो, आंदोलन किसी माँ बहन की गाली से ना।
1: छोटा सा एक सवाल बीच पे, आप टैक्स पे करते हैं? आप टैक्स पेयर हैं?
0: हाँ हम तो हैं, आरटीआई लगाओ।
2: शिक्षा नीति में मकौले मुक्त उसको करना है या पहले शिक्षा को पेपर लीक मुक्त करना है?
3: दोनों ही जरूरी, बहुत जरूरी है। सूर्य और चंद्रमा दोनों आवश्यक, दिन और रात दोनों आवश्यक है। तो हमें लगता है कि सिस्टम में सुधार की आवश्यकता है, शिक्षा में बदलाव की आवश्यकता।
2: एक चीज मैं आपसे पूछती हूँ, क्योंकि आप जातियों को, जातियों का बंटवारा खत्म करके कहते हैं कि हिंदू एक हो रहे हो।
3: हाँ।
2: और आप इसके लिए आप पदयात्रा भी कर चुके हैं सब।
3: अब अभी हम पदयात्रा भी करने वाले
2: इसी के लिए।
3: इसी के लिए हमारा उद्देश्य है कि इस देश में जातिवाद और क्षेत्रवाद ना, राष्ट्रवाद, कास्टिज्म नहीं, राष्ट्रिज्म हम चाहें।
2: पर हिंदू राष्ट्र,
3: हिंदू राष्ट्र का अर्थ मुसलमान मुक्त नहीं, हिंदू राष्ट्र का मतलब है सबके साथ। अगर हिंदू, हाँ मुसलमान मुक्त होता तो आपकी तरफ भी सबकी नजर जा रही है। हिंदू राष्ट्र का मतलब मुसलमान मुक्त नहीं, हिंदू राष्ट्र का मतलब ईसाई मुक्त नहीं, हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि विचारक, हमें कागजों में हिंदू राष्ट्र चाहिए नहीं, विचारों में हिंदू राष्ट्र चाहिए। हम विचारों को परिवर्तन करना चाहते, और हिंदू कोई एक धर्म नहीं, जीवन शैली है। हिंदू का मतलब वसुदेव कुटुंबकम, हिंदू का मतलब अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा नहीं अहिंसा, हिंदू का मतलब व्यापार बाद में परिवार पहले, ये हिंदू राष्ट्र। हमें नहीं लगता कि ये गलत है, ये तो सबकी मांग होनी चाहिए, इस देश के प्रत्येक नागरिक की मांग होनी चाहिए।
1: बाबा जी अपने राखी से पहले ही बहुत सारी राखियां पहन,
3: हमारी बहुत बहनें हैं,
1: बहुत सारी बहनें जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ पहले ही आपका रक्षाबंधन लग रहा है, मन चुका है।
3: अगर इंटरव्यू हो जाए तो आपकी श्रद्धा जगह तो आप
4: बहने
1: देख लेने नहीं, हम बांध देते
4: हैं तो आपकी बहुत है
3: जी
4: गर्लफ्रेंड।
3: ये तो राम राम राम राम, आपको लगता है लेकिन हमारे जैसे आदमी ये सब झंझट पा रहे।
4: शादी करेंगे कि नहीं बाबा?
3: हाँ घरवाली लाएंगे,
4: गर्लफ्रेंड से तो शादी करते हैं।
3: ना ना भैया हमारी संस्कारों में पद्धति है, माता पिता हैं हमारे यहाँ पर।
4: आज कल आप जेंजी हैं ये तय हो गया,
1: एक साल से
4: और हर
3: जेंजी से बड़े,
4: हर जेंजी ये कहता है कि भाई पहले हम जानेंगे समझेंगे अपने जीवन साथी को, उसके बाद विवाह।
3: समझना गर्लफ्रेंड बनाना नहीं होता है, ना समझने का मतलब ये थोड़ी कि कोई आपको हाथ पकड़ा है तो आप पूरा हाथ ही दबा दो। जानना समझना किसी के बारे में, विचारों के बारे में।
4: शादी तो करेंगे,
3: शादी आपको क्या लगता है हम रड़ुआ मन?
2: वो तो कहते हैं कि रिश्ते उनके घर आते रहते हैं,
1: रहते हैं,
2: माहौल जल्दी होगा।
3: अभी हम फर्स्ट में, अभी प्रारंभ में जो हमारे संकल्प चल रहे हैं उन पे हम बहुत कार्य कर रहे हैं। अभी कैंसर हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन 2027 के दिसंबर में फर्स्ट फेज में उसको चालू 2027 में, और हर वर्ष बेटियों का विवाह है वो संकल्प। अभी हमने एक नया प्रकल्प चालू किया धाम पर, वैदिक गुरुकुल, 80 बच्चे मजदूरों के जिनके माता पिता मजदूर हैं उनके बच्चों का रहना खाना पुस्तक पढ़ाई लिखाई सब फ्री ऑफ वो चालू किया। तो उसमें केवल हम संस्कृत नहीं सिखाते, इंग्लिश मैथमेटिक्स हॉर्स राइडिंग तीरंदाजी सिंगिंग पूरा वैदिक और सबसे हाईटेक गुरुकुलम। हम सबसे तो नहीं कह सकते हैं, ठीक ठाक।
2: कोई ओलंपिक मेडल भी आएगा आपके?
3: अगर ये सफल होंगे तो निश्चित भगवान ने चाहा।
2: स्वामी रामदेव पे बोलेंगे
3: जी, तो हमारे आदर्श
4: आपके आदर्श में क्या आप उनकी तरह आप भी मतलब वो हर क्षेत्र में आप जो है चले गए, बहुत बड़े व्यापारी भी, अच्छे व्यापारी भी बन गए हैं, देश को बहुत मतलब रोजगार भी दे रहे हैं, तो क्या आप भी उस दिशा?
3: आप क्या चाहते हैं? महात्मा सिर्फ मांगते ही रहे। देखो इस देश में हमारी आज से लेकर के अब तक के जितने भी प्रवचन के इंटरव्यूज या हमारे इंटरव्यू या कथा प्रवचन है सोशल मीडिया या मीडिया या यूट्यूब आदि पर प्रसारित, हमारी लाइव कथा प्रसारित टेलीकास्ट है, उन सबको आप सुनेंगे, हमने कभी माया छोड़ने के प्रवचन नहीं सुनाए, और हम माया छोड़ने के पक्ष में नहीं। आज 100 रुपया है डॉलर, 100 रुपया है, कल 200 हो जाएगा, आप सबको बाबा बना दोगे तो देश का हाल क्या होगा? हम देश का विकास चाहते, अर्थ से परमार्थ की यात्रा चाहते, अर्थ कमाओ पर परमार्थ में भी लगाओ। हम चाहते हैं दीनहीनों की भी मदद करो, धन कमाना बुरा नहीं है पर किसी का दिल दुखा करके कमाना, झूठ छल कपट पाखंड अंधविश्वास फैला कर कमाना महा बुरा है। हम चाहते हैं हर व्यक्ति बिजनेसमैन बने, हर व्यक्ति व्यापारी बने, हर व्यक्ति अर्थ कमाने के स्रोत निकाले, नया आविष्कार करे, नई नई चीजों का आविष्कार करके समाज के सामने प्रस्तुत करें।

0: क्षेत्र में वो सर्वगुण संपन्न हो, और बिल्कुल होना चाहिए। हमें स्वामी जी की एक बात बहुत अच्छी लगती, सब में होना चाहिए, कोई बुराई नहीं। हाँ, धर्म का धंधा नहीं होनी चाहिए, धंधे का धर्म तो होता है।
1: वो कौन लोग हैं और धर्म का धंधा कैसे करते हैं? धर्म का धंधा क्या होता है?
2: धर्म का धंधा ये होता है कि हम भगवान के नाम पर, झूठ छल कपट के नाम पर, दिखावा भय दिखा करके, धर्म का चोला ओढ़ करके अपने पेट भरना, ये धर्म का धंधा है। आप कहेंगे आप तो नहीं ऐसा करते, हम कथा करते दक्षिणा मिलती है, हम प्रवचन करते दक्षिणा मिलती है, लेकिन हम मकान नहीं बनाते, अस्पताल बनाते, बेटियों के विवाह कराते हैं, हर दिन 10 से 15 हजार लोगों को निःशुल्क भंडारा कराते हैं। हमारा क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र, वहाँ 200 किलोमीटर में कोई कैंसर हॉस्पिटल नहीं है, तो हमने विचार किया हमारे क्षेत्र में अस्पतालों में मंदिर अब तक बहुत हैं, हम मंदिर में अस्पताल देखना चाहते।
3: महाराज जी, जब आप
2: इसके विपरीत जो है वो धर्म का धंधा है।
4: तो जब आप बाहर होते हैं तो इंडिया में क्या चल रहा है उसको ट्रैक करते हैं?
0: नहीं, ट्रैक नहीं, हम रोज न्यूज
4: पढ़ते हैं, लेकिन कई बार ऑनलाइन देखना पड़ता होगा ना, यूट्यूब पे या किसी
0: चलाते
4: हैं।
0: जी, उस ऐप को क्या लगता है
4: कौन सा ऐप सबसे ज्यादा आप इस्तेमाल करते हैं?
0: एक्स हैंडल करते हैं,
4: एक्स हैंडल,
0: और इंस्टाग्राम करते हैं,
4: इंस्टाग्राम
5: खुद से करते हैं। आपका भी समय जाता है ऐसे?
0: 10 मिनट तो जाता है,
4: 30 मिनट 40 मिनट
0: न्यूज पूरी पढ़ने में, आज कहां क्या क्या, किसने क्या क्या वहां बयान दिया, कहां पर क्या चल रहा है, एक एक न्यूज को हमें, क्योंकि इसलिए भी अपडेट हमें रहना पड़ता है कि जैसे ही उतरो तुरंत बताइए बाबा ये क्या, अब बाइक लगाने वाले आप लोग होते हो, बाबा बड़ा ज्ञानी बनता था, बोल नहीं
6: पा। मेरे सारे साथी देखिए आपसे बहुत सख्त प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं तो मंत्र मुग्ध हूँ, देख रहा हूँ आपको, मैंने आपसे पहले ही कहा था आपको देखता रहूंगा।
0: जी जी, आप बहुत सज्जन,
6: आप बैठ मेरे पास, तुझे देखता रहूं। ये बताइए कि इतना सुंदर हनुमान जी भी हैं, लग रहा है कि बहुत ही डिजाइनर, वो शानदार आपने कुर्ता पहना, कौन डिजाइन करता
0: है? हमारी डिजाइनिंग ऐसी है कि जो भी आता है वो श्रद्धा से दे जाता है, कोई फिक्स डिजाइनर नहीं।
6: अच्छा,
0: लोगों की इच्छा है, हमारे प्रति भावना जो जुड़े हैं।
6: ये भी कुर्ता किसी ने दिया है?
0: हम
6: कितने खुश हो रहे हैं?
0: अरे खुद के कहा, उनका हृदय बड़ा आह्लादित होता कि गुरु जी ने पहन लिया।
6: तो आपका
0: है चाहेंगे कि इस इंटरव्यू के बाद में आप भी एक आध श्रद्धा दिखाओ। आपको भी मन में ये आना चाहिए कि हमारा दिया हुआ कुर्ता कोई महात्मा पहने,
5: वो तो कोट देंगे,
0: कोट ना दे, कोट का करें।
6: अच्छा, हम शानदार टी शर्ट देंगे आपको,
0: बाहर में गया हम ले भी
5: पैंट भी लेंगे,
0: और अब आप मना ना कर पाएंगे क्योंकि आपने बोल दिया है कि हमने भगवान ने अगली बार कमेंट ही कर देंगे कि बड़े बड़े नहीं आ रहे हैं देखे,
6: तो मतलब कुर्ता ही पहनेंगे आप?
0: नहीं नहीं, आप टी शर्ट दो, हम कहने लेंगे
6: टी शर्ट पहनेंगे।
0: अरे उसमें कोई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कल तुम जींस पैंट ले आओ, वो ना पहनेंगे,
6: टी शर्ट के साथ जींस भी देंगे।
0: ना ना, हम वो ना पहनेंगे, पहले ही
6: क्यों? अच्छा तो है जींस पैंट पहनना, उसमें कोई आपत्ति है कुछ?
0: अरे भाई कोई आपत्ति नहीं, पुलिस वाला पुलिस की ड्रेस पहन करके ना आए तो आप सीधा गए। सबके भाई अपने अपने रूल होते हैं, ड्रेस कोड होता है देश में, डॉक्टर का ड्रेस कोड है, पुलिस का ड्रेस कोड है, साधु का भी भैया ड्रेस कोड है, उससे इंस्पायर होते हैं लोग कि हम स्पिरिचुअल हैं। भैया आप क्या चाहते हो?
4: महाराज जी, हाल ही में कांवड़ यात्रा को लेकर बहुत सारी बातें कही जाती हैं कि आजकल आस्था के नाम पर एंटरटेनमेंट ज्यादा हो रहा है, बड़े बड़े डीजे, लाउड म्यूजिक, रास्ते में अवरोध होता है, पुलिस प्रशासन की सख्ती के बावजूद हमने देखा, कई आपने भी देखे होंगे वीडियोस वायरल हुए जिसमें गंदगी फैलाई गई हरिद्वार के तटों पर, जहां पर बहुत टनों वेस्ट छोड़ा गया जो गंदे कपड़े थे, ऐसे इस पर अंकुश लगाम लगे कि हम आस्था को भी चोर
0: यात्रा बंद करवाने की बात
4: नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि उस
0: ठीक करने की,
4: तो कैसे ठीक करें ताकि उसमें से एंटरटेनमेंट का एलिमेंट माइनस हो जाए।
0: सजगता और सद्बुद्धि है, उसको ठीक भर ऐसे करना है कि हम कचरा जमीन पर ना फेंके, कचड़े को कूड़ेदान में ही डालें, और धर्म आस्था को सिर्फ इंजॉयमेंट में, आस्था की पवित्रता, आस्था में श्रद्धा, दोनों उच्चतम सीमा पर बनाए रखें। कांवड़िया बड़े भगवान के शिव भक्त होते हैं, अद्भुत भक्ति करते हैं, पैदल चलते हैं, उसमें कुछ विचित्र लोग भी होते हैं, तो तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, कछु मानस कछु देवता कछु जय जय सीताराम, सब प्रकार के लोग बहन होते हैं, सबकी अपनी अपनी मते होती है, सब में सब प्रकार के होते हैं, पर हम इतनी बात जरूर कहेंगे आने वाले दिनों में इसकी कांवड़ियों का भी एक विशेष, सरकार तो बहुत कार्य करती है, कांवड़ियों भी एक समझेंगे कि हमको जो है देवतीर्थ में गंगा के किनारे रास्ते पर सड़क पर कोई भी ऐसा कृत्य नहीं करना जिससे हमारे सनातन पर उंगली उठे।
5: अब बड़े बड़े साधु हैं जो इस चीज को लेकर मतलब वो गंगा जी के लिए प्राण समर्पित कर देते हैं, ये भी उन कांवड़ियों को अपने भक्ति के जोश में सोचना चाहिए।
4: जितने जितने शांति से आप अपनी बात रख रहे हैं, आप अपनी बात मनवा भी लेते हैं, ठीक है। कुछ लेकिन जेंजी कुछ युवा है जो अभी लद्दाख का वीडियो का आप जिक्र कर रहे थे, उसमें उतना गुस्सा जो उस महिला का था, और वो कह रही है हम जेंजी है, हम प्रदर्शन पे बैठ जाएंगे, यही बैठ जाएंगे, तो उन युवाओं के लिए क्या संकेत दें? गुस्से से ज्यादा बेहतर है शांति से अपनी
0: बात। हर रास्ते हर हल हर विवाद किसी भी समस्या का समाधान, संवाद ही समस्या का। देश में प्रेम बांटो ना, देश में एकत्व बांटो ना, देश में हम विवाद क्यों चुने, संवाद क्यों ना चुने? चार दिन की जिंदगी किसके लिए? और आपके आंदोलन कर देने से हो भी क्या जाना? हम सरकार को समझाएं भी, सिस्टम को सुधारें भी, पर देश को बिगाड़ें तो ना। आने वाली अल्फा बीटा जनरेशन को हम आंदोलन की बातें देकर के जाएंगे, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हम नेशन प्रेम की बातें देकर जाएं, लव और पीस की बातें देकर जाएं। तो हमें लगता है कि अब वर्तमान ये जो सोच वायरल होने का जो वायरल चढ़ा ना, ये बहुत खतरनाक है। हम पूरे भारत को ड्रग एडिक्ट अथवा सोशल मीडिया एडिक्ट नहीं, कथा एडिक्ट।
5: आजकल आप पर्ची निकालना छोड़ दिए?
0: ना चला रहे हैं, बस धाम पर है अभी।
5: अच्छा,
0: लेकिन व्यस्तता पुण्य जगह ज्यादा बढ़ गई, कथाएं ज्यादा, विदेश यात्रा ज्यादा, और पद यात्रा की तैयारी, कन्या विवाह की तैयारी, गुरुकुलम की तैयारी, कैंसर हॉस्पिटल की। पर्ची तो निकाले, वो तो जब तक जीना है तब तक भगवान ने जो कृपा दे रखी उस लगातार चला। अब आप लोग कम पर्ची दिखा रहे हैं ये कह सकते।
4: महाराज जी, आप इतनी विदेश यात्रा करते हैं, लेकिन जब आप तुलना करते हैं भारत की और विदेश की, असीम और अपार संभावनाएं ऐसी जो भारत में, जिसको हम यूज नहीं कर पा रहे, जिसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, जो विदेश में नहीं भी है फिर भी उन लोगों ने उसे डेवलप कर दिया। मसलन दुबई एक रेत था, रेतीला वहां पर मैदान था, फिर भी इतना डेवलप वो जगह बन गई है। ऐसी कौन सी संभावनाएं आपको हिंदुस्तान में भी दिखाई देती है जिस पर हम काम कर सकते हैं?
0: भारत में सब कुछ बस प्रस्तुतीकरण, हमारी प्रस्तुतीकरण प्रेजेंटेशन ठीक है। वो अपने पहाड़ खुदे हुए पहाड़ों को भी टूरिस्ट प्लेस बता रहे, हमारे यहाँ ऑलरेडी टूरिस्ट प्लेस है। तो हमें लगता है भारत का प्रस्तुतीकरण ठीक होना चाहिए। एक, भारत की शिक्षा व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, भारत की स्वच्छता पर काम होना चाहिए। फर्स्ट, यदि भारत को ठीक करना है तो दो जगह सफाई होनी चाहिए, भारत की सड़कों पर और कोनों में और दिमाग
4: दिमाग की पहने से दिमाग की सफाई कथा के साथ होगी, बाकी सफाई सरकार को करनी है।
0: नहीं, वो दिमागी सफाई कथा से तो हम सिर्फ विचार दे सकते हैं, स्वीकार तो आप करेंगे, स्वीकार तो लोग करेंगे, हम तो कह सकते हैं, मानना ना मानना अभिव्यक्ति की आजादी, इतना कह सकते हैं कि आप बेहतर जीना चाहते तो हमारे पास वही विचार है, और विचार सदविचार बुरे विचारों को ठीक करते, पर कोई स्वीकार करे तब ना।
6: नई पीढ़ी आपको कितना सुनती है, मतलब आप भी कभी मतलब कुछ
0: ये डाटा तो आप ही ला सकते हैं, हमें कितना सुनती है, हमारे बारे में कह पाना बहुत मुश्किल होगा, हम नहीं कह सकते हम कितने अच्छे आदमी, हम आपके बारे में कह सकते।
5: ऐसा होता है कि अलग अलग पीढ़ी के लिए अलग भाषा को इस्तेमाल करनी है कि भाई, क्योंकि आजकल पीढ़ियों में ऐसा बांट दिया कि हर व्यक्ति के दिमाग में आता है कि भाई मैं कौन सी पीढ़ी, सबने पता किया है कि हम कौन सी पीढ़ी,
0: आप कौन है? आप यदि
6: आप
0: यदि अपने
5: आप लोग 25 से एक साल ऊपर कभी नहीं हो,
6: कभी नहीं, कभी नहीं,
0: फिर हमको अल्पाधिकार की घोषित करना पड़ेगा अपने आप।
5: उम्र तो दिमाग में होती है ना।
0: अल्फा बीटा की बात कौन सी आई?
5: बीटा की
6: बात, बीटा
5: अभी तो बीटा चल रहा
0: है, अल्फा
4: महाराज जी, आप एक आम जीवन से इस जीवन में कैसे परिवर्तित हुए? कौन सी वो आदतें थी आपके अंदर जो आपने बदलाव किया और आप बाबा बागेश्वर बन गए?
0: हम बचपन से ही उल्टे थे,
4: उल्टे थे क्या उल्टे काम किए आपने?
0: सर कोई ऐसे उल्टे काम नहीं किए बहन, बचपन से ही हमने, हमको किसी ने बाबा बनाया,
4: कैसे
0: बनाए ही थे,
4: मैंने बनाया।
0: हमारा परिवार पूरा सामाजिक के साथ साथ धार्मिक में खूब सरोवर था। हमारे ग्रैंड फादर हनुमान जी के परम भक्त, उन पर हनुमान जी की विशेष अनुकंपा थी, एनलाइटमेंट था उनको, एनलाइटेड थे, उनके चरणों में रहे, हनुमान जी की सेवा बचपन से ही, हमारे पिताजी माताजी, हमारे दादाजी, दादाजी के भी पिताजी परदादा, तो हम जहाँ जिस गांव में हमारा जन्म हुआ वहाँ बालाजी का जो मंदिर है वो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी पूजा करते ही आ रही, तो वंशानुगत पूजा कर रहे हैं, तो दादाजी वहाँ रहते थे, तो दादाजी की हमारे यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी कोई ना कोई एक वहाँ का पीठपति या पीठाधीश्वर होता है। दादाजी ने हम पर कृपा की, गुरु ने हम पर दृष्टि डाली, तो हम बचपन से ही धार्मिक के धर्म के प्रति लगाव था ही, परिवार का माहौल ही ऐसा था, फिर दादाजी ने कृपा की तो गुरु अद्भुत मिल गए, तो फिर जीवन परिवर्तित हो गया, तो हम बाबा बने नहीं, बने बनाए हुए हैं, समान थे।
5: लेकिन आपकी बातों के साथ, मतलब भले एक साल से आप कह रहे हैं कि चूक गए, लेकिन आपको फिर भी इस नई पीढ़ी के ही का ही आप प्रतिनिधित्व एक तरीके से करते हैं, जो सोशल मीडिया से लेकर और एक कथा वाचन तक सबको अपनी बातें, अपने विचार सुना रहा है, यात्राएं कर रहा है और आगे भविष्य के भारत के लिए एक उम्मीद बनाए हुए है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए, वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: आइए बात करते हैं ऑरेंज सिटी नागपुर की, जहां के युवाओं ने ऐसा काम किया है जिसने शहर का नाम रिकॉर्ड में शुमार कर दिया। नागपुर में 4000 से ज्यादा युवाओं ने एक साथ ढोल ताशे बजाकर अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। ये रिकॉर्ड बना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के जेएनसी के साथ संवाद कार्यक्रम में। इस अनोखे कार्यक्रम में करीब 585 ध्वज धारकों ने अपने अपने दल का नेतृत्व किया। इस कार्यक्रम में युवाओं के साथ साथ युवतियां भी बढ़ चढ़ कर शामिल हुई। इस कार्यक्रम के दौरान पूरे परिसर में जबरदस्त ऊर्जा देखने को मिली। अनोखा कार्यक्रम एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया गया है। एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अधिकारियों ने आयोजकों को इसका सर्टिफिकेट दे दिया।

आइए बात करते हैं मुंबई की, जहां पर गणपति बप्पा के आगमन की खुशी लोगों के चेहरों पर दिखने लगी है। गणपति बप्पा की विशाल और बहुत मनमोहक मूर्तियां पंडालों तक पहुंचने लगी हैं। गणपति बप्पा के दर्शन और स्वागत को लेकर लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। तस्वीरें देखिए, जब गणपति की प्रतिमा लालबागचा राजा की ओर बढ़ रही थी, आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में श्रद्धालु पूरे आस्था भाव के साथ, उल्लास के साथ गणपति के स्वागत में शामिल हो रहे हैं। बप्पा को पंडालों में ले जा रहे हैं और आप तस्वीर में देख सकते हैं कि श्रद्धालु किस तरह ढोल की थाप के साथ पूरे धूमधाम से गणपति बप्पा का स्वागत कर रहे हैं।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे

0: है सावन के अंतिम सोमवार का महत्व? सावन के अंतिम सोमवार का क्या है पूजा विधान? और सावन के अंतिम सोमवार पर मिलेंगे कौन से वरदान? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
3: अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर बदल गई धर्म ध्वजा, वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूरे विधि विधान के साथ निभाई गई परंपरा, नए ध्वज पर ओम सूर्य और कोविदार वृक्ष के चिन्ह अंकित। मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में काली घटा आयोजन, मंदिर में दिखा सावन का मनमोहक नजारा, ठाकुर जी के दर्शन कर गदगद नजर आए भक्त। बारिश के लिए जैसलमेर के पुरोहितेश्वर महादेव मंदिर में भगवान भोलेनाथ का महारुद्राभिषेक, 121 रुद्रपाठी पंडितों ने किया सामूहिक रुद्री पाठ, मंत्रोच्चार से गुंजायमान हुआ परिसर। जन्माष्टमी को लेकर इस्कॉन मंदिर में तैयारियां तेज, दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर खास तैयारियां। नागपुर में 4,000 से ज्यादा युवक युवतियों ने ढोल ताशा बजाकर बनाया अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ नाम नागपुर का। रक्षाबंधन पर पर्यावरण संरक्षण का संदेश, गाय के गोबर से बनाई जा रही है राखियां और अन्य सजावटी सामान, बाजारों में जमकर हो रही है खरीदारी।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
3: अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर लहराया नया धर्म ध्वज, श्रावण शुक्ल पक्ष में राम मंदिर का बदला गया ध्वज। नया ध्वज बना आकर्षण का मुख्य केंद्र, दर्शन करने के लिए राम मंदिर में उमड़े श्रद्धालु, नए धर्म ध्वज से रामनगरी का माहौल हुआ भक्तिमय। नए ध्वज पर सूर्य ओम और कोविदार वृक्ष के चिन्ह। राम मंदिर परिसर में धार्मिक परंपरा का हुआ निर्वहन, विधि विधान के साथ नए ध्वज का आरोहण। ध्वज परिवर्तन के दौरान मंदिर परिसर का दिखा विहंगम दृश्य, रामनगरी में नए धर्म ध्वज को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह। नागपुर में ढोल ताशा बजाने का बना अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड, एक साथ 4,000 से ज्यादा युवक युवतियों ने बजाया ढोल। नागपुर में ढोल ताशे की गूंज से माहौल जोश से भर गया, एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नागपुर का नाम दर्ज। 585 ध्वज धारकों ने ढोल ताशा पथकों का नेतृत्व किया, 200 से ज्यादा ढोल ताशा पथकों ने कार्यक्रम में लहराया। हजारों युवाओं ने एक साथ ढोल ताशे की मिलाई ताल, युवाओं की शानदार प्रस्तुति ने खींचा दर्शकों का ध्यान। एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने आयोजकों को दिया प्रमाण पत्र, युवाओं ने अपनी कला से बनाया कीर्तिमान। जैसलमेर में भगवान शिव का भव्य महारुद्राभिषेक का, बारिश की कामना को लेकर शिव मंदिर में हुआ विशेष अनुष्ठान। पुरोहितेश्वर महादेव मंदिर में धार्मिक आयोजन किया गया, 121 रुद्रपाठी पंडितों ने किया सामूहिक रुद्री पाठ, वैदिक मंत्रोच्चार के बीच महारुद्राभिषेक संपन्न। गड़ीसर तालाब स्थित मंदिर परिसर भक्तिमय नजर आया, महारुद्राभिषेक में अच्छी बारिश की कामना की गई, सुख समृद्धि और विशेष पूजा अर्चना। हवन और आहुतियों से गूंजा पुरोहितों के बगीचा परिसर, हर हर महादेव की गूंज, जयकारे देवी देवताओं के पूजन के साथ रुद्राभिषेक। अग्नि स्थापना और ब्रह्मा पूजन विधि विधान के साथ हुआ, बड़ी संख्या में श्रद्धालु महारुद्राभिषेक में शामिल हुए, शिव भक्ति में डूबे सैकड़ों श्रद्धालु। दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश स्थित इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी की तैयारियां हो गई शुरू, 4 सितंबर को मंदिर में बनाया जाएगा भगवान कृष्ण का भव्य जन्मोत्सव। जन्माष्टमी से पहले रंग बिरंगी लाइटों से सजाया जा रहा है इस्कॉन मंदिर परिसर में सजावट और रंग रोगन का काम। जन्माष्टमी को लेकर मंदिर परिसर में लगाए जा रहे हैं रंग बिरंगे टेंट, बड़ी संख्या में भक्तों के पहुंचने को देखते हुए तैयारियां तेज। जन्माष्टमी के मौके पर लाखों भक्त भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं इस्कॉन मंदिर, करीब 2 महीने पहले से शुरू कर दी जाती हैं तैयारियां। इस्कॉन मंदिर में इस बार भी जन्माष्टमी पर होगा भव्य आयोजन, मंदिर को सजाने श्रद्धालुओं के स्वागत की तैयारियां तेज। हिमाचल प्रदेश के मंदिरों में दान को लेकर बने रिकॉर्ड्स, 36 मंदिरों में 1 जनवरी 2024 से 1 अगस्त 2026 तक करीब 420 करोड़ रुपए का चढ़ावा। सबसे ज्यादा चढ़ावा हमीरपुर के बाबा बालकनाथ देवत सिद्ध मंदिर में आया, यहां पर 99 करोड़ से ज्यादा का चढ़ावा। बिलासपुर के नैना देवी मंदिर में 86 करोड़ रुपए से ज्यादा का मिला चढ़ावा। माता चिंतपूर्णी मंदिर में 85 करोड़ रुपए से ज्यादा भक्तों ने दर्शन। हरिद्वार में हर की पौड़ी में दिखा आस्था का अनोखा संगम, मुल्तान समाज के लोगों ने मां गंगा के साथ के लिए दूध की होली। मुल्तान समाज की ओर से लोगों को गंगा स्वच्छता का संदेश दिया गया, एक दूसरे को गुलाल लगाकर सबके कल्याण की कामना। देशभर में रक्षाबंधन को लेकर बाजारों में छाई रौनक, राखी से लेकर गिफ्ट की दुकानों में भारी बिक्री। सूरत के स्पेशल स्कूल में बच्चे तैयार कर रहे हैं खास राखी, लोगों को आ रही है खूब पसंद। स्पेशल बच्चों को स्कूल की टीचर दे रही हैं राखी बनाने का प्रशिक्षण, बच्चे अपने मन की डिजाइन से राखी तैयार कर रहे हैं। रंग बिरंगी राखियों से सज गया बाजार, बहनें अपने भाइयों के लिए खरीद रही हैं मन पसंदीदा राखी। पाली में पर्यावरण की रक्षा करने के लिए गोबर से बनी राखियों की बढ़ी डिमांड, उपहार के लिए आकर्षक का गहने भी तैयार। रक्षाबंधन को लेकर करनाल में बाजारों में छाई रौनक, बहनें अपने भाइयों के लिए जमकर खरीदारी कर रही हैं। बसरा के द्वारकाधीश मंदिर में काली घटा आयोजन की गई, मंदिर में दिखा सावन का मनमोहक दृश्य। ठाकुर द्वारकाधीश महाराज को काली घटा में कराया गया विराजमान, मंदिर परिसर को काली वस्त्रों आकर्षक रोशनी और फूलों से सजाया गया। काले बादलों की कड़कड़ाहट, चिड़ियों की चहचहाट और बिजली की घनघोर आवाजों से बनाया गया बारिश का माहौल। ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु हुए भाव विभोर। ठाकुर जी को बाहर के मौसम का एहसास कराने के लिए किया जाता है यह आयोजन। देश आज मना रहा है चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक सफलता की तीसरी वर्षगांठ। 23 अगस्त 2023 को भारत ने चांद के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में सफल सॉफ्ट लैंडिंग की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी, बड़े सपने देखने और नई ऊंचाइयों को छूने का आह्वान। अमित शाह ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी, चंद्रयान 3 की सफलता और इसरो के वैज्ञानिकों की सराहना। राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर शुभकामनाएं दी, चंद्रयान से गगनयान तक भारत की अंतरिक्ष यात्रा की सराहना की। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के मौके पर इसरो ने लोगों से जश्न में जुड़ने की अपील की, देश के अंतरिक्ष उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाना लक्ष्य। नेशनल स्पेस डे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पेस स्टार्टअप्स के सीईओ फाउंडर से बातचीत की, भविष्य की योजनाओं पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रॉकेट सैटेलाइट से लेकर एआई तक की चर्चा की, स्पेस टेक्नोलॉजी और नए इनोवेशन को लेकर बातचीत। मुलाकात के दौरान 20 स्पेस स्टार्टअप्स के सीईओ और फाउंडर्स मौजूद रहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पेस से जुड़ी तकनीक को समझा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारत के स्पेस सेक्टर में काम कर रहे स्टार्टअप्स की तारीफ, उन्होंने की सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, भारत के सबसे प्रतिभाशाली स्पेस स्टार्टअप से मुलाकात हुई। अहमदाबाद में नेशनल स्पेस डे को लेकर समारोह का आयोजन किया गया, इसरो की यात्रा को लेकर वीडियो जारी किया गया। राजस्थान की राजधानी जयपुर में मिलावटखोरों पर प्रशासन का शिकंजा, संदिग्ध मूंगफली तेल का 6,900 लीटर स्टॉक सीज। खाद्य सुरक्षा विभाग ने प्रदेश भर में 60 जगहों पर छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान 101 खाद्य नमूने लिए गए। उदयपुर में 600 लीटर नकली दूध पाया गया, उसको नष्ट किया गया। कई जिलों में बासी मिठाई, मावा, घी और तेल पर भी कार्रवाई। जालना के वाघाड़ी गांव में आजादी के बाद पहली बार शुरू हुई नियमित बस सेवा। उच्च शिक्षा के लिए बेटियों का सफर होगा आसान। ग्रामीणों ढोल ताशों के साथ बस का फूलों से स्वागत किया। छात्राओं के साथ अभिभावकों में दिखा उत्साह। कोलकाता में सीनियर सिटीजन्स को क्रिएटिविटी नेवर रिटायर्स आर्ट थेरेपी का आयोजन किया गया। मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने भी शिरकत की। आर्ट थेरेपी वर्कशॉप में मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने भारत माता की बनाई पेंटिंग, लोगों ने प्रकृति से लेकर सपनों से जुड़े आर्ट बनाए। फिट संडे मिशन के तहत विशाखापट्टनम में साइकिल इवेंट का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। विशाखापट्टनम साइकिल इवेंट में मंत्री मनसुख मंडाविया शामिल हुए। लोगों को गुड हेल्थ के लिए टिप्स दिए। पंजाब यूथ रन के तहत मॉडल टाउन में मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। 5 किलोमीटर की दौड़ प्रतियोगिता में सैकड़ों बच्चे, महिलाएं और युवाओं ने शिरकत की। इस साल नवंबर महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं दरभंगा एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन। निर्माण कार्य ने पकड़ी रफ्तार। दरभंगा एयरपोर्ट से जल्द शुरू होगी रात्रि विमान सेवा। फिलहाल यहां से सिर्फ दिन में उड़ानों का हो रहा है संचालन। दरभंगा एयरपोर्ट को धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के तौर पर विकसित किया जा रहा है। एयरपोर्ट के विस्तार के साथ बढ़ाई जा रही है सुविधाएं। दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने रन फॉर वंदे मातरम देशभक्ति दौड़ का आयोजन किया। अखंड भारत संकल्प दिवस पर हुआ भव्य आयोजन। दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में सेक्रेट टाइगर ट्रेल्स बुक लॉन्च हुई। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। लखनऊ में स्वतंत्रता सेनानी गुलाब सिंह लोधी के शहादत दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अर्पित की श्रद्धांजलि। लखनऊ में मिड डे मील रसोइयों का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। सम्मान समारोह से पहले छात्राओं की ओर से लगाई गई प्रदर्शनी में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। छात्राओं ने मुख्यमंत्री के साथ जमकर तस्वीरें खिंचाई। वाराणसी में जापानीज प्रतिनिधिमंडल ने काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचकर भगवान शिव के दर्शन पूजन किए, आशीर्वाद लिया। तमिलनाडु के वेल्लोर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुई दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। छात्रों को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं।

0: झमाझम बारिश के साथ हुई दिल्ली एनसीआर में मौसम की शुरुआत, वीकेंड हुआ कूल कूल। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में लोगों ने रेनी संडे का उठाया लुत्फ और रिमझिम बारिश के बीच मौसम का आनंद। दिल्ली एनसीआर में बारिश के चलते लोगों को मजबूरी गर्मी से राहत मिली, तापमान में दर्ज की गई गिरावट। दिल्ली एनसीआर में अगले दो दिनों तक बने रहेंगे बारिश के आसार, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। गाजियाबाद से लेकर गुरुग्राम तक मौसम ने अचानक करवट ली, काले बादलों के साथ मूसलाधार बारिश। देश के कई हिस्सों में मॉनसून सक्रिय, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के अलावा हरियाणा और चंडीगढ़ में बारिश का अलर्ट। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश जारी, बांदा में भीषण बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त, सड़कें बनी दरिया। उत्तराखंड के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ जारी रहेगी बारिश, पौड़ी, नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली और उत्तरकाशी के लिए अलर्ट। देवभूमि उत्तराखंड में फिर बदल गया मौसम का मिजाज, देहरादून में देर रात झमाझम बारिश। बिहार के दानापुर दियारा में बढ़ा गंगा नदी का जलस्तर, नाव से नदी पार करने वालों को हो रही है परेशानी। बेगूसराय में लगातार बढ़ रहा गंगा नदी का जलस्तर, सड़कों पर बह रहा 2 फीट तक पानी। प्रयागराज में गंगा और यमुना के जलस्तर बढ़ना लगातार जारी, कई घाट डूब गए, निचले इलाकों में बढ़ा बाढ़ का खतरा। हापुड़ में गंगा से सटे ग्रामीण इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, जिला अधिकारी ने प्रभावित इलाकों में बंटवाई राहत सामग्री। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में लगातार बारिश का दौर जारी, कई इलाकों में जलजमाव। श्रीनगर में बारिश के बाद मौसम हुआ सुहाना, पर्यटक जमकर उठा रहे हैं लुत्फ। जम्मू कश्मीर के रियासी में लगातार बारिश से बढ़ा नदी का जलस्तर, सलाल डैम के दरवाजे खोले गए। मंडी पठानकोट हाईवे पर मूसलाधार बारिश से लैंडस्लाइड, बड़े वाहन के बंद किए हुए हैं रास्ते। गोरेला में जबरदस्त बारिश से उफान पर नाले, अमरकंटक की सड़कों में नालों में तब्दील हुई। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में जोरदार बारिश के चलते शहर के अंदर जगह जगह भर गया पानी, कबरई के प्राथमिक विद्यालय में भरा पानी। फरुखाबाद में गंगा और रामगंगा दोनों नदियों उफान पर, किनारे के गांवों को जारी किया गया अलर्ट। चीन में रोबोट्स ने खेलों की दुनिया में मचाई धूम, बीजिंग में शुरू हुआ वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स। रोबोट्स ने किक बॉक्सिंग में जमकर किया मुकाबला, 80 किलो वर्ग में ह्यूमनॉइड रोबोट ने फाइट की। ह्यूमनॉइड रोबोट ने रेस में भी भाग लिया, बड़े और छोटे रोबोट्स ने रेस में दिखाई अपनी ताकत। रोबोट्स के बीच ब्लॉक का स्टैकिंग का प्रतियोगिता भी हुई, रोबोट्स ने ताई ची का प्रदर्शन करके सबको चौंका दिया। वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स में भारी संख्या में पहुंचे दर्शक रोबोट्स के खेलों का जमकर लुत्फ उठाया। चीन के रोबोट तियांग योंग के 400 मीटर उन्होंने जीता गोल्ड, तियांग योंग ने 38.15 सेकंड में रेस पूरी की। तियांग योंग ने शेनजेन के रोबोट को पीछे छोड़कर गोल्ड पर कब्जा जमाया, 100 मीटर रेस में भी तोड़ा था दुनिया के सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट का 15 साल पुराना रिकॉर्ड। बीजिंग में वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स 16 देशों की 600 से ज्यादा टीमें हुई शामिल, गेम्स में करीब 2000 ह्यूमनॉइड रोबोट शामिल हुए। रोबोट्स ने मार्चिंग और अलग अलग खेलों में दिखाया दमखम, ह्यूमनॉइड रोबोट्स ने इंसानों के साथ टेनिस खेला, रोबोट्स ने बॉक्सिंग में भी मुकाबला किया। फुटबॉल से लेकर फैक्ट्री तक रोबोट्स की परखी जा रही है क्षमता, चोंगकिंग यूनिवर्सिटी की टीम ने तकनीक का दिखाया शानदार प्रदर्शन। उत्तर कोरिया में मार्शल आर्ट्स गेम्स की जली मशाल, प्योंगयांग में टॉर्च लाइटिंग सेरेमनी आयोजित। 10वें इंटरनेशनल मार्शल आर्ट्स गेम्स की तैयारियां हो गई शुरू, मार्शल आर्ट्स की मशाल खिलाड़ियों को सौंपी गई। समारोह में ताइक्वांडो का शानदार प्रदर्शन हुआ, स्कूली बच्चों ने ताइक्वांडो में दिखाया हैरतअंगेज करतब। वुशु के प्रदर्शन में खींचा सभी का ध्यान, अलग अलग मार्शल आर्ट्स के साथ कराटे का भी प्रदर्शन। मशाल प्रज्वलन के साथ इंटरनेशनल गेम्स का बढ़ा उत्साह, अक्टूबर में किर्गिस्तान में गेम्स का होगा आयोजन।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
0: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
0: आइए बात करते हैं मुंबई की, जहां पर गणपति बप्पा के आगमन की खुशी लोगों के चेहरों पर दिखने लगी है। गणपति बप्पा की विशाल और बहुत मनमोहक मूर्तियां पंडालों तक पहुंचने लगी हैं। गणपति बप्पा के दर्शन और स्वागत को लेकर लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। तस्वीरें देखिए, देखिए जब गणपति की प्रतिमा लालबाग चौराहा की ओर बढ़ रही थी, आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में श्रद्धालु पूरे आस्था भाव के साथ उल्लास के साथ गणपति के स्वागत में शामिल हो रहे हैं, बप्पा को पंडालों में ले जा रहे हैं। और आप तस्वीर में देख सकते हैं कि श्रद्धालु किस तरह ढोल की थाप के साथ पूरे धूमधाम से गणपति बप्पा का स्वागत कर रहे हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश और खासकर गोरखपुर को नई सौगात मिलने वाली है। लखनऊ और अहमदाबाद की तर्ज पर वहां भी अब रिवर फ्रंट विकसित करने की तैयारियां हैं। ये रिवर फ्रंट राप्ती नदी के किनारे विकसित किया जाएगा। रिपोर्ट देखिए।
7: गोरखपुर में कल कल बहती राप्ती नदी का और उनके किनारों का ये मनमोहक नजारा बेहद आकर्षक है। नदी किनारे बने घाटों पर बैठकर सुकून के कुछ पल गुजारने का अपना ही मजा है। अब इस इलाके को और भी आकर्षक बनाने की तैयारी हो रही है। गोरखपुर में राप्ती नदी के तट का अब कायाकल्प होने जा रहा है। लखनऊ के गोमती और अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर राप्ती नदी के किनारे शानदार रिवर फ्रंट विकसित करने की योजना बनाई जा रही है। इसे अब साकार करने की दिशा में काम शुरू हो रहा है।
8: इसी योजना के क्रम में जो है एक प्रारंभिक जो है रिपोर्ट जो संबंधित वेंडर था उनके द्वारा जो है प्रस्तुत की गई है। क्योंकि ये प्रारंभिक रिपोर्ट है तो इसमें इन्होंने कुछ चीजें जो मेंशन करी हैं, जिसमें इसमें पार्क भी है, इसमें ग्रीन स्पेसेस भी हैं, इसमें पब्लिक के लिए भी कन्वेंशन सेंटर लेकर ये रिवर फ्रंट की बात यहाँ पर चल रही है।
7: राप्ती रिवर फ्रंट के प्रोजेक्ट की DPR तैयार हो चुकी है। इस पर करीब 1,303 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसके तहत गोरखपुर के राजघाट से डोमिनीगढ़ तक राप्ती नदी के करीब 3.5 किलोमीटर लंबे तट को रिवर फ्रंट के रूप में विकसित किया जाएगा। इसमें नदी के तट से हर्बर्ट बांध पर बनी 4-लेन सड़क की ओर करीब 150 मीटर चौड़ाई में विकास कार्य कराया जाएगा, ताकि आम लोग इसका पूरा लाभ उठा सके।
8: जब आप नदी के किनारे विभिन्न आयामों में आप वहाँ पे टूरिज्म की तमाम गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं, जैसे चाहे वो बोटिंग हो, चाहे वो घाट पे बैठना हो, चाहे वो आसपास पार्क में सुबह की सैर करना हो, शाम की सैर करना हो, या कोई भी कॉलेज का इवेंट हो, कोई कल्चरल इवेंट हो, कोई पारिवारिक इवेंट हो, तो वो भी रिवर फ्रंट पे एक जैसे कहते हैं कि एक लाइवली माहौल वहाँ पर एक कल्चरल एक संध्या के रूप में आप देखें, सुबह भी आप टहलने वहाँ जा सकें और बच्चों के साथ भी वहाँ और परिवार का समय व्यतीत कर सकें, इस तरह की पूरी परिकल्पना जो है इस रिवर फ्रंट पर की जाती है।
7: राप्ती रिवर फ्रंट के पूरे प्रोजेक्ट को 3 चरणों में पूरा करने की योजना है। सड़क तक विकसित किए जाने वाले हिस्से को ग्रीन बेल्ट के रूप में विकसित किया जाएगा। साथ ही यहां पर अर्बन हॉट, योग सेंटर और कन्वेंशन सेंटर जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इसके अलावा जगह जगह बोटिंग की सुविधा देने की भी तैयारी है। माना जा रहा है कि परियोजना पूरी होने के बाद राप्ती नदी का ये इलाका गोरखपुर के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल हो सकता है। गोरखपुर से गजेंद्र त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: बीजिंग में दूसरा वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स यानी रोबोट ओलंपिक चल रहा है। इनमें 2000 से ज्यादा ह्यूमनॉइड रोबोट न केवल फुटबॉल, टेनिस, बॉक्सिंग, बैडमिंटन और एथलेटिक्स में अपना हुनर दिखा रहे हैं, बल्कि नए नए रिकॉर्ड बनाकर भी इंसान को दंग कर रहे हैं। इनमें से एक रोबोट ने मशहूर धावक उसैन बोल्ट का रिकॉर्ड तोड़ दिया तो एक ने हाई जंप में इंसान को पीछे छोड़ दिया। रिपोर्ट देखिए।
5: रॉकेट जैसी रफ्तार, दौड़ शानदार।
9: ह्यूमनॉइड रोबोट रेसिंग की ये तस्वीरें बीजिंग की हैं, जहां 100 मीटर की दौड़ में नया इतिहास रचा गया।
5: यहां पर तियानजोउ नाम के ह्यूमनॉइड रोबोट ने दुनिया के सबसे तेज धावक उसैन बोल्ट के 100 मीटर के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। तियानजोउ रोबोट ने 100 मीटर की दौड़ सिर्फ 9.39 सेकंड में पूरी कर ली, जबकि जमैका के धावक उसैन बोल्ट ने ये दूरी 9.58 सेकंड में पूरी की थी। बोल्ट ने 2009 में बर्लिन में हुई वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सबसे कम समय में 100 मीटर दौड़ पूरी करने का शानदार रिकॉर्ड कायम किया था। 100 मीटर की दौड़ में बोल्ट का ये रिकॉर्ड 17 सालों से कायम है और कोई इंसान तो इसे अब तक नहीं तोड़ सका है। लेकिन अब एक रोबोट ने बोल्ट के उस ऐतिहासिक रिकॉर्ड को ध्वस्त करके नई मिसाल कायम कर दी है। जिस रोबोट ने ये कमाल कर दिखाया है उसे बीजिंग इनोवेशन सेंटर ऑफ ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स ने बनाया है। वहीं इससे पहले एक टेस्ट रन में चीनी कंपनी ऑनर के रोबोट ने 100 मीटर की दूरी तय करने में केवल 9.32 सेकंड का समय लिया था। बीजिंग में चल रहे ह्यूमनॉइड रोबोट्स के मुकाबले में नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। इसी दरमियान एक रोबोट ने स्टैंडिंग हाई जंप में 2.88 मीटर से ऊंची छलांग लगाकर इंसानों और पिछले सभी रिकॉर्ड्स को पीछे छोड़ दिया। चीन की रोबोटिक्स कंपनी यूनिट्री के ह्यूमनॉइड रोबोट ने हाई जंप में ये कमाल कर दिखाया है। स्टैंडिंग हाई जंप की स्पर्धा में रोबोट ने 2.8843 मीटर तक ऊंची कूद का नया रिकॉर्ड कायम कर डाला। और हाई जंप में भी इंसानों यानी मानव एथलीट के पुराने रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया। बीजिंग में शनिवार को दूसरे वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स का शुभारंभ हुआ। ओपनिंग सेरेमनी में हुई 400 मीटर रेस में चाइना के तियांगोंग ह्यूमनॉइड रोबोट ने 39.7 सेकंड का समय निकालकर पहला स्थान हासिल किया। इससे पहले ओपनिंग सेरेमनी के दौरान हुए रंगारंग कार्यक्रम में इंसान केवल दर्शक थे, जबकि स्टेडियम में ट्रैक से लेकर पूरे एरिना में मौजूद 1000 से ज्यादा ह्यूमनॉइड रोबोट्स ने अपनी तकनीकी क्षमता का अनूठा प्रदर्शन किया, जिसे देखकर लोग दंग रह गए। मनमोहक म्यूजिकल परफॉर्मेंस से लेकर नेशनल स्पीड स्केटिंग ओवल में टीमों के मार्चिंग दस्ते के रूप में हर इवेंट में शानदार तालमेल के साथ रोबोट फॉर्मेशंस दर्शकों को अलग ही कल्पना लोक में ले गए, जिसे वे अपनी आंखों के सामने साकार होते देख रहे थे। इस दौरान 36 रोबोट्स की टीम ने मेलेडी ऑफ द फ्यूचर के नाम से भव्य संगीत और सुरों का समा बांध दिया। वहीं स्पर्धाएं शुरू होने से पहले ओपनिंग सेरेमनी में ही तमाम रोबोट्स ने अलग अलग खेलों में अपने हुनर की झलक पेश की। बीजिंग में 5 दिन के वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स में 16 देशों के 2056 रोबोट्स की 666 टीमें भाग ले रही हैं। ये रोबोट 51 इवेंट्स की 1300 से ज्यादा स्पर्धाओं में अपना कमाल दिखाएंगे और ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि आने वाला कल इनका ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आती है।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
0: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: क्या है सावन के अंतिम सोमवार का महत्व? सावन के अंतिम सोमवार का क्या है पूजा विधान? और सावन के अंतिम सोमवार पर मिलेंगे कौन से वरदान? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
12: HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
0: खत्म होने वाला है बप्पा के श्रद्धालुओं का साल भर का इंतजार। मुंबई में पंडालों का रुक कर रही हैं गणपति बप्पा की प्रतिमाएं। बप्पा के स्वागत में उमड़े हजारों श्रद्धालु, ढोल लगाड़ों के साथ स्वागत। अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर बदली गई धर्मध्वजा, वैदिक मंत्रोच्चारों के बीच विधि विधान के साथ निभाई गई परंपरा। नई ध्वजा पर सूर्य ओम और कुविदार वृक्ष के चिन्ह। मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में पारंपरिक काली घटा का आयोजन, काले वस्त्रों, फूलों और आकर्षक लाइटों से सजाया गया मंदिर। जन्माष्टमी को लेकर इस्कॉन मंदिर में तैयारियां तेज, दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर खास तैयारियां। बारिश के लिए जैसलमेर के पुरोहितेश्वर महादेव मंदिर में भगवान भोलेनाथ का महारुद्राभिषेक। नागपुर में 4,000 से ज्यादा युवक युवतियों ने ढोल ताशा बजाकर बनाया अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड। रक्षाबंधन पर पर्यावरण संरक्षण का संदेश, गाय के गोबर से बनाई जा रही है राखियां, अन्य सजावटी सामान, गया के बाजारों में भारी रौनक।
11: को पावर्ड बाय JK सुपर सीमेंट, बिल्ड स्ट्रॉन्ग,
13: डिजाइन्स क्राफ्टेड फॉर नेचुरल डायमंड्स टू स्पार्कल द ब्राइटेस्ट,
11: मारुति सुजुकी ब्रेजा लीड एवरी प्ले। सोना खरीदना हो या बेचना हो, हमारा जॉय आलोकास्ट द बेस्ट है।

0: बुजुर्गों को सम्मान दिलाएगी संपत्ति, आज हम चर्चा इसी को लेकर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं नवजोत संधवा। आज बात बुजुर्गों की। अक्सर बुजुर्ग माता पिता की अनदेखी के मामले सामने आते ही रहते हैं। ऐसे में कई मामले सामने आए हैं जब माता पिता से संपत्ति पाकर बच्चे माता पिता को उनके ही घर से बेदखल कर देते हैं। ऐसा ही एक मामला लखनऊ से भी सामने आया है, लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने शिकंजा कस दिया है। आखिर ऐसा क्या हुआ, मामला क्या था, क्या माँ बाप से की बेरहमी तो होंगे बेदखल, पेरेंट्स की अनदेखी पर कैसे कोर्ट की तीखी नजर, क्या बुजुर्गों को सम्मान दिलाएगी संपत्ति, इन तमाम सवालों का जवाब आज जानेंगे हमारे इस बुलेटिन में। मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, साथ ही साथ सामाजिक कार्यकर्ता और सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हमारे साथ होंगे चर्चा करने के लिए। यानी सीधी सी बात है कि माँ बाप से अगर आप बेरहमी करेंगे तो फिर बेदखल हो जाएंगे। अब 81 साल की बुजुर्ग महिला को अपने घर का अधिकार वापस मिला है। पूरा मामला क्या है, जरा उस पर नजर डाल लेते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ की बुजुर्ग महिला की दलील मान ली है। दावा यह है कि पहले बुजुर्ग महिला को वृद्धाश्रम जाना पड़ा जबकि बेटा मकान में परिवार समेत रह रहा था। ऐसे में बुजुर्ग महिला ने साल 2022 में जिला प्रशासन में शिकायत दर्ज करवाई। फिर प्रशासन ने महिला के बेटे को घर से निकलने का आदेश दिया। जिला मजिस्ट्रेट ने भी प्रशासन के फैसले को बरकरार रखा, लेकिन बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला मजिस्ट्रेट का फैसला पलट दिया। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला बदल दिया है, जिसके बाद अब मकान मां को वापस मिलेगा। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की पीठ ने यह फैसला सुनाया है। फैसले के मुताबिक संपत्ति पर अधिकार अहम है, लेकिन माता पिता की सुरक्षा सम्मान की कीमत पर नहीं। माता पिता की शिकायत मिलते ही बच्चे को घर से निकाल दिया जाएगा। साथ ही साथ अदालत ने साफ किया है कि 2007 के कानून के तहत गठित ट्रिब्यूनल के पास काफी अधिकार है और ट्रिब्यूनल के पास बुजुर्ग की सुरक्षा के लिए बेटे को बेदखली का आदेश देने की शक्ति है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साल 2007 के कानून की धारा 7 के तहत मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल बने हैं। इन ट्रिब्यूनल के पास सिविल कोर्ट जैसी शक्तियां हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बुजुर्गों को सम्मान देने से सभ्य समाज की पहचान होती है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ पुराने मामलों से जुड़ी जजमेंट का भी उदाहरण दिया है। इस तरह अब अदालत का ये ताजा फैसला वाकई आगे जाकर नजीर बनेगा, जो बच्चे अपने माता पिता का ध्यान नहीं रखते या फिर संपत्ति से ही बेदखल कर देते हैं, उन पर अब शिकंजा कसा जाएगा। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त दीप्ति रंजन साहू, प्रेसिडेंट हैं इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी, प्रोफेसर हैं प्रकाश जी, सीईओ हैं अजय केयर सेवक फाउंडेशन के, और साथ ही साथ प्रवेश मलिक, फाउंडर हैं मिशन जागृति के। पूरे मामले को हालांकि कोर्ट ने जिस तरीके से इस पर एक्शन लिया है, कोर्ट का जवाब आया, हाईकोर्ट के फैसले को पलटा है। पहले तो अगर समझा सकें तो ये बता दीजिए कि कोर्ट ने एक्चुअली क्या कहा है, कितना अहम हो जाता है ये पूरा जजमेंट कोर्ट का।
1: जो ये पूरा मामला है ये एक लखनऊ के परिवार का है, जहां पर जो पिटिशनर है जिन्होंने केस फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में, उनकी जो मदर है वो 81 ईयर ओल्ड है, और जो है उनके लड़के ने, पिटिशनर के बेटे ने कहीं ना कहीं जो है न्यूसेंस के वजह से या जो कहें, जो बूढ़ी जो महिला है 81 साल की, उनको घर से जाना पड़ा और वो किसी वृद्धा आश्रम में चली गई और वहां पे वो रह रही थी। तब जो है उनके लड़के ने अपने ही बेटे के अगेंस्ट में जो है कंप्लेंट फाइल किया, और ये कंप्लेंट जो है उन्होंने सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट होता है उसके पास फाइल किया, और एक जो कानून हमारा 2007 में बनाया गया था जिसको मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजंस एक्ट 2007 के नाम से हम जानते हैं, और इस एक्ट में सर्टेन प्रोविजंस बनाए गए हैं प्रोटेक्शन के लिए सीनियर सिटीजंस के लिए, जहां पे सीनियर सिटीजन मेंटेनेंस भी मांग सकते हैं महीने का अगर उनको कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है अपने बच्चों से, या फिर जो है उनको मेडिकल जो अगर असिस्टेंस चाहिए वो मिल सकता है, शेल्टर मिल सकता है, फूड मिल सकता है, मतलब ये सारा जो उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए इस कानून को बनाया गया था। तो इसी कानून के तहत जो है उन्होंने कंप्लेंट फाइल किया मैजिस्ट्रेट के पास, और मैजिस्ट्रेट ने जो है उनके लड़के को घर से निकलने का, एविक्ट करने का आदेश दिया, ऑर्डर दिया, और इसी ऑर्डर को उन्होंने फिर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास उनके लड़के ने चैलेंज किया, लड़के ने और वाइफ ने, लेकिन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने भी जो है ऑर्डर जो पहले सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट ने जो किया था उसी को फाइनल किया, और उसके बाद जो है उनके लड़के ने जो है फिर ही वेंट टू अलाहाबाद हाई कोर्ट, और अलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है इस डिसीजन को चेंज किया ये कहते हुए कि जो कानून है जो मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ जो पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट है 2007 का, उसमें पूरी तरह से ऐसा पावर नहीं दिया गया है मैजिस्ट्रेट को कि वो जो है घर को खाली करा सके, इविक्ट करा सके। तो फिर जो है उन्होंने जब ये फैसला आया तो उन्होंने फिर

0: 2007 का, उसमें जो है ट्रिब्यूनल जो है बनाने का पावर दिया गया है, और साथ में जो सेक्शन 8 है उसमें सर्टेन पावर ट्रिब्यूनल को दिए गए हैं इंक्वायरी करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए पूरे मैटर को। और जो सेक्शन 27 है उसी एक्ट का, वो कहीं ना कहीं बार करता है, मना करता है कि आप कोई भी सिविल कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, और सिविल कोर्ट को कोई पावर नहीं है इसके बारे में। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्रिब्यूनल है उसी में सारे इस तरीके के पावर वेस्ट होने चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट का जो है व्यू था। और सुप्रीम कोर्ट ने साथ में ये भी कहा कि ऐसे मामलों में हमने पहले भी, जैसे 2021 में जो एस वनीता का जो केस था, उसमें वो जो है बैंगलोर का केस था, वो भी सुप्रीम कोर्ट आया था, उसमें 3 जजेस बेंच ने इस बात को क्लैरिफाई किया था कि मैजिस्ट्रेट के पास पूरी तरीके से पावर है एविक्ट कराने के लिए सीनियर सिटीजनशिप एक्ट के अंदर, तो सीनियर सिटीजन एक्ट के अंदर, तो इसी इस पावर का जो है पूरी तरह से
1: ठीक।
0: इस्तेमाल किया जा सकता है। और उन्होंने अलाहाबाद हाई कोर्ट का जो जजमेंट था उसको रिवर्स कर दिया, और फिर से जो मैजिस्ट्रेट ने जो ओरिजिनल ऑर्डर पास किया था घर खाली करने का, उसी ऑर्डर को कायम किया। तो ये पूरा मामला इस तरीके का है। और इसमें जो है जो सुप्रीम कोर्ट ने फर्दर ऑब्जर्वेशन ये भी रखा है कि
1: जी
0: जो हमारा आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 41 है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो भी वायलेशन है एक तरीके से, और सीनियर सिटीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए ही ये कानून बनाया गया था, और उनकी डिग्निटी को, उनके रिस्पेक्ट को, और उनके जो हर तरीके से उनकी
1: ठीक है,
0: सिक्योरिटी को जो है देखना, ये पूरी तरह से जिम्मेदारी बनती है
1: बिल्कुल। यानी
0: स्टेट
1: कि
0: की।
1: उनके उनके सीनियर सिटीजन्स के राइट्स को और ज्यादा प्रोटेक्ट करता है। आशुतोष जी माफी चाहूंगी, आशुतोष श्रीवास्तव सीनियर एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ इस वक्त हैं, और प्रकाश जी आपके पास आना चाहूंगी। सर, बहुत सारे केसेस आप इस तरह के देखते हैं, आपका खुद का एक एनजीओ, आप तमाम ऐसे केसेस देखते हैं, सबसे ज्यादा दिक्कत परेशानी कहां पर आती है?
2: सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि गए 39 साल से मैं बुजुर्गों के लिए काम कर रहा हूं, और मैंने ये देखा है कि ये गए 10 साल में बहुत सारी चीजें बदल गई है। और इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि आजकल बच्चे अपने माता पिता को पूछते नहीं है, बुजुर्गों की तरफ बिल्कुल ख्याल नहीं देते। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दिन ब दिन बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है, और आज अपने भारत देश में तकरीबन 153 मिलियन, यानी तकरीबन 15 से 15.5 करोड़ की आबादी सिर्फ बुजुर्गों की है। इसमें के 90% बुजुर्ग ऐसे कि जिनको पेंशन नहीं है, दैट मींस उनको रेगुलर इनकम नहीं है, तो वो बच्चों के ऊपर डिपेंड है, और बच्चे उनका ख्याल भी नहीं रखते हैं, उनको पैसे भी नहीं देते हैं। और इसीलिए 2007 में ये कायदा लाना पड़ा सरकार को, क्योंकि उन्होंने जब देखा कि बुजुर्गों को निग्लेक्ट किया जा रहा है, अबेंडन किया जा रहा है, उनको सम्मान से जीने से बदतर सी जिंदगी जीने के मजबूर किया जा रहा है, तब कहीं जाकर उनकी सुरक्षा के लिए ये 2007 का कायदा आया हुआ है। लेकिन ये कायदा बहुत अच्छा है, इसकी सबसे बड़ी बात यह है लेकिन कि बहुत सारे लोगों को इस कायदे के बारे में जानकारी नहीं है, ये कायदा पता ही नहीं है कि क्या है। मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007, ये बहुत अच्छा कायदा है। अगर एक लाइन में मैं कह दूं तो इस कायदे में कहा गया है कि बच्चों ने माँ बाप का ख्याल रखना ही है। एडवोकेट साहब ने बहुत अच्छी बातें बताई है, लेकिन इस कायदे में सेक्शन 23 और 24 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस कायदे में सीधा कहा गया कि अंडर सेक्शन 23 अगर बच्चे माँ बाप को निग्लेक्ट करते हैं और उनको जो चाहिए वो देते नहीं है, तो अगर माँ बाप ने उनके नाम कोई प्रॉपर्टी किया तो वो वापस भी मिल सकती है माँ बाप को। और सेक्शन 24 के अंतर्गत जो मेंटेनेंस माँ बाप को देना चाहिए बच्चों ने, वो अगर नहीं दिया तो उनको इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है। तो ये बहुत अच्छा कायदा है,
1: ठीक है। इसके और कानूनी पहलुओं पर जानकारी आगे आप सबसे लेंगे, लेकिन मेरे सहयोगी संजय शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय जी, आपसे जानना चाहूंगी कोर्ट का क्या रुख रहा है इस पूरे मामले को लेकर, और कैसे ये पूरा मामला आगे दूसरे केसेस के लिए एक नजीर बन सकता है?
3: कोर्ट का ये फैसला अपने आप में नजीर है, और कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि कायदा तो पहले से था, लेकिन कोर्ट ने बता दिया है कि अगर, चूंकि बहुत सारे मामले अभी हाल में भी आए हैं, हरियाणा का एक मामला आया जिसमें एक बुजुर्ग कभी उद्योगपति थे और अब उनकी 3 बेटियों में से कोई भी वहां आने को तैयार नहीं, उन बेटियों ने, जबकि वो समृद्ध परिवार की हैं, लेकिन उन लोगों ने सिर्फ वीडियो कॉल पर देखा और पंडित जी से पूछा कितना टाइम और लगेगा, हमें नहाना भी है। तो ऐसे लोग बताते हैं कि उनके अपने माँ बाप के प्रति क्या भावनाएं हैं, और कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर आप सेवा नहीं करेंगे तो आपको मेवा नहीं मिलेगा, और माँ बाप चाहें तो परेशान होकर कोर्ट आने के बजाय उन्हें अपनी संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं। उनके उनको अगर कोई संपत्ति उनके नाम की है तो वो अगर नाराज हैं, उनसे खुश नहीं है, उनके बर्ताव से अगर दुखी हैं, तो वो उनसे वापस भी ले सकते हैं।

0: जिसको मनाए उसको दे सकते हैं, बच्चों का कोई अधिकार नहीं होगा, बच्चे किसी भी तरह का दावा नहीं कर सकेंगे। और ये कहा है कि बुजुर्गों की देखभाल, उनका सम्मान, बढ़ती उम्र आपको ये लाइसेंस नहीं देती है, ये नहीं कहती अगर माँ बाप की उम्र बढ़ रही है तो उनका अपमान करो, उनकी देखभाल ना की जाए, उन्हें जानवरों जैसी जिंदगी बिताने पर मजबूर किया जाए। तो ये बहुत अपने आप में बेनजीर फैसला है। और ये फैसला देने वाले जस्टिस करोल, बस अब रिटायरमेंट तो उनका होना है, रिटायरमेंट के समय उन्होंने जो माइलस्टोन फैसले होते हैं उसमें वो फैसला दिया है। और जाहिर है कि इस फैसले की चर्चा लोगों तक पहुंचनी चाहिए, गांव गांव तक, खेड़ों तक पहुंचनी चाहिए, जहां पंच परमेश्वर जैसी कहानियां प्रेमचंद ने जो लिखी थी कहानी पंच परमेश्वर, उसमें भी यही था कि बुजुर्ग माँ बाप की सेवा, या फिर बूढ़ी काकी कहानी था, कहानी थी बूढ़ी काकी में भी यही था, जिसमें उनके भतीजों ने सारी चीज जमीन जायदाद उनकी ले ली थी और बुढ़ापे में उनकी सेवा नहीं कर रहे थे। तो ऐसी बहुत सारी नजीरें हैं जिसको कोर्ट ने अपने इस निर्णय में शामिल किया है, और ये अपने आप में काफी लैंडमार्क जजमेंट है जो ये बताता है कि आपका अधिकार है, बुढ़ापा होने के साथ आपका अपनी संपत्ति पर, अपनी चीजों विरासत पर अधिकार है, और आप तब तक उनके अगर बर्ताव से, बेटा बहू पोते पोतियां आपकी संपत्ति है, उनके बर्ताव से आप संतुष्ट नहीं है तो आप उनको कुछ भी मत दीजिए। अगर वो आपको जीवन में सजा दे रहे हैं तो आप भी उनको कोई मजा नहीं, सेवा करने वाले को ही मेवा मिले, बाकी किसी को नहीं।
1: ठीक है संजय जी, आप रहिए हमारे साथ। मैं परवेश जी, संजय जी की बात को आगे बढ़ाऊंगी। देखिए दो चीजें हैं, एक इमोशनल कनेक्ट भी बहुत हो जाता है क्योंकि आपका आप जागृति के फाउंडर भी हैं और ऐसे केसेस आप भी अक्सर देखते हैं। सर दो सवाल, पहली बात, एक तो इमोशनल कनेक्ट बहुत हो जाता है, कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी ये सोचते हैं कि अगर हम इनको नहीं देंगे तो किसको देंगे, और फिर उसके बाद वो कहते हैं ना कि पोते पोतियों से ज्यादा मोह होता है, कभी कभी उस मोह में भी पेरेंट्स दे देते हैं। और दूसरी बात, एक और एग्जाम्पल जो अभी संजय जी दे रहे थे कि तीन बेटियां, इतना बड़ा खानदान, लेकिन वहां पर अंतिम समय में मुखाग्नि देने के लिए कोई नहीं। आजकल तो कंसेप्ट ये हो गया है कि वीडियो कॉल पर ही सारा काम हो जाएगा, पैसे भिजवा दो और काम खत्म।
2: बिल्कुल नवजोत, आपने बिल्कुल सही कहा और आप हमेशा अच्छे मुद्दे उठाते हैं। दो सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है कि आज हमें ये देखना जरूरी होगा, जैसे अभी वकील साहब ने भी बताया और सभी लोग बता रहे हैं कि ये केस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो ये केस दिन ब दिन क्यों बढ़ रहे हैं, इसके ऊपर समाज को मंथन करना चाहिए। और जाहिर सी बात है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मूल से ज्यादा प्यारा ब्याज होता है। माँ बाप तो हमेशा बच्चों के साथ खड़े रहते हैं, उनके लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन बच्चे कब ऐसा हो रहा है? तो मुझे लगता है जो संस्कारों की जो कमी है वो इसमें बहुत बड़ा एक अहम रोल अदा करती है। दूसरी बात, जो पहले एक भरे पूरे और ज्वाइंट फैमिली होती थी, आज वो एकल परिवार हो रहे हैं। आज हमारे बच्चों को चाचा, ताऊ, बुआ, फूफा, मौसी, इनका नहीं पता चल रहा है। वो जो मूल्य होते हैं वो खत्म होते जा रहे हैं। मुझे लगता है इसके ऊपर सबसे ज्यादा काम करना पड़ेगा। और जैसा हम खुद एक आश्रम चलाते हैं फरीदाबाद में, ऐसे हजारों लोग मिलते हैं, रोडों पे पड़े हुए हैं, और उनको हम देखते हैं, जब सुनते हैं तो माँ बाप आज भी बेचारे रोते हैं, और अभी भी वो उन बच्चों को ये कहते नहीं है कि भाई इसको ये कर दो। लेकिन अब समाज जागरूक हो गया। अभी हमारे एक साथी हैं, उनका एक भाई वहां रहता है हिमाचल में, उसका भाई अपने माँ बाप को निकालने के लिए तैयार था, तो वो जागरूक थी, वो सीधा तुरंत हिमाचल पहुंची, कोर्ट पहुंची और पुलिस स्टेशन पहुंची, और तब वो जाके शायद मामला सुलझ गया। तो हमें सबसे ज्यादा लोगों को जागरूक करना होगा, और जब लोग जागरूक हो जाएंगे, माँ बाप जागरूक हो जाएंगे, और तब बच्चों को समझ में आएगा। इसके बावजूद भी माँ बाप के मन में, हृदय में अपने बच्चों के लिए हमेशा प्रेम होता है।
1: बिल्कुल। प्रोफेसर दीप्ति रंजन साहू भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आपसे प्रोफेसर साहब मैं जानना चाहूंगी, देखिए ये आज कोर्ट को इसमें इंटरवीन करना पड़ा, तमाम कानून, तमाम लॉज हमारे बुजुर्गों के लिए, पेरेंट्स के लिए बने हुए हैं, बावजूद इसके सोसाइटी कहाँ जा रही है, क्यों नहीं उसको फॉलो किया जाता? अभी बहुत अच्छी बात यहाँ प्रवेश जी भी कह रहे थे कि सोसाइटी को सोचना पड़ेगा क्योंकि ये मामले कम नहीं हो रहे। आप कानून बना देंगे, ठीक है किसी किसी मामले में उसको इम्प्लीमेंट, लेकिन जो अलग से हरासमेंट होती है इसमें, कई बार तो ऐसा होता है कि पेरेंट्स कहते हैं छोड़ देते हैं केस, कोई बात नहीं, हम इतना नहीं लड़ सकते, हम इतना कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काट सकते। उसका बड़ा कारण ये भी है कि उसके लिए भी तो आपको पैसा चाहिए ना।
3: देखिए, मेरी बात ये है कि मैंने सबको सुना और ये माननीय न्यायालय का जो भी आदेश है वो तो बड़ी सराहनीय है, लेकिन हम लोगों को इससे कानूनी पहलू के अलावा ये जो निर्णय है कानून का या जो भी कोर्ट का निर्णय है उससे आगे बढ़ना है और आगे उसको और थोड़ा सा गहरे तरीके से देखना पड़ेगा। वो है कि जो प्रॉब्लम ऑफ एजेड जिसको हम कहते हैं वृद्धावस्था की समस्या, वृद्धाओं का समस्या, परिवार में जो रूपांतरण बदल रहा है, परिवार का स्वरूप बदल रहा है उसको देखना पड़ेगा, अंतर पीढ़ी संबंधों को देखना पड़ेगा, एक डिग्निटी जो है सम्मान उसको भी देखना पड़ेगा, और ये जो परिदृश्य है बदलता हुआ परिदृश्य में मैं तो ये कहूंगा कि इस तरह की सिचुएशंस को यदि हम देखें तो इसमें एक लिटिगेशन की बात तो नहीं है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि सामाजिक विकास के संदर्भ में, आर्थिक प्रगति को समाज के संदर्भ में देखा जाए कि परिवार पहले की जो परिवार की स्वरूप हुआ करता था कि परिवार एक तरह से ऐसी होती थी जो शादी कहिए, नातेदारी कहिए, वो केवल दोनों व्यक्ति के शादी का, अभी अभी देखिए विवाह जो हो रहा है मैरिज बिटवीन टू इंडिविजुअल है, और मैरिज बिटवीन टू इंडिविजुअल ही, अभी मैरिज पहले क्या होता था, मैरिज बिटवीन टू फैमिली होता, दोनों परिवारों के बीच में एक संबंध बनता था। तो ये जो परिवार के जो स्ट्रेंथ है और वो स्ट्रेंथ अभी जो है उसको आज की तारीख में जो ये बदलाव हो रहा है और आर्थिक दृष्टि से इसको जजमेंट के रूप में देखा जा रहा है, ये गलत है, लेकिन आज अभी भी बहुत सारे परिवार के संस्कार, परिवार की समाजीकरण अभी भी बहुत सारे सकारात्मक दृष्टि है, अभी भी भारतीय समाज के जो मूल्य है वो अभी भी बरकरार है। इस तरह की घटनाएं आने लगी है, उस घटनाओं की आने के पीछे कहीं ना कहीं समाजीकरण की समस्या या कुछ प्रभाव की परेशानी होगी, और इस प्रभाव के आधार पर यदि देखा जाए जो डिग्निटी है, जो सम्मान है, जो एक रेस्पेक्ट होता है, और खासतौर पर ये जो ऐसी ऐसी घटनाएं है वो घटनाएं खासतौर पर भारतीय समाज के दृष्टिकोण में ये होना एक डिजायरेबल नहीं है, होना ही नहीं चाहिए, बल्कि ये हो रहा है तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है ये कि क्यों हो रहा है। तो इसको
1: दीप्ति जी सर आपने कहा, आप सबकी बात सुन रहे थे, बिल्कुल मैं सॉरी आपको टोक रही हूँ यहाँ पर, लेकिन हमारे साथ प्रकाश जी भी हैं, प्रवेश जी भी, और अक्सर इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर उनसे चर्चा होती रहती है, और वो ये बताते हैं, ये लाइव एग्जाम्पल आपके सामने है, जिनके पास संख्या भी है कि कितनी संख्या में इस वक्त बुजुर्गों की स्थिति ऐसी है, 15.3 करोड़ आबादी है हमारे देश में जो 60+ आबादी है, उसमें स्थिति क्या है, सरकार ने कानून बना दिया, सरकार आज इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर अपनी जजमेंट्स भी सुना रहा है, बावजूद इसके जो सोच है ना सर, सोच बदलती जा रही है
3: जी, लेकिन परिवार को 2007 में ये जो कानून है अभी 19 साल हो गया, उसके बावजूद भी हम लोगों को, पूरे समाज के लोगों को कानून के बारे में आइडिया भी है लेकिन उसको कदम उठाने में हिचकिचाते हैं। इसके पीछे भी कहीं ना कहीं कारण है कि मेरे परिवार की ये जो सम्मान है वो खत्म हो जाएगा, मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे, तो बहुत सारे ऐसे कारण है। तो इसलिए आज की तारीख में परिवारों में संयुक्त परिवार, परिवार की जो ढांचा है उसमें बहुत बदलाव आ रहा है, तो कानून का एक सपोर्ट तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इंडियन कल्चर और भारतीय संस्कृति और भारतीय परिवारों की जो यदि आप स्वरूप देखेंगे, अभी भी हमारा परिवार का जो नैतिकता और मूल्य है अभी भी खास तौर पे भारतीय समाज में, खास तौर पे समाज में ये है जो पश्चिमी समाज से अलग करता है।
1: ठीक है, लेकिन वही बात है कि हम उन मूल्यों पर कितना टिके हुए। एक बार संजय शर्मा, अगर संजय जी एक आंकड़ा देखे, मैं अभी के पास आ रही हूँ, एक आंकड़ा देखे तो अनुमान के मुताबिक 2050 तक भारत में बुजुर्गों की जो आबादी है वो 34% हो जाएगी। सर आज की तारीख में, संजय जी थोड़ा सा समझाइए, आज की तारीख में एक तरफ हम मूल्यों की बात करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारा समाज, हमारी संस्कृति, हमारे फैमिली वैल्यूज हमें जोड़ना सिखाते, अलग होना नहीं सिखाते हैं, बावजूद इसके बुजुर्गों के लिए, युवाओं के लिए, हर किसी के लिए कानून है, सुप्रीम कोर्ट इस तरह के फैसले भी दे रही जो नजीर बन रहे, लेकिन ये कितना हमारी सोसाइटी को स्ट्रांग बनाते हैं आगे जाके, अब हम ये कहें कि हम बिल्कुल संवेदनशील होती जा रही है सोसाइटी।
0: अब हमें इन सारी चीजों के बारे में फिर से देखने की जरूरत है, क्योंकि न्याय की देवी ने भी अपनी आंखों से पट्टी खोल ली हो तो अब लोगों को भी अपनी आंखों से मोह की पट्टी खोलनी पड़ेगी। धृतराष्ट्र और गांधारी बनने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ मूल्य समाज और पारिवारिक मूल्य बनाए रखने की जिम्मेदारी सिर्फ बुजुर्गों की है, बच्चों की नहीं है। बच्चे जब अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे तो सिर्फ माँ बाप ही अपनी जिम्मेदारी क्यों समझ, फिर तो माँ बाप को भी उन्हें छोड़ देना चाहिए कि हम अपनी सारी संपत्ति हम चाहे समाज को डोनेट कर देंगे लेकिन तुम्हें नहीं देंगे, क्योंकि तुम इस लायक नहीं हो कि हमारी संपत्ति को संभाल सको, हमारे खून पसीने की कमाई को, हमारे बुजुर्गों की अर्जित की हुई संपत्ति को संभालने लायक तुम्हारे कंधे नहीं है, इसलिए आप हवा खाइए और हमें हमारे हाल पे छोड़ दीजिए। ये सोच की जरूरत है। मूल्य का मतलब ये नहीं है कि वो चाहे आपको खाना ना दें, पीने ना दें, आपको आकर मुड़ कर देखे बिना फिर भी आप उनको अपनी संपत्ति, ऐसा नहीं है कि आप अगर नहीं देंगे तो कुदरत ने नियम नहीं बनाया कि आप नहीं देंगे तो फिर भी वो संपत्ति उन तक चली जाएगी, ऐसा नहीं है। डीएनए की तरह नहीं है कि आप नहीं चाहेंगे फिर भी आपके बच्चों में आपका डीएनए जाएगा ही जाएगा। ये आवश्यकता है कि समय के हिसाब से चीजों को समझने की, अपने बुढ़ापे को सिक्योर करने की, अपनी उम्र जितनी बची है उसको अच्छे से जीने की, ना कि मोह के पाश में बंधे रहने की। जो नाकारा संतानें हैं उनको उनका दंड मिलना चाहिए, आप जहां तक दे सकते हैं, बाकी कुदरत और भगवान तो ईश्वर को दंड देने के लिए है, लेकिन आपको अपने दिमाग के दरवाजे खिड़की रोशनदान खुले रखने चाहिए। हाँ। और जहां तक मोह की बात है, आदमी दीवारों से मोह कर सकता है, जानवरों से मोह कर सकता है और पराए लोगों से भी मोह कर सकता है अगर वो आपके लिए जान देने को तैयार है। कोई जरूरी नहीं कि जो आपके बायोलॉजिकल संतानें हैं उनके लिए जान झोंकी जाए, चाहे वो आपके लिए कुछ भी ना करें। तो इसके लिए आवश्यक है कि अपनी आंखों पर से पट्टी हटाई जाए और व्यावहारिक सोच के साथ आगे बढ़ा जाए। मैं ये नहीं कहता पारिवारिक मूल्य को खत्म कीजिए, लेकिन पारिवारिक मूल्य को बनाए रखने की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी नहीं है। आपने कम रेट पे टेंडर भर के ये सारा ठेका अपने नाम नहीं लिया है, इसलिए आपको सजग और सतर्क रहने की जरूरत है और उन सारे लोगों जिन्होंने आपके साथ खराब किया है उनके साथ आप भी जहां तक हो सके उनके साथ कोई कॉपरेट नहीं किया जाए, उनसे उनके साथ कोई भी मुरव्वत नहीं की जाए, उनको अपने हाल पर छोड़ दिया जाए।
1: बिल्कुल। आप परवेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, कितना मुश्किल होता है मुंह के धागे तोड़ना?
2: नहीं, मैं बिल्कुल, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मैं एक और बीच में ऐड करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि संजय जी या वकील साहब कोई भी जवाब दे कि आज के टाइम में हम ऐसे भी केस देखते हैं जहां पर हमारे खुद के शहर के आसपास में लोगों ने, हमने देखा है और हम वहां गए भी हैं, कि जहां पर हर एक पारिवारिक मुद्दे पर हमें ये नहीं देखना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ संतान की गलती है, तो इसके मुद्दे के ऊपर भी हमें बातचीत करनी चाहिए कि कोई विवाद हो गया तो हर विवाद में ये नहीं है कि आप संतान को बाहर कर है। अधिकार है पर, लेकिन अधिकार से पहले उनका कर्तव्य है। किसी ने कहा है कि अधिकार पाने से पहले अपना कर्तव्य निभाओ और फिर सीना ठोक के अपना हक पाओ।
1: ठीक है, एक बार प्रकाश जी इस पर कुछ कहना चाहेंगे? दोनों चीजें, देखिए दोनों बातें हैं, इस पर भी चर्चा करनी जरूरी हो जाती है। छोटा सा जवाब फिर आशुतोष जी मैं आपके पास आऊंगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे कि कानून क्या कहता है जब हम अपनी संपत्ति ट्रांसफर करते हैं, उसको लेकर कितना पारदर्शी है उस पे, लेकिन उससे पहले प्रकाश जी इसका जवाब रखिए।
4: ये बहुत अच्छी बात प्रवीण जी ने कही है। देखिए, जहां भारत देश की बात होती है वहां कहा जाता है कि भारत एकमात्र देश ऐसा है कि जहां पर बुजुर्गों का आदर और मान सम्मान किया जाता है, और आज इसी भारत देश में ऐसा कानून लाना पड़ रहा है, ये सबसे दुख की बात है। इसका कारण ये है कि समय के साथ सब कुछ बदल गया है और इस बदलते समय के साथ अभी बुजुर्गों को भी बदलना जरूरी हो गया है, उन्होंने भी समझना चाहिए कि अभी हमें भी बदलना है। देखिए, ये जो इंटरजनरेशनल बॉन्ड की हम बात करते हैं अंतर पीढ़ी के बारे में, तो इस युवा पीढ़ी को भी समझना बहुत जरूरी है, उनके भी इश्यूज क्या है क्या नहीं वो भी समझना आज बुजुर्गों के लिए जरूरी है। क्योंकि आपकी जानकारी के बता दूं कि लॉन्जिविटी बढ़ गई है, एवरेज स्पैन ऑफ लाइफ बढ़ गया है, आप ज्यादा साल तक जीने वाले हो। आपको देखना है आपके परिवार को, आपके बच्चों को, आपके मूल्यों को, क्योंकि आप संस्कृति के धरोहर हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करे, कोई भी आपको टेकन इनटू ग्रांटेड
1: नहीं ले। रिस्पेक्ट दोनों के लिए जरूरी है। बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है, मैं यहाँ पर एड ऑन कर दूं, जो हमने आंकड़ा अभी 2050 में दिया था उसमें एक चीज और है कि 80 साल तक के बुजुर्गों की संख्या बढ़ने वाली है। आशुतोष जी, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी। सर, दोनों पहलू हैं, दोनों को समझना है, अधिकार से पहले कर्तव्य को जान ले, हमने इसको लेकर भी चर्चा की, लेकिन सर थोड़ा सा आशुतोष जी समझाइए, अगर कोई पेरेंट अपने बच्चे को संपत्ति दे देता है उसके बाद बच्चे उनका ख्याल नहीं रखते हैं, क्या क्या कानून में ऐसे प्रावधान है कि उनसे वापस ली जा सकती, या फिर पेरेंट्स को किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए जब वो अपने बच्चों को प्रॉपर्टी दे रहे हैं या नहीं देनी चाहिए, विल कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है ऐसे में, पावर ऑफ अटॉर्नी कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है, सारे सर जितनी पॉइंटर्स है मैं चाहूंगी जरा यहाँ पे दर्शकों को समझाइए।
5: जी देखिए, अगर कोई भी पेरेंट गिफ्ट डीड अगर कर रहे हैं अपने बच्चों को गिफ्ट करके कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो चाहे तो उसमें अपने कंडीशंस को वो मेंशन कर सकते हैं, वो कंडीशंस लिख सकते हैं कि ये क्या कंडीशंस पे ये दिया जा रहा है, और जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होगी बच्चों की वो क्या क्या होगी, उनका ध्यान रखना, मेंटेनेंस करना, या मंथली उनका जो भी मेडिकल रिक्वायरमेंट है या फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है या जो भी रिक्वायरमेंट है उसको भी वो मेंशन कर सकते हैं। और अगर कंडीशनल गिफ्ट होता है तो वो वैसे भी कैंसिल किया जा सकता है, अदरवाइज जो ये जो प्रोविजन जो मैंने बताया, जो वेलफेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ सीनियर सिटीजन एक्ट जो है एंड पेरेंट्स का, उसमें भी प्रोविजन बनाया गया है सेक्शन 23 में जो है पूरे पावर्स दिए गए हैं कि अगर गिफ्ट किया जाता है प्रॉपर्टी को और अगर बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, मेंटेन नहीं करते हैं अपने पेरेंट को, तो वो गिफ्ट को कैंसिल भी किया जा सकता है, क्योंकि उसी एक्ट में जो सेक्शन 4 है उसमें जो है कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी को तय की गई है कि बच्चों की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पेरेंट जिनका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है उनकी मेंटेनेंस की जो है वो जिम्मेदारी उनकी बनाई गई है, चाहे वो प्रॉपर्टी गिफ्ट हो या ना हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट। और यहाँ तक कि ट्रिब्यूनल जो है वो 10,000 तक जो है मंथली मेंटेनेंस जो है वो ऑर्डर कर सकता है बच्चों को कि आप अपने पेरेंट को आपको देना होगा, आपको उनको घर भी देना होगा, आपको उनका पूरा ध्यान रखना होगा। तो ये पूरा प्रोविजन है। अगर पावर ऑफ अटॉर्नी भी अगर आप बनाते हैं तो पावर ऑफ अटॉर्नी जो है किसी के लाइफ टाइम तक ही वैलिड होता है, डेथ के बाद पावर ऑफ अटॉर्नी वैलिड नहीं होता है, वो अपने आप रिवोक हो जाता है अगर उसमें कोई कंसिडरेशन अमाउंट अगर मेंशन नहीं है तो उस पावर ऑफ अटॉर्नी में भी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे जा सकते हैं। एक जो मेरे जो मित्र हैं मिस्टर मलिक ने एक अच्छी बात को पुट अप किया था कि बहुत बार ऐसा भी होता है कि डिस्प्यूट अदर साइड से भी हो सकता है।
1: सर उस पर आशुतोष जी, उस पर मैं आऊंगी, बिल्कुल एक ब्रेक लेना है। संजय जी 30 सेकंड का ब्रेक है, तुरंत से वापस लौट रहे हैं। आशुतोष जी अपनी बात उस पर भी रखिएगा, चर्चा जारी, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: बुजुर्गों को सम्मान दिलाएगी संपत्ति, चर्चा इसी को लेकर हो रही थी। आशुतोष जी, एक पॉइंट आपका रह गया था, अपनी बात पूरी कर लीजिए सर, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ।
1: हाँ जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो अभी ये बात, जो प्रश्न जो उठा कि मोस्टली ये देखा गया है कि पेरेंट्स का जो है ध्यान नहीं दिया जाता, केयर नहीं किया जाता, ये तो मुद्दा है ही, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। और मुझे लगता है कि इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होना चाहिए वो होना चाहिए प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम। जो हमारे बच्चे हैं उनको पढ़ाया तो जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जो पहले जो एक सोशल वर्क या जो एक वैल्यूज जो सिखाए जाते थे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, मुझे लगता है उसको थोड़ा सा जो है ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, जिसमें जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपने रोल को वो समझें कि उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं अपने फैमिली की तरफ, अपने पेरेंट्स की तरफ, और ऑब्वियसली कंट्री की तरफ जो हम बताते हैं वो तो है ही, उसके साथ साथ जो फैमिली को उनको कैसे किस तरह से ध्यान रखना चाहिए इस पे भी काफी जो है फोकस होना चाहिए, सोशल वर्क और बाकी इस तरीके के एक्टिविटीज पे। इसके अलावा जो अभी हमने ये देखा कि अगर ऐसा हो कि भाई जो है बच्चे ध्यान रख रहे हैं लेकिन पेरेंट चूंकि एक जनरेशन गैप है वो उस चीज को मैच नहीं कर पा रहे हैं, या उसके वजह से डिस्प्यूट हो रहा है, या क्योंकि उनके भी बच्चे हैं, उनके पोते हैं, तो यहाँ पे दो दो तीन तीन जनरेशन अगर एक साथ रह रहे हैं तो हो सकता है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो या क्लैरिटी नहीं हो पाए एक साथ रहने में, कुछ दिक्कतें आए। तो इसमें जो है हमारा यही सेम जो कानून है उसमें इसका भी प्रोविजन है, सेक्शन 6 जो है उसका सब सेक्शन 6 में, कि मेडिएटर को भी अपॉइंट किया जा सकता है, और एक मेडिएटर जो है ट्रिब्यूनल अपॉइंट करेगा, और वो मीडिएटर दोनों के जो इश्यूज हैं उसको देखते हुए दोनों में एक सलाह सुलह कराने की भी कोशिश करेगा। तो ये इस तरीके का भी इसमें इसी सेम कानून जो
0: है। आशुतोष जी, मैं लौटती हूँ आपके पास, अब संजय जी आपके पास आऊंगी। अब सिक्के के दूसरे पहलू को सर समझते हैं, जेनरेशन गैप है। बहुत बार ऐसा होता है कि युवाओं के लिए भी, क्योंकि बच्चों को भी संभालना, बुजुर्गों को भी संभालना, और उस बीच बहुत बार कम्युनिकेशन गैप भी हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, बच्चों की तरफ ज्यादा ध्यान देना है, हफ्ता 15 दिन बीत जाते हैं माँ बाप से बात किए हुए। ये एक कम्युनिकेशन गैप है जहां पर पेरेंट्स भी खुद को इग्नोर महसूस करते हैं, क्योंकि वो संवाद बहुत जरूरी है अगर हमें एक साथ रहना है तो। ये कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है सर? संजय जी,
2: ये बिल्कुल संस्कारों की बात है कि आपने बच्चों को कैसे संस्कार दिए हैं, और दूसरा ये कि बच्चे किस माहौल में पले बढ़ेंगे। ये देखा गया है कि आजकल ये ज्यादा प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है जिसमें मोबाइल ने लोगों को, ये सही है कि मोबाइल संस्कृति ने दूर के लोगों को नजदीक कर दिया है, लेकिन ये भी सही है कि नजदीक बैठे लोगों को दूर कर दिया है। लोग अपनी अपनी दुनिया में, अपनी उंगलियों की दुनिया में मस्त रहते हैं और बुजुर्ग उपेक्षित महसूस करते हैं ऐसे में। तो जरूरी है कि हम अपने बच्चों को जैसा सिखाएंगे, हम अपने बुजुर्गों के साथ जैसा करेंगे बर्ताव, वैसा ही बच्चे हमसे सीखेंगे। अगर हमने अपने बुजुर्गों को वृद्ध आश्रम में छोड़ दिया है तो आपका बेटा भी ये अभी से ढूंढना शुरू कर देगा कि जब माँ बाप 60 के पार कर जाएंगे तो उनको कौन से वृद्धाश्रम में छोड़ना है, कहाँ उनको भेजना है। तो ये सही बात है, और ये कानून अपने आप में जो ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का वो अपने आप में बहुत सारी चीजें बताता है, और उसे देखते हुए ये आवश्यक है कि अपने संस्कारों को, बच्चों को ऐसे संस्कार दिए जाएं ताकि वो बुजुर्गों को के साथ एडजस्ट कर पाएं, और बुजुर्गों के लिए भी आवश्यक है कि वो बच्चों की जरूरतों को, उनकी भावनाओं को समझें और उस हिसाब से एक्ट करें, ताकि दोनों तरफ से अगर तालमेल बढ़िया रहेगा तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन मुश्किल तब आती है जब किसी भी बुजुर्ग का बच्चा अपनी बुद्धि के अलावा किसी दूसरे की बुद्धि से चलने लगता है। वो बुद्धि रिश्तेदारों की भी हो सकती है, ससुराल वालों की हो सकती है, बीवी की हो सकती है, किसी और की भी, दोस्त की भी हो सकती है। तो ऐसे में अपने दिमाग के दरवाजे, खिड़की, रोशनदान खुले रखने चाहिए। उसे उस बुजुर्ग के दंपति के बच्चों को ये सोचना चाहिए कि ये हमारे माँ बाप है, कोई दुनिया के नहीं है, उनकी सेवा करना हमारा काम है। इसमें ये भी है कि एक माँ बाप मिलके और 5 बच्चों को पाल लेते हैं, लेकिन 5 बच्चे मिलके एक बूढ़े माँ बाप को नहीं पाल पाते, क्योंकि कहावत ये भी है, क्योंकि तब तक जब तक वो माँ बाप बुजुर्ग होते हैं तब तक वो बच्चे भी माँ बाप बन चुके होते हैं, और फिर वो अपने 2-3 बच्चों को पालने की जुगत
0: अपनी दुनिया में मस्त हो जाते हैं। बिल्कुल है।
2: लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो सैकड़ों रास्ते हैं, नहीं करना चाहते हैं तो हजारों बहाने हैं।
0: बिल्कुल परवेज जी, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी सर। एग्जाम्पल सोसाइटी में ऐसे भी हैं, स्पेशली मैं खास तौर पर अगर मैं मेट्रो सिटीज की बात करूं, बच्चा ठीक ठाक अर्न कर रहा है, कई बार पेरेंट्स भी उस ब्लैकमेलिंग सिचुएशन में आ जाते हैं, और ऐसे बहुत सारे केसेस आपने भी देखे होंगे और हमारे आसपास भी देखे गए हैं ऐसे केसेस, तो उस केस में फिर क्या किया जाए? पेरेंट्स को भी तो अंडरस्टैंड करना चाहिए बच्चों को।
3: बिल्कुल, और मैं अभी एक जगह किसी कॉलेज में गया था तो वहां के बड़े प्रोफेसर ने कहा कि आज की जो जनरेशन है, जेंजीज इनको बोल रहे हैं और पीछे पीछे जेन अल्फा भी आ रही है, उनको समझाना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो आपसे सवाल करते हैं और जब आपको सवाल करते हैं आपके पास उनका जब जवाब नहीं होता है तो वो कन्फ्यूज हो जाते हैं, फिर वो सवाल जो अभी संजय जी कह रहे थे कि फिर वो बाहर पूछे जाते हैं तो उनको उनके दिमाग में कौन क्या भरता है ये सबसे बड़ी बात है। तो वो जो तालमेल होता है, जो अंडरस्टैंडिंग होती है, जीवन को कैसे जिया जाए, कैसे बैलेंसिंग करी जाए, सबसे बड़ी बात ये है। आज के दौर में हम दुनिया भर की पढ़ाई करते हैं लेकिन सबसे बड़ी बात अगर बच्चे को शुरुआत से ये सिखाया जाए कि आपको कैसे सामंजस्य बनाना है, कैसे एक मिडल मार्ग अपनाना है, कैसे आगे बढ़ना है, ये बहुत जरूरी है। एक बच्चा जो 16, 17, 18 साल का है आज वो सब कुछ जानता है, सब कुछ देखता है, और एक बुजुर्ग जो 60, 70, 80 साल का हो गया, उन दोनों के बीच में तालमेल हो तो हो सकता है, लेकिन जो उसके जो बच्चे हैं वो जो 50 साल का हो गया है और बुजुर्ग उसके 70-80 साल के हो गए हैं और उसके पास जो समय नहीं है, तो आज के डेट टाइम में माँ बाप को अपने बच्चों को उनके दादा दादी के पास ज्यादा से ज्यादा घुलना मिलना चाहिए, और ऐसे ही जो दादा दादी हैं उनको अपने पोते पोतियों के साथ ज्यादा से ज्यादा घुलना मिलकर रखना चाहिए। मुझे लगता है यही सही रास्ता होगा। और दूसरा, कानून जो होता है वो घर बचा सकता है लेकिन परिवार को,
0: बहुत इंपॉर्टेंट बात, परिवार को नहीं बचा सकता। संजय जी, ऐसा कोई केस आपके पास आया है कि पेरेंट्स ब्लैकमेलिंग में उतर आए हों और बच्चा सीधे तौर पर कह दे कि मैं ठीक ठाक कमा रहा हूँ, छोड़िए हमें आपकी प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं है?
2: ऐसे मामले बहुत दुर्लभ होते हैं, ऐसे मामले तो नहीं आते हैं। अधिकतर मामले में तो ये आता है कि बच्चे माँ बाप पर प्रेशर डालते हैं कि हमारे नाम संपत्ति कर दो या वो खेत पड़ा है उसे बेच दो और हमारे को घर दिला दो।
3: कोई बिरला बच्चा हो गया ऐसा। हैं।
2: इसमें इसमें मुझे तो कोर्ट में भी अभी तक ऐसा कोई मामला नहीं। अधिकतर तो बुजुर्ग माँ बाप आते हैं कि हमारे घर पे कब्जा बच्चों ने कर रखा है और हमारे को बिल्कुल साइड कर रखा है। एक बुजुर्ग महिला तो ऐसी थी जो हम लोग खुद ही कवर करने गए थे, लगभग 20 साल पहले की बात है, जिसमें वो फुटपाथ पर थी जबकि वो अच्छा सरकारी अधिकारी रही है, लेकिन वो फुटपाथ पर थी और पुलिस ने फिर जाकर उसके बच्चों से घर खाली करवाया और उनको बाहर किया और बुजुर्ग महिला को वहां पर उनके घर का मालिक बनाया।
0: ठीक है, प्रकाश जी, आपकी नजर में ऐसे मामले हैं?
4: बहुत सारे मामले हैं जहां पर देखा गया है, क्योंकि एक केस में जस्ट रिसेंटली बताऊंगा मैं, हमारे महाराष्ट्र में हुई थी बात, जहां केस कोर्ट ने निर्णय दिया, ट्रिब्यूनल ने दिया, सब कुछ हुआ है, पुलिस के पास गया, मंत्रालय तक गया, मिनिस्टर तक, तब उन्होंने इंटरवीन किया और वो मकान खाली करवाया और मैं खुद पूरा दिन वहां पर खड़ा था एज अ सोशल वर्कर, वो पूरा मैंने वीडियो लिया ताकि बच्चे परेशान न करे माँ बाप को और कोई दिक्कत ना आए, और पुलिस के हाथों से हमने मकान खाली करवा के उस बुजुर्ग माँ बाप को उनका हक दिलवा दिया है। ये बिल्कुल सही है। देखिए, ये सब बातें हो रही है, दोनों पीढ़ियों में एक प्रकार का जुझाव निर्माण हो गया है, लेकिन एक बात मैं खासतौर से आगे कहना चाहूंगा कि जहां माँ बाप बच्चों को हमेशा एजुकेशन की बात कहते हैं, पढ़ाई की बात करते हैं, अच्छा एजुकेशन, लेकिन वो वैल्यू एजुकेशन भूल ही जाते हैं, जो बच्चों को हम देना चाहते हैं वो देते नहीं है, और जब हम बुजुर्ग होते हैं तब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे ये वैल्यू एजुकेशन को समझाए। ये कैसे चल गए? देना हमारा काम है, ये पता ना उनके लिए हमारा बहुत जरूरी है। जैसे अभी प्रवेश भी बता रहे थे कि जेन जी और जेन अल्फा जो अभी है उनसे संवाद करना, उनसे बात करना, उनके सवालों के जवाब देना बहुत जरूरी है। आज मैं आपको बताऊं कि अभी प्रवेश जी हो गए, संजय जी, हम सब लोग जो है अब हम ऐसी पीढ़ी में हैं कि जहां अभी हम बुजुर्ग के कहलाने के इसमें आ गए हैं, हमें पता है कि जब हमारे बचपन में हमारे माँ बाप कहते थे कि शाम को 7 बजे के पहले घर आना है तो हमने कभी सवाल नहीं किए, हम तो घर आते थे, और आज अगर हम बच्चों को कहते हैं कि 7 बजे के पहले घर आना है, ये करना है, तो 10 सवाल करते हैं, तो लेकिन क्या हम उनका जवाब दे पाते हैं उनको कि क्यों आना है, क्या कारण है?
0: चलिए आशुतोष जी, अब आपके पास आती हूँ, अब आपके पास आऊंगी सर, वापस कानूनी पहलुओं को थोड़ा और समझाइए। अगर गिफ्ट डीड हो गई है, विल बन गई है, तो क्या उसको बदला जा सकता है और ये अधिकार किसके पास है?
1: देखिए, अगर
0: और सर एक और लाइन ऐड कर देती हूँ, उसमें क्या हम पोर्शंस बना सकते हैं, इतने परसेंट उनका इतने परसेंट, क्या ये इसको लेकर क्या प्रावधान है, समझाइए।
1: जी जी, आप परसेंटेज को बिल्कुल लिख सकते हैं, अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं तो क्या परसेंटेज होगा, या आप पूरा प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं या उसका एक सर्टेन परसेंट आप दे रहे हैं कि भाई आप 50% 60% या जो भी आपको लगता है आप अपने पास रिटेन करके बाकी का परसेंटेज आप दे रहे हैं, और आप उसमें कंडीशन लिख रहे हैं कि ये आप क्यों दे रहे हैं और इसमें उसको क्या क्या करना है। ऐसे बहुत सारे पुराने भी केस हैं जहां पर, ये तो फैमिली की बात हो गई, अदरवाइज भी जैसे किसी ने जमीन दिया किसी को गिफ्ट करते हुए और ये बोला कि आपको आप यहाँ पे स्कूल बनाएंगे, बच्चों के बेटरमेंट के लिए बनाएंगे, और वो जमीन उन्होंने पर्सनल यूज में जो है उसको लगाया, तो बाद में कोर्ट ने जो है इसको कैंसिल किया ये इस गिफ्ट को, और बोला कि नहीं ये आपको कंडीशन पे दिया गया था लेकिन चूंकि आपने कंडीशन फुलफिल नहीं किया तो ये गिफ्ट जो है वो वैलिड नहीं है। और जो परसेंटेज की आपने बात की वो बिल्कुल परसेंटेज बिल्कुल मेंशन किया जा सकता है, और जो विल होता है विल को बहुत बार चेंजेस किया जा सकता है। अगर आज किसी पेरेंट को लगता है कि मैं ये प्रॉपर्टी इसका ये शेयर मैं इस बच्चे को दूंगा, ये या वो बच्चा मेरा ज्यादा ध्यान रखता है तो मैं इसका जो है ज्यादा शेयर उसको दूंगा, कल होकर के उसके माइंड में कुछ चेंज लगता है तो वो चेंज कितने बार भी किया जा सकता है। और जो लास्ट विल जो है डेथ के पहले उसी विल को कंसिडर किया जा सकता है, किया जाता है, तो यही कानून है। और इसके अलावा जो हमने बताया आपको कि जो सीनियर सिटीजन एक्ट है उसमें भी बहुत तरीके के प्रोविजंस इस तरीके के बनाए गए हैं, और जो सेक्शन 1920 में स्टेट गवर्नमेंट्स को भी जो है डायरेक्शंस दिया है कि आपको सफिशिएंट जो है सीनियर सिटीजन के लिए आपको शेल्टर्स जो है बनाने हैं, उनका ध्यान रखना है, उनको कहीं दिक्कत नहीं आनी चाहिए, उनके लिए मेडिकल फैसिलिटीज होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बुजुर्ग होंगे 60 ईयर प्लस जो सीनियर सिटीजन है जिनके या तो बच्चे नहीं हैं या वो उनका ध्यान नहीं रख रहे हैं या वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो इनके लिए भी प्रोविजन जो है बनाया गया है उसी कानून के अंदर। तो इस तरह से जो है मुझे लगता है कानून, जैसे सबने बोला कि वो एक ऐसे समय में मदद कर सकता है कि जहां जब कोई रास्ता बचता नहीं है, लेकिन जहां तक फैमिली का सवाल है तो देखिए उसमें सपोर्ट जो है वैल्यूज से ही आएंगे, और मुझे लगता है फैमिली वैल्यूज जो है वो बच्चों को सिखाना बहुत जरूरी है बचपन से, चाहे वो घर पे सिखाया जाए या साथ में स्कूल के सिस्टम में उसको अडॉप्ट किया जाए, उनके एजुकेशन में उसको लाया जाए और उनको बताया जाए कि उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। सिर्फ डिग्री लेना या पढ़ाई करके सिर्फ जॉब कर लेना, बड़ा कोई ओहदा ले लेना, सिर्फ यही नहीं है पढ़ाई का मतलब, उनकी जो जिम्मेदारियां हैं वो क्या क्या जिम्मेदारियां हैं उसको भी बताना मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है,
0: बहुत जरूरी है। परवेज जी, हाँ,
1: सेंसिबल बने,
0: ठीक है। परवेज जी, आपको इंक्लूड करना चाहूंगी, अब ये सारी चीजें आप भी, आप लोग सब कह रहे हैं कि ये तमाम जो मॉरल एजुकेशन है, फैमिली वैल्यूज है, वो एटलीस्ट उसको एक सब्जेक्ट के तौर पर स्कूलों में पढ़ाया जाए। सर वो तो एक पढ़ा दिया, एक हॉलीडे, एक होमवर्क हो गया, एक क्लासवर्क वाले तक ही सीमित रह जाएगा, लेकिन क्या इसको पढ़ाना जरूरी है, वाकई बच्चों को समझाना जरूरी है? बच्चा घर आएगा मोबाइल पे लग जाएगा और माँ बाप कहेंगे कि नहीं आपके दूसरे सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उस पर ज्यादा ध्यान दीजिए, फिर से बच्चा फोन में। सर ये कितना बड़ा फैक्टर है कि बच्चे डिटैच होते जा रहे हैं? आपने जेन अल्फा की बात की, जेन अल्फा स्पेसिफिकली अगर मैं कहूंगी, जेन मिलेनियम तो उनको तो फिर भी थोड़ा सा पता है क्योंकि तब फोन नहीं थे, जेन अल्फा के पास उनकी तो जिंदगी सुबह शुरू ही फोन से होती है।
3: तो यही सबसे बड़ी बात है कि आज के युग में जो मोबाइल है वो बिल्कुल बचपन को खा रहा है, और इसमें कहीं ना कहीं माँ बाप का सबसे बड़ा रोल होता है। और आज की डेट में मुझे ये कहते हुए बिल्कुल वो नहीं लगता कि आज की डेट में जो माँ बाप दोनों जॉब पे जाते हैं, बच्चे के साथ माँ बाप भी तालमेल नहीं बैठा पाते हैं, तो वो बहुत जरूरी है। तो जब तक माँ बाप खुद अपने बच्चों के साथ बातचीत नहीं करेंगे, शाम को एक साथ डिनर नहीं करेंगे, एक साथ कहीं घूमने नहीं जाएंगे, समय नहीं बिताएंगे, मैं आपको बताऊं कि आज भी ऐसे माँ बाप मिलते हैं जो ये कहते हैं कि यार तुम्हारे उसके बच्चे बहुत अच्छे निकले, क्या बात हो गई कि उसके बच्चे के कम नंबर आते थे, आज वो अपने माँ बाप के साथ रहता है, हमारे बच्चों के ज्यादा हमने पढ़ा दिया और आज वो विदेश में और हम अकेले हैं, और जैसा जो मोबाइल पे ही अंतिम संस्कार होते हैं। तो हमें अब सिर्फ और सिर्फ पैसे के पीछे जो दुनिया भाग रही है उस चीज को हमें बहुत ध्यान से अब देखने का समय आ गया, जो लोग नहीं देखेंगे वो आखिर में ऐसे। और दूसरा, माँ बाप भी अब सिर्फ 30 सेकंड की, अब हाँ वो समझ गए हैं, अभी भी ऐसे लोग हैं जो अपना भविष्य देख रहे हैं कि हमने अब अपना भविष्य वृद्धाश्रम में ही गुजारना है, तो वो अभी पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और अभी से बुक करने लग गए हैं एक अच्छा वृद्धाश्रम को।
0: आजकल तो सर ऐसे बहुत बड़े बड़े विलास भी बन रहे हैं, रिटायरमेंट विलास जिनको कहा जाता है। जी संजय जी,
2: आज सुप्रीम कोर्ट में एक मामला आया जिसमें कोर्ट ने ये माना है कि मोबाइल ने बच्चों की जिंदगी खराब कर दी है, और मोबाइल और बाकी जो इक्विपमेंट्स हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं, उसकी वजह से स्कूल जाने वाले बच्चे खेल और शारीरिक गतिविधियों पर ध्यान नहीं दे पा रहे। कोर्ट ने फिर इस पर ध्यान दिलाया है कि स्कूलों को ऐसा करिकुलम डिजाइन करना चाहिए जिसमें कि कम से कम 45 मिनट से एक घंटा बच्चे फुल फिजिकल एक्टिविटीज में रहें, और मोबाइल और इनकी वजह से उनका दिमाग बंद हो रहा है, सोचने समझने की तर्क करने की शक्ति खत्म हो रही है, जो मोबाइल बताता है वही उनको समझ में आता है, तो ऐसे में जरूरी है कि उनके लिए फिजिकल एक्टिविटी दुरुस्त करनी चाहिए। तो उधर तो कोर्ट ने फिजिकल एक्टिविटीज की बात की है, इसके साथ ही ये है कि उनको जो प्रवेश जी ने बोला कि ये आवश्यक है, सुरेंद्र शर्मा जी ने जो हास्य कवि हैं लेकिन उन्होंने अपनी कविता में बहुत गंभीर बात कही है कि मेरा बेटा 45% नंबर लेके आता था लेकिन आज मुझे खुशी है कि मैं अपने बेटे के साथ रात का खाना अपने बेटे के साथ खाता हूं। और ऐसा ये भी बिल्कुल कड़वा सच है कि जो लोग अपने बच्चों के एजुकेशन और विदेश में शिक्षा को लेकर परेशान रहते हैं, बाद में उनके बच्चे सिर्फ कागजों पर ही रह जाते हैं, वीडियो कॉल पर ही अंतिम संस्कार देखते हैं, फिर उनको न माँ बाप की पड़ी रहती है, सिर्फ उनको अपनी विलासिता अपने फ्यूचर की पड़ी रहती है। तो ऐसे में माँ बाप के लिए या तो माँ बाप वहां पहुंच जाए और अगर बच्चे इस लायक हैं कि वो उनको रख सकें तो बुढ़ापा उनका सुधर जाता है, नहीं तो फिर वैसी स्थिति होती है जैसे फरीदाबाद के उस वृद्धाश्रम की थी जहां तीनों बच्चियां वीडियो कॉल पर उनकी बेटियां देखती रही, उन्होंने 5,000 रुपए भेज दिए और वृद्धाश्रम के मैनेजर से कह दिया इनमें आप जैसा संस्कार होता है इनका संस्कार कर दो और हमारे को मुक्ति दो। मुक्ति उस आत्मा की नहीं, वो अपनी मुक्ति चाह रही थी और वो 13वीं पे भी नहीं आई, उन्होंने कहा कि जो भी करना कराना है वही कर लो, हमारा कुछ नहीं। ऐसे लोग तो ऐसा लगता है कि माँ बाप के मरते ही कंकड़ फेंक देते हैं, आप आपकी तरफ हम हमारी तरफ, आपका हमारा अब कोई लेना देना नहीं, इस जन्म में बस यही तक साथ था।
0: ठीक है, लेकिन बड़ी बात यहाँ पर संजय जी ये भी है ना कि कोर्ट अगर इस ओर ध्यान दे रहा है, कोर्ट कह रहा है कि स्कूलों में एटलीस्ट 45 मिनट का एक पीरियड ऐसा होना चाहिए, तो उसमें फिर एजुकेशन सिस्टम को भी तो बदलने की जरूरत है ना, उसमें भी बहुत सारे बदलाव आएंगे, बच्चों पर प्रेशर कम करना होगा, बच्चों पर पढ़ाई का प्रेशर कम करना होगा, पेरेंट्स को ये सोचना होगा कि हमारे लिए उनके नंबर ज्यादा जरूरी हैं या फिर उनकी वैल्यूज ज्यादा जरूरी हैं, इसको लेकर भी बच्चों को सोचना होगा। प्रकाश जी एक आखिरी कमेंट आपसे भी।
4: मैं ये बार बार मैं ये बात सुन रहा हूँ कि बच्चों के ऊपर संस्कार होनी चाहिए, वो क्लास आपकी जानकारी के लिए बता दूं, स्टेट पॉलिसी ऑफ ओल्डर पर्सन ज्येष्ठ नागरिक ये धोरण जो है वो पूरे स्टेट का भी है और अपने देश का भी है, उसमें ये क्लियर कहा गया है कि हर एक स्कूल में एक पीरियड कंपलसरी होना चाहिए जहाँ बच्चों को इस प्रकार की बात बतानी चाहिए, दैट इज नंबर वन। नंबर टू, मेरे अनुभव से मैं बता रहा हूँ कि मैंने कई स्कूलों में प्रोग्राम किए हैं, आज 6 से 7 लाख बच्चों को मैंने वैल्यू एजुकेशन के तहत एड्रेस किया है और हमने हर एक स्कूल को कहा कि भाई आप हर साल कुछ हम प्रोग्राम करते हो, सिर्फ एक प्रोग्राम कीजिए हर साल, एक विजिट ओल्ड एज होम को कीजिए, हाँ। बच्चों को पता चले और ये स्कूलों ने
3: अभी
4: किया है और आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने खुद मेरी आंखों से देखा है जिन बच्चों के दादा दादी नहीं है
0: उन्होंने, बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, वक्त अभी इतना ही है, वक्त इतना ही है, मेरा तो ये मानना है कि ये एक 45 मिनट के पीरियड से नहीं होगा, इसे हमें अपनी मसल मेमोरी में डालना होगा कि हमारे लिए हमारे फैमिली वैल्यूज कितने इंपॉर्टेंट है, ये हर दिन की पूरी दिनचर्या में हमें इसका इसको ढालना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया खास मेहमानों का हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप रहिए हमारे साथ।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: है सावन के अंतिम सोमवार का महत्व, सावन के अंतिम सोमवार का क्या है पूजा विधान, और सावन के अंतिम सोमवार पर मिलेंगे कौन से वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे,
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: आइए बात करते हैं ऑरेंज सिटी नागपुर की, जहां के युवाओं ने ऐसा काम किया है जिसने शहर का नाम रिकॉर्ड में शुमार कर दिया। नागपुर में 4,000 से ज्यादा युवाओं ने एक साथ ढोल ताशे बजाकर अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। ये रिकॉर्ड बना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के जयंती के साथ संवाद कार्यक्रम में। इस अनोखे कार्यक्रम में करीब 585 ध्वजधारकों ने अपने अपने दल का नेतृत्व किया। इस कार्यक्रम में युवाओं के साथ साथ युवतियां भी बढ़ चढ़ कर शामिल हुई। इस कार्यक्रम के दौरान पूरे परिसर में जबरदस्त ऊर्जा देखने को मिली। अनोखा कार्यक्रम एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया गया है। एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अधिकारियों ने आयोजकों को इसका सर्टिफिकेट दे दिया।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: क्या है सावन के अंतिम सोमवार का महत्व? सावन के अंतिम सोमवार का क्या है पूजा विधान? और सावन के अंतिम सोमवार पर मिलेंगे कौन से वरदान? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
4: मुंबई में देखने लगी गणपति उत्सव की रौनक, पंडालों में पहुंच रही है गणपति प्रतिमाएं, काली चौकी के महाराजा के स्वागत में उमड़े हजारों श्रद्धालु, ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत। अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर बदली गई धर्मध्वजा, वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूरे विधि विधान के साथ निभाई गई परंपरा, नई ध्वजा पर सूर्य ओम और कोविदार वृक्ष के चिन्ह। मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में पारंपरिक काली घटा आयोजन, काले वस्त्रों, फूलों और आकर्षक लाइटों से सजाया गया मंदिर, सावन का मनमोहक नजारा, ठाकुर जी के दर्शन कर गदगद हुए भक्त। जन्माष्टमी को लेकर स्कॉन मंदिर में तैयारियां तेज, दिल्ली के स्कॉन मंदिर में कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर खास तैयारियां। इसलिए जैसलमेर के पुरोहितेश्वर महादेव मंदिर में भगवान भोलेनाथ का महारुद्राभिषेक, 121 रुद्रपाठी पंडितों ने किया सामूहिक रुद्री पाठ, मंत्रोच्चार से गुंजायमान परिसर। नागपुर में 4000 से ज्यादा युवक युवतियों ने ढोल ताशा बजाकर बनाया अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ नागपुर का नाम। रक्षाबंधन पर पर्यावरण संरक्षण का संदेश, गाय के गोबर से बनाई जा रही है राखियां और अन्य सजावटी सामान, गया के बाजारों में भारी रौनक।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उस।
4: नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वैभव राशुका, अच्छी और सच्ची खबरों में आपका स्वागत है। और सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सावन के आखिरी सोमवार की, कल सावन का आखिरी सोमवार है जिसको लेकर भक्तों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है, शिवालयों में खास तैयारियां की जा रही हैं। सावन शिव का महीना है और शिव को प्रिय है सोमवार का दिन, ऐसे में आखिरी सोमवार मनोकामना पूर्ति का भी दिन है, शिवलिंग पर जलाभिषेक और पूजा पाठ से लेकर भोलेनाथ को आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है, वरदान पाया जा सकता है।
5: का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है, अगर ये सोमवार सावन महीने का है उसका महत्व और भी बढ़ जाता है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सावन के सोमवार का खास महत्व बताया गया है। सावन का महीना भी अब जल्द ही समाप्त होने वाला है और 24 अगस्त को सावन का आखिरी सोमवार है, ऐसे में शिव भक्तों के पास भी इस सावन के महीने में आखिरी मौका है भोलेनाथ को प्रसन्न करने का। सावन के आखिरी सोमवार को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। अगर आपने सावन के किसी भी सोमवार को पूजा नहीं की है, व्रत नहीं रखा है, तो इस सोमवार को पूजा करने और व्रत करने से भी आपकी मनोकामनाएं पूरी हो सकती है। सावन के आखिरी सोमवार पर एक साथ कई शुभ योग संयोग भी बन रहे हैं। सावन के आखिरी सोमवार पर इस बार प्रीति योग, आयुष्मान योग, पवित्रता एकादशी वैष्णव, हंस राज योग, बुद्धादित्य राज योग, क्योंकि सिंह राशि में सूर्य बुध की युति बनेगी। अगर आप भी सावन के पहले 3 सोमवार का व्रत नहीं कर पाए हैं तो कोई बात नहीं, आप इस सोमवार का व्रत करेंगे तो पुण्य की प्राप्ति होगी। सावन के आखिरी सोमवार पर सुबह सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहने, इसके बाद भगवान शिव का ध्यान कर व्रत या पूजा का संकल्प ले, शिवालय जाएं और शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और 11 या 21 बेलपत्र अर्पित करें। एक एक बेलपत्र अर्पित करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें। इसके बाद घी का दीपक जलाकर आरती करें और इस दिन जरूरतमंद लोगों की मदद करें और दान भी दें, जैसे वस्त्र, अन्न, फल आदि चीजों का दान आप कर सकते हैं। शिव चालीसा या रुद्राष्टक का पाठ करें। सावन के आखिरी सोमवार पर रुद्रा अभिषेक करने की भी विशेष मान्यता है। कहा जाता है कि इस दिन पूजा पाठ जप तप करने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
4: अब बात करेंगे मथुरा की। देखिए, यहाँ के बांके बिहारी मंदिर में काली घटा उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल होने और बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। दरअसल ऐसी मान्यता है कि सावन में प्रभु को प्रकृति का दर्शन कराने के लिए इस उत्सव का आयोजन किया जाता है। मथुरा ब्रजमंडल में सावन मास में घटाओं का अपना अलग ही महत्व है। कृष्ण की नगरी मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में काली घटा का भव्य आयोजन किया गया, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। दरअसल ठाकुर जी को सावन महीने में प्रकृति का अनुभव कराने के लिए ब्रज में मंदिरों में घटाओं का आयोजन किया जाता है। उसी परंपरा के तहत ठाकुर जी महाराज काली घटा में विराजमान हुए, जिसमें संपूर्ण मंदिर प्रांगण को काले कपड़े और अनेकों प्रकार के फूलों से सजाया गया, शानदार लाइटिंग की गई। यही नहीं, संपूर्ण मंदिर में काले काले बादलों की गड़गड़ाहट, चिड़ियों की चहचहाहट, बिजली कड़कने की आवाज गूंजती रही। मंदिर प्रशासन का कहना है कि घटा से तात्पर्य है ठाकुर जी को बाहर के मौसम की अनुभूति करवाना।
6: हमारे संप्रदाय में ठाकुर जी की सेवा का जो सही बाल स्वरूप है, और बालक को बाल के मौसम की अनुभूति कराने के लिए घटाओं के आयोजन होते हैं। और इस आयोजन में जो काली घटा है वह अपने आप में बहुत ही अद्भुत है, जिसमें बालकों की गड़गड़ाहट, चिड़ियों की चहचहाहट और मौसम की एक ऐसी अनुभूति जो लोग देश विदेश से ऐसे देखने आते हैं।
4: सात सज्जा के बाद जब ठाकुर जी महाराज काली घटा में विराजमान हुए, तो मानो धरती प्राकृतिक नजारों से दमक उठी और दर्शन के लिए भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। पूरे सावन मास ये सिलसिला चलता रहेगा। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा, गुड न्यूज टुडे। रंगों की होली तो हर साल आपने देखी होगी, खेली भी होगी, लेकिन आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं दूध की अनोखी होली की खबर जो खेली गई है हरिद्वार में। जी हाँ, आपको बता दें कि जब धर्मनगरी हरिद्वार के घाटों पर आस्था का समुद्र उमड़ता है, तो परंपराएं केवल रंगों में ही नहीं बल्कि पवित्रता के अनूठे रूपों में ढल जाती है। यहाँ की पावन हर की पौड़ी पर होने वाली दूध की होली एक ऐसा ही दिव्य उत्सव है, जिसमें श्रद्धा और उल्लास की धाराएं एक साथ बहती हैं। मुल्तान ज्योत महोत्सव के खास अवसर पर यहाँ माँ गंगा के आंचल में दूध की धार और आस्था की ज्योति मिलकर पूरा वातावरण अलौकिक हो जाता है। ये केवल एक त्योहार नहीं बल्कि सदियों पुरानी उस अटूट परंपरा का जीवंत प्रतीक है।
5: नगरी हरिद्वार में हर की पैड़ी पर उमड़ी श्रद्धालुओं की ये भीड़ उस अनूठी परंपरा की कहानी कह रही है, जो यहाँ पर 115 साल से निभाई जा रही है। देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर स्नान करने आते हैं, गंगा मैया की पूजा और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करने आते हैं। लेकिन ये लोग यहाँ पर ब्रह्म कुंड में माँ गंगा के साथ होली खेलने आए हैं, वो भी रंगों से नहीं बल्कि दूध से। फूलों के साथ दूध से भरी बाल्टियां लेकर माँ गंगा के जयकारे लगाते हुए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर जमा हुए।
7: कि मेरे कारण से गंगा मैली ना हो, गंगा स्वच्छ रहनी चाहिए, हम सबका संकल्प है। आज हम माँ गंगा से दूध की होली खेलते हैं, अपनी श्रद्धा अनुसार जितना भी दूध होता हम प्रवाहित करते हैं, पिचकारी में दूध भर के माँ गंगा से दूध की होली खेलते हैं। और उसके पीछे का उद्देश्य यही है कि जो परंपरा हमारी हिंदू संस्कृति कहती है कि तालाब की पूजा करना, गंगा की पूजा करना, यमुना की पूजा करना, परिवार के साथ हम यहाँ पर आते हैं, लगातार एक सप्ताह ये कार्यक्रम चलता है।
5: दरअसल बताया जाता है कि सन 1911 में पाकिस्तान में रहने वाले व्यापारी लाला रूपचंद पैदल ही हरिद्वार आए थे। उन्होंने गंगा में जोत प्रवाहित की थी ताकि गंगा मैया के आशीर्वाद से उनकी संतान जिंदा रहे और उनके दुख दर्द दूर हो जाए। कहा जाता है कि उनकी यही कामना पूरी हुई थी, तो उसके बाद से हर साल सावन में कांवड़ यात्रा के बाद यहाँ पर मुल्तान जोत महोत्सव मनाने का सिलसिला शुरू हुआ, जो अब तक जारी है। हर साल मुल्तान समाज के लोग यहाँ पर गंगा माँ के साथ होली खेलने आते हैं और दिवाली भी मनाते हैं। इसके पीछे मकसद बेहद खास है।
7: पीढ़ी दर पीढ़ी ये परंपरा चलती आ रही है और आज भी जो लोग खड़े हैं वो अपने आने वाली इस पीढ़ी को ये संदेश दे रहे हैं कि हम कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, कितनी भी हमारी भौगोलिक स्थिति ना बदल जाए, लेकिन हमें अपनी जड़ों को नहीं छोड़ना है, अपने रूट्स को नहीं छोड़ना है। जो हमारे धार्मिक अनुष्ठान है, हमारी परंपराएं हैं, इसमें सुख समृद्धि और शांति की कामना है देश के लिए, उसको हमें पूरा करना है और ये जोत महोत्सव उसी का एक प्रतीक है।
5: खास बात ये भी है कि इस बार इस अनोखी होली में योग गुरु स्वामी रामदेव और एक्टर रणवीर सिंह के डुप्लीकेट भी शामिल हुए।
8: सभी मिलजुल के रहें, गंगा हमारी साफ रहे, सभी से यही मेरी प्रार्थना है, गंगा को हमेशा साफ रखो, स्वच्छ रखो। मैं संदेश ये देना चाहता हूँ कि जितना अच्छा हो सके, जितना प्यारा हो सके, हम इसको कार्यक्रम को हम ताकि कहीं कोई गड़बड़ ना हो सके, जितने शांति से हो सके हम उतने शांति से ये प्रोग्राम को हमें करना।

0: और सबके कल्याण की प्रार्थना कर रहे हैं। हरिद्वार से मुदित अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट गुड न्यूज़ टुडे।
1: रामनगरी अयोध्या में श्रावण मास की धार्मिक परंपराओं के बीच श्री राम जन्मभूमि मंदिर में झूलनोत्सव मनाया जा रहा है। भगवान श्री राम की भक्ति, पारंपरिक झूला उत्सव और सांस्कृतिक आराधना की मनमोहक झलक देखने बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। झूलनोत्सव के दौरान श्री राम जन्मभूमि मंदिर की यज्ञशाला में विशेष नृत्य आराधना का आयोजन हुआ और बेंगलुरु की साई ग्रुप के कलाकारों ने नृत्य के माध्यम से प्रभु श्री राम की आराधना की। श्री राम मंदिर में झूलनोत्सव का कार्यक्रम 28 अगस्त तक यूं ही चलेगा। दूसरी तरफ देखिए, सावन मास के शुक्ल पक्ष के अवसर पर श्री राम मंदिर के सर्वोच्च शिखर पर स्थित झंडे को बदला गया। दोनों तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं। झंडा बदलने से पहले प्रभु श्री राम की विधिवत पूजा अर्चना की गई। तस्वीर देखिए।

0: बात करेंगे रक्षाबंधन की। भाई बहन के पवित्र रिश्ते से जुड़ा यह त्यौहार 28 तारीख को मनाया जाएगा, जिसको लेकर देश भर के तमाम बाजार तरह तरह की रंग बिरंगी और फैंसी राखियों से सज गए हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं राखी और गिफ्ट खरीदने के लिए बाजारों में पहुंच रही हैं। इस बार बाजार में 10 रुपए से लेकर 300-400 रुपए तक की राखियां मौजूद हैं और हर उम्र के लोगों के लिए अलग अलग डिजाइन देखने को मिल रहे हैं।
1: आने वाला है भाई बहन के प्यार भरे रिश्ते की पहचान वाला पर्व रक्षाबंधन। बहनें राखी का धागा बांधकर भाई से रक्षा का लेती हैं प्रण। 4 दिन बाद यानी 28 अगस्त को रक्षाबंधन मनाया जाएगा। इसके लिए बहनें जोर शोर से तैयारी में लगी हैं और उस पल का इंतजार कर रही हैं जब वो रक्षाबंधन के अवसर पर अपने प्यारे भाई की कलाई राखी के धागे से सजाएंगी। राखी को लेकर बाजारों में रौनक बढ़ गई है। बाजार में बहनों की भीड़ है और दुकानें तरह तरह के राखियों से गुलजार हैं। हरियाणा के करनाल में भी बाजार सज गए हैं। तरह तरह की राखियां बहनों को लुभा रही हैं। कोई मोतियों वाली राखी खरीद रहा है तो कोई बच्चों के लिए कार्टून कैरेक्टर वाली राखी। कुल मिलाकर बाजार में राखियों की ढेरों वैरायटी है।
2: सबसे पवित्र रिश्ता होता है बहन भाई का और ये साल बाद ही त्योहार आता है। मैं तो यही कहूंगी सभी बहनें आए राखी खरीदें, अच्छे से अपने भाई को खुश करें और आप भी खुश होएं, अच्छी अच्छी राखियां खरीदें, क्योंकि ये फेस्टिवल एक साल के बाद ही आता है और ये सबसे पवित्र एक रिश्ते का मतलब की फेस्टिवल है। कि दोनों की पेयर है सबसे बेस्ट है वो, बाकी सिंगल भी ले सकते हो, डबल भी, जैसे आपकी चॉइस है। बच्चे छोटे भी है, उनके डोरेमोन वाली भी है, नगों वाली भी है, छोटे बच्चों की हर तरह की वैरायटी है।
1: बाजारों में भीड़ है, राखियों की बिक्री भी जमकर हो रही है, जिससे दुकानदार भी खुश हैं। बिहार के गया में भी रंग बिरंगी राखियों से बाजार सजा हुआ है। अलग अलग वैरायटी की राखियां बहनों को आकर्षित कर रही है। भाई की कलाई पर प्रेम और स्नेह का धागा बांधने की चाहत में बहनें अच्छी से अच्छी राखियों की खरीदारी की चाहत में बाजार का रुख कर रही है।
3: अच्छी अच्छी राखियां आई हुई है, हर साल के अकॉर्डिंग इस साल ज्यादा अच्छी अच्छी राखियां आई हुई है।
1: राजस्थान के पाली में बिक रही इन राखियों को देखिए, ये राखियां इको फ्रेंडली हैं। वजह यह है कि ये राखियां गोबर से बनी हैं। अलग अलग आकृतियों को समेटे ये राखियां काफी पसंद की जा रही हैं। यही नहीं, इन राखियों में बीज भी डाला गया, यानी जब भी आप इन राखियों को कलाई से उतारेंगे तो इसे गमले में डालने से पौधा उगने लग जाएगा, जो स्नेह का पौधा होगा, जीवन भर भाई बहन का स्नेह का प्रतीक बना रहेगा और पर्यावरण की सुरक्षा भी करेगा।
4: तो ये है कि जो अपने भाई की राखी बांधेगी तो गाय का गोबर जो अपने स्किन से तो टच होता है तो वो अपने एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है। तो ये राखी बांधने से हर किसी का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। तो मैं गाय के गोबर को प्रमोट कर रही हूँ और बहुत सारी चीजें मैं गाय के गोबर से बना रही हूँ और प्लास्टिक मुक्त करना चाहती हूँ।
1: भाई बहन के पवित्र रिश्ते और प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे अपने भाइयों को राखी भेजने के लिए डाकघरों में बहनों की भीड़ बढ़ने लगी है। तस्वीरें महाराष्ट्र के अकोला की है। यहाँ के RMS पोस्ट ऑफिस में इन दिनों रक्षाबंधन को लेकर खास व्यवस्था की गई है। राखी भेजने वाली बहनों और

0: अन्य ग्राहकों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए RMS की ओर से स्पेशल काउंटर शुरू किया गया है जो रात 9 बजे तक काम करता है। इससे बहनों को सामान्य डाक और पार्सल की लंबी कतार में खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ रही है और राखी जल्दी पोस्ट की जा रही है।
1: हर बहन अपने भाइयों को एक राखी भेजती है जो उन तक पहुंचाना ये हमारी जिम्मेदारी है और इससे मद्देनजर जो भीड़ है वो भीड़ को मद्देनजर रखते हुए हमने एक स्पेशल काउंटर भी शुरू किया है ताकि हमारी जो बहनें हैं जो राखी भेजने के लिए आई है उनको कम से कम तकलीफ।
2: बहुत ही अच्छी सुविधा है, हम लोगों को यहाँ बहुत टाइम लग रहा था पर ये देख के बहुत खुशी हो रही है कि बहनों के लिए राखी के लिए इन्होंने अच्छा आयोजन किया है, नया काउंटर खोला है, हम सभी बहनें बहुत खुशी में हैं।
0: डाकघर में राखियों को सुरक्षित तरीके से भेजने के लिए वाटरप्रूफ एनवेलप की भी व्यवस्था की गई है ताकि राखियां खराब न हो। करनाल से कमलदीप, गया से पंकज कुमार, पाली से भरत भूषण जोशी और अकोला से धनंजय साबले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: अभी गणेश उत्सव में काफी दिन है लेकिन तैयारियां जोरों पर हैं। मुंबई के लालबाग परेल इलाके में काला चौकी में आज गणपति बप्पा का आगमन हुआ। तस्वीरें देखिए, मुंबई के प्रसिद्ध गणेश उत्सव पंडालों में से एक गणेश चतुर्थी के दौरान विघ्नहर्ता की बहुत सुंदर भव्य मूर्ति स्थापित की जाती है। गणेश उत्सव के दौरान दर्शन करने के लिए हजारों भक्त यहां पर आते हैं। जैसे जैसे गणेश उत्सव की तारीख जो है नजदीक आ रही है, बप्पा की मूर्ति अलग अलग पंडालों में लाई जा रही है ताकि महोत्सव के दौरान भव्य और दिव्यता प्रदान की जा सके। दो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन में दिखा रहे हैं, कितनी बड़ी संख्या में तमाम श्रद्धालु बढ़ चढ़कर स्वागत कर रहे हैं बप्पा के आगमन का।

बात करेंगे मौसम की। दिल्ली एनसीआर में सुबह सुबह हुई बारिश ने मौसम को सुहाना बना दिया है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के शहरों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया। मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले दो दिनों तक मौसम ऐसा ही सुहाना बना रहेगा, उसके बाद थोड़ी गर्मी बढ़ेगी। वैसे पूरे देश में बारिश से ठंडक बनी हुई है।

0: सुबह सुबह जब दिल्ली NCR के लोगों की नींद खुली तो बारिश ने उनका अभिवादन किया। बारिश की फुहारें दिल्ली वालों के लिए राहत लेकर आई थी। बारिश की वजह से मौसम सुहाना हो गया था तो दिन भर बादलों का आना जाना लगा रहा। दिल्ली NCR में जैसे ही सुबह हुई, दिल्ली समेत नोएडा और गाजियाबाद से लेकर गुरुग्राम तक मौसम ने अचानक करवट ली और काले बादलों के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। मौसम विभाग का कहना है कि कुछ दिनों से दिल्ली NCR में बारिश का दौर जारी है। शनिवार को भी सुबह सुबह कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई थी। अब रविवार को बारिश ने मौसम को ठंडा कर दिया है और मौसम विभाग का कहना है कि बारिश वाला मौसम अभी दिल्ली में 2 दिनों तक जारी रहेगा।
1: जिस तरीके से पिछले कई दिनों से दिल्ली NCR में काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिडिटी बढ़ गई थी, गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी और आज सुबह बारिश होने से कहीं ना कहीं गर्मी में और टेम्परेचर्स में कमी आई है। IMD का ये कहना है कि अगले 2 दिनों तक दिल्ली में बारिश के आसार बने रहेंगे।
0: दिल्ली में हो रही बारिश से जहां गर्मी से राहत मिली है, वहीं साफ हवा की सौगात भी मिली है। मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले 2 दिनों तक दिल्ली NCR में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। 25 अगस्त के बाद दिल्ली में एक बार फिर से गर्मी बढ़ेगी। बारिश ने पहाड़ी राज्यों में मुश्किलें बढ़ा दी हैं। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में लगातार हो रही बारिश की वजह से लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों और संपर्क मार्गों पर चट्टाने गिरने के कारण कई जगहों पर यातायात ठप है, जिसको फिर से शुरू करने के लिए टीमें लगी हुई हैं। दूसरी तरफ बारिश के बाद श्रीनगर का मौसम सुहाना हो गया है, जिससे पर्यटकों को राहत मिली। कई सैलानी शिकारे का आनंद लेते दिख जाएंगे। मौसम विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग ने पहाड़ी क्षेत्रों के नदी नालों के किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने का निर्देश दिया है। साथ ही अपील की है कि वे बेहद जरूरी न होने पर ही पहाड़ों की यात्रा करें, वरना इससे परहेज करें। फिलहाल देश के कई हिस्सों में मॉनसून सक्रिय है, जिससे मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ी राज्यों तक मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। मौसम विभाग ने देश के कई इलाकों में बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसके मुताबिक पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश तटों के पास उत्तरी बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इसके प्रभाव से उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। बिहार और झारखंड से लेकर अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, नागालैंड, मणिपुर व मिजोरम तक बारिश की चेतावनी जारी की गई है। दिल्ली से अंशुल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: आज देश अंतरिक्ष दिवस मना रहा है। इसरो के चंद्रयान 3 मिशन के विक्रम लैंडर की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग का करने की ऐतिहासिक उपलब्धि की याद में जो है ये दिन मनाया जाता है। भारत चंद्रमा के इस क्षेत्र में पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बना था। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में स्पेस स्टार्टअप्स के CEO और फाउंडर्स के साथ मुलाकात की, उनसे बातचीत भी की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी के व्यापक इस्तेमाल पर जोर दिया।
3: कोई मेरा हाथ नहीं छोड़ देगा और ये विश्वास पैदा करने का हमारा।
2: पूर्वी उत्तर प्रदेश और खासकर गोरखपुर को नई सौगात मिलने जा रही है। जी हाँ, लखनऊ और अहमदाबाद की तर्ज पर अब वहां पर भी रिवर फ्रंट विकसित करने की तैयारी है। ये रिवर फ्रंट जो है राप्ती नदी के किनारे विकसित किया जाएगा। रिपोर्ट देखिए।
4: गोरखपुर में कल कल बहती राप्ती नदी का और उनके किनारों का ये मनमोहक नजारा बेहद आकर्षक है। नदी किनारे बने घाटों पर बैठकर सुकून के कुछ पल गुजारने का अपना ही मजा है। अब इस इलाके को और भी आकर्षक बनाने की तैयारी हो रही है। गोरखपुर में राप्ती नदी के तट का अब कायाकल्प होने जा रहा है। लखनऊ के गोमती और अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर राप्ती नदी के किनारे शानदार रिवर फ्रंट विकसित करने की योजना बनाई जा रही है। इसे अब साकार करने की दिशा में काम शुरू हो रहा है।
5: इसी योजना के क्रम में जो है एक प्रारंभिक जो है रिपोर्ट जो संबंधित वेंडर था उनके द्वारा जो है प्रस्तुत की गई है। क्योंकि ये प्रारंभिक रिपोर्ट है तो इसमें इन्होंने कुछ चीजें जो मेंशन करी हैं, जिसमें इसमें पार्क भी है, इसमें ग्रीन स्पेसेस भी हैं, इसमें पब्लिक के लिए भी कन्वेंशन सेंटर लेकर ये रिवर फ्रंट की बात यहाँ पर चल रही है।
4: राप्ती रिवर फ्रंट के प्रोजेक्ट की DPR तैयार हो चुकी है। इस पर करीब 1,303 करोड़ रुपए की लागत आएगी, इसके तहत गोरखपुर के राजघाट से डोमिनीगढ़ तक राप्ती नदी के करीब 3.5 किलोमीटर लंबे तट को रिवर फ्रंट के रूप में विकसित किया जाएगा। इसमें नदी के तट से हर्बर्ट बांध पर बनी 4-लेन सड़क की ओर करीब 150 मीटर चौड़ाई में विकास कार्य कराया जाएगा ताकि आम लोग इसका पूरा लाभ उठा सके।
5: जब आप नदी के किनारे विभिन्न आयामों में आप वहाँ पे टूरिज्म की तमाम गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं, जैसे चाहे वो बोटिंग हो, चाहे वो घाट पे बैठना हो, चाहे वो आसपास पार्क में सुबह की सैर करना हो, शाम की सैर करना हो, या कोई भी कॉलेज का इवेंट हो, कोई कल्चरल इवेंट हो, कोई पारिवारिक इवेंट हो, तो वो भी रिवर फ्रंट पे एक जिसे कहते हैं कि एक लाइवली माहौल वहाँ पर, एक कल्चरल एक संध्या के रूप में आप देखें, सुबह भी आप टहलने वहाँ जा सकें और बच्चों के साथ भी वहाँ और परिवार का समय व्यतीत कर सकें, इस तरह की पूरी परिकल्पना जो है इस रिवर फ्रंट पर की जाती है।
4: राप्ती रिवर फ्रंट के पूरे प्रोजेक्ट को 3 चरणों में पूरा करने की योजना है। सड़क तक विकसित किए जाने वाले हिस्से को ग्रीन बेल्ट के रूप में विकसित किया जाएगा, साथ ही यहाँ पर अर्बन हॉट, योग सेंटर और कन्वेंशन सेंटर जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इसके अलावा जगह जगह बोटिंग की सुविधा देने की भी तैयारी है। माना जा रहा है कि परियोजना पूरी होने के बाद राप्ती नदी का ये इलाका गोरखपुर के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल हो सकता है। गोरखपुर से गजेंद्र त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: बात करेंगे नए वर्ल्ड रिकॉर्ड की। नागपुर में एक साथ 4000 से ज्यादा लोगों ने ढोल और ताशा बजाकर एक अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया और एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज हो गया। करीब 585 ध्वजधारकों ने अपने अपने दल के साथ सहभागिता दर्ज कराते हुए नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अधिकारियों ने आयोजकों को सर्टिफिकेट भी प्रदान किए। इस खास मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे।

0: खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
2: क्या है सावन के अंतिम सोमवार का महत्व? सावन के अंतिम सोमवार का क्या है पूजा विधान? और सावन के अंतिम सोमवार पर मिलेंगे कौन से वरदान? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे सावन के अंतिम सोमवार के महिमा की और इसके पूजा विधान की। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक विशेष उपाय। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 24 अगस्त 2026 दिन सोमवार, तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि, नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, रात के 8:28 तक चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय सुबह 7:30 से लगभग 9 तक पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो दर्पण में अपना चेहरा देखकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं सावन के अंतिम सोमवार के बारे में। सावन का अंतिम सोमवार कितना महत्वपूर्ण है, क्या है इसकी महिमा, पहले ये समझते हैं। देखिए, भगवान शिव की पूजा के लिए वैसे तो पूरा सावन महत्वपूर्ण है, लेकिन सावन के सोमवार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसमें मुख्य रूप से शिवलिंग की पूजा होती है और शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित किया जाता है। सावन के सोमवार पर विशेष तरीके के प्रयोग भी किए जाते हैं। सावन का अंतिम सोमवार इस साल में शिव कृपा प्राप्त करने का अंतिम अवसर होगा। अब ये मौका आपको दोबारा अगले साल ही मिल पाएगा, इसीलिए इस अवसर पर अपनी कामनाओं को पूरा करने का अंतिम प्रयास आप इस साल में कर सकते हैं, नहीं तो आपको वर्ष भर रुकना पड़ेगा। अंतिम सोमवार पर द्वादशी तिथि का संयोग बन रहा है, जिसके कारण हर तरह की कामनाएं पूरी की जा सकेंगी। यानी कि द्वादशी के स्वामी हैं भगवान विष्णु और सावन का सोमवार है भगवान शिव का, इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण अवसर बन गया है। अगर आप भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों से प्रार्थना करेंगे तो आपकी कामनाएं पूरी होंगी। इस बार सावन का अंतिम सोमवार 24 अगस्त को है, जिसका पालन हम सबको करना चाहिए। मेष राशि, करियर में आपके सुधार होगा, करियर में साथ में बेहतरी होती दिखाई दे रही है, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, भगवान शिव को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, परिवार में व्यस्तता रहेगी, धन खर्च से परेशानी होगी, स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें, चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मिथुन राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार होता जाएगा, धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, मानसिक स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो सावन का अंतिम सोमवार है, आप किस तरह से पूजा उपासना करें सरल तरीके से ताकि आपकी कामनाएं पूरी हो जाएं। प्रातः काल या प्रदोष काल में पूजा करिएगा, प्रातः काल भी कर सकते हैं 12 बजे के पहले, या प्रदोष काल में सूर्यास्त के आसपास के समय में पूजा कर सकते हैं। स्नान करने के बाद शिव मंदिर जाइएगा, घर से नंगे पैर जाइए मंदिर तक, और घर से ही लोटे में जल भरकर ले जाइएगा। मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करें और इसके बाद पुरुष पूर्ण साष्टांग करेंगे, महिलाएं अर्ध साष्टांग करेंगी। मंदिर में खड़े होकर या किसी किनारे बैठकर शिव मंत्र का, नमः शिवाय का 108 बार जप करिएगा। दिन में केवल फल ग्रहण करें, जल ग्रहण करें, शाम के समय भगवान शिव के मंत्रों का फिर से जप करिएगा और उनकी आरती करिएगा। शाम की पूजा समाप्त हो जाने के बाद केवल जलीय आहार, केवल लिक्विड डाइट ग्रहण करें या जरूरत हो तो फल खा लें। अगले दिन पहले यानी मंगलवार को सवेरे अन्न वस्त्र का दान करिएगा, तब जाकर व्रत का पारायण करिएगा। अगर आप बीमार हैं, उपवास नहीं रख सकते, आपको बहुत दवाइयां खानी पड़ती हैं, तो उपवास की चिंता ना करें। ऐसी स्थिति में आप केवल सात्विक आहार ग्रहण करिएगा, और इस बार के सावन का अंतिम सोमवार है, सुबह या प्रदोष काल में शिव जी को जल चढ़ा के उनसे प्रार्थना करिएगा ताकि उनकी कृपा आपको मिल सके। सिंह राशि, आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, कारोबार में लाभ होगा, यात्रा में सावधानी बनाए रखें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, धन की हानि हो सकती है, काम में आपके व्यस्तता रहेगी, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तुला राशि, मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, कोई शुभ सूचना आपको मिलेगी। शिव जी को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य और मन अच्छा रहेगा, हालांकि काम की अधिकता रहेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, सावन के अंतिम सोमवार पर हम आपको बहुत सारे प्रयोग बताएंगे छोटे छोटे। पहला प्रयोग है, अगर आप संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि चाहते हैं, सारी कामनाओं को पूरा करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, सावन के अंतिम सोमवार पर शिव जी को जल की धारा अर्पित करिएगा और ये जल अपने घर से भर कर ले जाइए। शिव मंदिर का जल शिव जी को वहीं का जल वहीं मत चढ़ाइएगा। इसके बाद चाहें तो मंदिर में बैठ जाएं या घर चले आएं और नमः शिवाय की 11 माला का जप करिएगा। अगर आप ये सरल सा उपाय सावन के अंतिम सोमवार पर करते हैं, आपकी तमाम मनोकामनाएं बड़ी आसानी से पूरी हो जाएंगी। आप पुरुष हो या स्त्री हो, अगर आप शीघ्र विवाह चाहते हैं तो क्या उपाय करेंगे, शिव जी को सुगंध और जल अर्पित करिएगा, चंदन की सुगंध या गुलाब की सुगंध, भूल कर भी केवड़े की सुगंध अर्पित मत करिएगा। इसके बाद 11 माला घर पर या मंदिर में बैठ करके ओम पार्वती पतये नमः, ओम पार्वती पतये नमः इस मंत्र का जप करिएगा। अगर ये काम आप सावन के अंतिम सोमवार पर कर लेते हैं या कर लेती हैं तो आपका विवाह शीघ्र होगा। धनु राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, करियर की बाधाएं समाप्त होंगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, वाहन सावधानी से चलाएं, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में लाभ होगा, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा, शिव जी को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, करियर में नए अवसर मिलेंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान की चिंता दूर होगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अगर आप संतान सुख चाहते हैं और उसमें अड़चन आ रही है तो क्या उपाय करेंगे, पति पत्नी मिल करके अगर एक साथ उपाय करें तो बहुत अच्छा होगा। शिव जी को खीर का भोग लगाएं, चावल और गाय के दूध से बनी हुई खीर का भोग लगाएं, इसके बाद घी के 9 दीपक जलाएं और इसके पश्चात ओम शं शंकराय नमः, ओम शं शंकराय नमः इस मंत्र का जप कम से कम 11 माला करिएगा। आप मंदिर में भी ऐसा कर सकते हैं और घर पर भी शिव जी को भोग लगाकर इस मंत्र का जप करें, आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। अगर आर्थिक समस्या है, फाइनेंशियल दिक्कत है, उसको दूर करना चाहते हैं, धन का लाभ चाहते हैं, तो क्या करेंगे? दूध, दही, शहद, शक्कर और घी मिलाकर पंचामृत बनाएं और पंचामृत ले जाकर जरा सा शिवलिंग पर चढ़ाएं। इसके बाद शिवलिंग पर जल की धारा अर्पित करें और फिर 11 माला एक विशेष मंत्र का जप करेंगे, ओम नमः शंभवाय, ओम नमः शंभवाय। इस मंत्र का 11 माला जप करके प्रार्थना करिए, आर्थिक समस्याएं आपकी दूर होंगी। जिन लोगों को पैसे रुपए की दिक्कत जरूरत से ज्यादा है, ऐसे लोग सावन के अंतिम सोमवार पर कम से कम 3 बार दारिद्र दहन स्तोत्र का पाठ करेंगे, उनकी कामनाएं पूरी होंगी। शिव जी के मंदिर में आप इत्मीनान से बैठकर कम से कम 108 बार राम नाम का जप करिए। राम राम राम राम राम नाम का अगर शिव जी के मंदिर में आप जप करेंगे तो ऐसा करने से कोई भी मनोकामना आपकी पूरी हो जाएगी। अगर आपके मन में एक अनजाना सा डर रहता है, अनजाना सा भय वहम रहता है, तो क्या करें? रोज सवेरे स्नान के बाद एक लोटा जल ले लें। इस जल को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज अपने सर पर से 5 बार घुमा लें, वार लें। इसके बाद इस जल को शिवलिंग पर चढ़ा दें और फिर नमः शिवाय का 108 बार जप कर लें। ये उपाय किसी भी सोमवार से शुरू करके लगातार 1 महीने तक करें, आपके मन की चिंता वहम डर ये बड़े आसानी से दूर हो जाएंगे। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम।
1: बीजिंग में दूसरा वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स यानी रोबोट ओलंपिक चल रहा है। जी हाँ, इसमें 2000 से ज्यादा ह्यूमनॉइड रोबोट न केवल फुटबॉल, टेनिस, बॉक्सिंग, बैडमिंटन और एथलेटिक्स में अपना हुनर दिखा रहे हैं, बल्कि नए नए रिकॉर्ड्स बनाकर इंसानों को दंग भी कर रहे हैं। इसमें से एक रोबोट ने मशहूर धावक हुसैन बोल्ट का रिकॉर्ड तोड़ दिया। जी हाँ, तो एक ने हाई जंप में इंसान को पीछे छोड़ दिया। रिपोर्ट देखिए।
2: रॉकेट जैसी रफ्तार, दौड़ शानदार।
3: ह्यूमनॉइड रोबोट रेसिंग की ये तस्वीरें बीजिंग की हैं, जहां 100 मीटर की दौड़ में नया इतिहास रचा गया।
2: यहां पर तियानजोउ नाम के ह्यूमनॉइड रोबोट ने दुनिया के सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट के 100 मीटर के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। तियानजोउ रोबोट ने 100 मीटर की दौड़ सिर्फ 9.39 सेकंड में पूरी कर ली, जबकि जमैका के धावक हुसैन बोल्ट ने ये दूरी 9.58 सेकंड में पूरी की थी। बोल्ट ने 2009 में बर्लिन में हुई वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सबसे कम समय में 100 मीटर दौड़ पूरी करने का शानदार रिकॉर्ड कायम किया था। 100 मीटर की दौड़ में बोल्ट का ये रिकॉर्ड 17 सालों से कायम है और कोई इंसान तो इसे अब तक नहीं तोड़ सका है। लेकिन अब एक रोबोट ने बोल्ट के उस ऐतिहासिक रिकॉर्ड को ध्वस्त करके नई मिसाल कायम कर दी है। जिस रोबोट ने ये कमाल कर दिखाया है, उसे बीजिंग इनोवेशन सेंटर ऑफ ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स ने बनाया है। वहीं इससे पहले एक टेस्ट रन में चीनी कंपनी ऑनर के रोबोट ने 100 मीटर की दूरी तय करने में केवल 9.32 सेकंड का समय लिया था। बीजिंग में चल रहे ह्यूमनॉइड रोबोट्स के मुकाबले में नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। इसी दरमियान एक रोबोट ने स्टैंडिंग हाई जंप में 2.88 मीटर से ऊंची छलांग लगाकर इंसानों और पिछले सभी रिकॉर्ड्स को पीछे छोड़ दिया। चीन की रोबोटिक्स कंपनी यूनिट्री के ह्यूमनॉइड रोबोट ने हाई जंप में ये कमाल कर दिखाया है। स्टैंडिंग हाई जंप की स्पर्धा में रोबोट ने 2.8843 मीटर तक ऊंची कूद का नया रिकॉर्ड कायम कर डाला। और हाई जंप में भी इंसानों यानी मानव एथलीट के पुराने रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया। बीजिंग में शनिवार को दूसरे वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स का शुभारंभ हुआ। ओपनिंग सेरेमनी में हुई 400 मीटर रेस में चाइना के तियांगोंग ह्यूमनॉइड रोबोट ने 39.7 सेकंड का समय निकालकर पहला स्थान हासिल किया। इससे पहले ओपनिंग सेरेमनी के दौरान हुए रंगारंग कार्यक्रम में इंसान केवल दर्शक थे, जबकि स्टेडियम में ट्रैक से लेकर पूरे एरिना में मौजूद 1000 से ज्यादा ह्यूमनॉइड रोबोट्स ने अपनी तकनीकी क्षमता का अनूठा प्रदर्शन किया, जिसे देखकर लोग दंग रह गए। मनमोहक म्यूजिकल परफॉर्मेंस से लेकर नेशनल स्पीड स्केटिंग ओवल में टीमों के मार्चिंग दस्ते के रूप में हर इवेंट में शानदार तालमेल के साथ रोबोट फॉर्मेशंस दर्शकों को अलग ही कल्पना लोक में ले गए, जिसे वे अपनी आंखों के सामने साकार होते देख रहे थे। इस दौरान 36 रोबोट्स की टीम ने मेलेडी ऑफ द फ्यूचर के नाम से भव्य संगीत और सुरों का समा बांध दिया। वहीं स्पर्धाएं शुरू होने से पहले ओपनिंग सेरेमनी में ही तमाम रोबोट्स ने अलग अलग खेलों में अपने हुनर की झलक पेश की। बीजिंग में 5 दिन के वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स में 16 देशों के 2056 रोबोट्स की 666 टीमें भाग ले रही हैं। ये रोबोट 51 इवेंट्स की 1300 से ज्यादा स्पर्धाओं में अपना कमाल दिखाएंगे और ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि आने वाला कल इनका ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT University Ghaziabad, shaping future, creating leaders.
1: कल सावन का आखिरी सोमवार, सावन के अंतिम सोमवार के साथ ही बन रहे हैं कई शुभ संयोग। इस साल सावन में महादेव को प्रसन्न करने का आखिरी मौका। मुंबई के पंडालों में पधार रहे हैं गणपति बप्पा। काली चौकी के महाराज के स्वागत में उमड़े हजारों श्रद्धालु, ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत। अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर बदली गई धर्म ध्वजा, वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूरे विधि विधान के साथ निभाई गई परंपरा। मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में पारंपरिक काली घटा का अलौकिक आयोजन, फूलों और आकर्षक लाइटों से मनमोहक हुआ नजारा, ठाकुर जी के दर्शन कर गदगद हुए भक्त। बारिश के लिए जैसलमेर के पुरैतेश्वर महादेव मंदिर में महारुद्राभिषेक, 121 रुद्रपीठ पंडितों ने किया सामूहिक रुद्री पाठ, मंत्रोच्चार से गूंजा परिसर। अजमेर में देखी राजस्थानी संस्कृति की झलक, मातृशक्ति मानसून महोत्सव में जुटी हजारों महिलाएं, मेगा लकी ड्रॉ और मेडिकल कैंप्स का भी आयोजन। नागपुर में 4,000 से ज्यादा युवक युवतियों ने ढोल ताशा बजाकर बनाया अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ नागपुर का नाम।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
6: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, रक्षाबंधन का सभी भाई बहनों को बेसब्री से इंतजार है और राखी सिर्फ कलाई पर बंधने वाला एक धागा नहीं बल्कि भाई बहन के प्यार, उनके भरोसे और जीवन भर के साथ निभाने के संकल्प का पर्व भी है। पूरे साल बहनों को जिस दिन का इंतजार रहता है वो घड़ी अब बस आने ही वाली है। बाजारों में राखियों की रौनक देखने को मिल रही है। भाई बहन एक दूसरे के लिए तोहफे चुन रहे हैं। हर घर में 28 अगस्त की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन इस बार रक्षाबंधन की कहानी थोड़ी अलग है। क्यों, मैं आपको बताती हूँ। दरअसल क्योंकि सावन पूर्णिमा के दिन जहां एक ओर भाई की कलाई पर प्यार और रक्षा का धागा बंधेगा, वहीं आसमान में एक बड़ी खगोलीय घटना भी घटेगी। जी हाँ, दरअसल 28 अगस्त को ही साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। ऐसे में हर कोई यही जानना चाहता है कि रक्षाबंधन पर क्या होगा ग्रहण का असर।

0: इस बार सावन पूर्णिमा पर 5 घंटे 39 मिनट का चंद्र ग्रहण। तो सवाल ये कि क्या इस बार रक्षाबंधन पर मंडराएगा ग्रहण का साया। रक्षाबंधन भाई बहन के अटूट विश्वास, स्नेह और सुरक्षा के संकल्प का वो पावन पर्व जिसका इंतजार हर बहन को पूरे साल रहता है। रक्षाबंधन का अर्थ है सुरक्षा का बंधन, जिसमें बहनें भाई की कलाई पर राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। और भाई बहन की रक्षा और हर परिस्थिति में उसका साथ देने का संकल्प लेते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार ये दिन श्रावण मास की पूर्णिमा है, जिसे भाई बहन के प्रेम और पवित्र रिश्ते के प्रतीक के रूप में बेहद खास माना जाता है। ये दिन रिश्तों के मिठास और खुशियों की सौगात लेकर आता है, लेकिन इस बार का रक्षाबंधन आम सालों जैसा नहीं है। इस बार 28 अगस्त 2026 शुक्रवार को रक्षाबंधन पर साल का अंतिम चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, जो पूरे 5 घंटे 39 मिनट तक रहेगा।
1: रक्षाबंधन का पर्व एक खास खगोलीय संयोग के साथ आ रहा है। 28 अगस्त 2026 को रक्षाबंधन है और इसी तारीख को आंशिक चंद्रग्रहण भी पड़ रहा है, इसलिए स्वाभाविक रूप से लोगों के मन में ये सवाल है कि ये ग्रहण रक्षाबंधन के पर्व को प्रभावित करेगा।
0: सावन पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन के लिए घर घर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बाजार तरह तरह की रंग बिरंगी राखियों से पट चुके हैं। बहने भाई की कलाई सजाने के लिए राखी चुनने में लगी हैं, भाई बहनों के लिए उपहार तैयार करने में लगी हैं। सबको इंतजार है 28 अगस्त का, जब शुभ घड़ी में बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा का सूत्र बांधेगी। लेकिन इस बार रक्षाबंधन की पूर्णिमा कुछ अलग है। जिस दिन देश भर में रक्षाबंधन का त्योहार मनेगा, उसी दिन आसमान में एक बड़ा खगोलीय संयोग भी बन रहा है।
1: ज्योतिषीय दृष्टि से चंद्रमा को मन, भावनाओं और संवेदनाओं और पारिवारिक संबंधों से जोड़ा जाता है, और रक्षाबंधन भी भाई बहन के प्रेम और भावनात्मक रिश्ते का एक पर्व है, इसलिए दोनों का एक ही दिन होना निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण संयोग है।
0: 28 अगस्त रक्षाबंधन के दिन ही साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगेगा, यानी एक तरफ कलाई पर राखी का धागा तो दूसरी तरफ आसमान में चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया। इसी संयोग ने लोगों के मन में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या चंद्र ग्रहण की वजह से रक्षाबंधन के शुभ मुहूर्त में कोई बदलाव होगा? क्या ग्रहण के साए में राखी बांधना शुभ होगा? क्या ग्रहण का सूतक भारत में मान्य होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत में दिखाई देगा रक्षाबंधन वाला चंद्र ग्रहण? क्योंकि पंचांग में ग्रहण का समय सुबह से दोपहर तक बताया जा रहा है और इसी दौरान रक्षाबंधन की पूर्णिमा भी रहेगी, तो क्या सचमुच राखी के शुभ पर्व पर ग्रहण का साया पड़ने वाला है? इस सवाल का जवाब जानना जरूरी है, क्योंकि अगर ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा तो यहाँ सूतक काल मान्य होगा। अगर सूतक मान्य नहीं होगा तो राखी बांधने का शुभ समय क्या रहेगा? अगर ग्रहण का सबसे महत्वपूर्ण चरण उसी वक्त होगा जब भारत में बहनें राखी बांध रही होंगी, तो फिर आखिर दोनों घटनाएं एक साथ कैसे हो सकती हैं? इन सवालों का जवाब जानने के लिए पहले समझना होगा कि इस साल रक्षाबंधन की पूर्णिमा कब शुरू हो रही है और कब समाप्त होगी। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल पूर्णिमा तिथि 27 अगस्त की सुबह करीब 9:08 से शुरू होकर 28 अगस्त की सुबह करीब 9:48 तक रहेगी। इसी वजह से उदया तिथि के आधार पर रक्षाबंधन का पर्व शुक्रवार 28 अगस्त 2026 को मनाया जाएगा। यानी 28 अगस्त की सुबह एक बेहद खास समय होगा, पूर्णिमा भी रहेगी, राखी का त्योहार भी होगा और उसी दौरान चंद्र ग्रहण की खगोलीय घटना भी चल रही होगी। 28 अगस्त को राखी बांधने का समय सुबह 5:58 से 9:48 तक बताया गया है। वहीं 28 अगस्त को चंद्र ग्रहण लगने की स्थिति बन रही है। ग्रहण सुबह 6:55 से शुरू होकर दोपहर 12:30 खत्म होगा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जब ग्रहण सुबह 6:55 से शुरू हो जाएगा तो बहनों के पास राखी बांधने के लिए कितना समय बचेगा? ज्योतिषी मान्यताओं के अनुसार ग्रहण काल के दौरान पूजा पाठ और शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं। ऐसे में रक्षाबंधन जैसे पवित्र विधान को लेकर श्रद्धालुओं के मन में कई तरह की शंकाएं हैं, जिनका समाधान जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: 28 अगस्त 2026, सावन पूर्णिमा, रक्षाबंधन और आसमान में साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भी। एक तरफ भाई की कलाई पर सजने वाला प्रेम और विश्वास का धागा, तो दूसरी तरफ चंद्रमा पर पड़ने वाली पृथ्वी की छाया। यानी इस बार की पूर्णिमा से भाई बहन के पवित्र रिश्ते की वजह से खास नहीं है, बल्कि आसमान में होने वाला ये खगोलीय संयोग भी इसे काफी ज्यादा खास बना रहा है। देखिए, इस बीच सवाल ये है कि क्या ये चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा, भारत में विजिबल होगा? क्या रक्षाबंधन के दिन ग्रहण का सूतक काल भी लगेगा? रक्षाबंधन पर ग्रहण की पूरी उलझन का जवाब जानना भी जरूरी है।

0: 28 अगस्त 2026। एक तरफ सावन की पूर्णिमा, एक तरफ भाई बहन के अटूट प्रेम और विश्वास का पर्व रक्षाबंधन, और इसी दिन आसमान में होने जा रही है साल की आखिरी चंद्र ग्रहण की खगोलीय घटना। यानी इस बार की पूर्णिमा सिर्फ राखी के त्योहार के लिए ही खास नहीं है, बल्कि आसमान में होने वाले एक बड़े खगोलीय संयोग की वजह से भी चर्चा में है। 28 अगस्त को लगने वाले चंद्र ग्रहण से जुड़ी सबसे अहम और राहत देने वाली बात ये है कि ये ग्रहण भारत में दिखाई ही नहीं देगा। हालांकि दुनिया के कई हिस्सों में लोग इस खगोलीय घटना को अपनी आंखों से देख सकेंगे।
1: वैज्ञानिक रूप से चंद्र ग्रहण सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की एक विशेष स्थिति के कारण होने वाली एक प्राकृतिक खगोलीय घटना है। वही ज्योतिषियों के अनुसार ग्रहण के प्रभावों का आंकलन ग्रहों की स्थिति, राशि और नक्षत्र आदि के आधार पर किया जाता है। दुनिया के जिन हिस्सों में ये ग्रहण दिखाई देगा वहां लोग इसका प्रत्यक्ष खगोलीय अनुभव कर पाएंगे।
0: अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और पश्चिमी एशिया के कुछ हिस्सों में चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया का अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा। यानी एक ही समय में दुनिया के कुछ हिस्सों में लोग आसमान में ग्रहण देख रहे होंगे, जबकि भारत में उसी दौरान रक्षाबंधन का पर्व पूरे उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाएगा। सवाल ये कि जब भारत में चंद्र ग्रहण दिखाई ही नहीं देगा तो क्या इसका सूतक काल यहाँ मान्य होगा, क्योंकि आम तौर पर ग्रहण का नाम आते ही सूतक की चर्चा शुरू हो जाती है।
1: यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये चंद्र ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, इसलिए भारत में इसे लेकर वही ग्रहण संबंधी धार्मिक प्रभाव नहीं माने जाएंगे जो किसी दिखाई देने वाले ग्रहण के समय माने जाते हैं। ऐसे में केवल ये संयोग को देखकर डरने की जरूरत नहीं है। रक्षाबंधन का मूल भाव प्रेम, विश्वास और सुरक्षा का है, इसलिए इस दिन रिश्तों को मजबूत करना और सकारात्मक भाव रखने पर ध्यान देना चाहिए। रक्षाबंधन के सामान्य धार्मिक अनुष्ठानों पर ग्रहण के कारण कोई विशेष रोक नहीं मानी जाएगी।
0: धार्मिक मान्यताओं और वैदिक ज्योतिष में ग्रहण के सूतक काल की गणना लोकल विजिबिलिटी यानी स्थानीय दृश्यता से तय होती है। शास्त्रों में कहा गया है यस्य दृश्यम तस्य फलम, मतलब ग्रहण जहां आंखों से दिखाई देता है सूतक काल, धार्मिक निषेध और उसके अशुभ प्रभाव केवल वही मान्य होते हैं। चूँकि ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा इसलिए भारत में सूतक काल नहीं लगेगा। मंदिर के कपाट बंद करने, भोजन वर्जित रखने या शुभ कार्यों को रोकने जैसे नियम भी लागू नहीं होंगे।

0: ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। इसलिए भारत में रक्षाबंधन के दिन केवल ग्रहण के नाम पर पूजा पाठ रोकने, मंदिर बंद करने या सामान्य धार्मिक गतिविधियों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है।
1: मतलब साफ है, भारत में ग्रहण दिखाई नहीं देगा, इसलिए रक्षाबंधन पर ग्रहण का साया नहीं माना जाएगा। बहनें शुभ मुहूर्त में अपने भाई को राखी बांध सकती हैं। राखी की थाली सज सकती है, रोली और अक्षत से भाई का तिलक हो सकता है, आरती उतारी जा सकती है, मिठाई खिलाई जा सकती है और भाई बहन एक दूसरे को उपहार देकर इस रिश्ते की मिठास को और बढ़ा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: राखी की तारीख तय है, 28 अगस्त को पड़ रही है, ग्रहण को लेकर तस्वीर भी साफ है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल देखिए इस बीच ये है कि 28 अगस्त को राखी बांधने का सबसे शुभ समय कौन सा है, यानी मुहूर्त जो लोग पूछते हैं अक्सर किस मुहूर्त पर राखी बांधनी चाहिए वो कौन सा है, जब बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधे। अगर सुबह राखी नहीं बांध पाए तो दिन में, शाम को और रात के समय कौन से शुभ मुहूर्त में राखी बांधी जा सकती है, आइए चलिए आपको ये भी बता देते हैं।

0: चंद्र ग्रहण को लेकर तस्वीर साफ होने के बाद अब बारी है उस सवाल की जिसका इंतजार हर भाई और बहन को है। आखिर 28 अगस्त को राखी बांधने का सबसे शुभ समय कौन सा रहेगा? इस बार रक्षाबंधन के साथ चंद्र ग्रहण का संयोग जरूर बना है, लेकिन भारत में ग्रहण दिखाई नहीं देगा। ऐसे में ग्रहण का सूतक मान्य नहीं माना जा रहा है।
1: ज्योतिषीय दृष्टि से चंद्रमा मन और भावनाओं का कारक है, इसलिए ग्रहण को मानसिक और भावनात्मक स्तर पर संवेदनशील समय माना जाता है। ऐसे में अनावश्यक डर, तनाव, गुस्सा या किसी रिश्ते में गलतफहमी बढ़ने से बचना चाहिए। और लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि रक्षाबंधन का ये पर्व नकारात्मक हो जाएगा। चंद्र ग्रहण के कारण रक्षाबंधन प्रेम, सुरक्षा, विश्वास और पारिवारिक जुड़ाव का पर्व है, इसलिए इस दिन भाई बहन के बीच प्रेम और सकारात्मकता बनाए रखना जरूरी है।
0: रक्षाबंधन पर सिर्फ ग्रहण ही नहीं, भद्रा को लेकर भी विशेष सावधानी बरती जाती है। हिंदू पंचांग में भद्रा को ऐसे समय के रूप में देखा जाता है जिसमें मांगलिक और शुभ कार्य करने से बचने की परंपरा रही है। इस बार 27 अगस्त को भद्रा का प्रभाव सुबह 9:08 से रात 9:32 तक रहेगा, यानी 27 अगस्त की रात तक भद्रा का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। इसके बाद 28 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व मनाने के लिए किसी भद्रा की बाधा नहीं रहेगी। यही वजह है कि बहनें 28 अगस्त को अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर रक्षाबंधन का त्योहार पूरे उत्साह के साथ मना सकती हैं। अब बात करते हैं राखी बांधने के सबसे शुभ समय की। 28 अगस्त की सुबह 6:23 से 9:48 तक का समय राखी बांधने के लिए सबसे शुभ बताया गया है।
2: सूर्योदय से लेकर 9:48 तक पूर्णमासी का समापन होने तक पूर्णतया सबसे सुंदर शुभ मुहूर्त है। इस बीच में रक्षा सूत्र अपनी भाई को बांध सकती है बहन।
0: यानी सुबह का ये समय भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने के लिए बेहद खास रहेगा। इस दौरान बहनें पूजा की थाली सजाकर भाई को तिलक लगा सकती हैं, आरती कर सकती हैं, मिठाई खिला सकती हैं और इसके बाद भाई की कलाई पर राखी बांध सकती हैं। अगर किसी वजह से सुबह के मुहूर्त में राखी नहीं बांधी जा सकी तो दिन में भी दूसरे शुभ मुहूर्त मौजूद हैं। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:14 से 1:05 तक रहेगा। अगर सुबह और दोपहर में राखी बांधना संभव नहीं है तो शाम को भी शुभ समय उपलब्ध रहेगा। शाम के समय गोधूली मुहूर्त में राखी बांधी जा सकती है। गोधूली मुहूर्त शाम 6:57 से 7:19 तक रहेगा। इस दिन चौघड़िया के अनुसार शुभ, लाभ और अमृत वेला में राखी बांधी जा सकती है। चौघड़िया के हिसाब से देख लें तो दिन में कई अच्छे समय मिल रहे हैं। लाभ चौघड़िया सुबह 7:57 से 9:31 तक।

0: रहेगा। इसके बाद अमृत चौघड़िया सुबह 9:31 से 11:05 तक रहेगा। दोपहर में शुभ चौघड़िया 12:40 से 2:14 तक रहेगा। शाम को चर चौघड़िया 5:22 से 6:57 तक रहेगा। रात में लाभ चौघड़िया 9:48 से 11:14 तक रहेगा।
1: सबसे जरूरी है कि अपने घर में जो आपके ठाकुर जी हैं, आप उनको पहले रक्षा सूत्र बांधें, भगवान से आज्ञा लेकर के तब अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधें, क्योंकि हमारे इस घर में जो ईश्वर विराजमान है उसका प्रसाद स्वरूप लेकर के राखी हम बांधेंगे, और जिस कामना से हम रक्षाबंधन करने जा रहे हैं, बहने रक्षा सूत्र बांधने जा रही हैं, वह उनकी कामना फलीभूत होगी और उनका भाई आयुष्यमान होगा, दीर्घायुष्य होगा। यह मंगल कामना के साथ इस त्यौहार को हम बनाए।
0: रक्षाबंधन का पर्व केवल भाई बहन के रिश्ते तक सीमित नहीं है, ये पर्व भावनाओं, विश्वास और आत्मिक रक्षा के उस पवित्र धागे का नाम है जो काल और परिस्थितियों से परे है। शास्त्रों में विधान है कि जिन बहनों के सगे भाई नहीं है वो जगत के पालनहार भगवान श्री कृष्ण को अपना भाई मानकर उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांध सकती हैं।
2: सामान्यतया ये माना जाता है कि अगर अपना सगा भाई ना हो तो अपने चचेरे भाई आदि ममेरे भाई आदि को बांधते, पर अगर किसी प्रकार के मन में कामना नहीं है तो गणेश जी को अपना भाई बनाने का विधान है, या भगवान श्री कृष्ण को रक्षा सूत्र बांधने पर वो भाई के समान आपकी रक्षा करते हैं, आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, ये माना जाता है।
0: पौराणिक कथाओं और धार्मिक मान्यताओं में रक्षाबंधन का विशेष महत्व बताया गया है। रक्षाबंधन से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं। इन्हीं में से सबसे भावुक कथा है भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी की। कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने राजा शिशुपाल का वध किया तो युद्ध के दौरान कृष्ण के बाएं हाथ की उंगली से खून बहने लगा। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का आंचल फाड़कर कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। इस दिन सावन पूर्णिमा की तिथि थी। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को वचन दिया कि समय आने पर वो आंचल के एक एक सूत का कर्ज उतारेंगे, और द्रौपदी के चीर हरण के समय श्री कृष्ण ने इस वचन को निभाया।
2: तीसरी कथा एक और आती है जो कि हमने भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी की है, कि जब भगवान कृष्ण को द्रौपदी ने अपने दुपट्टे में से वस्त्र का टुकड़ा बांधा था भगवान की उंगली कट जाने पर, उसके फलस्वरूप ही भगवान ने सदैव के लिए रक्षा देने का अभय वर देने का था। इस प्रकार से हम मानते हैं ये केवल भाई बहनों का ही त्योहार नहीं, ये रक्षा सूत्र है। पुरोहित अपने जजमानों को बांधते हैं उनकी मंगल कामना के लिए, और वर्ष पर्यंत उनकी सुरक्षा, आयु, धन संपत्ति आदि की सुरक्षा होती है।
0: इसीलिए रक्षाबंधन सिर्फ कलाई पर बंधा धागा नहीं है, ये विश्वास का बंधन है। एक बहन जब राखी बांधती है तो वो सिर्फ भाई की कलाई नहीं बांधती, वो अपने विश्वास को बांधती है, और भाई जब उस राखी को स्वीकार करता है तो वो सिर्फ एक धागा नहीं बल्कि बहन की रक्षा, सम्मान और साथ निभाने का संकल्प स्वीकार करता है। रक्षाबंधन का त्योहार संदेश देता है कि रक्षा सिर्फ शरीर की नहीं रिश्तों की भी होती है, साथ सिर्फ सुख में नहीं संकट में भी होता है, और सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो वक्त आने पर एक एक वचन का कर्ज चुका देते हैं। यही वजह है कि सदियों बाद भी कृष्ण और द्रौपदी का रिश्ता याद दिलाता है कि राखी का धागा छोटा जरूर होता है लेकिन उसमें बंधा विश्वास बहुत बड़ा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: तो चलिए इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जेएनटी के साथ।
4: सावन के आखिरी सोमवार को लेकर भक्तों में भारी उत्साह है। शिवालयों में खास तैयारियां की जा रही हैं। सावन शिव का महीना है और शिव को प्रिय है सोमवार का दिन। ऐसे में आखिरी सोमवार मनोकामना पूर्ति का भी दिन है। शिवलिंग पर जलाभिषेक और पूजा पाठ से भोलेनाथ को आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है, वरदान पाया जा सकता है।
5: सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। अगर ये सोमवार सावन महीने का है उसका महत्व और भी बढ़ जाता है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सावन के सोमवार का खास महत्व बताया गया है। सावन का महीना भी अब जल्द ही समाप्त होने वाला है और 24 अगस्त को सावन का आखिरी सोमवार है। ऐसे में शिव भक्तों के पास भी इस सावन के महीने में आखिरी मौका है भोलेनाथ को प्रसन्न करने का। सावन के आखिरी सोमवार को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। अगर आपने सावन के किसी भी सोमवार को पूजा नहीं की है, व्रत नहीं रखा है, तो इस सोमवार को पूजा करने और व्रत करने से भी आपकी मनोकामनाएं पूरी हो सकती है। सावन के आखिरी सोमवार पर एक साथ कई शुभ योग संयोग भी बन रहे हैं। सावन के आखिरी सोमवार पर इस बार प्रीति योग, आयुष्मान योग, पवित्रता एकादशी वैष्णव, हंस राज योग, बुद्धादित्य राजयोग, क्योंकि सिंह राशि में सूर्य बुध की युति बनेगी। अगर आप भी सावन के पहले तीन सोमवार का व्रत नहीं कर पाए हैं तो कोई बात नहीं, आप इस सोमवार का व्रत करेंगे तो पुण्य की प्राप्ति होगी। सावन के आखिरी सोमवार पर सुबह सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहने, इसके बाद भगवान शिव का ध्यान कर व्रत या पूजा का संकल्प ले शिवालय जाएं और शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और 11 या 21 बेलपत्र अर्पित करें। एक एक बेलपत्र अर्पित करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें। इसके बाद घी का दीपक जलाकर आरती करें और इस दिन जरूरतमंद लोगों की मदद करें और दान भी दें, जैसे वस्त्र, अन्न, फल आदि चीजों का दान आप कर सकते हैं। शिव चालीसा या रुद्राष्टक का पाठ करें। सावन के आखिरी सोमवार पर रुद्रा अभिषेक करने की भी विशेष मान्यता है। कहा जाता है कि इस दिन पूजा पाठ जप तप करने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
4: रामनगरी अयोध्या में श्रावण मास की धार्मिक परंपराओं के बीच श्री राम जन्मभूमि मंदिर में झूलनोत्सव मनाया जा रहा है। भगवान श्री राम की भक्ति, पारंपरिक झूला उत्सव और सांस्कृतिक आराधना की मनमोहक झलक देखने बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। झूलनोत्सव के दौरान श्री राम जन्मभूमि मंदिर की यज्ञशाला में विशेष नृत्य आराधना का आयोजन हुआ और बेंगलुरु की साई ग्रुप के कलाकारों ने नृत्य के माध्यम से प्रभु श्री राम की आराधना की। श्री राम मंदिर में झूलनोत्सव का कार्यक्रम 28 अगस्त तक यूं ही चलेगा। दूसरी तरफ देखिए, सावन मास के शुक्ल पक्ष के अवसर पर श्री राम मंदिर के सर्वोच्च शिखर पर स्थित झंडे को बदला गया। दोनों तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं। झंडा बदलने से पहले प्रभु श्री राम की विधिवत पूजा अर्चना की गई। तस्वीर देखिए।

अब बात करेंगे मथुरा की। देखिए यहाँ के बांके बिहारी मंदिर में काली घटा उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल होने और बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। दरअसल ऐसी मान्यता है कि सावन में प्रभु को प्रकृति का दर्शन कराने के लिए इस उत्सव का आयोजन किया जाता है। मथुरा ब्रजमंडल में सावन मास में घटाओं का अपना अलग ही महत्व है। कृष्ण की नगरी मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में काली घटा का भव्य आयोजन किया गया, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे।

0: दरअसल ठाकुर जी को सावन महीने में प्रकृति का अनुभव कराने के लिए ब्रिज में मंदिरों में घटाओं का आयोजन किया जाता है। उसी परंपरा के तहत ठाकुर जी महाराज काली घटा में विराजमान हुए, जिसमें संपूर्ण मंदिर प्रांगण को काले कपड़े और अनेकों प्रकार के फूलों से सजाया गया, शानदार लाइटिंग की गई। यही नहीं, संपूर्ण मंदिर में काले काले बादलों की गड़गड़ाहट, चिड़ियों की चहचहाहट, बिजली कड़कने की आवाज गूंजती रही। मंदिर प्रशासन का कहना है कि घटा से तात्पर्य है ठाकुर जी को बाहर के मौसम की अनुभूति करवाना।
1: हमारे के संप्रदाय में ठाकुर जी की सेवा का जो शरीर त्यौहार स्वरूप है, और बालक को बाहर के मौसम की अनुभूति कराने के लिए घटाओं के आयोजन होते हैं। और इस आयोजन में जो काली घटा है वह अपने आप में बहुत ही अद्भुत है, जिसमें बालकों की गड़गड़ाहट, चिड़ियों की चहचहाहट और मौसम की एक ऐसी अनुभूति जो लोग देश विदेश से ऐसे देखने आते हैं।
0: सात सज्जा के बाद जब ठाकुर जी महाराज काली घटा में विराजमान हुए तो मानो धरती प्राकृतिक नजारों से दमक उठी और दर्शन के लिए भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। पूरे सावन मास ये सिलसिला चलता रहेगा। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा, गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: सावन के अंतिम सोमवार का क्या है पूजा विधान? सावन के अंतिम सोमवार पर कौन सी मनोकामनाएं होंगी पूरी और कैसे मिलेगा शिव जी का वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
0: कल सावन का आखिरी सोमवार, सावन के अंतिम सोमवार के साथ ही बन रहे हैं कई शुभ संयोग। इस साल सावन महादेव को प्रसन्न करने का आखिरी मौका। मुंबई के पंडालों में पधार रहे हैं गणपति बप्पा, काली चौकी के महाराजा के स्वागत में उमड़े हजारों श्रद्धालु, ढोल नगाड़ों के साथ किया स्वागत। अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर बदली गई धर्म ध्वजा, वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूरे विधि विधान के साथ निभाई गई परंपरा। मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में पारंपरिक काली घटा का आयोजन, फूलों और आकर्षक लाइटों से मनमोहक हुआ दृश्य, ठाकुर जी के दर्शन कर गदगद हुए भक्त।
8: बारिश के लिए जैसलमेर में पुरोहितेश्वर महादेव मंदिर में महारुद्राभिषेक, 121 रुद्रपाठी पंडितों ने किया सामूहिक रुद्री पाठ, मंत्रोच्चार से गुंजायमान हुआ परिसर। अजमेर में दिखी राजस्थानी संस्कृति की झलक, मातृशक्ति मॉनसून महोत्सव में जुटी हजारों महिलाएं, मेगा लकी ड्रॉ और मेडिकल कैंप का भी आयोजन। नागपुर में 4,000 से ज्यादा युवक युवतियों ने ढोल ताशा बजाकर बनाया अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ नागपुर का नाम।

आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। एक बार फिर लेकर एक दमदार शख्सियत का सफरनामा। इस बार जिस शख्सियत का दमदार सफरनामा लेकर हम हाजिर हुए हैं उसकी एक फिनोमिनल मूवी 26 अगस्त को दुनिया भर के सिल्वर स्क्रीन्स पर दस्तक देने के लिए तैयार है। एक ऐसी मूवी जिसे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़े बजट वाली फिल्म माना जा रहा है। उसी फिल्म के लीड एक्टर की जिंदगी की दास्तान लेकर हम हाजिर हुए हैं। एक ऐसा हीरो शुरुआती दिनों में जिसके पास एक्टिंग का कोर्स करने तक के पैसे नहीं थे,

आप समझ गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के वंडर बॉय रॉकिंग यश हैं। जी हाँ, यही यश, वो यश जिसकी केजीएफ ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। 26 अगस्त को यश की एक और दमदार फिल्म टॉक्सिक अ फेरी टेल फॉर ग्रोनअप्स दुनिया भर के थिएटर्स में रिलीज होने जा रही है। एडवांस बुकिंग का विंडो ओपन होने के बाद टॉक्सिक को जिस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है उसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये फिल्म केजीएफ की कामयाबी को भी पीछे छोड़ने जा रही है। ये वही यश हैं जिनके पास कभी एक्टिंग कोर्स करने तक के पैसे नहीं थे लेकिन आज वो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सबसे महंगे हीरो में शुमार हो चुके हैं।

0: कुदरत का आईन भी बड़ा अजीब होता है। बागबां की सरपरस्ती में सींचे गए दरख्त फलने फूलने से पहले दम तोड़ देते हैं, लेकिन दूर निर्जन बयाबा में पहाड़ों का सीना चीर कर उगने वाले देवदार आसमान की ऊंचाइयों में हवाओं के साथ मिलकर बेफिक्र अटखेलियां करते नजर आते हैं। हालात की दुश्वारियों को मात देकर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के आसमान में नक्षत्र की तरह चमचमाने वाला ऐसा ही एक नायाब नगीना है, नाम है नवीन कुमार गौड़ा। सिने प्रेमी जिसे यश के नाम से जानते हैं। जी हाँ, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का वंडर बॉय रॉकिंग यश। कितना अजीब इत्तेफाक है कि जिस बच्चे को विरासत में गुर्बत का साया मिला, समाज से ताने मिले, अपने भविष्य को लेकर जब परिजनों की आंखों में झांका तो चिंता की लकीरें मिली, अभिनय के शैशवावस्था में इंडस्ट्री से हिकारत मिली, वही बच्चा आज इतना बड़ा स्टार बन चुका है कि उसके स्टारडम के दम पर निर्माता निर्देशक पानी की तरह पैसा बहाने से जरा भी परहेज नहीं करते। 26 अगस्त को रिलीज होने वाली यश स्टार टॉक्सिक अ फेयरी टेल फॉर ग्रोनअप्स इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की अब तक की सबसे बड़ी बजट वाली फिल्म मानी जा रही है। 800 करोड़ के भारी भरकम बजट से बनी टॉक्सिक में यश डबल रोल में है, जो इस बात का प्रमाण है कि निर्माता ने इतने भारी भरकम बजट का रिस्क इसी कन्नड़ सुपरस्टार के भरोसे पर ही लिया है।
1: If a man is driven by his passion, defined by hard work, powered by discipline, inspired by a vision, pushing all the time the benchmarks and the boundaries, we all call him as what? We all call him as RSY. Rocking star, yes sir. This film wouldn't have been possible without him. I have heard of him, I had known his work. This is the first time I worked very closely with him, witnessing everything that he does that close is like passion in motion and hard work in action.
0: बेंगलुरु में 8 अगस्त को पूरे फैनफेयर के साथ जब टॉक्सी का ट्रेलर रिलीज किया गया तो उसका रिस्पांस देकर निर्माता वेंकट के नारायण और निर्देशक गीतू मोहनदास को भरोसा हो गया कि केजीएफ फिल्म यश पर खेला गया दांव उल्टा पड़ने वाला नहीं है। इसकी पहली झांकी तो तब दिख गई जब 7 समंदर पार अमेरिका में टॉक्सी की एडवांस बुकिंग का विंडो ओपन हुआ। अमेरिका में एडवांस बुकिंग के पहले ही दिन टॉक्सिक ने 204 लोकेशंस और 589 शोज के लिए 1,16,00,000 रुपए से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया।
2: कोई आखिरी ख्वाहिश?
3: ज्यादा कुछ नहीं, तेरे भाई को जला के उसकी राख से लाइन बना के।
0: टॉक्सिक के ट्रेलर को जिस तरह सोशल मीडिया पर जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है, इस बात की पूरी उम्मीद है कि यश स्टारर ये फिल्म सबसे बड़े बजट के साथ ही सबसे बड़े कलेक्शन का भी कीर्तिमान स्थापित करेगी। पोस्ट इंडिपेंडेंस गोवा की पृष्ठभूमि पर बनी ये फिल्म जबरदस्त पीरियड गैंगस्टर ड्रामा है, जो यश के दोनों किरदारों के इर्द गिर्द घूमती है।
4: I was hoping to have a civilized course.
0: ट्रेलर देखकर पता चलता है कि टॉक्सिक में 1940 से 1970 के बीच गोवा के ड्रग माफिया, उनके बीच होने वाले गैंगवार, रोंगटे खड़े कर देने वाली हिंसा, अपराध, पिता पुत्र के संबंध, वफादारी, विश्वासघात और इंतकाम की भावना के साथ प्यार और रोमांस का डबल डोज है। जाहिर है इस फिल्म में वो सब कुछ है जिसे देखने के लिए सिने प्रेमी थिएटर्स का रुख करते हैं।
5: So this movie is a very tough one because the kind of decisions on the surface level, it was not easy. It is not a perfect commercial package film where you can just say that, okay, this is a film of hero, he's made KGF, this is a number, and then director who has done this film, okay, they can gauge what can happen. But this was a very unique combination and it was a very unique attempt.
0: टॉक्सी का फेरी टेल फॉर ग्रोनअप्स की रिलीज की तारीख भी अपने आप में कई इत्तेफाक समेटे हुए है। फिल्म की रिलीज डेट है 26 अगस्त 2026, यानी 26/8/26। एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक इसका न्यूमेरिक्स 8/8/8 आता है। इत्तेफाक से यश का जन्मदिन भी 8 जनवरी है। इतना ही नहीं, फिल्म का बजट भी 800 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। काबिले गौर है कि टॉक्सिक में लीड रोल निभाने के साथ ही यश इस फिल्म के को प्रोड्यूसर भी हैं। यश की सबसे बड़ी खासियत यह है कि उनकी सोच का कैनवास बहुत बड़ा है। इस अर्थ में वो इस देश के करोड़ों युवाओं की अनूठी प्रेरणा है। सोचिए कि यश के पिता कर्नाटक स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में ड्राइवर थे, सरकारी बस चलाते थे, माँ एक हाउसवाइफ हैं। इनके दूर दूर के रिश्ते में कोई भी फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाला नहीं है, लेकिन बचपन से ही इनकी सोच बड़ी थी, इरादा मजबूत था, हौसला आसमानी था, आत्मविश्वास प्रगाढ़ था। सफलता की राह में आने वाली दुश्वारियों से लड़ने का मादा था और इन सब के साथ नाकामी में विचलित नहीं होने का धैर्य भी था। तभी तो एक अत्यंत साधारण पृष्ठभूमि में पला बढ़ा लड़का आज इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का ऐसा नगीना बन चुका है कि निर्माता निर्देशक इनके नाम पर कितना भी बड़ा रिस्क लेने को तैयार हैं।

0: यश का भी साफ मानना है कि कुछ भी नहीं है नामुमकिन अगर ठान लिया जाए।
1: So what I believe is, when you want to do something in life, nothing should stop you. Most of us listen to people who say bad things about us. What you can't do, what is wrong. I think I'm somebody who doesn't listen to anybody. If somebody is telling me that you can't do this, I'll only see their lack of imagination or their stupidity. Because if I can see it clearly, there's nothing in life, if you are able to put in effort and time and required energy or actions towards something, there's nothing in life which you cannot achieve, is what I believe.
0: यश के इसी अदम्य इच्छा शक्ति को देखकर निर्माता निर्देशक इन पर कोई भी दांव खेलने को तैयार हो जाते हैं। यश की इसी साल एक और फिनोमिनल बजट वाली मूवी रिलीज होने वाली है, रामायण। दो पार्ट में बनने वाली रामायण का बजट 4,000 करोड़ रुपए है। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के नजरिए से देखेंगे तो ये बजट फैंटेसी लगेगा, लेकिन हकीकत यही है कि फिल्म का बजट 4,000 करोड़ रुपए है। रामायण के निर्माता नमित मल्होत्रा हैं, जबकि टॉक्सी की तरह यश इस फिल्म के भी को प्रोड्यूसर हैं। रामायण में यश रावण का किरदार निभा रहे हैं।
2: प्रतिशोध लिया जाएगा सुपर्ण का। राम की
0: वो चाहते तो राम की भूमिका में भी आ सकते थे, लेकिन यश का साफ कहना है कि उन्होंने राम की बजाय रावण की भूमिका इसलिए चुनी क्योंकि जब तक खलनायक का किरदार दमदार नहीं होगा, नायक का नायकत्व निखर कर सामने नहीं आ पाएगा। रामायण का फलक कितना व्यापक है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ऑस्कर विजेता संगीतकार हंस जिमर इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और संगीत तैयार कर रहे हैं। हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर मूवी मैड मैक्स फ्यूरी रोड के एक्शन डायरेक्टर गॉय नॉरिस फिल्म के युद्ध के दृश्यों को डिजाइन कर रहे हैं। अवेंजर्स इन्फिनिटी वार फिल्म टेरी नोटरी फिल्म में परफॉर्मेंस और मोशन कोरियोग्राफी की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। द मैट्रिक्स फेम डैन ग्लास के पास फिल्म के विजुअल इफेक्ट्स की कमान है। रामायण की तरह टॉक्सी को भी ग्लोबल एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है। आपको बता दें कि हॉलीवुड की जानी मानी फिल्म जॉन विक और फास्ट एंड फ्यूरियस के एक्शन डायरेक्टर जे.जे. पेरी ने टॉक्सी के लिए भारत में 45 दिनों तक रहकर बेहद खास एक्शन शेड्यूल शूट किया है। इतना ही नहीं, टॉक्सी को दुनिया भर के 12,000 से अधिक स्क्रीन्स पर रिलीज करने की तैयारी है और इसके इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हॉलीवुड के दिग्गज स्टूडियो 20th सेंचुरी फॉक्स के साथ पार्टनरशिप की गई है। इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन को ध्यान में रखकर ही टॉक्सी को कन्नड़ के साथ अंग्रेजी भाषा में भी शूट किया गया है। टॉक्सिक और रामायण से पहले यश की साल 2018 में आई केजीएफ चैप्टर 1 और साल 2012 में आई केजीएफ चैप्टर 2 ने हिंदुस्तान के साथ ही दुनिया भर में तहलका मचा दिया था। केजीएफ में यश द्वारा निभाया गया रॉकी भाई का करिश्माई और विद्रोही किरदार दुनिया भर के सिने प्रेमियों के बीच एक आइकॉनिक हीरो के रूप में सामने आया। साफ है कि कर्नाटक के हासन जिले के गुमनाम गांव में जन्मे बच्चे ने बिना किसी पारिवारिक सपोर्ट और बिना किसी गॉडफादर के अपनी इच्छा शक्ति, मेहनत और लगन के दम पर न सिर्फ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में कद्दावर और पहचान बनाई, बल्कि अपनी इंडस्ट्री को ग्लोबल स्टेज पर भी पूरी ठसक के साथ मजबूत पहचान दिलाई।
3: यश के एक्टर बनने की दास्तान अत्यंत मर्म स्पर्शी है। इनका जन्म कर्नाटक के हासन जिले के एक साधारण से गांव में हुआ था। यश के पिता बस ड्राइवर थे, लिहाजा आप समझ सकते हैं कि गृहस्थी मुश्किल से ही चलती होगी। लेकिन उसी साधारण परिवार में जन्मे यश के मन में बचपन से ही ये हसरत कुलाचे मारने लगी थी कि उन्हें सिल्वर स्क्रीन का स्टार बनना है। शुरुआती दिनों में यश अपनी हसरत जब दोस्तों के बीच बताते थे तो दोस्त इन पर चुटकी लेते थे, लेकिन साथियों की चुटकियों से विचलित हुए बगैर वो अपने मिशन में काफी कम उम्र से ही जुट गए थे। यश के जीवन की हकीकत भी किसी परी कथा से कम थ्रिलिंग नहीं है।
0: इमेजिनेशन, एनालाइजेशन और एग्जीक्यूशन, अंग्रेजी के इन तीन शब्दों के इर्द गिर्द ही सफलता और असफलता का चक्र घूमता है। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो इमेजिनेशन ना करता हो। हसीन ख्वाब देखना इंसान की बुनियादी फितरत है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो अपने इमेजिनेशन को एनालाइज करते हैं। एग्जीक्यूशन के लेवल तक तो कोई विरला ही पहुंचता है, लेकिन जो पहुंच जाता है वो ही इतिहास के सुनहरे पन्नों में अपना नाम दर्ज कराता है। साउथ के सुपरस्टार यश उन्हीं विरले लोगों में शुमार हैं। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में वंडर बॉय और रॉकिंग स्टार के नाम से पहचान बना चुके यश के शुरुआती जीवन की सच्चाई से जब आप रूबरू होंगे तो जेहन में सवाल उठेगा कि इतनी साधारण पृष्ठभूमि से आने वाला एक शख्स इतना रॉकिंग स्टार कैसे बन गया। कर्नाटक के हासन जिले के छोटे से गांव भुवन हल्ली में 8 जनवरी 1986 को जन्मे यश ने जब से होश संभाला तभी से दिल में रुपहले पर्दे पर स्टार बनकर चमकने की हसरत पलने लगी। घर वाले यश की इस हसरत को कम उम्र की नादानी मानकर बस इतना चाहते थे कि पढ़ लिख कर उनका बेटा एक सरकारी नौकरी पकड़ ले, पर पेरेंट्स को क्या पता था कि यश की एक्टर बनने की ख्वाहिश बाल सुलभ नादानी नहीं बल्कि वास्तविक जुनून है।
1: My father is from Mysore, so I grew up in Mysore. Most of my childhood was in Mysore. My father was a BMTC bus driver and my mother was a housewife. So just like any other middle class, this thing, we were leading a happy life, and then I wanted to become an actor. From childhood, I've been inclined towards this, extra attention we get as an actor, no? For that, maybe all the CT Marna, all this I used to like. I used to participate in a lot of fancy dress, mono acting and all of that. And I used to dance. So that used to give me a lot of happiness. So that's how it started and I got into, it's a long story.
0: हासन जिले के गुमनाम गांव के एक साधारण से परिवार में जन्मे बच्चे के इंटरनेशनल स्टार बनने की दास्तान वाकई बहुत लंबी है। नवीन कुमार गौड़ा से रॉकिंग यश बनने की कहानी दिल को छू लेने वाली है। हीरो बनने की हसरत सजोए यश बिना किसी बाहरी मोटिवेशन के स्वयं की प्रेरणा से स्कूल के नाटकों और डांस प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने लगे, और उनके परफॉर्मेंस पर जब साथी बच्चे तालियां बजाते तो उन्हें उसी उम्र में रॉक स्टार वाली फीलिंग होने लगती। उधर स्कूल के साथी यहां तक कि टीचर्स भी यश को हीरो कहकर संबोधित करने लगे। दूसरी ओर यश को बचपन में कभी ये महसूस ही नहीं हुआ कि सिल्वर स्क्रीन का स्टार बनना नामुमकिन नहीं तो नामुमकिन जैसा जरूर है।
1: I never realized how difficult it is or this. It's just that I believed it at a very young age because all my teachers, they started calling me, Kya hero? How are you? Matlab, jab baat karte the na, even then they used to be like hero bulate the. Because I'd done some small mono acting this thing where I told that, you know, I'll catch Veerappan and all of that when I was young. So they used to tease me with that thing. If Veerappan's any news used to come out, they used to question me, saying, hey, you used to, kidhar hai, pakda nahi abhi tak. So they used to make fun of those things. And I believed that one day, jaake main actor ban jaunga. I didn't know how difficult it is or how much dedication or lot of things go into becoming an actor or anybody who wants to achieve something. I had no clue about that. But I just wanted to be an actor.
0: रुपहले पर्दे का स्टार बनने की धुन के साथ ही यश ने स्कूलिंग पूरी कर ली। लेकिन प्री यूनिवर्सिटी करने के बाद थोड़ी मैच्योरिटी आई तो उन्हें एहसास हुआ कि स्कूल के स्टेज पर परफॉर्म करने और प्रोफेशनल एक्टिंग में बहुत बड़ा फर्क है। ऐसे में उन्हें आगे कदम बढ़ाने के लिए एक्टिंग का कोर्स करने की जरूरत महसूस हुई, लेकिन घर वालों के पास इतने पैसे थे कहां कि यश को किसी एक्टिंग स्कूल में दाखिला दिलवा सकें। पर यश के पास तो दूसरा विकल्प था ही नहीं, लिहाजा एक दिन घर वालों से कह दिया कि वो बेंगलुरु जाएंगे और वहीं एक्टिंग की दुनिया में किस्मत आजमाएंगे। यश के पिता इसके लिए कतई राजी नहीं थे, लेकिन बेटे की जिद देखकर आखिरकार मान गए, पर जाने से पहले एक शर्त रख दी कि अगर वापस लौटने की नौबत आई तो हीरो बनने की हसरत की तिलांजलि दे देनी होगी। यश ने पिता की शर्त मान ली और महज 300 रुपए लेकर बेंगलुरु के लिए रवाना हो गए।
4: I just went and I joined theater and I did a lot of backstage work. Eventually, while doing backstage work, I used to practice for other roles also. Where some actor is late, then I used to give that dialogue cue बोलते उसको। Like that, I used to rehearse and then I was an emergency actor. If somebody is ill or if some actor is not I used to just go and do that. That's how it started. And then I started getting big roles.
0: थिएटर में काम मिलने के बाद तो जैसे यश के अरमानों को पंख लग गए। काम इतनी मेहनत से किया कि उनकी एक्टिंग के चर्चे होने लगे। साल 2004 में यश की किस्मत ने बड़ी करवट ली और उन्हें कन्नड़ टीवी सीरियल नंदा गोकुल में विजय सिंह का किरदार मिल गया। नंदा गोकुल में विजय सिंह के किरदार को यश ने अपनी शानदार एक्टिंग के दम पर इतना जीवंत कर दिया कि दूसरे सीरियल्स के लिए भी ऑफर आने लगे। 3 साल में ही यश छोटे पर्दे के इतने बड़े एक्टर बन गए कि उसकी गूंज फिल्म इंडस्ट्रीज तक सुनाई देने लगी। फिर आया साल 2007 जब यश को बड़े पर्दे पर भी एंट्री मिल गई। इसी साल उन्होंने कन्नड़ फिल्म जम्बडा हुदगी में बड़े पर्दे पर बतौर सेकेंड लीड डेब्यू किया। अगले ही साल यानी 2008 में कन्नड़ फिल्म मोगीना मानासु में यश को लीड रोल निभाने का मौका भी मिल गया। तकदीर भी उन्हीं का साथ देती है जिनके इरादे बुलंद होते हैं। बतौर लीड हीरो यश की पहली ही फिल्म मोगीना मानासु सुपरहिट हो गई। रोमांटिक ड्रामा मोगीना मानासु के लिए यश को फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया। इसके बाद उनके सामने फिल्मों की लाइन लग गई। मोगीना मानासु के बाद यश ने राजधानी, गजकेसरी और मास्टरपीस जैसी फिल्मों में काम किया और उनकी बेहतरीन अदाकारी के दम पर ज्यादातर फिल्में हिट होती चली गईं। हालांकि जिंदगी में खूबसूरत और शानदार मोड़ तब आया जब साल 2018 में KGF चैप्टर 1 रिलीज हुई। KGF चैप्टर 1 में उन्होंने रॉकी का किरदार निभाया जो दर्शकों के दिलों में ऐसे उतर गया कि बॉक्स ऑफिस पर बवंडर आ गया। साल 2022 में KGF का सीक्वल KGF चैप्टर 2 आया जिसने पहले चैप्टर से भी ज्यादा तहलका मचा दिया। KGF चैप्टर 1 और 2 वर्ल्ड वाइड करीब 1500 करोड़ का कलेक्शन कर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो गई। अपने 19 साल के फिल्मी सफर में यश एक दर्जन से ज्यादा हिट फिल्में दे चुके हैं। टॉक्सिक और रामायण जैसी मेगा बजट वाली फिल्में बॉक्स ऑफिस पर क्या करिश्मा कर पाएंगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन दोनों फिल्मों का रिलीज से पहले जैसा बच क्रिएट हो चुका है इसकी पूरी उम्मीद है कि KGF वाला करिश्मा एक बार फिर दोहराया जाएगा। आपको बता दें कि यश बचपन से ही अपने एक्टिंग करियर को लेकर जिस तरह से कमिटेड थे वैसे ही अपने शरीके हयात राधिका पंडित को लेकर भी हैं। दोनों की पहली मुलाकात कन्नड़ टीवी सीरियल नंदा गोकुल की शूटिंग के दौरान 2007 में हुई थी और पहली मुलाकात में ही आंखें चार हो गईं। उसके बाद यश ने किसी दूसरे विकल्प पर कभी विचार ही नहीं किया। दोनों ने साल 2016 में शादी कर ली। आज यश और राधिका की जोड़ी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सर्वाधिक कमिटेड कपल में शुमार की जाती है।
3: तो बंदे में है दम में आज आपने अभिनेता यश के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को जाना। अगले हफ्ते ऐसे ही किसी और बेमिसाल शख्सियत के सफरनामे के साथ हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे यानी कि श्वेता झा को दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
5: और ये मार्केट्स
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है।
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: अंतिम सोमवार का क्या है पूजा विधान? सावन के अंतिम सोमवार पर कौन सी मनोकामनाएं होंगी पूरी और कैसे मिलेगा शिव जी का वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
8: कल सावन का आखिरी सोमवार, सावन के अंतिम सोमवार के साथ ही बन रहे हैं कई शुभ संयोग। इस साल सावन में महादेव को प्रसन्न करने का आखिरी मौका। मुंबई के पंडालों में पधार रहे हैं गणपति बप्पा। काली चौकी के महाराज के स्वागत में उमड़े हजारों श्रद्धालु फूल नगाड़ों के साथ, भव्य स्वागत। अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर बदली गई धर्म ध्वजा, वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूरे विधि विधान के साथ निभाई गई परंपरा। मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में पारंपरिक काली घटा का अलौकिक आयोजन, फूलों और आकर्षक लाइटों से मनमोहक हुआ नजारा, ठाकुर जी के दर्शन कर गदगद हुए भक्त। बारिश के लिए जैसलमेर के पुरैतेश्वर महादेव मंदिर में महारुद्राभिषेक, 121 रुद्रपीठ, पंडितों ने किया सामूहिक रुद्री पाठ, मंत्रोच्चार से गूंजा परिसर। अजमेर में देखी राजस्थानी संस्कृति की झलक, मातृशक्ति मानसून महोत्सव में जुटी हजारों महिलाएं, मेगा लकी ड्रॉ और मेडिकल कैंप्स का भी आयोजन। नागपुर में 4,000 से ज्यादा युवक युवतियों ने ढोल ताशा बजाकर बनाया अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ नागपुर का नाम।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है।

0: नए दौर का सबसे घातक हथियार। युद्ध की दिशा और दशा बदलने की क्षमता रखता है। रण क्षेत्र में जब यह उतरता है तो सरहदें छोटी लगने लगती हैं। दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को भी चकमा देने की ताकत है इसके पास। मॉडर्न वॉरफेयर का यह हथियार है अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जिसे दुनिया ड्रोन के नाम से जानती है।
1: हाल के दिनों में हमने देखा कि किस तरीके से इसराइल ने हुती हमास और ईरान पर अपनी ड्रोन ताकत का इस्तेमाल किया। रूस और यूक्रेन वॉर में भी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है। अमेरिका अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए ड्रोन का ही सहारा ले रहा है और अब भारत भी इसमें पीछे नहीं है। भारत भी ऐसे ऐसे ड्रोन को अपने बेड़े में शामिल कर रहा है जिनके सामने दुश्मन का टिक पाना नामुमकिन होगा।
0: ड्रोन साइज में छोटे होते हैं, इसलिए रडार की पकड़ में आसानी से नहीं आते। साथ ही दुर्लभ इलाकों में भी ये गुपचुप घुसपैठ कर सकते हैं और यही वजह है कि सेना में इनका इस्तेमाल बढ़ने लगा है। ड्रोन हमले दो प्रकार से संभव हैं। एक तरीका यह है कि ड्रोन में हथियार या फिर विस्फोटक लगा दिए जाते हैं और ड्रोन इन हथियारों या विस्फोटक को लक्ष्य पर ड्रॉप कर देते हैं। ड्रोन से हमले का दूसरा तरीका है ड्रोन को खुद ही एक विस्फोटक में तब्दील कर दिया जाए, यानी खुद ही विस्फोटक के साथ टारगेट से टकरा जाए, जिसे कैमिकेज यानी कि सुसाइड ड्रोन भी कहा जाता है।
2: आज ड्रोन बहुत ही आधुनिक हो गए हैं और ड्रोन एक घातक हथियार है। इसके अंदर आपके पास कामिकाजी ड्रोन भी हैं जो कि सुसाइडल ड्रोन माने जाते हैं, और इसके अंदर सर्विलेंस वाले ड्रोन भी हैं जो रेकी एंड सर्विलेंस करते हैं। इसके पास वो ड्रोन भी हैं जो जाके डीप इनसाइड दुश्मन के इलाके में एक प्रकार से सटीक वार कर सकते हैं। तो ये सच्चाई है, ड्रोन जो है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट वेपन है आज मॉडर्न वर्ल्ड वॉर में।
0: भारत के पास कई एडवांस किस्म के ड्रोन मौजूद हैं जो दुश्मन के किसी भी ठिकाने को तबाह कर सकते हैं। इसमें केमिकल ड्रोन की ताकत सबसे खास है, इसे सुसाइड ड्रोन भी कहा जाता है। दहशतगर्दों के ट्रेनिंग सेंटर पर बारूद बरसाने से लेकर घात लगाए बैठे दुश्मनों को हमेशा के लिए खामोश करना केमिकल ड्रोन के लिए बाएं हाथ का काम है। आकार में छोटा होने के बावजूद ये बड़ी तादाद में तबाही मचाने की ताकत रखते हैं। भारतीय सेना के पास हार्पी ड्रोन की ताकत है जिसे इसराइल से लिया गया है। हार्पी सुसाइड ड्रोन है जिसे इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने तैयार किया है। साल 1989 में पहली बार हार्पी ड्रोन का परीक्षण किया गया था जिसमें यह हमारी उम्मीदों पर खरा उतरा और आज ये भारतीय सेना की ताकत का हिस्सा बन चुके हैं। हार्पी को दुश्मन के रडार सिस्टम और एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने के लिए तैयार किया गया है। इसमें एंटी रेडिएशन सीकर लगाया गया है जिसकी मदद से रेडिएशन के स्रोतों का आसानी से पता लगाया जा सकता है। ये रेडियो सिग्नल्स का पता लगाकर हमला करता है। इसे ऑटोनॉमस और मैनुअल दोनों मोड पर ऑपरेट किया जा सकता है।
2: वो बहुत ही आधुनिक है, वो एक प्रकार इसराइल का बना हुआ है, भारत के पास है, और वो एयर डिफेंस सिस्टम को जो है एक प्रकार चकमा दे देता है, उसको एयर डिफेंस सिस्टम डिटेक्ट नहीं कर पाता इन एनी वे। क्योंकि ये सच्चाई है कि जो ये ड्रोन भारत ने लिया इसराइल से, बहुत ही सटीक हमला करता है और एक ये डिटेक्ट नहीं हो सकता, लो हाइट पे चलता है और रडार इसको पकड़ नहीं पाते।
0: आरपी ड्रोन तो ट्रक और जहाज से लॉन्च किया जा सकता है और इसकी सबसे खास बात यह है कि इसे लॉन्च करने के बाद ऑपरेटर की जरूरत नहीं होती, ये खुद टारगेट को डिटेक्ट कर उसे तबाह कर देता है। हार्पी ड्रोन लगातार 6 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम है और इसकी ऑपरेशनल रेंज 1000 किलोमीटर तक है, जिससे सेना को बिना किसी जोखिम के दुश्मन को निशाना बनाने में मदद मिलती है। स्पीड की बात की जाए तो ये 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने में सक्षम है और ये अपने साथ 32 किलो तक का हथियार ले जा सकता है। दिन हो या रात किसी भी समय हमला करने में सक्षम ये ड्रोन हमले के बाद दुश्मन के हाथ नहीं आता, क्योंकि ये अपना मिशन पूरा करने के बाद खुद ही नष्ट हो जाता है और यही वजह है कि इसे फायर एंड फॉरगेट कैटेगरी में रखा जाता है।
1: भारत के पास इजराइल से आया एक और ड्रोन है जिसका नाम है हेरॉन और हेरॉन का असली काम है निगरानी करना, जानकारी जुटाना और युद्ध के मैदान में ये दुश्मन की हर खुफिया जानकारी का पता लगा सकता है, सर्वेलेंस का काम भी आसानी से कर सकता है।
0: हेरॉन इतना शक्तिशाली है कि इसका इस्तेमाल सर्जिकल स्ट्राइक तक में किया जा सकता है। अभी भारत के पास हेरॉन मार्क 2 है और ये करीब 35,000 फीट की ऊंचाई पर एक बार में लगातार 36 घंटे तक उड़ान भर सकता है। इसकी अधिकतम रेंज करीब 3000 किलोमीटर है और ये 250 किलो तक का वजन लेकर उड़ सकता है।
2: देखो हेरॉन ड्रोन भी इजराइल का है, बहुत ही अच्छा ड्रोन है और इसकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इसकी इंड्योरेंस ज्यादा है और ये जो है सर्विलेंस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, रेकी के लिए भी किया जाता है और दुश्मन के ऊपर हमला करने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है।
0: सैटेलाइट से कंट्रोल होने वाला ड्रोन है जो हर मौसम में अपना मिशन पूरा करने में सक्षम है। इसमें एंटी जैमिंग तकनीक लगी है जिससे हेरॉन ड्रोन को किसी भी तरह से जैम नहीं किया जा सकता। हेरॉन ड्रोन में कई तरह के सेंसर्स और कैमरा लगे होते हैं, जैसे कि थर्मोग्राफिक कैमरा यानी इंफ्रारेड कैमरा जो रात में अंधेरे में देखने में इसकी मदद करता है। इसके अलावा विजिबल लाइट एयरबॉर्न ग्राउंड सर्विलांस जो कि दिन की रोशनी में तस्वीरें लेता है, साथ ही इंटेलिजेंस सिस्टम समेत कई तरह के रडार सिस्टम मौजूद हैं। हेरॉन ड्रोन की सबसे बड़ी बात यह है कि आसमान से ही

0: हथियार, ऐसे ऐसे ड्रोन की ताकत को बना रहा है जो दुश्मन को मिनटों में नेस्तनाबूद कर सकते हैं।
1: अब भारत सिर्फ रक्षा ही नहीं करता बल्कि आसमान पर नियंत्रण भी रखता है। भारतीय सेना ने खरगा कामिकेज ड्रोन को अपने बेड़े में शामिल कर लिया है। ये ड्रोन खुफिया और निगरानी भूमिकाओं में अहम है। भारतीय सेना ने इस ड्रोन को मदर ड्रोन का नाम दिया है, जिसके साथ दो छोटे ड्रोन भी अटैच किए जाएंगे। ये ड्रोन एम्यूनिशन यानी कि RDX 7 लेकर उड़ने में सक्षम है। दिन हो या रात, तूफान हो या बरसात, हर हालात में अपने मिशन को पूरा करने में सक्षम है भारत का खरगा कामिकेज ड्रोन। GPS नेविगेशन सिस्टम और हाई डेफिशिएंसी कैमरा से लैस खरगा ड्रोन 700 ग्राम तक विस्फोटक ले जा सकता है।
2: देखिए, 700 ग्राम का जो एक्सप्लोसिव होता है वो काफी कारगर होता है, बहुत इफेक्टिव होता है। अगर जिस इलाके में वो गिरेगा वहां पे तबाही मचाएगा और तकरीबन 20 से 25 मीटर के दायरे में जो भी कुछ होगा उसको पूरी तरीके से खत्म कर देगा। देखिए, इसमें एक बख्तरबंद गाड़ी या एक ट्रुप जो टैंक का होता है वो नुकसान हो सकता है। अगर किसी बिल्डिंग के ऊपर गिरेगी तो वो बिल्डिंग धराशायी हो सकती है। अगर ट्रुप सेंट ओपन है, अगर वहां गिरता है तो पूरे पूरे जो प्लटून है, जो सेक्शन है, वो वहां तबाह हो सकता है।
1: खरगा कामिकेज ड्रोन आर्मी के ग्राउंड ऑपरेशन के समय दुश्मन की खुफिया जानकारी इकट्ठा कर सकता है। ये ड्रोन लंबे समय तक टारगेट वाले इलाके में उड़ सकता है। खरगा की रेंज करीब 1.5 किलोमीटर है और ये 40 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से उड़ने में सक्षम है। खरगा कामिकेज ड्रोन की खासियत है कि ये वजन में बेहद हल्का है, तो एक लॉन्च और हवाई टारगेट करने में भी आसान है।
2: जो खरगा कामिकेज ड्रोन है वो एक हाई टेक्नोलॉजी ड्रोन है। ये लो फ्लाइंग करता है जिससे रडार इसको डिटेक्ट नहीं कर पाते। इसमें HD कैमरा लगा रहता है। ये इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए और सर्वेलेंस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है।
1: खरगा कामिकेज ड्रोन की और खास बात यह है कि ये रडार की रेंज में आए बगैर दुश्मन या उसके ठिकानों को तबाह कर सकता है। अगर दुश्मन ने इसे देख भी लिया तो वो इसके पास दुश्मन के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जैमिंग के लिए जवाबी उपाय भी है।
2: इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जैमिंग की जब हम बात करते हैं तो वो उस फ्रीक्वेंसी बैंड को जैम करता है जिसपे ये ड्रोन ऑपरेट करता है। और इसमें ये प्रोविजन दिया गया है कि इसमें उसका काउंटर मेजर अवेलेबल है। ये फ्रीक्वेंसी हॉपिंग कर सकता है स्पेक्ट्रम टेक्निक द्वारा, या इसका एंटीना जो है वो इस तरीके से बनाया गया है कि वो जैमर को बरखिलाफ काम किया जा सकता है। और तमाम तरीके के एंटी जैमिंग मेजर्स हैं उसका इसमें इस्तेमाल किया गया है। कहने का मतलब यह है कि अगर दुश्मन चाहे इसको डिस्ट्रॉय करना या इसको मिसगाइड करना तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि रडार इसको कैच नहीं कर सकता, जैमर इस पे इफेक्टिव है नहीं।
1: युद्ध के मैदान में ड्रोन ने एंट्री लेते ही अपना वर्चस्व दिखाना शुरू कर दिया है। अब आपके मन में भी सवाल उठ रहा होगा कि ड्रोन को किसने तैयार किया और कब तैयार किया। ड्रोन बनाने का क्रेडिट इराकी मूल के अमेरिकी इंजीनियर इब्राहिम करीम को जाता है। इब्राहिम करीम ने पहला ड्रोन इजरायली सेना के लिए साल 1973 में योम कपूर वॉर के समय तैयार किया था। आज ये ड्रोन कई कैटेगरी की तरह कई रूप ले चुका है। सबसे पहले ड्रोन की कैटेगरी और उनके इस्तेमाल के बारे में बताते हैं। पहला है नैनो ड्रोन। 250 ग्राम क्षमता वाले इस ड्रोन का इस्तेमाल हॉबी टॉय से लेकर स्पाई कैमरा के लिए होता है। अगला है माइक्रो ड्रोन। इसकी क्षमता 2 किलो तक की होती है। इसका इस्तेमाल मैपिंग और सर्वे के लिए किया जाता है। स्मॉल ड्रोन की क्षमता 2 किलो से 25 किलो तक है। इसका इस्तेमाल ज्यादा दूरी तक मैपिंग और सर्वे करने में होता है। वहीं मीडियम ड्रोन की क्षमता 25 किलो से लेकर 150 किलो तक होती है। इसका इस्तेमाल एग्रीकल्चर सेक्टर में सामान की डिलीवरी करने में होता है। हैवी ड्रोन की बात करें तो ये 150 किलो से ज्यादा वजन लेकर उड़ान भर सकता है। इसका इस्तेमाल डिफेंस सेक्टर में होता है। ड्रोन अपने छोटे आकार और लो फ्लाइंग की वजह से रडार की पकड़ में नहीं आते। लिहाजा सवलान से लेकर अटैक में ड्रोन का इस्तेमाल तेजी से बढ़ता जा रहा है।

0: रक्षा जानकारों का मानना है कि आने वाले सालों में युद्ध का तौर तरीका पूरी तरह से बदल जाएगा। यहाँ पर सैनिकों की जगह रोबोट्स लेंगे, यानी कि तकनीक का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल होगा। रोबोट्स का इस्तेमाल होगा, हवाई हमलों का इस्तेमाल होगा, ड्रोन की ताकत आने वाले सालों में और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि युद्ध इसी तरीके से लड़े जाएंगे। और इसी को समझते हुए भारत भी अपनी ताकत को और ज्यादा मजबूत कर रहा है। भारत खुद को तकनीकी रूप से इतना सशक्त बना रहा है कि वो युद्ध के मैदान में दुश्मन को पटखनी दे सके।
1: दुनिया के ज्यादातर देश समझ चुके हैं कि ड्रोन ही वो हथियार है जो युद्ध में गेम चेंजर साबित हो सकता है, यानी जिसका ड्रोन जितना ताकतवर होगा, युद्ध में जीत उसी की सुनिश्चित होगी। सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे ने कहा था कि भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए भारत तैयार है और वो अपनी तैयारियों को धार दे रहा है।
0: भारतीय सेना को लॉयटरिंग म्यूनिशन यानी कि आत्मघाती ड्रोन नागास्त्र एक मिल चुका है। इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत भारत ने इसे लिया है और अब ये हमारी सेना का एक अहम हिस्सा बन चुका है।
1: भारत में तैयार पहला स्वदेशी लॉयटर म्यूनिशन नागास्त्र एक ड्रोन है। इसे इतना ताकतवर बनाया गया है कि आसानी से सीमा पर पनपती साजिशों को राख में मिला सकता है। आत्मघाती ड्रोन को साइलेंट मोड में 1200 मीटर की ऊंचाई से ऑपरेट किया जा सकता है, जिससे इसे पहचानना मुश्किल हो जाता है। नागास्त्र एक अपने साथ करीब 2 किलो एक्सप्लोसिव लेकर उड़ सकता है, जो 15 किलोमीटर दूर तक टारगेट को तबाह कर सकता है। लॉन्चिंग म्यूनिशन एक एरियल वेपन सिस्टम है। ये ड्रोन हवा में टारगेट के आसपास घूमते हैं और कमांड मिलते ही आत्मघाती हमला कर देते हैं। इसे आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि ड्रोन अपने साथ 2 से ज्यादा ग्रेनेड लेकर उड़ते हैं। अब जरा सोचिए कि बॉर्डर पर दुश्मन घात लगाए बैठा हो और घुसपैठ की फिराक में नागास्त्र ड्रोन हमला कर दुश्मन के परखचे उड़ा दे।
2: देखो, नागशस्त्र ड्रोन जो है ये एक भारत ने अपने इंडिजिनियसली बनाया है और इसके अंदर जो सामान इस्तेमाल किया गया 75% जो है आत्मनिर्भर भारत के तहत बना है। और ये एक कामिकाजी ड्रोन है और एक ये गेम चेंजर है, फोर्स मल्टीप्लायर। ये एक छोटा ड्रोन है जो कि मिक्सचर है एक प्रकार से आपका मिसाइल और यूएवी का। ये 30 kg के करीब है, ये पैक्ड ले जाया जा सकता है। और इसकी 3-4 बड़े इंपॉर्टेंट खसूसियत हैं। एक तो ये ऑलमोस्ट 100% अपने टारगेट को हिट करता है और ये लॉटरिंग अमनूशन है। ये एक प्रकार डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल है दुश्मन से, बिकॉज ये जमीन के बहुत नजदीक उड़ता है और ये 15 किलोमीटर तक जो वार कर सकता है और जो 30 किलोमीटर का इसका दायरा है, और ये एक प्रकार से उस इलाके के अंदर लॉटर करता है और उसके बाद जब टारगेट को जीपीएस की तरह से सिलेक्ट कर लेता है।
1: नागास्त्र ड्रोन एक सुसाइडल ड्रोन है जिसकी ताकत और नजरों से बचना दुश्मन के लिए आसान नहीं होता। ये ड्रोन खुद को खत्म कर दुश्मन का सर्वनाश कर सकता है।
2: कामिकाज़ी ड्रोन बोलते हैं, जिसको सुसाइडल ड्रोन भी बोलते हैं। तो ये ड्रोन जो है एक बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है कि ये एक प्रकार अपने टारगेट को जाके हिट करता है, अपने आप भी बर्बाद हो जाता है और टारगेट को भी बर्बाद करता है। देखो, ये चली थी प्रथा जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जिस प्रकार से जापानीज थे वो अपना छोटा एयरक्राफ्ट लेके बड़ी बड़ी शिप है उसके ऊपर हमला करते थे, जाके उसके इंजन के अंदर घुस जाते थे, खुद तो एक्सप्लोड हो जाते थे मगर पूरे शिप को बर्बाद कर देते थे। तो ये सच्चाई है, इसीलिए इसका नाम कामिकाज़ी ड्रोन पड़ा है। और ये एक जो कामिकाज़ी ड्रोन है वो बहुत ही ज्यादा पुख्ता है और वो बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं और वो 100% अपने टारगेट को हिट करके खुद भी जो है बर्बाद होते हैं मगर टारगेट को बर्बाद कर देते हैं।
1: नागास्त्र ड्रोन को युद्ध क्षेत्र में आसानी से असेंबल किया जा सकता है। इसे ग्राउंड बेस्ड लॉन्चर सिस्टम या फिर हाथ से भी लॉन्च किया जा सकता है। नागास्त्र 1 ड्रोन का वजन करीब 10 किलो है, जो आसानी से 60 मिनट यानी कि एक घंटे तक उड़ान भर सकता है, और अगर टारगेट न मिले तो ये वापस भी आ जाएगा। पैराशूट के जरिए इसकी सॉफ्ट लैंडिंग कराई जा सकती है।
2: ड्रोन्स हैं, अगर वो सुसाइडल हैं, अगर वो अपने टारगेट को हिट करने में सक्षम नहीं है या टारगेट जो है मूव कर जाता है, तो उसके बाद उसको सॉफ्ट लैंडिंग कराया जा सकता है पैराशूट की मदद से, तो उसको रिट्रीव किया जाता है। हम बात कर रहे थे नागशास्त्र की, उसके अंदर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यही है कि उसके अंदर वो अपने टारगेट को खुद सेलेक्ट करता है, वो जो एरिया है उस पर लॉयटर करता है, और उसके बाद जब वो जीपीएस से टारगेट को डिटेक्ट कर लेता है तो फिर जाके टारगेट को हिट करता है, और टारगेट जो है 100% के करीब बर्बाद हो जाता है। इसकी एक्यूरेसी 2 मीटर तक की है। तो ये है कि जो सुसाइडल बॉम्ब हैं, इनको जो कामिकोजी ड्रोन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और अगर ये इनका मिशन अनसक्सेसफुल हो जाता है या मिशन अबॉर्ट हो जाता है तो इसको वापिस भी बुलाया जा सकता है।
1: जीपीएस एनेबल नागास ड्रोन 2 मीटर की सटीकता के साथ किसी भी खतरे को बेअसर कर सकता है।
3: Once we manually feed the target area, or it can automatically also acquire the target, it dives onto the target and it destroys the target along with itself. The accuracy of this particular equipment is less than 2 meters that we were able to achieve.
1: Ground control system और ground data terminal की मदद से नागास्त्र को control किया जाएगा। दुश्मन दिखा नहीं कि उसकी तबाही का countdown शुरू।
0: नागास्त्र दरअसल एक फिक्स विंग ड्रोन है जिसके मिडल में विस्फोटक रख के इसे दुश्मन पर हमला किया जा सकता है, और इसे ट्राइपॉड या फिर हाथ से भी उड़ाया जा सकता है। फिलहाल नागास्त्र 2 पर भी काम चल रहा है, जो नागास्त्र 1 का अपग्रेडेड वर्जन होगा। नागास्त्र की अगर बात की जाए तो ये 25 किलोमीटर तक और 90 मिनट तक उड़ान भर सकता है।

0: रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: अभी गणेश उत्सव में काफी दिन है लेकिन तैयारियां जोरों पर हैं। मुंबई के लालबाग परेल इलाके में काला चौकी में आज गणपति बाबा का आगमन हुआ। तस्वीरें देखिए, मुंबई के प्रसिद्ध गणेश उत्सव पंडालों में से एक गणेश चतुर्थी के दौरान विघ्नहर्ता की बहुत सुंदर भव्य मूर्ति स्थापित की जाती है। गणेश उत्सव के दौरान दर्शन करने के लिए हजारों भक्त यहां पर आते हैं। जैसे जैसे गणेश उत्सव की तारीख जो है नजदीक आ रही है, बप्पा की मूर्ति अलग अलग पंडालों में लाई जा रही है ताकि महोत्सव के दौरान भव्य और दिव्यता प्रदान की जा सके। दो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन में दिखा रहे हैं, कितनी बड़ी संख्या में तमाम श्रद्धालु बढ़ चढ़कर स्वागत कर रहे हैं बप्पा के आगमन का।

बात करेंगे नए वर्ल्ड रिकॉर्ड की। नागपुर में एक साथ 4000 से ज्यादा लोगों ने ढोल और ताशा बजाकर एक अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया और एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज हो गया। करीब 585 ध्वजधारकों ने अपने अपने दल के साथ सहभागिता दर्ज कराते हुए नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अधिकारियों ने आयोजकों को सर्टिफिकेट भी प्रदान किए। इस खास मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे।

0: आज देश अंतरिक्ष दिवस मना रहा है। इसरो के चंद्रयान 3 मिशन के विक्रम लैंडर की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग का करने की ऐतिहासिक उपलब्धि की याद में जो है ये दिन मनाया जाता है। भारत चंद्रमा के इस क्षेत्र में पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बना था। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में स्पेस स्टार्टअप्स के सीईओ और फाउंडर्स के साथ मुलाकात की, उनसे बातचीत भी की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी के व्यापक इस्तेमाल पर जोर दिया।
1: कोई मेरा हाथ नहीं छोड़ देगा और ये विश्वास पैदा करने का।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: अंतिम सोमवार का क्या है पूजा विधान? सावन के अंतिम सोमवार पर कौन सी मनोकामनाएं होंगी पूरी और कैसे मिलेगा शिव जी का वरदान? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
3: कल सावन का आखिरी सोमवार, सावन के अंतिम सोमवार के साथ ही बन रहे हैं कई शुभ संयोग। साल सावन में महादेव को प्रसन्न करने का आखिरी मौका। मुंबई के पंडालों में पधार रहे हैं गणपति बप्पा। काली चौकी के महाराज के स्वागत में उमड़े हजारों श्रद्धालु, ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत। अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर बदली गई धर्म ध्वजा, वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूरे विधि विधान के साथ निभाई गई परंपरा। मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में पारंपरिक काली घटा का आयोजन, फूलों और आकर्षक लाइटों से मनमोहक हुआ नजारा, ठाकुर जी के दर्शन कर गदगद हुए भक्त। बारिश के लिए जैसलमेर के पुरोहितेश्वर महादेव मंदिर में महारुद्राभिषेक, 121 रुद्र पाठी पंडितों ने किया सामूहिक रुद्री पाठ, मंत्रोच्चार से गुंजायमान हुआ परिसर। अजमेर में देखी राजस्थानी संस्कृति की झलक का, मातृ शक्ति मॉनसून महोत्सव में जुटी हजारों महिलाएं, मेगा लकी ड्रॉ और मेडिकल कैंप का भी आयोजन। नागपुर में 4,000 से ज्यादा युवक युवतियों ने ढोल ताशा बजाकर बनाया अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ नागपुर का नाम।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
3: कल सावन का आखिरी सोमवार, शिव भक्ति का खास दिन, शिवालयों में उमड़ेगी भक्तों की भीड़। भोलेनाथ का जलाभिषेक और रुद्राभिषेक करेंगे श्रद्धालु, हर हर महादेव के जयकारों से गूंजेंगे शिवालय। आखिरी सावन सोमवार पर शिव की पूजा अर्चना का विशेष महत्व, भक्त बेलपत्र दूध और जल से करेंगे अभिषेक। मनोकामना पूर्ति के लिए भक्त करेंगे महादेव की आराधना, व्रत और पूजा के साथ शिव कृपा पाने का विशेष अवसर। श्रद्धा और भक्ति से शिवमय होगा सावन का अंतिम सोमवार, शिव आराधना के साथ सावन मास का समापन चरण में पहुंचेगा। श्रवण मास में अमरावती के आनंदेश्वर मंदिर में बढ़ रही है श्रद्धालुओं की भारी भीड़, अब भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए दूर दूर से पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। मंदिर में विधि विधान के साथ पूजा पाठ और अभिषेक हुआ, भक्तों ने शिवलिंग पर जल और बिलपत्र अर्पित किए। 8 साल पुराना है आनंदेश्वर मंदिर, यादव कालीन वास्तुकला का अद्भुत नमूना। कासगंज में 131 मीटर लंबा कांवड़ बना आकर्षण का मुख्य केंद्र, हनुमान की पूंछ वाली कांवड़ ने खींचा सभी का ध्यान। कांवड़ में हनुमान और वानर सेना का दिखा स्वरूप, हनुमान के रूप में नजर आए शिव भक्त, हनुमान की लंबी पूंछ से भरा गंगा जल। मुंबई के गणेश उत्सव की तैयारियां तेज, काली चौकी के महाराजा का हुआ भव्य आगमन, लालबाग इलाके में बप्पा के स्वागत भव्य स्वागत। ढोल ताशों की गूंज के बीच पहुंचे काली चौकी के महाराजा, बप्पा के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु में जबरदस्त उत्साह। ढोल नगाड़ों और गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों से गुंजायमान हुआ लालबाग का, बप्पा की एक झलक पाने के लिए लालाहित नजर आए भक्त। काली चौकी के महाराजा की विशाल मूर्ति बनी आकर्षण का मुख्य केंद्र, बप्पा के आगमन से गणेश उत्सव का बढ़ा क्रेज। गणेश उत्सव से पहले मुंबई में देखा उत्सव का रंग, काली चौकी के महाराजा के आगमन से भक्तिमय हुआ माहौल। अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर लहराया धर्म ध्वज, श्रावण शुक्ल पक्ष में राम मंदिर का बदल गया ध्वज। नया ध्वज बना आकर्षण का मुख्य केंद्र, दर्शन करने के लिए राम मंदिर में उमड़ रहे श्रद्धालु, नए धर्म ध्वज से रामनगरी का माहौल भक्तिमय। नया ध्वज पर सूर्य, ओम और कोविदार वृक्ष का चिन्ह, त्रिकोणाकार धर्म ध्वज पर देखे धार्मिक प्रतीक लहराते हुए ध्वज ने की चर्चा। राम मंदिर परिसर में धार्मिक परंपरा का निर्वहन, विधि विधान के साथ नए ध्वज का आरोहण। ध्वज परिवर्तन के दौरान मंदिर परिसर का दिखा विहंगम दृश्य, रामनगरी में नए धर्म ध्वज को लेकर श्रद्धालु में उत्साह। नागपुर में ढोल ताशा बजाने का बना अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड, एक साथ 4000 से ज्यादा युवक युवतियों ने बजाया ढोल। नागपुर में ढोल ताशे की गूंज से माहौल हुआ जोश से भरा, एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नागपुर का नाम हुआ दर्ज। 585 ध्वज धारकों ने ढोल ताशा पाठकों का नेतृत्व किया, 200 से ज्यादा ढोल ताशा पाठकों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। हजारों युवाओं ने एक साथ ढोल ताशे की बिलाई या ताल, युवाओं की शानदार प्रस्तुति ने खींचा सभी का ध्यान। एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने आयोजकों को प्रमाण पत्र दिए। जैसलमेर में भगवान शिव का हुआ भव्य महारुद्राभिषेक, बारिश की कामना को लेकर शिव मंदिर में विशेष अनुष्ठान। पुरोतेश्वर महादेव मंदिर में धार्मिक आयोजन का किया गया 121 रुद्र पाठी, पंडितों ने किया सामूहिक रुद्री पाठ। गड़ीसर तालाब स्थित मंदिर परिसर भक्तिमय नजर आया, महारुद्राभिषेक में अच्छी बारिश की कामना की गई। हवन और आहुतियों से गुंजायमान हुआ पुरोहितों की बगीचे परिसर, हर हर महादेव से गुंजायमान हुए जयकारे। अग्नि स्थापना और ब्रह्म पूजन विधि विधान के साथ हुआ, बड़ी संख्या में श्रद्धालु महारुद्राभिषेक में शामिल हुए, शिव भक्ति में डूबे नजर आए सैकड़ों श्रद्धालु। दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश स्थित इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी की तैयारियां शुरू, 4 सितंबर को मंदिर में मनाया जाएगा भगवान कृष्ण का भव्य जन्मोत्सव। जन्माष्टमी से पहले रंग बिरंगी लाइटों से सजाया जा रहा है इस्कॉन मंदिर परिसर में, सजावट और रंग रोगन का काम जारी। जन्माष्टमी को लेकर मंदिर परिसर में लगाए जा रहे हैं रंग बिरंगे टेंट, बड़ी संख्या में भक्तों के पहुंचने का सिलसिला। जन्माष्टमी के मौके पर लाखों भक्त भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं इस्कॉन मंदिर, करीब 2 महीने पहले शुरू हो जाती है तैयारियां। इस्कॉन मंदिर में इस बार भी जन्माष्टमी पर भव्य आयोजन होगा, मंदिर को सजाने श्रद्धालुओं के स्वागत की भव्य तैयारियां। हिमाचल प्रदेश के मंदिरों में दान के लेकर बने नए रिकॉर्ड्स, 36 मंदिरों में 1 जनवरी 2024 से लेकर 1 अगस्त 2026 के बीच में 420 करोड़ रुपए का चढ़ावा आया। सबसे ज्यादा चढ़ावा हमीरपुर के बाबा बालकनाथ देवत सिद्ध मंदिर में आया, यहां पर 99 करोड़ रुपए से ज्यादा का चढ़ावा। बिलासपुर के नैना देवी मंदिर में 86 करोड़ रुपए से ज्यादा का चढ़ावा हुआ, माता चिंतपूर्णी मंदिर में 85 करोड़ से ज्यादा का दान। हरिद्वार में हर की पौड़ी में दिखा आस्था का अनोखा संगम, मुल्तान समाज के लोगों ने मां गंगा के साथ दूध वाली होली खेली। मुल्तान समाज की ओर से लोगों को गंगा स्वच्छता का संदेश दिया गया, एक दूसरे को गुलाल लगाकर सबके कल्याण की कामना। देशभर में रक्षाबंधन को लेकर बाजारों में छाई रौनक, राखी से लेकर गिफ्ट की दुकानों में बिक्री। सूरत के स्पेशल स्कूल में बच्चे तैयार कर रहे हैं खास राखियां, लोगों को आ रही है काफी पसंद। स्पेशल बच्चों को स्कूल की टीचर दे रही हैं राखी बनाने की प्रशिक्षण, बच्चे अपने मन की डिजाइन से राखी करते हैं तैयार। गया में रंग बिरंगी राखियों से सज गया बाजार, बहनें अपने भाइयों के लिए खरीद रही हैं पसंदीदा राखियां। पाली में पर्यावरण की रक्षा करने के लिए गोबर से बनी राखियों की बढ़ी डिमांड, उपहार के लिए आकर्षक गहने भी बने। रक्षाबंधन को लेकर करनाल में बाजारों में रौनक छाई, बहनें अपने भाइयों के लिए जमकर खरीद रही हैं राखियां। उधर के द्वारका देश मंदिर में काली घटा का आयोजन किया गया, मंदिर में दिखा सावन का मनमोहक दृश्य। ठाकुर द्वारकाधीश महाराज को काली घटा में कराया गया विराजमान, मंदिर परिसर को काले वस्त्रों, आकर्षक रोशनी और फूलों से सजाया गया। काले बादलों की गड़गड़ाहट, चिड़ियों की चहचहाट और बिजली की घनघोर आवाजों से बनाया गया बारिश का माहौल। ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु है भाव विभोर। अजमेर में मात्र शक्ति मॉनसून फेस्ट 2026 का भव्य आयोजन, डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने महिलाओं के साथ झूला भी झूला। फेस्ट में राजस्थानी संस्कृति की शानदार झलक, भव्य प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। लहरिया प्रतियोगिता फेस्ट का खास आकर्षण रही, महिलाओं ने राजस्थानी गेटअप में मंच पर रैंप वॉक किया। बौद्ध धर्म दलाई लामा का लद्दाख के माथु गांव में भव्य स्वागत किया गया, हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं और अनुयायियों ने उमड़ा सैलाब। बैंड बाजे की शानदार प्रस्तुति ने कार्यक्रम की बढ़ाई, शोभा स्वागत समारोह का भव्य आयोजन। मुरादाबाद में सरकारी स्कूलों की बदल गई तस्वीर, 97 करोड़ के कायाकल्प से स्कूल हुए स्मार्ट, 48 स्कूलों के कायाकल्प पर 85 करोड़ खर्च। 80 कक्षाओं को डिजिटल क्लासरूम में बदला गया, स्मार्ट बोर्ड से पढ़ाई हुई और भी ज्यादा आसान। बेहतर शिक्षा और सुविधाओं पर जोर, डिजिटल क्लासेस सरकारी स्कूलों में बढ़े दाखिले, सरकारी स्कूलों में बढ़ा अभिभावकों का भरोसा। प्रयागराज में डिप्टी सीएम कृष्ण प्रसाद मौर्य ने सरकारी स्कूलों के रसोइयों का सम्मानित किया। रसोइयों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की पहल, रसोइयों को बांटे गए कैशलेस मेडिकल कार्ड, इलाज की सुविधा आसान होगी। फजिलका में इराकी सरहद के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया, स्कूली बच्चों ने पंजाबी लोक नृत्य की शानदार प्रस्तुति दी। दिव्यांग बच्चों के बैंड ने दर्शकों का मन मोह लिया, बैंड की प्रस्तुति पर गूंज उठा पूरा कार्यक्रम स्थल। रक्षाबंधन पर योगी सरकार का महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा का तोहफा, उत्तर प्रदेश रोड बसों में माताओं बहनों बेटियों के लिए फ्री बस सेवा। नागपुर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जेन जी से किया संवाद, मंथन फॉर युवा कार्यक्रम में युवाओं से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। कोलकाता में राजनाथ सिंह ने एमएसएमई प्रतिनिधियों के साथ बैठक की, रक्षा क्षेत्र और एमएसएमई सेक्टर से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। लखनऊ में स्वतंत्रता सेनानी गुलाब सिंह लोधी के शहादत दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अर्पित की श्रद्धांजलि। लखनऊ में मिड डे मील रसोइयों का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। सम्मान समारोह से पहले छात्राओं की ओर से लगाई गई प्रदर्शनी में भी शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, छात्राओं ने मुख्यमंत्री के साथ जमकर तस्वीरें खिंचाई। वाराणसी में जापानीज प्रतिनिधिमंडल ने काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचकर भगवान शिव के दर्शन पूजन किए। तमिलनाडु के वेल्लोर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुई दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। कोलकाता में सीनियर सिटीजन्स को लेकर क्रिएटिविटी नेवर रिटायर्स आर्ट थेरेपी का आयोजन किया गया, मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने भी शिरकत की। आर्ट थेरेपी वर्कशॉप में मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने भारत माता की बनाई पेंटिंग, लोगों ने प्रकृति से लेकर सपनों से जुड़े आर्ट बनाया। फिट संडे मिशन के तहत विशाखापट्टनम में साइकिल इवेंट का आयोजन किया गया, बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। विशाखापट्टनम साइकिल इवेंट में मंत्री मनसुख मंडाविया भी शामिल हुए, लोगों को गुड हेल्थ के टिप्स दिए। पंजाब यूथ रन के तहत मॉडल टाउन में मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, 5 किलोमीटर की दौड़ प्रतियोगिता में सैकड़ों लोग शामिल हुए। चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक सफलता की तीसरी वर्षगांठ 23 अगस्त 2023 को भारत ने चांद के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में की थी सफल सॉफ्ट लॉन्च। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी, बड़े सपने देखने नई ऊंचाइयों को छूने का आह्वान। अमित शाह ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी, चंद्रयान 3 की सफलता इसरो के वैज्ञानिकों की सराहना। राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर शुभकामनाएं दी, चंद्रयान से गगनयान तक भारत की अंतरिक्ष यात्रा की सराहना की। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के मौके पर इसरो ने लोगों से जश्न में जुड़ने की अपील की, देश की अंतरिक्ष उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाना लक्ष्य। नेशनल स्पेस डे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पेस स्टार्टअप्स के सीईओ फाउंडर्स से मुलाकात की, भविष्य के बारे में चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रॉकेट सैटेलाइट से लेकर एआई तक की चर्चा की। स्पेस टेक्नोलॉजी और नए इनोवेशन को लेकर चर्चा हुई। मुलाकात के दौरान 20 स्पेस स्टार्टअप्स के सीईओ और फाउंडर्स रहे मौजूद। प्रधानमंत्री मोदी ने स्पेस से जुड़ी तकनीकों को समझा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की भारत के स्पेस सेक्टर में काम कर रहे स्टार्टअप्स की तारीफ। सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, भारत के सबसे प्रतिभाशाली स्पेस स्टार्टअप से मुलाकात हुई। अहमदाबाद में नेशनल स्पेस डे को लेकर समारोह का आयोजन किया गया। इसरो की यात्रा को लेकर वीडियो शेयर किया गया। चीन में रोबोट्स ने खेलों की दुनिया में मचाई धूम। बीजिंग में शुरू हुआ वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स। रोबोट्स ने किक बॉक्सिंग में जमकर मुकाबला किया। 80 किलो वर्ग में ह्यूमनॉइड रोबोट्स ने फाइट की। ह्यूमनॉइड रोबोट्स ने रेस में भी भाग लिया। बड़े और छोटे रोबोट्स ने रेस में दिखाई अपनी ताकत। रोबोट्स के बीच ब्लॉक स्केटिंग प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। रोबोट्स ने ताई ची का प्रदर्शन करके सबको चौंका दिया। वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स में भारी संख्या में पहुंचे दर्शक रोबोट्स के खेलों पर जमकर आनंद लिया। चीन के रोबोट तियांगोंग ने 400 मीटर का जीता गोल्ड। तियांगोंग ने 38.15 सेकंड्स में रेस पूरी की। तियांगोंग ने शेन शेन के रोबोट को पीछे छोड़कर गोल्ड पर कब्जा जमाया। बीजिंग में वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स 16 देशों की 600 से ज्यादा टीमें शामिल हुई। गेम्स में करीब 2000 ह्यूमनॉइड रोबोट शामिल हुए। रोबोट ने मार्चिंग और अलग अलग खेलों में दिखाया दम। ह्यूमनॉइड रोबोट्स ने इंसानों के साथ टेनिस भी खेला। फुटबॉल से लेकर फैक्ट्री तक रोबोट्स की परखी जा रही है क्षमता। चोंगकिंग यूनिवर्सिटी की टीम ने तकनीक का शानदार प्रदर्शन दिखाया। उत्तर कोरिया में मार्शल आर्ट्स गेम्स की जली मशाल। प्योंगयांग में टॉर्च लाइटिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया। इंटरनेशनल मार्शल आर्ट्स गेम्स की तैयारियां हो गई शुरू। मार्शल आर्ट्स की मशाल खिलाड़ियों को सौंपी गई। समारोह में ताइक्वांडो का भव्य प्रदर्शन। स्कूली बच्चों ने ताइक्वांडो के हैरतअंगेज करतब दिखाए। वुशु के प्रदर्शन ने खींचा सभी का ध्यान। अलग अलग मार्शल आर्ट्स के साथ कराटे का भी प्रदर्शन। मशाल प्रज्वलन के साथ इंटरनेशनल गेम्स का बढ़ा उत्साह। अक्टूबर में किर्गिस्तान में गेम्स का होगा आयोजन।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आती हैं।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
5: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है।
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
3: अभी गणेश उत्सव में काफी दिन है, लेकिन तैयारियां जोरों पर हैं। मुंबई के लालबाग परेल इलाके में काला चौकी में आज गणपति बप्पा का आगमन हुआ। तस्वीरें देखिए। मुंबई के प्रसिद्ध गणेश उत्सव पंडालों में से एक गणेश चतुर्थी के दौरान विघ्नहर्ता की बहुत सुंदर भव्य मूर्ति स्थापित की जाती है। गणेश उत्सव के दौरान दर्शन करने के लिए हजारों भक्त यहां पर आते हैं। जैसे जैसे गणेश उत्सव की तारीख जो है नज़दीक आ रही है, बप्पा की मूर्ति अलग अलग पंडालों में लाई जा रही है ताकि महोत्सव के दौरान भव्य और दिव्यता प्रदान की जा सके। दो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन में दिखा रहे हैं। कितनी बड़ी संख्या में तमाम श्रद्धालु बढ़ चढ़कर स्वागत कर रहे हैं बप्पा के आगमन का।

0: रंगों की होली तो आप हर साल खेलते होंगे, लेकिन आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं दूध की अनोखी होली की खबर जो खेली गई है हरिद्वार में। यहाँ की पावन हर की पौड़ी पर होने वाली दूध की होली एक ऐसा ही दिव्य उत्सव है। मुल्तान जोत महोत्सव के खास अवसर पर यहाँ माँ गंगा के आंचल में दूध की धार और आस्था की जोत मिली तो पूरा वातावरण जो है अलौकिक हो गया।
1: नगरी हरिद्वार में हर की पैड़ी पर उमड़ी श्रद्धालुओं की ये भीड़ उस अनूठी परंपरा की कहानी कह रही है जो यहाँ पर 115 साल से निभाई जा रही है। देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर स्नान करने आते हैं, गंगा मैया की पूजा और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करने आते हैं। लेकिन ये लोग यहाँ पर ब्रह्म कुंड में माँ गंगा के साथ होली खेलने आए हैं, वो भी रंगों से नहीं बल्कि दूध से। फूलों के साथ दूध से भरी बाल्टियाँ लेकर माँ गंगा के जयकारे लगाते हुए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर जमा हुए
2: कि मेरे कारण से गंगा मैली ना हो, गंगा स्वच्छ रहनी चाहिए, हम सबका संकल्प है। आज हम माँ गंगा से दूध की होली खेलते हैं, अपनी श्रद्धा अनुसार जितना भी दूध होता है हम प्रवाहित करते हैं, फिर गाड़ी में दूध भर के माँ गंगा से दूध की होली खेलते हैं। और उसके पीछे का उद्देश्य यही है कि जो परंपरा हमारी हिंदू संस्कृति कहती है कि तालाब की पूजा करना, गंगा की पूजा करना, यमुना की पूजा करना, परिवार के साथ हम यहाँ पर आते हैं, लगातार एक सप्ताह ये कार्यक्रम चलता है।
1: दरअसल बताया जाता है कि सन 1911 में पाकिस्तान में रहने वाले व्यापारी लाला रूपचंद पैदल ही हरिद्वार आए थे। उन्होंने गंगा में जोत प्रवाहित की थी ताकि गंगा मैया के आशीर्वाद से उनकी संतान जिंदा रहे और उनके दुख दर्द दूर हो जाए। कहा जाता है कि उनकी यही कामना पूरी हुई थी तो उसके बाद से हर साल सावन में कांवड़ यात्रा के बाद यहां पर मुल्तान जोत महोत्सव मनाने का सिलसिला शुरू हुआ जो अब तक जारी है। हर साल मुल्तान समाज के लोग यहां पर गंगा माँ के साथ होली खेलने आते हैं और दिवाली भी मनाते हैं। इसके पीछे मकसद बेहद खास है।
2: पीढ़ी दर पीढ़ी ये परंपरा चलती आ रही है और आज भी जो लोग खड़े हैं वो अपने आने वाली इस पीढ़ी को ये संदेश दे रहे हैं कि हम कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, कितनी भी हमारी भौगोलिक स्थिति ना बदल जाए, लेकिन हमें अपनी जड़ों को नहीं छोड़ना है, अपने रूट्स को नहीं छोड़ना है। जो हमारे धार्मिक अनुष्ठान है, हमारी परंपराएं हैं, इसमें सुख समृद्धि और शांति की कामना है देश के लिए, उसको हमें पूरा करना है और ये जोत महोत्सव उसी का एक प्रतीक है।
1: खास बात ये भी है कि इस बार इस अनोखी होली में योग गुरु स्वामी रामदेव और एक्टर रणवीर सिंह के डुप्लीकेट भी शामिल हुए।
3: सभी मिलजुल के रहे, गंगा हमारी साफ रहे, सभी से यही मेरी प्रार्थना है, गंगा को हमेशा साफ रखो, स्वच्छ रखो। मैं संदेश ये देना चाहता हूँ कि जितना अच्छा हो सके, जितना प्यारा हो सके, हम इसको कार्यक्रम को हम ताकि कहीं कोई गड़बड़ ना हो सके, जितनी शांति से हो सके हम उतने शांति से ये प्रोग्राम को हमें करें।
1: हर की पैड़ी पर दूध की होली के उत्सव में आस्था का अद्भुत संगम नजर आता है। इसमें शामिल श्रद्धालु देश और समाज की खुशहाली के साथ गंगा नदी की स्वच्छता का संदेश दे रहे हैं। इसके माध्यम से ये लोग गंगा की पवित्रता, निर्मलता और हर तरफ सुख शांति का पैगाम दे रहे हैं और सबके कल्याण की प्रार्थना कर रहे हैं। हरिद्वार से मुदित अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
4: सावन के अंतिम सोमवार का क्या है पूजा विधान? सावन के अंतिम सोमवार पर कौन सी मनोकामनाएं होंगी पूरी और कैसे मिलेगा शिव जी का वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: सावन के अंतिम सोमवार का क्या है पूजा विधान? सावन के अंतिम सोमवार पर कौन सी मनोकामनाएं होंगी पूरी और कैसे मिलेगा शिव जी का वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
0: कल सावन का आखिरी सोमवार, सावन के अंतिम सोमवार के साथ ही बन रहे हैं कई शुभ संयोग। इस साल सावन में महादेव को प्रसन्न करने का आखिरी मौका। मुंबई के पंडालों में पधार रहे हैं गणपति बप्पा, काली चौकी के महाराजा के स्वागत में उमड़े हजारों श्रद्धालु, ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत। अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर बदली धर्म ध्वजा, वैदिक मंत्रोच्चारों के बीच विधि विधान के साथ निभाई गई परंपरा। मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में पारंपरिक काली घटा का आयोजन, फूलों और आकर्षक लाइटों से मनमोहक हुआ नजारा, ठाकुर जी के दर्शन करके गदगद हुए भक्त। बारिश के जैसलमेर के पुरोहितेश्वर महादेव मंदिर में महारुद्राभिषेक, 121 रुद्रपाठी पंडितों ने किया सामूहिक रुद्री पाठ, मंत्रोच्चार से गुंजामान हुआ परिसर। अजमेर में देखी राजस्थानी संस्कृति की झलक, मातृशक्ति मॉनसून महोत्सव में जुटी हजारों महिलाएं, मेगा लकी ड्रॉ और मेडिकल कैंप का भी आयोजन। नागपुर में 4,000 से ज्यादा युवक युवतियों ने ढोल ताशे बजाकर बनाया अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ नागपुर का नाम। जयपुर में मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 का भव्य ग्रैंड फिनाले आयोजन, देश भर से चुनी गई 52 सुंदरियों के बीच मुकाबला।

0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में।
1: नमस्कार। नमस्कार।
0: तो चलिए इसी के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं भगवान शिव को पसंद आने वाले यानी उनके अति प्रिय महीने सावन के बारे में। तो देखिए, सावन का अंतिम सोमवार है, तो ऐसे में अंतिम सोमवार क्यों इतना महत्वपूर्ण माना जाता है, इसकी महिमा के बारे में भी आज के कार्यक्रम में हम पंडित जी से डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले पंडित जी से जान लेते हैं आज का गुड लक मंत्र क्या है।
1: शिव जी के मंदिर में आप इत्मीनान से बैठकर कम से कम 108 बार राम नाम का जप करिए। राम राम राम राम राम नाम का अगर शिव जी के मंदिर में आप जप करेंगे तो ऐसा करने से कोई भी मनोकामना आपकी पूरी हो जाएगी।
0: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब पंडित जी से जान लेते हैं 24 अगस्त 2026 यानी कि दिन सोमवार का पंचांग क्या है।
1: दिनांक 24 अगस्त 2026 दिन सोमवार, तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि, नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, रात के 8:28 तक चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय सुबह 7:30 से लगभग 9 तक पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो दर्पण में अपना चेहरा देखकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
0: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम की यहाँ पे शुरुआत करते हैं और सबसे पहले पंडित जी से जानते हैं कि क्या है सावन के अंतिम सोमवार का महत्व।
1: जी देखिए, आज हम बात कर रहे हैं सावन के अंतिम सोमवार के बारे में। सावन का अंतिम सोमवार कितना महत्वपूर्ण है, क्या है इसकी महिमा, पहले ये समझते हैं। देखिए, भगवान शिव की पूजा के लिए वैसे तो पूरा सावन महत्वपूर्ण है, लेकिन सावन के सोमवार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसमें मुख्य रूप से शिवलिंग की पूजा होती है और शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित किया जाता है। सावन के सोमवार पर विशेष तरीके के प्रयोग भी किए जाते हैं। सावन का अंतिम सोमवार इस साल में शिव कृपा प्राप्त करने का अंतिम अवसर होगा। अब ये मौका आपको दोबारा अगले साल ही मिल पाएगा, इसीलिए इस अवसर पर अपनी कामनाओं को पूरा करने का अंतिम प्रयास आप इस साल में कर सकते हैं, नहीं तो आपको वर्ष भर रुकना पड़ेगा। अंतिम सोमवार पर द्वादशी तिथि का संयोग बन रहा है, जिसके कारण हर तरह की कामनाएं पूरी की जा सकेंगी। यानी कि द्वादशी के स्वामी हैं भगवान विष्णु और सावन का सोमवार है भगवान शिव का, इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण अवसर बन गया है। अगर आप भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों से प्रार्थना करेंगे तो आपकी कामनाएं पूरी होंगी। इस बार सावन का अंतिम सोमवार 24 अगस्त को है, जिसका पालन हम सबको करना चाहिए।
0: तो चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं मेष वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है।
1: मेष राशि, करियर में आपके सुधार होगा, करियर में साथ में बेहतरी होती दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, भगवान शिव को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, परिवार में व्यस्तता रहेगी, धन खर्च से परेशानी होगी, स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें, चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार होता जाएगा। धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: तो चलिए इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और अब पंडित जी से जान लेते हैं कि सावन के सोमवार की आखिरकार पूजा विधि क्या है।
1: तो सावन का अंतिम सोमवार है, आप किस तरह से पूजा उपासना करें सरल तरीके से ताकि आपकी कामनाएं पूरी हो जाएं। प्रातः काल या प्रदोष काल में पूजा करिएगा, प्रातः काल भी कर सकते हैं 12 बजे के पहले, या प्रदोष काल में सूर्यास्त के आसपास के समय में पूजा कर सकते हैं। स्नान करने के बाद शिव मंदिर जाइएगा, घर से नंगे पैर जाइए मंदिर तक और घर से ही लोटे में जल भरकर ले जाइएगा। मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करें और इसके बाद पुरुष पूर्ण साष्टांग करेंगे, महिलाएं अर्ध साष्टांग करेंगी। मंदिर में खड़े होकर या किसी किनारे बैठकर शिव मंत्र का नमः शिवाय का 108 बार जप करिएगा। दिन में केवल फल ग्रहण करें, जल ग्रहण करें, शाम के समय भगवान शिव के मंत्रों का फिर से जप करिएगा और उनकी आरती करिएगा। शाम की पूजा समाप्त हो जाने के बाद केवल जलीय आहार, केवल लिक्विड डाइट ग्रहण करें या जरूरत हो तो फल खा लें। अगले दिन पहले यानी मंगलवार को सवेरे अन्न वस्त्र का दान करिएगा, तब जाकर व्रत का पारायण करिएगा। अगर आप बीमार हैं, उपवास नहीं रख सकते, आपको बहुत दवाइयां खानी पड़ती हैं, तो उपवास की चिंता ना करें। ऐसी स्थिति में आप केवल सात्विक आहार ग्रहण करिएगा। और इस बार के सावन का अंतिम सोमवार है, सुबह या प्रदोष काल में शिव जी को जल चढ़ा के उनसे प्रार्थना करिएगा, ताकि उनकी कृपा आपको मिल सके।
0: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब पंडित जी से जान लेते हैं कर्क सिंह और कन्या राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है।
1: कर्क राशि, मानसिक स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, कारोबार में लाभ होगा, यात्रा में सावधानी बनाए रखें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, धन की हानि हो सकती है, काम में आपके व्यस्तता रहेगी, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किल

0: प्रतिशत मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
1: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब कार्यक्रम में समय हो गया है आपके सवाल का, तो बिना देर किए पंडित जी से ही जान लेते हैं कि आज का पहला सवाल वो किसका ले रहे हैं।
0: जी आज का पहला प्रश्न श्रीमती नीलम त्यागी ने लिखा है, मेरठ से लिखती हैं, अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्र की जन्म तारीख है 4 नवंबर 2008, 5:39 शाम को, मेरठ उत्तर प्रदेश। ये कह रही हैं कि मेरा बेटा 12वीं की पढ़ाई कर चुका है लेकिन पढ़ाई में उसका मन बिल्कुल नहीं लगता, अभी कुछ नहीं कर रहा है, तो आगे वो क्या करेगा, किस तरह के करियर में जाएगा। नीलम जी, आपके पुत्र की कुंडली बनती है मेष लग्न की और मकर राशि की, महादशा मंगल की और अंतरदशा शनि की चल रही है। देखिए, आपके बेटे की कुंडली में एक तो चंद्रमा अग्नि के इलाके में चला गया है, दूसरा वो राहु के साथ बैठा है, मन को स्थिर नहीं होने दे रहा या भटकाव पैदा कर रहा है। ऐसी स्थिति में थोड़ा सा इंतजार करिए, आपके बेटे के जीवन में सुधार होने का समय इस साल के नवंबर से दिखाई दे रहा है। और आगे अगर आपका बेटा कंप्यूटर की पढ़ाई करे, मैनेजमेंट की पढ़ाई करे, तो इन क्षेत्रों में आपके पुत्र को बेहतर सफलता मिलेगी। एक अपने बेटे को मोती बनवा के पहना दीजिए, लगभग 8-10 रत्ती की मोती, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को इनको एक मोती बनवा के पहनाएं और आप अपने बेटे के लिए सुबह शाम दोनों समय 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करें तो उससे बेटे के जीवन पर फर्क पड़ेगा।
1: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में और अब पंडित जी से दूसरा सवाल भी पूछ लेते हैं कि वो किस व्यूअर का लेने वाले हैं ये सवाल। लेकिन उससे पहले आप सभी को याद दिला दूं कि अगर आप भी हमारे कार्यक्रम रोज देखते हैं, इसे काफी पसंद करते हैं और पंडित जी से कुछ पूछना चाहते हैं, तो टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हमारी जो ईमेल आईडी है आप उसे नोट कर सकते हैं और उस पर अपने प्रश्न हमें लिख करके भेज सकते हैं। तो चलिए बिना देर के पंडित जी से ही जान लेते हैं कि अगला सवाल यानी कि दूसरा सवाल आप किस व्यूअर का लेने जा रहे हैं।
0: जी अगला प्रश्न नाजिया ने हमें लिखा है, नाजिया हमें पंजाब से मेल लिखती हैं, 9 अक्टूबर 1993 का जन्म है, 6:15 शाम को, अबोहर पंजाब। ये पूछ रही हैं कि मेरी कुंडली में संतान का योग कब है और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। नाजिया, आपकी कुंडली बनती है मीन लग्न की और कर्क राशि की, महादशा बुध की और अंतरदशा राहु की चल रही है। अप्रैल 2027 तक, अब से लेकर अगले साल के अप्रैल तक आपकी संतान की प्राप्ति का समय चल रहा है। अगर प्रयास किया जाए तो अब से लेकर के अप्रैल 27 के बीच में आप कंसीव कर जाएंगी, ये संभावना बनती है और अगले साल आपको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। वैवाहिक जीवन आपका कुल मिला जुला के ठीक है लेकिन अपने क्रोध पर और अपनी वाणी पर थोड़ा नियंत्रण आपको बनाए रखना चाहिए। एक मोती बनवा के पहनिएगा, 10-12 रत्ती की मोती, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती पहने और बुधवार को हरे फल का या हरी सब्जी का दान करें तो आपके लिए बहुत

0: तो देखिए, सावन का अंतिम सोमवार है, ऐसे में सावन के अंतिम सोमवार के दिन विशेष प्रयोग आप क्या कुछ कर सकते हैं, आइए पंडित जी से जानते हैं।
1: देखिए, सावन के अंतिम सोमवार पर हम आपको बहुत सारे प्रयोग बताएंगे छोटे छोटे। पहला प्रयोग है, अगर आप संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि चाहते हैं, सारी कामनाओं को पूरा करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, सावन के अंतिम सोमवार पर शिव जी को जल की धारा अर्पित करिएगा और ये जल अपने घर से भर कर ले जाइए। शिव मंदिर का जल शिव जी को वहीं का जल वहीं मत चढ़ाइएगा। इसके बाद चाहें तो मंदिर में बैठ जाएं या घर चले आएं और नमः शिवाय की 11 माला का जप करिएगा। अगर आप ये सरल सा उपाय सावन के अंतिम सोमवार पर करते हैं, आपकी तमाम मनोकामनाएं बड़ी आसानी से पूरी हो जाएंगी।
0: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। और अगर आपकी शादी नहीं हो रही है और इसे लेकर आप काफी चिंतित है, काफी परेशान है, तो देखिए सावन का आखिरी सोमवार है, ऐसे में शीघ्र विवाह के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, आप आइए पंडित जी से जानते हैं।
1: आप पुरुष हो या स्त्री हो, अगर आप शीघ्र विवाह चाहते हैं तो क्या उपाय करेंगे, शिव जी को सुगंध और जल अर्पित करिएगा। चंदन की सुगंध या गुलाब की सुगंध, भूल कर भी केवड़े की सुगंध अर्पित मत करिएगा। इसके बाद 11 माला घर पर या मंदिर में बैठ करके ओम पार्वती पतये नमः, ओम पार्वती पतये नमः इस मंत्र का जप करिएगा। अगर ये काम आप सावन के अंतिम सोमवार पर कर लेते हैं या कर लेती हैं, तो आपका विवाह शीघ्र होगा।
0: तो चलिए, बातचीत का इस सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं तुला वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है।
1: तुला राशि, मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, कोई शुभ सूचना आपको मिलेगी। शिव जी को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य और मन अच्छा रहेगा, हालांकि काम की अधिकता रहेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, करियर की बाधाएं समाप्त होंगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90 90% सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: तो देखिए, सावन का आखिरी सोमवार है, ऐसे में संतान सुख के लिए आप क्या कुछ उपाय कर सकते हैं, आइए पंडित जी से ही जान लेते हैं इसके बारे में।
1: अगर आप संतान सुख चाहते हैं और उसमें अड़चन आ रही है तो क्या उपाय करेंगे? पति पत्नी मिल करके अगर एक साथ उपाय करें तो बहुत अच्छा होगा। शिव जी को खीर का भोग लगाएं, चावल और गाय के दूध से बनी हुई खीर का भोग लगाएं। इसके बाद घी के 9 दीपक जलाएं और इसके पश्चात ओम शं शंकराय नमः, ओम शं शंकराय नमः इस मंत्र का जप कम से कम 11 माला करिएगा। आप मंदिर में भी ऐसा कर सकते हैं और घर पर भी शिव जी को भोग लगाकर इस मंत्र का जप करें, आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी।
0: तो देखिए, मृत्यु तुल्य कष्ट से बचने के लिए, शीघ्र स्वास्थ्य लाभ पाने के लिए, अगर आप लगातार हेल्थ इश्यूज से जूझ रहे हैं, उससे परेशान हैं, तो सावन के आखिरी सोमवार पर क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं, आइए पंडित जी से जानते हैं।
1: आपको स्वयं स्वास्थ्य की समस्या रहती हो या परिवार में, हित मित्रों में किसी को स्वास्थ्य की दिक्कत हो, तो उसके लिए सावन के अंतिम सोमवार पर क्या करेंगे? शिवलिंग पर पहले 108 बेलपत्र चढ़ाएं या एक ही बेलपत्र को धो धोकर 108 बार चढ़ाइएगा। इसके बाद जल की धारा अर्पित करें और इसके बाद इत्मीनान से बैठ करके ओम जूम सह माम पालय पालय, ओम जूम सह माम पालय पालय इस मंत्र का 11 माला जप करिएगा। अपने स्वास्थ्य के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं और अगर परिवार में कोई बीमार है तो उसके लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं, स्वास्थ्य में सुधार होगा।
0: और अगर आप फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहे हैं, धन लाभ चाहते हैं, तो सावन के आखिरी सोमवार पर आपको क्या कुछ करना चाहिए, आइए जल्दी से जान लेते हैं पंडित जी से।
1: अगर आर्थिक समस्या है, फाइनेंशियल दिक्कत है, उसको दूर करना चाहते हैं, धन का लाभ चाहते हैं, तो क्या करेंगे? दूध दही शहद शक्कर और घी मिलाकर पंचामृत बनाएं और पंचामृत ले जाकर जरा सा शिवलिंग पर चढ़ाएं। इसके बाद शिवलिंग पर जल की धारा अर्पित करें और फिर 11 माला एक विशेष मंत्र का जप करेंगे, ओम नमः शंभवाय, ओम नमः शंभवाय इस मंत्र का 11 माला जप करके प्रार्थना करिए, आर्थिक समस्याएं आपकी दूर होंगी। जिन लोगों को पैसे रुपए की दिक्कत जरूरत से ज्यादा है, ऐसे लोग सावन के अंतिम सोमवार पर कम से कम 3 बार दारिद्र दहन स्तोत्र का पाठ करेंगे, उनकी कामनाएं पूरी होंगी।
0: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब पंडित जी से जान लेते हैं मकर कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल क्या कुछ कहता है।
1: मकर राशि, वाहन सावधानी से चलाएं, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।

0: योग बन रहे हैं, करियर में लाभ होगा, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा। शिव जी को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर में नए अवसर मिलेंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान की चिंता दूर होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए जामुनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: तो चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब पंडित जी से ही जान लेते हैं कि आज का तीसरा सवाल वो किस फेयर का ले रहे हैं।
0: जी, अगला प्रश्न प्रियांशु शॉ ने हमें लिखा है। प्रियांशु हमें झारखंड से मेल लिखते हैं। 10 दिसंबर 2002 का जन्म है। 11:32 प्रातः झरिया झारखंड। ये कह रहे हैं कि मुझे किस तरह के करियर में जाना चाहिए, मुझे नौकरी करनी चाहिए या व्यापार करना चाहिए और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। प्रियांशु, आपकी कुंडली बनती है कुंभ लग्न की और कुंभ राशि की, महादशा बृहस्पति की और अंतर दशा शुक्र की चल रही है। आपका समय बिल्कुल बेहतर चल रहा है और अगर आप ईमानदारी से कोशिश करें तो सरकारी सेवा में या कंप्यूटर के किसी क्षेत्र में आपको बेहतर नौकरी मिलेगी। 2027-28 का समय आपके लिए बहुत ही फेवरेबल दिखाई दे रहा है। एक ओपल बनवा करके पहनिए, 10-12 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहने, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आप जीवन में तरक्की कर पाएंगे, आपको सफलता बेहतर मिल पाएगी।
1: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का अंतिम यानी कि चौथा सवाल पंडित जी किसका ले रहे हैं उसके बारे में भी उनसे पूछ लेते हैं। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह सभी को याद दिला दूं कि अगर आपके जहन में भी ये सवाल आता है कि आखिरकार हम पंडित जी से कैसे सवाल पूछ सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि टीवी स्क्रीन पर हमारी इस वक्त ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है। आपको करना बस इतना है कि हमारे इस ईमेल आईडी पर अपने बर्थ डिटेल्स के साथ अपना सवाल लिख करके भेज देना है, पंडित जी आपके सवालों का जवाब जरूर देंगे। तो चलिए बिना देर किए पंडित जी से जान लेते हैं कि अंतिम सवाल आप किसका ले रहे हैं।
0: जी, आज का अंतिम प्रश्न सत्य नारायण वैष्णव जी ने लिखा है हमें, जोधपुर राजस्थान से लिखते हैं। अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्री की जन्म तारीख है 4 अगस्त 1998। 8:05 प्रातः जोधपुर राजस्थान। ये पूछ रहे हैं कि मेरी पुत्री के करियर की क्या संभावना है, क्या मेरी बेटी सरकारी नौकरी में जाएगी और उसके विवाह के योग कब बन रहे हैं। सत्यनारायण जी, आपकी पुत्री की कुंडली बनती है सिंह लग्न की और वृश्चिक राशि की, महादशा शुक्र की और अंतर दशा केतु की चल रही है। सबसे पहले बता दें कि आपकी बेटी के विवाह का समय चल रहा है और अक्टूबर 2027 के पहले इनकी शादी हो जानी चाहिए। अगर ये शिक्षा के क्षेत्र में करियर बनाएं, अगर ये एजुकेशन के फील्ड में अपना करियर बनाएं, तो उसमें इनको सफलता जल्दी मिलेगी, उसमें सफलता की संभावनाएं बेहतर दिखाई दे रही हैं। अपनी बेटी को एक मूंगा बनवा के पहनाइए, 10-12 रत्ती का मूंगा, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार को सवेरे इनको मूंगा पहनाएं और इनको बोलिए कि रोज सुबह जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, और अगर कर सकें तो रोज सुबह 108 बार ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का अगर जप करें तो काफी बेहतर होगा।
1: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। जिनका बर्थडे, जिनका जन्मदिन 24 अगस्त को है, पहले तो आप सभी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। तो चलिए बिना देर के पंडित जी से जान लेते हैं कि आपका आने वाला जो साल है, आने वाला वर्ष है, वो कैसा रहने वाला है।
0: जिन लोगों का जन्मदिन 24 अगस्त को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में स्वास्थ्य का ध्यान रखें, धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी, करियर में बड़ा बदलाव दिख रहा है। अगर आप अविवाहित हैं तो अविवाहितों का विवाह हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कि आखिरकार आज के कार्यक्रम की जिज्ञासा है क्या है और उस जिज्ञासा का समाधान क्या है।
0: आज की जिज्ञासा है कि चंद्रमा के लिए किन चीजों का दान कब कर सकते हैं। देखिए, चंद्रमा के लिए सफेद चीजों का दान किया जाता है, चावल, चीनी, दूध, इसका दान करना बेहतर होता है। ये दान सोमवार की शाम को करना चाहिए, लेकिन चंद्रमा का दान तभी करिएगा जब चंद्रमा कुंडली में खराब हो।
1: तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब पंडित जी से जान लेते हैं 24 अगस्त 2026 यानी कि दिन सोमवार का शुभ पहर कौन सा है।
0: दिनांक 24 अगस्त 2026 दिन सोमवार, शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाइएगा, आपके स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 24 अगस्त सोमवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में।
1: तो चलिए अब कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं और पंडित जी से ही जान लेते हैं आज की गुडलक राशि कौन सी है।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों की गड़बड़ियां क्या हैं और उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आज की गुडलक राशि है मिथुन। आप निर्णय लेने के मामले में अक्सर कंफ्यूज होते हैं, अक्सर गलती करते हैं, तो निर्णयों के मामले में सावधानी रखें और एक साथ बहुत सारे काम करने का प्रयास ना करें।
1: तो चलिए अब कार्यक्रम के अंत में पंडित जी से ही जान लेते हैं कि आज का महा उपाय आखिर क्या है।
0: जी, अगर आपके मन में एक अनजाना सा डर रहता है, अनजाना सा भय वहम रहता है, तो क्या करें, रोज सवेरे स्नान के बाद एक लोटा जल ले लें। इस जल को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज अपने सर पर से 5 बार घुमा लें, वार लें। इसके बाद इस जल को शिवलिंग पर चढ़ा दें और फिर नमः शिवाय का 108 बार जप कर लें। ये उपाय किसी भी सोमवार से शुरू करके लगातार 1 महीने तक करें, आपके मन की चिंता वहम डर ये बड़े आसानी से दूर हो जाएंगे।
1: पंडित जी, हमें तमाम जानकारी देने के लिए हमेशा की तरह आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद।
1: तो चलिए इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जीएनटी के साथ।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे,
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: सावन के आखिरी सोमवार को लेकर भक्तों में भारी उत्साह है। शिवालयों में खास तैयारियां की जा रही हैं। सावन शिव का महीना है और शिव को प्रिय है सोमवार का दिन। ऐसे में आखिरी सोमवार मनोकामना पूर्ति का भी दिन है। शिवलिंग पर जलाभिषेक और पूजा पाठ से भोलेनाथ को आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है, वरदान पाया जा सकता है।
7: सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। अगर ये सोमवार सावन महीने का है, उसका महत्व और भी बढ़ जाता है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सावन के सोमवार का खास महत्व बताया गया है। सावन का महीना भी अब जल्द ही समाप्त होने वाला है और 24 अगस्त को सावन का आखिरी सोमवार है। ऐसे में शिव भक्तों के पास भी इस सावन के महीने में आखिरी मौका है भोलेनाथ को प्रसन्न करने का। सावन के आखिरी सोमवार को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। अगर आपने सावन के किसी भी सोमवार को पूजा नहीं की है, व्रत नहीं रखा है, तो इस सोमवार को पूजा करने और व्रत करने से भी आपकी मनोकामनाएं पूरी हो सकती है। सावन के आखिरी सोमवार पर एक साथ कई शुभ योग संयोग भी बन रहे हैं। सावन के आखिरी सोमवार पर इस बार प्रीति योग, आयुष्मान योग, पवित्रता एकादशी वैष्णव, हंस राज योग, बुद्धादित्य राजयोग, क्योंकि सिंह राशि में सूर्य बुध की युति बनेगी। अगर आप भी सावन के पहले 3 सोमवार का व्रत नहीं कर पाए हैं, तो कोई बात नहीं, आप इस सोमवार का व्रत करेंगे तो पुण्य की प्राप्ति होगी। सावन के आखिरी सोमवार पर सुबह सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहने, इसके बाद भगवान शिव का ध्यान कर व्रत या पूजा का संकल्प ले, शिवालय जाएं और शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और 11 या 21 बेलपत्र अर्पित करें। एक एक बेलपत्र अर्पित करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें। इसके बाद घी का दीपक जलाकर आरती करें और इस दिन जरूरतमंद लोगों की मदद करें और दान भी दें, जैसे वस्त्र, अन्न, फल आदि चीजों का दान आप कर सकते हैं। शिव चालीसा या रुद्राष्टक का पाठ करें। सावन के आखिरी सोमवार पर रुद्रा अभिषेक करने की भी विशेष मान्यता है। कहा जाता है कि इस दिन पूजा पाठ जप तप करने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
6: अब बात करेंगे मथुरा की। देखिए, यहाँ के बांके बिहारी मंदिर में काली घटा उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल होने और बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। दरअसल ऐसी मान्यता है कि सावन में प्रभु को प्रकृति का दर्शन कराने के लिए इस उत्सव का आयोजन किया जाता है।
8: मथुरा ब्रजमंडल में सावन मास में घटाओं का अपना अलग ही महत्व है। कृष्ण की नगरी मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में काली घटा का भव्य आयोजन किया गया, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। दरअसल ठाकुर जी को सावन महीने में प्रकृति का अनुभव कराने के लिए ब्रज में मंदिरों में घटाओं का आयोजन किया जाता है। उसी परंपरा के तहत ठाकुर जी महाराज काली घटा में विराजमान हुए, जिसमें संपूर्ण मंदिर प्रांगण को काले कपड़े और अनेकों प्रकार के फूलों से सजाया गया, शानदार लाइटिंग की गई। यही नहीं, संपूर्ण मंदिर में काले काले बादलों की गड़गड़ाहट चिड़ियों की चहचहाट, बिजली कड़कने की आवाज गूंजती रही। मंदिर प्रशासन का कहना है कि घटा से तात्पर्य है ठाकुर जी को बाहर के मौसम की अनुभूति करवाना।
4: हमारे संप्रदाय में ठाकुर जी की सेवा का जो शहीद बाल स्वरूप है और बालक को बाल के मौसम की अनुभूति कराने के लिए घटाओं के आयोजन होते हैं और इस आयोजन में जो काली घटा है वह अपने आप में बहुत ही अद्भुत है, जिसमें बालकों की गड़गड़ाहट, चिड़ियों की चहचहाट और मौसम की एक ऐसी अनुभूति जो लोग देश विदेश से ऐसे देखने आते हैं।
8: सात सज्जा के बाद जब ठाकुर जी महाराज काली घटा में विराजमान हुए तो मानो धरती प्राकृतिक नजारों से दमक उठी और दर्शन के लिए भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। पूरे सावन मास ये सिलसिला चलता रहेगा। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा, गुड न्यूज टुडे।
6: रामनगरी अयोध्या में श्रावण मास की धार्मिक परंपराओं के बीच श्री राम जन्मभूमि मंदिर में झूलनोत्सव मनाया जा रहा है। भगवान श्री राम की भक्ति, पारंपरिक झूला उत्सव और सांस्कृतिक आराधना की मनमोहक झलक देखने बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। झूलनोत्सव के दौरान श्री राम जन्मभूमि मंदिर की यज्ञशाला में विशेष नृत्य आराधना का आयोजन हुआ और बेंगलुरु की साई ग्रुप के कलाकारों ने नृत्य के माध्यम से प्रभु श्री राम की आराधना की। श्री राम मंदिर में झूलनोत्सव का कार्यक्रम 28 अगस्त तक यूं ही चलेगा। दूसरी तरफ देखिए, सावन मास के शुक्ल पक्ष के अवसर पर श्री राम मंदिर के सर्वोच्च शिखर पर स्थित झंडे को बदला गया। दोनों तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं। झंडा बदलने से पहले प्रभु श्री राम की विधिवत पूजा अर्चना की गई। तस्वीर देखिए।

0: रंगों की होली तो आप हर साल खेलते होंगे, लेकिन आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं दूध की अनोखी होली की खबर जो खेली गई है हरिद्वार में। यहाँ की पावन हर की पौड़ी पर होने वाली दूध की होली एक ऐसा ही दिव्य उत्सव है। मुल्तान जोत महोत्सव के खास अवसर पर यहाँ माँ गंगा के आंचल में दूध की धार और आस्था की जोत मिली तो पूरा वातावरण जो है अलौकिक हो गया।
1: नगरी हरिद्वार में हर की पैड़ी पर उमड़ी श्रद्धालुओं की ये भीड़ उस अनूठी परंपरा की कहानी कह रही है जो यहाँ पर 115 साल से निभाई जा रही है। देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर स्नान करने आते हैं, गंगा मैया की पूजा और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करने आते हैं। लेकिन ये लोग यहाँ पर ब्रह्म कुंड में माँ गंगा के साथ होली खेलने आए हैं, वो भी रंगों से नहीं बल्कि दूध से। फूलों के साथ दूध से भरी बाल्टियां लेकर माँ गंगा के जयकारे लगाते हुए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर जमा हुए।
2: कि मेरे कारण से गंगा मैली ना हो, गंगा स्वच्छ रहनी चाहिए, हम सबका संकल्प है। आज हम माँ गंगा से दूध की होली खेलते हैं, अपनी श्रद्धा अनुसार जितना भी दूध होता है हम प्रवाहित करते हैं, पिचकारी में दूध भर के माँ गंगा से दूध की होली खेलते हैं। और उसके पीछे का उद्देश्य यही है कि जो परंपरा हमारी हिंदू संस्कृति कहती है कि तालाब की पूजा करना, गंगा की पूजा करना, यमुना की पूजा करना, परिवार के साथ हम यहाँ पर आते हैं, लगातार एक सप्ताह ये कार्यक्रम चलता है।
1: दरअसल बताया जाता है कि सन 1911 में पाकिस्तान में रहने वाले व्यापारी लाला रूपचंद पैदल ही हरिद्वार आए थे। उन्होंने गंगा में जोत प्रवाहित की थी ताकि गंगा मैया के आशीर्वाद से उनकी संतान जिंदा रहे और उनके दुख दर्द दूर हो जाए। कहा जाता है कि उनकी यही कामना पूरी हुई थी तो उसके बाद से हर साल सावन में कांवड़ यात्रा के बाद यहां पर मुल्तान जोत महोत्सव मनाने का सिलसिला शुरू हुआ जो अब तक जारी है। हर साल मुल्तान समाज के लोग यहां पर गंगा माँ के साथ होली खेलने आते हैं और दिवाली भी मनाते हैं। इसके पीछे मकसद बेहद खास है।
2: पीढ़ी दर पीढ़ी ये परंपरा चलती आ रही है और आज भी जो लोग खड़े हैं वो अपने आने वाली इस पीढ़ी को ये संदेश दे रहे हैं कि हम कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, कितनी भी हमारी भौगोलिक स्थिति ना बदल जाए, लेकिन हमें अपनी जड़ों को नहीं छोड़ना है, अपने रूट्स को नहीं छोड़ना है। जो हमारे धार्मिक अनुष्ठान है, हमारी परंपराएं हैं, इसमें सुख समृद्धि और शांति की कामना है देश के लिए, उसको हमें पूरा करना है और ये जोत महोत्सव उसी का एक प्रतीक है।
1: खास बात ये भी है कि इस बार इस अनोखी होली में योग गुरु स्वामी रामदेव और एक्टर रणवीर सिंह के डुप्लीकेट भी शामिल हुए।
3: सभी मिलजुल के रहे, गंगा हमारी साफ रहे, सभी से यही मेरी प्रार्थना है, गंगा को हमेशा साफ रखो, स्वच्छ रखो। मैं संदेश ये देना चाहता हूँ कि जितना अच्छा हो सके, जितना प्यारा हो सके, हम इसको कार्यक्रम को हम ताकि कहीं कोई गड़बड़ ना हो सके, जितने शांति से हो सके हम उतने शांति से ये प्रोग्राम को हमें कर।
1: हर की पैड़ी पर दूध की होली के उत्सव में आस्था का अद्भुत संगम नजर आता है। इसमें शामिल श्रद्धालु देश और समाज की खुशहाली के साथ गंगा नदी की स्वच्छता का संदेश दे रहे हैं। इसके माध्यम से ये लोग गंगा की पवित्रता, निर्मलता और हर तरफ सुख शांति का पैगाम दे रहे हैं और सबके कल्याण की प्रार्थना कर रहे हैं। हरिद्वार से मुदित अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
0: बात करेंगे रक्षाबंधन की। भाई बहन के पवित्र रिश्ते से जुड़ा ये त्यौहार 28 तारीख को मनाया जाएगा जिसको लेकर देश भर के तमाम बाजार तरह तरह की रंग बिरंगी और फैंसी राखियों से सज गए हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं राखी और गिफ्ट खरीदने के लिए बाजारों में पहुंच रही हैं। इस बार बाजार में 10 रुपये से लेकर 300-400 रुपये तक की राखियाँ मौजूद हैं और हर उम्र के लोगों के लिए अलग अलग डिजाइन देखने को मिल रहे हैं।

0: आने वाला है भाई बहन के प्यार भरे रिश्ते की पहचान वाला पर्व रक्षाबंधन। बहनें राखी का धागा बांधकर भाई से रक्षा का लेती है प्रण। 4 दिन बाद यानी 28 अगस्त को रक्षाबंधन मनाया जाएगा। इसके लिए बहनें जोर शोर से तैयारी में लगी हैं और उस पल का इंतजार कर रही हैं जब वो रक्षाबंधन के अवसर पर अपने प्यारे भाई की कलाई राखी के धागे से सजाएंगी। राखी को लेकर बाजारों में रौनक बढ़ गई है। बाजार में बहनों की भीड़ है और दुकानें तरह तरह के राखियों से गुलजार हैं। हरियाणा के करनाल में भी बाजार सज गए हैं। तरह तरह की राखियां बहनों को लुभा रही हैं। कोई मोतियों वाली राखी खरीद रहा है तो कोई बच्चों के लिए कार्टून कैरेक्टर वाली राखी। कुल मिलाकर बाजार में राखियों की ढेरों वैरायटी है।
1: सबसे पवित्र रिश्ता होता है बहन भाई का और ये साल बाद ही त्योहार आता है। मैं तो यही कहूंगी सभी बहनें आए राखी खरीदें, अच्छे से अपने भाई को खुश करें और आप भी खुश होएं, अच्छी अच्छी राखियां खरीदें, क्योंकि ये फेस्टिवल एक साल के बाद ही आता है और ये सबसे पवित्र एक रिश्ते का मतलब की फेस्टिवल है। कि दोनों की पेयर है सबसे बेस्ट है वो, बाकी सिंगल भी ले सकते हो, डबल भी, जैसे आपकी चॉइस है। बच्चे छोटे भी है, उनके डोरेमोन वाली भी है, नगों वाली भी है, छोटे बच्चों की हर तरह की वैरायटी है।
0: बाजारों में भीड़ है, राखियों की बिक्री भी जमकर हो रही है जिससे दुकानदार भी खुश हैं। बिहार के गया में भी रंग बिरंगी राखियों से बाजार सजा हुआ है। अलग अलग वैरायटी की राखियां बहनों को आकर्षित कर रही है। भाई की कलाई पर प्रेम और स्नेह का धागा बांधने की चाहत में बहनें अच्छी से अच्छी राखियों की खरीदारी की चाहत में बाजार का रुख कर रही हैं।
2: अच्छी अच्छी राखियां आई हुई है, हर साल के अकॉर्डिंग इस साल ज्यादा अच्छी अच्छी राखियां आई हुई है।
0: राजस्थान के पाली में बिक रही इन राखियों को देखिए, ये राखियां इको फ्रेंडली है। वजह यह है कि ये राखियां गोबर से बनी है। अलग अलग आकृतियों को समेटे ये राखियां काफी पसंद की जा रही है। यही नहीं, इन राखियों में बीज भी डाला गया, यानी जब भी आप इन राखियों को कलाई से उतारेंगे तो इसे गमले में डालने से पौधा उगने लग जाएगा जो स्नेह का पौधा होगा। जीवन भर भाई बहन का स्नेह का प्रतीक बना रहेगा और पर्यावरण की सुरक्षा भी करेगा।
3: तो ये है कि जो अपने भाई की राखी बांधेगी तो गाय का गोबर जो अपने स्किन से तो टच होता है तो वो अपने एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है। तो ये राखी बांधने से हर किसी का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। तो मैं गाय के गोबर को प्रमोट कर रही हूँ और बहुत सारी चीजें मैं गाय के गोबर से बना रही हूँ और प्लास्टिक मुक्त करना चाहती हूँ।
0: भाई बहन के पवित्र रिश्ते और प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे अपने भाइयों को राखी भेजने के लिए डाकघरों में बहनों की भीड़ बढ़ने लगी है। तस्वीरें महाराष्ट्र के अकोला की है। यहाँ के RMS पोस्ट ऑफिस में इन दिनों रक्षाबंधन को लेकर खास व्यवस्था की गई है। राखी भेजने वाली बहनों और अन्य ग्राहकों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए RMS की ओर से स्पेशल काउंटर शुरू किया गया है जो रात 9 बजे तक काम करता है। इससे बहनों को सामान्य डाक और पार्सल की लंबी कतार में खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ रही है और राखी जल्दी पोस्ट की जा रही है।
4: हर बहन अपने भाइयों को एक राखी भेजती है जो उन तक पहुंचाना ये हमारी जिम्मेदारी है और इससे मद्देनजर जो भीड़ है वो भीड़ को मद्देनजर रखते हुए हमने एक स्पेशल काउंटर भी शुरू किया है ताकि हमारी जो बहनें हैं जो राखी भेजने के लिए आई है उनको कम से कम तकलीफ।
5: बहुत ही अच्छी सुविधा है, हम लोगों को यहाँ बहुत टाइम लग रहा था पर ये देख के बहुत खुशी हो रही है कि बहनों के लिए राखी के लिए इन्होंने अच्छा आयोजन किया है, नया काउंटर खोला है, हम सभी बहनें बहुत खुशी में हैं।
0: डाकघर में राखियों को सुरक्षित तरीके से भेजने के लिए वाटरप्रूफ एनवेलप की भी व्यवस्था की गई है ताकि राखियां खराब न हो। करनाल से कमलदीप, गया से पंकज कुमार, पाली से भरत भूषण जोशी और अकोला से धनंजय साबले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आ रहा है।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज़ टुडे में।

0: नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आज गोलमेज की यह चर्चा यानी राउंड टेबल पर हम आज एक बहुत ही विशिष्ट अतिथि के साथ जुड़े हुए हैं। बागेश्वर सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हमारे साथ हैं। नेहा बाथम, सईद अंसारी, राजीव ढोंडियाल और पूजा शर्मा, हम पांच साथ मिलकर आपसे आज प्रश्न पूछेंगे। असल में प्रधानमंत्री जी ने ही कुछ दिन पहले IIT में एक संबोधन में कह दिया
1: जी
0: कि मैं बाग बाग बागेश्वर नहीं हूं जो आपके मन की बात जानूं।
1: जी,
0: युवाओं के बीच बैठे थे वो
1: जी।
0: क्या बाबा बागेश्वर युवाओं के मन की बात जानते हैं, और जानते हैं तो जेन जी की उस बात को कैसे रखें?
1: देश के नायक के रूप में प्रधानमंत्री जी मन की बात जानते भी हैं, समय परिस्थिति को भी नहीं जानते, और ये हमारे लिए और हम सबके लिए विशिष्ट बात ये है कि ऐसे वो जननायक हैं, 140 करोड़ लोग हैं, अनेक महापुरुष संत, और वो हमारे जैसे छोटे से व्यक्तित्व को, छोटे से आदमी को स्मरण रखते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, और उनकी असाधारण प्रतिभा के वो धनी है, इसमें कोई संदेह नहीं। दूसरी बात, आपको एक बात हम बहुत मजेदार बताएंगे, हम एक साल चूक गए हैं जैन जी होने से।
2: हमारा दृष्टि में तो आप जैन
1: जी,
2: आप जैन
1: 1996 में हम आए, और 97 के बाद में जो है जैन जी के लिए कहा गया, तो
2: चेंज कर देते हैं उसको।
1: ऐसा यदि हो जाए,
2: हो गया, हो गया,
1: बहुत धन्यवाद।
0: ये दोनों मध्य प्रदेश के लोग बैठ के आपस में कोई साजिश न
1: बुलाए, लेकिन हमें पता है कि हम कितनी भी सांठगांठ कर लें, आप लोगों के अंदर जो भगवत कृपा है, देवी अनुकंपा है, और जो आपका अध्ययन है, जो आपके पास लॉजिक तर्क है, हम लोगों की सांठगांठ चलेगी। जब देश की सांठगांठ नहीं चलती तो हम लोगों की सांठगांठ कहाँ चलेगी?
2: श्वेता ने मुझसे पूछा क्या पूछोगे, मैंने कद्दू पूछेंगे सारा, तो आप जानते हैं मन की बात।
3: बागेश्वर, ये जो जैन जी का क्योंकि जिक्र चला है, जिस तरीके से प्रदर्शन के जरिए सारी बांगों को मिलाया जा रहा है, एक नया ये ट्रेंड शुरू हुआ है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या ये सही है?
1: अपनी बात रखना ठीक है, आंदोलन करना ठीक है, हक के लिए लड़ना ठीक है, पर आंदोलन सबसे अंतिम सीमा है अपनी बात रखने का। अनेक माध्यम है, पत्राचार माध्यम है, संवाद माध्यम है, केवल अपने बयान देना एक माध्यम है, सबसे लास्ट में है आंदोलन। लेकिन आंदोलन हो, लेकिन वो उसमें फुहारता ना हो, देश में अराजकता ना फैले, देश में हिंसा ना फैले, और हम किसी की भी मां बहन को गाली ना, इतना ख्याल रखें कि हम अपनी बात रखें लेकिन देश में अराजकता ना हो। दूसरी बात, टेबल राउंड के इस माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम एक प्रार्थना करना चाहते, विशेष रूप से जैन जी सड़कों पर ही ना आए, हम चाहते हैं सरकार एक नया रास्ता चुने, सरकार ही जैन जी के पास जाए, एक ऐसा दरवाजा चालू किया जाए, एक ऐसा डोर खोला जाए कि जैन जी को आंदोलन करना ही ना पड़े।
0: कुछ मन में है आपके, कैसे होगा?
1: अरे ऐसे मन में कुछ है नहीं, बस इतना से ख्याल है, इस देश में बहुत बौद्धिक लोग हैं, प्रतिभा के धनी लोग हैं, प्रज्ञा वेधा के धनी लोग हैं, वो इस पर कार्य कर सकते हैं, पर हमारे मन में इतना है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिससे देश की जैन जी अपनी बातें सरकार से सीधी कर पाए।
3: आजकल जैन जी थोड़ा डिल्यूजनल में भी जी रहा है, एक अपना उनका एक वर्ल्ड है,
1: आपने अपने शब्द है, मोय मोय है, और ये भी है, और ये भी है,
3: तरीके से प्यार
1: दिया। हमने दो दिन में अभी सीखा है, जब से दिल्ली आए तब से आप लोगों की ही ये संगत का असर पड़ा, आप लोगों की संगत का असर पड़ा,
3: हम लोगों को भी इतना नहीं पता है जितना
1: हमने इंटरव्यू में ही, और पत्रकार आपके भाई बहन थे वो हमें सिखा रहे।
3: तो रील से जो ये पॉपुलैरिटी मिलती है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं, कहाँ तक सही मानते हैं, क्या ये आज का नजरिया है, और इसमें शामिल होना क्या बाबा बागेश्वर के लिए भी एक मजबूरी है?
1: वर्तमान के पहले भारत में एक एडिक्शन था, एडिक्ट थे लोग, ड्रग एडिक्ट, अब एक नए एडिक्ट हो गए लोग, ड्रग के बाद सोशल मीडिया एडिक्ट। हम देश को नेशनल लव एडिक्ट करना चाहे, राष्ट्र
0: महाराज जी आपके भी रील वायरल
1: था एडिक्ट, हम भी बनाते, रील बनाना बुरा नहीं, उसी सोशल मीडिया पर सुविचार हैं, संदेश हैं, टेक्नोलॉजी है, जानकारियां हैं, बड़े बड़े विचारकों के संवाद हैं, लेकिन उसी सोशल मीडिया पर कुछ लोगों के दिमागी कचड़े भी, उन्होंने अपने कचड़े उस पर भर रखे, उस कचड़े से संस्कारों पर कुछ प्रभाव पड़ रहा। हमें एक बात समझनी होगी, इस चैनल पर हमें एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहिए, इंस्टाग्राम कहां से हैंडल हो रहा, अमेरिका से, FB कहां से हैंडल हो रही, अमेरिका से, यूट्यूब कहां से हैंडल हो रहा, अमेरिका से, एक्स कहां से हैंडल हो रहा, अमेरिका से, इस देश का एल्गोरिदम किसके हाथ में, अमेरिका के। हमें ये बात समझने से बिल्कुल नहीं चूकना चाहिए कि वो अमेरिका
4: जो भारत पर लगातार दबाव बनाना चाहता है, व्यापारिक दबाव, मानसिक आर्थिक और लगातार जो है टैक्स भरने के लिए मजबूर करना चाहेगा, तो कहीं हो ना कि हम विदेशी हाथों की कठपुतली ना बन जाए।
5: क्या आप ये कहना चाहते हैं कि ये जो जेंजी आंदोलन में हमने युवाओं की भाषा देखी, वो हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति पर भी अटैक कर रहे हैं?
4: कुछ बच्चे
2: अमेरिका या विदेशी शक्तियां विदेशी के माध्यम से
5: जी,
2: या वो हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति पर अटैक कर रहे हैं उस पर?
4: पूर्ण रूप से इस बात से सर, निश्चित रूप से कुछ तो ऐसा हो रहा जिससे विदेशी ताकतें भारत की कुछ ऐसी परंपरा को मानने वाले ऐसी समाज को आगे करके प्रेरित करके हमारे देश में ही दंगा फैलाना चाहे। कुछ लोग भारत में बांग्लादेश जैसे हालात करवाना चाहे, कुछ लोग भारत में पाकिस्तान जैसे हालात कराना चाहे। हम चाहते हैं कि आंदोलन हो, पर आंदोलन देश विरोधी ना हो, आंदोलन हो आंदोलन तिरंगा विरोधी ना हो, आंदोलन हो आंदोलन किसी माँ बहन की गाली से ना।
3: छोटा सा एक सवाल बीच में, आप टैक्स पे करते हैं? आप टैक्स पे हैं?
4: हम तो हैं, आरटीआई लगाओ।
0: शिक्षा नीति में मकौले मुक्त उसको करना है या पहले शिक्षा को पेपर लीक मुक्त करना है?
4: दोनों ही जरूरी, बहुत जरूरी है। सूर्य और चंद्रमा दोनों आवश्यक, दिन और रात दोनों आवश्यक है। हमें लगता है कि सिस्टम में सुधार की आवश्यकता है, शिक्षा में बदलाव की आवश्यकता।
0: एक चीज मैं आपसे पूछती हूँ, क्योंकि आप जातियों को, जातियों का बंटवारा खत्म करके कहते हैं कि हिंदू एक हो रहा हूँ।
4: हाँ।
0: और आप इसके लिए आप पदयात्रा भी कर चुके हैं सब।
4: अब अभी हम रथ यात्रा भी करने वाले
0: इसी के लिए।
4: इसी के लिए हमारा उद्देश्य है कि इस देश में जातिवाद और क्षेत्रवाद ना, राष्ट्रवाद, कास्टिज्म नहीं, राष्ट्रिज्म हम चाहें।
0: पर हिंदू राष्ट्र,
4: हिंदू राष्ट्र का अर्थ मुसलमान मुक्त नहीं, हिंदू राष्ट्र का मतलब है सबके साथ। अगर हिंदू मुसलमान मुक्त होता तो आपकी तरफ भी सबकी नजर जा रही है। तो हिंदू राष्ट्र का मतलब मुसलमान मुक्त नहीं, हिंदू राष्ट्र का मतलब ईसाई मुक्त नहीं, हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि विचारक, हमें कागजों में हिंदू राष्ट्र चाहिए नहीं, विचारों में हिंदू राष्ट्र चाहिए। हम विचारों को परिवर्तन करना चाहते, और हिंदू कोई एक धर्म नहीं, जीवन शैली है। हिंदू का मतलब वसुदेव कुटुंबकम, हिंदू का मतलब अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा नहीं अहिंसा, हिंदू का मतलब व्यापार बाद में परिवार पहले, ये हिंदू राष्ट्र। हमें नहीं लगता कि ये गलत है, ये तो सबकी मांग होनी चाहिए, इस देश के प्रत्येक नागरिक की मांग होनी चाहिए।
3: बाबा जी अपने राखी से पहले बहुत सारी राखियां पहनी,
4: हमारी बहुत बहनें हैं,
3: बहुत सारी बहनें जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ पहले ही आपका रक्षाबंधन लग रहा है, मन चुका है।
4: अगर इंटरव्यू हो जाए तो आपकी श्रद्धा जगह तो आप
3: बहनें देख नहीं, हम बांध देते
2: हैं तो आपकी बहुत है
4: जी
2: गर्लफ्रेंड।
4: ये तो राम राम राम राम, आपको लगता है लेकिन हमारे जैसे आदमी ये सब झंझट पा रहे
2: हैं। शादी करेंगे कि नहीं बाबा?
4: हाँ घरवाली लाएंगे,
2: गर्लफ्रेंड से तो शादी करते हैं।
4: ना ना भैया, हमारी संस्कारों में पद्धति है, माता पिता हैं हमारे यहाँ पर।
2: आजकल आप जेंजी हैं ये तय हो गया,
3: एक साथ
2: और हर
4: जेंजी से बड़े,
2: हर जेंजी ये कहता है कि भाई पहले हम जानेंगे समझेंगे अपने जीवन साथी को, उसके बाद विवाह।
4: समझना गर्लफ्रेंड बनाना नहीं होता है, ना समझने का मतलब ये थोड़ी कि कोई आपको हाथ पकड़ा है तो आप पूरा हाथ ही दबा दो। जानना समझना किसी के बारे में, विचारों के बारे में।
2: शादी तो रहेंगे,
4: शादी आपको क्या लगता है हम लड़ूंगा मन?
0: वो तो कहते हैं कि रिश्ते उनके घर आते रहते
3: हैं,
0: बहुत जल्दी होगा।
4: अभी हम फर्स्ट में, अभी प्रारंभ में जो हमारे संकल्प चल रहे हैं उन पे हम बहुत कार्य कर रहे हैं। अभी कैंसर हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन 2027 के दिसंबर में फर्स्ट फेज में उसको चालू 2027 में, और हर वर्ष बेटियों का विवाह है वो सब। अभी हमने एक नया प्रकल्प चालू किया धाम पर, वैदिक गुरुकुलम, 80 बच्चे मजदूरों के जिनके माता पिता मजदूर हैं उनके बच्चों का रहना खाना पुस्तक पढ़ाई लिखाई सब फ्री ऑफ कॉस्ट वो चालू किया। तो उसमें केवल हम संस्कृत नहीं सिखाते, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, हॉर्स राइडिंग, तीरंदाजी, सिंगिंग, पूरा वैदिक और सबसे हाईटेक गुरुकुलम। हम सबसे तो नहीं कह सकते हैं, ठीक था।
0: कोई ओलंपिक मेडल भी आएगा आपके?
4: अगर ये सफल होंगे तो निश्चित भगवान ने चाहा।
0: स्वामी रामदेव पे बोलेंगे
4: जी, तो हमारे आदर्श
0: तो
5: आपके आदर्श में क्या आप उनकी तरह आप भी मतलब वो हर क्षेत्र में आप जो है चले गए, बहुत बड़े व्यापारी भी, अच्छे व्यापारी भी बन गए हैं, देश को बहुत मतलब रोजगार भी दे रहे हैं,
6: तो क्या आप भी उस
1: दिशा, आप क्या चाहते हैं? महात्मा सिर्फ मांगते ही रहे। देखो इस देश में हमारी आज से लेकर के अब तक के जितने भी प्रवचन के इंटरव्यूज या हमारे इंटरव्यू या कथा प्रवचन है सोशल मीडिया या यूट्यूब आदि पर प्रसारित, हमारी लाइव कथा प्रसारित टेलीकास्ट है, उन सबको आप सुनेंगे, हमने कभी माया छोड़ने के प्रवचन नहीं सुना, और हम माया छोड़ने के पक्ष में नहीं। आज 100 रुपया है डॉलर, 100 रुपया है, कल 200 हो जाएगा, आप सबको बाबा बना दोगे तो देश का हाल क्या होगा? हम देश का विकास चाहते, अर्थ से परमार्थ की यात्रा चाहते, अर्थ कमाओ पर परमार्थ में भी लगाओ। हम चाहते हैं दीनहीनों की भी मदद करो, धन कमाना बुरा नहीं है पर किसी का दिल दुखा करके कमाना, झूठ छल कपट पाखंड अंधविश्वास फैलाकर कमाना महा बुरा है। हम चाहते हैं हर व्यक्ति बिजनेसमैन बने, हर व्यक्ति व्यापारी बने, हर व्यक्ति अर्थ कमाने के स्रोत निकाले, नया आविष्कार करे, नई नई चीजों का आविष्कार करके समाज के सामने प्रस्तुत करे, हर क्षेत्र में वो सर्वगुण संपन्न हो, और बिल्कुल होना चाहिए। हमें स्वामी जी की एक बात बहुत अच्छी लगती, सब में होना चाहिए, कोई बुराई नहीं, हाँ धर्म का धंधा नहीं होनी चाहिए, धंधे का धर्म तो होता है।
5: वो कौन लोग हैं और धर्म का धंधा कैसे करते हैं? धर्म का धंधा क्या होता है?
1: धर्म का धंधा ये होता है कि हम भगवान के नाम पर, झूठ छल कपट के नाम पर, दिखावा भय दिखा करके, धर्म का चोला ओढ़ करके अपने पेट भरना, ये धर्म का धंधा है। आप कहेंगे आप तो नहीं ऐसा करते, हम कथा करते दक्षिणा मिलती है, हम प्रवचन करते दक्षिणा मिलती है, लेकिन हम मकान नहीं बनाते, अस्पताल बनाते, बेटियों के विवाह कराते हैं, हर दिन 10 से 15 हजार लोगों को निःशुल्क भंडारा कराते हैं। हमारा क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र, वहाँ 200 किलोमीटर में कोई कैंसर हॉस्पिटल नहीं है, तो हमने विचार किया हमारे क्षेत्र में अस्पतालों में मंदिर अब तक बहुत हैं, हम मंदिर में अस्पताल देखना चाहते
3: हैं। महाराज जी जब आप,
1: अब इसके विपरीत जो है वो धर्म का धंधा है।
3: तो जब आप बाहर होते हैं तो इंडिया में क्या चल रहा है उसको ट्रैक करते हैं?
1: नहीं ट्रैक नहीं, हम रोज न्यूज
3: पढ़ते हैं, लेकिन कई बार ऑनलाइन देखना पड़ता होगा ना, यूट्यूब पे या किसी
1: चलाते
3: हैं।
1: जी आपको क्या लगता है
3: कौन सा ऐप सबसे ज्यादा आप इस्तेमाल करते हैं?
1: एक्स हैंडल करते हैं,
3: एक्स हैंडल,
1: और इंस्टाग्राम करते हैं,
3: इंस्टाग्राम
6: खुद से करते हैं।
0: आपका भी समय जाता है ऐसे रील्स
1: देखते? 40 मिनट तो जाता है,
3: 40 मिनट,
1: 30 मिनट, 40 मिनट न्यूज पूरी पढ़ने में, आज कहां क्या क्या, किसने क्या क्या वहां बयान दिया, कहां पर क्या चल रहा, एक एक न्यूज को हमें, क्योंकि इसलिए भी अपडेट हमें रहना पड़ता है कि जैसे ही उतरो तुरंत बताइए बाबा ये क्या, अब बाइक लगाने वाले आप ही लोग होते हो, अपने बाबा बड़ा ज्ञानी बनता था, बोल नहीं
2: पाता। मेरे सारे साथी देखिए आपसे बहुत सख्त प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं तो मंत्र मुख दूंगा, देख रहा हूँ आपको, मैंने आपसे पहले ही कहा था आपको देखता रहूंगा।
1: जी जी आप बहुत सज्जन,
2: आप बैठ मेरे पास, तुझे देखता रहूं। ये बताइए कि इतना सुंदर हनुमान जी भी हैं,
1: जी
2: लग रहा है कि बहुत ही डिजाइनर, वो शानदार आपने कुर्ता पहना, कौन डिजाइन करता
1: है? हमारी डिजाइनिंग ऐसी है कि जो भी आता है वो श्रद्धा से दे जाता है, कोई फिक्स डिजाइनर नहीं।
2: अच्छा,
1: लोगों की इच्छा है, हमारे प्रति भावना जो जुड़े हैं।
2: ये भी कुर्ता किसी ने दिया है?
1: हम
2: कितने खुश हो रहे
1: हैं, खुद के कहा, उनका हृदय बड़ा इलाजित होता है कि गुरु जी ने पहन लिया।
2: तो आपका
1: है चाहेंगे कि इस इंटरव्यू के बाद में आप भी एक आध श्रद्धा दिखाओ आपको भी मन में ये आना चाहिए कि हमारा दिया हुआ कुर्ता कोई महात्मा पहने,
0: वो तो कोट देंगे,
1: कोट ना दे, कोट का करें।
2: अच्छा, हम शानदार टी शर्ट देंगे आपको,
1: बाहर में गया हम ले भी
0: पैंट भी लेंगे,
1: और अब आप मना ना कर पाएंगे क्योंकि आपने बोल दिया है कि हमने भगवान ने अगली बार कमेंट ही कर देंगे कि बड़े बड़े नहीं बार हमने देखे,
2: तो मतलब कुर्ता ही पहनेंगे आप?
1: नहीं नहीं, आप टी शर्ट दो, हम कहने देंगे
2: टी शर्ट पहनेंगे,
1: लेकिन इसका मतलब ये नहीं कल तुम जींस पैंट ले आओ, बोला पहनेंगे
2: टी शर्ट के साथ जींस भी देंगे,
1: ना ना हम बोला पहनेंगे पहले ही
2: क्यों। अच्छा तो है जींस पैंट पहनना, उसमें कोई आपत्ति है कुछ?
1: अरे भाई कोई आपत्ति नहीं, पुलिस वाला पुलिस की ड्रेस पहन करके ना आए तो आप सीधा गए सबके भाई अपने अपने रूल होते हैं, ड्रेस कोड होता है देश में, डॉक्टर का ड्रेस कोड है, पुलिस का ड्रेस कोड है, साधु का भी भैया ड्रेस कोड है, उससे इंस्पायर होते हैं लोग कि हम स्पिरिचुअल हैं। भैया आप क्या चाहते हो?
3: महाराज जी हाल ही में कांवड़ यात्रा को लेकर बहुत सारी बातें कही जाती हैं कि आजकल आस्था के नाम पर एंटरटेनमेंट ज्यादा हो रहा है, बड़े बड़े डीजे, लाउड म्यूजिक।

0: करने की,
1: उसको कैसे ठीक करें ताकि उसमें से एंटरटेनमेंट का एलिमेंट माइनस हो जाए।
0: सजगता और सद्बुद्धि है, उसको ठीक भर ऐसे करना है कि हम कचरा जमीन पर ना फेंकें, कचड़े को कूड़ेदान में ही डालें, और धर्म आस्था को सिर्फ इंजॉयमेंट में, आस्था की पवित्रता, आस्था में श्रद्धा, दोनों उच्चतम सीमा पर बनाए रखें। कांवड़िया बड़े भगवान के शिव भक्त होते हैं, अद्भुत भक्ति करते हैं, पैदल चलते हैं, उसमें कुछ विचित्र लोग भी होते हैं। तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, कछु मानस कछु देवता कछु जय जय सीताराम, सब प्रकार के लोग बहन होते हैं, सबकी अपनी अपनी मति होती है, सब में सब प्रकार के होते हैं। पर हम इतनी बात जरूर कहेंगे आने वाले दिनों में, इसकी कांवड़ियों का भी एक विशेष, सरकार तो बहुत कार्य करती है, कांवड़ियों भी एक समझेंगे कि हमको जो है देवतीर्थ में, गंगा के किनारे, रास्ते पर, सड़क पर कोई भी ऐसा कृत्य नहीं करना जिससे हमारे सनातन पर उंगली उठे।
1: अब बड़े बड़े साधु हैं जो इस चीज को लेकर, मतलब वो गंगा जी के लिए प्राण समर्पित कर देते हैं, ये भी उन कांवड़ियों को अपने भक्ति के जोश में सोचना चाहिए।
2: जितने जितने शांति से आप अपनी बात रख रहे हैं, आप अपनी बात मनवा भी लेते हैं, ठीक है कुछ, लेकिन जेंजी कुछ युवाएं जो अभी लद्दाख का वीडियो का आप जिक्र कर रहे थे, उसमें उतना गुस्सा जो उस महिला का था, और वो कह रही है हम जेंजी है, हम प्रदर्शन पे बैठ जाएंगे, यहीं बैठ जाएंगे, तो उन युवाओं के लिए क्या संकेत दें? गुस्से से ज्यादा बेहतर है शांति से अपनी
0: बात। हर रास्ते, हर हल, हर विवाद किसी भी समस्या का समाधान, संवाद ही समस्या का। देश में प्रेम बांटो ना, देश में एकत्व बांटो ना, देश में हम विवाद क्यों चुने, संवाद क्यों ना चुने? चार दिन की जिंदगी किसके लिए? और आपके आंदोलन कर देने से हो भी क्या जाना? हम सरकार को समझाएं भी, सिस्टम को सुधारें भी, पर देश को बिगाड़ें तो ना। आने वाली अल्फा बीटा जनरेशन को हम आंदोलन की बातें दे करके जाएंगे, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हम नेशन प्रेम की बातें देके जाए, लव और पीस की बातें देकर जाए। तो हमें लगता है कि अब वर्तमान ये जो सोच वायरल होने का जो वायरल चढ़ा ना, ये बहुत खतरनाक है। हम पूरे भारत को ड्रग एडिक्ट या अथवा सोशल मीडिया एडिक्ट नहीं, कथा एडिक्ट करना
1: चाहिए। आजकल आप पर्ची निकालना छोड़ दिए?
0: ना चला रहे हैं, बस धाम पर है अभी।
1: अच्छा, जगह नहीं कर,
0: कथाओं में भी होता सब, लेकिन व्यस्तता अन्य जगह ज्यादा बढ़ गई, कथाएं ज्यादा, विदेश यात्रा ज्यादा, और पद यात्रा की तैयारी, कन्या विवाह की तैयारी, गुरुकुलम की तैयारी, कैंसर हॉस्पिटल की। पर्ची तो निकाले, वो तो जब तक जीना है तब तक भगवान ने जो कृपा दे रखी उस लगातार चला। अब आप लोग कम पर्ची दिखा रहे हैं, ये कह सकते
1: महाराज जी आप इतनी विदेश यात्रा करते हैं, लेकिन जब आप तुलना करते हैं भारत की और विदेश की, असीम और अपार संभावनाएं ऐसी जो भारत में, जिसको हम यूज नहीं कर पा रहे हैं, जिसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, जो विदेश में नहीं भी है फिर भी उन लोगों ने उसे डेवलप कर दिया। मसलन दुबई एक रेत था, रेतीला वहां पर मैदान था, फिर भी इतना डेवलप्ड वो जगह बन गई है। ऐसी कौन सी संभावनाएं आपको हिंदुस्तान में भी दिखाई देती हैं जिस पर हम काम कर सकते हैं?
0: भारत में सब कुछ बस प्रस्तुतीकरण, हमारी प्रस्तुतीकरण प्रेजेंटेशन ठीक है, वो अपने पहाड़ खुदे हुए पहाड़ों को भी टूरिस्ट प्लेस बता रहे हैं। हमारे यहाँ ऑलरेडी टूरिस्ट प्लेस है, तो हमें लगता है भारत का प्रस्तुतीकरण ठीक होना चाहिए। एक, भारत की शिक्षा व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, भारत की स्वच्छता पर काम करना चाहिए। फर्स्ट, यदि भारत को ठीक करना है तो दो जगह सफाई होनी चाहिए, भारत की सड़कों पर और कोनों में, और दिमाग
1: दिमाग की पहले दिमाग की सफाई कथा के साथ होगी, बाकी सफाई सरकार को करनी है।
0: नहीं नहीं नहीं, वो दिमागी सफाई कथा से तो हम सिर्फ विचार दे सकते हैं, स्वीकार तो आप करेंगे, स्वीकार तो लोग करेंगे, हम तो कह सकते हैं, मानना ना मानना अभिव्यक्ति की आजादी, इतना कह सकते हैं कि आप बेहतर जीना चाहते तो हमारे पास वही विचार है, और विचार सदविचार बुरे विचारों को ठीक करते, पर कोई स्वीकार करे तब ना।
3: नई पीढ़ी आपको कितना सुनती है, मतलब आप भी कभी मतलब कुछ
0: ये डाटा तो आप ही ला सकते हैं हमें कितना सुनती है, हमारे बारे में कह पाना बहुत मुश्किल होगा, हम नहीं कह सकते हम कितने अच्छे आदमी, हम आपके बारे में कह सकते।
1: ऐसा होता है कि अलग अलग पीढ़ी के लिए अलग भाषा को इस्तेमाल करनी है कि भाई, क्योंकि आजकल पीढ़ियों में ऐसा बांट दिया कि हर व्यक्ति के दिमाग में आता है कि भाई मैं कौन सी पीढ़ी, सबने पता किया एक एक करके हम कौन सी पीढ़ी,
0: आप कौन है?
3: जेंजी
0: आप यदि जेंजी।

0: Nej, det är svårt om Gen Z är med.
1: डेल्टा थीटा ऐसे ही होता है ना,
2: गणित की ज्यामिति के सूत्र।
1: महाराज जी, आप एक आम जीवन से इस जीवन में कैसे परिवर्तित हुए? कौन सी वो आदतें थी आपके अंदर जो आपने बदलाव किया और आप बाबा बागेश्वर बन गए?
2: हम बचपन से ही उल्टे थे।
1: उल्टे थे? क्या उल्टे काम किए आपने?
2: कोई ऐसे उल्टे काम नहीं किए बहन, बचपन से ही हमको किसी ने बाबा बनाया,
1: कैसे
2: बनाए ही थे,
1: मैंने बनाया।
2: हमारा परिवार पूरा सामाजिक के साथ साथ धार्मिक में खूब सरोवर था। हमारे ग्रैंडफादर हनुमान जी के परम भक्त, उन पर हनुमान जी की विशेष अनुकंपा थी, एनलाइटमेंट था उनको, एनलाइटेड थे, उनके चरणों में रहे, हनुमान जी की सेवा बचपन से ही, हमारे पिताजी माताजी, हमारे दादाजी, दादाजी के भी पिताजी परदादा, तो हम जहाँ जिस गांव में हमारा जन्म हुआ वहाँ बालाजी का जो मंदिर है वो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी पूजा करते ही आ रही, तो वंशानुगत पूजा कर रहे हैं, तो दादाजी वहाँ रहते थे, तो दादाजी की हमारे यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी कोई ना कोई एक वहाँ का पीठपति या पीठाधीश्वर होता है। दादा ने हम पर कृपा की, गुरु ने हम पर दृष्टि डाली, तो हम बचपन से ही धार्मिक धर्म के प्रति लगाव था ही, परिवार का माहौल ही ऐसा था, फिर दादाजी ने कृपा की तो गुरु अद्भुत मिल गए, तो फिर जीवन परिवर्तित हो गया, तो हम बाबा बने नहीं, बने बनाए हुए हैं समान थे।
3: लेकिन आपकी बातों के साथ, मतलब भले एक साल से आप कह रहे हैं कि चूक गए, लेकिन आपको फिर भी इस नई पीढ़ी के ही का ही आप प्रतिनिधित्व एक तरीके से करते हैं, जो सोशल मीडिया से लेकर और एक कथा वाचन तक सबको अपनी बातें अपने विचार सुना रहा है, यात्राएं कर रहा है और आगे भविष्य के भारत के लिए एक उम्मीद बनाए हुए है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
1: सावन के आखिरी सोमवार को लेकर भक्तों में भारी उत्साह है। शिवालयों में खास तैयारियां की जा रही हैं। सावन शिव का महीना है और शिव को प्रिय है सोमवार का दिन। ऐसे में आखिरी सोमवार मनोकामना पूर्ति का भी दिन है। शिवलिंग पर जलाभिषेक और पूजा पाठ से भोलेनाथ को आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है, वरदान पाया जा सकता है।

0: सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। अगर ये सोमवार सावन महीने का है उसका महत्व और भी बढ़ जाता है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सावन के सोमवार का खास महत्व बताया गया है। सावन का महीना भी अब जल्द ही समाप्त होने वाला है और 24 अगस्त को सावन का आखिरी सोमवार है। ऐसे में शिव भक्तों के पास भी इस सावन के महीने में आखिरी मौका है भोलेनाथ को प्रसन्न करने का। सावन के आखिरी सोमवार को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। अगर आपने सावन के किसी भी सोमवार को पूजा नहीं की है, व्रत नहीं रखा है, तो इस सोमवार को पूजा करने और व्रत करने से भी आपकी मनोकामनाएं पूरी हो सकती है। सावन के आखिरी सोमवार पर एक साथ कई शुभ योग संयोग भी बन रहे हैं। सावन के आखिरी सोमवार पर इस बार प्रीति योग, आयुष्मान योग, पवित्रता एकादशी वैष्णव, हंस राज योग, बुद्धादित्य राजयोग, क्योंकि सिंह राशि में सूर्य बुध की युति बनेगी। अगर आप भी सावन के पहले तीन सोमवार का व्रत नहीं कर पाए हैं तो कोई बात नहीं, आप इस सोमवार का व्रत करेंगे तो पुण्य की प्राप्ति होगी। सावन के आखिरी सोमवार पर सुबह सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहने, इसके बाद भगवान शिव का ध्यान कर व्रत या पूजा का संकल्प ले शिवालय जाएं और शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और 11 या 21 बेलपत्र अर्पित करें। एक एक बेलपत्र अर्पित करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें। इसके बाद घी का दीपक जलाकर आरती करें और इस दिन जरूरतमंद लोगों की मदद करें और दान भी दें, जैसे वस्त्र, अन्न, फल आदि चीजों का दान आप कर सकते हैं। शिव चालीसा या रुद्राष्टक का पाठ करें। सावन के आखिरी सोमवार पर रुद्रा अभिषेक करने की भी विशेष मान्यता है। कहा जाता है कि इस दिन पूजा पाठ जप तप करने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
1: अभी गणेश उत्सव में काफी दिन है लेकिन तैयारियां जोरों पर हैं। मुंबई के लालबाग परेल इलाके में काला चौकी में आज गणपति बप्पा का आगमन हुआ। तस्वीरें देखिए, मुंबई के प्रसिद्ध गणेश उत्सव पंडालों में से एक। गणेश चतुर्थी के दौरान विघ्नहर्ता की बहुत सुंदर भव्य मूर्ति स्थापित की जाती है। गणेश उत्सव के दौरान दर्शन करने के लिए हजारों भक्त यहां पर आते हैं। जैसे जैसे गणेश उत्सव की तारीख जो है नजदीक आ रही है, बप्पा की मूर्ति अलग अलग पंडालों में लाई जा रही है ताकि महोत्सव के दौरान भव्य और दिव्यता प्रदान की जा सके। दो तस्वीरें आपको टेलीविजन स्क्रीन में दिखा रहे हैं, कितनी बड़ी संख्या में तमाम श्रद्धालु बढ़ चढ़कर स्वागत कर रहे हैं बप्पा के आगमन का।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज़ टुडे में।

0: सावन के अंतिम सोमवार का क्या है पूजा विधान? सावन के अंतिम सोमवार पर कौन सी मनोकामनाएं होंगी पूरी और कैसे मिलेगा शिव जी का वरदान? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आती हैं।
2: सावन के आखिरी सोमवार पर आज मंदिरों में विशेष तैयारी। पावन मौके पर आज बन रहे हैं कई शुभ संयोग। इस साल सावन महादेव की कृपा पाने का यह आखिरी मौका है। मुंबई के पंडालों में पधार रहे हैं गणपति बप्पा। काली चौकी के महाराजा के स्वागत में उमड़े हजारों श्रद्धालु, ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत। अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर बदली गई धर्म ध्वजा। वैदिक मंत्रोच्चारों के बीच पूरे विधि विधान के साथ निभाई गई परंपरा। के द्वारकाधीश मंदिर में पारंपरिक काली घटा का आयोजन, फूलों और आकर्षक लाइटों से मनमोहक हुआ दृश्य। ठाकुर जी के दर्शन कर करगद हुए भक्त। बारिश के लिए जैसलमेर के पुरोहितेश्वर राम महादेव मंदिर में महारुद्राभिषेक। 121 रुद्र पाठी पंडितों ने किया सामूहिक रुद्री पाठ, मंत्रोच्चार से गूंजा परिसर। अजमेर में दिखी राजस्थानी संस्कृति की झलक का मातृशक्ति मानसून महोत्सव में जुटी हजारों महिलाएं। मेगा लकी ड्रॉ और मेडिकल कैंप्स का आयोजन। नागपुर में 4,000 से ज्यादा युवक युवतियों ने ढोल ताशा बजाकर बनाया अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। सावन के आखिरी सोमवार को लेकर भक्तों में भारी उत्साह है। शिवालयों में खास तैयारियां की जा रही हैं। सावन शिव का महीना है और शिव को प्रिय है सोमवार का दिन। ऐसे में आखिरी सोमवार मनोकामना पूर्ति का भी दिन है। शिवलिंग पर जलाभिषेक और पूजा पाठ से भोलेनाथ को आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है, वरदान पाया जा सकता है।

0: सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। अगर ये सोमवार सावन महीने का है उसका महत्व और भी बढ़ जाता है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सावन के सोमवार का खास महत्व बताया गया है। सावन का महीना भी अब जल्द ही समाप्त होने वाला है और 24 अगस्त को सावन का आखिरी सोमवार है। ऐसे में शिव भक्तों के पास भी इस सावन के महीने में आखिरी मौका है भोलेनाथ को प्रसन्न करने का। सावन के आखिरी सोमवार को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। अगर आपने सावन के किसी भी सोमवार को पूजा नहीं की है, व्रत नहीं रखा है, तो इस सोमवार को पूजा करने और व्रत करने से भी आपकी मनोकामनाएं पूरी हो सकती है। सावन के आखिरी सोमवार पर एक साथ कई शुभ योग संयोग भी बन रहे हैं। सावन के आखिरी सोमवार पर इस बार प्रीति योग, आयुष्मान योग, पवित्रता एकादशी वैष्णव, हंस राज योग, बुद्धादित्य राजयोग, क्योंकि सिंह राशि में सूर्य बुध की युति बनेगी। अगर आप भी सावन के पहले 3 सोमवार का व्रत नहीं कर पाए हैं तो कोई बात नहीं, आप इस सोमवार का व्रत करेंगे तो पुण्य की प्राप्ति होगी। सावन के आखिरी सोमवार पर सुबह सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहने, इसके बाद भगवान शिव का ध्यान कर व्रत या पूजा का संकल्प ले शिवालय जाएं और शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और 11 या 21 बेलपत्र अर्पित करें। एक एक बेलपत्र अर्पित करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें। इसके बाद घी का दीपक जलाकर आरती करें और इस दिन जरूरतमंद लोगों की मदद करें और दान भी दें, जैसे वस्त्र, अन्न, फल आदि चीजों का दान आप कर सकते हैं। शिव चालीसा या रुद्राष्टक का पाठ करें। सावन के आखिरी सोमवार पर रुद्रा अभिषेक करने की भी विशेष मान्यता है। कहा जाता है कि इस दिन पूजा पाठ जप तप करने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
1: अब बात करेंगे मथुरा की। देखिए, यहाँ के बांके बिहारी मंदिर में काली घटा उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल होने और बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। दरअसल ऐसी मान्यता है कि सावन में प्रभु को प्रकृति का दर्शन कराने के लिए इस उत्सव का आयोजन किया जाता है। मथुरा ब्रजमंडल में सावन मास में घटाओं का अपना अलग ही महत्व है। कृष्ण की नगरी मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में काली घटा का भव्य आयोजन किया गया, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। दरअसल ठाकुर जी को सावन महीने में प्रकृति का अनुभव कराने के लिए ब्रज में मंदिरों में घटाओं का आयोजन किया जाता है। उसी परंपरा के तहत ठाकुर जी महाराज काली घटा में विराजमान हुए, जिसमें संपूर्ण मंदिर प्रांगण को काले कपड़े और अनेकों प्रकार के फूलों से सजाया गया, शानदार लाइटिंग की गई। यही नहीं, संपूर्ण मंदिर में काले काले बादलों की गड़गड़ाहट, चिड़ियों की चहचहाहट, बिजली कड़कने की आवाज गूंजती रही। मंदिर प्रशासन का कहना है कि घटा से तात्पर्य है ठाकुर जी को बाहर के मौसम की अनुभूति करवाना।
2: हमारे संप्रदाय में ठाकुर जी की सेवा का सहित बाल स्वरूप है और बालक को बाहर के मौसम की अनुभूति कराने के लिए घटाओं के आयोजन होते हैं। और इस आयोजन में जो काली घटा है वह अपने आप में बहुत ही अद्भुत है, जिसमे बालकों की गड़गड़ाहट, चिड़ियों की चहचहाहट और मौसम की एक ऐसी अनुभूति जो लोग देश विदेश से ऐसे देखने आते हैं।
1: सात सज्जा के बाद जब ठाकुर जी महाराज काली घटा में विराजमान हुए तो तो मानो धरती प्राकृतिक नजारों से दमक उठी और दर्शन के लिए भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। पूरे सावन मास ये सिलसिला चलता रहेगा। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा, गुड न्यूज टुडे। रामनगर अयोध्या में श्रावण मास की धार्मिक परंपराओं के बीच श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में झूलनोत्सव मनाया जा रहा है। भगवान श्रीराम की भक्ति, पारंपरिक झूला उत्सव और सांस्कृतिक आराधना की मनमोहक झलक देखने बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। झूलनोत्सव के दौरान श्रीराम जन्मभूमि मंदिर की यज्ञशाला में विशेष नृत्य आराधना का आयोजन हुआ और बेंगलुरु की साई ग्रुप के कलाकारों ने नृत्य के माध्यम से प्रभु श्रीराम की आराधना की। श्रीराम मंदिर में झूलनोत्सव का कार्यक्रम 28 अगस्त तक यूं ही चलेगा। दूसरी तरफ देखिए, सावन मास के शुक्ल पक्ष के अवसर पर श्रीराम मंदिर के सर्वोच्च शिखर पर स्थित झंडे को बदला गया। दोनों तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं। झंडा बदलने से पहले प्रभु श्रीराम की विधिवत पूजा अर्चना की गई। तस्वीर देखिए,

अभी गणेश उत्सव में काफी दिन है लेकिन तैयारियां जोरों पर हैं। मुंबई के लालबाग परेल इलाके में काला चौकी में आज गणपति बप्पा का आगमन हुआ। तस्वीरें देखिए, मुंबई के प्रसिद्ध गणेश उत्सव पंडालों में से एक गणेश चतुर्थी के दौरान विघ्नहर्ता की बहुत सुंदर भव्य मूर्ति स्थापित की जाती है। गणेश उत्सव के दौरान दर्शन करने के लिए हजारों भक्त यहां पर आते हैं। जैसे जैसे गणेश उत्सव की तारीख जो है नजदीक आ रही है, बप्पा की मूर्ति अलग अलग पंडालों में लाई जा रही है ताकि महोत्सव के दौरान भव्य और दिव्यता प्रदान की जा सके। दो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन में दिखा रहे हैं, कितनी बड़ी संख्या में तमाम श्रद्धालु बढ़ चढ़कर स्वागत कर रहे हैं बप्पा के आगमन का।

0: रंगों की होली तो आप हर साल खेलते होंगे, लेकिन आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं दूध की अनोखी होली की खबर जो खेली गई है हरिद्वार में। यहाँ की पावन हर की पौड़ी पर होने वाली दूध की होली एक ऐसा ही दिव्य उत्सव है। मुल्तान जोत महोत्सव के खास अवसर पर यहाँ माँ गंगा के आंचल में दूध की धार और आस्था की जोत मिली तो पूरा वातावरण जो है अलौकिक हो गया।
1: नगरी हरिद्वार में हर की पैड़ी पर उमड़ी श्रद्धालुओं की ये भीड़ उस अनूठी परंपरा की कहानी कह रही है जो यहाँ पर 115 साल से निभाई जा रही है। देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर स्नान करने आते हैं, गंगा मैया की पूजा और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करने आते हैं। लेकिन ये लोग यहाँ पर ब्रह्मकुंड में माँ गंगा के साथ होली खेलने आए हैं, वो भी रंगों से नहीं बल्कि दूध से। फूलों के साथ दूध से भरी बाल्टियां लेकर माँ गंगा के जयकारे लगाते हुए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर जमा हुए।
2: कि मेरे कारण से गंगा मैली ना हो, गंगा स्वच्छ रहनी चाहिए, हम सबका संकल्प है। आज हम माँ गंगा से दूध की होली खेलते हैं, अपनी श्रद्धा अनुसार जितना भी दूध होता हम प्रवाहित करते हैं, पिचकारी में दूध भर के माँ गंगा से दूध की होली खेलते हैं। और उसके पीछे का उद्देश्य यही है कि जो परंपरा हमारी हिंदू संस्कृति कहती है कि तालाब की पूजा करना, गंगा की पूजा करना, यमुना की पूजा करना, परिवार के साथ हम यहाँ पर आते हैं, लगातार एक सप्ताह ये कार्यक्रम चलता है।
1: दरअसल बताया जाता है कि सन 1911 में पाकिस्तान में रहने वाले व्यापारी लाला रूपचंद पैदल ही हरिद्वार आए थे। उन्होंने गंगा में जोत प्रवाहित की थी ताकि गंगा मैया के आशीर्वाद से उनकी संतान जिंदा रहे और उनके दुख दर्द दूर हो जाए। कहा जाता है कि उनकी यही कामना पूरी हुई थी तो उसके बाद से हर साल सावन में कांवड़ यात्रा के बाद यहां पर मुल्तान जोत महोत्सव मनाने का सिलसिला शुरू हुआ जो अब तक जारी है। हर साल मुल्तान समाज के लोग यहां पर गंगा माँ के साथ होली खेलने आते हैं और दिवाली भी मनाते हैं। इसके पीछे मकसद बेहद खास है।
2: पीढ़ी दर पीढ़ी ये परंपरा चलती आ रही है और आज भी जो लोग खड़े हैं वो अपने आने वाली इस पीढ़ी को ये संदेश दे रहे हैं कि हम कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, कितनी भी हमारी भौगोलिक स्थिति ना बदल जाए, लेकिन हमें अपनी जड़ों को नहीं छोड़ना है, अपने रूट्स को नहीं छोड़ना है। जो हमारे धार्मिक अनुष्ठान है, हमारी परंपराएं हैं, इसमें सुख समृद्धि और शांति की कामना है देश के लिए, उसको हमें पूरा करना है और ये जोत महोत्सव उसी का एक प्रतीक है।
1: खास बात ये भी है कि इस बार इस अनोखी होली में योग गुरु स्वामी रामदेव और एक्टर रणवीर सिंह के डुप्लीकेट भी शामिल हुए।
3: सभी मिलजुल के रहे, गंगा हमारी साफ रहे, सभी से यही मेरी प्रार्थना है, गंगा को हमेशा साफ रखो, स्वच्छ रखो। मैं संदेश ये देना चाहता हूँ कि जितना अच्छा हो सके, जितना प्यारा हो सके, हम इसको कार्यक्रम को हम ताकि कहीं कोई गड़बड़ ना हो सके, जितनी शांति से हो सके हम उतने शांति से ये प्रोग्राम को हमें करना।
1: हर की पैड़ी पर दूध की होली के उत्सव में आस्था का अद्भुत संगम नजर आता है। इसमें शामिल श्रद्धालु देश और समाज की खुशहाली के साथ गंगा नदी की स्वच्छता का संदेश दे रहे हैं। इसके माध्यम से ये लोग गंगा की पवित्रता, निर्मलता और हर तरफ सुख शांति का पैगाम दे रहे हैं और सबके कल्याण की प्रार्थना कर रहे हैं। हरिद्वार से मुदित अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
0: बात करेंगे रक्षाबंधन की। भाई बहन के पवित्र रिश्ते से जुड़ा ये त्यौहार 28 तारीख को मनाया जाएगा जिसको लेकर देश भर के तमाम बाजार तरह तरह की रंग बिरंगी और फैंसी राखियों से सज गए हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं राखी और गिफ्ट खरीदने के लिए बाजारों में पहुंच रही हैं। इस बार बाजार में 10 रुपये से लेकर 300-400 रुपये तक की राखियां मौजूद हैं और हर उम्र के लोगों के लिए अलग अलग डिजाइन देखने को मिल रहे हैं।
4: आने वाला है भाई बहन के प्यार भरे रिश्ते की पहचान वाला पर्व रक्षाबंधन। बहनें राखी का धागा बांधकर भाई से रक्षा का लेती हैं प्रण। 4 दिन बाद यानी 28 अगस्त को रक्षाबंधन मनाया जाएगा। इसके लिए बहनें जोर शोर से तैयारी में लगी हैं और उस पल का इंतजार कर रही हैं जब वो रक्षाबंधन के अवसर पर अपने प्यारे भाई की कलाई राखी के धागे से सजाएंगी। राखी को लेकर बाजारों में रौनक बढ़ गई है। बाजार में बहनों की भीड़ है और दुकानें तरह तरह के राखियों से गुलजार हैं। हरियाणा के करनाल में भी बाजार सज गए हैं। तरह तरह की राखियां बहनों को लुभा रही हैं। कोई मोतियों वाली राखी खरीद रहा है तो कोई बच्चों के लिए कार्टून कैरेक्टर वाली राखी। कुल मिलाकर बाजार में राखियों की ढेरों वैरायटी है।
5: सबसे पवित्र रिश्ता होता है बहन भाई का और ये साल बाद ही त्योहार आता है। मैं तो यही कहूंगी सभी बहनें आए राखी खरीदें, अच्छे से अपने भाई को खुश करें और आप भी खुश होएं, अच्छी अच्छी राखियां खरीदें क्योंकि ये फेस्टिवल एक साल के बाद ही आता है और ये सबसे पवित्र एक रिश्ते का मतलब कि फेस्टिवल है। कि दोनों की पेयर है सबसे बेस्ट है वो, बाकी सिंगल भी ले सकते हो, डबल भी, जैसे आपकी चॉइस है। बच्चे छोटे भी है, उनके डोरेमोन वाली भी है, नगों वाली भी है, छोटे बच्चों की हर तरह की वैरायटी है।
4: बाजारों में भीड़ है, राखियों की बिक्री भी जमकर हो रही है जिससे दुकानदार भी खुश हैं। बिहार के गया में भी रंग बिरंगी राखियों से बाजार सजा हुआ है। अलग अलग वैरायटी की राखियां बहनों को आकर्षित कर रही है। भाई की कलाई पर प्रेम और स्नेह का धागा बांधने की चाहत में बहनें अच्छी से अच्छी राखियों की खरीदारी की चाहत में बाजार का रुख कर रही हैं।
6: अच्छी अच्छी राखियां आई हुई है, हर साल के अकॉर्डिंग इस साल ज्यादा अच्छी अच्छी राखियां आई हुई है।
4: राजस्थान के पाली में बिक रही इन राखियों को देखिए, ये राखियां इको फ्रेंडली है। वजह यह है कि ये राखियां गोबर से बनी है। अलग अलग आकृतियों को समेटे ये राखियां काफी पसंद की जा रही है। यही नहीं, इन राखियों में बीज भी डाला गया, यानी जब भी आप इन राखियों को कलाई से उतारेंगे तो इसे गमले में डालने से पौधा उगने लग जाएगा जो स्नेह का पौधा होगा। जीवन भर भाई बहन का स्नेह का प्रतीक बना रहेगा और पर्यावरण की सुरक्षा भी करेगा।
7: तो ये है कि जो अपने भाई की राखी बांधेगी तो गाय का गोबर जो अपने स्किन से तो टच होता है तो वो अपने एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है। तो ये राखी बांधने से हर किसी का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। तो मैं गाय के गोबर को प्रमोट कर रही हूँ और बहुत सारी चीजें मैं गाय के गोबर से बना रही हूँ और प्लास्टिक मुक्त करना चाहती हूँ।
4: भाई बहन के पवित्र रिश्ते और प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे अपने भाइयों को राखी भेजने के लिए डाकघरों में बहनों की भीड़ बढ़ने लगी है। तस्वीरें महाराष्ट्र के अकोला की है। यहाँ के RMS पोस्ट ऑफिस में इन दिनों रक्षाबंधन को लेकर खास व्यवस्था की गई है। राखी भेजने वाली बहनों और अन्य ग्राहकों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए RMS की ओर से स्पेशल काउंटर शुरू किया गया है जो रात 9 बजे तक काम करता है। इससे बहनों को सामान्य डाक और पार्सल की लंबी कतार में खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ रही है और राखी जल्दी पोस्ट की जा रही है।
8: हर बहन अपने भाइयों को एक राखी भेजती है जो उन तक पहुंचाना ये हमारी जिम्मेदारी है और इससे मद्देनजर जो भीड़ है वो भीड़ को मद्देनजर रखते हुए हमने एक स्पेशल काउंटर भी शुरू किया है ताकि हमारी जो बहनें हैं जो राखी भेजने के लिए आई है उनको कम से कम तकलीफ।
9: बहुत ही अच्छी सुविधा है, हम लोगों को यहाँ बहुत टाइम लग रहा था पर ये देख के बहुत खुशी हो रही है कि बहनों के लिए राखी के लिए इन्होंने अच्छा आयोजन किया है, नया काउंटर खोला है, हम सभी बहनें बहुत खुशी में हैं।
4: डाकघर में राखियों को सुरक्षित तरीके से भेजने के लिए वाटरप्रूफ एनवेलप की भी व्यवस्था की गई है ताकि राखियां खराब न हो। करनाल से कमलदीप, गया से पंकज कुमार, पाली से भरत भूषण जोशी और अकोला से धनंजय साबले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: बात करेंगे नए वर्ल्ड रिकॉर्ड की। नागपुर में एक साथ 4000 से ज्यादा लोगों ने ढोल और ताशा बजाकर एक अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया और एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज हो गया। करीब 585 ध्वजधारकों ने अपने अपने दल के साथ सहभागिता दर्ज कराते हुए नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अधिकारियों ने आयोजकों को सर्टिफिकेट भी प्रदान किए। इस खास मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे।

0: पूर्वी उत्तर प्रदेश और खासकर गोरखपुर को नई सौगात मिलने जा रही है। जी हां, लखनऊ और अहमदाबाद की तर्ज पर अब वहां पर भी रिवर फ्रंट विकसित करने की तैयारी है। ये रिवर फ्रंट जो है राप्ती नदी के किनारे विकसित किया जाएगा। रिपोर्ट देखिए।
1: कल बहती राप्ती नदी का और उनके किनारों का ये मनमोहक नजारा बेहद आकर्षक है। नदी किनारे बने घाटों पर बैठकर सुकून के कुछ पल गुजारने का अपना ही मजा है। अब इस इलाके को और भी आकर्षक बनाने की तैयारी हो रही है। गोरखपुर में राप्ती नदी के तट का अब कायाकल्प होने जा रहा है। लखनऊ के गोमती और अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर राप्ती नदी के किनारे शानदार रिवर फ्रंट विकसित करने की योजना बनाई जा रही है। इसे अब साकार करने की दिशा में काम शुरू हो रहा है।
2: इसी योजना के क्रम में जो है एक प्रारंभिक जो है रिपोर्ट जो संबंधित वेंडर था उनके द्वारा जो है प्रस्तुत की गई है। क्योंकि ये प्रारंभिक रिपोर्ट है तो इसमें इन्होंने कुछ चीजें जो मेंशन करी हैं, जिसमें इसमें पार्क भी है, इसमें ग्रीन स्पेसेस भी हैं, इसमें पब्लिक के लिए भी कन्वेंशन सेंटर लेकर ये रिवर फ्रंट की बात यहाँ पर चल रही है।
1: राप्ती रिवर फ्रंट के प्रोजेक्ट की डीपीआर तैयार हो चुकी है। इस पर करीब 1,303 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसके तहत गोरखपुर के राजघाट से डोमिनीगढ़ तक राप्ती नदी के करीब 3.5 किलोमीटर लंबे तट को रिवर फ्रंट के रूप में विकसित किया जाएगा। इसमें नदी के तट से हर्बर्ट बांध पर बनी 4-लेन सड़क की ओर करीब 150 मीटर चौड़ाई में विकास कार्य कराया जाएगा, ताकि आम लोग इसका पूरा लाभ उठा सके।
2: जब आप नदी के किनारे विभिन्न आयामों में आप वहाँ पे टूरिज्म की तमाम गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं, जैसे चाहे वो बोटिंग हो, चाहे वो घाट पे बैठना हो, चाहे वो आसपास पार्क में सुबह की सैर करना हो, शाम की सैर करना हो, या कोई भी कॉलेज का इवेंट हो, कोई कल्चरल इवेंट हो, कोई पारिवारिक इवेंट हो, तो वो भी रिवर फ्रंट पे एक जैसे कहते हैं कि एक लाइवली माहौल वहाँ पर एक कल्चरल एक संध्या के रूप में आप देखें, सुबह भी आप टहलने वहाँ जा सकें और बच्चों के साथ भी वहाँ और परिवार का समय व्यतीत कर सकें, इस तरह की पूरी परिकल्पना जो है इस रिवर फ्रंट पर की जाती है।
1: राप्ती रिवर फ्रंट के पूरे प्रोजेक्ट को 3 चरणों में पूरा करने की योजना है। सड़क तक विकसित किए जाने वाले हिस्से को ग्रीन बेल्ट के रूप में विकसित किया जाएगा। साथ ही यहां पर अर्बन हॉट, योग सेंटर और कन्वेंशन सेंटर जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इसके अलावा जगह जगह बोटिंग की सुविधा देने की भी तैयारी है। माना जा रहा है कि परियोजना पूरी होने के बाद राप्ती नदी का ये इलाका गोरखपुर के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल हो सकता है। गोरखपुर से गजेंद्र त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: बीजिंग में दूसरा वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स यानी रोबोट ओलंपिक चल रहा है। जी हां, इसमें 2000 से ज्यादा ह्यूमनॉइड रोबोट न केवल फुटबॉल, टेनिस, बॉक्सिंग, बैडमिंटन और एथलेटिक्स में अपना हुनर दिखा रहे हैं, बल्कि नए नए रिकॉर्ड्स बनाकर इंसानों को दंग भी कर रहे हैं। इसमें से एक रोबोट ने मशहूर धावक हुसैन बोल्ट का रिकॉर्ड तोड़ दिया। जी हां, तो एक ने हाई जंप में इंसान को पीछे छोड़ दिया। रिपोर्ट देखिए।
3: रॉकेट जैसी रफ्तार, दौड़ शानदार।
4: ह्यूमनॉइड रोबोट रेसिंग की ये तस्वीरें बीजिंग की हैं, जहां 100 मीटर की दौड़ में नया इतिहास रचा गया।
3: यहां पर तियानजोउ नाम के ह्यूमनॉइड रोबोट ने दुनिया के सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट के 100 मीटर के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। तियानजोउ रोबोट ने 100 मीटर की दौड़ सिर्फ 9.39 सेकंड में पूरी कर ली, जबकि जमैका के धावक हुसैन बोल्ट ने ये दूरी 9.58 सेकंड में पूरी की थी। बोल्ट ने 2009 में बर्लिन में हुई वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सबसे कम समय में 100 मीटर दौड़ पूरी करने का शानदार रिकॉर्ड कायम किया था। 100 मीटर की दौड़ में बोल्ट का ये रिकॉर्ड 17 सालों से कायम है और कोई इंसान तो इसे अब तक नहीं तोड़ सका है। लेकिन अब एक रोबोट ने बोल्ट के उस ऐतिहासिक रिकॉर्ड को ध्वस्त करके नई मिसाल कायम कर दी है। जिस रोबोट ने ये कमाल कर दिखाया है उसे बीजिंग इनोवेशन सेंटर ऑफ ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स ने बनाया है। वहीं इससे पहले एक टेस्ट रन में चीनी कंपनी ऑनर के रोबोट ने 100 मीटर की दूरी तय करने में केवल 9.32 सेकंड का समय लिया था। बीजिंग में चल रहे ह्यूमनॉइड रोबोट्स के मुकाबले में नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। इसी दरमियान एक रोबोट ने स्टैंडिंग हाई जंप में 2.88 मीटर से ऊंची छलांग लगाकर इंसानों और पिछले सभी रिकॉर्ड्स को पीछे छोड़ दिया। चीन की रोबोटिक्स कंपनी यूनिट्री के ह्यूमनॉइड रोबोट ने हाई जंप में ये कमाल कर दिखाया है। स्टैंडिंग हाई जंप की स्पर्धा में रोबोट ने 2.8843 मीटर तक ऊंची कूद का नया रिकॉर्ड कायम कर डाला और हाई जंप में भी इंसानों यानी मानव एथलीट के पुराने रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया। बीजिंग में शनिवार को दूसरे वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स का शुभारंभ हुआ। ओपनिंग सेरेमनी में हुई 400 मीटर रेस में चाइना के तियांगोंग ह्यूमनॉइड रोबोट ने 39.7 सेकंड का समय निकालकर पहला स्थान हासिल किया। इससे पहले ओपनिंग सेरेमनी के दौरान हुए रंगारंग कार्यक्रम में इंसान केवल दर्शक थे, जबकि स्टेडियम में ट्रैक से लेकर पूरे एरिना में मौजूद 1000 से ज्यादा ह्यूमनॉइड रोबोट्स ने अपनी तकनीकी क्षमता का अनूठा प्रदर्शन किया, जिसे देखकर लोग दंग रह गए। मनमोहक म्यूजिकल परफॉर्मेंस से लेकर नेशनल स्पीड स्केटिंग ओवल में टीमों के मार्चिंग दस्ते के रूप में हर इवेंट में शानदार तालमेल के साथ रोबोट फॉर्मेशंस दर्शकों को अलग ही कल्पना लोक में ले गए, जिसे वे अपनी आंखों के सामने साकार होते देख रहे थे। इस दौरान 36 रोबोट्स की टीम ने मेलेडी ऑफ द फ्यूचर के नाम से भव्य संगीत और सुरों का समा बांध दिया। वहीं स्पर्धाएं शुरू होने से पहले ओपनिंग सेरेमनी में ही तमाम रोबोट्स ने अलग अलग खेलों में अपने हुनर की झलक पेश की। बीजिंग में 5 दिन के वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स में 16 देशों के 2056 रोबोट्स की 666 टीमें भाग ले रही हैं। ये रोबोट 51 इवेंट्स की 1300 से ज्यादा स्पर्धाओं में अपना कमाल दिखाएंगे और ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि आने वाला कल इनका ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: अंतिम सोमवार का क्या है पूजा विधान? सावन के अंतिम सोमवार पर कौन सी मनोकामनाएं होंगी पूरी और कैसे मिलेगा शिव जी का वरदान? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज़ टुडे पर।

0: सावन के अंतिम सोमवार का क्या है पूजा विधान? सावन के अंतिम सोमवार पर कौन सी मनोकामनाएं होंगी पूरी और कैसे मिलेगा शिव जी का वरदान? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: सोच दिखाती तो कुछ दिखा।
0: सावन के अंतिम सोमवार का क्या है पूजा विधान? सावन के अंतिम सोमवार पर कौन सी मनोकामनाएं होंगी पूरी और कैसे मिलेगा शिव जी का वरदान? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
3: सावन के आखिरी सोमवार पर आज मंदिरों में विशेष तैयारी। पावन मौके पर आज बन रहे हैं कई शुभ संयोग। इस साल सावन महादेव की कृपा पाने का यह आखिरी मौका। मुंबई के पंडालों में पधार रहे हैं गणपति बप्पा। काली चौकी के महाराजा के स्वागत में उमड़े हजारों श्रद्धालु, ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत। अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर बदली गई धर्म ध्वजा। वैदिक मंत्रोच्चारों के बीच पूरे विधि विधान के साथ निभाई गई परंपरा। के द्वारकाधीश मंदिर में पारंपरिक काली घटा का आयोजन, फूलों और आकर्षक लाइटों से मनमोहक हुआ दृश्य। ठाकुर जी के दर्शन कर करगद हुए भक्त। बारिश के लिए जैसलमेर के पुरोहितेश्वर राम महादेव मंदिर में महारुद्राभिषेक। 121 रुद्र पाठी पंडितों ने किया सामूहिक रुद्री पाठ। मंत्रोच्चार से गूंजा परिसर। अजमेर में दिखी राजस्थानी संस्कृति की झलक का मातृशक्ति मानसून महोत्सव में जुटी हजारों महिलाएं। मेगा लकी ड्रॉ और मेडिकल कैंप्स का आयोजन। नागपुर में 4,000 से ज्यादा युवक युवतियों ने ढोल ताशा बजाकर बनाया अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड। एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में

0: नमस्कार, मैं हूँ श्वेता सिंह। आज गोलमेज की यह चर्चा यानी राउंड टेबल पर हम आज एक बहुत ही विशिष्ट अतिथि के साथ जुड़े हुए हैं। बागेश्वर सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हमारे साथ हैं। नेहा बाथम, सईद अंसारी, राजीव ढोंडियाल और पूजा शर्मा, हम पांच साथ मिलकर आपसे आज प्रश्न पूछेंगे। असल में प्रधानमंत्री जी ने ही कुछ दिन पहले IIT में एक संबोधन में कह दिया
1: जी
0: कि मैं बाग बाग बागेश्वर नहीं हूँ जो आपके मन की बात जानू।
1: जी,
0: युवाओं के बीच बैठे थे वो
1: जी।
0: क्या बाबा बागेश्वर युवाओं के मन की बात जानते हैं, और जानते हैं तो जेन जी की उस बात को कैसे रखें?
1: देश के नायक के रूप में प्रधानमंत्री जी मन की बात जानते भी हैं, समय परिस्थिति को भी नहीं जानते, और ये हमारे लिए और हम सबके लिए विशिष्ट बात ये है कि ऐसे वो जननायक हैं, 140 करोड़ लोग हैं, अनेक महापुरुष संत, और वो हमारे जैसे छोटे से व्यक्तित्व को, छोटे से आदमी को स्मरण रखते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, और उनकी असाधारण प्रतिभा के वो धनी है, इसमें कोई संदेह नहीं। दूसरी बात, आपको एक बात हम बहुत मजेदार बताएंगे, हम एक साल चूक गए हैं जैन जी होने से।
2: हमारा दृष्टि में तो आप जैन
1: जी,
2: आप जैन
1: 1996 में हम आए, और 97 के बाद में जो है जैन जी के लिए कहा गया, तो
2: चेंज कर देते हैं उसको।
1: ऐसा यदि हो जाए,
2: हो गया, हो गया,
1: बहुत धन्यवाद।
0: ये दोनों मध्य प्रदेश के लोग बैठ के आपस में कोई साजिश न बुनाई कर रहे हैं।
1: जी जी, लेकिन हमें पता है कि हम कितनी भी सांठगांठ कर लें, आप लोगों के अंदर जो भगवत कृपा है, देवी अनुकंपा है, और जो आपका अध्ययन है, जो आपके पास लॉजिक तर्क है, हम लोगों की सांठगांठ चलेगी नहीं। जब देश की सांठगांठ नहीं चलती तो हम लोगों की सांठगांठ कहाँ चलेगी?
2: श्वेता ने मुझसे पूछा क्या पूछोगे, मैंने कद्दू पूछेंगे सारा, तो आप जानते हैं मन की बात।
3: बागेश्वर, ये जो जैन जी का क्योंकि जिक्र चला है, जिस तरीके से प्रदर्शन के जरिए सारी बांगों को मिलाया जा रहा है, एक नया ये ट्रेंड शुरू हुआ है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या ये सही है?
1: अपनी बात रखना ठीक है, आंदोलन करना ठीक है, हक के लिए लड़ना ठीक है, पर आंदोलन सबसे अंतिम सीमा है अपनी बात रखने का। अनेक माध्यम है, पत्राचार माध्यम है, संवाद माध्यम है, केवल अपने बयान देना एक माध्यम है, सबसे लास्ट में है आंदोलन। लेकिन आंदोलन हो, लेकिन वो उसमें फुहारता ना हो, देश में अराजकता ना फैले, देश में हिंसा ना फैले, और हम किसी की भी माँ बहन को गाली ना, इतना ख्याल रखें कि हम अपनी बात रखें लेकिन देश में अराजकता ना हो। दूसरी बात, टेबल राउंड के इस माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम एक प्रार्थना करना चाहते विशेष रूप से, जैन जी सड़कों पर ही न आए, हम चाहते हैं सरकार एक नया रास्ता चुने, सरकार ही जैन जी के पास जाए, एक ऐसा दरवाजा चालू किया जाए, एक ऐसा डोर खोला जाए कि जैन जी को आंदोलन करना ही ना पड़े।
0: कुछ मन में है आपके, कैसे होगा?
1: अरे ऐसे मन में कुछ है नहीं, बस इतना से ख्याल है, इस देश में बहुत बौद्धिक लोग हैं, प्रतिभा के धनी लोग हैं, प्रज्ञा वेधा के धनी लोग हैं, वो इस पर कार्य कर सकते हैं, पर हमारे मन में इतना है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिससे देश की जैन जी अपनी बातें सरकार से सीधी कर पाए।
3: आजकल जेन जी थोड़ा डिल्यूजनल में भी जी रहा है, एक अपना उनका एक वर्ल्ड है,
1: आपने अपने शब्द है, मोय मोय है, और ये भी है, और ये भी है,
3: तरीके से प्यार
1: दिया। दो दिन में अभी सीखा है, जब से दिल्ली आए तब से आप लोगों की ही ये संगत का असर पड़ा, आप लोगों की संगत का असर पड़ा,
3: हम लोगों को भी इतना नहीं पता है जितना
1: हमने इंटरव्यू में ही, और पत्रकार आपके भाई बहन थे वो हमें सिखा रहे
3: हैं। रील से जो ये पॉपुलैरिटी मिलती है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं, कहाँ तक सही मानते हैं, क्या ये आज का नजरिया है, और इसमें शामिल होना क्या बाबा बागेश्वर के लिए भी एक मजबूरी है?
1: वर्तमान के पहले भारत में एक एडिक्शन था, एडिक्ट थे लोग, ड्रग एडिक्ट, अब एक नए एडिक्ट हो गए लोग, ड्रग के बाद सोशल मीडिया एडिक्ट। हम देश को नेशनल लव एडिक्ट करना चाहे, राष्ट्र
0: महाराज जी आपके भी रील वायरल
1: था, एडिक्ट हम भी बनाते, रील बनाना बुरा नहीं, उसी सोशल मीडिया पर सुविचार है, संदेश है, टेक्नोलॉजी है, जानकारियां हैं, बड़े बड़े विचारकों के संवाद है, लेकिन उसी सोशल मीडिया पर कुछ लोगों के दिमागी कचड़े भी, उन्होंने अपने कचड़े उस पर भर रखे, उस कचड़े से संस्कारों पर कुछ प्रभाव पड़ रहा। हमें एक बात समझनी होगी, इस चैनल पर हमें एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहिए, इंस्टाग्राम कहां से हैंडल हो रहा, अमेरिका से, FB कहां से हैंडल हो रही, अमेरिका से, YouTube कहां से हैंडल हो रहा, अमेरिका से, X कहां से हैंडल हो रहा, अमेरिका से, इस देश का एल्गोरिदम किसके हाथ में, अमेरिका के हाथ में। हमें ये बात समझने से बिल्कुल नहीं चूकना चाहिए कि वो अमेरिका
4: जो भारत पर लगातार दबाव बनाना चाहता है, व्यापारिक दबाव, मानसिक आर्थिक और लगातार जो है टैक्स भरने के लिए मजबूर करना चाहेगा।
1: आप
4: तो कहीं हो ना कि हम विदेशी हाथों की कठपुतली ना बन जाए।
5: क्या आप ये कहना चाहते हैं कि ये जो जेंजी आंदोलन में हमने युवाओं की भाषा देखी वो हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति पर भी अटैक कर रहे हैं?
4: कुछ बच्चे
2: अमेरिका या विदेशी शक्तियां विदेशी के माध्यम से
1: जी
2: क्या वो हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति पर अटैक कर रहे हैं? उस पर
4: पूर्ण रूप से इस बात से निश्चित रूप से कुछ तो ऐसा हो रहा जिससे विदेशी ताकतें भारत की कुछ ऐसी परंपरा को मानने वाले ऐसी समाज को आगे करके प्रेरित करके हमारे देश में ही दंगा फैलाना चाहे। कुछ लोग भारत में बांग्लादेश जैसे हालात करवाना चाहे, कुछ लोग भारत में पाकिस्तान जैसे हालात कराना चाहे। हम चाहते हैं कि आंदोलन हो पर आंदोलन देश विरोधी ना, आंदोलन हो आंदोलन तिरंगा विरोधी ना, आंदोलन हो आंदोलन किसी माँ बहन की गाली से ना।
3: छोटा सा एक सवाल बीच में, आप टैक्स पे करते हैं? आप टैक्स पेयर हैं?
1: हाँ हम तो हैं, आरटीआई लगाओ।
0: शिक्षा नीति में मकौले मुक्त उसको करना है या पहले शिक्षा को पेपर लीक मुक्त करना है?
1: दोनों ही जरूरी, बहुत जरूरी है। सूर्य और चंद्रमा दोनों आवश्यक, दिन और रात दोनों आवश्यक है। हमें लगता है कि सिस्टम में सुधार की आवश्यकता है, शिक्षा में बदलाव की आवश्यकता।
0: एक चीज मैं आपसे पूछती हूँ, क्योंकि आप जातियों को, जातियों का बंटवारा खत्म करके कहते हैं कि हिंदू एक हो रहा।
4: हाँ।
0: और आप इसके लिए आप पदयात्रा भी कर चुके हैं सब।
1: अब अभी हम रथ यात्रा भी करने वाले
0: इसी के लिए।
1: इसी के लिए हमारा उद्देश्य है कि इस देश में जातिवाद और क्षेत्रवाद ना, राष्ट्रवाद, कास्टिज्म नहीं, राष्ट्रिज्म हम चाहे।
0: पर हिंदू राष्ट्र,
1: हिंदू राष्ट्र का अर्थ मुसलमान मुक्त नहीं, हिंदू राष्ट्र का मतलब है सबके साथ। अगर हिंदू हाँ मुसलमान मुक्त होता तो आपकी तरफ भी सबकी नजर जा रही है। तो हिंदू राष्ट्र का मतलब मुसलमान मुक्त नहीं, हिंदू राष्ट्र का मतलब ईसाई मुक्त नहीं, हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि विचारक, हमें कागजों में हिंदू राष्ट्र चाहिए नहीं, विचारों में हिंदू राष्ट्र चाहिए। हम विचारों को परिवर्तन करना चाहते, और हिंदू कोई एक धर्म नहीं, जीवन शैली है। हिंदू का मतलब वसुदेव कुटुंबकम, हिंदू का मतलब अहिंसा परमो धर्म, हिंसा नहीं अहिंसा, हिंदू का मतलब व्यापार बाद में परिवार पहले, ये हिंदू राष्ट्र। हमें नहीं लगता कि ये गलत है, ये तो सबकी मांग होनी चाहिए, इस देश के प्रत्येक नागरिक की मांग होनी चाहिए।
3: दावा जी अपने राखी से पहले बहुत सारी राखियां पहनी,
1: हमारी बहुत बहनें हैं,
3: बहुत सारी बहनें जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ पहन लिया, आपका रक्षाबंधन लग रहा है, मन चुका है।
1: अगर इंटरव्यू हो जाए तो आपकी श्रद्धा जगह तो आप
2: बहने
3: देख नहीं, हम बांध देते
2: हैं तो आपकी बहुत है
1: जी
2: गर्लफ्रेंड।
1: ये तो राम राम राम राम, आपको लगता है लेकिन हमारे जैसे आदमी ये सब झंझट
2: पा रहे। शादी करेंगे कि नहीं बाबा?
1: हाँ घरवाली लाएंगे,
2: और गर्लफ्रेंड से तो शादी करते हैं
1: ना ना भैया, हमारी संस्कारों में पद्धति है, माता पिता हैं हमारे यहाँ पर।
2: आजकल आप जेंजी हैं ये तय हो गया,
3: एक साल से
2: और हर
1: जेंजी से बड़े,
2: हर जेंजी ये कहता है कि भाई पहले हम जानेंगे समझेंगे अपने जीवन साथी को, उसके बाद विवाह।
1: समझना गर्लफ्रेंड बनाना नहीं होता है, ना समझने का मतलब ये थोड़ी कि कोई आपको हाथ पकड़ा है तो आप पूरा हाथ ही दबा दो। जानना समझना किसी के बारे में, विचारों के बारे में।
2: शादी तो रहेंगे,
1: शादी आपको क्या लगता है हम रड़ुआ मन?
0: वो तो कहते हैं कि रिश्ते उनके घर आते रहते
3: हैं,
0: बहुत जल्दी होगा।
1: अभी हम फर्स्ट में, अभी प्रारंभ में जो हमारे संकल्प चल रहे हैं पे हम बहुत कार्य कर रहे हैं। अभी कैंसर हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन 2027 के दिसंबर में फर्स्ट फेज में उसको चालू 2027 में, और हर वर्ष बेटियों का विवाह भूषण। अभी हमने एक नया प्रकल्प चालू किया धाम पर, वैदिक गुरुकुलम, 80 बच्चे मजदूरों के जिनके माता पिता मजदूर हैं उनके बच्चों का रहना खाना पुस्तक पढ़ाई लिखाई सब फ्री आपको, वो चालू किया। तो उसमें केवल हम संस्कृत नहीं सिखाते, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, हॉर्स राइडिंग, तीरंदाजी, सिंगिंग, पूरा वैदिक और सबसे हाईटेक गुरुकुलम। हम सबसे तो नहीं कह सकते हैं, ठीक ठाक।
0: कोई ओलंपिक मेडल भी आएगा आपके?
1: अगर ये सफल होंगे तो निश्चित भगवान ने चाहा।
0: स्वामी रामदेव पे बोलेंगे
1: ये तो हमारे आदर्श
5: आपके आदर्श में। क्या आप उनकी तरह आप भी मतलब वो हर क्षेत्र में आप जो है चले गए, बहुत बड़े व्यापारी भी, अच्छे व्यापारी भी बन गए हैं, देश को बहुत मतलब रोजगार भी दे रहे हैं,
2: तो क्या आप भी उस
1: आप क्या चाहते हैं, महात्मा सिर्फ मांगते ही रहे। देखो इस देश में हमारी आज से लेकर के अब तक के जितने भी प्रवचन के इंटरव्यूज या हमारे इंटरव्यू या कथा प्रवचन है सोशल मीडिया या यूट्यूब आदि पर प्रसारित, हमारी लाइव कथा प्रसारित टेलीकास्ट है, उन सबको आप सुनेंगे, हमने कभी माया छोड़ने के प्रवचन नहीं सुना। हम माया छोड़ने के पक्ष में नहीं। आज 100 रुपया है डॉलर, 100 रुपया है, कल 200 हो जाएगा, आप सबको बाबा बना दोगे तो देश का हाल क्या होगा। हम देश का विकास चाहते, अर्थ से परमार्थ की यात्रा चाहते, अर्थ कमाओ पर परमार्थ में भी लगाओ। हम चाहते हैं दीनहीनों की भी मदद करो। धन कमाना बुरा नहीं है, पर किसी का दिल दुखा करके कमाना, झूठ छल कपट पाखंड अंधविश्वास फैलाकर कमाना महा बुरा है। हम चाहते हैं हर व्यक्ति बिजनेसमैन बने, हर व्यक्ति व्यापारी बने, हर व्यक्ति अर्थ कमाने के स्रोत निकाले, नया आविष्कार करे, नई नई चीजों का आविष्कार करके समाज के सामने प्रस्तुत करे, हर क्षेत्र में वो सर्वगुण संपन्न हो। और बिल्कुल होना चाहिए, हमें स्वामी जी की एक बात बहुत अच्छी लगती, सब में होना चाहिए, कोई बुराई नहीं। हाँ, धर्म का धंधा नहीं होनी चाहिए, धंधे का धर्म तो होता है।
5: वो कौन लोग हैं और धर्म का धंधा कैसे करते हैं, धर्म का धंधा क्या होता है?
1: धर्म का धंधा ये होता है कि हम भगवान के नाम पर, झूठ छल कपट के नाम पर, दिखावा भय दिखा करके, धर्म का चोला ओढ़ करके अपने पेट भरना, ये धर्म का धंधा है। आप कहेंगे आप तो नहीं ऐसा करते, हम कथा करते दक्षिणा मिलती है, हम प्रवचन करते दक्षिणा मिलती है, लेकिन हम मकान नहीं बनाते, अस्पताल बनाते, बेटियों के विवाह कराते हैं, हर दिन 10 से 15 हजार लोगों को निःशुल्क भंडारा कराते हैं। हमारा क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र, वहाँ 200 किलोमीटर में कोई कैंसर हॉस्पिटल नहीं है, तो हमने विचार किया हमारे क्षेत्र में अस्पतालों में मंदिर अब तक बहुत हैं, हम मंदिर में अस्पताल देखना चाहते।
3: महाराज जी जब आप,
1: अब इसके विपरीत जो है वो धर्म का धंधा है।
3: तो जब आप बाहर होते हैं तो इंडिया में क्या चल रहा है उसको ट्रैक करते हैं?
1: नहीं, ट्रैक नहीं, हम रोज न्यूज
3: पढ़ते हैं, लेकिन कई बार ऑनलाइन देखना पड़ता होगा ना, यूट्यूब पे या किसी
1: चलाते हैं।
3: और
1: जी आपको क्या लगता है
3: कौन सा ऐप सबसे ज्यादा आप इस्तेमाल करते हैं?
1: एक्स हैंडल करते हैं,
3: एक्स हैंडल,
1: और इंस्टाग्राम करते हैं,
3: इंस्टाग्राम
0: खुद से करते हैं।
3: आपका भी समय जाता है ऐसे रील
1: देखते? 40 मिनट तो जाता है,
3: 40 मिनट,
1: 30 मिनट, 40 मिनट न्यूज पूरी पढ़ने में, आज कहां क्या क्या, किसने क्या क्या वहां बयान दिया, कहां पर क्या चल रहा, एक एक न्यूज को हमें, क्योंकि इसलिए भी अपडेट हमें रहना पड़ता है कि जैसे ही उतरो तुरंत बताइए बाबा ये क्या, अब माइक लगाने वाले आप लोग होते हो, अपने बाबा बड़ा ज्ञानी बनता था, बोल नहीं
2: पाता। मेरे सारे साथी देखिए आपसे बहुत सख्त प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं तो मंत्र मुख दूंगा, देख रहा हूँ आप, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आपको देखता रहूंगा।
1: जी जी, आप बहुत सज्जन,
2: आप बैठ मेरे पास, तुझे देखता रहूं। ये बताइए कि इतना सुंदर हनुमान जी भी हैं, लग रहा है कि बहुत ही डिजाइनर, वो शानदार आपने कुर्ता पहना, कौन डिजाइन करता
1: है? हमारी डिजाइनिंग ऐसी है कि जो भी आता है वो श्रद्धा से दे जाता है, कोई फिक्स डिजाइनर नहीं।
2: अच्छा,
1: लोगों की इच्छा है, हमारे प्रति भावना जो जुड़े हैं।
2: ये भी कुर्ता किसी ने दिया है?
1: हम
2: कितने खुश हो रहे
1: हैं, अरे खुद के कहा, उनका हृदय बड़ा इलाजित होता है कि गुरु जी ने पहन लिया।
2: तो आपका
1: है, चाहेंगे कि इस इंटरव्यू के बाद में आप भी एक आध श्रद्धा दिखाओ। आपको भी मन में ये आना चाहिए कि हमारा दिया हुआ कुर्ता कोई महात्मा पहने,
3: वो तो कोट देंगे,
1: कोट ना दे, कोट का करें।
2: अच्छा, हम शानदार टी शर्ट देंगे आपको,
1: बाहर में गया हम ले भी
3: पैंट भी लेंगे,
1: और अब आप मना ना कर पाएंगे क्योंकि आपने बोल दिया है कि हमने भगवान है, अगली बार कमेंट ही कर देंगे कि बड़े बड़े नहीं बार हमने देखे,
2: तो मतलब कुर्ता ही पहनेंगे आप?
1: नहीं नहीं, आप टी शर्ट दो, हम कहने लेंगे
2: टी शर्ट पहनेंगे।
1: अरे उसमें कोई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कल तुम जींस पैंट ले आओ, वो ना पहनेंगे,
2: टी शर्ट के साथ जींस भी देंगे।
1: ना ना, हम वो ना पहनेंगे पहले ही।
2: क्यों? अच्छा तो है जींस पैंट पहनना, उसमें कोई आपत्ति है कुछ?
1: अरे भाई कोई आपत्ति नहीं, पुलिस वाला पुलिस की ड्रेस पहन करके ना आए तो आप सीधा गए। सबके भाई अपने अपने रूल होते हैं, ड्रेस कोड होता है देश में, डॉक्टर का ड्रेस कोड है, पुलिस का ड्रेस कोड है, साधु का भी भैया ड्रेस कोड है, उससे इंस्पायर होते हैं लोग कि हम स्पिरिचुअल है। भैया आप क्या चाहते हो?
3: महाराज जी, हाल ही में कांवड़ यात्रा को लेकर बहुत सारी बातें कही जाती हैं कि आजकल आस्था के नाम पर एंटरटेनमेंट ज्यादा हो रहा है, बड़े बड़े डीजे, लाउड म्यूजिक, रास्ते में अवरोध होता है, पुलिस प्रशासन की सख्ती के बावजूद हमने देखा, कई आपने भी देखे होंगे वीडियोस वायरल हुए जिसमें गंदगी फैलाई गई हरिद्वार के तटों पर, जहां पर बहुत टनों वेस्ट छोड़ा गया जो गंदे कपड़े थे, ऐसे इस पर अंकुश लगाम लगे कि हम आस्था को भी चोट,
1: यात्रा बंद करवाने की बात
3: नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि उस
1: ठीक पर, करने की
3: तो कैसे ठीक करें ताकि उसमें से एंटरटेनमेंट का एलिमेंट माइनस हो
1: जाए। सजगता और सद्बुद्धि है उसको ठीक भर ऐसे करना है कि हम कचरा जमीन पर ना फेंकें, कचड़े को कूड़ेदान में ही डालें और धर्म आस्था को सिर्फ इंजॉयमेंट में, आस्था की पवित्रता, आस्था में श्रद्धा, दोनों उच्चतम सीमा पर बनाए रखें। कांवड़िया बड़े भगवान के शिव भक्त होते हैं, अद्भुत भक्ति करते हैं, पैदल चलते हैं, उसमें कुछ विचित्र लोग भी होते, तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, कछु मानस कछु देवता कछु जय जय सीताराम, सब प्रकार के लोग।

0: करती है। कांवड़िया भी एक समझेंगे कि हमको जो है देवतीर्थ में, गंगा के किनारे, रास्ते पर, सड़क पर कोई भी ऐसा कृत्य नहीं करना जिससे हमारे सनातन पर उंगली उठे।
1: अब बड़े बड़े साधु हैं जो इस चीज को लेकर, मतलब वो गंगा जी के लिए प्राण समर्पित कर देते हैं, ये भी उन कांवड़ियों को अपने भक्ति के जोश में सोचना चाहिए।
2: जितने जितने शांति से आप अपनी बात रख रहे हैं, आप अपनी बात मनवा भी लेते हैं, ठीक है। कुछ लेकिन जेंजी, कुछ युवाएं जो अभी लद्दाख का वीडियो का आप जिक्र कर रहे थे, उसमें उतना गुस्सा जो उस महिला का था, और वो कह रही है हम जेंजी है, हम प्रदर्शन पे बैठ जाएंगे, यहीं बैठ जाएंगे, तो उन युवाओं के लिए क्या संकेत दें? गुस्से से ज्यादा बेहतर है शांति से अपनी
0: बात। हर रास्ते, हर हल, हर विवाद किसी भी समस्या का समाधान, संवाद ही समस्या का। देश में प्रेम बांटो ना, देश में एकत्व बांटो ना, देश में हम विवाद क्यों चुने, संवाद क्यों ना चुने? चार दिन की जिंदगी किसके लिए? और आपके आंदोलन कर देने से हो भी क्या जाना? हम सरकार को समझाएं भी, सिस्टम को सुधारें भी, पर देश को बिगाड़ें तो ना। आने वाली अल्फा बीटा जनरेशन को हम आंदोलन की बातें दे करके जाएंगे, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हम नेशन प्रेम की बातें देके जाए, लव और पीस की बातें देकर जाए। तो हमें लगता है कि अब वर्तमान ये जो सोच वायरल होने का जो वायरल चढ़ा ना, ये बहुत खतरनाक है। हम पूरे भारत को ड्रग एडिक्ट अथवा सोशल मीडिया एडिक्ट नहीं, कथा एडिक्ट।
1: आजकल आप पर्ची निकालना छोड़ दिए?
0: ना चला रहे हैं, बस धान पर है अभी।
1: अच्छा, जगह नहीं कर,
0: कथाओं में भी होता सब, लेकिन व्यस्तता पूर्ण जगह ज्यादा बढ़ गई, कथाएं ज्यादा, विदेश यात्रा ज्यादा, और पद यात्रा की तैयारी, कन्या विवाह की तैयारी, गुरुकुलम की तैयारी, कैंसर हॉस्पिटल की। पर्ची तो निकाले, वो तो जब तक जीना है तब तक भगवान ने जो कृपा दे रखी उस लगातार चला। अब आप लोग कम पर्ची दिखा रहे हैं ये कह सकते
2: हैं। महाराज जी, आप इतनी विदेश यात्रा करते हैं, लेकिन जब आप तुलना करते हैं भारत की और विदेश की, असीम और अपार संभावनाएं ऐसी जो भारत में, जिसको हम यूज नहीं कर पा रहे हैं, जिसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, जो विदेश में नहीं भी है फिर भी उन लोगों ने उसे डेवलप कर लिया। मसलन दुबई एक रेत था, रेतीला वहां पर मैदान था, फिर भी इतना डेवलप्ड वो जगह बन गई है। ऐसी कौन सी संभावनाएं आपको हिंदुस्तान में भी दिखाई देती है जिस पर हम काम कर सकते हैं?
0: भारत में सब कुछ बस प्रस्तुतीकरण, हमारी प्रस्तुतीकरण, प्रेजेंटेशन ठीक है। वो अपने पहाड़, खुदे हुए पहाड़ों को भी टूरिस्ट प्लेस बता रहे हैं, हमारे यहाँ ऑलरेडी टूरिस्ट प्लेस है। तो हमें लगता है भारत का प्रस्तुतीकरण ठीक होना चाहिए। एक, भारत की शिक्षा व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, भारत की स्वच्छता पर काम करना चाहिए। फर्स्ट, यदि भारत को ठीक करना है तो दो जगह सफाई होनी चाहिए, भारत की सड़कों पर और कोनों में, और दिमाग
2: दिमाग की पहने से दिमाग की सफाई कथा के साथ होगी, बाकी सफाई सरकार को करनी है।
0: नहीं नहीं नहीं, वो दिमागी सफाई कथा से तो हम सिर्फ विचार दे सकते हैं, स्वीकार तो आप करेंगे, स्वीकार तो लोग करेंगे, हम तो कह सकते हैं, मानना ना मानना अभिव्यक्ति की आजादी, इतना कह सकते हैं कि आप बेहतर जीना चाहते तो हमारे पास वही विचार है, और विचार सदविचार बुरे विचारों को ठीक करते, पर कोई स्वीकार करे तब ना।
3: नई पीढ़ी आपको कितना सुनती है, मतलब आप भी कभी मतलब कुछ
0: ये डाटा तो आप भी ला सकते हैं हमें कितना सुनती है, हमारे बारे में कह पाना बहुत मुश्किल होगा, हम नहीं कह सकते हम कितने अच्छे आदमी, हम आपके बारे में कह सकते।
1: ऐसा होता है कि अलग अलग पीढ़ी के लिए अलग भाषा को इस्तेमाल करनी है कि भाई, क्योंकि आजकल पीढ़ियों में ऐसा बांट दिया कि हर व्यक्ति के दिमाग में आता है कि भाई मैं कौन सी पीढ़ी, सबने पता किया एक एक करके हम कौन सी पीढ़ी,
0: आप कौन है? आप यदि
3: मैंने श्वेता और हम जेंजी हैं,
0: आप यदि अपने
1: आप लोग 25 से एक साल ऊपर कभी नहीं होगा,
3: कभी नहीं, कभी नहीं,
0: हमको अल्पा बीटा की घोषित करना पड़ेगा अपने आप।
1: उम्र तो दिमाग में होती है ना,
0: अल्पा बीटा की बात कौन सी आई,
1: बीटा के
3: बाद बीटा,
1: अभी तो बीटा चल रहा है,
0: अल्फा ज्यादा
2: ज्यादा
1: बेटा
2: बेटा
1: पैदा हुआ है, हाँ। पैदा हुआ है,
0: उसके बाद अच्छा बेटा है,
2: उसके बाद गामा डेल्टा थीटा ऐसे ही होता है,
0: गणित की ज्यामिति क्या सूत्र।
2: महाराज जी, आप एक आम जीवन से इस जीवन में कैसे परिवर्तित हुए, कौन सी वो आदतें थी आपके अंदर जो आपने बदलाव किया और आप बाबा बागेश्वर बन गए?
0: हम बचपन से ही उल्टे थे
2: उल्टे थे क्या उल्टे काम किए आपने?
0: कोई ऐसे उल्टे काम नहीं किए बहन।

0: बचपन से ही हमने हमको किसी ने बाबा बनाया, हमने बनाए ही थे,
1: मैंने बनाया।
0: हमारा परिवार पूरा सामाजिक के साथ साथ धार्मिक में खूब सरोवर था। हमारे ग्रैंड फादर हनुमान जी के परम भक्त, उन पर हनुमान जी की विशेष अनुकंपा थी, एनलाइटमेंट था उनको, एनलाइटेड थे, उनके चरणों में रहे, हनुमान जी की सेवा बचपन से ही, हमारे पिताजी माताजी, हमारे दादाजी, दादाजी के भी पिताजी परदादा, तो हम जहाँ जिस गांव में हमारा जन्म हुआ वहाँ बालाजी का जो मंदिर है वो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी पूजा करते ही आ रही है, तो वंशानुगत पूजा कर रहे हैं, तो दादाजी वहाँ रहते थे, तो दादाजी की हमारे यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी कोई ना कोई एक वहाँ का पीठपति या पीठाधीश्वर होता है। दादा ने हम पर कृपा की, गुरु ने हम पर दृष्टि डाली, तो हम बचपन से ही धार्मिक के धर्म के प्रति लगाव था ही, परिवार का माहौल ही ऐसा था, फिर दादाजी ने कृपा की तो गुरु अद्भुत मिल गए, तो फिर जीवन परिवर्तित हो गया, तो हम बाबा बने नहीं, बने बनाए हुए हैं, समान थे।
1: पर लेकिन आपकी बातों के साथ, मतलब भले एक साल से आप कह रहे हैं कि चूक गए, लेकिन आपको फिर भी इस नई पीढ़ी के ही का ही आप प्रतिनिधित्व एक तरीके से करते हैं, जो सोशल मीडिया से लेकर और एक कथा वाचन तक सबको अपनी बातें, अपने विचार सुना रहा है, यात्राएं कर रहा है और आगे भविष्य के भारत के लिए एक उम्मीद बनाए हुए है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।
2: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: सावन के आखिरी सोमवार को लेकर भक्तों में भारी उत्साह है, शिवालयों में खास तैयारियां की जा रही हैं। सावन शिव का महीना है और शिव को प्रिय है सोमवार का दिन, ऐसे में आखिरी सोमवार मनोकामना पूर्ति का भी दिन है। शिवलिंग पर जलाभिषेक और पूजा पाठ से भोलेनाथ को आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है, वरदान पाया जा सकता है।

0: सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। अगर ये सोमवार सावन महीने का है उसका महत्व और भी बढ़ जाता है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सावन के सोमवार का खास महत्व बताया गया है। सावन का महीना भी अब जल्द ही समाप्त होने वाला है और 24 अगस्त को सावन का आखिरी सोमवार है। ऐसे में शिव भक्तों के पास भी इस सावन के महीने में आखिरी मौका है भोलेनाथ को प्रसन्न करने का। सावन के आखिरी सोमवार को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। अगर आपने सावन के किसी भी सोमवार को पूजा नहीं की है, व्रत नहीं रखा है, तो इस सोमवार को पूजा करने और व्रत करने से भी आपकी मनोकामनाएं पूरी हो सकती है। सावन के आखिरी सोमवार पर एक साथ कई शुभ योग संयोग भी बन रहे हैं। सावन के आखिरी सोमवार पर इस बार प्रीति योग, आयुष्मान योग, पवित्रता एकादशी वैष्णव, हंस राज योग, बुद्धादित्य राजयोग, क्योंकि सिंह राशि में सूर्य बुध की युति बनेगी। अगर आप भी सावन के पहले 3 सोमवार का व्रत नहीं कर पाए हैं तो कोई बात नहीं, आप इस सोमवार का व्रत करेंगे तो पुण्य की प्राप्ति होगी। सावन के आखिरी सोमवार पर सुबह सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहने, इसके बाद भगवान शिव का ध्यान कर व्रत या पूजा का संकल्प ले शिवालय जाएं और शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और 11 या 21 बेलपत्र अर्पित करें। एक एक बेलपत्र अर्पित करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें। इसके बाद घी का दीपक जलाकर आरती करें और इस दिन जरूरतमंद लोगों की मदद करें और दान भी दें, जैसे वस्त्र, अन्न, फल आदि चीजों का दान आप कर सकते हैं। शिव चालीसा या रुद्राष्टक का पाठ करें। सावन के आखिरी सोमवार पर रुद्रा अभिषेक करने की भी विशेष मान्यता है। कहा जाता है कि इस दिन पूजा पाठ जप तप करने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
1: अभी गणेश उत्सव में काफी दिन है लेकिन तैयारियां जोरों पर हैं। मुंबई के लालबाग परेल इलाके में काला चौकी में आज गणपति बप्पा का आगमन हुआ। तस्वीरें देखिए, मुंबई के प्रसिद्ध गणेश उत्सव पंडालों में से एक गणेश चतुर्थी के दौरान विघ्नहर्ता की बहुत सुंदर भव्य मूर्ति स्थापित की जाती है। गणेश उत्सव के दौरान दर्शन करने के लिए हजारों भक्त यहां पर आते हैं। जैसे जैसे गणेश उत्सव की तारीख जो है नजदीक आ रही है, बप्पा की मूर्ति अलग अलग पंडालों में लाई जा रही है ताकि महोत्सव के दौरान भव्य और दिव्यता प्रदान की जा सके। 2 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन में दिखा रहे हैं, कितनी बड़ी संख्या में तमाम श्रद्धालु बढ़ चढ़कर स्वागत कर रहे हैं बप्पा के आगमन का।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
6: सावन के अंतिम सोमवार का क्या है पूजा विधान? सावन के अंतिम सोमवार पर कौन सी मनोकामनाएं होंगी पूरी और कैसे मिलेगा शिव जी का वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: सावन के आखिरी सोमवार पर आज मंदिरों में विशेष तैयारी, पावन मौके पर आज बन रहे हैं कई शुभ संयोग। इस साल सावन महादेव की कृपा पाने का ये आखिरी मौका। मुंबई के पंडालों में बता रहे हैं गणपति बप्पा, काली चौकी के महाराजा के स्वागत में उमड़े हजारों श्रद्धालु, ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत। अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर बदली गई धर्म ध्वजा, वैदिक मंत्रोच्चारों के बीच पूरे विधि विधान के साथ निभाई गई परंपरा। नटवा के द्वारकाधीश मंदिर में पारंपरिक काली घटा का आयोजन, फूलों और आकर्षक लाइटों से मनमोहक हुआ दृश्य, ठाकुर जी के दर्शन कर गदगद हुए भक्त। बारिश के लिए जैसलमेर के पुरोहितेश्वर राम महादेव मंदिर में महारुद्राभिषेक, 121 रुद्र पाठी पंडितों ने किया सामूहिक रुद्री पाठ, मंत्रोच्चार से गूंजा परिसर। अजमेर में दिख राजस्थानी संस्कृति की झलक, मातृशक्ति मानसून महोत्सव में जुटी हजारों महिलाएं, मेगा लकी ड्रॉ और मेडिकल कैंप्स का आयोजन। नागपुर में 4,000 से ज्यादा युवक युवतियों ने ढोल ताशा बजाकर बनाया अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। सावन के आखिरी सोमवार को लेकर भक्तों में भारी उत्साह है, शिवालयों में खास तैयारियां की जा रही हैं। सावन शिव का महीना है और शिव को प्रिय है सोमवार का दिन, ऐसे में आखिरी सोमवार मनोकामना पूर्ति का भी दिन है। शिवलिंग पर जलाभिषेक और पूजा पाठ से भोलेनाथ को आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है, वरदान पाया जा सकता है।
8: सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है, अगर ये सोमवार सावन महीने का है उसका महत्व और भी बढ़ जाता है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सावन के सोमवार का खास महत्व बताया गया है। सावन का महीना भी अब जल्द ही समाप्त होने वाला है और 24 अगस्त को सावन का आखिरी सोमवार है। ऐसे में शिव भक्तों के पास भी इस सावन के महीने में आखिरी मौका है भोलेनाथ को प्रसन्न करने का। सावन के आखिरी सोमवार को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। अगर आपने सावन के किसी भी सोमवार को पूजा नहीं की है, व्रत नहीं रखा है, तो इस सोमवार को पूजा करने और व्रत करने से भी आपकी मनोकामनाएं पूरी हो सकती है। सावन के आखिरी सोमवार पर एक साथ कई शुभ योग संयोग भी बन रहे हैं। सावन के आखिरी सोमवार पर इस बार प्रीति योग, आयुष्मान योग, पवित्रता एकादशी वैष्णव, हंस राज योग, बुद्धादित्य राजयोग, क्योंकि सिंह राशि में सूर्य बुध की युति बनेगी। अगर आप भी सावन के पहले 3 सोमवार का व्रत नहीं कर पाए हैं तो कोई बात नहीं, आप इस सोमवार का व्रत करेंगे तो पुण्य की प्राप्ति होगी। सावन के आखिरी सोमवार पर सुबह सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहने, इसके बाद भगवान शिव का ध्यान कर व्रत या पूजा का संकल्प ले शिवालय जाएं और शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और 11 या 21 बेलपत्र अर्पित करें। एक एक बेलपत्र अर्पित करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें। इसके बाद घी का दीपक जलाकर आरती करें और इस दिन जरूरतमंद लोगों की मदद करें और दान भी दें, जैसे वस्त्र, अन्न, फल आदि चीजों का दान आप कर सकते हैं। शिव चालीसा या रुद्राष्टक का पाठ करें। सावन के आखिरी सोमवार पर रुद्रा अभिषेक करने की भी विशेष मान्यता है। कहा जाता है कि इस दिन पूजा पाठ जप तप करने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
7: अब बात करेंगे मथुरा की। देखिए, यहाँ के बांके बिहारी मंदिर में काली घटा उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल होने और बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। दरअसल ऐसी मान्यता है कि सावन में प्रभु को प्रकृति का दर्शन कराने के लिए इस उत्सव का आयोजन किया जाता है। मथुरा ब्रजमंडल में सावन मास में घटाओं का अपना अलग ही महत्व है। कृष्ण की नगरी मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में काली घटा का भव्य आयोजन किया गया, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। दरअसल ठाकुर जी को सावन महीने में प्रकृति का अनुभव कराने के लिए ब्रज में मंदिरों में घटाओं का आयोजन किया जाता है। उसी परंपरा के तहत ठाकुर जी महाराज काली घटा में विराजमान हुए, जिसमें संपूर्ण मंदिर प्रांगण को काली कपड़े और अनेकों प्रकार के फूलों से सजाया गया, शानदार लाइटिंग की गई। यही नहीं, संपूर्ण मंदिर में काले काले बादलों की गड़गड़ाहट, चिड़ियों की चहचहाहट, बिजली कड़कने की आवाज गूंजती रही। मंदिर प्रशासन का कहना है कि घटा से तात्पर्य है ठाकुर जी को बाहर के मौसम की अनुभूति करवाना।
5: हमारे संप्रदाय में ठाकुर जी की सेवा का जो सही बाल स्वरूप है, और बालक को बाल के मौसम अनुभूति कराने के लिए घटाओं के आयोजन होते हैं। और इस आयोजन में जो काली घटा है वह अपने आप में बहुत ही अद्भुत है, जिसमें बालकों की गड़गड़ाहट, चिड़ियों की चहचहाहट और मौसम की एक ऐसी अनुभूति जो लोग देश विदेश से ऐसे देखने आते हैं।
7: सात सज्जा के बाद जब ठाकुर जी महाराज काली घटा में विराजमान हुए तो मानो धरती प्राकृतिक नजारों से दमक उठी और दर्शन के लिए भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। पूरे सावन मास ये सिलसिला चलता रहेगा। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा, गुड न्यूज टुडे। रामनगरी अयोध्या में श्रावण मास की धार्मिक परंपराओं के बीच श्री राम जन्मभूमि मंदिर में झूलनोत्सव मनाया जा रहा है। भगवान श्री राम की भक्ति, पारंपरिक झूला उत्सव और सांस्कृतिक आराधना की मनमोहक झलक देखने बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। झूलनोत्सव के दौरान श्री राम जन्मभूमि मंदिर की यज्ञशाला में विशेष नृत्य आराधना का आयोजन हुआ और बेंगलुरु की साई ग्रुप के कलाकारों ने नृत्य के माध्यम से प्रभु श्री राम की आराधना की। श्री राम मंदिर में झूलनोत्सव का कार्यक्रम 28 अगस्त तक यूं ही चलेगा। दूसरी तरफ देखिए, सावन मास के शुक्ल पक्ष के अवसर पर श्री राम मंदिर के सर्वोच्च शिखर पर स्थित झंडे को बदला गया। दोनों तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं। झंडा बदलने से पहले प्रभु श्री राम की विधिवत पूजा अर्चना की गई। तस्वीर देखिए।

अभी गणेश उत्सव में काफी दिन है लेकिन तैयारियां जोरों पर हैं। मुंबई के लालबाग परेल इलाके में काला चौकी में आज गणपति बप्पा का आगमन हुआ। तस्वीरें देखिए, मुंबई के प्रसिद्ध गणेश उत्सव पंडालों में से एक गणेश चतुर्थी के दौरान विघ्नहर्ता की बहुत सुंदर भव्य मूर्ति स्थापित की जाती है। गणेश उत्सव के दौरान दर्शन करने के लिए हजारों भक्त यहां पर आते हैं। जैसे जैसे गणेश उत्सव की तारीख जो है नज़दीक आ रही है, बप्पा की मूर्ति अलग अलग पंडालों में लाई जा रही है ताकि महोत्सव के दौरान भव्य और दिव्यता प्रदान की जा सके। दो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन में दिखा रहे हैं, कितनी बड़ी संख्या में तमाम श्रद्धालु बढ़ चढ़कर स्वागत कर रहे हैं बप्पा के आगमन का।

0: रंगों की होली तो आप हर साल खेलते होंगे, लेकिन आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं दूध की अनोखी होली की खबर जो खेली गई है हरिद्वार में। यहाँ की पावन हर की पौड़ी पर होने वाली दूध की होली एक ऐसा ही दिव्य उत्सव है। मुल्तान जोत महोत्सव के खास अवसर पर यहाँ माँ गंगा के आंचल में दूध की धार और आस्था की जोत मिली तो पूरा वातावरण जो है अलौकिक हो गया।
1: नगरी हरिद्वार में हर की पैड़ी पर उमड़ी श्रद्धालुओं की ये भीड़ उस अनूठी परंपरा की कहानी कह रही है जो यहाँ पर 115 साल से निभाई जा रही है। देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर स्नान करने आते हैं, गंगा मैया की पूजा और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करने आते हैं। लेकिन ये लोग यहाँ पर ब्रह्म कुंड में माँ गंगा के साथ होली खेलने आए हैं, वो भी रंगों से नहीं बल्कि दूध से। फूलों के साथ दूध से भरी बाल्टियाँ लेकर माँ गंगा के जयकारे लगाते हुए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर जमा हुए।
2: कि मेरे कारण से गंगा मैली ना हो, गंगा स्वच्छ रहनी चाहिए, हम सबका संकल्प है। आज हम माँ गंगा से दूध की होली खेलते हैं, अपनी श्रद्धा अनुसार जितना भी दूध होता है हम प्रवाहित करते हैं, फिर गाड़ी में दूध भर के माँ गंगा से दूध की होली खेलते हैं। और उसके पीछे का उद्देश्य यही है कि जो परंपरा हमारी हिंदू संस्कृति कहती है कि तालाब की पूजा करना, गंगा की पूजा करना, यमुना की पूजा करना, परिवार के साथ हम यहाँ पर आते हैं, लगातार एक सप्ताह ये कार्यक्रम चलता है।
1: दरअसल बताया जाता है कि सन 1911 में पाकिस्तान में रहने वाले व्यापारी लाला रूपचंद पैदल ही हरिद्वार आए थे। उन्होंने गंगा में जोत प्रवाहित की थी ताकि गंगा मैया के आशीर्वाद से उनकी संतान जिंदा रहे और उनके दुख दर्द दूर हो जाए। कहा जाता है कि उनकी यही कामना पूरी हुई थी तो उसके बाद से हर साल सावन में कांवड़ यात्रा के बाद यहां पर मुल्तान जोत महोत्सव मनाने का सिलसिला शुरू हुआ जो अब तक जारी है। हर साल मुल्तान समाज के लोग यहां पर गंगा माँ के साथ होली खेलने आते हैं और दिवाली भी मनाते हैं। इसके पीछे मकसद बेहद खास है।
3: पीढ़ी दर पीढ़ी ये परंपरा चलती आ रही है और आज भी जो लोग खड़े हैं वो अपने आने वाली इस पीढ़ी को ये संदेश दे रहे हैं कि हम कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, कितनी भी हमारी भौगोलिक स्थिति ना बदल जाए, लेकिन हमें अपनी जड़ों को नहीं छोड़ना है, अपने रूट्स को नहीं छोड़ना है। जो हमारे धार्मिक अनुष्ठान है, हमारी परंपराएं हैं, इसमें सुख समृद्धि और शांति की कामना है देश के लिए, उसको हमें पूरा करना है और ये जोत महोत्सव उसी का एक प्रतीक है।
1: खास बात ये भी है कि इस बार इस अनोखी होली में योग गुरु स्वामी रामदेव और एक्टर रणवीर सिंह के डुप्लीकेट भी शामिल हुए।
4: सभी मिलजुल के रहे, गंगा हमारी साफ रहे, सभी से यही मेरी प्रार्थना है, गंगा को हमेशा साफ रखो, स्वच्छ रखो।
5: मैं संदेश ये देना चाहता हूँ कि जितना अच्छा हो सके, जितना प्यारा हो सके, हम इसको इस कार्यक्रम को हम ताकि कहीं कोई गड़बड़ ना हो सके, जितनी शांति से हो सके हम उतने शांति से ये प्रोग्राम को हमें करना।
1: हर की पैड़ी पर दूध की होली के उत्सव में आस्था का अद्भुत संगम नजर आता है। इसमें शामिल श्रद्धालु देश और समाज की खुशहाली के साथ गंगा नदी की स्वच्छता का संदेश दे रहे हैं। इसके माध्यम से ये लोग गंगा की पवित्रता, निर्मलता और हर तरफ सुख शांति का पैगाम दे रहे हैं और सबके कल्याण की प्रार्थना कर रहे हैं। हरिद्वार से मुदित अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
0: बात करेंगे रक्षाबंधन की। भाई बहन के पवित्र रिश्ते से जुड़ा ये त्यौहार 28 तारीख को मनाया जाएगा जिसको लेकर देश भर के तमाम बाजार तरह तरह की रंग बिरंगी और फैंसी राखियों से सज गए हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं राखी और गिफ्ट खरीदने के लिए बाजारों में पहुंच रही हैं। इस बार बाजार में 10 रुपये से लेकर 300-400 रुपये तक की राखियाँ मौजूद हैं और हर उम्र के लोगों के लिए अलग अलग डिज़ाइन देखने को मिल रहे हैं।
6: आने वाला है भाई बहन के प्यार भरे रिश्ते की पहचान वाला पर्व रक्षाबंधन। बहनें राखी का धागा बांधकर भाई से रक्षा का लेती है प्रण। 4 दिन बाद यानी 28 अगस्त को रक्षाबंधन मनाया जाएगा। इसके लिए बहनें जोर शोर से तैयारी में लगी हैं और उस पल का इंतजार कर रही हैं जब वो रक्षाबंधन के अवसर पर अपने प्यारे भाई की कलाई राखी के धागे से सजाएंगी। राखी को लेकर बाजारों में रौनक बढ़ गई है। बाजार में बहनों की भीड़ है और दुकानें तरह तरह के राखियों से गुलजार है। हरियाणा के करनाल में भी बाजार सज गए हैं। तरह तरह की राखियां बहनों को लुभा रही हैं। कोई मोतियों वाली राखी खरीद रहा है तो कोई बच्चों के लिए कार्टून कैरेक्टर वाली राखी। कुल मिलाकर बाजार में राखियों की ढेरों वैरायटी है।
7: सबसे पवित्र रिश्ता होता है बहन भाई का और ये साल बाद ही त्योहार आता है। मैं तो यही कहूंगी सभी बहनें आए, राखी खरीदें, अच्छे से अपने भाई को खुश करें और आप भी खुश होए, अच्छी अच्छी राखियां खरीदें, क्योंकि ये फेस्टिवल एक साल के बाद ही आता है और ये सबसे पवित्र एक रिश्ते का मतलब कि फेस्टिवल है। कि दोनों की पेयर है सबसे बेस्ट है वो, बाकी सिंगल भी ले सकते हो, डबल भी, जैसे आपकी चॉइस है। बच्चे छोटे भी है, उनके डोरेमोन वाली भी है, नगों वाली भी है, छोटे बच्चों की हर तरह की वैरायटी है।
6: बाजारों में भीड़ है, राखियों की बिक्री भी जमकर हो रही है, जिससे दुकानदार भी खुश हैं। बिहार के गया में भी रंग बिरंगी राखियों से बाजार सजा हुआ है। अलग अलग वैरायटी की राखियां बहनों को आकर्षित कर रही है। भाई की कलाई पर प्रेम और स्नेह का धागा बांधने की चाहत में बहनें अच्छी से अच्छी राखियों की खरीदारी की चाहत में बाजार का रुख कर रही हैं।
8: अच्छी अच्छी राखियां आई हुई है, हर साल के अकॉर्डिंग इस साल ज्यादा अच्छी अच्छी राखियां आई हुई है।
6: राजस्थान के पाली में बिक रही इन राखियों को देखिए, ये राखियां इको फ्रेंडली है। वजह यह है कि ये राखियां गोबर से बनी है। अलग अलग आकृतियों को समेटे ये राखियां काफी पसंद की जा रही है। यही नहीं, इन राखियों में बीज भी डाला गया, यानी जब भी आप इन राखियों को कलाई से उतारेंगे तो इसे गमले में डालने से पौधा उगने लग जाएगा, जो स्नेह का पौधा होगा, जीवन भर भाई बहन का स्नेह का प्रतीक बना रहेगा और पर्यावरण की सुरक्षा भी करेगा।
9: तो ये है कि जो अपने भाई की राखी बांधेगी तो गाय का गोबर जो अपने स्किन से तो टच होता है तो वो अपने एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है। तो ये राखी बांधने से हर किसी का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। तो मैं गाय के गोबर को प्रमोट कर रही हूँ और बहुत सारी चीजें मैं गाय के गोबर से बना रही हूँ और प्लास्टिक मुक्त करना चाहती हूँ।
6: भाई बहन के पवित्र रिश्ते और प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे अपने भाइयों को राखी भेजने के लिए डाकघरों में बहनों की भीड़ बढ़ने लगी है। तस्वीरें महाराष्ट्र के अकोला की है। यहाँ के RMS पोस्ट ऑफिस में इन दिनों रक्षाबंधन को लेकर खास व्यवस्था की गई है। राखी भेजने वाली बहनों और अन्य ग्राहकों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए RMS की ओर से स्पेशल काउंटर शुरू किया गया है, जो रात 9 बजे तक काम करता है। इससे बहनों को सामान्य डाक और पार्सल की लंबी कतार में खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ रही है और राखी जल्दी पोस्ट की जा रही है।
10: हर बहन अपने भाइयों को एक राखी भेजती है, जो उन तक पहुंचाना ये हमारी जिम्मेदारी है और इससे मद्देनजर जो भीड़ है वो तो भीड़ को मद्देनजर रखते हुए हमने एक स्पेशल काउंटर भी शुरू किया है, ताकि हमारी जो बहनें हैं जो राखी भेजने के लिए आई है उनको कम से कम तकलीफ।
11: बहुत ही अच्छी सुविधा है, हम लोगों को यहाँ बहुत टाइम लग रहा था पर ये देख के बहुत खुशी हो रही है कि बहनों के लिए राखी के लिए इन्होंने अच्छा आयोजन किया है, नया काउंटर खोला है, हम सभी बहनें बहुत खुशी में है।
6: डाकघर में राखियों को सुरक्षित तरीके से भेजने के लिए वाटरप्रूफ एनवेलप की भी व्यवस्था की गई है, ताकि राखियां खराब ना हो। करनाल से कमलदीप, गया से पंकज कुमार, पाली से भरत भूषण जोशी और अकोला से धनंजय साबले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: बात करेंगे नए वर्ल्ड रिकॉर्ड की। नागपुर में एक साथ 4000 से ज्यादा लोगों ने ढोल और ताशा बजाकर एक अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया और एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज हो गया। करीब 585 ध्वजधारकों ने अपने अपने दल के साथ सहभागिता दर्ज कराते हुए नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अधिकारियों ने आयोजकों को सर्टिफिकेट भी प्रदान किए। इस खास मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे।

0: अंतिम सोमवार का क्या है पूजा विधान? सावन के अंतिम सोमवार पर कौन सी मनोकामनाएं होंगी पूरी और कैसे मिलेगा शिव जी का वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में। सावन के अंतिम सोमवार का क्या है पूजा विधान? सावन के अंतिम सोमवार पर कौन सी मनोकामनाएं होंगी पूरी और कैसे मिलेगा शिव जी का वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
2: सावन के आखिरी सोमवार पर आज मंदिरों में विशेष तैयारी। सावन के आखिरी सोमवार पर आज मंदिरों में विशेष तैयारी। कृपा पाने का यह आखिरी मौका है, जाके स्वागत में बड़े हजारों श्रद्धालु ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत। अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर बदली गई धर्म ध्वजा, वैदिक मंत्रोच्चारों के बीच पूरे विधि विधान के साथ निभाई गई परंपरा। नटवा के द्वारकाधीश मंदिर में पारंपरिक काली घटा का आयोजन, फूलों और आकर्षक लाइटों से मनमोहक हुआ दृश्य, ठाकुर जी के दर्शन कर गदगद हुए भक्त। बारिश के लिए जैसलमेर के पुरोहितेश्वर राम महादेव मंदिर में महारुद्राभिषेक, 121 रुद्र पाठी पंडितों ने किया सामूहिक रुद्री पाठ, मंत्रोच्चार से गूंजा परिसर। अजमेर में दिख राजस्थानी संस्कृति की झलक, मातृशक्ति मानसून महोत्सव में जुटी हजारों महिलाएं, मेगा लकी ड्रॉ और मेडिकल कैंप्स का आयोजन। नागपुर में 4,000 से ज्यादा युवक युवतियों ने ढोल ताशा बजाकर बनाया अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड।

0: नमस्कार, मैं हूँ श्वेता सिंह। आज गोलमेज की यह चर्चा यानी राउंड टेबल पर हम आज एक बहुत ही विशिष्ट अतिथि के साथ जुड़े हुए हैं। बागेश्वर सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हमारे साथ हैं। नेहा बाथम, सईद अंसारी, राजीव ढोंडियाल और पूजा शर्मा, हम पांच साथ मिलकर आपसे आज प्रश्न पूछेंगे। असल में प्रधानमंत्री जी ने ही कुछ दिन पहले IIT में एक संबोधन में कह दिया
1: जी
0: कि मैं बाग बाग बागेश्वर नहीं हूं जो आपके मन की बात जानूं।
1: जी,
0: युवाओं के बीच बैठे थे वो
1: जी।
0: क्या बाबा बागेश्वर युवाओं के मन की बात जानते हैं, और जानते हैं तो जेन जी की उस बात को कैसे रखें?
1: देश के नायक के रूप में प्रधानमंत्री जी मन की बात जानते भी हैं, समय पर स्थिति को भी नहीं जानते, और ये हमारे लिए और हम सबके लिए विशिष्ट बात ये है कि ऐसे वो जननायक हैं, 140 करोड़ लोग, अनेक महापुरुष संत, और वो हमारे जैसे छोटे से व्यक्तित्व को, छोटे से आदमी को स्मरण रखते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और उनकी असाधारण प्रतिभा के वो धनी है, इसमें कोई संदेह नहीं। दूसरी बात, आपको एक बात हम बहुत मजेदार बताएंगे, हम एक साल चूक गए हैं जैन जी होने से।
2: हमारा दृष्टि में तो आप जैन
1: जी,
2: आप जैन
1: 1996 में हम आए और 97 के बाद में जो है जैन जी के लिए कहा गया, तो
2: चेंज कर देते हैं उसको।
1: ऐसा यदि हो जाए,
2: हो गया, हो गया,
1: बहुत धन्यवाद।
0: दोनों मध्य प्रदेश के लोग बैठ के आपस में कोई साजिश न बुलाकर,
1: जी जी, लेकिन हमें पता है कि हम कितनी भी सांठगांठ कर लें, आप लोगों के अंदर जो भगवत कृपा है, देवी अनुकंपा है, और जो आपका अध्ययन है, जो आपके पास लॉजिक तर्क है, हम लोगों की सांठगांठ चलेगी। जब देश की सांठगांठ नहीं चलती तो हम लोगों की सांठगांठ कहाँ चलेगी।
2: श्वेता ने मुझसे पूछा क्या पूछोगे, मैंने कद्दू पूछेंगे सारा, तो आप जानते हैं मन की बात।
3: बागेश्वर, ये जो जैन जी का क्योंकि जिक्र चला है, जिस तरीके से प्रदर्शन के जरिए सारी बांगों को मिलाया जा रहा है, एक नया ये ट्रेंड शुरू हुआ है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या ये सही है?
1: अपनी बात रखना ठीक है, आंदोलन करना ठीक है, हक के लिए लड़ना ठीक है, पर आंदोलन सबसे अंतिम सीमा है अपनी बात रखने का। अनेक माध्यम है, पत्राचार माध्यम है, संवाद माध्यम है, केवल अपने बयान देना एक माध्यम है, सबसे लास्ट में है आंदोलन। लेकिन आंदोलन हो, लेकिन वो उसमें फुहारता ना हो, देश में अराजकता ना फैले, देश में हिंसा ना फैले, और हम किसी की भी मां बहन को गाली ना, इतना ख्याल रखें कि हम अपनी बात रखें लेकिन देश में अराजकता ना हो। दूसरी बात, टेबल राउंड के इस माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम एक प्रार्थना करना चाहते विशेष रूप से, जैन जी सड़कों पर ही ना आए, हम चाहते हैं सरकार एक नया रास्ता चुने, सरकार ही जैन जी के पास जाए, एक ऐसा दरवाजा चालू किया जाए, एक ऐसा डोर खोला जाए कि जैन जी को आंदोलन करना ही ना पड़े।
0: कुछ मन में है आपके, कैसे होगा?
1: अरे ऐसे मन में कुछ है नहीं, बस इतना से ख्याल है, इस देश में बहुत बौद्धिक लोग हैं, प्रतिभा के धनी लोग हैं, प्रज्ञा मेधा के धनी लोग हैं, वो इस पर कार्य कर सकते हैं, पर हमारे मन में इतना है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिससे देश की जैन जी अपनी बातें सरकार से सीधी कर पाए।
3: आजकल जैन जी थोड़ा डिल्यूजनल में भी जी रहा है, एक अपना उनका एक वर्ल्ड है,
1: आपने अपने शब्द है, मोय मोय है, और ये भी है, और ये भी है,
3: तरीके से
1: प्यारे दो दिन में अभी सीखा है, जब से दिल्ली आए तब से आप लोगों की ही ये संगत का असर पड़ा, आप लोगों की संगत का असर पड़ा,
3: हम लोगों को भी इतना नहीं पता है जितना
1: हमने इंटरव्यू में ही, और पत्रकार आपके भाई बहन थे वो हमें सिखा रहे।
3: तो रील से जो ये पॉपुलैरिटी मिलती है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं, कहाँ तक सही मानते हैं, क्या ये आज का नजरिया है, और इसमें शामिल होना क्या बाबा बागेश्वर के लिए भी एक मजबूरी है?
1: वर्तमान में के पहले भारत में एक एडिक्शन था, एडिक्ट थे लोग, ड्रग एडिक्ट, अब एक नए एडिक्ट हो गए लोग, ड्रग के बाद सोशल मीडिया एडिक्ट, हम देश को नेशनल लव एडिक्ट करना चाहिए, राष्ट्र
0: महाराज जी आपके भी रील वायरल
1: था एडिक्ट, हम भी बनाते, रील बनाना बुरा नहीं, उसी सोशल मीडिया पर सुविचार है, संदेश है, टेक्नोलॉजी है, जानकारियां है, बड़े बड़े विचारकों के संवाद है, लेकिन उसी सोशल मीडिया पर कुछ लोगों के दिमागी कचड़े भी, उन्होंने अपने कचड़े उस पर भर रखे, उस कचड़े से संस्कारों पर कुछ प्रभाव पड़ रहा। हमें एक बात समझनी होगी, इस चैनल पर हमें एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहिए, इंस्टाग्राम कहां से हैंडल हो रहा, अमेरिका से, FB कहां से हैंडल हो रही, अमेरिका से, यूट्यूब कहां से हैंडल हो रहा, अमेरिका से, एक्स कहां से हैंडल हो रहा, अमेरिका से, इस देश का एल्गोरिदम किसके हाथ में, अमेरिका के हाथ में, हमें ये बात समझने से बिल्कुल नहीं चूकना चाहिए कि वो अमेरिका
4: जो भारत पर लगातार दबाव बनाना चाहते, व्यापारिक दबाव, मानसिक, आर्थिक और लगातार जो है टैक्स भरने के लिए मजबूर करना चाहेगा।
1: आप
4: तो कहीं हो ना कि हम विदेशी हाथों की कठपुतली न बन जाए।
2: क्या आप ये कहना चाहते हैं कि ये जो जेंजी आंदोलन में हमने युवाओं की भाषा देखी, वो हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति पर भी अटैक कर रहे हैं?
1: कुछ बच्चे
2: अमेरिका या विदेशी शक्तियां विदेशी के माध्यम से
1: जी,
2: या वो हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति पर अटैक कर रहे हैं उस पर
1: पूर्ण रूप से इस बात से निश्चित रूप से
4: कुछ तो ऐसा हो रहा जिससे विदेशी ताकतें भारत की कुछ ऐसी परंपरा को मानने वाले ऐसी समाज को आगे करके प्रेरित करके हमारे देश में ही दंगा फैलाना चाहे। कुछ लोग भारत में बांग्लादेश जैसे हालात करवाना चाहे, कुछ लोग भारत में पाकिस्तान जैसे हालात कराना चाहे। हम चाहते हैं कि आंदोलन हो, पर आंदोलन देश विरोधी ना हो, आंदोलन हो आंदोलन तिरंगा विरोधी ना हो, आंदोलन हो आंदोलन किसी माँ बहन की गाली से ना।
3: छोटा सा एक सवाल बीच में, आप टैक्स पे करते हैं? आप टैक्स पेयर हैं?
1: हम तो हैं, आरटीआई लगाओ।
0: शिक्षा नीति में मकौले मुक्त उसको करना है या पहले शिक्षा को पेपर लीक मुक्त करना है?
1: दोनों ही जरूरी, बहुत जरूरी है। सूर्य और चंद्रमा दोनों आवश्यक है, दिन और रात दोनों आवश्यक है। तो हमें लगता है कि सिस्टम में सुधार की आवश्यकता है, शिक्षा में बदलाव की आवश्यकता।
0: एक चीज मैं आपसे पूछती हूँ, क्योंकि आप जातियों को, जातियों का बंटवारा खत्म करके कहते हैं कि हिंदू एक हो रहे हो।
4: हाँ।
0: और आप इसके लिए आप पदयात्रा भी कर चुके हैं सब।
1: अब अभी हम पदयात्रा भी करने वाले
0: इसी के लिए।
1: इसी के लिए हमारा उद्देश्य है कि इस देश में जातिवाद और क्षेत्रवाद ना, राष्ट्रवाद, कास्टिज्म नहीं, राष्ट्रिज्म हम चाहें।
0: पर हिंदू राष्ट्र,
1: हिंदू राष्ट्र का अर्थ मुसलमान मुक्त नहीं, हिंदू राष्ट्र का मतलब है सबके साथ। अगर हिंदू हाँ मुसलमान मुक्त तो होता तो आपकी तरफ भी सबकी नजर जा रही है। तो हिंदू राष्ट्र का मतलब मुसलमान मुक्त नहीं, हिंदू राष्ट्र का मतलब ईसाई मुक्त नहीं, हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि विचारक, हमें कागजों में हिंदू राष्ट्र चाहिए नहीं, विचारों में हिंदू राष्ट्र चाहिए। हम विचारों को परिवर्तन करना चाहते, और हिंदू कोई एक धर्म नहीं, जीवन शैली है। हिंदू का मतलब वसुदेव कुटुंबकम, हिंदू का मतलब अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा नहीं अहिंसा, हिंदू का मतलब व्यापार बाद में परिवार पहले, ये हिंदू राष्ट्र। हमें नहीं लगता कि ये गलत है, ये तो सबकी मांग होनी चाहिए, इस देश के प्रत्येक नागरिक की मांग होनी चाहिए।
3: बाबा जी अपने राखी से पहले ही बहुत सारी राखियां पहन,
1: हमारी बहुत बहनें हैं,
3: बहुत सारी बहनें जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ बहनें, आपका रक्षाबंधन लग रहा है, मन चुका है।
1: अगर इंटरव्यू हो जाए तो आपकी श्रद्धा जगह तो आप
3: बहनें हम बांध देते
2: हैं तो आपकी बहुत है
1: जी
2: गर्लफ्रेंड।
1: ये तो राम राम राम राम, आपको लगता है लेकिन हमारे जैसे आदमी ये सब झंझट पा रहे।
2: शादी करेंगे कि नहीं बाबा?
1: हाँ घरवाली लाएंगे,
2: गर्लफ्रेंड से तो शादी करते हैं।
1: ना ना भैया हमारी संस्कारों में पद्धति है, माता पिता हैं हमारे यहाँ पर,
2: आज आप जेंजी हैं ये तय हो गया,
3: एक साल से
2: और हर
1: जेंजी से बड़े
2: हर जेंजी ये कहता है कि भाई पहले हम जानेंगे समझेंगे अपने जीवन साथी को, उसके बाद
1: समझना गर्लफ्रेंड बनाना नहीं होता है। ना समझने का मतलब ये थोड़ी कि कोई आपको हाथ पकड़ा है तो आप पूरा हाथ ही दबा दो, जानना समझना किसी के बारे में, विचारों के बारे में।
2: शादी तो रहेंगे,
1: शादी आपको क्या लगता है हम रड़ुआ मन?
0: वो तो कहते हैं कि रिश्ते उनके घर आते रहते
3: हैं,
0: माहौल जल्दी होगा।
1: अभी हम फर्स्ट में अभी प्रारंभ में जो हमारे संकल्प चल रहे हैं उन पे हम बहुत कार्य कर रहे हैं। अभी कैंसर हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन 2027 के दिसंबर में फर्स्ट फेज में उसको चालू 2027 में, और हर वर्ष बेटियों का विवाह है वो सब। अभी हमने एक नया प्रकल्प चालू किया धाम पर, वैदिक गुरुकुलम, 80 बच्चे मजदूरों के जिनके माता पिता मजदूर हैं उनके बच्चों का रहना खाना पुस्तक पढ़ाई लिखाई सब फ्री ऑफ वो चालू किया। तो उसमें केवल हम संस्कृत नहीं सिखाते, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, हॉर्स राइडिंग, तीरंदाजी, सिंगिंग, पूरा वैदिक और सबसे हाईटेक गुरुकुलम। सबसे तो नहीं कह सकते हैं, ठीक ठाक।
0: कोई ओलंपिक मेडल भी आएगा आपके?
1: अगर ये सफल होंगे तो निश्चित भगवान ने चाहा।
0: स्वामी रामदेव पे बोलेंगे
1: जी, तो हमारे आदर्श
2: आपके आदर्श में क्या आप उनकी तरह आप भी मतलब वो हर क्षेत्र में आप जो है चले गए, बहुत बड़े व्यापारी भी, अच्छे व्यापारी भी बन गए हैं, देश को बहुत मतलब रोजगार भी दे रहे हैं, तो क्या आप भी उस
1: दिशा? आप क्या चाहते हैं, महात्मा सिर्फ मांगते ही रहे? देखो इस देश में हमारी आज से लेकर के अब तक के जितने भी प्रवचन के इंटरव्यूज या हमारे इंटरव्यू या कथा प्रवचन है सोशल मीडिया या यूट्यूब आदि पर प्रसारित हमारी लाइव कथा प्रसारित टेलीकास्ट है उन सबको आप सुनेंगे। हमने कभी माया छोड़ने के प्रवचन नहीं सुनाए, हम माया छोड़ने के पक्ष में नहीं। आज 100 रुपया है डॉलर, 100 रुपया है, कल 200 हो जाएगा, आप सबको बाबा बना दोगे तो देश का हाल क्या होगा। हम देश का विकास चाहते, अर्थ से परमार्थ की यात्रा चाहते, अर्थ कमाओ पर परमार्थ में भी लगाओ। हम चाहते हैं दीनहीनों की भी मदद करो, धन कमाना बुरा नहीं है पर किसी का दिल दुखा करके कमाना, झूठ छल कपट पाखंड अंधविश्वास फैलाकर कमाना महा बुरा है। हम चाहते हैं हर व्यक्ति बिजनेसमैन बने, हर व्यक्ति व्यापारी बने, हर व्यक्ति अर्थ कमाने के स्रोत निकाले, नया आविष्कार करे, नई नई चीजों का आविष्कार करके समाज के सामने प्रस्तुत करे, हर क्षेत्र में वो सर्वगुण संपन्न हो। और बिल्कुल होना चाहिए, हमें स्वामी जी की एक बात बहुत अच्छी लगती, सब में होना चाहिए, कोई बुराई नहीं। हाँ, धर्म का धंधा नहीं होनी चाहिए, धंधे का धर्म तो होता है।
5: वो कौन लोग हैं और धर्म का धंधा कैसे करते हैं, धर्म का धंधा क्या होता है?
1: धर्म का धंधा ये होता है कि हम भगवान के नाम पर झूठ छल कपट के नाम पर दिखावा भय दिखा करके धर्म का चोला ओढ़ करके अपने पेट भरना, ये धर्म का धंधा है। आप कहें कि आप तो नहीं ऐसा करते, हम कथा करते दक्षिणा मिलती है, हम प्रवचन करते दक्षिणा मिलती है, लेकिन हम मकान नहीं बनाते, अस्पताल बनाते, बेटियों के विवाह कराते हैं, हर दिन 10 से 15 हजार लोगों को निःशुल्क भंडारा कराते हैं। हमारा क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र, वहाँ 200 किलोमीटर में कोई कैंसर हॉस्पिटल नहीं है, तो हमने विचार किया हमारे क्षेत्र में अस्पतालों में मंदिर अब तक बहुत हैं, हम मंदिर में अस्पताल देखना चाहते।
3: महाराज जी, जब आप
1: इसके विपरीत जो है वो धर्म का धंधा है।
3: तो जब आप बाहर होते हैं तो इंडिया में क्या चल रहा है उसको ट्रैक करते हैं?
1: नहीं, ट्रैक नहीं, हम रोज न्यूज
3: पढ़ते हैं, लेकिन कई बार ऑनलाइन देखना पड़ता होगा ना, यूट्यूब पे या किसी
1: चलाते
3: हैं। और
1: जी आपको क्या लगता है
3: कौन सा ऐप सबसे ज्यादा आप इस्तेमाल करते हैं?
1: एक्स हैंडल करते हैं,
3: एक्स हैंडल,
1: और इंस्टाग्राम करते हैं,
3: इंस्टाग्राम
0: खुद से करते हैं।
3: आपका भी समय जाता है ऐसे?
1: 30 मिनट तो जाता है,
3: 40 मिनट
1: न्यूज पूरी पढ़ने में, आज कहां क्या क्या किसने क्या क्या वहां बयान दिया, कहां पर क्या चल रहा है, एक एक न्यूज को हमें, क्योंकि इसलिए भी अपडेट हमें रहना पड़ता है कि जैसे ही उतरो तुरंत माइक बताइए बाबा ये क्या, अब माइक लगाने वाले आप ही लोग, बाबा बड़ा ज्ञानी बनता था, बोल नहीं
3: पा।
2: मेरे सारे साथी देखिए आपसे बहुत सख्त प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं तो मंत्र मुख दूंगा, देख रहा हूँ आपको, मैंने आपसे पहले कहा था कि आपको देखता रहूंगा।
1: जी जी, आप बहुत सज्जन,
2: आप बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं। ये बताइए कि इतना सुंदर हनुमान जी भी हैं, लग रहा है कि बहुत ही डिजाइनर, वो शानदार आपने कुर्ता पहना, कौन डिजाइन करता
1: है? हमारी डिजाइनिंग ऐसी है कि जो भी आता है वो श्रद्धा से दे जाता है, कोई फिक्स डिजाइनर नहीं।
2: अच्छा,
1: लोगों की इच्छा है, हमारे प्रति भावना जो जुड़े हैं।
2: ये भी कुर्ता किसी ने दिया है?
1: हम
2: कितने खुश हो रहे हैं?
1: अरे खुद के कहा, उनका हृदय बड़ा आह्लादित होता कि गुरु जी ने पहन लिया।
2: तो आपका
1: है चाहेंगे कि इस इंटरव्यू के बाद में आप भी एक आध श्रद्धा दिखाओ। आपको भी मन में आना चाहिए कि हमारा दिया हुआ कुर्ता कोई महात्मा पहने,
3: वो तो कोट देंगे,
1: कोट ना दे, कोट कहा करें।
2: अच्छा, हम शानदार टी शर्ट देंगे आपको,
1: बाहर में गया हम ले भी
3: पैंट भी लेंगे,
1: और अब आप मना ना कर पाएंगे क्योंकि आपने बोल दिया है कि हमने अगली बार कमेंट ही कर देंगे कि बड़े बड़े नहीं आ रहे हैं, देखे
2: तो मतलब कुर्ता ही पहनेंगे आप?
1: नहीं नहीं, आप टी शर्ट दो, हम कैसे लेंगे
2: टी शर्ट पहनेंगे?
1: अरे उसमें कोई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कल तुम जींस पैंट ले आओ, वो ना पहनेंगे,
2: टी शर्ट के साथ जींस भी देंगे।
1: ना ना, हम वो ना पहनेंगे, पहले ही
2: क्यों? अच्छा तो है जींस पैंट पहनना, उसमें कोई आपत्ति है कुछ?
1: अरे भाई कोई आपत्ति नहीं, पुलिस वाला पुलिस की ड्रेस पहन करके ना आए तो आप सीधा गए। सबके भाई अपने अपने रूल होते हैं, ड्रेस कोड होता है देश में, डॉक्टर का ड्रेस कोड है, पुलिस का ड्रेस कोड है, साधु का भी भैया ड्रेस कोड है, उससे इंस्पायर होते हैं लोग, हम स्पिरिचुअल है भैया, आप क्या चाहते हो?
3: महाराज जी, हाल ही में कांवड़ यात्रा को लेकर बहुत सारी बातें कही जाती हैं कि आजकल आस्था के नाम पर एंटरटेनमेंट ज्यादा हो रहा है, बड़े बड़े डीजे, लाउड म्यूजिक, रास्ते में अवरोध होता है, पुलिस प्रशासन की सख्ती के बावजूद हमने देखा, कई आपने भी देखे होंगे वीडियोस वायरल हुए जिसमें गंदगी फैलाई गई हरिद्वार के तटों पर, जहां पर बहुत टनों वेस्ट छोड़ा गया, जो गंदे कपड़े थे, कैसे इस पर अंकुश लगाम लगे कि हम आस्था को भी
4: चोरा यात्रा बंद करवाने की बात
3: नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि
4: ठीक करने की
3: उसको कैसे ठीक करें ताकि उसमें से एंटरटेनमेंट का एलिमेंट माइनस हो जाए।
4: सजगता और सद्बुद्धि है उसको ठीक भर ऐसे करना है कि हम कचरा जमीन पर ना फेंके, कचरे को कूड़ेदान में ही डालें और धर्म आस्था को सिर्फ इंजॉयमेंट में, आस्था की पवित्रता, आस्था में श्रद्धा दोनों उच्चतम सीमा पर बनाए रखें। कांवड़िया बड़े भगवान के शिव भक्त होते हैं, अद्भुत भक्ति करते हैं, पैदल चलते हैं, उसमें कुछ विचित्र लोग भी होते हैं। तो तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, कछु मानस कछु देवता कछु जय जय सीताराम, सब प्रकार के लोग बहन होते हैं, सबकी अपनी अपनी मति होती है, सब में सब प्रकार के होते हैं। पर हम इतनी बात जरूर कहेंगे आने वाले दिनों में इसकी कांवड़ियों का भी एक विशेष, सरकार तो बहुत कार्य करती है, कांवड़ियों भी एक समझेंगे कि हमको जो है देवतीर्थ में गंगा के किनारे रास्ते पर सड़क पर कोई भी ऐसा कृत्य नहीं करना जिससे हमारे सनातन पर उंगली उठे।
0: अब बड़े बड़े साधु हैं जो इस चीज को लेकर मतलब वो गंगा जी के लिए प्राण समर्पित कर देते हैं, ये भी उन कांवड़ियों को अपने भक्ति के जोश में सोचना चाहिए।
6: जितने जितने शांति से आप अपनी बात रख रहे हैं, आप अपनी बात मनवा भी लेते हैं, ठीक है कुछ, लेकिन जेंजी कुछ युवा है जो अभी लद्दाख का वीडियो का आप जिक्र कर रहे थे, उसमें उतना गुस्सा जो उस महिला का था और वो कह रही है हम जेंजी है हम प्रदर्शन पे बैठ जाएंगे, यही बैठ जाएंगे, तो उन युवाओं के लिए क्या संकेत दें? गुस्से से ज्यादा बेहतर है शांति से अपनी
4: बात, हर रास्ते हर हल हर विवाद किसी भी समस्या का समाधान, संवाद ही समस्या

0: इसमें हम विवाद क्यों चुने, संवाद क्यों ना चुने? चार दिन की जिंदगी किसके लिए? और आपके आंदोलन कर देने से हो भी क्या जाना? हम सरकार को समझाएं भी, सिस्टम को सुधारें भी, पर देश को बिगाड़ें तो ना। आने वाली अल्फा बीटा जनरेशन को हम आंदोलन की बातें देकर के जाएंगे, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हम नेशन प्रेम की बातें देके जाए, लव और पीस की बातें देकर जाए। तो हमें लगता है कि अब वर्तमान ये जो सोच वायरल होने का जो वायरल चढ़ा ना, ये बहुत खतरनाक है। हम पूरे भारत को ड्रग एडिक्ट अथवा सोशल मीडिया एडिक्ट नहीं, कथा एडिक्ट करना
1: चाहिए। आजकल आप पर्ची निकालना छोड़ दिए?
0: नाना चला रहे हैं, बस धाम पर है अभी।
1: अच्छा, जगह नहीं
0: कथाओं में होता है सब, लेकिन व्यस्तता अन्य जगह ज्यादा बढ़ गई, कथाएं ज्यादा, विदेश यात्रा ज्यादा, और पद यात्रा की तैयारी, कन्या विवाह की तैयारी, गुरुकुलम की तैयारी, कैंसर हॉस्पिटल की। पर्ची तो निकाले, वो तो जब तक जीना है तब तक भगवान ने जो कृपा दे रखी उस लगातार चला। अब आप लोग कम पर्ची दिखा रहे हैं, ये कह सकते
1: महाराज जी आप इतनी विदेश यात्रा करते हैं, लेकिन जब आप तुलना करते हैं भारत की और विदेश की, असीम और अपार संभावनाएं ऐसी जो भारत में, जिसको हम यूज नहीं कर पा रहे हैं, जिसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, जो विदेश में नहीं भी है फिर भी उन लोगों ने उसे डेवलप कर दिया। मसलन दुबई एक रेत था, रेतीला वहां पर मैदान था, फिर भी इतना डेवलप्ड वो जगह बन गई है। ऐसी कौन सी संभावनाएं आपको हिंदुस्तान में भी दिखाई देती हैं जिस पर हम काम कर सकते हैं?
0: भारत में सब कुछ बस प्रस्तुतीकरण, हमारी प्रस्तुतीकरण प्रेजेंटेशन ठीक है। वो अपने पहाड़, खुदे हुए पहाड़ों को भी टूरिस्ट प्लेस बता रहे हैं, हमारे यहाँ ऑलरेडी टूरिस्ट प्लेस है। तो हमें लगता है भारत का प्रस्तुतीकरण ठीक होना चाहिए। एक, भारत की शिक्षा व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, भारत की स्वच्छता पर काम करना चाहिए। फर्स्ट, यदि भारत को ठीक करना है तो दो जगह सफाई होनी चाहिए, भारत की सड़कों पर और कोनों में और दिमाग
1: दिमाग की पहने से दिमाग की सफाई कथा के साथ होगी, बाकी सफाई सरकार को करनी है।
0: नहीं नहीं नहीं, वो दिमागी सफाई कथा से तो हम सिर्फ विचार दे सकते हैं, स्वीकार तो आप करेंगे, स्वीकार तो लोग करेंगे, हम तो कह सकते हैं, मानना ना मानना अभिव्यक्ति की आजादी, इतना कह सकते हैं कि आप बेहतर जीना चाहते तो हमारे पास वही विचार है, और विचार सदविचार बुरे विचारों को ठीक करते, पर कोई स्वीकार करे तब ना।
2: नई पीढ़ी आपको कितना सुनती है, मतलब आप भी कभी मतलब कुछ
0: ये डाटा तो आप ही ला सकते हैं हमें कितना सुनती है, हमारे बारे में कह पाना बहुत मुश्किल होगा, हम नहीं कह सकते हम कितने अच्छे आदमी, हम आपके बारे में कह सकते।
1: ऐसा होता है कि अलग अलग पीढ़ी के लिए अलग भाषा को इस्तेमाल करनी है कि भाई, क्योंकि आजकल पीढ़ियों में ऐसा बांट दिया कि हर व्यक्ति के दिमाग में आता है कि भाई मैं कौन सी पीढ़ी, सबने पता किया है कि हम कौन सी पीढ़ी,
0: आप कौन है? आप यदि अपने
1: आप लोग 25 से 1 साल ऊपर कभी नहीं होगा,
2: कभी नहीं कभी नहीं,
0: फिर हमको अल्पा बीटा की घोषित करना पड़ेगा अपने आप।
1: उम्र तो दिमाग में होती है ना,
0: अल्पा बीटा की बात कौन सी आई,
1: बीटा के
2: बाद बीटा,
1: अभी तो बीटा चल रहा है,
0: अल्फा
1: महाराज जी, आप एक आम जीवन से इस जीवन में कैसे परिवर्तित हुए, कौन सी वो आदतें थी आपके अंदर जो आपने बदलाव किया और आप बाबा बागेश्वर बन गए?
0: हम बचपन से ही उल्टे थे,
1: उल्टे थे क्या उल्टे काम किए आपने?
0: सर कोई ऐसे उल्टे काम नहीं किए बहन, बचपन से ही हमने, हमको किसी ने बाबा बनाया,
1: कैसे
0: बनाए ही थे,
1: मैंने बनाया,
0: हमारा परिवार पूरा सामाजिक के साथ साथ धार्मिक में खूब सरोवर था। हमारे ग्रैंड फादर हनुमान जी के परम भक्त, उन पर हनुमान जी की विशेष अनुकंपा थी, एनलाइटमेंट था उनको, एनलाइटेड थे, उनके चरणों में रहे, हनुमान जी की सेवा बचपन से ही, हमारे पिताजी माताजी, हमारे दादाजी, दादाजी के भी पिताजी परदादा, तो हम जहाँ जिस गांव में हमारा जन्म हुआ वहाँ बालाजी का जो मंदिर है वो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी पूजा करते ही आ रही है, तो वंशानुगत पूजा कर रहे हैं, तो दादाजी वहाँ रहते थे, तो दादाजी की हमारे यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी कोई ना कोई एक वहाँ का पीठपति या पीठाधीश्वर होता है, दादा ने हम पर कृपा की, गुरु ने हम पर दृष्टि डाली, तो हम बचपन से ही धार्मिक धर्म के प्रति लगाव था ही, परिवार का माहौल ही ऐसा था, फिर दादाजी ने कृपा की तो गुरु अद्भुत

0: मिल गए तो फिर जीवन परिवर्तित हो गया, तो हम बाबा बने नहीं, बने बनाए हुए हैं समान थे।
1: नहीं सर, लेकिन आपकी बातों के साथ, मतलब भले एक साल से आप कह रहे हैं कि चूक गए, लेकिन आपको फिर भी इस नई पीढ़ी के ही का ही आप प्रतिनिधित्व एक तरीके से करते हैं, जो सोशल मीडिया से लेकर और एक कथा वाचन तक सबको अपनी बातें, अपने विचार सुना रहा है, यात्राएं कर रहा है और आगे भविष्य के भारत के लिए एक उम्मीद बनाए हुए है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।
2: सावन के आखिरी सोमवार को लेकर भक्तों में भारी उत्साह है। शिवालयों में खास तैयारियां की जा रही हैं। सावन शिव का महीना है और शिव को प्रिय है सोमवार का दिन। ऐसे में आखिरी सोमवार मनोकामना पूर्ति का भी दिन है। शिवलिंग पर जलाभिषेक और पूजा पाठ से भोलेनाथ को आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है, वरदान पाया जा सकता है।
3: सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। अगर ये सोमवार सावन महीने का है, उसका महत्व और भी बढ़ जाता है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सावन के सोमवार का खास महत्व बताया गया है। सावन का महीना भी अब जल्द ही समाप्त होने वाला है और 24 अगस्त को सावन का आखिरी सोमवार है। ऐसे में शिव भक्तों के पास भी इस सावन के महीने में आखिरी मौका है भोलेनाथ को प्रसन्न करने का। सावन के आखिरी सोमवार को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। अगर आपने सावन के किसी भी सोमवार को पूजा नहीं की है, व्रत नहीं रखा है, तो इस सोमवार को पूजा करने और व्रत करने से भी आपकी मनोकामनाएं पूरी हो सकती है। सावन के आखिरी सोमवार पर एक साथ कई शुभ योग संयोग भी बन रहे हैं। सावन के आखिरी सोमवार पर इस बार प्रीति योग, आयुष्मान योग, पवित्रता एकादशी वैष्णव, हंस राज योग, बुद्धादित्य राजयोग, क्योंकि सिंह राशि में सूर्य बुध की युति बनेगी। अगर आप भी सावन के पहले तीन सोमवार का व्रत नहीं कर पाए हैं, तो कोई बात नहीं, आप इस सोमवार का व्रत करेंगे तो पुण्य की प्राप्ति होगी। सावन के आखिरी सोमवार पर सुबह सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहने, इसके बाद भगवान शिव का ध्यान कर व्रत या पूजा का संकल्प ले शिवालय जाएं और शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और 11 या 21 बेलपत्र अर्पित करें। एक एक बेलपत्र अर्पित करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें। इसके बाद घी का दीपक जलाकर आरती करें और इस दिन जरूरतमंद लोगों की मदद करें और दान भी दें, जैसे वस्त्र, अन्न, फल आदि चीजों का दान आप कर सकते हैं। शिव चालीसा या रुद्राष्टक का पाठ करें। सावन के आखिरी सोमवार पर रुद्रा अभिषेक करने की भी विशेष मान्यता है। कहा जाता है कि इस दिन पूजा पाठ जप तप करने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
2: अभी गणेश उत्सव में काफी दिन है, लेकिन तैयारियां जोरों पर हैं। मुंबई के लालबाग परेल इलाके में काला चौकी में आज गणपति बप्पा का आगमन हुआ। तस्वीरें देखिए, मुंबई के प्रसिद्ध गणेश उत्सव पंडालों में से एक गणेश चतुर्थी के दौरान विघ्नहर्ता की बहुत सुंदर भव्य मूर्ति स्थापित की जाती है। गणेश उत्सव के दौरान दर्शन करने के लिए हजारों भक्त यहां पर आते हैं। जैसे जैसे गणेश उत्सव की तारीख जो है नजदीक आ रही है, बप्पा की मूर्ति अलग अलग पंडालों में लाई जा रही है ताकि महोत्सव के दौरान भव्य और दिव्यता प्रदान की जा सके। दो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन में दिखा रहे हैं, कितनी बड़ी संख्या में तमाम श्रद्धालु बढ़ चढ़कर स्वागत कर रहे हैं बप्पा के आगमन का।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: सावन के अंतिम सोमवार का क्या है पूजा विधान? सावन के अंतिम सोमवार पर कौन सी मनोकामनाएं होंगी पूरी और कैसे मिलेगा शिव जी का वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: सावन के आखिरी सोमवार पर आज मंदिरों में विशेष तैयारी, पावन मौके पर आज बन रहे हैं कई शुभ संयोग, इस साल सावन महादेव की कृपा पाने का ये आखिरी मौका। मुंबई के पंडालों में पधार रहे हैं गणपति बप्पा, काली चौकी के महाराजा के स्वागत में उमड़े हजारों श्रद्धालु, ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत। अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर बदली गई धर्म ध्वजा, वैदिक मंत्रोच्चारों के बीच पूर्व विधि विधान के साथ निभाई गई परंपरा। मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में पारंपरिक काली घटा का आयोजन, फूलों और आकर्षक लाइटों से मनमोहक हुआ दृश्य, ठाकुर जी के दर्शन कर गदगद हुए भक्त। बारिश के लिए जैसलमेर के पुरोहितेश्वर राम महादेव मंदिर में महारुद्राभिषेक, 121 रुद्रपाठी पंडितों ने किया सामूहिक रुद्र पाठ, मंत्रोच्चार से पूजा परिसर। अजमेर में दिखी राजस्थानी संस्कृति की झलक, का मातृशक्ति मानसून महोत्सव में जुटी हजारों महिलाएं, मेगा लकी ड्रॉ और मेडिकल कैंप्स का आयोजन। नागपुर में 4,000 से ज्यादा युवक युवतियों ने ढोल ताशा बजाकर बनाया अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। सावन के आखिरी सोमवार को लेकर भक्तों में भारी उत्साह है, शिवालयों में खास तैयारियां की जा रही हैं। सावन शिव का महीना है और शिव को प्रिय है सोमवार का दिन, ऐसे में आखिरी सोमवार मनोकामना पूर्ति का भी दिन है। शिवलिंग पर जलाभिषेक और पूजा पाठ से भोलेनाथ को आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है, वरदान पाया जा सकता है।

0: सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। अगर ये सोमवार सावन महीने का है, उसका महत्व और भी बढ़ जाता है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सावन के सोमवार का खास महत्व बताया गया है। सावन का महीना भी अब जल्द ही समाप्त होने वाला है और 24 अगस्त को सावन का आखिरी सोमवार है। ऐसे में शिव भक्तों के पास भी इस सावन के महीने में आखिरी मौका है भोलेनाथ को प्रसन्न करने का। सावन के आखिरी सोमवार को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। अगर आपने सावन के किसी भी सोमवार को पूजा नहीं की है, व्रत नहीं रखा है, तो इस सोमवार को पूजा करने और व्रत करने से भी आपकी मनोकामनाएं पूरी हो सकती है। सावन के आखिरी सोमवार पर एक साथ कई शुभ योग संयोग भी बन रहे हैं। सावन के आखिरी सोमवार पर इस बार प्रीति योग, आयुष्मान योग, पवित्रता एकादशी वैष्णव, हंस राज योग, बुद्धादित्य राजयोग, क्योंकि सिंह राशि में सूर्य बुध की युति बनेगी। अगर आप भी सावन के पहले 3 सोमवार का व्रत नहीं कर पाए हैं, तो कोई बात नहीं, आप इस सोमवार का व्रत करेंगे तो पुण्य की प्राप्ति होगी। सावन के आखिरी सोमवार पर सुबह सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहने, इसके बाद भगवान शिव का ध्यान कर व्रत या पूजा का संकल्प ले शिवालय जाएं और शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और 11 या 21 बेलपत्र अर्पित करें। एक एक बेलपत्र अर्पित करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें। इसके बाद घी का दीपक जलाकर आरती करें और इस दिन जरूरतमंद लोगों की मदद करें और दान भी दें, जैसे वस्त्र, अन्न, फल आदि चीजों का दान आप कर सकते हैं। शिव चालीसा या रुद्राष्टक का पाठ करें। सावन के आखिरी सोमवार पर रुद्रा अभिषेक करने की भी विशेष मान्यता है। कहा जाता है कि इस दिन पूजा पाठ जप तप करने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
1: अब बात करेंगे मथुरा की। देखिए, यहाँ के बांके बिहारी मंदिर में काली घटा उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल होने और बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। दरअसल ऐसी मान्यता है कि सावन में प्रभु को प्रकृति का दर्शन कराने के लिए इस उत्सव का आयोजन किया जाता है। मथुरा ब्रजमंडल में सावन मास में घटाओं का अपना अलग ही महत्व है। कृष्ण की नगरी मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में काली घटा का भव्य आयोजन किया गया, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। दरअसल ठाकुर जी को सावन महीने में प्रकृति का अनुभव कराने के लिए ब्रज में मंदिरों में घटाओं का आयोजन किया जाता है। उसी परंपरा के तहत ठाकुर जी महाराज काली घटा में विराजमान हुए, जिसमें संपूर्ण मंदिर प्रांगण को काले कपड़े और अनेकों प्रकार के फूलों से सजाया गया, शानदार लाइटिंग की गई। यही नहीं, संपूर्ण मंदिर में काले काले बादलों की गड़गड़ाहट, चिड़ियों की चहचहाहट, बिजली कड़कने की आवाज गूंजती रही। मंदिर प्रशासन का कहना है कि घटा से तात्पर्य है ठाकुर जी को बाहर के मौसम की अनुभूति करवाना।
2: हमारे संप्रदाय में ठाकुर जी की सेवा का सही बाल स्वरूप है और बालक को बाहर के मौसम की अनुभूति कराने के लिए घटाओं के आयोजन होते हैं। और इस आयोजन में जो काली घटा है वह अपने आप में बहुत ही अद्भुत है, जिसमें बालकों की गड़गड़ाहट, चिड़ियों की चहचहाहट और मौसम की एक ऐसी अनुभूति जो लोग देश विदेश से ऐसे देखने आते हैं।
1: सात सज्जा के बाद जब ठाकुर जी महाराज काली घटा में विराजमान हुए, तो मानो धरती प्राकृतिक नजारों से दमक उठी और दर्शन के लिए भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। पूरे सावन मास ये सिलसिला चलता रहेगा। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा, गुड न्यूज टुडे। रामनगर अयोध्या में श्रावण मास की धार्मिक परंपराओं के बीच श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में झूलनोत्सव मनाया जा रहा है। भगवान श्रीराम की भक्ति, पारंपरिक झूला उत्सव और सांस्कृतिक आराधना की मनमोहक झलक देखने बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। झूलनोत्सव के दौरान श्रीराम जन्मभूमि मंदिर की यज्ञशाला में विशेष नृत्य आराधना का आयोजन हुआ और बेंगलुरु की साई ग्रुप के कलाकारों ने नृत्य के माध्यम से प्रभु श्रीराम की आराधना की। श्रीराम मंदिर में झूलनोत्सव का कार्यक्रम 28 अगस्त तक यूं ही चलेगा। दूसरी तरफ देखिए, सावन मास के शुक्ल पक्ष के अवसर पर श्रीराम मंदिर के सर्वोच्च शिखर पर स्थित झंडे को बदला गया। दोनों तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं। झंडा बदलने से पहले प्रभु श्रीराम की विधिवत पूजा अर्चना की गई। तस्वीर देखिए।

अभी गणेश उत्सव में काफी दिन है लेकिन तैयारियां जोरों पर हैं। मुंबई के लालबाग परेल इलाके में काला चौकी में आज गणपति बप्पा का आगमन हुआ। तस्वीरें देखिए, मुंबई के प्रसिद्ध गणेश उत्सव पंडालों में से एक गणेश चतुर्थी के दौरान विघ्नहर्ता की बहुत सुंदर भव्य मूर्ति स्थापित की जाती है। गणेश उत्सव के दौरान दर्शन करने के लिए हजारों भक्त यहां पर आते हैं। जैसे जैसे गणेश उत्सव की तारीख जो है नजदीक आ रही है, बप्पा की मूर्ति अलग अलग पंडालों में लाई जा रही है ताकि महोत्सव के दौरान भव्य और दिव्यता प्रदान की जा सके। दो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन में दिखा रहे हैं, कितनी बड़ी संख्या में तमाम श्रद्धालु बढ़ चढ़कर स्वागत कर रहे हैं बप्पा के आगमन का।

0: रंगों की होली तो आप हर साल खेलते होंगे, लेकिन आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं दूध की अनोखी होली की खबर जो खेली गई है हरिद्वार में। यहाँ की पावन हर की पौड़ी पर होने वाली दूध की होली एक ऐसा ही दिव्य उत्सव है। मुल्तान जोत महोत्सव के खास अवसर पर यहाँ माँ गंगा के आंचल में दूध की धार और आस्था की जोत मिली तो पूरा वातावरण जो है अलौकिक हो गया।
1: नगरी हरिद्वार में हर की पैड़ी पर उमड़ी श्रद्धालुओं की ये भीड़ उस अनूठी परंपरा की कहानी कह रही है जो यहाँ पर 115 साल से निभाई जा रही है। देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर स्नान करने आते हैं, गंगा मैया की पूजा और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करने आते हैं। लेकिन ये लोग यहाँ पर ब्रह्म कुंड में माँ गंगा के साथ होली खेलने आए हैं, वो भी रंगों से नहीं बल्कि दूध से। फूलों के साथ दूध से भरी बाल्टियां लेकर माँ गंगा के जयकारे लगाते हुए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर जमा हुए।
2: कि मेरे कारण से गंगा मैली ना हो, गंगा स्वच्छ रहनी चाहिए, हम सबका संकल्प है। आज हम माँ गंगा से दूध की होली खेलते हैं, अपनी श्रद्धा अनुसार जितना भी दूध होता है हम प्रवाहित करते हैं, पिचकारी में दूध भर के माँ गंगा से दूध की होली खेलते हैं। और उसके पीछे का उद्देश्य यही है कि जो परंपरा हमारी हिंदू संस्कृति कहती है कि तालाब की पूजा करना, गंगा की पूजा करना, यमुना की पूजा करना, परिवार के साथ हम यहाँ पर आते हैं, लगातार एक सप्ताह ये कार्यक्रम चलता है।
1: दरअसल बताया जाता है कि सन 1911 में पाकिस्तान में रहने वाले व्यापारी लाला रूपचंद पैदल ही हरिद्वार आए थे। उन्होंने गंगा में जोत प्रवाहित की थी ताकि गंगा मैया के आशीर्वाद से उनकी संतान जिंदा रहे और उनके दुख दर्द दूर हो जाए। कहा जाता है कि उनकी यही कामना पूरी हुई थी तो उसके बाद से हर साल सावन में कांवड़ यात्रा के बाद यहां पर मुल्तान जोत महोत्सव मनाने का सिलसिला शुरू हुआ जो अब तक जारी है। हर साल मुल्तान समाज के लोग यहां पर गंगा माँ के साथ होली खेलने आते हैं और दिवाली भी मनाते हैं। इसके पीछे मकसद बेहद खास है।
2: पीढ़ी दर पीढ़ी ये परंपरा चलती आ रही है और आज भी जो लोग खड़े हैं वो अपने आने वाली इस पीढ़ी को ये संदेश दे रहे हैं कि हम कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, कितनी भी हमारी भौगोलिक स्थिति ना बदल जाए, लेकिन हमें अपनी जड़ों को नहीं छोड़ना है, अपने रूट्स को नहीं छोड़ना है। जो हमारे धार्मिक अनुष्ठान है, हमारी परंपराएं हैं, इसमें सुख समृद्धि और शांति की कामना है देश के लिए, उसको हमें पूरा करना है और ये जोत महोत्सव उसी का एक प्रतीक है।
1: खास बात ये भी है कि इस बार इस अनोखी होली में योग गुरु स्वामी रामदेव और एक्टर रणवीर सिंह के डुप्लीकेट भी शामिल हुए।
3: सभी मिलजुल के रहे, गंगा हमारी साफ रहे, सभी से यही मेरी प्रार्थना है, गंगा को हमेशा साफ रखो, स्वच्छ रखो। मैं संदेश ये देना चाहता हूँ कि जितना अच्छा हो सके, जितना प्यारा हो सके, हम इसको कार्यक्रम को हम ताकि कहीं कोई गड़बड़ ना हो सके, जितनी शांति से हो सके हम उतने शांति से ये प्रोग्राम को हमें करना।
1: हर की पैड़ी पर दूध की होली के उत्सव में आस्था का अद्भुत संगम नजर आता है। इसमें शामिल श्रद्धालु देश और समाज की खुशहाली के साथ गंगा नदी की स्वच्छता का संदेश दे रहे हैं। इसके माध्यम से ये लोग गंगा की पवित्रता, निर्मलता और हर तरफ सुख शांति का पैगाम दे रहे हैं और सबके कल्याण की प्रार्थना कर रहे हैं। हरिद्वार से मुदित अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
0: बात करेंगे रक्षाबंधन की। भाई बहन के पवित्र रिश्ते से जुड़ा ये त्यौहार 28 तारीख को मनाया जाएगा जिसको लेकर देश भर के तमाम बाजार तरह तरह की रंग बिरंगी और फैंसी राखियों से सज गए हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं राखी और गिफ्ट खरीदने के लिए बाजारों में पहुंच रही हैं। इस बार बाजार में 10 रुपये से लेकर 300-400 रुपये तक की राखियाँ मौजूद हैं और हर उम्र के लोगों के लिए अलग अलग डिज़ाइन देखने को मिल रहे हैं।
4: आने वाला है भाई बहन के प्यार भरे रिश्ते की पहचान वाला पर्व रक्षाबंधन। बहनें राखी का धागा बांधकर भाई से रक्षा का लेती है प्रण। 4 दिन बाद यानी 28 अगस्त को रक्षाबंधन मनाया जाएगा। इसके लिए बहनें जोर शोर से तैयारी में लगी हैं और उस पल का इंतजार कर रही हैं जब वो रक्षाबंधन के अवसर पर अपने प्यारे भाई की कलाई राखी के धागे से सजाएंगी। राखी को लेकर बाजारों में रौनक बढ़ गई है। बाजार में बहनों की भीड़ है और दुकानें तरह तरह के राखियों से गुलजार है। हरियाणा के करनाल में भी बाजार सज गए हैं। तरह तरह की राखियां बहनों को लुभा रही हैं। कोई मोतियों वाली राखी खरीद रहा है तो कोई बच्चों के लिए कार्टून कैरेक्टर वाली राखी। कुल मिलाकर बाजार में राखियों की ढेरों वैरायटी है।
5: सबसे पवित्र रिश्ता होता है बहन भाई का और ये साल बाद ही त्योहार आता है। मैं तो यही कहूंगी सभी बहनें आए, राखी खरीदें, अच्छे से अपने भाई को खुश करें और आप भी खुश होए, अच्छी अच्छी राखियां खरीदें, क्योंकि ये फेस्टिवल एक साल के बाद ही आता है और ये सबसे पवित्र एक रिश्ते का मतलब कि फेस्टिवल है। कि दोनों की पेयर है सबसे बेस्ट है वो, बाकी सिंगल भी ले सकते हो, डबल भी, जैसे आपकी चॉइस है। बच्चे छोटे भी है, उनके डोरेमोन वाली भी है, नगों वाली भी है, छोटे बच्चों की हर तरह की वैरायटी है।
4: बाजारों में भीड़ है, राखियों की बिक्री भी जमकर हो रही है, जिससे दुकानदार भी खुश हैं। बिहार के गया में भी रंग बिरंगी राखियों से बाजार सजा हुआ है। अलग अलग वैरायटी की राखियां बहनों को आकर्षित कर रही है। भाई की कलाई पर प्रेम और स्नेह का धागा बांधने की चाहत में बहनें अच्छी से अच्छी राखियों की खरीदारी की चाहत में बाजार का रुख कर रही हैं।
6: अच्छी अच्छी राखियां आई हुई है, हर साल के अकॉर्डिंग इस साल ज्यादा अच्छी अच्छी राखियां आई हुई है।
4: राजस्थान के पाली में बिक रही इन राखियों को देखिए, ये राखियां इको फ्रेंडली है। वजह यह है कि ये राखियां गोबर से बनी है। अलग अलग आकृतियों को समेटे ये राखियां काफी पसंद की जा रही है। यही नहीं, इन राखियों में बीज भी डाला गया, यानी जब भी आप इन राखियों को कलाई से उतारेंगे तो इसे गमले में डालने से पौधा उगने लग जाएगा, जो स्नेह का पौधा होगा। जीवन भर भाई बहन का स्नेह का प्रतीक बना रहेगा और पर्यावरण की सुरक्षा भी करेगा।
7: तो ये है कि जो अपने भाई की राखी बांधेगी तो गाय का गोबर जो अपने स्किन से तो टच होता है, तो वो अपने एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है। तो ये राखी बांधने से हर किसी का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। तो मैं गाय के गोबर को प्रमोट कर रही हूँ और बहुत सारी चीजें मैं गाय के गोबर से बना रही हूँ और प्लास्टिक मुक्त करना चाहती हूँ।
4: भाई बहन के पवित्र रिश्ते और प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे अपने भाइयों को राखी भेजने के लिए डाकघरों में बहनों की भीड़ बढ़ने लगी है। तस्वीरें महाराष्ट्र के अकोला की है। यहाँ के RMS पोस्ट ऑफिस में इन दिनों रक्षाबंधन को लेकर खास व्यवस्था की गई है। राखी भेजने वाली बहनों और अन्य ग्राहकों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए RMS की ओर से स्पेशल काउंटर शुरू किया गया है, जो रात 9 बजे तक काम करता है। इससे बहनों को सामान्य डाक और पार्सल की लंबी कतार में खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ रही है और राखी जल्दी पोस्ट की जा रही है।
8: हर बहन अपने भाइयों को एक राखी भेजती है, जो उन तक पहुंचाना ये हमारी जिम्मेदारी है और इससे मद्देनजर जो भीड़ है, वो भीड़ को मद्देनजर रखते हुए हमने एक स्पेशल काउंटर भी शुरू किया है, ताकि हमारी जो बहनें हैं जो राखी भेजने के लिए आई है उनको कम से कम तकलीफ हो।
9: बहुत ही अच्छी सुविधा है, हम लोगों को यहाँ बहुत टाइम लग रहा था पर ये देख के बहुत खुशी हो रही है कि बहनों के लिए राखी के लिए इन्होंने अच्छा आयोजन किया है, नया काउंटर खोला है। हम सभी बहनें बहुत खुशी में है।
4: डाकघर में राखियों को सुरक्षित तरीके से भेजने के लिए वाटरप्रूफ एनवेलप की भी व्यवस्था की गई है, ताकि राखियां खराब न हो। करनाल से कमलदीप, गया से पंकज कुमार, पाली से भरत भूषण जोशी और अकोला से धनंजय साबले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: बात करेंगे नए वर्ल्ड रिकॉर्ड की। नागपुर में एक साथ 4000 से ज्यादा लोगों ने ढोल और ताशा बजाकर एक अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया और एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज हो गया। करीब 585 ध्वजधारकों ने अपने अपने दल के साथ सहभागिता दर्ज कराते हुए नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अधिकारियों ने आयोजकों को सर्टिफिकेट भी प्रदान किए। इस खास मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे।

0: पूर्वी उत्तर प्रदेश और खासकर गोरखपुर को नई सौगात मिलने जा रही है। जी हां, लखनऊ और अहमदाबाद की तर्ज पर अब वहां पर भी रिवर फ्रंट विकसित करने की तैयारी है। ये रिवर फ्रंट जो है राप्ती नदी के किनारे विकसित किया जाएगा। रिपोर्ट देखिए।
1: गोरखपुर में कल कल बहती राप्ती नदी का और उनके किनारों का ये मनमोहक नजारा बेहद आकर्षक है। नदी किनारे बने घाटों पर बैठकर सुकून के कुछ पल गुजारने का अपना ही मजा है। अब इस इलाके को और भी आकर्षक बनाने की तैयारी हो रही है। गोरखपुर में राप्ती नदी के तट का अब कायाकल्प होने जा रहा है। लखनऊ के गोमती और अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर राप्ती नदी के किनारे शानदार रिवर फ्रंट विकसित करने की योजना बनाई जा रही है। इसे अब साकार करने की दिशा में काम शुरू हो रहा है।
2: इसी योजना के क्रम में जो है एक प्रारंभिक जो है रिपोर्ट जो संबंधित वेंडर था उनके द्वारा जो है प्रस्तुत की गई है। क्योंकि ये प्रारंभिक रिपोर्ट है तो इसमें इन्होंने कुछ चीजें जो मेंशन करी हैं, जिसमें इसमें पार्क भी है, इसमें ग्रीन स्पेसेस भी हैं, इसमें पब्लिक के लिए भी कन्वेंशन सेंटर लेकर ये रिवर फ्रंट की बात यहाँ पर चल रही है।
1: राप्ती रिवर फ्रंट के प्रोजेक्ट की DPR तैयार हो चुकी है। इस पर करीब 1,303 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसके तहत गोरखपुर के राजघाट से डोमिनीगढ़ तक राप्ती नदी के करीब 3.5 किलोमीटर लंबे तट को रिवर फ्रंट के रूप में विकसित किया जाएगा। इसमें नदी के तट से हर्बर्ट बांध पर बनी 4-लेन सड़क की ओर करीब 150 मीटर चौड़ाई में विकास कार्य कराया जाएगा, ताकि आम लोग इसका पूरा लाभ उठा सके।
2: जब आप नदी के किनारे विभिन्न आयामों में आप वहाँ पे टूरिज्म की तमाम गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं, जैसे चाहे वो बोटिंग हो, चाहे वो घाट पे बैठना हो, चाहे वो आसपास पार्क में सुबह की सैर करना हो, शाम की सैर करना हो, या कोई भी कॉलेज का इवेंट हो, कोई कल्चरल इवेंट हो, कोई पारिवारिक इवेंट हो, तो वो भी रिवर फ्रंट पे एक जिसे कहते हैं कि एक लाइवली माहौल वहाँ पर एक कल्चरल एक संध्या के रूप में आप देखें, सुबह भी आप टहलने वहां जा सकें और बच्चों के साथ भी वहां सा और परिवार का समय व्यतीत कर सकें, इस तरह की पूरी परिकल्पना जो है इस रिवर फ्रंट पर की जाती है।
1: राप्ती रिवर फ्रंट के पूरे प्रोजेक्ट को 3 चरणों में पूरा करने की योजना है। सड़क तक विकसित किए जाने वाले हिस्से को ग्रीन बेल्ट के रूप में विकसित किया जाएगा। साथ ही यहाँ पर अर्बन हॉट, योग सेंटर और कन्वेंशन सेंटर जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इसके अलावा जगह जगह बोटिंग की सुविधा देने की भी तैयारी है। माना जा रहा है कि परियोजना पूरी होने के बाद राप्ती नदी का ये इलाका गोरखपुर के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल हो सकता है। गोरखपुर से गजेंद्र त्रिपाठी के साथ रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: बीजिंग में दूसरा वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स यानी रोबोट ओलंपिक चल रहा है। जी हाँ, इसमें 2000 से ज्यादा ह्यूमनॉइड रोबोट न केवल फुटबॉल, टेनिस, बॉक्सिंग, बैडमिंटन और एथलेटिक्स में अपना हुनर दिखा रहे हैं, बल्कि नए नए रिकॉर्ड्स बनाकर इंसानों को दंग भी कर रहे हैं। इसमें से एक रोबोट ने मशहूर धावक हुसैन बोल्ट का रिकॉर्ड तोड़ दिया। जी हाँ, तो एक ने हाई जंप में इंसान को पीछे छोड़ दिया। रिपोर्ट देखिए।
3: रॉकेट जैसी रफ्तार, दौड़ शानदार।
4: ह्यूमनॉइड रोबोट रेसिंग की ये तस्वीरें बीजिंग की हैं, जहां 100 मीटर की दौड़ में नया इतिहास रचा गया।
3: यहां पर तियानजोउ नाम के ह्यूमनॉइड रोबोट ने दुनिया के सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट के 100 मीटर के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। तियानजोउ रोबोट ने 100 मीटर की दौड़ सिर्फ 9.39 सेकंड में पूरी कर ली, जबकि जमैका के धावक हुसैन बोल्ट ने ये दूरी 9.58 सेकंड में पूरी की थी। बोल्ट ने 2009 में बर्लिन में हुई वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सबसे कम समय में 100 मीटर दौड़ पूरी करने का शानदार रिकॉर्ड कायम किया था। 100 मीटर की दौड़ में बोल्ट का ये रिकॉर्ड 17 सालों से कायम है और कोई इंसान तो इसे अब तक नहीं तोड़ सका है। लेकिन अब एक रोबोट ने बोल्ट के उस ऐतिहासिक रिकॉर्ड को ध्वस्त करके नई मिसाल कायम कर दी है। जिस रोबोट ने ये कमाल कर दिखाया है उसे बीजिंग इनोवेशन सेंटर ऑफ ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स ने बनाया है। वही इससे पहले एक टेस्ट रन में चीनी कंपनी ऑनर के रोबोट ने 100 मीटर की दूरी तय करने में केवल 9.32 सेकंड का समय लिया था। बीजिंग में चल रहे ह्यूमनॉइड रोबोट्स के मुकाबले में नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। इसी दरमियान एक रोबोट ने स्टैंडिंग हाई जंप में 2.88 मीटर से ऊंची छलांग लगाकर इंसानों और पिछले सभी रिकॉर्ड्स को पीछे छोड़ दिया। चीन की रोबोटिक्स कंपनी यूनिट्री के ह्यूमनॉइड रोबोट ने हाई जंप में ये कमाल कर दिखाया है। स्टैंडिंग हाई जंप की स्पर्धा में रोबोट ने 2.8843 मीटर तक ऊंची कूद का नया रिकॉर्ड कायम कर डाला। और हाई जंप में भी इंसानों यानी मानव एथलीट के पुराने रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया। बीजिंग में शनिवार को दूसरे वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स का शुभारंभ हुआ। ओपनिंग सेरेमनी में हुई 400 मीटर रेस में चाइना के तियांगोंग ह्यूमनॉइड रोबोट ने 39.7 सेकंड का समय निकालकर पहला स्थान हासिल किया। इससे पहले ओपनिंग सेरेमनी के दौरान हुए रंगारंग कार्यक्रम में इंसान केवल दर्शक थे, जबकि स्टेडियम में ट्रैक से लेकर पूरे एरिना में मौजूद हजार से ज्यादा ह्यूमनॉइड रोबोट्स ने अपनी तकनीकी क्षमता का अनूठा प्रदर्शन किया, जिसे देखकर लोग दंग रह गए। मनमोहक म्यूजिकल परफॉर्मेंस से लेकर नेशनल स्पीड स्केटिंग ओवल में टीमों के मार्चिंग दस्ते के रूप में हर इवेंट में शानदार तालमेल के साथ रोबोट फॉर्मेशंस दर्शकों को अलग ही कल्पना लोक में ले गए, जिसे वे अपनी आंखों के सामने साकार होते देख रहे थे। इस दौरान 36 रोबोट्स की टीम ने मेलेडी ऑफ द फ्यूचर के नाम से भव्य संगीत और सुरों का समा बांध दिया। वहीं स्पर्धाएं शुरू होने से पहले ओपनिंग सेरेमनी में ही तमाम रोबोट्स ने अलग अलग खेलों में अपने हुनर की झलक पेश की। बीजिंग में 5 दिन के वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स में 16 देशों के 2056 रोबोट्स की 666 टीमें भाग ले रही हैं। ये रोबोट 51 इवेंट्स की 1300 से ज्यादा स्पर्धाओं में अपना कमाल दिखाएंगे और ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि आने वाला कल इनका ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: सावन के अंतिम सोमवार का क्या है पूजा विधान? सावन के अंतिम सोमवार पर कौन सी मनोकामनाएं होंगी पूरी और कैसे मिलेगा शिव जी का वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
11: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
6: सावन के अंतिम सोमवार का क्या है पूजा विधान? सावन के अंतिम सोमवार पर कौन सी मनोकामनाएं होंगी पूरी और कैसे मिलेगा शिव जी का वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
11: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
6: सावन के अंतिम सोमवार का क्या है पूजा विधान? सावन के अंतिम सोमवार पर कौन सी मनोकामनाएं होंगी पूरी और कैसे मिलेगा शिव जी का वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
7: और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी
6: सावन के अंतिम सोमवार का क्या है पूजा विधान? सावन के अंतिम सोमवार पर कौन सी मनोकामनाएं होंगी पूरी और कैसे मिलेगा शिव जी का वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
0: सावन के आखिरी सोमवार पर आज मंदिरों में विशेष तैयारी, पावन मौके पर आज बन रहे हैं कई शुभ संयोग। इस साल सावन महादेव की कृपा पाने का यह आखिरी मौका है। मुंबई के पंडालों में पधार रहे हैं गणपति बप्पा, काली चौकी के महाराजा के स्वागत में उमड़े हजारों श्रद्धालु, ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत। अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर बदली गई धर्म ध्वजा, वैदिक मंत्रोच्चारों के बीच पूरे विधि विधान के साथ निभाई गई परंपरा। नटवा के द्वारकाधीश मंदिर में पारंपरिक काली घटा का आयोजन, फूलों और आकर्षक लाइटों से मनमोहक हुआ दृश्य, ठाकुर जी के दर्शन कर गदगद हुए भक्त। बारिश के लिए जैसलमेर के पुरोहितेश्वर राम महादेव मंदिर में महारुद्राभिषेक, 121 रुद्र पाठी पंडितों ने किया सामूहिक रुद्री पाठ, मंत्रोच्चार से गूंजा परिसर। अजमेर में दिखी राजस्थानी संस्कृति की झलक, मातृशक्ति मॉनसून महोत्सव में जुटी हजारों महिलाएं, मेगा लकी ड्रॉ और मेडिकल कैंप्स का आयोजन। नागपुर में 4,000 से ज्यादा युवक युवतियों ने ढोल ताशा बजाकर बनाया अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में

0: नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आज गोलमेज की यह चर्चा यानी राउंड टेबल पर हम आज एक बहुत ही विशिष्ट अतिथि के साथ जुड़े हुए हैं। बागेश्वर सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हमारे साथ हैं। नेहा बाथम, सईद अंसारी, राजीव ढोंडियाल और पूजा शर्मा, हम पांच साथ मिलकर आपसे आज प्रश्न पूछेंगे। असल में प्रधानमंत्री जी ने ही कुछ दिन पहले IIT में एक संबोधन में कह दिया
1: जी
0: कि मैं बाग बाग बागेश्वर नहीं हूं जो आपके मन की बात जानूं।
1: जी,
0: युवाओं के बीच बैठे थे वो
1: जी।
0: क्या बाबा बागेश्वर युवाओं के मन की बात जानते हैं, और जानते हैं तो जेन जी की उस बात को कैसे रखें?
1: देश के नायक के रूप में प्रधानमंत्री जी मन की बात जानते भी हैं, समय परिस्थिति को भी नहीं जानते, और ये हमारे लिए और हम सबके लिए विशिष्ट बात ये है कि ऐसे वो जननायक हैं, 140 करोड़ लोग हैं, अनेक महापुरुष संत, और वो हमारे जैसे छोटे से व्यक्तित्व को, छोटे से आदमी को स्मरण रखते हैं। ये बहुत बड़ी बात है और उनकी असाधारण प्रतिभा के वो धनी है, इसमें कोई संदेह नहीं। दूसरी बात, आपको एक बात हम बहुत मजेदार बताएंगे, हम एक साल चूक गए हैं जैन जी होने से।
2: हमारा दृष्टि में तो आप जैन
1: जी,
2: आप जैन
1: 1996 में हम आए और 97 के बाद में जो है जैन जी के लिए कहा गया, तो
2: चेंज कर देते हैं उसको।
1: ऐसा यदि हो जाए,
2: हो गया, हो गया,
1: बहुत धन्यवाद।
0: ये दोनों मध्य प्रदेश के लोग बैठ के आपस में कोई साजिश न बोले
3: कर रहे हैं।
1: जी जी, लेकिन हमें पता है कि हम कितनी भी सांठगांठ कर लें, आप लोगों के अंदर जो भगवत कृपा है, देवी अनुकंपा है, और जो आपका अध्ययन है, जो आपके पास लॉजिक तर्क है, हम लोगों की सांठगांठ चलेगी नहीं। जब देश की सांठगांठ नहीं चलती तो हम लोगों की सांठगांठ कहाँ चलेगी।
2: श्वेता ने मुझसे पूछा क्या पूछोगे, मैंने कद्दू पूछेंगे सारा, तो आप जानते हैं मन की बात।
3: वाह, ये जो जैन जी का क्योंकि जिक्र चला है, जिस तरीके से प्रदर्शन के जरिए सारी बांगों को उठवाया जा रहा है, एक नया ये ट्रेंड शुरू हुआ है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या ये सही है?
1: अपनी बात रखना ठीक है, आंदोलन करना ठीक है, हक के लिए लड़ना ठीक है, पर आंदोलन सबसे अंतिम सीमा है अपनी बात रखने का। अनेक माध्यम है, पत्राचार माध्यम है, संवाद माध्यम है, केवल अपने बयान देना एक माध्यम है, सबसे लास्ट में है आंदोलन। लेकिन आंदोलन हो, लेकिन वो उसमें फुहारता ना हो, देश में अराजकता ना फैले, देश में हिंसा ना फैले, और हम किसी की भी मां बहन को गाली ना, इतना ख्याल रखें कि हम अपनी बात रखें लेकिन देश में अराजकता ना हो। दूसरी बात, टेबल राउंड के इस माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम एक प्रार्थना करना चाहते विशेष रूप से, जैन जी सड़कों पर ही न आए, हम चाहते हैं सरकार एक नया रास्ता चुने, सरकार ही जैन जी के पास जाए, एक ऐसा दरवाजा चालू किया जाए, एक ऐसा डोर खोला जाए कि जैन जी को आंदोलन करना ही ना पड़े।
0: कुछ मन में है आपके, कैसे होगा?
1: अरे ऐसे मन में कुछ है नहीं, बस इतना से ख्याल है, इस देश में बहुत बौद्धिक लोग हैं, प्रतिभा के धनी लोग हैं, प्रज्ञा वेधा के धनी लोग हैं, वो इस पर कार्य कर सकते हैं, पर हमारे मन में इतना है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिससे देश की जैन जी अपनी बातें सरकार से सीधी कर पाए।
3: आजकल जैन जी थोड़ा डिल्यूजनल में भी जी रहा है, एक अपना उनका एक वर्ल्ड है,
1: आपने अपने शब्द है, मोय मोय है, और ये भी है, और ये भी है,
3: तरीके से प्यार
1: जिया। हमने दो दिन में अभी सीखा है, जब से दिल्ली आए तब से आप लोगों की ही ये संगत का असर पड़ा, आप लोगों की संगत का असर पड़ा,
3: हम लोगों को भी इतना नहीं पता है जितना
1: हमने इंटरव्यू में ही, और पत्रकार आपके भाई बहन थे वो हमें सिखा रहे।
3: रील से जो ये पॉपुलैरिटी मिलती है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं, कहाँ तक सही मानते हैं, क्या ये आज का नजरिया है, और इसमें शामिल होना क्या बाबा बागेश्वर के लिए भी एक मजबूरी है?
1: वर्तमान के पहले भारत में एक एडिक्शन था, एडिक्ट थे लोग, ड्रग एडिक्ट, अब एक नए एडिक्ट हो गए लोग, ड्रग के बाद सोशल मीडिया एडिक्ट। हम देश को नेशनल लव एडिक्ट करना चाहे, राष्ट्र
0: महाराज जी आपके भी रील वायरल
1: था एडिक्ट, हम भी बनाते, रील बनाना बुरा नहीं, उसी सोशल मीडिया पर सुविचार हैं, संदेश हैं, टेक्नोलॉजी है, जानकारियां हैं, बड़े बड़े विचारकों के संवाद हैं, लेकिन उसी सोशल मीडिया पर कुछ लोगों के दिमागी कचड़े भी, उन्होंने अपने कचड़े उस पर भर रखे, उस कचड़े से संस्कारों पर कुछ प्रभाव पड़ रहा। हमें एक बात समझनी होगी, इस चैनल पर हमें एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहिए, इंस्टाग्राम कहां से हैंडल हो रहा, अमेरिका से, FB कहां से हैंडल हो रही, अमेरिका से, यूट्यूब कहां से हैंडल हो रहा, अमेरिका से, एक्स कहां से हैंडल हो रहा, अमेरिका से, इस देश का एल्गोरिदम किसके हाथ में, अमेरिका के। हमें ये बात समझने से बिल्कुल नहीं चूकना चाहिए कि वो अमेरिका
4: जो भारत पर लगातार दबाव बनाना चाहता है, व्यापारिक दबाव, मानसिक, आर्थिक और लगातार जो है टैक्स भरने के लिए मजबूर करना चाहना,
1: आप
4: तो कहीं हो ना कि हम विदेशी हाथों की कठपुतली ना बन जाए।
2: क्या आप ये कहना चाहते हैं कि ये जो जेंजी आंदोलन में हमने युवाओं की भाषा देखी, वो हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति पर भी अटैक कर रहे हैं?
4: कुछ बच्चे
2: अमेरिका या विदेशी शक्तियां विदेशी के माध्यम से
1: जी,
2: या वो हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति पर अटैक कर रहे हैं उस पर
4: पूर्ण रूप से इस बात से सहमत, निश्चित रूप से कुछ तो ऐसा हो रहा जिससे विदेशी ताकतें भारत की कुछ ऐसी परंपरा को मानने वाले ऐसी समाज को आगे करके प्रेरित करके हमारे देश में ही दंगा फैलाना चाहे, कुछ लोग भारत में बांग्लादेश जैसे हालात करवाना चाहे, कुछ लोग भारत में पाकिस्तान जैसे हालात कराना चाहे। हम चाहते हैं कि आंदोलन हो, पर आंदोलन देश विरोधी ना, आंदोलन हो आंदोलन तिरंगा विरोधी ना, आंदोलन हो आंदोलन किसी माँ बहन की गाली से ना।
3: छोटा सा एक सवाल बीच में, आप टैक्स पे करते हैं? आप टैक्स पेयर हैं?
1: हम तो हैं, आरटीआई लगाओ।
0: शिक्षा नीति में मकौले मुक्त उसको करना है या पहले शिक्षा को पेपर लीक मुक्त करना है?
1: दोनों ही जरूरी, बहुत जरूरी है। सूर्य और चंद्रमा दोनों आवश्यक, दिन और रात दोनों आवश्यक है। हमें लगता है कि सिस्टम में सुधार की आवश्यकता है, शिक्षा में बदलाव की आवश्यकता।
0: एक चीज मैं आपसे पूछती हूँ, क्योंकि आप जातियों को, जातियों का बंटवारा खत्म करके कहते हैं कि हिंदू एक हो रहा,
4: हाँ।
0: और आप इसके लिए आप पदयात्रा भी कर चुके हैं सब,
1: अब अभी हम रथ यात्रा भी करने वाले
0: इसी के लिए।
1: इसी के लिए हमारा उद्देश्य है कि इस देश में जातिवाद और क्षेत्रवाद ना, राष्ट्रवाद, कास्टिज्म नहीं, राष्ट्रिज्म हम चाहें।
0: पर हिंदू राष्ट्र,
1: हिंदू राष्ट्र का अर्थ मुसलमान मुक्त नहीं, हिंदू राष्ट्र का मतलब है सबके साथ। अगर हिंदू हाँ मुसलमान मुक्त होता तो आपकी तरफ भी सबकी नजर जा रही है। हिंदू राष्ट्र का मतलब मुसलमान मुक्त नहीं, हिंदू राष्ट्र का मतलब ईसाई मुक्त नहीं, हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि विचारक, हमें कागजों में हिंदू राष्ट्र चाहिए नहीं, विचारों में हिंदू राष्ट्र चाहिए, हम विचारों को परिवर्तन करना चाहते। और हिंदू कोई एक धर्म नहीं, जीवन शैली है। हिंदू का मतलब वसुदेव कुटुंबकम, हिंदू का मतलब अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा नहीं अहिंसा, हिंदू का मतलब व्यापार बाद में परिवार पहले, ये हिंदू राष्ट्र। हमें नहीं लगता कि ये गलत है, ये तो सबकी मांग होनी चाहिए, इस देश के प्रत्येक नागरिक की मांग होनी चाहिए।
3: बाबा जी अपने राखी से पहले ही बहुत सारी राखियां पहन,
1: हमारी बहुत बहनें हैं,
3: बहुत सारी बहनें जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ पहले ही आपका रक्षाबंधन लग रहा है, मन चुका है।
1: अगर इंटरव्यू हो जाए तो आपकी श्रद्धा जगह तो आप
3: बहनें देख नहीं, हम बांध देते
2: हैं तो आपकी बहुत है
1: जी
2: गर्लफ्रेंड।
1: ये तो राम राम राम राम, आपको लगता है लेकिन हमारे जैसे आदमी ये सब झंझट
2: पा रहे, शादी करेंगे कि नहीं बाबा?
1: हाँ घरवाली लाएंगे,
2: गर्लफ्रेंड से तो शादी करते हैं
1: ना ना भैया, हमारी संस्कारों में पद्धति है, माता पिता हैं हमारे यहाँ पर,
2: आजकल आप जेंजी हैं ये तय हो गया,
3: एक साथ
2: और हर
1: जेंजी से बड़े,
2: हर जेंजी ये कहता है कि भाई पहले हम जानेंगे समझेंगे अपने जीवन साथी को, उसके बाद विवाह।
1: समझना गर्लफ्रेंड बनाना नहीं होता है, ना समझने का मतलब ये थोड़ी कि कोई आपको हाथ पकड़ा है तो आप पूरा हाथ ही दबा दो, जानना समझना किसी के बारे में, विचारों के बारे में।
2: शादी तो करेंगे,
1: शादी आपको क्या लगता है हम लड़ूंगा मन?
0: वो तो कहते हैं कि रिश्ते उनके घर आते रहते हैं,
3: रहते हैं,
0: बहुत जल्दी होगा।
1: अभी हम फर्स्ट में, अभी प्रारंभ में जो हमारे संकल्प चल रहे हैं उन पे हम बहुत कार्य कर रहे हैं। अभी कैंसर हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन 2027 के दिसंबर में फर्स्ट फेज में उसको चालू 2027 में, और हर वर्ष बेटियों का विवाह है वो सब। अभी हमने एक नया प्रकल्प चालू किया धाम पर, वैदिक गुरुकुलम, 80 बच्चे मजदूरों के जिनके माता पिता मजदूर हैं उनके बच्चों का रहना खाना पुस्तक पढ़ाई लिखाई सब फ्री ऑफ कॉस्ट वो चालू किया। तो उसमें केवल हम संस्कृत नहीं सिखाते, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, हॉर्स राइडिंग, तीरंदाजी, सिंगिंग, पूरा वैदिक और सबसे हाईटेक गुरुकुलम। हम सबसे तो नहीं कह सकते हैं, ठीक ठाक।
0: कोई ओलंपिक मेडल भी आएगा आपके?
1: अगर ये सफल होंगे तो निश्चित भगवान ने चाहा।
0: स्वामी रामदेव पे बोलेंगे
1: ये तो हमारे आदर्श
0: तो
5: आपके आदर्श में क्या आप उनकी तरह आप भी मतलब वो हर क्षेत्र में आप जो है चले गए, बहुत बड़े व्यापारी भी, अच्छे व्यापारी भी बन गए हैं, देश को बहुत मतलब रोजगार भी दे रहे हैं, तो क्या आप भी उस दिशा
1: आप क्या चाहते हैं? महात्मा सिर्फ मांगते ही रहे। देखो इस देश में हमारी आज से लेकर के अब तक के जितने भी प्रवचन के इंटरव्यूज या हमारे इंटरव्यू या कथा प्रवचन है सोशल मीडिया या यूट्यूब आदि पर प्रसारित हमारी लाइव कथा प्रसारित टेलीकास्ट है उन सबको आप सुनेंगे। हमने कभी माया छोड़ने के प्रवचन नहीं सुना, हम माया छोड़ने के पक्ष में नहीं। आज 100 रुपया है डॉलर, 100 रुपया है, कल 200 हो जाएगा, आप सबको बाबा बना दोगे तो देश का हाल क्या होगा? हम देश का विकास चाहते, अर्थ से परमार्थ की यात्रा चाहते, अर्थ कमाओ पर परमार्थ में भी लगाओ। हम चाहते हैं दीनहीनों की भी मदद करो। धन कमाना बुरा नहीं है, पर किसी का दिल दुखा करके कमाना, झूठ छल कपट पाखंड अंधविश्वास फैलाकर कमाना महा बुरा है। हम चाहते हैं हर व्यक्ति बिजनेसमैन बने, हर व्यक्ति व्यापारी बने, हर व्यक्ति अर्थ कमाने के स्रोत निकाले, नया आविष्कार करे, नई नई चीजों का आविष्कार करके समाज के सामने प्रस्तुत करे, हर क्षेत्र में वो सर्वगुण संपन्न हो। और बिल्कुल होना चाहिए, हमें स्वामी जी की एक बात बहुत अच्छी लगती, सब में होना चाहिए, कोई बुराई नहीं। हाँ, धर्म का धंधा नहीं होनी चाहिए, धंधे का धर्म तो होता है।
6: वो कौन लोग हैं और धर्म का धंधा कैसे करते हैं? धर्म का धंधा क्या होता है?
1: धर्म का धंधा ये होता है कि हम भगवान के नाम पर झूठ छल कपट के नाम पर दिखावा भय दिखा करके धर्म का चोला ओढ़ करके अपने पेट भरना, ये धर्म का धंधा है। आप कहेंगे आप तो नहीं ऐसा करते, हम कथा करते दक्षिणा मिलती है, हम प्रवचन करते दक्षिणा मिलती है, लेकिन हम मकान नहीं बनाते, अस्पताल बनाते, बेटियों के विवाह कराते हैं, हर दिन 10 से 15 हजार लोगों को निःशुल्क भंडारा कराते हैं। हमारा क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र, वहाँ 200 किलोमीटर में कोई कैंसर हॉस्पिटल नहीं है, तो हमने विचार किया हमारे क्षेत्र में अस्पतालों में मंदिर अब तक बहुत हैं, हम मंदिर में अस्पताल देखना चाहते।
3: महाराज जी, जब आप
1: अब इसके विपरीत जो है वो धर्म का धंधा है।
3: तो जब आप बाहर होते हैं तो इंडिया में क्या चल रहा है उसको ट्रैक करते हैं?
1: नहीं, ट्रैक नहीं, हम रोज न्यूज
3: पढ़ते हैं, लेकिन कई बार ऑनलाइन देखना पड़ता होगा ना, यूट्यूब पे या किसी
1: चलाते
3: हैं।
1: जी, उस ऐप को क्या लगता है
3: कौन सा ऐप सबसे ज्यादा आप इस्तेमाल करते हैं?
1: एक्स हैंडल करते हैं,
3: एक्स हैंडल,
1: और इंस्टाग्राम करते हैं,
3: इंस्टाग्राम
0: खुद से करते हैं।
3: आपका भी समय जाता है ऐसे?
1: 40 मिनट तो जाता है,
3: 40 मिनट,
1: 30 मिनट, 40 मिनट न्यूज पूरी पढ़ने में, आज कहां क्या क्या किसने क्या क्या वहां बयान दिया, कहां पर क्या चल रहा है, एक एक न्यूज को हमें, क्योंकि इसलिए भी अपडेट हमें रहना पड़ता है कि जैसे ही उतरो तुरंत बताइए बाबा ये क्या, अब बाइक लगाने वाले आप लोग होते हो, बाबा बड़ा ज्ञानी बनता था, बोल नहीं
2: पाता। मेरे सारे साथी देखिए आपसे बहुत सख्त प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं तो मंत्र मुख दूंगा, देख रहा हूँ आपको, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आपको देखता रहूंगा।
1: जी जी, आप बहुत सज्जन,
2: आप बैठ मेरे पास, तुझे देखता रहूं। ये बताइए कि इतना सुंदर हनुमान जी भी हैं,
1: जी
2: लग रहा है कि बहुत ही डिजाइनर, वो शानदार आपने कुर्ता पहना, कौन डिजाइन करता
1: है? हमारी डिजाइनिंग ऐसी है कि जो भी आता है वो श्रद्धा से दे जाता है, कोई फिक्स डिजाइनर नहीं।
2: अच्छा,
1: लोगों की इच्छा है, हमारे प्रति भावना जो जुड़े हैं।
2: ये भी कुर्ता किसी ने दिया है?
1: हम
2: कितने खुश हो रहे
1: हैं, खुद के कहा, उनका हृदय बड़ा इलाजित होता है कि गुरु जी ने पहन लिया।
2: तो आपका
1: है चाहेंगे कि इस इंटरव्यू के बाद में आप भी एक आध श्रद्धा दिखाओ। आपको भी मन में ये आना चाहिए कि हमारा दिया हुआ कुर्ता कोई महात्मा पहने,
3: वो तो कोट देंगे,
1: कोट ना दे, कोट का करें।
2: अच्छा, हम शानदार टी शर्ट देंगे आपको,
1: बाहर में गया हम ले भी
3: पैंट भी लेंगे,
1: और अब आप मना ना कर पाएंगे क्योंकि आपने बोल दिया है कि हमने भगवान ने अगली बार कमेंट ही कर देंगे कि बड़े बड़े नहीं आ रहे हमने देखे,
2: तो मतलब कुर्ता ही पहनेंगे आप?
1: नहीं नहीं, आप टी शर्ट दो, हम कहने देंगे
2: टी शर्ट पहनेंगे,
1: कोई लेकिन इसका मतलब ये नहीं कल तुम जींस पैंट ले आओ, बोला पहनेंगे
2: टी शर्ट के साथ जींस भी देंगे।
1: ना ना, हम बोना पहनेंगे पहले ही,
2: क्यों पहने? अच्छा तो है जींस पैंट पहनना, उसमें कोई आपत्ति है कोई?
1: अरे भाई कोई आपत्ति नहीं, पुलिस वाला पुलिस की ड्रेस पहन करके ना आए तो आप सीधा गए सबके भाई अपने अपने रूल होते हैं, ड्रेस कोड होता है देश में, डॉक्टर का ड्रेस कोड है, पुलिस का ड्रेस कोड है, साधु का भी भैया ड्रेस कोड है, उससे इंस्पायर होते हैं लोग कि हम स्पिरिचुअल है। भैया आप क्या चाहते हो?
3: महाराज जी, हाल ही में कांवड़ यात्रा को लेकर बहुत सारी बातें कही जाती हैं कि आजकल आस्था के नाम पर एंटरटेनमेंट ज्यादा हो रहा है, बड़े बड़े डीजे, लाउड म्यूजिक, रास्ते में अवरोध होता है, पुलिस प्रशासन की सख्ती के बावजूद हमने देखा कई, आपने भी देखे होंगे वीडियोस वायरल हुए जिसमें गंदगी फैलाई गई हरिद्वार के तटों पर, जहां पर बहुत टनों वेस्ट छोड़ा गया जो गंदे कपड़े थे, ऐसे इस पर अंकुश और लगाम लगे कि हम आस्था को भी
1: चोर यात्रा बंद करवाने की बात
3: नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि उस
1: ठीक पर, करने की
3: उसको कैसे ठीक करें ताकि उसमें से एंटरटेनमेंट का एलिमेंट माइनस हो जाए।
1: सजगता और सद्बुद्धि है उसको ठीक भर ऐसे करना है कि हम कचरा जमीन पर ना फेंकें, कचरे को कूड़ेदान में ही डालें और धर्म आस्था को सिर्फ इंजॉयमेंट में, आस्था की पवित्रता, आस्था में श्रद्धा, दोनों उच्चतम सीमा पर बनाए रखें। कांवड़िया बड़े भगवान के शिव भक्त होते हैं, अद्भुत भक्ति करते हैं, पैदल चलते हैं, उसमें कुछ विचित्र लोग भी होते हैं। तो तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, कछु मानस कछु देवता कछु जय जय सीताराम, सब प्रकार के लोग बहन होते हैं, सबकी अपनी अपनी मते होती है, सब में सब प्रकार के होते हैं। पर हम इतनी बात जरूर कहेंगे आने वाले दिनों में इसकी कांवड़ियों का भी एक विशेष, सरकार तो बहुत कार्य करती है, कांवड़ियों भी एक समझेंगे कि हमको जो है देवतीर्थ में गंगा के किनारे रास्ते पर सड़क पर कोई भी ऐसा कृत्य नहीं करना जिससे हमारे सनातन पर उंगली उठे।
3: अब बड़े बड़े साधु हैं जो इस चीज को लेकर मतलब वो गंगा जी के लिए प्राण समर्पित कर देते हैं, ये भी उन कांवड़ियों को अपने भक्ति के जोश में सोचना चाहिए। जितने जितने शांति से आप अपनी बात रख रहे हैं, आप अपनी बात मनवा भी लेते हैं, ठीक है। कुछ लेकिन जेंजी कुछ युवा है जो अभी लद्दाख का वीडियो का आप जिक्र कर रहे थे, उसमें उतना गुस्सा जो उस महिला का था और वो कह रही है हम जेंजी है, हम प्रदर्शन पे बैठ जाएंगे, यहीं बैठ जाएंगे, तो उन युवाओं के लिए क्या संकेत हैं? गुस्से से ज्यादा बेहतर है शांति से अपनी
1: बात, हर रास्ते हर हल हर विवाद किसी भी समस्या का समाधान, संवाद ही समस्या का। देश में प्रेम बांटो ना, देश में एकत्व बांटो ना, देश में हम विवाद क्यों चुने, संवाद क्यों ना चुने? चार दिन की जिंदगी किसके लिए? और आपके आंदोलन कर देने से हो भी क्या जाना? हम सरकार को समझाएं भी, सिस्टम को सुधारें भी, पर देश को बिगाड़ें तो ना। आने वाली अल्फा बीटा जनरेशन को हम आंदोलन की बातें देकर के जाएंगे, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हम नेशन प्रेम की बातें देकर जाएं, लव और पीस की बातें देकर जाएं। तो हमें लगता है कि अब वर्तमान ये जो सोच वायरल होने का जो वायरल चढ़ा ना, ये बहुत खतरनाक है। हम पूरे भारत को ड्रग एडिक्ट अथवा सोशल मीडिया

0: ना ना चला रहे हैं, बस धाम पर है अभी।
1: अच्छा, बात की जगह नहीं कर,
0: कथाओं में भी होता है सब, लेकिन व्यस्तता पूर्ण जगह ज्यादा बढ़ गई। कथाओं, कथाएं ज्यादा, विदेश यात्रा ज्यादा, और पद यात्रा की तैयारी, कन्या विवाह की तैयारी, गुरुकुलम की तैयारी, कैंसर हॉस्पिटल की पर्ची तो निकाले। वो तो जब तक जीना है तब तक भगवान ने जो कृपा दे रखी उस लगातार चला। अब आप लोग कम पर्ची दिखा रहे हैं ये कह सकते
2: हैं। महाराज जी, आप इतनी विदेश यात्रा करते हैं, लेकिन जब आप तुलना करते हैं भारत की और विदेश की, असीम और अपार संभावनाएं ऐसी जो भारत में, जिसको हम यूज नहीं कर पा रहे हैं, जिसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, जो विदेश में नहीं भी है फिर भी उन लोगों ने उसे डेवलप कर दिया। मसलन दुबई एक रेत था, रेतीला वहां पर मैदान था, फिर भी इतना डेवलप वो जगह बन गई है। ऐसी कौन सी संभावनाएं आपको हिंदुस्तान में भी दिखाई देती हैं जिस पर हम काम कर सकते हैं?
0: भारत में सब कुछ बस प्रस्तुतीकरण, हमारी प्रस्तुतीकरण प्रेजेंटेशन ठीक है। वो अपने पहाड़ खुदे हुए पहाड़ों को भी टूरिस्ट प्लेस बता रहे हैं, हमारे यहाँ ऑलरेडी टूरिस्ट प्लेस है। तो हमें लगता है भारत का प्रस्तुतीकरण ठीक होना चाहिए। एक, भारत की शिक्षा व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, भारत की स्वच्छता पर काम करना चाहिए। फर्स्ट, यदि भारत को ठीक करना है तो दो जगह सफाई होनी चाहिए, भारत की सड़कों पर और कोनों में, और दिमाग
2: दिमाग की पहने से दिमाग में सफाई कथा के साथ होगी, बाकी सफाई सरकार को करनी है।
0: नहीं नहीं नहीं, वो दिमागी सफाई कथा से तो हम सिर्फ विचार दे सकते हैं, स्वीकार तो आप करेंगे, स्वीकार तो लोग करेंगे, हम तो कह सकते हैं, मानना ना मानना अभिव्यक्ति की आजादी, इतना कह सकते हैं कि आप बेहतर जीना चाहते तो हमारे पास वही विचार है, और विचार सदविचार बुरे विचारों को ठीक कर, पर कोई स्वीकार करे तब ना।
3: नई पीढ़ी आपको कितना सुनती है, मतलब आप भी कभी मतलब कुछ
0: ये डाटा तो आप ही ला सकते हैं। हमें कितना सुनती है, हमारे बारे में कह पाना बहुत मुश्किल होगा, हम नहीं कह सकते हम कितने अच्छे आदमी, हम आपके बारे में कह सकते।
1: ऐसा होता है कि अलग अलग पीढ़ी के लिए अलग भाषा को इस्तेमाल करनी है कि भाई, क्योंकि आजकल पीढ़ियों में ऐसा बांट दिया कि हर व्यक्ति के दिमाग में आता है कि भाई मैं कौन सी पीढ़ी, सबने पता किया है कि हम कौन सी पीढ़ी,
0: आप कौन है,
3: जेन जी,
1: जेन
3: जी,
0: आप यदि जेन जी,
3: मैं भी श्वेता और हम जेन जी हैं, मैं बता दूं
0: ऐसा,
3: मैं जेन जी घोषणा कर
0: देंगे हम, आप यदि अपने
1: आप लोग 25 से एक साल ऊपर कभी नहीं होगा,
3: कभी नहीं, कभी नहीं,
0: फिर हमको अल्पा बीटा की घोषित करना पड़ेगा अपने आप,
1: उम्र तो दिमाग में होती है ना।
0: अल्पा बीटा की बात कौन सी आई,
1: बीटा की
3: बात, बीटा चल,
1: अभी तो बीटा चल रहा
0: है, अल्फा
2: महाराज जी, आप एक आम जीवन से इस जीवन में कैसे परिवर्तित हुए, कौन सी वो आदतें थी आपके अंदर जो आपने बदलाव किया और आप बाबा बागेश्वर बन गए?
0: हम बचपन से ही उल्टे थे,
2: उल्टे थे, क्या उल्टे काम किए आपने?
0: हाँ, कोई ऐसे उल्टे काम नहीं किए बहन, बचपन से ही हमने, हमको किसी ने बाबा बनाया,
2: कैसे
0: बनाए ही थे,
2: मैंने बनाया,
0: हमारा परिवार पूरा सामाजिक के साथ साथ धार्मिक में खूब सरोवर था। हमारे ग्रैंड फादर हनुमान जी के परम भक्त, उन पर हनुमान जी की विशेष अनुकंपा थी, एनलाइटमेंट था उनको, एनलाइटेड थे, उनके चरणों में रहे, हनुमान जी की सेवा बचपन से ही, हमारे पिताजी माताजी, हमारे दादाजी, दादाजी के भी पिताजी परदादा, तो हम जहाँ जिस गांव में हमारा जन्म हुआ वहाँ बालाजी का जो मंदिर है वो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी पूजा करते ही आ रही, तो वंशानुगत पूजा कर रहे हैं, तो दादाजी वहाँ रहते थे, तो दादाजी की हमारे यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी कोई ना कोई एक वहाँ का पीठपति या पीठाधीश्वर होता है। दादा ने हम पर कृपा की, गुरु ने हम पर दृष्टि डाली, तो हम बचपन से ही धार्मिक के धर्म के प्रति लगाव था ही, परिवार का माहौल ही ऐसा था, फिर दादाजी ने कृपा की तो गुरु अद्भुत मिल गए, तो फिर जीवन परिवर्तित हो गया, तो हम बाबा बने नहीं, बने बनाए हुए हैं, समान थे।
1: पर लेकिन आपकी बातों के साथ मतलब भले एक साल से आप कह रहे हैं कि चूक गए, लेकिन आपको फिर भी इस नई पीढ़ी के ही का ही आप प्रतिनिधित्व एक तरीके से करते हैं, जो सोशल मीडिया से लेकर और एक कथा वाचन तक सबको अपनी बातें अपने विचार सुना रहा है, यात्राएं कर रहा है और आगे भविष्य के भारत के लिए एक उम्मीद बनाए हुए है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।
4: सावन के आखिरी सोमवार को लेकर भक्तों में भारी उत्साह है, शिवालयों में खास तैयारियां की जा रही हैं, सावन शिव का महीना है और शिव को

0: यह है सोमवार का दिन। ऐसे में आखिरी सोमवार मनोकामना पूर्ति का भी दिन है। शिवलिंग पर जलाभिषेक और पूजा पाठ से भोलेनाथ को आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है, वरदान पाया जा सकता है।
1: सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। अगर ये सोमवार सावन महीने का है, उसका महत्व और भी बढ़ जाता है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सावन के सोमवार का खास महत्व बताया गया है। सावन का महीना भी अब जल्द ही समाप्त होने वाला है और 24 अगस्त को सावन का आखिरी सोमवार है। ऐसे में शिव भक्तों के पास भी इस सावन के महीने में आखिरी मौका है भोलेनाथ को प्रसन्न करने का। सावन के आखिरी सोमवार को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। अगर आपने सावन के किसी भी सोमवार को पूजा नहीं की है, व्रत नहीं रखा है, तो इस सोमवार को पूजा करने और व्रत करने से भी आपकी मनोकामनाएं पूरी हो सकती है। सावन के आखिरी सोमवार पर एक साथ कई शुभ योग संयोग भी बन रहे हैं। सावन के आखिरी सोमवार पर इस बार प्रीति योग, आयुष्मान योग, पवित्रता एकादशी वैष्णव, हंस राज योग, बुद्धादित्य राजयोग, क्योंकि सिंह राशि में सूर्य बुध की युति बनेगी। अगर आप भी सावन के पहले 3 सोमवार का व्रत नहीं कर पाए हैं, तो कोई बात नहीं, आप इस सोमवार का व्रत करेंगे तो पुण्य की प्राप्ति होगी। सावन के आखिरी सोमवार पर सुबह सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहने, इसके बाद भगवान शिव का ध्यान कर व्रत या पूजा का संकल्प ले, शिवालय जाएं और शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और 11 या 21 बेलपत्र अर्पित करें। एक एक बेलपत्र अर्पित करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें। इसके बाद घी का दीपक जलाकर आरती करें और इस दिन जरूरतमंद लोगों की मदद करें और दान भी दें, जैसे वस्त्र, अन्न, फल आदि चीजों का दान आप कर सकते हैं। शिव चालीसा या रुद्राष्टक का पाठ करें। सावन के आखिरी सोमवार पर रुद्रा अभिषेक करने की भी विशेष मान्यता है। कहा जाता है कि इस दिन पूजा पाठ जप तप करने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
0: अभी गणेश उत्सव में काफी दिन है, लेकिन तैयारियां जोरों पर हैं। मुंबई के लालबाग परेल इलाके में काला चौकी में आज गणपति बप्पा का आगमन हुआ। तस्वीरें देखिए, मुंबई के प्रसिद्ध गणेश उत्सव पंडालों में से एक। गणेश चतुर्थी के दौरान विघ्नहर्ता की बहुत सुंदर भव्य मूर्ति स्थापित की जाती है। गणेश उत्सव के दौरान दर्शन करने के लिए हजारों भक्त यहां पर आते हैं। जैसे जैसे गणेश उत्सव की तारीख जो है नजदीक आ रही है, बप्पा की मूर्ति अलग अलग पंडालों में लाई जा रही है ताकि महोत्सव के दौरान भव्य और दिव्यता प्रदान की जा सके। 2 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन में दिखा रहे हैं, कितनी बड़ी संख्या में तमाम श्रद्धालु बढ़ चढ़कर स्वागत कर रहे हैं बप्पा के आगमन का।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
6: सावन के अंतिम सोमवार का क्या है पूजा विधान? सावन के अंतिम सोमवार पर कौन सी मनोकामनाएं होंगी पूरी और कैसे मिलेगा शिव जी का वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
1: सावन के आखिरी सोमवार पर आज मंदिरों में विशेष तैयारी। पावन मौके पर आज बन रहे हैं कई शुभ संयोग। इस साल सावन महादेव की कृपा पाने का ये आखिरी मौका है। मुंबई के पंडालों में पधार रहे हैं गणपति बप्पा। काली चौकी के महाराजा के स्वागत में उमड़े हजारों श्रद्धालु, ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत। अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर बदली गई धर्म ध्वजा। वैदिक मंत्रोच्चारों के बीच पूरे विधि विधान के साथ निभाई गई परंपरा। के द्वारकाधीश मंदिर में पारंपरिक काली घटा का आयोजन। फूलों और आकर्षक लाइटों से मनमोहक हुआ दृश्य। ठाकुर जी के दर्शन कर गदगद हुए भक्त। बारिश के लिए जैसलमेर के पुरोहितेश्वर राम महादेव मंदिर में महारुद्राभिषेक। 121 रुद्र पाठी पंडितों ने किया सामूहिक रुद्री पाठ। मंत्रोच्चार से गूंजा परिसर। अजमेर में दिखी राजस्थानी संस्कृति की झलक। का मातृशक्ति मानसून महोत्सव में जुटी हजारों महिलाएं। मेगा लकी ड्रॉ और मेडिकल कैंप्स का आयोजन। नागपुर में 4,000 से ज्यादा युवक युवतियों ने ढोल ताशा बजाकर बनाया अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड। एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। सावन के आखिरी सोमवार को लेकर भक्तों में भारी उत्साह है। शिवालयों में खास तैयारियां की जा रही हैं। सावन शिव का महीना है और शिव को प्रिय है सोमवार का दिन। ऐसे में आखिरी सोमवार मनोकामना पूर्ति का भी दिन है। शिवलिंग पर जलाभिषेक और पूजा पाठ से भोलेनाथ को आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है, वरदान पाया जा सकता है।
2: का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। अगर ये सोमवार सावन महीने का है, उसका महत्व और भी बढ़ जाता है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सावन के सोमवार का खास महत्व बताया गया है। सावन का महीना भी अब जल्द ही समाप्त होने वाला है और 24 अगस्त को सावन का आखिरी सोमवार है। ऐसे में शिव भक्तों के पास भी इस सावन के महीने में आखिरी मौका है भोलेनाथ को प्रसन्न करने का। सावन के आखिरी सोमवार को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। अगर आपने सावन के किसी भी सोमवार को पूजा नहीं की है, व्रत नहीं रखा है, तो इस सोमवार को पूजा करने और व्रत करने से भी आपकी मनोकामनाएं पूरी हो सकती है। सावन के आखिरी सोमवार पर एक साथ कई शुभ योग संयोग भी बन रहे हैं। सावन के आखिरी सोमवार पर इस बार प्रीति योग, आयुष्मान योग, पवित्रता एकादशी वैष्णव, हंस राज योग, बुद्धादित्य राज योग, क्योंकि सिंह राशि में सूर्य बुध की युति बनेगी। अगर आप भी सावन के पहले 3 सोमवार का व्रत नहीं कर पाए हैं, तो कोई बात नहीं, आप इस सोमवार का व्रत करेंगे तो पुण्य की प्राप्ति होगी। सावन के आखिरी सोमवार पर सुबह सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहने, इसके बाद भगवान शिव का ध्यान कर व्रत या पूजा का संकल्प ले शिवालय जाएं और शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और 11 या 21 बेलपत्र अर्पित करें। एक एक बेलपत्र अर्पित करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें। इसके बाद घी का दीपक जलाकर आरती करें और इस दिन जरूरतमंद लोगों की मदद करें और दान भी दें, जैसे वस्त्र, अन्न, फल आदि चीजों का दान आप कर सकते हैं। शिव चालीसा या रुद्राष्टक का पाठ करें। सावन के आखिरी सोमवार पर रुद्रा अभिषेक करने की भी विशेष मान्यता है। कहा जाता है कि इस दिन पूजा पाठ जप तप करने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: अब बात करेंगे मथुरा की। देखिए यहाँ के बांके बिहारी मंदिर में काली घटा उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल होने और बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। दरअसल ऐसी मान्यता है कि सावन में प्रभु को प्रकृति का दर्शन कराने के लिए इस उत्सव का आयोजन किया जाता है। मथुरा ब्रजमंडल में सावन मास में घटाओं का अपना अलग ही महत्व है। कृष्ण की नगरी मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में काली घटा का भव्य आयोजन किया गया, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। दरअसल ठाकुर जी को सावन महीने में प्रकृति का अनुभव कराने के लिए ब्रज में मंदिरों में घटाओं का आयोजन किया जाता है। उसी परंपरा के तहत ठाकुर जी महाराज काली घटा में विराजमान हुए, जिसमें संपूर्ण मंदिर प्रांगण को काले कपड़े और अनेकों प्रकार के फूलों से सजाया गया, शानदार लाइटिंग की गई। यही नहीं, संपूर्ण मंदिर में काले काले बादलों की गड़गड़ाहट, चिड़ियों की चहचहाहट, बिजली कड़कने की आवाज गूंजती रही। मंदिर प्रशासन का कहना है कि घटा से तात्पर्य है ठाकुर जी को बाहर के मौसम की अनुभूति करवाना।
3: हमारे संप्रदाय में ठाकुर जी की सेवा का जो शहीद वह बाल स्वरूप है, और बालक को बाहर के मौसम की अनुभूति कराने के लिए घटाओं के आयोजन होते हैं। और इस आयोजन में जो काली घटा है वह अपने आप में बहुत ही अद्भुत है, जिसमें बालकों की गड़गड़ाहट, चिड़ियों की चहचहाहट और मौसम की एक ऐसी अनुभूति जो लोग देश विदेश से ऐसे देखने आते हैं।
1: सात सज्जा के बाद जब ठाकुर जी महाराज काली घटा में विराजमान हुए, तो मानो धरती प्राकृतिक नजारों से दमक उठी और दर्शन के लिए भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। पूरे सावन मास ये सिलसिला चलता रहेगा। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा, गुड न्यूज टुडे। रंगों की होली तो आप हर साल खेलते होंगे, लेकिन आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं दूध की अनोखी होली की खबर, जो खेली गई है हरिद्वार में। यहाँ की पावन हर की पौड़ी पर होने वाली दूध की होली एक ऐसा ही दिव्य उत्सव है। मुल्तान जोत महोत्सव के खास अवसर पर यहाँ माँ गंगा के आंचल में दूध की धार और आस्था की जोत मिली, तो पूरा वातावरण जो है अलौकिक हो गया।
2: नगरी हरिद्वार में हर की पैड़ी पर उमड़ी श्रद्धालुओं की ये भीड़ उस अनूठी परंपरा की कहानी कह रही है, जो यहाँ पर 115 साल से निभाई जा रही है। देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर स्नान करने आते हैं, गंगा मैया की पूजा और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करने आते हैं। लेकिन ये लोग यहाँ पर ब्रह्म कुंड में माँ गंगा के साथ होली खेलने आए हैं, वो भी रंगों से नहीं बल्कि दूध से। फूलों के साथ दूध से भरी बाल्टियां लेकर माँ गंगा के जयकारे लगाते हुए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर जमा हुए।
4: कि मेरे कारण से गंगा मैली ना हो, गंगा स्वच्छ रहनी चाहिए, हम सबका संकल्प है। आज हम माँ गंगा से दूध की होली खेलते हैं, अपनी श्रद्धा अनुसार जितना भी दूध होता हम प्रवाहित करते हैं, फिर गाड़ी में दूध भर के माँ गंगा से दूध की होली खेलते हैं। और उसके पीछे का उद्देश्य यही है कि जो परंपरा हमारी हिंदू संस्कृति कहती है कि तालाब की पूजा करना, गंगा की पूजा करना, यमुना की पूजा करना, परिवार के साथ हम यहाँ पर आते हैं, लगातार एक सप्ताह ये कार्यक्रम चलता है।
2: दरअसल बताया जाता है कि सन 1911 में पाकिस्तान में रहने वाले व्यापारी लाला रूपचंद पैदल ही हरिद्वार आए थे। उन्होंने गंगा में जोत प्रवाहित की थी ताकि गंगा मैया के आशीर्वाद से उनकी संतान जिंदा रहे और उनके दुख दर्द दूर हो जाए। कहा जाता है कि उनकी यही कामना पूरी हुई थी, तो उसके बाद से हर साल सावन में कांवड़ यात्रा के बाद यहां पर मुल्तान जोत महोत्सव मनाने का सिलसिला शुरू हुआ। जो अब तक जारी है। हर साल मुल्तान समाज के लोग यहाँ पर गंगा माँ के साथ होली खेलने आते हैं और दिवाली भी मनाते हैं। इसके पीछे मकसद बेहद खास है।
4: पीढ़ी दर पीढ़ी ये परंपरा चलती आ रही है और आज भी जो लोग खड़े हैं वो अपने आने वाली इस पीढ़ी को ये संदेश दे रहे हैं कि हम कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, कितने भी हमारी भौगोलिक स्थिति ना बदल जाए, लेकिन हमें अपनी जड़ों को नहीं छोड़ना है, अपने रूट्स को नहीं छोड़ना है। जो हमारे धार्मिक अनुष्ठान है, हमारी परंपराएं हैं, इसमें सुख समृद्धि और शांति की कामना है देश के लिए, उसको हमें पूरा करना है और ये ज्योत महोत्सव उसी का एक प्रतीक है।
2: खास बात ये भी है कि इस बार इस अनोखी होली में योग गुरु स्वामी रामदेव और एक्टर रणवीर सिंह के डुप्लीकेट भी शामिल हुए।
4: सभी मिलजुल के रहे, गंगा हमारी साफ रहे, सभी से यही मेरी प्रार्थना है, गंगा को हमेशा साफ रखो, स्वच्छ रखो। मैं संदेश ये देना चाहता हूँ कि जितना अच्छा हो सके, जितना प्यारा हो सके, हम इसको कार्यक्रम को हम ताकि कहीं कोई गड़बड़ ना हो सके, जितनी शांति से हो सके हम उतने शांति से ये प्रोग्राम को हमें करना।
2: हर की पैड़ी पर दूर की होली के उत्सव में आस्था का अद्भुत संगम नजर आता है। इसमें शामिल श्रद्धालु देश और समाज की खुशहाली के साथ गंगा नदी की स्वच्छता का संदेश दे रहे हैं। इसके माध्यम से ये लोग गंगा की पवित्रता, निर्मलता और हर तरफ सुख शांति का पैगाम दे रहे हैं और सबके कल्याण की प्रार्थना कर रहे हैं। हरिद्वार से मुदित अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
1: बात करेंगे रक्षाबंधन की। भाई बहन के पवित्र रिश्ते से जुड़ा ये त्यौहार 28 तारीख को मनाया जाएगा, जिसको लेकर देश भर के तमाम बाजार तरह तरह की रंग बिरंगी और फैंसी राखियों से सज गए हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं राखी और गिफ्ट खरीदने के लिए बाजारों में पहुंच रही हैं। इस बार बाजार में 10 रुपये से लेकर 300-400 रुपये तक की राखियाँ मौजूद हैं और हर उम्र के लोगों के लिए अलग अलग डिज़ाइन देखने को मिल रहे हैं।
5: आने वाला है भाई बहन के प्यार भरे रिश्ते की पहचान वाला पर्व रक्षाबंधन। बहनें राखी का धागा बांधकर भाई से रक्षा का लेती है प्रण। 4 दिन बाद यानी 28 अगस्त को रक्षाबंधन मनाया जाएगा। इसके लिए बहनें जोर शोर से तैयारी में लगी हैं और उस पल का इंतजार कर रही हैं जब वो रक्षाबंधन के अवसर पर अपने प्यारे भाई की कलाई राखी के धागे से सजाएंगी। राखी को लेकर बाजारों में रौनक बढ़ गई है। बाजार में बहनों की भीड़ है और दुकानें तरह तरह के राखियों से गुलजार हैं। हरियाणा के करनाल में भी बाजार सज गए हैं। तरह तरह की राखियां बहनों को लुभा रही हैं। कोई मोतियों वाली राखी खरीद रहा है तो कोई बच्चों के लिए कार्टून कैरेक्टर वाली राखी। कुल मिलाकर बाजार में राखियों की ढेरों वेरायटी है।
6: सबसे पवित्र रिश्ता होता है बहन भाई का और ये साल बाद ही त्योहार आता है। मैं तो यही कहूंगी सभी बहनें आए, राखी खरीदें, अच्छे से अपने भाई को खुश करें और आप भी खुश होए, अच्छी अच्छी राखियां खरीदें, क्योंकि ये फेस्टिवल एक साल के बाद ही आता है और ये सबसे पवित्र एक रिश्ते का मतलब कि फेस्टिवल है। कि दोनों की पेयर है सबसे बेस्ट है वो, बाकी सिंगल भी ले सकते हो, डबल भी, जैसे आपकी चॉइस है। बच्चे छोटे भी है, उनके डोरेमोन वाली भी है, नगों वाली भी है, छोटे बच्चों की हर तरह की वैरायटी है।
5: बाजारों में भीड़ है, राखियों की बिक्री भी जमकर हो रही है, जिससे दुकानदार भी खुश हैं। बिहार के गया में भी रंग बिरंगी राखियों से बाजार सजा हुआ है। अलग अलग वैरायटी की राखियां बहनों को आकर्षित कर रही है। भाई की कलाई पर प्रेम और स्नेह का धागा बांधने की चाहत में बहनें अच्छी से अच्छी राखियों की खरीदारी की चाहत में बाजार का रुख कर रही है।
7: अच्छी अच्छी राखियां आई हुई है, हर साल के अकॉर्डिंग इस साल ज्यादा अच्छी अच्छी राखियां आई हुई है।
5: राजस्थान के पाली में बिक रही इन राखियों को देखिए, ये राखियां इको फ्रेंडली है। वजह यह है कि ये राखियां गोबर से बनी है। अलग अलग आकृतियों को समेटे ये राखियां काफी पसंद की जा रही हैं। यही नहीं, इन राखियों में बीज भी डाला गया, यानी जब भी आप इन राखियों को कलाई से उतारेंगे तो इसे गमले में डालने से पौधा उगने लग जाएगा, जो स्नेह का पौधा होगा। जीवन भर भाई बहन का स्नेह का प्रतीक बना रहेगा और पर्यावरण की सुरक्षा भी करेगा।
8: तो ये है कि जो अपने भाई की राखी बांधेगी तो गाय का गोबर जो अपने स्किन से तो टच होता है, तो वो अपने एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है। तो ये राखी बांधने से हर किसी का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। तो मैं गाय के गोबर को प्रमोट कर रही हूँ और बहुत सारी चीजें मैं गाय के गोबर से बना रही हूँ और प्लास्टिक मुक्त करना चाहती हूँ।
5: भाई बहन के पवित्र रिश्ते और प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे अपने भाइयों को राखी भेजने के लिए डाकघरों में बहनों की भीड़ बढ़ने लगी है। तस्वीरें महाराष्ट्र के अकोला की है। यहाँ के RMS पोस्ट ऑफिस में इन दिनों रक्षाबंधन को लेकर खास व्यवस्था की गई है। राखी भेजने वाली बहनों और अन्य ग्राहकों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए RMS की ओर से स्पेशल काउंटर शुरू किया गया है जो रात 9 बजे तक काम करता है। इससे बहनों को सामान्य डाक और पार्सल की लंबी कतार में खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ रही है और राखी जल्दी पोस्ट की जा रही है।
9: हर बहन अपने भाइयों को एक राखी भेजती है जो उन तक पहुंचाना ये हमारी जिम्मेदारी है और इससे मद्देनजर जो भीड़ है वो भीड़ को मद्देनजर रखते हुए हमने एक स्पेशल काउंटर भी शुरू किया है ताकि हमारी जो बहनें हैं जो राखी भेजने के लिए आई है उनको कम से कम तकलीफ हो।
10: बहुत ही अच्छी सुविधा है। हम लोगों को यहाँ बहुत टाइम लग रहा था पर ये देख के बहुत खुशी हो रही है कि बहनों के लिए राखी के लिए इन्होंने अच्छा आयोजन किया है, नया काउंटर खोला है। हम सभी बहनें बहुत खुशी में हैं।
5: डाकघर में राखियों को सुरक्षित तरीके से भेजने के लिए वाटरप्रूफ एनवेलप की भी व्यवस्था की गई है ताकि राखियां खराब न हो। करनाल से कमलदीप, गया से पंकज कुमार, पाली से भरत भूषण जोशी और अकोला से धनंजय साबले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: बात करेंगे नए वर्ल्ड रिकॉर्ड की। नागपुर में एक साथ 4000 से ज्यादा लोगों ने ढोल और ताशा बजाकर एक अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया और एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज हो गया। करीब 585 ध्वजधारकों ने अपने अपने दल के साथ सहभागिता दर्ज कराते हुए नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अधिकारियों ने आयोजकों को सर्टिफिकेट भी प्रदान किए। इस खास मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे।

0: पूर्वी उत्तर प्रदेश और खासकर गोरखपुर को नई सौगात मिलने जा रही है। जी हां, लखनऊ और अहमदाबाद की तर्ज पर अब वहां पर भी रिवर फ्रंट विकसित करने की तैयारी है। ये रिवर फ्रंट जो है राप्ती नदी के किनारे विकसित किया जाएगा। रिपोर्ट देखिए।
1: गोरखपुर में कल कल बहती राप्ती नदी का और उनके किनारों का ये मनमोहक नजारा बेहद आकर्षक है। नदी किनारे बने घाटों पर बैठकर सुकून के कुछ पल गुजारने का अपना ही मजा है। अब इस इलाके को और भी आकर्षक बनाने की तैयारी हो रही है। गोरखपुर में राप्ती नदी के तट का अब कायाकल्प होने जा रहा है। लखनऊ के गोमती और अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर राप्ती नदी के किनारे शानदार रिवर फ्रंट विकसित करने की योजना बनाई जा रही है। इसे अब साकार करने की दिशा में काम शुरू हो रहा है।
2: इसी योजना के क्रम में जो है एक प्रारंभिक जो है रिपोर्ट जो संबंधित वेंडर था उनके द्वारा जो है प्रस्तुत की गई है। क्योंकि ये प्रारंभिक रिपोर्ट है तो इसमें इन्होंने कुछ चीजें जो मेंशन करी हैं, इसमें पार्क भी है, इसमें ग्रीन स्पेसेस भी हैं, इसमें पब्लिक के लिए भी कन्वेंशन सेंटर लेकर ये रिवर फ्रंट की बात यहाँ पर चल रही है।
1: राप्ती रिवर फ्रंट के प्रोजेक्ट की DPR तैयार हो चुकी है। इस पर करीब 1,303 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसके तहत गोरखपुर के राजघाट से डोमिनीगढ़ तक राप्ती नदी के करीब 3.5 किलोमीटर लंबे तट को रिवर फ्रंट के रूप में विकसित किया जाएगा। इसमें नदी के तट से हर्बर्ट बांध पर बनी 4-लेन सड़क की ओर करीब 150 मीटर चौड़ाई में विकास कार्य कराया जाएगा ताकि आम लोग इसका पूरा लाभ उठा सके।
2: जब आप नदी के किनारे विभिन्न आयामों में आप वहाँ पे टूरिज्म की तमाम गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं, जैसे चाहे वो बोटिंग हो, चाहे वो घाट पे बैठना हो, चाहे वो आसपास पार्क में सुबह की सैर करना हो, शाम की सैर करना हो, या कोई भी कॉलेज का इवेंट हो, कोई कल्चरल इवेंट हो, कोई पारिवारिक इवेंट हो, तो वो भी रिवर फ्रंट पे एक जैसे कहते हैं कि एक लाइवली माहौल वहाँ पर एक कल्चरल एक संध्या के रूप में आप देखें, सुबह भी आप टहलने वहाँ जा सकें और बच्चों के साथ भी वहाँ और परिवार का समय व्यतीत कर सकें, इस तरह की पूरी परिकल्पना जो है इस रिवर फ्रंट पर की जाती है।
1: राप्ती रिवर फ्रंट के पूरे प्रोजेक्ट को 3 चरणों में पूरा करने की योजना है। सड़क तक विकसित किए जाने वाले हिस्से को ग्रीन बेल्ट के रूप में विकसित किया जाएगा। साथ ही यहां पर अर्बन हॉट, योग सेंटर और कन्वेंशन सेंटर जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इसके अलावा जगह जगह बोटिंग की सुविधा देने की भी तैयारी है। माना जा रहा है कि परियोजना पूरी होने के बाद राप्ती नदी का ये इलाका गोरखपुर के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल हो सकता है। गोरखपुर से गजेंद्र त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: बात करेंगे मौसम की। दिल्ली NCR में सुबह सुबह हुई बारिश ने मौसम को सुहाना बना दिया है। मौसम विभाग ने दिल्ली NCR के शहरों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया। मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले 2 दिनों तक मौसम ऐसा ही सुहाना बना रहेगा, उसके बाद थोड़ी गर्मी बढ़ेगी। वैसे पूरे देश में बारिश से ठंडक बनी हुई है।

0: सुबह सुबह जब दिल्ली NCR के लोगों की नींद खुली तो बारिश ने उनका अभिवादन किया। बारिश की फुहारे दिल्ली वालों के लिए राहत लेकर आई थी। बारिश की वजह से मौसम सुहाना हो गया था तो दिन भर बादलों का आना जाना लगा रहा। दिल्ली NCR में जैसे ही सुबह हुई, दिल्ली समेत नोएडा और गाजियाबाद से लेकर गुरुग्राम तक मौसम ने अचानक करवट ली और काले बादलों के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। मौसम विभाग का कहना है कि कुछ दिनों से दिल्ली NCR में बारिश का दौर जारी है। शनिवार को भी सुबह सुबह कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई थी। अब रविवार को बारिश ने मौसम को ठंडा कर दिया है और मौसम विभाग का कहना है कि बारिश वाला मौसम अभी दिल्ली में दो दिनों तक जारी रहेगा।
1: जिस तरीके से पिछले कई दिनों से दिल्ली NCR में काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिडिटी बढ़ गई थी, गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी और आज सुबह बारिश होने से कहीं ना कहीं गर्मी में और टेम्परेचर्स में कमी आई है। IMD का ये कहना है कि अगले दो दिनों तक दिल्ली में बारिश के आसार बने रहेंगे।
0: दिल्ली में हो रही बारिश से जहां गर्मी से राहत मिली है, वहीं साफ हवा की सौगात भी मिली है। मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले दो दिनों तक दिल्ली NCR में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। 25 अगस्त के बाद दिल्ली में एक बार फिर से गर्मी बढ़ेगी। बारिश ने पहाड़ी राज्यों में मुश्किलें बढ़ा दी हैं। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में लगातार हो रही बारिश की वजह से लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों और संपर्क मार्गों पर चट्टानें गिरने के कारण कई जगहों पर यातायात ठप है, जिसको फिर से शुरू करने के लिए टीमें लगी हुई हैं। दूसरी तरफ बारिश के बाद श्रीनगर का मौसम सुहाना हो गया है, जिससे पर्यटकों को राहत मिली। कई सैलानी शिकारे का आनंद लेते दिख जाएंगे। मौसम विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग ने पहाड़ी क्षेत्रों के नदी नालों के किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने का निर्देश दिया है। साथ ही अपील की है कि वे बेहद जरूरी न होने पर ही पहाड़ों की यात्रा करें, वरना इससे परहेज करें। फिलहाल देश के कई हिस्सों में मॉनसून सक्रिय है, जिससे मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ी राज्यों तक मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। मौसम विभाग ने देश के कई इलाकों में बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसके मुताबिक पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश तटों के पास उत्तरी बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इसके प्रभाव से उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। बिहार और झारखंड से लेकर अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, नागालैंड, मणिपुर व मिजोरम तक बारिश की चेतावनी जारी की गई है। दिल्ली से अंशुल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: बीजिंग में दूसरा वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स यानी रोबोट ओलंपिक चल रहा है। जी हाँ, इसमें 2000 से ज्यादा ह्यूमनॉइड रोबोट न केवल फुटबॉल, टेनिस, बॉक्सिंग, बैडमिंटन और एथलेटिक्स में अपना हुनर दिखा रहे हैं, बल्कि नए नए रिकॉर्ड्स बनाकर इंसानों को दंग भी कर रहे हैं। इसमें से एक रोबोट ने मशहूर धावक हुसैन बोल्ट का रिकॉर्ड तोड़ दिया। जी हाँ, तो एक ने हाई जंप में इंसान को पीछे छोड़ दिया। रिपोर्ट देखिए।
3: रॉकेट जैसी रफ्तार, दौड़ शानदार।
4: ह्यूमनॉइड रोबोट रेसिंग की ये तस्वीरें बीजिंग की हैं, जहां 100 मीटर की दौड़ में नया इतिहास रचा गया।
3: यहां पर तियानजोउ नाम के ह्यूमनॉइड रोबोट ने दुनिया के सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट के 100 मीटर के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। तियानजोउ रोबोट ने 100 मीटर की दौड़ सिर्फ 9.39 सेकंड में पूरी कर ली, जबकि जमैका के धावक हुसैन बोल्ट ने ये दूरी 9.58 सेकंड में पूरी की थी। बोल्ट ने 2009 में बर्लिन में हुई वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सबसे कम समय में 100 मीटर दौड़ पूरी करने का शानदार रिकॉर्ड कायम किया था। 100 मीटर की दौड़ में बोल्ट का ये रिकॉर्ड 17 सालों से कायम है और कोई इंसान तो इसे अब तक नहीं तोड़ सका है। लेकिन अब एक रोबोट ने बोल्ट के उस ऐतिहासिक रिकॉर्ड को ध्वस्त करके नई मिसाल कायम कर दी है। जिस रोबोट ने ये कमाल कर दिखाया है, उसे बीजिंग इनोवेशन सेंटर ऑफ ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स ने बनाया है। वहीं इससे पहले एक टेस्ट रन में चीनी कंपनी ऑनर के रोबोट ने 100 मीटर की दूरी तय करने में केवल 9.32 सेकंड का समय लिया था। बीजिंग में चल रहे ह्यूमनॉइड रोबोट्स के मुकाबले में नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। इसी दरमियान एक रोबोट ने स्टैंडिंग हाई जंप में 2.88 मीटर से ऊंची छलांग लगाकर इंसानों और पिछले सभी रिकॉर्ड्स को पीछे छोड़ दिया। चीन की रोबोटिक्स कंपनी यूनिट्री के ह्यूमनॉइड रोबोट ने हाई जंप में ये कमाल कर दिखाया है। स्टैंडिंग हाई जंप की स्पर्धा में रोबोट ने 2.8843 मीटर तक ऊंची कूद का नया रिकॉर्ड कायम कर डाला। और हाई जंप में भी इंसानों यानी मानव एथलीट के पुराने रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया। बीजिंग में शनिवार को दूसरे वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स का शुभारंभ हुआ। ओपनिंग सेरेमनी में हुई 400 मीटर रेस में चाइना के तियांगोंग ह्यूमनॉइड रोबोट ने 39.7 सेकंड का समय निकालकर पहला स्थान हासिल किया। इससे पहले ओपनिंग सेरेमनी के दौरान हुए रंगारंग कार्यक्रम में इंसान केवल दर्शक थे, जबकि स्टेडियम में ट्रैक से लेकर पूरे एरिना में मौजूद हजार से ज्यादा ह्यूमनॉइड रोबोट्स ने अपनी तकनीकी क्षमता का अनूठा प्रदर्शन किया, जिसे देखकर लोग दंग रह गए। मनमोहक म्यूजिकल परफॉर्मेंस से लेकर नेशनल स्पीड स्केटिंग ओवल में टीमों के मार्चिंग दस्ते के रूप में हर इवेंट में शानदार तालमेल के साथ रोबोट फॉर्मेशंस दर्शकों को अलग ही कल्पना लोक में ले गए, जिसे वे अपनी आंखों के सामने साकार होते देख रहे थे। इस दौरान 36 रोबोट्स की टीम ने मेलेडी ऑफ द फ्यूचर के नाम से भव्य संगीत और सुरों का समा बांध दिया। वहीं स्पर्धाएं शुरू होने से पहले ओपनिंग सेरेमनी में ही तमाम रोबोट्स ने अलग अलग खेलों में अपने हुनर की झलक पेश की। बीजिंग में 5 दिन के वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स में 16 देशों के 2056 रोबोट्स की 666 टीमें भाग ले रही हैं। ये रोबोट 51 इवेंट्स की 1300 से ज्यादा स्पर्धाओं में अपना कमाल दिखाएंगे और ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि आने वाला कल इनका ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
10: सावन के अंतिम सोमवार का क्या है पूजा विधान? सावन के अंतिम सोमवार पर कौन सी मनोकामनाएं होंगी पूरी और कैसे मिलेगा शिव जी का वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।

0: अंतिम सोमवार का क्या है पूजा विधान? सावन के अंतिम सोमवार पर कौन सी मनोकामनाएं होंगी पूरी और कैसे मिलेगा शिव जी का वरदान? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: सावन के आखिरी सोमवार पर आज मंदिरों में विशेष तैयारी। पावन मौके पर आज बन रहे हैं कई शुभ संयोग। इस साल सावन महादेव की कृपा पाने का यह आखिरी मौका है। मुंबई के पंडालों में पधार रहे हैं गणपति बप्पा। काली चौकी के महाराजा के स्वागत में उमड़े हजारों श्रद्धालु, ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत। अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर बदली गई धर्म ध्वजा। वैदिक मंत्रोच्चारों के बीच पूरे विधि विधान के साथ निभाई गई परंपरा। नटवा के द्वारकाधीश मंदिर में पारंपरिक काली घटा का आयोजन। फूलों और आकर्षक लाइटों से मनमोहक हुआ दृश्य। ठाकुर जी के दर्शन कर गदगद हुए भक्त। बारिश के लिए जैसलमेर के पुरोहितेश्वर राम महादेव मंदिर में महारुद्राभिषेक। 121 रुद्र पाठी पंडितों ने किया सामूहिक रुद्री पाठ। मंत्रोच्चार से गूंजा परिसर। अजमेर में दिख राजस्थानी संस्कृति की झलक। मातृशक्ति मानसून महोत्सव में जुटी हजारों महिलाएं। मेगा लकी ड्रॉ और मेडिकल कैंप्स का आयोजन। नागपुर में 4,000 से ज्यादा युवक युवतियों ने ढोल ताशा बजाकर बनाया अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड। एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड

0: नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आज गोलमेज की यह चर्चा यानी राउंड टेबल पर हम आज एक बहुत ही विशिष्ट अतिथि के साथ जुड़े हुए हैं। बागेश्वर सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हमारे साथ हैं। नेहा बाथम, सईद अंसारी, राजीव ढोंडियाल और पूजा शर्मा, हम पांच साथ मिलकर आपसे आज प्रश्न पूछेंगे। असल में प्रधानमंत्री जी ने ही कुछ दिन पहले IIT में एक संबोधन में कह दिया
1: जी
0: कि मैं बाग बाग बागेश्वर नहीं हूं जो आपके मन की बात जानूं।
1: जी,
0: युवाओं के बीच बैठे थे वो
1: जी।
0: क्या बाबा बागेश्वर युवाओं के मन की बात जानते हैं, और जानते हैं तो जेन जी की उस बात को कैसे रखें?
1: देश के नायक के रूप में प्रधानमंत्री जी मन की बात जानते भी हैं, समय परिस्थिति को भी नहीं जानते, और ये हमारे लिए और हम सबके लिए विशिष्ट बात ये है कि ऐसे वो जननायक हैं, 140 करोड़ लोग हैं, अनेक महापुरुष संत, और वो हमारे जैसे छोटे से व्यक्तित्व को, छोटे से आदमी को स्मरण रखते हैं। ये बहुत बड़ी बात है और उनकी असाधारण प्रतिभा के वो धनी है, इसमें कोई संदेह नहीं। दूसरी बात, आपको एक बात हम बहुत मजेदार बताएंगे, हम एक साल चूक गए हैं जैन जी होने से।
2: हमारा दृष्टि में तो आप जैन
1: जी,
2: आप जैन
1: 1996 में हम आए और 97 के बाद में जो है जैन जी के लिए कहा गया तो
2: चेंज कर देते हैं उसको।
1: ऐसा यदि हो जाए,
2: हो गया, हो गया,
1: बहुत धन्यवाद।
0: ये दोनों मध्य प्रदेश के लोग बैठ के आपस में कोई साजिश न बोला
1: जी जी, लेकिन हमें पता है कि हम कितनी भी सांठगांठ कर लें, आप लोगों के अंदर जो भगवत कृपा है, देवी अनुकंपा है, और जो आपका अध्ययन है, जो आपके पास लॉजिक तर्क है, हम लोगों की सांठगांठ चलेगी नहीं। जब देश की सांठगांठ नहीं चलती तो हम लोगों की सांठगांठ कहाँ चलेगी।
2: श्वेता ने मुझसे पूछा क्या पूछोगे, मैंने कद्दू पूछेंगे सारा, तो आप जानते हैं मन की बात।
3: बागेश्वर, ये जो जैन जी का क्योंकि जिक्र चला है, जिस तरीके से प्रदर्शन के जरिए सारी बांगों को मिलाया जा रहा है, एक नया ये ट्रेंड शुरू हुआ है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या ये सही है?
1: अपनी बात रखना ठीक है, आंदोलन करना ठीक है, हक के लिए लड़ना ठीक है, पर आंदोलन सबसे अंतिम सीमा है अपनी बात रखने का। अनेक माध्यम है, पत्राचार माध्यम है, संवाद माध्यम है, केवल अपने बयान देना एक माध्यम है, सबसे लास्ट में है आंदोलन। लेकिन आंदोलन हो, लेकिन वो उसमें फुहारता ना हो, देश में अराजकता ना फैले, देश में हिंसा ना फैले, और हम किसी की भी मां बहन को गाली ना, इतना ख्याल रखें कि हम अपनी बात रखें लेकिन देश में अराजकता ना हो। दूसरी बात, टेबल राउंड के इस माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम एक प्रार्थना करना चाहते विशेष रूप से, जैन जी सड़कों पर ही ना आए, हम चाहते हैं सरकार एक नया रास्ता चुने, सरकार ही जैन जी के पास जाए, एक ऐसा दरवाजा चालू किया जाए, एक ऐसा डोर खोला जाए कि जैन जी को आंदोलन करना ही ना पड़े।
0: कुछ मन में है आपके, कैसे होगा?
1: अरे ऐसे मन में कुछ है नहीं, बस इतना से ख्याल है, इस देश में बहुत बौद्धिक लोग हैं, प्रतिभा के धनी लोग हैं, प्रज्ञा मेधा के धनी लोग हैं, वो इस पर कार्य कर सकते हैं, पर हमारे मन में इतना है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिससे देश की जैन जी अपनी बातें सरकार से सीधी कर पाए।
3: आजकल जैन जी थोड़ा डिल्यूजनल में भी जी रहा है, एक अपना उनका एक वर्ल्ड है,
1: आपने अपने शब्द है, मोय मोय है, और ये भी है, और ये भी है,
3: तरीके से प्यार जी
1: हमने दो दिन में अभी सीखा है, जब से दिल्ली आए तब से आप लोगों की ही ये संगत का असर पड़ा, आप लोगों की संगत का असर पड़ा,
3: हम लोगों को भी इतना नहीं पता है जितना बहुत
1: हमने इंटरव्यू में ही, और पत्रकार आपके भाई बहन थे वो हमें सिखा रहे।
3: रील से जो ये पॉपुलैरिटी मिलती है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं, कहाँ तक सही मानते हैं, क्या ये आज का नजरिया है, और इसमें शामिल होना क्या बाबा बागेश्वर के लिए भी एक मजबूरी है?
1: वर्तमान के पहले भारत में एक एडिक्शन था, एडिक्ट थे लोग, ड्रग एडिक्ट, अब एक नए एडिक्ट हो गए लोग, ड्रग के बाद सोशल मीडिया एडिक्ट, हम देश को नेशनल लव एडिक्ट करना चाहिए, राष्ट्र
0: महाराज जी आपके भी रील वायरल
1: था एडिक्ट, हम भी बनाते, रील बनाना बुरा नहीं, उसी सोशल मीडिया पर सुविचार है, संदेश है, टेक्नोलॉजी है, जानकारियां हैं, बड़े बड़े विचारकों के संवाद है, लेकिन उसी सोशल मीडिया पर कुछ लोगों के दिमागी कचड़े भी, उन्होंने अपने कचड़े उस पर भर रखे, उस कचड़े से संस्कारों पर कुछ प्रभाव पड़ रहा। हमें एक बात समझनी होगी, इस चैनल पर हमें एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहिए, इंस्टाग्राम कहां से हैंडल हो रहा, अमेरिका से, FB कहां से हैंडल हो रही, अमेरिका से, यूट्यूब कहां से हैंडल हो रहा, अमेरिका से, एक्स कहां से हैंडल हो रहा, अमेरिका से, इस देश का एल्गोरिदम किसके हाथ में, अमेरिका के हाथ में, हमें ये बात समझने से बिल्कुल नहीं चूकना चाहिए कि वो अमेरिका
4: जो भारत पर लगातार दबाव बनाना चाहते, व्यापारिक दबाव, मानसिक, आर्थिक और लगातार जो है टैक्स भरने के लिए मजबूर करना चाहे, तो कहीं हो ना कि हम विदेशी हाथों की कठपुतली ना बन जाए।
5: क्या आप ये कहना चाहते हैं कि ये जो जेंजी आंदोलन में हमने युवाओं की भाषा देखी, वो हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति पर भी अटैक कर रहे हैं?
4: कुछ बच्चे
2: अमेरिका या विदेशी शक्तियां विदेशी के माध्यम से
5: जी,
2: या वो हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति पर अटैक कर रहे हैं, उस पर
4: पूर्ण रूप से इस बात से सर निश्चित रूप से कुछ तो ऐसा हो रहा जिससे विदेशी ताकतें भारत की कुछ ऐसी परंपरा को मानने वाले ऐसी समाज को आगे करके प्रेरित करके हमारे देश में ही दंगा फैलाना चाहे। कुछ लोग भारत में बांग्लादेश जैसे हालात करवाना चाहे, कुछ लोग भारत में पाकिस्तान जैसे हालात कराना चाहे। हम चाहते हैं कि आंदोलन हो, पर आंदोलन देश विरोधी ना हो, आंदोलन हो आंदोलन तिरंगा विरोधी ना हो, आंदोलन हो आंदोलन किसी माँ बहन की गाली से ना।
3: छोटा सा एक सवाल बीच में, आप टैक्स पे करते हैं? आप टैक्स पेयर हैं?
4: हाँ हम तो हैं, आरटीआई लगाओ।
0: शिक्षा नीति में मकौले मुक्त उसको करना है या पहले शिक्षा को पेपर लीक मुक्त करना है?
4: दोनों ही जरूरी, बहुत जरूरी है। सूर्य और चंद्रमा दोनों आवश्यक है, दिन और रात दोनों आवश्यक है। हमें लगता है कि सिस्टम में सुधार की आवश्यकता है, शिक्षा में बदलाव की आवश्यकता।
0: एक चीज मैं आपसे पूछती हूँ, क्योंकि आप जातियों को, जातियों का बंटवारा खत्म करके कहते हैं कि हिंदू एक हो रहे हो।
4: हाँ।
0: और आप इसके लिए पद यात्रा भी कर चुके हैं सब।
4: अब अभी हम रथ यात्रा भी करने वाले
0: इसी के लिए।
4: हमारा उद्देश्य है कि इस देश में जातिवाद और क्षेत्रवाद ना, राष्ट्रवाद, कास्टिज्म नहीं, राष्ट्रिज्म हम चाहें।
0: पर हिंदू राष्ट्र,
4: हिंदू राष्ट्र का अर्थ मुसलमान मुक्त नहीं, हिंदू राष्ट्र का मतलब है सबके साथ। अगर हिंदू हाँ मुसलमान मुक्त तो होता तो आपकी तरफ भी सबकी नजर जा रही है। तो हिंदू राष्ट्र का मतलब मुसलमान मुक्त नहीं, हिंदू राष्ट्र का मतलब ईसाई मुक्त नहीं, हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि विचारक, हमें कागजों में हिंदू राष्ट्र चाहिए नहीं, विचारों में हिंदू राष्ट्र चाहिए। हम विचारों को परिवर्तन करना चाहते, और हिंदू कोई एक धर्म नहीं, जीवन शैली है। हिंदू का मतलब वसुदेव कुटुंबकम, हिंदू का मतलब अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा नहीं अहिंसा, हिंदू का मतलब व्यापार बाद में परिवार पहले, ये हिंदू राष्ट्र। हमें नहीं लगता कि ये गलत है, ये तो सबकी मांग होनी चाहिए, इस देश के प्रत्येक नागरिक की मांग होनी चाहिए।
3: बाबा जी अपने राखी से पहले ही बहुत सारी राखियां पहनी,
4: हमारी बहुत बहनें हैं,
3: बहुत सारी बहनें जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ पहले ही आपका रक्षाबंधन लग रहा है, मन चुका है।
4: अगर इंटरव्यू हो जाए तो आपकी श्रद्धा जगह तो आप
2: बहने
3: देख नहीं, हम बांध देते
2: हैं तो आपकी बहुत है
4: जी
2: गर्लफ्रेंड।
4: ये तो राम राम राम राम, आपको लगता है लेकिन हमारे जैसे आदमी ये सब झंझट
2: पा रहे। शादी करेंगे कि नहीं बाबा?
4: हाँ घरवाली लाएंगे और
2: गर्लफ्रेंड से तो शादी करते हैं।
4: ना ना भैया हमारी संस्कारों में पद्धति है, माता पिता हैं हमारे यहाँ पर,
2: आज आप जेंजी हैं ये तय हो गया,
3: एक साथ
4: और हर जेंजी से बड़े,
2: हर जेंजी ये कहता है कि भाई पहले हम जानेंगे समझेंगे अपने जीवन साथी को, उसके बाद
4: समझना गर्लफ्रेंड बनाना नहीं होता है। ना समझने का मतलब ये थोड़ी कि कोई आपको हाथ पकड़ा है तो आप पूरा हाथ ही दबा दो, जानना समझना किसी के बारे में, विचारों के बारे में।
2: शादी तो करेंगे,
4: शादी आपको क्या लगता है हम रड़ुआ मन?
0: वो तो कहते हैं कि रिश्ते उनके घर आते रहते हैं,
3: रहते हैं
0: माहौल जल्दी होगा।
4: अभी हम फर्स्ट में, अभी प्रारंभ में जो हमारे संकल्प चल रहे हैं उन पे हम बहुत कार्य कर रहे हैं। अभी कैंसर हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन 2027 के दिसंबर में फर्स्ट फेज में उसको चालू 2027 में, और हर वर्ष बेटियों का विवाह है वो संपन्न। अभी हमने एक नया प्रकल्प चालू किया धाम पर, वैदिक गुरुकुलम, 80 बच्चे मजदूरों के जिनके मजदूर हैं उनके बच्चों का रहना खाना पुस्तक पढ़ाई लिखाई सब फ्री ऑफ वो चालू किया। तो उसमें केवल हम संस्कृत नहीं सिखाते, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, हॉर्स राइडिंग, तीरंदाजी, सिंगिंग, पूरा वैदिक और सबसे हाईटेक गुरुकुलम। हम सबसे तो नहीं कह सकते हैं, ठीक ठाक।
0: कोई ओलंपिक मेडल भी आएगा आपके?
4: अगर ये सफल होंगे तो निश्चित भगवान ने चाहा।
0: स्वामी रामदेव पे बोलेंगे
4: जी, तो हमारे आदर्श
5: आपके आदर्श में क्या आप उनकी तरह आप भी मतलब वो हर क्षेत्र में आप जो है चले गए, बहुत बड़े व्यापारी भी, अच्छे व्यापारी भी बन गए हैं, देश को बहुत मतलब रोजगार भी दे रहे हैं, तो क्या आप भी उस
4: दिशा? आप क्या चाहते हैं, महात्मा सिर्फ मांगते ही रहे? देखो इस देश में हमारी आज से लेकर के अब तक के जितने भी प्रवचन के इंटरव्यूज या हमारे इंटरव्यू या कथा प्रवचन है सोशल मीडिया या यूट्यूब आदि पर प्रसारित हमारी लाइव कथा प्रसारित टेलीकास्ट है उन सबको आप सुनेंगे। हमने कभी माया छोड़ने के प्रवचन नहीं सुनाए और हम माया छोड़ने के पक्ष में नहीं। आज 100 रुपया है डॉलर, 100 रुपया है, कल 200 हो जाएगा, आप सबको बाबा बना दोगे तो देश का हाल क्या होगा। हम देश का विकास चाहते, अर्थ से परमार्थ की यात्रा चाहते, अर्थ कमाओ और परमार्थ में भी लगाओ। हम चाहते हैं दीनहीनों की भी मदद करो। धन कमाना बुरा नहीं है, पर किसी का दिल दुखा करके कमाना, झूठ छल कपट पाखंड अंधविश्वास फैलाकर कमाना महा बुरा है। हम चाहते हैं हर व्यक्ति बिजनेसमैन बने, हर व्यक्ति व्यापारी बने, हर व्यक्ति अर्थ कमाने के स्रोत निकाले, नया आविष्कार करे, नई नई चीजों का आविष्कार करके समाज के सामने प्रस्तुत करे, हर क्षेत्र में वो सर्वगुण संपन्न हो। और बिल्कुल होना चाहिए, हमें स्वामी जी की एक बात बहुत अच्छी लगती, सब में होना चाहिए, कोई बुराई नहीं। हाँ, धर्म का धंधा नहीं होनी चाहिए, धंधे का धर्म तो होता है।
6: वो कौन लोग हैं और धर्म का धंधा कैसे करते हैं, धर्म का धंधा क्या होता है?
4: धर्म का धंधा ये होता है कि हम भगवान के नाम पर, झूठ छल कपट के नाम पर, दिखावा भय दिखा करके, धर्म का चोला ओढ़ करके अपने पेट भरना, ये धर्म का धंधा है। आप कहें कि आप तो नहीं ऐसा करते, हम कथा करते दक्षिणा मिलती है, हम प्रवचन करते दक्षिणा मिलती है, लेकिन हम मकान नहीं बनाते, अस्पताल बनाते, बेटियों के विवाह कराते हैं, हर दिन 10 से 15 हजार लोगों को निःशुल्क भंडारा कराते हैं। हमारा क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र, वहाँ 200 किलोमीटर में कोई कैंसर हॉस्पिटल नहीं है, तो हमने विचार किया हमारे क्षेत्र में अस्पतालों में मंदिर अब तक बहुत है, हम मंदिर में अस्पताल देखना चाहते।
3: महाराज जी, जब आप
4: इसके विपरीत जो है वो धर्म का धंधा है।
3: तो जब आप बाहर होते हैं तो इंडिया में क्या चल रहा है उसको ट्रैक करते हैं?
4: नहीं, ट्रैक नहीं, हम रोज न्यूज
3: पढ़ते हैं, लेकिन कई बार ऑनलाइन मीडिया देखना पड़ता होगा ना, यूट्यूब पे या किसी
4: चलाते
3: हैं।
4: जी, आपको क्या लगता है
3: कौन सा ऐप सबसे ज्यादा आप इस्तेमाल करते हैं?
4: एक्स हैंडल करते हैं,
3: एक्स हैंडल,
4: और इंस्टाग्राम करते हैं,
3: इंस्टाग्राम
0: खुद से करते हैं। आपका भी समय जाता है ऐसे?
4: 30 मिनट तो जाता है,
3: 40 मिनट,
4: 30 मिनट, 40 मिनट न्यूज पूरी पढ़ने में, आज कहां क्या क्या, किसने क्या क्या वहां बयान दिया, कहां पर क्या चल रहा है, एक एक न्यूज को हमें, क्योंकि इसलिए भी अपडेट हमें रहना पड़ता है कि जैसे ही उतरो तुरंत माइक बताइए बाबा ये क्या, अब तुम्हें माइक लगाने वाले आप ही लोग होते हो, अब बेटा ले बाबा बड़ा ज्ञानी बनता था, बोल नहीं पा
2: रहे बाबा। मेरे सारे साथी देखिए आपसे बहुत सख्त प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं तो मंत्र मुग्ध हूँ, देख रहा हूँ आप, मैंने आपसे पहले कहा था कि आपको देखता रहूंगा।
4: जी जी, आप बहुत सज्जन,
2: आप बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं। ये बताइए कि इतना सुंदर हनुमान जी भी हैं, लग रहा है कि बहुत ही डिजाइनर, वो शानदार आपने कुर्ता पहना, कौन डिजाइन करता
4: है? हमारी डिजाइनिंग ऐसी है कि जो भी आता है वो श्रद्धा से दे जाता है, कोई फिक्स डिजाइनर नहीं।
2: अच्छा,
4: लोगों की इच्छा है, हमारे प्रति भावना जो जुड़े हैं।
2: ये भी कुर्ता किसी ने दिया है?
4: हम
2: कितने खुश हो रहे
4: हैं? अरे खुद के कहा, उनका हृदय बड़ा इलाजित होता कि गुरु जी ने पहन लिया।
2: तो आपका
4: है चाहेंगे कि इस इंटरव्यू के बाद में आप भी एक आध श्रद्धा दिखाओ। आपको भी मन में ये आना चाहिए कि हमारा दिया हुआ कुर्ता कोई महात्मा पहने,
3: वो तो कोट देंगे,
4: कोट ना दे, कोट का करें।
2: अच्छा, हम शानदार टी शर्ट देंगे आपको,
4: बाहर में गया हम ले भी
3: पैंट भी लेंगे,
4: और अब आप मना ना कर पाएंगे क्योंकि आपने बोल दिया है कि हमने भगवान ने अगली बार कमेंट ही कर देंगे कि बड़े बड़े नहीं आ रहे हमने देखे,
2: तो मतलब कुर्ता ही पहनेंगे आप?
4: नहीं नहीं, आप टी शर्ट दो, हम कहने लेंगे
2: टी शर्ट पहनेंगे।
4: अरे उसमें कोई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कल तुम जींस पैंट ले आओ, वो ना पहनेंगे,
2: टी शर्ट के साथ जींस भी देंगे।
4: ना ना, हम वो ना पहनेंगे, पहले ही
2: क्यों? अच्छा तो है जींस पैंट पहनना, उसमें कोई आपत्ति है कुछ?
4: अरे भाई कोई आपत्ति नहीं, पुलिस वाला पुलिस की ड्रेस पहन करके ना आए तो आप सीधा गए। सबके भाई अपने अपने रूल होते हैं, ड्रेस कोड होता है देश में, डॉक्टर का ड्रेस कोड है, पुलिस का ड्रेस कोड है, साधु का भी भैया ड्रेस कोड है, उससे इंस्पायर होते हैं लोग कि हम स्पिरिचुअल हैं। भैया आप क्या चाहते हो?
3: महाराज जी, हाल ही में कांवड़ यात्रा को लेकर बहुत सारी बातें कही जाती हैं कि आजकल आस्था के नाम पर एंटरटेनमेंट ज्यादा हो रहा है, बड़े बड़े डीजे, लाउड म्यूजिक, रास्ते में अवरोध होता है, पुलिस प्रशासन की सख्ती के बावजूद हमने देखा कई, आपने भी देखे होंगे वीडियोस वायरल हुए जिसमें गंदगी फैलाई गई हरिद्वार के तटों पर, जहां पर बहुत टनों वेस्ट छोड़ा गया, जो गंदे कपड़े थे। कैसे इस पर अंकुश लगाम लगे कि हम आस्था को भी चोट,
1: यात्रा बंद करवाने की बात
3: नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि उस
1: ठीक पर, करने की
3: उसको कैसे ठीक करें ताकि उसमें से एंटरटेनमेंट का एलिमेंट माइनस हो जाए।
1: सजगता और सद्बुद्धि है, उसको ठीक भर ऐसे करना है कि हम कचरा जमीन पर ना फेंके, कचड़े को कूड़ेदान में ही डालें, और धर्म आस्था को सिर्फ इंजॉयमेंट में, आस्था की पवित्रता, आस्था में श्रद्धा, दोनों उच्चतम सीमा पर बनाए रखें। कांवड़िया बड़े भगवान के शिव भक्त होते हैं, अद्भुत भक्ति करते हैं, पैदल चलते हैं, उसमें कुछ विचित्र लोग भी होते हैं। तो तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, कछु मानस कछु देवता कछु जय जय सीताराम, सब प्रकार के लोग बहन होते हैं, सबकी अपनी अपनी मति होती है, सब में सब प्रकार के होते हैं। पर हम इतनी बात जरूर कहेंगे आने वाले दिनों में इसकी कांवड़ियों का भी एक विशेष, सरकार तो बहुत कार्य करती है, कांवड़ियों भी एक समझेंगे कि हमको जो है देवतीर्थ में गंगा के किनारे रास्ते पर सड़क पर कोई भी ऐसा कृत्य नहीं करना जिससे हमारे सनातन पर उंगली उठे।
0: अब बड़े बड़े साधु हैं जो इस चीज को लेकर मतलब वो गंगा जी के लिए प्राण समर्पित कर देते हैं, ये भी उन कांवड़ियों को अपने भक्ति के जोश में सोचना चाहिए।
3: जितने जितने शांति से आप अपनी बात रख रहे हैं, आप अपनी बात मनवा भी लेते हैं, ठीक है। कुछ लेकिन जेंजी कुछ युवा है जो अभी लद्दाख का वीडियो का आप जिक्र कर रहे थे, उसमें उतना गुस्सा जो उस महिला का था, और वो कह रही है हम जेंजी है, हम प्रदर्शन पे बैठ जाएंगे, यही बैठ जाएंगे, तो उन युवाओं के लिए क्या संकेत दें? गुस्से से ज्यादा बेहतर है शांति से अपनी
1: बात। हर रास्ते हर हल हर विवाद किसी भी समस्या का समाधान, संवाद ही समस्या का। देश में प्रेम बांटो ना, देश में एकत्व बांटो ना, देश में हम विवाद क्यों चुने, संवाद क्यों ना चुने? चार दिन की जिंदगी किसके लिए? और आपके आंदोलन कर देने से हो भी क्या जाए? हम सरकार को समझाएं भी, सिस्टम को सुधारें भी, पर देश को बिगाड़ें तो ना। आने वाली अल्फा बीटा जनरेशन को हम आंदोलन की बातें देकर के जाएंगे, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हम नेशन प्रेम की बातें देकर जाएं, लव और पीस की बातें देकर जाएं। तो हमें लगता है कि अब वर्तमान ये जो सोच वायरल होने का जो वायरल चढ़ा ना, ये बहुत खतरनाक है। हम पूरे भारत को ड्रग एडिक्ट अथवा सोशल मीडिया एडिक्ट नहीं, कथा एडिक्ट।
0: आजकल आप पर्ची निकालना छोड़ दिए?
1: ना चला रहे हैं, बस धाम पर है अभी।
0: अच्छा,
1: लेकिन व्यस्तता पुण्य जगह ज्यादा बढ़ गई, कथाएं ज्यादा, विदेश यात्रा ज्यादा, और पद यात्रा की तैयारी, कन्या विवाह की तैयारी, गुरुकुलम की तैयारी, कैंसर हॉस्पिटल की। पर्ची तो निकाले, वो तो जब तक जीना है तब तक भगवान ने जो कृपा दे रखी उस लगातार चला। अब आप लोग कम पर्ची दिखा रहे हैं ये कह सकते
3: हैं। महाराज जी, आप इतनी विदेश यात्रा करते हैं, लेकिन जब आप तुलना करते हैं भारत की और विदेश की, असीम और अपार संभावना

0: भी दिखाई देती है जिस पर हम काम कर सकते हैं।
1: भारत में सब कुछ बस प्रस्तुतीकरण, हमारी प्रस्तुतीकरण प्रेजेंटेशन ठीक है, वो अपने पहाड़ खुदे हुए पहाड़ों को भी टूरिस्ट प्लेस बता रहे हैं, हमारे यहाँ ऑलरेडी टूरिस्ट प्लेस है। तो हमें लगता है भारत का प्रस्तुतीकरण ठीक होना चाहिए, एक भारत की शिक्षा व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, भारत की स्वच्छता पर काम करना चाहिए। फर्स्ट यदि भारत को ठीक करना है तो दो जगह सफाई होनी चाहिए, भारत की सड़कों पर और कोनों में और दिमाग
0: दिमाग की पहने इतने दिमाग सफाई कथा के साथ होगी, बाकी सफाई सरकार को करनी है।
1: नहीं, वो दिमागी सफाई कथा से तो हम सिर्फ विचार दे सकते हैं, स्वीकार तो आप करेंगे, स्वीकार तो लोग करेंगे, हम तो कह सकते हैं, मानना ना मानना अभिव्यक्ति की आजादी, इतना कह सकते हैं कि आप बेहतर जीना चाहते तो हमारे पास वही विचार है और विचार सदविचार बुरे विचारों को ठीक करते, पर कोई स्वीकार करे तब ना।
2: नई पीढ़ी आपको कितना सुनती है, मतलब आप भी कभी मतलब कुछ
1: ये डाटा तो आप ही ला सकते हैं, हमें कितना सुनती है, हमारे बारे में कह पाना बहुत मुश्किल होगा, हम नहीं कह सकते हम कितने अच्छे आदमी, हम आपके बारे में कह सकते।
0: ऐसा होता है कि अलग अलग पीढ़ी के लिए अलग भाषा को इस्तेमाल करनी है कि भाई, क्योंकि आजकल पीढ़ियों में ऐसा बांट दिया कि हर व्यक्ति के दिमाग में आता है कि भाई मैं कौन सी गांधी, सबने पता किया है कि
2: रिसर्च है
0: हम कौन सी
1: गांधी, आप कौन है,
2: आप
1: यदि अपने
0: आप लोग 25 से एक साल ऊपर कभी नहीं होगा,
2: कभी नहीं कभी नहीं,
1: फिर हमको अल्पाधिकार की घोषित करना पड़ेगा अपने आप,
0: उम्र तो दिमाग में होती है ना।
1: अरे बेटा की बात कौन सी आई,
0: बेटा की
2: बात बेटा,
0: अभी तो बेटा चल रहा है,
1: अल्फा
0: महाराज जी, आप एक आम जीवन से इस जीवन में कैसे परिवर्तित हुए, कौन सी वो आदतें थी आपके अंदर जो आपने बदलाव किया और आप बाबा बागेश्वर बन गए।
1: हम बचपन से ही उल्टे थे,
0: उल्टे थे क्या उल्टे काम किए आपने,
1: कोई ऐसे उल्टे काम नहीं किए बहन, बचपन से ही हमने, हमको किसी ने बाबा बनाया, मैंने बनाए ही थे,
0: मैंने बनाया,
1: हमारा परिवार पूरा सामाजिक के साथ साथ धार्मिक में खूब सरोवर था, हमारे ग्रैंडफादर हनुमान जी के परम भक्त, उन पर हनुमान जी की विशेष अनुकंपा थी, एनलाइटमेंट था उनको, एनलाइटेड थे, उनके चरणों में रहे, हनुमान जी की सेवा बचपन से ही, हमारे पिताजी माताजी, हमारे दादाजी, दादाजी के भी पिताजी परदादा, तो हम जहाँ जिस गांव में हमारा जन्म हुआ वहाँ बालाजी का जो मंदिर है वो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी पूजा करते ही आ रही, तो वंशानुगत पूजा कर रहे हैं, तो दादाजी वहाँ रहते थे, तो दादाजी की हमारे यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी कोई ना कोई एक वहाँ का पीठपति या पीठाधीश्वर होता है, दादा ने हम पर कृपा की, गुरु ने हम पर दृष्टि डाली, तो हम बचपन से ही धार्मिक के धर्म के प्रति लगाव था ही, परिवार का माहौल ही ऐसा था, फिर दादाजी ने कृपा की तो गुरु अद्भुत मिल गए, तो फिर जीवन परिवर्तित हो गया, तो हम बाबा बने नहीं, बने बनाए हुए हैं समान थे।
0: लेकिन आपकी बातों के साथ मतलब भले एक साल से आप कह रहे हैं कि चूक गए, लेकिन आपको फिर भी इस नई पीढ़ी के ही का ही आप प्रतिनिधित्व एक तरीके से करते हैं, जो सोशल मीडिया से लेकर और एक कथा वाचन तक सबको अपनी बातें अपने विचार सुना रहा है, यात्राएं कर रहा है और आगे भविष्य के भारत के लिए एक उम्मीद बनाए हुए है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।
3: सावन के आखिरी सोमवार को लेकर भक्तों में भारी उत्साह है, शिवालयों में खास तैयारियां की जा रही हैं, सावन शिव का महीना है और शिव को प्रिय है सोमवार का दिन, ऐसे में आखिरी सोमवार मनोकामना पूर्ति का भी दिन है, शिवलिंग पर जलाभिषेक और पूजा पाठ से भोलेनाथ को आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है, वरदान पाया जा सकता है।
4: सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है, अगर ये सोमवार सावन महीने का है उसका महत्व और भी बढ़ जाता है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सावन के सोमवार का खास महत्व बताया गया है। सावन का महीना भी अब जल्द ही समाप्त होने वाला है और 24 अगस्त को सावन का आखिरी सोमवार है।

0: में शिव भक्तों के पास भी इस सावन के महीने में आखिरी मौका है भोलेनाथ को प्रसन्न करने का। सावन के आखिरी सोमवार को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। अगर आपने सावन के किसी भी सोमवार को पूजा नहीं की है, व्रत नहीं रखा है, तो इस सोमवार को पूजा करने और व्रत करने से भी आपकी मनोकामनाएं पूरी हो सकती है। सावन के आखिरी सोमवार पर एक साथ कई शुभ योग संयोग भी बन रहे हैं। सावन के आखिरी सोमवार पर इस बार प्रीति योग, आयुष्मान योग, पवित्रता एकादशी वैष्णव, हंस राज योग, बुद्धादित्य राजयोग, क्योंकि सिंह राशि में सूर्य बुध की युति बनेगी। अगर आप भी सावन के पहले तीन सोमवार का व्रत नहीं कर पाए हैं, तो कोई बात नहीं, आप इस सोमवार का व्रत करेंगे तो पुण्य की प्राप्ति होगी। सावन के आखिरी सोमवार पर सुबह सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहने, इसके बाद भगवान शिव का ध्यान कर व्रत या पूजा का संकल्प ले, शिवालय जाएं और शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और 11 या 21 बेलपत्र अर्पित करें। एक एक बेलपत्र अर्पित करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें। इसके बाद घी का दीपक जलाकर आरती करें और इस दिन जरूरतमंद लोगों की मदद करें और दान भी दें, जैसे वस्त्र, अन्न, फल आदि चीजों का दान आप कर सकते हैं। शिव चालीसा या रुद्राष्टक का पाठ करें। सावन के आखिरी सोमवार पर रुद्रा अभिषेक करने की भी विशेष मान्यता है। कहा जाता है कि इस दिन पूजा पाठ जप तप करने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
1: अभी गणेश उत्सव में काफी दिन है, लेकिन तैयारियां जोरों पर हैं। मुंबई के लालबाग परेल इलाके में काला चौकी में आज गणपति बप्पा का आगमन हुआ। तस्वीरें देखिए, मुंबई के प्रसिद्ध गणेश उत्सव पंडालों में से एक। गणेश चतुर्थी के दौरान विघ्नहर्ता की बहुत सुंदर भव्य मूर्ति स्थापित की जाती है। गणेश उत्सव के दौरान दर्शन करने के लिए हजारों भक्त यहां पर आते हैं। जैसे जैसे गणेश उत्सव की तारीख जो है नजदीक आ रही है, बप्पा की मूर्ति अलग अलग पंडालों में लाई जा रही है ताकि महोत्सव के दौरान भव्य और दिव्यता प्रदान की जा सके। दो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन में दिखा रहे हैं, कितनी बड़ी संख्या में तमाम श्रद्धालु बढ़ चढ़कर स्वागत कर रहे हैं बप्पा के आगमन का।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: सावन के अंतिम सोमवार का क्या है पूजा विधान? सावन के अंतिम सोमवार पर कौन सी मनोकामनाएं होंगी पूरी और कैसे मिलेगा शिव जी का वरदान? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।